0: MDR लगाया जा सकता है। इस ट्रांजेक्शन की संख्या भले ही सिर्फ 5% हो, लेकिन UPI के कुल ट्रांजेक्शन वैल्यू का करीब 65% इन्हीं में है।
1: क्या आप मुझे बताइए, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मजबूत कदम लगेगा आपको? ये कदम जो हमारे इंडिजिनस, हमारे होम ग्रोन डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है, उसको तबाह करने की दिशा में एक कदम है, क्योंकि अमेरिका को हमारा MDR रेजिम नहीं पसंद आ रहा था, अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा था, और हो सकता है हम अमेरिका के सामने कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं ये करके कि साहब हमने ब्रिक्स का समिट यहाँ ऑर्गेनाइज के लिए, हमें माफ कर दो, लो हम आपके लिए कर देते हैं। ये वही है, उसके अलावा कुछ नहीं।
2: कांग्रेस पार्टी एक नाराज फूफा पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो ये कह रही थी कि इस देश का आम आदमी कभी डिजिटल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आज वही कांग्रेस पार्टी आम आदमी की बात उठाने का ढोंग कर रही है। सच्चाई की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात की मिर्ची लगी है कि हर व्यक्ति आज UPI का इस्तेमाल ग्लोबली और देश के अंदर हर भारतीय कर रहा है। कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही है। किसी भी व्यक्ति को, कॉमन मैन को, कोई भी 2000 रुपए तक कोई चार्ज नहीं देना होगा, किसी कस्टमर को नहीं देना होगा। 90% से ज्यादा ट्रांजैक्शंस UPI के लेस देन 2000 रुपीज में होते हैं।
0: दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट होता है। दूध, सब्जी, दवा खरीदना हो, या ऑटो रेस्टोरेंट में भुगतान करना हो, या फिर किसी को एक क्लिक में पैसे भेजना, UPI भारत के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, जिसमें बड़े दुकानदारों से लेकर रेहड़ी पटरी वाले भी शामिल हैं। इसीलिए सरकार की तरफ से समझाया जा रहा है कि 96% UPI मर्चेंट ट्रांजेक्शन 2000 या उससे कम के होते हैं, जो मुफ्त है। रुपए डेबिट कार्ड पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब आम लोगों के बीच UPI फ्री था, है और रहेगा। इसके बावजूद कांग्रेस फेक न्यूज फैला रही है।
3: अध्ययन करने के बाद ट्विस्ट कैसे किया जाता है मैटर को, इसी में निपुणता हासिल हो चुकी है कांग्रेस पार्टी को। मैन टू मैन ट्रांसफर निशुल्क, मर्चेंडाइज बेस्ड है, मर्चेंट द्वारा है। ये चीज को जो बीच का थिन लाइन है, इसका ट्विस्ट करके ये लोग पेश कर रहे हैं।
0: NPCI के मुताबिक अगस्त में किसी दुकान पर किया गया औसत UPI पेमेंट 577 रुपए था। ये किराने की दुकान पर 2 या 3 बार की खरीदारी के बराबर है। उस महीने भारत में ऐसे 15.56 अरब पेमेंट किए गए। 577 रुपए की रकम 2000 रुपए के आसपास भी नहीं, इसे 3 गुना से ज्यादा बढ़ना होगा। ये रकम घट भी रही है। अगस्त में दुकानों पर जुलाई के मुकाबले 3.6% ज्यादा पेमेंट हुए, लेकिन कुल रकम 1.2% कम रही, इसलिए औसत पेमेंट 606 से घटकर 577 हो गया। जिस महीने सरकार ने ये सीमा तय की, उसी महीने औसत पेमेंट उस सीमा से और नीचे चला गया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। भले ही चाय, कॉफी और छोटे पेमेंट पर आम आदमी को कोई चार्ज ना देना हो, लेकिन जनता की चिंता इसके बावजूद बरकरार है।
4: जो बड़े स्टोर हैं, जैसे जो ब्रांडेड स्टोर है, जहाँ MRP पे माल बिकता है, उनको तो फर्क नहीं पड़ता, वो अफोर्ड कर सकते हैं। पर जहाँ कंपटीशन ज्यादा, जो छोटे स्टोर हैं, छोटे व्यापारी हैं, जो हॉकर हैं, हॉकर वगैरह हैं, जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पे मार्जिन प्रॉफिट बहुत लिमिटेड होता है, तो वो पहले पूछेगा कि आप कैश दे रहे हो या UPI पे दे रहे हो। क्योंकि पहले तो पूछना नहीं था, क्योंकि उसको पूरा अमाउंट मिल जाता। अब वो पूछेगा कि आप कैश दे रहे हो या UPI पे दे रहे हो, उस हिसाब से डिस्काउंट दे रहे हो। सकता है पहले 10% देता हो, फिर UPI पे कहेगा कि नहीं तो मैं तो सिर्फ 8% दूंगा या 9% दूंगा या 6%, तो उस करके फर्क करके अल्टीमेटली कस्टमर को ही बेयर करना पड़ेगा ये जो एडिशन लेकर आ रहे हैं।
0: तो सवाल ये है कि भले ही जनता को 2000 रुपए तक के UPI पेमेंट पर कुछ भी नहीं देना होगा, लेकिन जिन दुकानदारों को देना होगा, क्या वो किसी दूसरी तरह जनता से नहीं वसूलेंगे? क्या वो कैश को बढ़ावा नहीं देंगे? क्योंकि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर जनता से 1.5% से 2.5% तक चार्ज लिया जाता है। ये कार्ड नेटवर्क, मर्चेंट कैटेगरी और वॉल्यूम पर निर्भर होता है। इसकी वजह यह है कि RBI ने क्रेडिट कार्ड पर MDR कैप या ग्राहक पर सरचार्ज रोकने का कोई स्पष्ट नियम नहीं दिया है, इसलिए उससे ये वसूला जाता है। लेकिन सरकार का कहना है कि UPI के साथ ऐसा नहीं होगा, फिर भी जनता की चिंता बरकरार है।
5: अरे बाहर जो है ये परचेजर पे पड़ेगा, और सबसे ज्यादा पड़ेगा मिडिल क्लास पे, क्योंकि मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा परचेजिंग करती है। आप हम जितनी परचेजिंग करते हैं, वो सरकार को ज्यादा उसका रेवेन्यू जाता है। अपर क्लास आप सोच सकते हो क्या देती है, सबको पता है कि उनके एंड में जो बैलेंस शीट है वो क्विट्स होती है, जीरो आती है, क्यों, कहीं ना कहीं CSR दिखा देते हैं, कभी कुछ दिखा देते हैं। तो मिडिल क्लास पे ये जितना भी बाहर है आपका, तो आप सोच लो कितना पड़ेगा। ये जूता देखने जाओगे तो जूता ही आपको कोई 5-10 हजार रुपए से कम का नहीं ये समझ में आएगा। अब जो भी है वो आप ये सोचेंगे, जो भी चीज आप खरीदोगे 200 के ऊपर, 2000 के ऊपर, उस पर कंज्यूमर को ही पड़ना है। एंड रिजल्ट एमआरपी पे है तो दुकानदार बेयर कर लेगा, बट अगर एमआरपी से नीचे है जो कंपटीशन में है प्रोडक्ट, उसके अंदर आपको कंज्यूमर ही देता है। आज भी जैसे पहले हम जाते थे तो कहते थे लोग कि आप क्रेडिट कार्ड से देंगे या आप कैश देंगे, अब यही होगा कि आप यूपीआई से दे रहे हैं या कैश से दे रहे हैं।
6: जहां ब्रांडेड स्टोर्स हैं एमआरपी पे सेल हो रही है, एमआरपी के आसपास सेल हो रही है।
7: 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए यूपी में खेला शुरू हुआ है। सवाल यह है कि क्या यूपी के चुनावी मौसम में सबके समीकरण बदलेंगे, क्या जातियों के आधार पर गठबंधन का मिजाज बदलेगा। यूपी में सभी पार्टियों के सियासी मायने दिखने लगे हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को लेकर राजनीतिक सरपट राजनीति दौड़ने लगी है। तो आइए देखते हैं कि संजय निषाद ने समाजवादी के सीनियर नेता माता प्रसाद पांडे से मुलाकात की तो कैसे सियासत के द्वार खुल गए।
8: जब 2027 यूपी विधानसभा के चुनाव एकदम नजदीक आ गए हैं, अब यूपी में नया खेल शुरू हो गया है। जी हां, जब गठबंधन की पॉलिटिक्स में सीटों के बंटवारे का टाइम आया है तो यूपी में कैसे प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हुई है, आज हम उसको डिकोड करने जा रहे हैं। आज की तारीख में यूपी के अंदर 6 परिदृश्य ऐसे चल रहे हैं जो बता रहे हैं कि कैसे यूपी में सियासी उठापटक का दौर शुरू हो चुका है। यूपी में एनडीए के साथी संजय निषाद का ताजा बयान जिससे एनडीए में उठापटक वाली सियासत फूटती है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच तगड़ी बयानबाजी जो पुराने साथियों के बीच नई दुश्मनी की नई पिक्चर है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश के हाथों लोहिया ट्रस्ट की कमान, जिस पर चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई है। दलित राजनीति में चंद्रशेखर आजाद और वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व करने उतरी रोहिणी खावरी में टक्कर जो अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले तक पहुंच रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अभी तक 2027 के विधानसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है और सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी ने 2027 को जीतने का मास्टर प्लान बनाने का दावा ठोक दिया है। जब सीएम योगी के लिए तीसरे टर्म की सरकार बनाने का चैलेंज है, उस वक्त यूपी में एनडीए के साथियों की तरफ से बयानबाजी शुरू होना गठबंधन में दरार वाली राजनीति को हवा देना ही माना जाएगा। सबसे पहले योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं।
9: भाई, समाजवादी पार्टी ने बंद किया था दरवाजा, तो मैं भाजपा के पास गया। भाजपा जब बंद करेगी तब उस पे सोचा जाएगा।
8: आज तक से खास बातचीत में संजय निषाद ने ये बयान समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता माता प्रसाद पांडे से मुलाकात के बाद दिया है। वैसे तो इस मुलाकात के बारे में कहा गया कि माता प्रसाद पांडे की तबीयत खराब है और संजय निषाद उनका हालचाल जानने के लिए गए थे, लेकिन जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, सवाल यही है कि कुछ तो उनके मन में चल रहा है।
10: बीजेपी अगर दरवाजा बंद करती है तो आप समाजवादी पार्टी में जाएंगे?
9: कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा ना हम लोग, अगर बंद करती है कि हम गठबंधन नहीं रखेंगे या अब क्यों बंद करेगी भारतीय जनता पार्टी, हम उसके फायदे के निडर रहता हूँ। भगवान राम को उन्होंने गले लगाया और जीत दिया था इस युग में।
10: अगर मान लें ये दरवाजा है बीजेपी का, ये बंद हो गया, तो संजय निषाद के पास क्या ऑप्शन है?
9: ऑप्शन रहेगा कि जो निषाद के मुद्दे के हल करने के लिए बात करेगा और जो लगेगा कि केंद्र सरकार से संबंधित हमारे मामले हैं केंद्र में।
8: ये भी किसी से छुपा नहीं है कि संजय निषाद पिछले कुछ महीनों से योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं, चाहे वो पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर दी गई धमकी हो या फिर यूपी में विनोद सहनी हत्याकांड को लेकर सियासत और अब संजय निषाद का दरवाजा बंद करने वाला बयान। हालांकि उनके सहयोगी यही कह रहे हैं कि इसके कोई वायदे नहीं निकाले जाने चाहिए।
11: बीमार है माता प्रसाद जी, आपके बात करते बीमारी हालत में तो मानवता है ये। आप बताइए, आप बीमार पड़ेंगे तो कोई जाएगा तो इसमें भी राजनीति तलाशेंगे आप।
12: संजय निषाद जी एनडीए के प्रमुख घटक दल हैं और वो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल हैं और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का स्वास्थ्य खराब है, विपक्ष के नेता भी हैं विधानसभा में, तो संजय निषाद जी केवल उनका स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए, कुशल क्षेम पूछने के लिए, मिलने के लिए गए हैं वो। और मुझे ऐसा लगता नहीं कि इन सब व्यक्तिगत विषयों में राजनीतिक से हटके भी हम लोग एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान प्रकट करने के लिए और एक दूसरे के इन सब विषयों में भी हम लोग आदर सम्मान के साथ जाते आते रहे, इनमें राजनीति करने का कोई विषय दिखता नहीं मुझे।
13: नहीं कुछ नहीं, इसमें कोई राजनीति नहीं खोजनी चाहिए, और इतना डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में इतना व्यवहारिक जगह तो छोड़कर रखनी चाहिए, कोई किसी से मिले, बात व्यवहार करे, हालचाल पूछे।
8: अगर संजय निषाद एनडीए में रहने वाले हैं तो क्या इसे प्रेशर पॉलिटिक्स माना जाए ताकि 2027 के विधानसभा चुनावों में सीटों का मोल भाव हो सके?
7: चर्चा संजय निषाद के बयान को लेकर है। अखिलेश और जयंत चौधरी के बीच जोरदार भिड़ंत शुरू हो चुकी है, और ये वही जयंत हैं जिनके लिए अखिलेश कभी पर्सनल गाड़ी भिजवाया करते थे, लेकिन 2024 लोकसभा चुनावों के बाद गठबंधन टूटा, साथ छूटा, तो आज चवन्नी से रुपया और पोल खोल देने वाली सियासत जारी है। उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों का तालमेल हो सकेगा या नहीं, इस पर बयानों का भी घमासान छिड़ चुका है। इसी बीच लोहिया ट्रस्ट की जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव से छीन ली गई है। ऐसे में अखिलेश पर चाचा शिवपाल को साइडलाइन करने का बीजेपी ने आरोप मढ़ दिया है।
8: एक तरफ एनडीए में दरार वाली सियासत फूटी है तो दूसरी तरफ पुराने साथियों में दुश्मनी खुलकर सामने आ रही है। जी हां, बात अखिलेश यादव और आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी की। पहले अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को लेकर चवन्नी वाला बयान दिया था। अखिलेश यादव ने कहा था, जाने कहां कहां से आ गए ये लोग गठबंधन बनाने, हमने चवन्नी का रुपया बना दिया था तब भी हमें छोड़कर चले गए वो।
14: अरे कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
8: इसके बाद अखिलेश ने जयंत चौधरी पर तंज कसते हुए कहा था कि एनडीए में आरएलडी को 73 सीटें मिलेंगी और राजभर को 39 सीटें। अखिलेश यादव के इस बयान पर जयंत चौधरी इतने भड़के हुए हैं कि उन्होंने सीधे धमकी दे दी है कि अगर मैंने मुंह खोल दिया तो खड़े नहीं हो पाएंगे।
15: वो हमें जब हमारा उनके साथ साझा था, सारी बातें नहीं बताई जाती सामने, ये मेरी गंभीरता है जो मैं वो बातें नहीं कह रहा, अगर वो बातें मैं खोल दूंगा ना तो उनको यहाँ खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश। जिस हल्केपन से वो आज बातें कह रहे हैं कि इतनी सीट मिलनी चाहिए, तभी सम्मान चौधरी चरण सिंह का सम्मान विधानसभा की सीटों से नहीं तय होने वाला, उनका सम्मान सबके दिल में है और रहेगा चाहे वो जो चाहे।
8: जयंत को अखिलेश का चवन्नी वाला बयान ऐसा चुभा है, बात अब पर्सनल हो गई है।
15: वो एसपी नहीं, वो पीसी है, पीसी के अलावा कुछ नहीं कर रहे, सभा नहीं करेंगे, वो वहाँ ट्वीट करेंगे, आंदोलन उन्होंने किया नहीं है, सड़क पे वो आए नहीं, लेकिन विपक्ष की राजनीति कर रहे, मुझे तो समझ में नहीं आता।
8: चुनावी मैदान में जयंत चौधरी खुलेआम अखिलेश को ललकार रहे हैं, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर से लेकर बुलंदशहर तक उन्हें रैली की इजाजत नहीं दी गई। दरअसल 2022 में पश्चिमी यूपी के कोर बेल्ट की 111 सीटों में से बीजेपी ने अकेले 75 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की। तब इस गठबंधन में लड़े एसपी को 28 और आरएलडी को 8 सीटें मिली थी, लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो पश्चिमी और उससे सटे रोहिलखंड की कुल 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 13, आरएलडी को 2 सीटें ही मिल पाई, जबकि 11 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट आजाद समाज पार्टी को मिली। पश्चिमी यूपी में टक्कर तगड़ी है, ऐसे में बीजेपी और एनडीए के सहयोगी जयंत चौधरी के लिए पूरी बैटिंग कर रहे हैं।
11: हमारी जो शब्द है, शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके हर व्यक्ति को करना चाहिए, राजनीति में तो और भी व्यक्ति को सोच समझ करके करना चाहिए।
16: सही कह रहे हैं, क्योंकि उनके साथ रहे हैं, घरवा में काका हो तो कुल जानत हूँ वहाँ, इस नाते जयंत जी बोल रहे हैं कि जब हम खोलेंगे तो अखिलेश जी खड़ा नहीं हो पाए, सही कह रहे।
7: गृहमंत्री अमित शाह के बयान के बाद यूपी के मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि यूपी में यूसीसी लागू किया जाएगा। अब यूपी की राजनीति गर्मा चुकी है। अखिलेश यादव ने यूसीसी को लेकर कहा कि जनता समझ रही है कि बीजेपी जिस यूसीसी की बात कर रही है, दरअसल उसका फुल फॉर्म है अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। अब सूबे की सियासत इसके बाद उबल रही है।
17: मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
0: अमित शाह के इस ऐलान ने ऐसा घमासान मचाया कि देश की सियासत सुलग उठी। गठबंधन वाले राज्यों में तो एनडीए के अंदर यूसीसी को लेकर सियासी शोर उठा ही, लेकिन विपक्षी दलों की असली सियासत यूपी में सुलगी है, जहां 2027 में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यूपी में बीजेपी का गठबंधन भी यूसीसी की सिफारिशें कर रहा है, बल्कि दो दो मंत्रियों ने यूसीसी जल्द लागू होने की उम्मीद भी जाहिर कर दी।
18: ये बताइए कि क्या यूसीसी अब उत्तर प्रदेश की जरूरत है? क्या आप लोग उसको लेकर के आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड?
12: नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे 2024 के घोषणा पत्र में है। बाकी सरकार को निर्णय करना, माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय करना है, लेकिन आज गृहमंत्री जी ने जो बोला है वो कहीं ना कहीं हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है, हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा है।
18: ये उम्मीद की जाए कि 2027 के पहले उत्तर प्रदेश में भी ये लागू होगा, उम्मीद की जा सकती?
12: अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को, पार्टी के एक हाईकमान को इस पर निर्णय लेना है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश में सबको, हमारा संविधान सबको एक बराबर के तहत देखता है, तो उसमें जो बराबरी के तहत जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: हालांकि यूपी में अभी तक सरकारी स्तर पर ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं है, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल कहते हैं कि अब सबसे पहले यूपी में ही यूसीसी पास होगा।
19: उत्तर प्रदेश ये प्रयास करेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मनसा है वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की धरती पर उतरे। सरकार निश्चित तौर पे सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उत्तर प्रदेश में हम सबसे पहले लागू करेंगे।
0: यूसीसी पर उत्तर प्रदेश में घमासान तेज हो रहा है। इन सब के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं। माना जा रहा है कि यहाँ यूसीसी पर बात हो सकती है, लेकिन कांग्रेस यूसीसी का पुरजोर विरोध कर रही है। कह रही है कि यूसीसी के नाम पर देश को गुमराह किया जा रहा है।
20: देश का कोई भी गृह मंत्री इस भारत जैसे देश में यूसीसी लागू नहीं कर सकता, ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ।
0: 27 में यूपी में चुनाव है और चुनाव से पहले यूसीसी का मुद्दा बड़ा हो रहा है। जाहिर है कि बीतते दिन के साथ ये मुद्दा और धारदार होगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
7: गणेश उत्सव के शुभ मौके पर देश भर में भव्य दिव्य पंडाल सजाए गए। मंदिरों में एक अलग ही रौनक नजर आ रही है। कहीं सोने चांदी और हीरों से सजाया गया है बप्पा को, तो कहीं बप्पा राजशाही श्रृंगार में नजर आ रहे हैं। लेकिन बप्पा के हर रूप में एक ही भाव है, भक्ति है, आस्था है और विश्वास है।

0: विघ्न और बाधाओं को दूर करने वाले प्रथम पूज्य देव। हे विघ्नहर्ता, सभी संकटों को हरकर जीवन को सुख समृद्धि से परिपूर्ण करें। कुछ ऐसे ही मनोभाव के साथ भक्त भगवान गणेश के दर्शन के लिए मंदिरों से लेकर पंडालों तक पहुंच रहे हैं। ऐसा ही भव्य श्रृंगार मुंबई के प्रसिद्ध लाल बागचा राजा का भी हुआ। लाल बाग के राजा का सोने का श्रृंगार अत्यंत भव्य और आकर्षक है, जिसमें भारी वजन का सोने का मुकुट, हार, बाजूबंद और सोने के चरण लोगों को आकर्षित कर रहे हैं।
1: जिस मंदिर में वो इस समय विराजमान है, चांदी से पूरी तरह से बनाया गया है। अब आप थोड़ा सा देखें कि इस बार शंकर भगवान को जोड़ा गया है इस थीम में। ऊपर बहुत ही ज्यादा मंदिर के सबसे ऊपर आप देख रहे हैं त्रिशूल रखा हुआ है और डमरू है और डायमंड से सजाया गया है।
0: मुंबई में गणेशोत्सव की दिव्य और भव्य तस्वीर के साथ भक्त पंडालों में पहुंचकर बापा के दर्शन कर रहे हैं, चाहे वो लालबाग के राजा का दिव्य दरबार हो या फिर चिंचपोकली के चिंतामणि का भव्य पंडाल। हर जगह भक्तों का तांता लग रहा है। अंधेरी इलाके में स्थित मोहरेश्वर का राजा गणेश जी के दरबार में तीन अलग अलग प्रकार के चलचित्र बनाए गए हैं, जिनमें शंकर भगवान और गणेश जी से जुड़ी पौराणिक कथाएं चलचित्र के माध्यम से बताई जा रही हैं। मुंबई में आम से लेकर खास तक सब बाप्पा की भक्ति के रंग में डूबे हैं। अंबानी परिवार के घर एंटीलिया में भी गणपति विराजे हैं। वहां उनके दर्शन से पुण्य कमाने के लिए बॉलीवुड, टीवी और खेल जगत के साथ साथ कई दिग्गज हस्तियां भी पहुंची। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के दौरान हर साल अलग अलग गणेश पंडालों में अनोखी थीम, भव्य झांकियां और कलात्मक सजावट देखने को मिलती है। इस कड़ी में भारत में आयोजित ब्रिक्स समिट की झलक भी देखने को मिल रही है।
2: गणपति जी विराजमान हुए हैं और यहाँ पर ब्रिक्स का जो डेकोरेशन है वो यहाँ पर किया गया है। ब्रिक्स समिट जो दिल्ली में हुआ था इस बार, उसका एक तरीके से डेकोरेशन जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है।
3: इस ईयर की थीम थी जो मेन पिलर्स थे, तो वो इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, कोऑपरेशन और रेजिलेंस पे था। तो वही मैंने फोर पिलर्स यहाँ पे दर्शाए है ये गणेश उत्सव में।
2: बिल्कुल, तो पिछले कई सालों से ये सिलसिला बदस्तूर कायम है, जिसमें जो है अलग अलग तरीके से जो दुनिया में, जो भारत में चल रहा है, उसको गणपति जी के माध्यम से दिखाने का काम जो है वो शुभम वनवाला कर रहे हैं।
0: महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा जगह जगह गणेशोत्सव के दिव्य रंग देखने को मिल रहे हैं। पुणे में श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति के दरबार में भक्तों का हुजूम लगातार उमड़ रहा है। करीब 35,000 से अधिक महिलाओं ने यहां एक साथ अथर्वशीर्ष का पाठ कर भगवान गणेश को नमन किया। इसके अलावा भगवान गणेश की आस्था से जुड़े ऐसे कई मंदिर हैं जहां गणेशोत्सव के दिव्य रंग छाए हुए हैं। जुन्नर इलाके के सोझर के श्री विघ्नहर गणपति मंदिर की दिव्य सजावट के साथ ही यहां मंगल मूर्ति का भी दिव्य श्रृंगार किया गया है। यहां विघ्नहर पापा को पेशवाकालीन पोशाक से सुसज्जित किया गया और करीब 200 वर्ष पुराने करोड़ों रुपए के मूल्य के ऐतिहासिक आभूषणों से उनका भव्य श्रृंगार किया गया। बापा की आंखों में जड़े माणिक रत्न, माथे पर हीरा और चंद्रकोर, गले में चंद्रहार और स्वास्तिक हार, सिर पर छत्र, कंठीहार, शिवगंध और कमर में करदोरा, इन पारंपरिक आभूषणों से विघ्नहर बप्पा का इस शाही रूप के दर्शन का भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और दीपेश त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

गणेश की मूर्ति से वास्तु दोष कैसे दूर होगा? भगवान गणेश की कौन सी मूर्ति बच्चों के कमरे में लगानी चाहिए? भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र मुख्य द्वार पर कैसे लगाना चाहिए? कैसे लगाएं भगवान गणेश की प्रतिमा कि वास्तु दोष दूर हो जाए? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर लगेगा चार्ज। रेलवे, टेलीकॉम, ईंधन जैसे चुनिंदा श्रेणियों पर ₹5 की शुल्क। 15 अक्टूबर से नया नियम लागू। राहुल गांधी ने उठाए सवाल। यूसीसी को अखिलेश यादव ने बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। बीजेपी पर साधा निशाना, बोले 15 लाख खाते में पहुंचाओ फिर यूसीसी लाओ। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और होगी मजबूत। योगी कैबिनेट ने मिल्कीपुर में एनएसजी रीजनल हब के लिए 65 एकड़ जमीन को दी मंजूरी। स्नाइपर किए जाएंगे तैनात। आज तक की खबर का बड़ा असर, गुरुग्राम हिट एंड रन केस में मुख्य आरोपी के बाद एक और गिरफ्तारी। लेडी बाइकर के बयान पर दर्ज हुआ हत्या की कोशिश का केस। और भारत ने पाकिस्तान से जीती T20 सीरीज। 7 विकेट से दूसरे मैच में जीत हासिल। 160 रनों का लक्ष्य, 31 बॉल रहते किया हासिल।

नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बुलेटिन में, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे उस खबर के साथ। गुरुग्राम में रोड रेज का मामला हुआ और इस रोड रेज के मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई के नाम पर अभी एक और गिरफ्तारी हुई है। तो अब तक गिरफ्तारियों का सिलसिला बढ़ रहा है। गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारने के मामले में वारदात के वक्त आरोपी कार चालक कल्याण बैसला के साथ कार में मौजूद आरोपी लवनीश को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 34 साल के लवनीश पलवल के न्यू कॉलोनी का रहने वाला है और उसे इस मामले में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पहले ही मुख्य आरोपी कल्याण बैसला को गिरफ्तार कर लिया गया था और अब इस मामले में दूसरा आरोपी लवनीश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

0: से हुई कि फॉलोअर्स जो है वो बढ़ाए
1: जाते हैं? नहीं, देखिए उनका इंटरव्यू मैंने सुना, उनके लॉयर का इंटरव्यू सुना, और जो भी उनके एक्स वाई जेड फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो काफी इंटरव्यू दे रहे हैं कि मैं विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हूँ और फॉलोअर्स के लिए कर रही हूँ, और उनका जो भी गुरु है वो इतने शिक्षित हैं और आपको जानता ही कौन है, काफी सारी चीजें. देखिए इन चीजों से देखिए फर्क नहीं पड़ता. आप उनकी पर्सनालिटी बता रहे हैं कि वो कितने पढ़े लिखे हैं. देखो गवार तो मैं भी नहीं हूँ, पढ़ी लिखी तो मैं भी हूँ, मैं भी एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मुझे कह रहे हैं कि आपको जानता ही कौन है. जो मेरा सिया वाला पेज है, देखो मेरे को कोई शौक नहीं था अपनी आइडेंटिटी रिवील करने का. इवन दोपहर तक जब तक मीडिया मेरे घर आके नहीं बैठी, किसी को नहीं पता था सिया कौन है.
2: इतना बड़ा हिट एंड रन का ये मामला सामने आया है, और ये गोल्फ कोर्स रोड का मामला है. इस घटना को लेकर हमने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई की है, और हमने रिकमेंड किया है, पुलिस को निर्देश दिया है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. उस लड़के को जो जिसका सामने आया है नाम, वो कल्याण भैसला करके पलवल का रहने वाला है, और शिवानी जो है वो दिल्ली की रहने वाली है. तो उसको राउंड अप कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, और इस पर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के हिदायत पुलिस को दी है.
3: यूपीआई सिर्फ भारत के लिए ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक मिसाल नहीं है, बल्कि भारत का यूपीआई पूरी दुनिया में सबसे बड़े डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है. हमारे आपके ट्रांजैक्शन आसान कर देता है. अब एक नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद सरकार कहती है कि यूपीआई के नए नियमों को लेकर के जनता कोई फीस नहीं देनी होगी. धीरे धीरे घंटे बीतते गए, वक्त बीतता गया, क्लैरिफिकेशन आता गया, और तब पता चला कि आखिर यूपीआई का असली पेज है क्या. विपक्ष सरकार की दलील मानने को तैयार नहीं है. वो सवाल उठा रहा है कि आखिर यूपीआई जब फ्री था तो अचानक ये नए नियम, नए पेज लाने की जरूरत क्या पड़ी. जनता डरी हुई है कि दुकानदार अगर अपने ऊपर कोई भार पड़ेगा, कितने दुकानदार अपना भार कूट जाते हैं, वो तो हमारे आपके कंधों पर डाल देंगे. देखिए रिपोर्ट.
4: वित्त मंत्रालय की तरफ से यूपीआई पेमेंट को लेकर आम आदमी को खबरदार किया गया है कि 2000 रुपए तक के यूपीआई पेमेंट पर बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फीस नहीं लगा सकते. रुपे डेबिट कार्ड

0: से होने वाले पेमेंट को भी इस दायरे में रखा गया है। सीधी बात यह कि आम आदमी के लिए कुछ नहीं बदलेगा। इसीलिए जब कांग्रेस की तरफ से इसे आम आदमी से वसूली बताई गई, तो बीजेपी की तरफ से इसे कांग्रेस का दुष्प्रचार बताकर खारिज कर दिया जाता है। यूपीआई पर बीजेपी बनाम कांग्रेस की सियासी जंग में अब आप इस खबर के गजट नोटिफिकेशन को देखिए, जिसमें सरकार ने 2007 के कानून की धारा 51 के 10(a) का जिक्र करते हुए कहा है कि 2000 रुपए के यूपीआई पेमेंट और रुपए डेबिट कार्ड पर कोई फीस नहीं लगेगी। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि 2000 से ऊपर के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर कोई फीस वसूली नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी विपक्ष को भरोसा नहीं हो रहा। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, अब 2000 से ऊपर के मर्चेंट यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लगाया जा सकता है। इस ट्रांजेक्शन की संख्या भले ही सिर्फ 5% हो, लेकिन यूपीआई के कुल ट्रांजेक्शन वैल्यू का करीब 65% इन्हीं में है।
1: क्या आप मुझे बताइए, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मजबूत कदम लगेगा आपको? ये कदम जो हमारे इंडिजिनस, हमारे होम ग्रोन डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है, उसको तबाह करने की दिशा में एक कदम है, क्योंकि अमेरिका को हमारा एमडीआर रेजिम नहीं पसंद आ रहा था, अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा था, और हो सकता है हम अमेरिका के सामने कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं ये करके कि साहब हमने ब्रिक्स का समिट यहाँ ऑर्गेनाइज के लिए, हमें माफ कर दो, लो हम आपके लिए कर देते हैं। ये वही है, उसके अलावा कुछ नहीं।
2: कांग्रेस पार्टी एक नाराज फूफा पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो ये कह रही थी कि इस देश का आम आदमी कभी डिजिटल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आज वही कांग्रेस पार्टी आम आदमी की बात उठाने का ढोंग कर रही है। सच्चाई की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात की मिर्ची लगी है कि हर व्यक्ति आज यूपीआई का इस्तेमाल ग्लोबली और देश के अंदर हर भारतीय कर रहा है। कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही है, किसी भी व्यक्ति को, कॉमन मैन को कोई भी 2000 रुपए तक कोई चार्ज नहीं देना होगा, किसी कस्टमर को नहीं देना होगा। 90% से ज्यादा ट्रांजैक्शंस यूपीआई के लेस देन 2000 रुपीस में होते हैं।
0: दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट होता है। दूध, सब्जी, दवा खरीदना हो या ऑटो रेस्टोरेंट में भुगतान करना हो या फिर किसी को एक क्लिक में पैसे भेजना, यूपीआई भारत के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, जिसमें बड़े दुकानदारों से लेकर रेहड़ी पटरी वाले भी शामिल हैं। इसीलिए सरकार की तरफ से समझाया जा रहा है कि 96% यूपीआई मर्चेंट ट्रांजेक्शन 2000 या उससे कम के होते हैं, जो मुफ्त है। रुपे डेबिट कार्ड पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब आम लोगों के बीच यूपीआई फ्री था, है और रहेगा। इसके बावजूद कांग्रेस फेक न्यूज फैला रही है।
3: अध्ययन करने के बाद ट्विस्ट कैसे किया जाता है मैटर को, इसी में निपुणता हासिल हो चुकी है कांग्रेस पार्टी को। मैन टू मैन ट्रांसफर निशुल्क, मर्चेंडाइज बेस्ड है, मर्चेंट द्वारा है। ये चीज को जो बीच का थिन लाइन है, इसका ट्विस्ट करके ये लोग पेश कर रहे हैं।
0: एनपीसीआई के मुताबिक अगस्त में किसी दुकान पर किया गया औसत यूपीआई पेमेंट 577 रुपए था। ये किराने की दुकान पर 2 या 3 बार की खरीदारी के बराबर है। उस महीने भारत में ऐसे 15.56 अरब पेमेंट किए गए। 577 रुपए की रकम 2000 रुपए के आसपास भी नहीं, इसे 3 गुना से ज्यादा बढ़ना होगा। ये रकम घट भी रही है। अगस्त में दुकानों पर जुलाई के मुकाबले 3.6% ज्यादा पेमेंट हुए, लेकिन कुल रकम 1.2% कम रही, इसलिए औसत पेमेंट 606 से घटकर 577 हो गया। जिस महीने सरकार ने ये सीमा तय की, उसी महीने औसत पेमेंट उस सीमा से और नीचे चला गया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। भले ही चाय, कॉफी और छोटे पेमेंट पर आम आदमी को कोई चार्ज ना देना हो, लेकिन जनता की चिंता इसके बावजूद बरकरार है।
4: जो बड़े स्टोर हैं, जैसे जो ब्रांडेड स्टोर है, जहाँ एमआरपी पे माल बिकता है, उनको तो फर्क नहीं पड़ता, वो अफोर्ड कर सकते हैं। पर जहाँ कंपटीशन ज्यादा, जो छोटे स्टोर हैं, छोटे व्यापारी हैं, जो हॉकर हैं, हॉकर वगैरह हैं, जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पे मार्जिन प्रॉफिट बहुत लिमिटेड होता है, तो वो पहले पूछेगा जी आप कैश दे रहे हो या यूपीआई पे दे रहे हो। क्योंकि पहले तो पूछता नहीं था, क्योंकि उसको पूरा अमाउंट मिल जाता। अब वो पूछेगा कि आप कैश दे रहे हो या यूपीआई पे दे रहे हो, उस हिसाब से डिस्काउंट दे रहे हो। सकता है पहले 10% देता हो, फिर यूपीआई पे कहेगा कि जी नहीं, तो मैं तो सिर्फ 8% दूंगा या 9% दूंगा या 6%, तो उस करके फर्क करके अल्टीमेटली कस्टमर को ही बेयर करना पड़ेगा ये जो एडिशन लेकर आ रहे हैं।
0: तो सवाल ये है कि भले ही जनता को 2000 रुपए तक के यूपीआई पेमेंट पर कुछ भी नहीं देना होगा, लेकिन जिन दुकानदारों को देना होगा, क्या वो किसी दूसरी तरह जनता से नहीं वसूलेंगे? क्या वो कैश को बढ़ावा नहीं देंगे? क्योंकि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर जनता से 1.5% से 2.5% तक चार्ज लिया जाता है। ये कार्ड नेटवर्क, मर्चेंट कैटेगरी और वॉल्यूम पर निर्भर होता है। इसकी वजह यह है कि आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड पर एमडीआर कैप या ग्राहक पर सरचार्ज रोकने का कोई स्पष्ट नियम नहीं दिया है, इसलिए उससे ये वसूला जाता है। लेकिन सरकार का कहना है कि यूपीआई के साथ ऐसा नहीं होगा, फिर भी जनता की चिंता बरकरार है।
5: ये बाहर जो है ये परचेजर पे पड़ेगा और सबसे ज्यादा पड़ेगा मिडिल क्लास पे, क्योंकि मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा परचेजिंग करती है। आप हम जितनी परचेजिंग करते हैं वो सरकार को ज्यादा उसका रेवेन्यू जाता है। अपर क्लास आप सोच सकते हो क्या देती है, सबको पता है कि उनके एंड में जो बैलेंस शीट है वो क्विट्स होती है, जीरो आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीएसआर दिखा देते हैं, कभी कुछ दिखा देते हैं। तो मिडिल क्लास पे ये जितना भी बाहर है आपका, तो आप सोच लो कितना पड़ेगा। ये जूता देखने जाओगे तो जूता ही आपको कोई 5-10 हजार रुपए से कम का नहीं ये समझ में आएगा। अब जो भी है वो आप ये सोचेंगे जो भी चीज आप खरीदोगे 2000 के ऊपर, उस पर कंज्यूमर को ही पड़ना है। एंड रिजल्ट एमआरपी पे है तो दुकानदार बेयर कर लेगा, बट अगर एमआरपी से नीचे जो कंपटीशन में है प्रोडक्ट, उसके अंदर आपको कंज्यूमर ही देता है। आज भी जैसे पहले हम जाते थे तो कहते थे लोग कि आप क्रेडिट कार्ड से देंगे या आप कैश देंगे, अब यही होगा कि आप यूपीआई से दे रहे हैं या कैश से दे रहे हैं।
6: जहां ब्रांडेड स्टोर्स हैं एमआरपी पे सेल हो रही है, एमआरपी के आसपास सेल हो रही है, वहां तो वो बेयर कर लेगा। जैसे क्रेडिट कार्ड का 1.25% कट के पेमेंट आती है, शोरूम्स कर लेते हैं। जहां छोटी शॉपकीपर्स हैं, अब उसका 8000 रुपए का बिल है, वो उस पर 0.4% बेयर तो करने वाला है नहीं, वो अपना प्राइस टैग बढ़ा देगा, वो कंज्यूमर देगा, और बीच में वो लेके जाएगी फिनटेक कंपनी या गवर्नमेंट।
1: अब अगर यूपीआई जनता के लिए फ्री था, सब कुछ अच्छा था, तो उस मन में सवाल उठता है ना, फिर ये सब नोटिफिकेशन लाने की जरूरत क्या थी? अब ले आए हैं तो कुछ तो जवाब देना होगा। बहरहाल 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए यूपी में खेला शुरू हो गया है। सवाल ये कि क्या यूपी के चुनावी मौसम में सबके समीकरण बदलेंगे? क्या जातियों के आधार पर गठबंधन का मिजाज बदलेगा? क्योंकि यूपी में सभी पार्टियों के सियासी मायने दिखने लगे हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को लेकर राजनीति सरपट दौड़ी है। आइए देखते हैं संजय निषाद ने समाजवादी के सीनियर नेता माता प्रसाद पांडे से जब मुलाकात की तो कैसे सियासत के नए दरवाजे खुल गए।
7: जब 2027 यूपी विधानसभा के चुनाव एकदम नजदीक आ गए हैं, अब यूपी में नया खेल शुरू हो गया है। जी हां, जब गठबंधन की पॉलिटिक्स में सीटों के बंटवारे का टाइम आया है तो यूपी में कैसे प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हुई है, आज हम उसको डिकोड करने जा रहे हैं। आज की तारीख में यूपी के अंदर 6 परिदृश्य ऐसे चल रहे हैं जो बता रहे हैं कि कैसे यूपी में सियासी उठापटक का दौर शुरू हो चुका है। यूपी में एनडीए के साथी संजय निषाद का ताजा बयान जिससे एनडीए में उठापटक वाली सियासत फूटती है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच तगड़ी बयानबाजी, जो पुराने साथियों के बीच नई दुश्मनी की नई पिक्चर है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश के हाथों लोहिया ट्रस्ट की कमान, जिस पर चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई है। दलित राजनीति में चंद्रशेखर आजाद और वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व करने उतरी रोहिणी खावरी में टक्कर, जो अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले तक पहुंच रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अभी तक 2027 के विधानसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है, और सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी ने 2027 को जीतने का मास्टर प्लान बनाने का दावा ठोक दिया है। जब सीएम योगी के लिए तीसरे टर्म की सरकार बनाने का चैलेंज है, उस वक्त यूपी में एनडीए के साथियों की तरफ से बयानबाजी शुरू होना गठबंधन में दरार वाली राजनीति को हवा देना ही माना जाएगा। सबसे पहले योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं।
8: भाई, समाजवादी पार्टी ने बंद किया था दरवाजा, तो मैं भाजपा के पास गया। भाजपा जब बंद करेगी तब उस पर सोचा जाएगा।
7: आज तक से खास बातचीत में संजय निषाद ने ये बयान समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता माता प्रसाद पांडे से मुलाकात के बाद दिया है। वैसे तो इस मुलाकात के बारे में कहा गया कि माता प्रसाद पांडे की तबीयत खराब है और संजय निषाद उनका हाल चाल जानने के लिए गए थे, लेकिन जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, सवाल यही है कि कुछ तो उनके मन में चल रहा है।
9: बीजेपी अगर दरवाजा बंद करती है तो आप समाजवादी पार्टी में जाएंगे?
8: कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा ना हम लोग, अगर बंद करती है कि हम गठबंधन नहीं रखेंगे, या अब क्यों बंद करेगी भारतीय जनता पार्टी? हम उसके फायदे के निडर, शायद 1973 में भगवान राम को उन्होंने गले लगाया और जीत दिया था। इस युग में
9: अगर मान लें ये दरवाजा है बीजेपी का, ये बंद हो गया, तो संजय निषाद के पास क्या ऑप्शन है?
8: ऑप्शन रहेगा कि जो निषाद के मुद्दे के हल करने के लिए बात करेगा, और जो लगेगा कि केंद्र सरकार से संबंधित हमारे मामले हैं केंद्र में।
7: ये भी किसी से छुपा नहीं है कि संजय निषाद पिछले कुछ महीनों से योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं, चाहे वो पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर दी गई धमकी हो या फिर यूपी में विनोद सहनी हत्याकांड को लेकर सियासत और अब संजय निषाद का दरवाजा बंद करने वाला बयान। हालांकि उनके सहयोगी यही कह रहे हैं कि इसके कोई मायने नहीं निकाले जाने चाहिए।
10: बीमार है माता प्रसाद जी, इसमें कैसे क्या दिक्कत है? आपके बात करते हैं बीमारी हालत में तो मानवता है ये, आप बताइए आप बीमार पड़ेंगे तो कोई जाएगा तो इसमें भी राजनीति तलाशेंगे आप।
11: संजय निषाद जी एनडीए के प्रमुख घटक दल है और वो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल है और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का स्वास्थ्य खराब है, विपक्ष के नेता भी हैं विधानसभा में, तो संजय निषाद जी केवल उनका स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए, कुशल क्षेम पूछने के लिए, मिलने के लिए गए हैं वो। और मुझे ऐसा लगता नहीं कि इन सब व्यक्तिगत विषयों में राजनीतिक से हटके भी हम लोग एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान प्रकट करने के लिए और एक दूसरे के इन सब विषयों में भी हम लोग आदर सम्मान के साथ जाते आते रहे, इनमें राजनीति करने का कोई विषय दिखता नहीं मुझे।
12: नहीं कुछ नहीं, इसमें कोई राजनीति नहीं खोजनी चाहिए और इतना डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में इतना व्यवहारिक जगह तो छोड़कर रखनी चाहिए, कोई किसी से मिले, बात व्यवहार करे, हालचाल पूछे।
7: अगर संजय निषाद एनडीए में रहने वाले हैं तो क्या इसे प्रेशर पॉलिटिक्स माना जाए ताकि 2027 के विधानसभा चुनावों में सीटों का मोल भाव हो सके?
13: तो चर्चा संजय निषाद के बयान को लेकर तो है, लेकिन अखिलेश और जयंत चौधरी के बीच जोरदार भिड़ंत शुरू हो गई है। वही जयंत है जिनके लिए अखिलेश कभी पर्सनल गाड़ी भिजवाते थे। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधन टूटा, साथ छूटा, तो आज चवन्नी से रुपया और पोल खोल देने वाली सियासत चल रही है। उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों का तालमेल होगा या नहीं, इस पर बयानों का घमासान छिड़ा है। उधर लोहिया ट्रस्ट की जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव से छीन ली गई है। अब अखिलेश पर चाचा शिवपाल को साइड करने का बीजेपी का आरोप कितना दमदार है, बड़ी उलझी है यूपी की सियासत। देखिए जरा रिपोर्ट।
7: एक तरफ एनडीए में दरार वाली सियासत फूटी है तो दूसरी तरफ पुराने साथियों में दुश्मनी खुलकर सामने आ रही है। जी हाँ, बात अखिलेश यादव और आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी की। पहले अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को लेकर चवन्नी वाला बयान दिया था। अखिलेश यादव ने कहा था, जाने कहां कहां से आ गए ये लोग गठबंधन बनाने, हमने चवन्नी का रुपया बना दिया था तब भी हमें छोड़कर चले गए वो।
14: जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
7: इसके बाद अखिलेश ने जयंत चौधरी पर तंज कसते हुए कहा था कि एनडीए में आरएलडी को 73 सीटें मिलेंगी और राजभर को 39 सीटें। अखिलेश यादव के इस बयान पर जयंत चौधरी इतने भड़के हुए हैं कि उन्होंने सीधे धमकी दे दी है कि अगर मैंने मुंह खोल दिया तो खड़े नहीं हो पाएंगे।
15: वो हमें जब हमारा उनके साथ साझा था, सारी बातें नहीं बताई जाती सामने, ये मेरी गंभीरता है जो मैं वो बातें नहीं कह रहा, अगर वो बातें मैं खोल दूंगा ना तो उनको यहाँ खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश। जिस हल्केपन से वो आज बातें कह रहे हैं कि इतनी सीट मिलनी चाहिए, तभी सम्मान चौधरी चरण सिंह का सम्मान विधानसभा की सीटों से नहीं तय होने वाला, उनका सम्मान सबके दिल में है और रहेगा चाहे वो जो चाहे।
7: जयंत को अखिलेश का चवन्नी वाला बयान ऐसा चुभा है, बात अब पर्सनल हो गई है।
15: वो एसपी नहीं, वो पीसी है, पीसी के अलावा कुछ नहीं कर रहे, सभा नहीं करेंगे, वो वहाँ ट्वीट करेंगे, आंदोलन उन्होंने किया नहीं है, सड़क पे वो आए नहीं, लेकिन विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता।
7: चुनावी मैदान में जयंत चौधरी खुलेआम अखिलेश को ललकार रहे हैं और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर से लेकर बुलंदशहर तक उन्हें रैली की इजाजत नहीं दी गई। दरअसल 2022 में पश्चिमी यूपी के कोर बेल्ट की 111 सीटों में से बीजेपी ने अकेले 75 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की। तब इस गठबंधन में लड़े एसपी को 28 और आरएलडी को 8 सीटें मिली थी, लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो पश्चिमी और उससे सटे रोहिलखंड की कुल 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 13, आरएलडी को 2 सीटें ही मिल पाई, जबकि 11 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट आजाद समाज पार्टी को मिली। पश्चिमी यूपी में टक्कर तगड़ी है, ऐसे में बीजेपी और एनडीए के सहयोगी जयंत चौधरी के लिए पूरी बैटिंग कर रहे हैं।
10: हमारी जो शब्द है, शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके हर व्यक्ति को करना चाहिए, राजनीति में तो और भी व्यक्ति को
16: सोच समझ करके करना चाहिए।
17: सही कह रहे हैं, क्योंकि उनके साथ रहे हैं घरवा में, काका होता कुल जानत हूँ वहाँ। इस नाते जैन जी बोल रहे हैं कि जब हम खोलेंगे तो अखिलेश जी खड़ा नहीं हो पाए, सही कह रहे।
13: तो इस पार्टी में क्या हो रहा है उसका फायदा वो पार्टी उठाएगी, लेकिन बीजेपी सिर्फ यूपी में चुनावी समीकरण के लिए जाति समीकरण पर निर्भर नहीं है, सिर्फ गठबंधन पर निर्भर नहीं है, बल्कि गृहमंत्री अमित शाह के यूसीसी वाले बयान के बाद भी अब यूपी के मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने ऐलान किया है कि यूपी में यूसीसी लागू किया जाएगा। यूपी की राजनीति गरमाई हुई है। अखिलेश यादव ने यूसीसी को लेकर कहा कि जनता समझ रही है बीजेपी जिस यूसीसी की बात कर रही है उसका फुल फॉर्म अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी है। तो अब सूबे की सियासत उबल रही है।
18: मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
0: अमित शाह के इस ऐलान ने ऐसा घमासान मचाया कि देश की सियासत सुलग उठी। गठबंधन वाले राज्यों में तो एनडीए के अंदर यूसीसी को लेकर सियासी शोर उठा ही, लेकिन विपक्षी दलों की असली सियासत यूपी में सुलगी है जहां 2027 में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यूपी में बीजेपी का गठबंधन भी यूसीसी की सिफारिशें कर रहा है, बल्कि दो दो मंत्रियों ने यूसीसी जल्द लागू होने की उम्मीद भी जाहिर कर दी।
19: ये बताइए कि क्या यूसीसी अब उत्तर प्रदेश की जरूरत है? क्या आप लोग उसको लेकर के आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड?
20: नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे 2024 के घोषणा पत्र में, बाकी सरकार को निर्णय करना, माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय करना, लेकिन आज गृहमंत्री जी ने जो बोला है वो कहीं ना कहीं हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है, हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा है।
19: ये उम्मीद की जाए कि 2027 के पहले उत्तर प्रदेश में भी ये लागू होगा, उम्मीद की जा सकती?
20: अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को, पार्टी के एक हाई कमान को इस पर निर्णय लेना है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश में सबको, हमारा संविधान सबको एक बराबर के तहत देखता है, तो उसमें जो बराबरी के तहत जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: हालांकि यूपी में अभी तक सरकारी स्तर पर ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं है, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल कहते हैं कि अब सबसे पहले यूपी में ही यूसीसी पास होगा।
21: उत्तर प्रदेश ये प्रयास करेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मनसा है वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की धरती पर उतरे। सरकार निश्चित तौर पर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उत्तर प्रदेश में हम सबसे पहले लागू करेंगे।
0: यूसीसी पर उत्तर प्रदेश में घमासान तेज हो रहा है। इन सब के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं। माना जा रहा है कि यहाँ यूसीसी पर बात हो सकती है, लेकिन कांग्रेस यूसीसी का पुरजोर विरोध कर रही है। कह रही है कि यूसीसी के नाम पर देश को गुमराह किया जा रहा है।
22: देश का कोई भी गृह मंत्री इस भारत जैसे देश में यूसीसी लागू नहीं कर सकता, ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ।
0: 27 में यूपी में चुनाव है और चुनाव से पहले यूसीसी का मुद्दा बड़ा हो रहा है। जाहिर है कि बीतते दिन के साथ ये मुद्दा और धारदार होगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।
13: भारतीय वायुसेना 14 सितंबर से 16 सितंबर तक 3 दिन राजस्थान के पोखरण रेंज में ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। इस आयोजन का नाम ड्रोनथॉन 2026 दिया गया है। आधुनिक युद्ध के दौर में कम लागत में सटीक हमले और पल पल की जासूसी करने की क्षमता के कारण ड्रोन सबसे अहम हथियार बन चुके हैं, यानी कम लागत और ज्यादा असर। और ऐसे में भारतीय वायुसेना स्वदेशी वायु उत्तम की ताकत दुश्मन को दिखा रही है।
7: ड्रोनाथन 2026 भारतीय वायुसेना का दमदार प्रदर्शन। जब पोखरण में उड़े भारतीय ड्रोन दुश्मन के उड़ा दिए होश। भारत ने दिखाई ड्रोन शक्ति, पाकिस्तान की सांस अटकी। भारत के पास एडवांस ड्रोन सिस्टम, देख ले दुश्मन ध्यान से। ड्रोनाथन 2026 में 20 से ज्यादा डिफेंस कंपनियों ने लिया हिस्सा। जंग के इस दौर में युद्ध का पैटर्न बदल रहा है। दुनिया रिमोट वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रही है, जी हाँ, जिसे ड्रोन युद्ध भी कहते हैं। और अब इस क्षेत्र में भारतीय वायुसेना भी अपने दमखम का प्रदर्शन कर रही है। जब ऑपरेशन से दूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लड़ने का एक खतरनाक और सस्ता युद्ध मॉडल अपनाया, जी हाँ, ऑपरेशन से दूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से 800 से ज्यादा ड्रोन भेजे गए। और भारतीय सेना ने 240 ड्रोन मार भी गिराए। ये नया भारत है जो दुश्मनों को घर पे घुस कर मारता है। भारतीय सेनाएं आतंकवाद को करारा जवाब दे रही हैं। जी हाँ, आज तक की सुरक्षा सभा में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बता चुके हैं कि हिंदुस्तान अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए स्वदेशी तकनीक और आधुनिक हथियारों का निर्माण करने वाला सशक्त राष्ट्र बन चुका है।
2: हमने अपनी सेनाओं से कहा है कृते प्रति कृतिम, यानी जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करो, इसकी हमने पूरी छूट दे रखी है। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में साथियों, हमने सेनाओं को पर्याप्त रिसोर्सेज भी दिए हैं और हमारी सेनाओं को जब स्वतंत्रता और संसाधन मिले तो उन्होंने किसी बात की चिंता किए बिना दुश्मन को उसके घर में घुस कर मारा।
7: लेकिन अब पाकिस्तान भारत की नई ड्रोन शक्ति को देखकर न सिर्फ कांप उठेगा बल्कि उसने कोई हिमाकत की तो उसका बड़ा खामियाजा भी भुगतेगा। पाकिस्तान ने ऑपरेशन से दूर में ब्रह्मोस मिसाइल का दम देखा और शहबाज शरीफ के सपनों में ब्रह्मोस का डर आज भी सामने आता है। खुद शहबाज शरीफ कबूल कर चुके हैं 10 मई 2025 को कैसे सुबह करीब 4:30 बजे भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान को दहला कर रख दिया।
3: वी ऑन 9th एंड 10th नाइट we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers Pakistan armed forces led very ably by our field marshal chief army staff sitting here Sayyid Asim Munir to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places.
7: लेकिन अब ब्रह्मोस की नौबत भी नहीं आएगी और पाकिस्तान भारत की नई ड्रोन शक्ति से दहल उठेगा। अब राजस्थान के पोखरण रेंज में उड़ान भरते इन हाईटेक ड्रोन को देखिए। जी हां, भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के पोखरण रेंज में आयोजित ड्रोनाथन 2026 में वायु उत्तम का प्रदर्शन किया। ड्रोन टेक्नोलॉजी अब सिर्फ निगरानी या सामान्य उड़ान तक सीमित नहीं रह गई है, रक्षा क्षेत्र में इसका यूज तेजी से बदल रहा है और अब ऐसे अनमैन्ड सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं जो मुश्किल हालात में निगरानी, ऑटोनॉमस ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और दूसरे जरूरी मिशन संभाल सके। इसी दिशा में भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ड्रोन और अनमैन्ड सिस्टम की क्षमताओं को परखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। भारतीय वायुसेना ने जैसलमेर स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पहले ड्रोनाथन 2026 की शुरुआत की। 3 दिन चलने वाला ये कार्यक्रम 14 से 16 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। ड्रोनाथन 2026 में भारत के तेजी से विकसित हो रहे अनमैन्ड सिस्टम इकोसिस्टम से जुड़ी 20 से ज्यादा डिफेंस कंपनियां, स्टार्टअप, एमएसएमईज, डीपीएसयूज और इनोवेटर्स हिस्सा ले रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय उद्योग के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना है जिससे बदलती ऑपरेशनल जरूरतों के अनुसार स्वदेशी अनमैन्ड क्षमताओं को विकसित किया जा सके और उन्हें वायुसेना में शामिल करने की दिशा में काम आगे बढ़े। इसमें हिस्सा लेने वाली कंपनियां और इनोवेटर्स पोखरण रेंज में अपने अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स यानी UAS और उनसे जुड़ी तकनीकों का प्रदर्शन कर रही हैं। रिमोट वॉरफेयर में अब भारतीय वायुसेना अपनी ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। उससे पहले आज तक के सुरक्षा सभा कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल NS राजा सुब्रमणि ने बताया कि कैसे युद्ध जीतने के लिए मल्टी डोमेन स्ट्रेटेजी जरूरी है और CDS ने वॉर फ्रंट की चुनौतियां भी गिनाई।
4: युद्ध अब केवल एक घटना ही नहीं रहा है बल्कि यह एक कंटिन्यूम बनकर रह चुका है। शांति और युद्ध के बीच की रेखा और कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के बीच का जो गैप है
1: वो लगातार धुंधला होता जा रहा है। आज कंपटीशन कई स्वरूप में सामने आ रहा है, चाहे इकोनॉमिक प्रेशर हो, टेक्नोलॉजिकल डिनायल हो, साइबर एक्टिविटी हो, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस हो, मैरिटाइम कोअर्शन, प्रॉक्सी ऑपरेशंस या पब्लिक परसेप्शन को प्रभावित करना हो, यह सभी कंपटीशन के हिस्सा हैं। और यह सब बिना कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट की सीमा को पार किए भी हो सकता है। यह आज ग्रे जोन की सबसे बड़ी चुनौती है। साथ ही टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन भी इस पूरे इक्वेशन को बदल रहा है। पहले हम सोचते थे कि टेक्नोलॉजी सिर्फ स्टेट एक्टर्स का प्रोविंस है, लेकिन आज चीपर टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन्स वगैरह हर एक नॉन स्टेट एक्टर के पास भी हैं और यह कॉन्फ्लिक्ट को डेमोक्रेटाइज कर रहा है।
5: ड्रोनाथन 2026 के जरिए भारतीय सेना अपनी ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन कर रही है, तो भारतीय सेना को ड्रोन शक्ति ईगल प्रहार की ताकत पहले ही मिल चुकी है। ये वो सिस्टम है जिससे युद्ध के मैदान में ड्रोन को पीछे लाने के बजाय मौके पर ही रिपेयर किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेकर भारतीय सेना अब तेजी से ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम को अपनाती जा रही है। गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय सेना ड्रोन शक्ति ईगल प्रहार का प्रदर्शन कर चुकी है।
6: ये 8x8 टाटरा को मॉडिफाइड करके बनाया गया है, तो इससे इसकी जो मोबिलिटी है, ये जो हमारे मेटनाइज फोर्सेस है, जो टैंक्स और आर्मर फॉर्मेशन चलते हैं ऑपरेशनल एरिया में, उनके साथ ये मैच होता है उनकी मोबिलिटी। तो पहले क्या होता था कि किसी भी डैमेज ड्रोन को पीछे भेजा जाता था वर्कशॉप में रिपेयर के लिए, तो काफ़ी दिन तक वो डैमेज ड्रोन ऑपरेशन से बाहर रहता था। लेकिन इस व्हीकल के डेवलपमेंट के बाद जितने भी ड्रोन्स हैं ये ऑपरेशनल एरिया में रिपेयर हो सकते हैं।
5: यानी नया भारत रक्षा के हर क्षेत्र में न सिर्फ तकनीकी दमखम रखता है बल्कि दुश्मन को परास्त करने का पूरा सिस्टम डेवलप कर चुका है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
13: बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर।

2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर लगेगा चार्ज। रेलवे, टेलीकॉम, ईंधन जैसे चुनिंदा श्रेणियों पर ₹5 की शुल्क। 15 अक्टूबर से नया नियम लागू। राहुल गांधी ने उठाए सवाल। यूसीसी को अखिलेश यादव ने बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। बीजेपी पर साधा निशाना, बोले 15 लाख खाते में पहुंचाओ फिर यूसीसी लाओ। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और होगी मजबूत। योगी कैबिनेट ने मिल्कीपुर में एनएसजी रीजनल हब के लिए 65 एकड़ जमीन को दी मंजूरी। स्नाइपर किए जाएंगे तैनात। आज तक की खबर का बड़ा असर, गुरुग्राम हिट एंड रन केस में मुख्य आरोपी के बाद एक और गिरफ्तारी। लेडी बाइकर के बयान पर दर्ज हुआ हत्या की कोशिश का केस। और भारत ने पाकिस्तान से जीती T20 सीरीज। 7 विकेट से दूसरे मैच में जीत हासिल। 160 रनों का लक्ष्य, 31 बॉल रहते किया हासिल।

0: भारत के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सबसे बड़ी कामयाबी क्या है दुनिया में? जवाब मिलेगा यूपीआई। यूपीआई के नए नियम को लेकर के सरकार कह रही है कि जनता को कोई फीस नहीं देनी होगी। वो सवाल ये उठ रहा है कि अगर कोई फीस नहीं देनी होगी तो नए नियम की जरूरत क्या थी? यूपीआई तो पहले भी फ्री था। विपक्ष भी सरकार की दलील को मानने को तैयार नहीं है, उसकी तरफ से लगातार सवाल ये उठ रहा है। जनता भी डरी है कि आप तो कह रहे हैं कि दुकानदार पर बोझ पड़ेगा, जनता पर बोझ पड़ेगा नहीं, लेकिन ये बताइए आज की तारीख में कौन दुकानदार खर्च अपने ऊपर झेलेगा? आखिरकार होता क्या है, दुकानदार पर अतिरिक्त भार पड़ता है तो खर्चा हमारी और आपकी जेब पर डालता है। देखिए ये रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय की तरफ से यूपीआई पेमेंट को लेकर आम आदमी को खबरदार किया गया है कि 2,000 रुपए तक के यूपीआई पेमेंट पर बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फीस नहीं लगा सकते। रुपए डेबिट कार्ड से होने वाले पेमेंट को भी इस दायरे में रखा गया है। सीधी बात ये कि आम आदमी के लिए कुछ नहीं बदलेगा। इसीलिए जब कांग्रेस की तरफ से इसे आम आदमी से वसूली बताई गई, तो बीजेपी की तरफ से इसे कांग्रेस का दुष्प्रचार बताकर खारिज कर दिया जाता है। यूपीआई पर बीजेपी बनाम कांग्रेस की सियासी जंग में अब आप इस खबर के गजट नोटिफिकेशन को देखिए, जिसमें सरकार ने 2007 के कानून की धारा 51 के 10(a) का जिक्र करते हुए कहा है कि 2,000 रुपए के यूपीआई पेमेंट और रुपए डेबिट कार्ड पर कोई फीस नहीं लगेगी। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि 2,000 से ऊपर के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर कोई फीस वसूली नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी विपक्ष को भरोसा नहीं हो रहा। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, अब 2,000 से ऊपर के मर्चेंट यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लगाया जा सकता है। इस ट्रांजेक्शन की संख्या भले ही सिर्फ 5% हो, लेकिन यूपीआई के कुल ट्रांजेक्शन वैल्यू का करीब 65% इन्हीं में है।
2: क्या आप मुझे बताइए, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मजबूत कदम लगेगा आपको? ये कदम जो हमारे इंडिजिनस, हमारे होम ग्रोन डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है, उसको तबाह करने की दिशा में एक कदम है। क्योंकि अमेरिका को हमारा एमडीआर रेजिम नहीं पसंद आ रहा था, अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा था, और हो सकता है हम अमेरिका के सामने कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं ये करके कि साहब हमने ब्रिक्स का समिट यहाँ ऑर्गेनाइज के लिए, हमें माफ कर दो, लो हम आपके लिए कर देते हैं। ये वही है, उसके अलावा कुछ नहीं।
3: कांग्रेस पार्टी एक नाराज फूफा पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो ये कह रही थी कि इस देश का आम आदमी कभी डिजिटल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आज वही कांग्रेस पार्टी आम आदमी की बात उठाने का ढोंग कर रही है। सच्चाई की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात की मिर्ची लगी है कि हर व्यक्ति आज यूपीआई का इस्तेमाल ग्लोबली और देश के अंदर हर भारतीय कर रहा है। कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही है, किसी भी व्यक्ति को, कॉमन मैन को कोई भी 2,000 रुपए तक कोई चार्ज नहीं देना होगा, किसी कस्टमर को नहीं देना होगा। 90% से ज्यादा ट्रांजैक्शंस यूपीआई के लेस देन 2,000 रुपीज में होते हैं।
1: दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट होता है। दूध, सब्जी, दवा खरीदना हो या ऑटो रेस्टोरेंट में भुगतान करना हो या फिर किसी को एक क्लिक में पैसे भेजना, यूपीआई भारत के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, जिसमें बड़े दुकानदारों से लेकर रेहड़ी पटरी वाले भी शामिल हैं। इसीलिए सरकार की तरफ से समझाया जा रहा है कि 96% यूपीआई मर्चेंट ट्रांजेक्शन 2,000 या उससे कम के होते हैं जो मुफ्त है। रुपए डेबिट कार्ड पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब आम लोगों के बीच यूपीआई फ्री था, है और रहेगा। इसके बावजूद कांग्रेस फेक न्यूज फैला रही है।
4: अध्ययन करने के बाद ट्विस्ट कैसे किया जाता है मैटर को, इसी में निपुणता हासिल हो चुकी है कांग्रेस पार्टी को। मैन टू मैन ट्रांसफर निशुल्क, मर्चेंडाइज बेस्ड है, मर्चेंट द्वारा है। ये चीज को जो बीच का थिन लाइन है, इसका ट्विस्ट करके ये लोग पेश कर रहे हैं।
1: एनपीसीआई के मुताबिक अगस्त में किसी दुकान पर किया गया औसत यूपीआई पेमेंट 577 रुपए था। ये किराने की दुकान पर 2 या 3 बार की खरीदारी के बराबर है। उस महीने भारत में ऐसे 15.56 अरब पेमेंट किए गए। 577 रुपए की रकम 2,000 रुपए के आसपास भी नहीं, इसे 3 गुना से ज्यादा बढ़ना होगा। ये रकम घट भी रही है। अगस्त में दुकानों पर जुलाई के मुकाबले 3.6% ज्यादा पेमेंट हुए, लेकिन कुल रकम 1.2% कम रही, इसलिए औसत पेमेंट 606 से घटकर 577 हो गया। जिस महीने सरकार ने ये सीमा तय की, उसी महीने औसत पेमेंट उस सीमा से और नीचे चला गया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। भले ही चाय, कॉफी और छोटे पेमेंट पर आम आदमी को कोई चार्ज ना देना हो, लेकिन जनता की चिंता इसके बावजूद बरकरार है।
5: जो बड़े स्टोर हैं, जैसे जो ब्रांडेड स्टोर है, जो एमआरपी पे माल बिकता है, उनको तो फर्क नहीं पड़ता, वो अफोर्ड कर सकते हैं। पर जहां कंपटीशन ज्यादा, जो छोटे स्टोर हैं, छोटे व्यापारी हैं, जो हॉकर हैं, हॉकर वगैरह हैं, जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, जहां पे मार्जिन प्रॉफिट बहुत लिमिटेड होता है, तो वो पहले पूछेगा जी आप कैश दे रहे हो या यूपीआई पे दे रहे हो, क्योंकि पहले तो पूछना नहीं था, क्योंकि उसको पूरा अमाउंट मिल जाता। अब वो पूछेगा कि आप कैश दे रहे हो यूपीआई पे दे रहे हो, उस हिसाब से डिस्काउंट दे रहे हो। सकता है पहले 10% देता हो, फिर यूपीआई पे कहेगा कि जी नहीं तो मैं तो सिर्फ 8% दूंगा या 9% दूंगा या 6%, तो उस करके फर्क करके अल्टीमेटली कस्टमर को ही बेयर करना पड़ेगा ये जो एडिशन लेकर आ रहे हैं।
1: तो सवाल ये है कि भले ही जनता को 2000 रुपए तक के यूपीआई पेमेंट पर कुछ भी नहीं देना होगा, लेकिन जिन दुकानदारों को देना होगा क्या वो किसी दूसरी तरह जनता से नहीं वसूलेंगे? क्या वो कैश को बढ़ावा नहीं देंगे? क्योंकि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर जनता से 1.5 से 2.5% तक चार्ज लिया जाता है। ये कार्ड नेटवर्क, मर्चेंट कैटेगरी और वॉल्यूम पर निर्भर होता है। इसकी वजह ये है कि आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड पर एमडीआर कैप या ग्राहक पर सरचार्ज रोकने का कोई स्पष्ट नियम नहीं दिया है, इसलिए उससे ये वसूला जाता है। लेकिन सरकार का कहना है कि यूपीआई के साथ ऐसा नहीं होगा, फिर भी जनता की चिंता बरकरार है।
6: अरे बाहर जो है ये परचेजर पे पड़ेगा, और सबसे ज्यादा पड़ेगा मिडिल क्लास पे, क्योंकि मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा परचेजिंग करती है। आप हम जितनी परचेजिंग करते हैं वो सरकार को ज्यादा उसका रेवेन्यू जाता है। अपर क्लास आप सोच सकते हो क्या देती है, सबको पता है कि उनके एंड में जो बैलेंस शीट है वो क्विट्स होती है, जीरो आती है, क्यों कहीं ना कहीं सीएसआर दिखा देते हैं, कभी कुछ दिखा देते हैं। जो मिडिल क्लास पे ये जितना भी बाहर है आपका, तो आप सोच लो कितना पड़ेगा। ये जूता देखने जाओगे तो जूता ही आपको कोई 5-10 हजार रुपए से कम का नहीं समझ में आएगा। अब जो भी है वो आप ये सोचेंगे जो भी चीज आप खरीदोगे 2000 के ऊपर उस पर कंज्यूमर को ही पड़ना है। एंड रिजल्ट एमआरपी पे है तो दुकानदार बेयर कर लेगा, बट अगर एमआरपी से नीचे जो कंपटीशन में है प्रोडक्ट, उसके अंदर आपको कंज्यूमर ही देता है। आज भी जैसे पहले हम जाते थे तो कहते थे लोग कि आप क्रेडिट कार्ड से देंगे या आप कैश देंगे, अब यही होगा कि आप यूपीआई से दे रहे हैं या कैश से दे रहे हैं।
7: जहां ब्रांडेड स्टोर्स हैं, एमआरपी पे सेल हो रही है, एमआरपी के आसपास सेल हो रही है, वहां तो वो बेयर कर लेगा। जैसे क्रेडिट कार्ड का 1.25% कट के पेमेंट आती है, शोरूम्स कर लेते हैं। जहां छोटी शॉपकीपर्स हैं, अब उसका 8000 रुपए का बिल है, वो उस पर 0.4% बेयर तो करने वाला है नहीं, वो अपना प्राइस टैग बढ़ा देगा, वो कंज्यूमर देगा, और बीच में वो लेके जाएगी फिनटेक कंपनी या गवर्नमेंट।
0: आज से करीब 6 साल 3 महीने पहले मुंबई में एक लड़की की मौत हुई, नाम था दिशा सालियान। वो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी। दिशा की मौत के कुछ दिन बाद ही सुशांत की भी मौत की खबर आई, तो दोनों ही मौत को एक साथ जोड़कर देखा गया। हल्ला हुआ, हंगामा मचा, और 6 साल के बाद अब सीबीआई ने दिशा सालियान की मौत पर एक FIR दर्ज की है।

0: 2288 दिनों के बाद दिशा सालियान का केस फिर से खुल गया। क्या सीबीआई दिशा सालियान की डेथ मिस्ट्री को सुलझा पाएगी? दिशा सालियान की मौत आत्महत्या थी या हत्या? दिशा सालियान की मौत की एफआईआर में आदित्य ठाकरे, डीनू मोरिया, रिया चक्रवर्ती, सूरज पंचोली जैसे हाई प्रोफाइल लोगों का नाम क्यों आया? पूरे के पूरे 6 साल 3 महीने और 5 दिनों के बाद एक बार फिर से दिशा सालियान की डेथ मिस्ट्री को लेकर हंगामा मचा है। महाराष्ट्र की राजनीति तो गर्म है ही, लेकिन एक सवाल अभी भी है कि क्या सीबीआई दिशा सालियान की मौत का केस सुलझा पाएगी? सीबीआई ने सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर ली है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये कोई नामजद एफआईआर दर्ज नहीं की गई, बल्कि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान के बयान को आधार बनाकर ही ये एफआईआर दर्ज हुई है। दिशा के पिता के बयान में जिन भी हाई प्रोफाइल लोगों के नाम आए हैं वो इसमें दर्ज है, लेकिन एफआईआर उनके खिलाफ नहीं है। सीबीआई को जांच करनी है कि दिशा की मौत में इन लोगों का क्या इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन एफआईआर को पढ़ने के बाद ये स्पष्ट होता है कि दिशा का परिवार किस तरह की जांच की मांग कर रहा है। पहले पन्ने पर ही लिखा है कि किस तरह के अपराध की आशंका है। इसमें लिखा है आपराधिक साजिश, गैंगरेप, मर्डर, सबूत गायब करना या गलत जानकारी देना। अपराध की तारीख है 8-9 जून 2020 की मध्यरात्रि, और फिर वो पता लिखा है जहां अपराध घटित हुआ, फ्लैट नंबर 12-2 रीजेंट गैलेक्सी अपार्टमेंट, मालवाणी, मलाड वेस्ट, मुंबई। दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी। एफआईआर में भी इस बात का जिक्र है। अब सवाल है कि पूरा घटनाक्रम क्या रहा? दिशा के पिता के पास ऐसे कौन से सबूत हैं जिनके आधार पर वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि उनकी बेटी का गैंगरेप और मर्डर हुआ, और आरोपी के तौर पर वो इतने बड़े बड़े लोगों का नाम किस आधार पर और क्यों लगा रहे हैं? अब सीबीआई में दर्ज एफआईआर के हिसाब से पूरा घटनाक्रम समझिए। सीबीआई में दर्ज दिशा के पिता के बयान के हिसाब से 4 जून 2020 को दिशा सालियान अपने घर से अपने मंगेतर के घर निकली। ये कहा कि उसे कोई विज्ञापन का शूट करना है। पिता के मुताबिक दिशा ने उन्हें 3 लाख रुपए के चेक की फोटो भी दिखाई और कहा कि वो 2 दिन में घर वापस आएगी। इसके बाद वो अपने मंगेतर रोहन रॉय के घर फ्लैट नंबर 1202 रीजेंट गैलेक्सी अपार्टमेंट, मालवाणी, मलाड वेस्ट, मुंबई के लिए निकल गई। ये वही एड्रेस है जहां घटना हुई। आगे दिशा के पिता ने एफआईआर में लिखवाया है 6 जून को दिशा ने अपनी माँ को फोन करके बताया कि कोविड की वजह से उसका और उसके एक और दोस्त इंद्रनील का जन्मदिन नहीं मना पाए, इसलिए दोस्तों ने उनका जन्मदिन मनाने का प्लान बनाया है। अगले 2 दिन में वो घर आ जाएगी। इस दौरान वो लगातार अपने माता पिता के संपर्क में थी, लेकिन 7 जून 2020 को दिशा के फोन आने बंद हो गए। जब इन्होंने उसके फोन पर कॉल किया तो फोन रोहन रॉय ने उठाया, जिसने बताया कि दिशा काम में व्यस्त है। इसके बाद 9 जून 2020 को सुबह करीब 3:15 बजे दिशा के पिता को मालवाणी थाने से फोन आया और उन्हें थाने बुलाया गया। उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी ने कोई पार्टी अटेंड की थी और वहां कुछ घटना हो गई। दिशा के पिता अपनी पत्नी के साथ सुबह 4:30 बजे शताब्दी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां दिशा एडमिट थी। वहां उन्होंने दिशा के मंगेतर रोहन रॉय को देखा। दिशा के दूसरे दोस्त इंद्रनील वैद्य, दीप अजमेरा और हिमांशु शिखारे भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि दिशा की मौत हो गई। पूरी एफआईआर 10 पन्नों की है। एफआईआर के 4th पन्ने पर इसके आगे का घटनाक्रम लिखा है, और यही वो घटनाक्रम है जिसके बाद दिशा के पिता को सुसाइड की थ्योरी पर शक हुआ। दिशा के पिता सतीश सालियान के मुताबिक दिशा के दोस्तों और पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि दिशा ने सुसाइड कर लिया। इसके बाद दिशा के पिता ने अपनी बेटी की बॉडी देखने की मांग की, जिसे नहीं दिखाया गया। वो लगातार कहते रहे, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी नहीं सुनी। जब उन्होंने ज्यादा जिद की तो 11 जून को सुबह करीब 11 बजे उन्हें उनकी बेटी के शव के कुछ फोटोग्राफ दिखाए गए। फोटो देखने पर दिशा के पिता सतीश सालियान ने उसकी बॉडी पर कोई खून या ज्यादा चोटें नहीं देखी। उन्होंने दिशा के जबड़े पर गाल के नीचे एक नाखून जैसा निशान देखा, और फिर 11 जून को दिशा का शव परिवार को अंतिम संस्कार के लिए दिया गया। दिशा के पिता के मुताबिक शरीर पर खून नहीं था, कोई बहुत ज्यादा चोटें भी नहीं थी, तो उन्हें सुसाइड की थ्योरी पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो उस वक्त शॉक थे और मानसिक आघात में थे।
1: और ये एफआईआर सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इसलिए दर्ज की गई है क्योंकि जो कंप्लेनेंट हैं सतीश सालियन, दिशा सालियन के पिता, उन्हें ऐसा लगता है या उन्हें उनकी ये कंप्लेंट है कि उनकी बेटी की मृत्यु बिल्डिंग से गिरने से या सुसाइड की वजह से नहीं हुई है, पर यह एक हत्या है और उन्हें ऐसा लगता है, सतीश सालियन को ऐसा लगता है कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप भी हुआ और उसके बाद तब जो पुलिस ने जांच की थी, तब जो पुलिस स्टेशन इंचार्ज थे या पुलिस कमिश्नर थे या जो अन्य पुलिस अफसर वहां पे मौजूद थे, सरकार में जो लोग थे, उन्होंने इस पूरे केस को कवर अप किया था। दिशा सालियन ये पूर्व लेट अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी और सुशांत सिंह राजपूत के कुछ ही दिन मृत्यु के कुछ ही दिन पहले ही दिशा सालियन की मृत्यु हुई। 12वें मंजिल से गिरकर उनकी मृत्यु हुई थी मलाड़ के एक बिल्डिंग में। रोहन राय उनके बॉयफ्रेंड के साथ वो उस बिल्डिंग में रह रही थी। उस शाम उनके घर पर पार्टी चल रही थी और उस पार्टी के दौरान कुछ बातचीत में विवाद हुआ, फिर दिशा सालियन अपने कमरे में चली गई, उन्होंने कमरा बंद कर लिया और उसके बाद कुछ घंटे बाद ये पता चला कि दिशा सालियन खिड़की से गिर कर या उन्होंने कूद कर जान दे दी है।
0: दिशा के पिता को रोहन रॉय और कुछ पुलिस अफसरों ने बताया कि दिशा ने बहुत ज्यादा शराब पी थी, वो नशे में थी तो गलती से वो बिल्डिंग से गिर गई। इसके बाद पुलिस ने बहुत से दस्तावेजों पर दिशा के पिता के दस्तखत करवाए। उन कागजों में क्या लिखा था ये तक नहीं बताया गया, यहाँ तक कि पुलिस ने उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मौत के कारण का सर्टिफिकेट भी नहीं दिया।
2: मैं इम्पोर्टेंट जो दोषी है, जो आदित्य ठाकरे, दिनु मौर्या, सुरेश पंचोली, उसका सब इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करने ऐसा कंप्लेंट दिया है मैंने, वो कल आपको मालूम पड़ेगा।
3: ये कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है, आप सीबीआई के अधिकारी तक पहुंचे, आपने बयान भी दर्ज किया, दिशा को लेकर के आपको लगता है कि जो लड़ाई आप लड़ रहे थे वो शुरू हो गई सही दिशा में, क्या कुछ
2: दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुल गया दिशा का?
0: यानी अगर दिशा के पिता के माने तो उनकी हत्या हुई, लेकिन सवाल है कि क्यों, आखिर उनकी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ? इस बारे में दिशा के पिता ने अपने बयान में तफसील से बताया है। उनके मुताबिक उनकी बेटी दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त भी थी और उनके मैनेजर के तौर पर काम करती थी। इसी काम के दौरान दिशा को कथित ड्रग तस्करी, बच्चों के शोषण और बाकी आपराधिक गतिविधियों की जानकारी मिली, जिसमें आदित्य ठाकरे और बाकी लोग शामिल थे। दिशा ने ये जानकारियां सुशांत सिंह राजपूत के साथ साझा की और वो दोनों इन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सार्वजनिक करना चाहते थे। उस वक्त आदित्य ठाकरे अपने पिता उद्धव ठाकरे की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। ये कहा गया कि इन तमाम जानकारियों को सुरक्षित करने और इसमें शामिल लोगों को बचाने के लिए एक आपराधिक साजिश रची गई और उसी साजिश के तहत पहले दिशा का गैंगरेप हुआ, फिर उसकी हत्या की गई और उसके बाद सबूतों को नष्ट किया गया या उन्हें छुपाया गया और सुसाइड की फर्जी कहानी गढ़ी गई ताकि आरोपियों के अपराध से पर्दा न हट सके। आगे ये भी लिखा है कि जब सुशांत ने दिशा द्वारा बताई गई जानकारियां रिया चक्रवर्ती को बताई तो रिया आदित्य ठाकरे और डीनू मौर्या के संपर्क में थी और मेरी जानकारी के मुताबिक रिया ने वो जानकारियां उन्हें बता दी कि दिशा और सुशांत उन्हें एक्सपोज करने का प्लान बना रहे हैं।
4: दिशा के पास में इन क्रिमिनल्स के वो चाइल्ड अब्यूजर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ड्रग्स ट्रैफिकिंग और जो भी गलत गलत काम है इनके, उसके एविडेंस थे, उसने सुशांत सिंह राजपूत को दिए। सुशांत ने ये शेयर किया रिया चक्रवर्ती से। रिया चक्रवर्ती, उनको सुशांत को पता नहीं था रिया चक्रवर्ती पार्टनर इन क्राइम विद आदित्य ठाकरे, डीनो मौर्या, ये गैंग के साथ है। उसने उधर शेयर किए, उन्होंने मर्डर का प्लान बनाया, मर्डर के लिए खास सचिन वाजे को कवर अप के लिए मर्डर के लिए लाया गया। इसमें ये सभी लोग शामिल है और इन लोगों ने बाद में उसका मर्डर, पहले गैंगरेप फिर मर्डर और फिर कवर अप किया, और ये पहला कवर अप हुआ, बाद में एसआईटी ने दूसरा कवर अप किया। तो इसमें जो भी इन्वॉल्व है सब पर एक्शन हो।
0: 6 साल पहले जब दिशा सालियान की मौत हुई थी तो वो तब इतनी बड़ी हेडलाइन नहीं बनी, लेकिन जब कुछ दिन के बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई तो उसके बाद ही दिशा सालियान के केस पर भी बात शुरू हुई और तब भी बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही थी। सुशांत की मौत का दिशा की मौत से क्या कनेक्शन था, ये भी दिशा के पिता के बयान पर दर्ज इस एफआईआर में लिखा है। दिशा के पिता सतीश सालियान के सीबीआई को दिए बयान के मुताबिक जिस दिन दिशा मारी गई, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ दिया और उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। जैसे ही सुशांत को दिशा की मौत के बारे में पता चला वो बहुत ज्यादा डर गए अपनी जिंदगी पर मंडराते खतरे को देखते हुए सुशांत ने अपने स्टाफ को डिजिटल एविडेंस मिटाने को कहा, जिसमें मोबाइल फोन और बाकी डिवाइस का डेटा शामिल था। सीसीटीवी फुटेज और बाकी डिजिटल मटेरियल को डिलीट करने के लिए एक साइबर एक्सपर्ट बुलाया गया।
4: सुशांत का केस और ये केस आपको याद होगा, जो पहले से सब एसएसआर वारियर और जो एक्टिविस्ट रिपोर्टर कहते आए हैं, दिशा का केस खुलेगा तभी सुशांत का केस सॉल्व होगा। सुशांत केस के लिए दिशा की केस ही सही दिशा है, बस वही है।
0: दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।
5: रुक रहे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

गणेश की मूर्ति से वास्तु दोष कैसे दूर होगा? भगवान गणेश की कौन सी मूर्ति बच्चों के कमरे में लगानी चाहिए? भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र मुख्य द्वार पर कैसे लगाना चाहिए? कैसे लगाएं भगवान गणेश की प्रतिमा कि वास्तु दोष दूर हो जाए? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: आज तक के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे बड़ी सभा।
2: आज का बैटलफील्ड 4000 किलोमीटर तक जा रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है।
3: इमीडिएट बालापुर मान जाइए, अब वो जब भी नहीं माने तो फिर सिंदूर की हमारे को नौबत आ गई।
4: अंडमान निकोबार आइलैंड तो जरूर हमको उसका एडवांटेज लेना ही चाहिए।
5: जो बाउंड्री प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में, इसका अभी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता।
6: कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा, भारत की सेनाएं उसका जवाब देंगी।
1: आज तक देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ी आवाज।
7: ये देखिए, ये सीएम केपी को अगवा कर लिया गया।
8: खैबर के सीएम को किसने किया अगवा? हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के पीछे किसकी साजिश? इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर मचा बवाल। मुनीर और शहबाज शरीफ के जुल्म पर उठे सवाल। लाहौर की सड़कों पर हो रहा ये ड्रामा पाकिस्तान की बेशक एक नई सियासी तस्वीर हो, लेकिन नीति और नियत तो वही पुरानी है। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि पिछले 24 घंटों में लाहौर में ऐसा क्या बवाल हो गया जिससे एक राज्य के मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में इसे लेकर बवाल हो गया है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 27 सितंबर को इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। पीटीआई ने 3 साल से जेल में बंद इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर इस्लामाबाद मार्च बुलाया है और राजधानी में बड़ी तादाद में लोगों को जुटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इसे देखते हुए इस्लामाबाद और पंजाब में सुरक्षा इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है और हर दूसरे दिन पीटीआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में लाहौर में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी पहुंचे थे। देर शाम रोड शो के दौरान अफरीदी को लाहौर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरोप है कि पुलिस कई घंटों तक उन्हें गाड़ी में बैठाकर सड़कों पर घुमाती रही। गाड़ी के अंदर से ही बनाए गए वीडियो में आरोप लगाया जा रहा है कि पंजाब में खैबर के सीएम को अगवा कर लिया गया है।
7: एक सीएम केपी को अगवा कर लिया गया। ये देखिए, सीएम केपी को अगवा कर लिया गया पंजाब, मरियम नवाज ने, शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने। ये देखिए, ये सीएम केपी को अगवा कर लिया गया। इनको शर्म नहीं आ रहा है, शर्म को अगवा कर लिया। ये देखिए, ये देखिए, पंजाब पुलिस ने सीएम को अगवा
8: सीएम के साथ बैठा शख्स पुलिस की गाड़ी के पीछे आ रहे बाइक सवारों को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि सीएम को अगवा कर लिया गया है। आरोप ये भी लगाया गया कि बाद में ऊपर से दबाव बढ़ा तो पुलिस ने सोहेल अफरीदी को सड़क किनारे उतार दिया। घंटों तक लाहौर की सड़कों पर ये सियासी ड्रामा चलता रहा। पीटीआई के कार्यकर्ता इकट्ठा होते रहे और मरियम सरकार को कोसते रहे। पीटीआई लगातार ये आरोप लगा रही है कि पंजाब की मरियम नवाज सरकार अपने पिता नवाज शरीफ और चाचा शहबाज शरीफ की तरह बदले की भावना से काम कर रही है, इसीलिए उनकी पुलिस ने एक सीएम को अगवा कर 3 किलोमीटर तक गाड़ी में घुमाया और लक्ष्मी चौक के पास सड़क पर उतार दिया। अभी कुछ दिन पहले ही मरियम नवाज ने आरोप लगाया था कि पंजाब को पड़ोसी देशों से नहीं अपने पड़ोसी राज्यों से खतरा है, जिनमें खैबर का भी नाम लिया गया था। खैबर और पंजाब के बीच ये सियासी जंग अभी और तेज होने वाली है क्योंकि अगले 10 दिन तक इमरान खान की पार्टी हजारों लोगों को पंजाब में जुटाकर इस्लामाबाद मार्च की तैयारी करेगी और इन हालात में पंजाब पुलिस का हर एक्शन पाकिस्तान में सियासी रिएक्शन का काम करेगा। आज तक ब्यूरो,

2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर चार्ज के फैसले का आरबीआई ने किया बचाव, कहा मिलने वाले पैसे से तकनीक और नेटवर्क मजबूत होगा। विपक्ष ने फैसले पर सवाल उठाए। भारत पर मंडराया अमेरिका के 100% टैरिफ का खतरा, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में संशोधन प्रस्ताव पेश, आज मतदान होगा। यूसीसी को अखिलेश यादव ने बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी, बीजेपी पर साधा निशाना, बोले 15 लाख खाते में पहुंचाओ फिर यूसीसी लाओ।

के नेता की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार तीन बदमाशों ने मारी गोली, पार्टी ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। और भारत ने अफगानिस्तान से जीती टी20 सीरीज, 7 विकेट से दूसरे मैच में जीत हासिल, 160 रनों का लक्ष्य 31 बॉल रहते किया हासिल।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान गणेश की कृपा से आप अपने घर के वास्तु दोषों को कैसे दूर कर सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 16 सितंबर 2026 दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, प्रातः 8:59 तक, नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र शाम के 5:22 तक, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 10:49 तक, राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि भगवान गणेश की मूर्ति के प्रयोग से, उनके स्वरूप से, उनके चित्र से आप वास्तु की समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि गणेश जी और वास्तु का संबंध क्या है। देखिए, भगवान गणेश न केवल प्रथम पूज्य हैं बल्कि विघ्न नाशक हैं, बाधाओं का नाश करते हैं और बुद्धि प्रदाता हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं। इनकी कृपा से घर के समस्त वास्तु दोषों का नाश हो जाता है। घर के मुख्य द्वार पर, पूजा स्थान पर, रसोई घर में और कार्य स्थल में अगर आप गणेश जी की मूर्ति या उनके स्वरूप का सही प्रयोग करें तो वास्तु दोष नष्ट हो सकते हैं। आपको केवल ये जानना होगा कि गणेश जी की मूर्ति या इनके चित्र का सटीक प्रयोग कैसे किया जाए। अगर इनकी मूर्ति और चित्र का आप सटीक प्रयोग करें तो आप किसी भी तरह के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। ज्योतिष और वास्तु में भगवान गणेश की विभिन्न रंग की मूर्तियों का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग रंग की अलग अलग प्रतिमाएं घर के विशेष स्थान पर

तरीके से लगाई जाएं तो वास्तु दोष का नाश होता है। यानी अगर आप गणपति के अलग अलग रंग के चित्र या अलग अलग रंग की मूर्तियां घर के अलग अलग स्थानों पर लगाएं तो घर का वास्तु दोष, घर की वास्तु बाधाएं दूर हो जाएंगी। गणपति और वास्तु पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि,

दान दें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

समाप्त होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, मानसिक स्थिति बेहतर रहेगी, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब अगर आप गणेश जी की मूर्ति या उनका चित्र घर में स्थापित करने जा रहे हैं वास्तु दोष को दूर करने के लिए, तो मूर्ति या चित्र की स्थापना के नियम क्या हैं? पहली बात समझिए कि गणेश जी की बहुत सारी मूर्तियां अपने घर में न रखें। बहुत सारे लोग बहुत सारी मूर्तियां और चित्र गणेश जी के घर में रखते हैं, ऐसा ना करें। पूजा स्थान पर एक साथ गणेश जी की 3 मूर्तियां कभी भी मत रखिएगा। गणेश जी की वही मूर्ति, वही प्रतिमा घर में स्थापित करें जिसमें उनकी सूंड बाई तरफ मुड़ी हुई हो। और अगर मूर्ति स्थापित कर रहे हैं तो मूर्ति की ऊंचाई 12 अंगुल से ज्यादा ना हो तो बेहतर होगा। चित्र कितना भी बड़ा हो सकता है। पीले रंग के गणपति की मूर्ति या पीले रंग के गणपति का चित्र सर्वोत्तम माना जाता है। और आप अपने घर में गणेश जी की स्थापना करें, उन्हें फल, मिठाई, दूर्वा, धूप दीप अर्पित करें, लेकिन उनको कभी भी तुलसी दल पूजा के दौरान अर्पित ना करें। गणपति और वास्तु पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, ऑफिस की समस्या हल होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

करें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

योग हैं, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अनिला ने हमें लिखा है और अनिला हमें मेल लिखती हैं बेंगलोर से। इनकी जन्म की तारीख है 20 जुलाई 1988। जन्म का समय अर्ली मॉर्निंग 4:15। जन्म स्थान है कानपुर। अनिला कह रही हैं कि मैं 2 साल से अपने पति से दूर रह रही हूं और डिवोर्स के लिए मैंने मुकदमा फाइल किया है, तो क्या मुझे डिवोर्स मिल पाएगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? अनिला, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2027 के शुरुआती समय में आपसी सुलह समझौते से आपका डिवोर्स होगा और आसानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आगे मैं आपको दूसरा विवाह करने की कोई सलाह नहीं दूंगा क्योंकि आपकी कुंडली में विवाह का मामला बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। इतना जरूर है कि आप अपना और अपनी बेटी का अच्छा जीवन चला लेंगी, आप करियर में तरक्की करेंगी और जीवन में कोई ऐसा कष्ट नहीं है, लेकिन दूसरे विवाह की तरफ मत जाइएगा। एक मूंगा बनवा के पहने, 12-14 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे मूंगा धारण करें, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि भगवान गणेश की कृपा से आपके घर का वास्तु दोष कैसे दूर होगा। जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं या जिस कमरे में रहते हैं, बच्चों के पढ़ने की मेज पर या बच्चों के कमरे में पीले या हल्के हरे रंग की गणेश जी की मूर्ति या छोटा सा चित्र लगाएं। ढेर सारी गणेश जी की मूर्तियां इकट्ठा करके ना रखें, एक स्थान पर गणपति की केवल एक ही मूर्ति रखें, एक ही चित्र लगाएं। शयन कक्ष में, बेडरूम में अपने किसी भी भगवान की मूर्ति या चित्र बिल्कुल ना रखें और गणेश जी का चित्र या मूर्ति बिल्कुल भी आपको अपने बेडरूम में नहीं रखना है। घर के मुख्य द्वार पर, मेन डोर पर अंदर की तरफ गणेश जी की मूर्ति लगाएं। अंदर की तरफ गणेश जी की मूर्ति या चित्र लगाना अच्छा है, घर के बाहर की तरफ गणेश जी की मूर्ति या चित्र ना लगाएं। पूजा के स्थान पर पीले रंग के गणेश जी की प्रतिमा लगाएं, पीले रंग के गणपति की मूर्ति लगाएं, रोज सवेरे पूजा में गणेश जी को दूर्वा यानी दूब घास जरूर अर्पित करें। अगर आप घर में चाहते हैं कि हर जगह शुभता रहे, पवित्रता रहे,
तो इसके लिए घर में तमाम गणेश जी की मूर्तियां मत लगवाइए। बेहतर होगा कि जगह जगह पर ओम लिखकर लगाएं, या जो स्वस्तिक है वो भगवान गणेश का स्वरूप है, स्वस्तिक भी आप घर में जगह जगह पर लगा सकते हैं। गणपति पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

मिलेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम।

काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

समस्या हो सकती है, चोट चपेट से बचाव करें। हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब आपको बताते हैं कि किस तरह की गणेश जी की मूर्ति या किस तरह के गणेश जी का चित्र कहां पर लगाने से समस्याएं दूर होंगी। गणेश जी की अगर धातु की प्रतिमा है, मेटल की मूर्ति है, तांबे की, पीतल की, चांदी की, तो इसको लिविंग एरिया में अपने ड्राइंग रूम में एक स्थान पर अलग से लगाइएगा। ऐसा करने से घर के लोगों में आपसी सौहार्द और प्रेम बढ़ेगा। सफेद रंग के गणपति की मूर्ति या सफेद रंग के गणपति का चित्र अपने धन स्थान पर लगाएं, रोज प्रार्थना करें। ऐसा करने से धन बढ़ेगा और कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। पीले रंग के गणेश जी की प्रतिमा पूजा स्थान पर रखिए, नियमित रूप से इनकी पूजा करिए, इनको दूर्वा चढ़ाइए, आरती करिए। ऐसा करने से जीवन की हर प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर होंगी। हरे रंग के गणेश जी की मूर्ति या चित्र अपने पढ़ने या काम करने के स्थान पर लगाइएगा। ऐसा करने से शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ गणपति की स्थापना करना चाहते हैं तो पीले या लाल रंग के गणपति की मूर्ति या उनका चित्र मुख्य द्वार के अंदर की तरफ लगाना बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। गणेश जी की उपासना करें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा

करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। सामान्यतः लोग गणेश जी की पूजा बुधवार के दिन करते हैं। क्या गणपति का संबंध बुध ग्रह से होता है? देखिए, आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति है कि आप बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गणपति का संबंध बुध ग्रह से नहीं होता। बुध ग्रह का संबंध श्री हरि विष्णु से माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में केतु खराब है या केतु से संबंधित समस्या है तब गणपति की पूजा करने से, गणपति की उपासना करने से केतु संबंधी समस्या आपकी दूर हो सकती है। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है आइए जानते हैं।

हैं। नंबर दो, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर तीन, काम की अधिकता रहेगी। नंबर चार, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नंबर पांच, लाभकारी यात्रा के योग हैं। नंबर छह, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर सात, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर आठ, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर नौ, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 तक। इस समय में भगवान गणेश को दूरवा

माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक@aajtak.com पर। अगला प्रश्न सुनीता जी ने हमें लिखा है, बरेली से लिखती हैं। सुनीता जी अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। बेटे की जन्म तारीख है 28 नवंबर 2008, जन्म का समय शाम के 6 बजे, जन्म स्थान है बरेली। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा अभी 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा है, कॉमर्स पढ़ रहा है, तो आगे मुझे अपने बेटे को किस तरह के करियर में ले जाना चाहिए। सुनीता जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से आगे आप अपने बेटे को BBA और MBA में ले जाएं, अकाउंट्स या फाइनेंस में ले जाएं, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस का क्षेत्र इनके लिए बेहतर होगा अगर इस क्षेत्र में कोशिश करें। और ऐसा लग रहा है कि आगे की पढ़ाई के लिए अपने जन्म स्थान से बरेली से दूर जाएंगे और दूर जाकर पढ़ाई करेंगे, दूर जाकर करियर बनाएंगे, ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। आपके बेटे की एकाग्रता ठीक रहे, भटकाव ना हो, इसके लिए अपने बेटे को एक पन्ना बनवा के पहनाइए, 8-9 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में, बुधवार की शाम को गले में धारण करवाएं। और आप अपने बेटे के लिए सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो काफी बेहतर होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी धनिया खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, हरी सौंफ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आपकी तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर दीजिएगा, काम बन जाएगा।

रहेगा स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो हरा रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

शुभ होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए कार्यों में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा। मकर राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज सावधान रहना होगा। मेष राशि वालों को स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें।

अवश्य अर्पित करिएगा। और आज गणेश जी से शिक्षा में सफलता की प्रार्थना करिएगा, आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर लगेगा चार्ज। रेलवे टेलीकॉम ईंधन जैसे चुनिंदा श्रेणियों पर 5 रुपए के शुल्क। 15 अक्टूबर से नया नियम लागू। राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला, कहा अमेरिका के प्रेशर में लग रहा है यूपीआई ट्रांजैक्शन चार्ज। बीजेपी ने कांग्रेस के दावे को फर्जी बताया। यूसीसी को अखिलेश यादव ने बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी, बीजेपी पर निशाना साधा, बोले 15 लाख खाते में पहुंचाओ फिर यूसीसी लाओ। नीतीश से मुलाकात के बाद जेडीयू के रुख में आया बदलाव, यूसीसी पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी, हमारी पार्टी नहीं करेगी विरोध अगर प्रावधान ठीक हुए। सेवा संकल्प अभियान पर बोले जेपी नड्डा, पीएम की यात्रा संकल्प की यात्रा है, प्रधानमंत्री के जीवन का लक्ष्य सेवा और सुशासन, राजस्थान की जीत उनकी नीतियों का परिणाम। मोदी सरकार का ज्ञान मंत्र, जेपी नड्डा ने समझाया गरीब युवा अन्नदाता और नारी के सशक्तिकरण का संकल्प। नड्डा ने पोस्ट में लिखा डिजिटल भारत की बड़ी छलांग, 97 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन, डीबीटी से 53 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों तक। किशाऊ बांध परियोजना पर ऐतिहासिक करार, अमित शाह की मौजूदगी में यूपी राजस्थान समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मसौदे पर दस्तखत किए। पंजाब में ड्रग्स और सुसाइड केस पर भारी बवाल, चंडीगढ़ में सड़क पर उतरे कांग्रेस नेता सचिन पायलट, चन्नी और गहलोत, बीजेपी अकाली के निशाने पर भी सीएम भगवंत मान। आज तक की खबर का बड़ा असर, गुरुग्राम हिट एंड रन का मुख्य आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार, लेडी बाइकर के बयान पर दर्ज हुआ है हत्या की कोशिश का मामला। दिल्ली कैबिनेट ने आशा वर्कर्स के मासिक इंसेंटिव को दुगना करने का फैसला किया, अब दिल्ली के आशा वर्कर्स को 3000 की जगह 6000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। योगी सरकार ने 23 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षा और रोजगार तक बड़े फैसले लिए गए। नेपाल बाढ़ में लापता बिहार वासियों की पहचान के लिए परिजनों का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। दिशा सालियार मामले में मराठी और भाषा को लेकर संजय राउत का सरकार पर हमला, राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस में नए सिरे से जांच की मांग, नीरज सिंह बबलू ने कहा सामने आना चाहिए सच। दिल्ली में 10,000 छात्रों के लिए हॉस्टल बनाएगी दिल्ली सरकार, सीएम रेखा गुप्ता ने जमीन चिन्हित होने की जानकारी दी। दिल्ली में पीजी और कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने की तैयारी, स्ट्रक्चर, फायर सेफ्टी, सुरक्षा समेत मानकों पर जोर दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण की युवाओं से अपील, देश ने आपके लिए क्या किया है क्या नहीं किया, या आप देश के लिए क्या कर सकते हैं अब ये सोचें। अयोध्या में पिता की स्मृति में मेमोरियल धर्मशाला बनाएंगे अमिताभ बच्चन, 20 से ज्यादा कमरों का निर्माण होगा। बिहार कैबिनेट के 17 एजेंडों पर मुहर, मखाना विकास के लिए 89 करोड़ 80 लाख रुपए और विष्णुपद कॉरिडोर के लिए 2,520 करोड़ रुपए मंजूर। यूपी के प्रयागराज में समाजवादी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी। हत्या के केस में पुलिस सीसीटीवी खंगालने में जुटी है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है यूपी पुलिस। मृतक नेता के करीबियों के मुताबिक कुछ लोगों से बात कर रहे थे, इस बीच हेलमेट लगाकर 3 बदमाश आए, उनके ऊपर फायरिंग कर दी। नेता के दिनदहाड़े हत्या पर सियासी घमासान मचा, समाजवादी पार्टी ने प्रदेश प्रवक्ता ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर हमला बोला, प्रशासन की मिलीभगत का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्ताव पास हुए हैं, बैठक में इथेनॉल प्लांट, अलीगढ़ में नई यूनिवर्सिटी की स्थापना, मकान किराए पर लेने देने की प्रक्रिया आसान करने, परिवहन विभाग से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। मनोज जरांगे का मुंबई कूच, 19 सितंबर से आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन अनशन का ऐलान। एकनाथ शिंदे ने कहा त्यौहार के दौरान आंदोलनकारी मुंबई आने के फैसले पर पुनर्विचार करें। देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान, दिघी में 27,000 करोड़ से बनेगा देश का सबसे बड़ा पोर्ट, 90,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। पटना में बीपीएससी और दरोगा अभ्यर्थियों का बड़ा प्रदर्शन, जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस से नोकझोंक के बाद विधानसभा कूच की कोशिश। नोएडा में करोड़ों रुपए की लागत वाले एलिवेटेड रोड अचानक धंस गया, 20 फीट लंबा और 10 फीट गहरा गड्ढा देखकर मचा हड़कंप। धारचूला के दोबाड़ में पहाड़ी से भारी भूस्खलन हुआ, नेशनल हाईवे में यातायात बंद हुआ। चमोली में भारी बारिश से हाईवे पर मलबा आया, गोपेश्वर चोपटा माल पूरी तरह से बंद हुआ। गिर सोमनाथ में मूसलाधार बारिश से जल प्रलय जैसे हालात, ऊना और दीप घरों में घुसा पानी। कच्छ में मूसलाधार बारिश से किसानों के चेहरे खिले, अंजार में 7.5 इंच तक बारिश दर्ज की गई। बेगूसराय में 15 दिन बाद भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, घरों से पानी निकला लेकिन सड़कों पर अभी भी जल जमाव बरकरार है। दिल्ली के आनंद विहार क्लब में बाहर फायरिंग के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 1 फरार है। भारत नगर थाना इलाके में सत्यवती कॉलेज के पास छात्रों के 2 गुटों में झड़प हुई, मामले की जांच पुलिस कर रही है। इंदौर में 27 लाख रुपए लेकर फरार होने के आरोप में ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने 24 लाख रुपए बरामद किए। जम्मू कश्मीर के भलेसा गंदोह में एनएचएम कर्मचारियों के 72 घंटे की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई, उन्होंने कई मांगे रखी हैं। समस्तीपुर में नशे के लिए पैसे को लेकर विवाद में बेटे ने पिता की हत्या की, आरोपी फरार है। बड़वानी में विभिन्न मांगों को लेकर के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं का सड़क पर प्रदर्शन। मथुरा में 12 करोड़ की ज्वेलरी चोरी का 24 घंटे में खुलासा हुआ, 4 आरोपी गिरफ्तार।
बिजनौर के जंगल में दंपत्ति के शव मिले। जांच में पति द्वारा पत्नी की हत्या के बाद आत्महत्या की बात सामने आई है। ग्रेटर नोएडा में 600 ग्राम ड्रग के साथ दो विदेशी नागरिक गिरफ्तार, मामले की जांच जारी। मेरठ में क्लोरीन गैस रिसाव की सूचना से हड़कंप, कोई जनहानि की खबर नहीं। आजमगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराकर पलटी, मौत। सवाल ये कि आखिर एक कार में 9 लोग कैसे सवार हुए। अहमदाबाद में थाने के अंदर मौजूद इलेक्ट्रिक रूम में पंखे से लटककर युवक ने सुसाइड किया, मामले की जांच जारी। नागपुर में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, 4 घंटे के अथक प्रयासों के बाद युवक का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। मांड्या में भीषण सड़क हादसा, दो टैंकर की टक्कर से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। फिरोजाबाद में दलित गर्भवती महिला की मौत पर हंगामा, समाजवादी पार्टी सांसद ने थाने में दिया धरना, एसएसपी ने 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। गाजियाबाद के लोनी में विधायक नंद किशोर गुर्जर को गाली देने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रिश्तेदार के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, तस्वीरें सामने आई। आगरमालवा में गणेश चतुर्थी पर प्रतिबंध के बावजूद मटन चिकन बेचने वालों पर प्रशासनिक कार्रवाई, जेसीबी से तोड़ी गई दुकानें। देवरिया में क्लास में गाली का विरोध करने पर 12वीं के छात्र की घेर कर पिटाई, कान पकड़कर सॉरी बुलवाया, 3 पर केस दर्ज किया गया। जालना में 6 साल की बच्ची से गलत हरकत करने पर भड़के लोगों ने आरोपी का घर तोड़ा, 60 साल के आरोपी को हिरासत में लिया गया। कटिहार में प्रतिबंधित चाइनीज थाई मांगुर मछली की 50 क्विंटल खेप जब्त की गई, मत्स्य विभाग ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। मुंबई में गणपति उत्सव पर दिख रहे अलग अलग थीम वाले गणपति के सुंदर रंग, इसी कड़ी में ब्रिक्स समिट की थीम पर सजा बापा का दरबार। गणेश उत्सव की भव्यता के साथ देश की महत्वपूर्ण वैश्विक उपलब्धि का भी सुंदर प्रदर्शन किया गया है, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। गणेश उत्सव पर पुणे के श्रीमंत अगड़ूशेठ मंदिर में दिखा विशेष उत्साह, महिलाओं ने गणेश पाद अथर पाठ किया। पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत अगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में हुआ यह धार्मिक पाठ, 35,000 से अधिक महिलाओं ने गणेश अथर्वशीष का पाठ किया। पुणे में गणेश उत्सव के दौरान विघ्नहर्ता बप्पा का अलौकिक श्रृंगार हुआ, करोड़ों रुपए के सोने गहने से सजे विघ्नहर्ता। बप्पा के रंग में रंगा पुणे, महागणपति के मुक्त द्वार दर्शन उत्सव की भव्य शुरुआत हुई। गणेश चतुर्थी पर उज्जैन के प्राचीन चिंतामन गणेश मंदिर में गणेश उत्सव की रौनक, भगवान को लगाया गया 1,25,000 लड्डुओं का महाभोग। वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में स्थापित की गई गणेश प्रतिमा, 200 साल पुरानी जारी शाही परंपरा। ढोल नगाड़ों के बीच राजमहल पहुंची बापा की मूर्ति, राजमहल के भव्य दरबार हॉल में राजवी परिवार की मौजूदगी में राजपुरोहित ने पूजा अर्चना की। राजगढ़ में 15 फीट ऊंची चिंतामणि गणेश मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, गणेश चतुर्थी पर हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक, नृपेन्द्र मिश्रा की अध्यक्षता में मंथन। राम मंदिर निर्माण की प्रगति, संग्रहालय के विकास और पुरातात्विक अवशेषों पर चर्चा होगी। पुरी में सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार साहू ने बनाए नुआखाई जोहार सैंड एनिमेशन, महज 15 मिनट में तैयार की खूबसूरत कलाकृति। जैसलमेर पहुंची शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स, राजस्थानी परंपरा में देशी विदेशी सैलानियों का वेलकम। तिलक और फूलमालाओं के साथ सांस्कृतिक नृत्यों के बीच हुआ शाही स्वागत, शाही ट्रेन में सवार 75 सैलानियों में 64 देशी और 11 विदेशी पर्यटक शामिल। पूरी आस्था और उमंग के साथ चारधाम यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू, लगातार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं श्रद्धालु। चारधाम यात्रा के दूसरे चरण के लिए केदारनाथ धाम की हेली सेवाएं दोबारा शुरू कर दी गई है, मानसून के दौरान खराब मौसम के कारण रोकी गई थी यात्रा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा पर वर्चुअल समीक्षा बैठक की, यात्रा के दूसरे चरण की तैयारियों का जायजा लिया। पैदल मार्ग पर चिड़बासा में गिर रहे पत्थरों की वजह से चुनौती बनी हुई है, पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त होने से रोकनी पड़ी आवाजाही। बद्रीनाथ में करीब 17.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, हेमकुंड साहिब दरबार में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। विनायक चतुर्थी के मौके पर तमिल स्टार विक्रम की अगली फिल्म का टाइटल सामने आया, मेकर्स ने टीजर जारी किया, फिल्म का नाम पावर हाउस। करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन की मच अवेटेड फिल्म दायरा का नया प्रोमो सामने आया। इस फिल्म में करीना और पृथ्वीराज पहली बार स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे, फिल्म 18 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। नयनतारा स्टारर मुकुथी अम्मन का टीजर राइज ऑफ महाशक्ति किया गया रिलीज, टीजर में पौराणिक अतीत से लेकर मुश्किल भरे वर्तमान तक की कहानी की झलक है। उत्तराखंड में फिल्म हनुमान एंड शो की टैक्स फ्री, सीएम धामी के आदेश पर राज्य कर विभाग को पत्र जारी किया गया। ट्रंप के दावे के कुछ ही घंटे बाद रूस और यूक्रेन एक दूसरे के तेल ठिकानों पर हमला, यूक्रेन की राजधानी कीव में पेट्रोल पंप पर रूस का ड्रोन अटैक। ट्रंप के प्रस्ताव पर यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रे सिबे का बड़ा बयान, यूक्रेन रूस के साथ ऊर्जा क्षेत्र में संघर्ष विराम के लिए तैयार। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बड़ा बयान, कहा यूक्रेन पर बातचीत के दौरान भी जारी रहेगा सैन्य अभियान। लिथुआनिया के हवाई इलाके में घुसे संदिग्ध ड्रोन को नेटो लड़ाकू विमान ने मार गिराया, बेलारूस सीमा के पास घटना से बड़ी चिंता। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से मिले अमेरिकी दूत जॉन कोल, राजनीतिक कैदियों की रिहाई और प्रतिबंधों में ढील पर हुई चर्चा। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने रूस के साथ सहयोग बढ़ाने और संबंध गहरा करने का ऐलान किया, किम ने कहा रूस और उत्तर कोरिया के संबंध मजबूत होंगे। आईएईए सम्मेलन में परमाणु प्रमुख को वीजा न दिए जाने पर ऑस्ट्रिया पर भड़का ईरान, विदेश मंत्रालय ने कहा ऑस्ट्रिया का फैसला पूरी तरह अनुचित और गलत है। मिडटर्म चुनाव से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने मेल बैलेट में बदलाव की अपील खारिज की, अब मिड टर्म इलेक्शन में नहीं लागू होगा मेल इन वोटिंग।
दुबई समिट में बोले सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा, कहा प्रतिबंध हटने के बाद देश में बढ़ रहा निवेश, खाड़ी देशों और अमेरिकी कंपनियों के $7 अरब के समझौते हुए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पुलिसकर्मियों का बड़ा विरोध प्रदर्शन, बेहतर वेतन सुविधाओं की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हजारों जवान।

0: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
1: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
2: लायन डेट नट बाइट्स।
3: एक श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: SBI Celebrations Unlimited. ये गणेशोत्सव बनेगा स्पेशल विद फेस्टिव ऑफर्स ऑन कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स।
3: पापा।
4: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
4: छक्का?
5: सब कैशलेस हो गया है।
4: हाँ, ला भाई मेरा बैट।
5: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
4: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
11: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट,
12: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
13: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbar Group.
14: Senco se mera nata saalon purana hai. Ye mere liye bas ek brand nahi hai,
15: ye hai ek legacy. Mere shaadi ke kangan Senco se hi liye the.
16: Kyunki aise barik karigari aur kahan? Isiliye Senco India ka amongst most trusted jewelry brand as nominated by the TRF.
17: Ab main kya hi bolu?
18: Parivar, atoot bharosa.
19: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी।
2: इसमें कहीं दो मत नहीं है, आज तक का यहां तक प्रश्न है। एक बहुत ही क्रेडिबल मीडिया ग्रुप के रूप में इसने अपनी साख बनाई है मीडिया जगत में, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि आज देश की सुरक्षा को लेकर यहां पूरे दिन चिंतन और मंथन हुआ है। मैं टीवी टुडे की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं।

0: के।
1: जिस रायबरेली इलाके में समाजवादी पार्टी ने 2022 में 4 के मुकाबले 1 पर बीजेपी को समेट रखा था, उसी रायबरेली की उचहार सीट पर ये भव्य शिव महापुराण का कथा आयोजन हुआ। और इस कथा में सीएम योगी की मौजूदगी ने इस आयोजन को सिर्फ एक धार्मिक कथा तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले रायबरेली के सियासी समीकरण साधने की मजबूत कवायद के रूप में देखा जा रहा है।
0: याद रखना, ये पावन कथा जब तक भारत की धरती पर चलती रहेंगी, सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी, और सनातन की ध्वजा पताका ऊंची रहेगी तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा।
1: ये मंच भले ही पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का था, लेकिन संदेश पूरी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव का है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे के इस भव्य धार्मिक आयोजन में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी अवध के इस गढ़ में विपक्ष के जातीय चक्रव्यूह को हिंदुत्व आउटरीच और सोशल इंजीनियरिंग से भेदने की पूरी तैयारी कर चुकी है।
2: फैलाव करना अच्छी बात है, लेकिन सनातन संस्कृति के नाम पर चढ़ावा चोरी करना, सनातन संस्कृति के नाम पर वोट मांगना, वोट लूटना, नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी महिला नौजवान किसान और अल्पसंख्यक के हितों को ऊपर प्रतिघात करना, ये कहां से सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है।
1: दरअसल जिस उचहार इलाके में समाजवादी पार्टी के पुराने नेता और अब योगी सरकार में मौजूदा कैबिनेट मंत्री की इस शिव महापुराण कथा जैसे धार्मिक आयोजन के पीछे बीजेपी की कोशिश करीब 18% ब्राह्मण वोटों के साथ करीब 12% क्षत्रिय और 23% ओबीसी वोट को जोड़ने की है, जिससे कि विपक्ष के साथ साथ दलित मुस्लिम यादव वोट बैंक के खिलाफ जनाधार तैयार किया जा सके। समर श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: va.
1: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
1: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया
1: है। हां ओ ला भाई मेरा बैट,
2: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
3: बेटा चार्ज हुआ यार।
0: ओला बैट किसका है?
4: टाटा एजी है तो भरोसा है।
5: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
8: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट,
9: जेके मैक्स।
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
11: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
12: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
13: खैबर के सीएम को किसने किया अगवा? हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के पीछे किसकी साजिश? इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर मचा बवाल। मुनीर और शहबाज शरीफ के जुल्म पर उठे सवाल। लाहौर की सड़कों पर हो रहा ये ड्रामा पाकिस्तान की बेशक एक नई सियासी तस्वीर हो, लेकिन नीति और नियत तो वही पुरानी है। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि पिछले 24 घंटों में लाहौर में ऐसा क्या बवाल हो गया जिससे एक राज्य के मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में इसे लेकर बवाल हो गया है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर को इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। पीटीआई ने 3 साल से जेल में बंद इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर इस्लामाबाद मार्च बुलाया है और राजधानी में बड़ी तादाद में लोगों को जुटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इसे देखते हुए इस्लामाबाद और पंजाब में सुरक्षा इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है और हर दूसरे दिन पीटीआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में लाहौर में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी पहुंचे थे। देर शाम रोड शो के दौरान अफरीदी को लाहौर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरोप है कि पुलिस कई घंटों तक उन्हें गाड़ी में बैठाकर सड़कों पर घुमाती रही। गाड़ी के अंदर से ही बनाए गए वीडियो में आरोप लगाया जा रहा है कि पंजाब में खैबर के सीएम को अगवा कर लिया गया है।
14: एक सीएम केपी को अगवा कर लिया गया, ये देखिए सीएम केपी को अगवा कर लिया गया पंजाब, मरियम नवाज ने, शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने, ये देखिए ये सीएम केपी को अगवा कर लिया गया, इनको शर्म नहीं आ रहा है, अगवा कर लिया। ये देखिए, ये देखिए पंजाब पुलिस ने सीएम को अगवा कर दिया,
13: सीएम के साथ बैठा शख्स पुलिस की गाड़ी के पीछे आ रहे बाइक सवारों को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि सीएम को अगवा कर लिया गया है। आरोप ये भी लगाया गया कि बाद में ऊपर से दबाव बढ़ा तो पुलिस ने सोहेल अफरीदी को सड़क किनारे उतार दिया। घंटों तक लाहौर की सड़कों पर ये सियासी ड्रामा चलता रहा। पीटीआई के कार्यकर्ता इकट्ठा होते रहे और मरियम सरकार को कोसते रहे। पीटीआई लगातार ये आरोप लगा रही है कि पंजाब की मरियम नवाज सरकार अपने पिता नवाज शरीफ और चाचा शहबाज शरीफ की तरह बदले की भावना से काम कर रही है, इसीलिए उनकी पुलिस ने एक सीएम को अगवा कर 3 किलोमीटर तक गाड़ी में घुमाया और लक्ष्मी चौक के पास सड़क पर उतार दिया। अभी कुछ दिन पहले ही मरियम नवाज ने आरोप लगाया था कि पंजाब को पड़ोसी देशों से नहीं अपने पड़ोसी राज्यों से खतरा है, जिनमें खैबर का भी नाम लिया गया था। खैबर और पंजाब के बीच ये सियासी जंग अभी और तेज होने वाली है, क्योंकि अगले 10 दिन तक इमरान खान की पार्टी हजारों लोगों को पंजाब में जुटाकर इस्लामाबाद मार्च की तैयारी करेगी और इन हालात में पंजाब पुलिस का हर एक्शन पाकिस्तान में सियासी रिएक्शन का काम करेगा। आज तक ब्यूरो।

0: भैया मेरे राखी के बंधन को नहीं। 100 रुपए लेंगे तुमसे अभी हम।
1: लो मिठाई भी खाओ।
2: क्योंकि फूफा भी कभी जीजा थे।
0: ताऊ भी एथेनॉल को लेके फूफा ही कहे जाएंगे।
1: हाँ ताऊ एथेनॉल फूफा हैं।
3: हाँ बिल्कुल है। हम नाराज हैं।
0: मेरे फूफा जो है दुनिया के सबसे अच्छे फूफा है।
1: क्या बात कर रहे हैं।
0: कसम से उनका नाम ही अच्छे खां है।
1: अच्छा।
0: सबसे अच्छे हुए।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर चार्ज के फैसले का आरबीआई ने किया बचाव, कहा मिलने वाले पैसे से तकनीक और नेटवर्क होगा मजबूत। विपक्ष ने फैसले पर उठाए सवाल। भारत पर मंडराया।

एंटरटेनमेंट प्रस्ताव। यूसीसी को अखिलेश यादव ने बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी, बीजेपी पर साधा निशाना, बोले 15 लाख खाते में पहुंचाओ फिर यूसीसी लाओ। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी नेता की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार 3 बदमाशों ने मारी गोली, समाजवादी पार्टी ने यूपी की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल।

पूजा शर्मा, वक्त हो गया है सुपर एट का, जिसमें बात करेंगे उन बड़ी और अहम खबरों की जिस पर दिन भर आपकी नजर रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे यूपीआई की, जिस पर 2000 से ज्यादा पेमेंट पर चार्ज लगा है। दरअसल ये शुल्क ग्राहकों से नहीं बिजनेसमैन से लिया जाएगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक बिल के जरिए रूस के बड़े तेल और गैस खरीदार देशों पर 100% टैरिफ लगा सकते हैं। भारत भी उन देशों में शामिल है, इस पर भी करेंगे डिटेल में बात। वही बात होगी अखिलेश यादव की, जिन्होंने यूसीसी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। बात गुरुग्राम हिट एंड रन केस की भी होगी, जहां पर पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं प्रयागराज में समाजवादी पार्टी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके वजह से समाजवादी पार्टी ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। बात होगी हूती विद्रोहियों के हमले की, जिसने एक बार फिर से सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। मक्का में खतरे को लेकर अलर्ट अभी जारी किया गया है। वहीं हूती विद्रोहियों के हमले ने एक बार फिर से कच्चे तेल के दाम को बढ़ा दिया है। और आखिर में भारत ने अफगानिस्तान से जीती T20 सीरीज, इसको भी डिटेल के साथ आपको बताएंगे। 7 विकेट से दूसरे मैच में जीत हासिल कर ली गई है। सबसे पहले आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं यूपीआई पेमेंट की, जिस पर अब यूपीआई से 2000 से ज्यादा पेमेंट पर 0.4% चार्ज लगाया जाएगा। फीस की मैक्सिमम लिमिट ₹300 तक की गई है और ये अमाउंट अलग अलग ट्रांजेक्शन पर निर्भर करेगा। ये शुल्क ग्राहकों से नहीं लिया जाएगा बल्कि बिजनेसमैन से लिया जाएगा। हालांकि 2000 तक पेमेंट करने पर ग्राहक और बिजनेसमैन दोनों से किसी तरह की फीस नहीं ली जाएगी। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर ये स्थिति साफ कर दी थी। रुपे डेबिट कार्ड से होने वाले पेमेंट को भी इस छूट में शामिल किया जाएगा। वही 2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर चार्ज के फैसले का आरबीआई ने बचाव किया, कहा कि मिलने वाले पैसे से तकनीक और नेटवर्क इससे मजबूत होगा। और अब बात कर लेते हैं यूपीआई के पेमेंट लिमिट को लेकर मचे नए घमासान की, आखिर इसकी हकीकत क्या है, क्योंकि मामला हमारी हर पल की खरीदारी से जुड़ा हुआ है। यूपीआई से पेमेंट को लेकर सरकार लगातार लोगों को जानकारी दे रही है, लेकिन ₹2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट को लेकर अब भी कई सवाल है। क्या ₹2000 यूपीआई की नई लिमिट है? क्या ज्यादा पेमेंट पर बैंक चार्ज वसूला जाएगा? और क्या दोस्तों या परिवार को पैसे भेजने पर भी फीस लगेगी? समझिए इस एक्सप्लेनर के जरिए।

सबसे पहले सवाल, क्या 2000 रुपए यूपीआई की नई पेमेंट लिमिट है? 2000 रुपए कोई नई यूपीआई पेमेंट लिमिट नहीं है, यानी पहले की तरह आप 2000 रुपए से ज्यादा का यूपीआई पेमेंट भी कर सकेंगे। अब सवाल ये है कि फिर 2000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट को लेकर नियम की बातें क्यों हो रही हैं? इसकी बड़ी वजह है कारोबारी पेमेंट वित्त वर्ष 2025-26 में दुकानदारों को किए गए यूपीआई पेमेंट में करीब 4% ट्रांजैक्शन ही 2000 रुपए से ज्यादा के थे, लेकिन कुल रकम में इनकी हिस्सेदारी करीब 2/3 थी। यानी ऐसे पेमेंट की संख्या कम है लेकिन इनमें जाने वाली रकम काफी ज्यादा है। आरबीआई का कहना है कि 2000 रुपए से ज्यादा के बड़े यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने से डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को लंबे समय तक मजबूत और टिकाऊ बनाने में मदद मिलेगी। आरबीआई के मुताबिक एमडीआर से टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और पेमेंट स्वीकार करने वाले नेटवर्क में निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। अब सबसे अहम सवाल है कि क्या इसका बोझ सीधे आम यूजर पर आएगा? आरबीआई ने साफ किया है कि P2P और P2M यानी सभी यूपीआई ट्रांजैक्शन

0: यूजर के लिए मुफ्त रहेंगे लेकिन यहां P2P और P2M का फर्क समझना जरूरी है अगर आप दोस्त या परिवार के किसी सदस्य को 5000 या 10000 रुपए भेजते हैं तो ये P2P पेमेंट है ऐसे पेमेंट पर आम यूजर से कोई फीस नहीं ली जाएगी वही जब आप किसी दुकानदार या कारोबारी को UPI से पेमेंट करते हैं तो P2M यानी पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन होता है 2000 रुपए से कम के P2M UPI पेमेंट भी दुकानदारों के लिए मुफ्त रहेंगे जबकि 2000 रुपए से ज्यादा के P2M पेमेंट पर MDR लगाया जा सकता है यानी 2000 रुपए UPI की नई पेमेंट लिमिट नहीं है बड़ा बदलाव पेमेंट की लिमिट में नहीं बल्कि 2000 रुपए से ज्यादा के कारोबारी यानी P2M ट्रांजैक्शन पर MDR से जुड़ा है और RBI के मुताबिक इस MDR का सीधा चार्ज आम UPI यूजर से नहीं लिया जाएगा आज तक ब्यूरो
1: तो यूपीआई में 2000 रुपए से ज्यादा के लेन देन को लेकर एमडीआर की चर्चा के बीच कांग्रेस और विपक्षी दल आशंका जता रहे हैं कि इसका असर आम लोगों पर पड़ सकता है विपक्ष का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग सेवाओं से जुड़े कई चार्ज बढ़े हैं आखिर आम ग्राहक को बैंकिंग के लिए किन किन शुल्कों का सामना करना पड़ता है इस रिपोर्ट के जरिए समझिए
2: कांग्रेस और विपक्षी दलों का दावा है कि यूपीआई पर 2000 रुपए से ज्यादा के लेन देन को एमडीआर के दायरे में लाने की आशंका इसलिए चिंता बढ़ा रही है क्योंकि उनके मुताबिक आम लोगों के लिए बैंकिंग सेवाएं पहले ही महंगी हो चुकी हैं। आज बैंकिंग से जुड़ी कई सेवाओं पर ग्राहकों को अलग अलग तरह के चार्ज देने पड़ते हैं डेबिट कार्ड या ATM की सालाना फीस करीब 150 से 300 रुपए तक हो सकती है दूसरे बैंक के ATM से तय मुफ्त सीमा के बाद कैश निकालने या ट्रांजैक्शन करने पर करीब 21 से 23 रुपए प्लस GST का चार्ज लग सकता है खाते में पर्याप्त बैलेंस न होने पर कुछ बैंकों में अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है ब्रांच में भी तय सीमा से ज्यादा लेन देन करने पर चार्ज लग सकता है निजी बैंकों में न्यूनतम बैलेंस की शर्त पूरी नहीं करने पर 100 से 500 रुपए तक का शुल्क लगाया जा सकता है चेक बाउंस होने पर भी बैंक के नियमों के मुताबिक 150 से 600 रुपए तक का चार्ज हो सकता है मोबाइल SMS अलर्ट अतिरिक्त चेकबुक और बैंक के जरिए किए जाने वाले NEFT, RTGS या IMPS जैसे लेन देन पर भी अलग अलग शुल्क हो सकते हैं यहाँ तक कि कुछ बैंक खाते को बंद करने के लिए भी चार्ज लेते हैं विपक्षी दलों का एक और दावा है कि 2014 के बाद बैंकिंग सेवाओं से जुड़े शुल्कों में बढ़ोतरी हुई उनके मुताबिक SMS अलर्ट ATM ट्रांजैक्शन न्यूनतम बैलेंस ब्रांच ट्रांजैक्शन और डेबिट कार्ड जैसे चार्ज पहले की तुलना में बढ़े हैं दूसरे बैंक के ATM से मुफ्त लेन देन की सीमा भी अब तय है हालांकि बैंकिंग शुल्क बैंक खाते के प्रकार और सेवा के नियमों के हिसाब से अलग अलग होते हैं इसलिए हर ग्राहक पर एक जैसे चार्ज लागू नहीं होते अब UPI के 2000 रुपए से ज्यादा के लेन देन पर MDR का मुद्दा कितना असर डालता है ये आने वाले नियमों और उनके लागू होने के तरीके पर निर्भर करेगा फिलहाल बहस इसी पर है कि डिजिटल पेमेंट बढ़े लेकिन उसका अतिरिक्त बोझ आम ग्राहक पर न आए
1: बात कर लेते हैं EMI को लेकर चिंता की बैंकिंग सेक्टर में ये सवाल अक्सर उठता है कि RBI के फैसलों का फायदा ग्राहकों तक कितनी जल्दी पहुंचता है लेकिन इस बार चिंता उल्टी है इस रिपोर्ट के जरिए समझिए
2: पश्चिम एशिया में हो रही जंग से कच्चे तेल में नए सिरे से उबाल आ गया है और वो $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है इसने जनता की चिंता को बढ़ा दिया है जो पहले ही महंगाई की मार झेल रही है खबरदार हो गई है कि आने वाले महीनों में घर का बजट दबाव में आ सकता है अगस्त में थोक और खुदरा महंगाई दर में लगातार बढ़ोतरी ने इसे लेकर तस्वीर भी साफ कर दी है अगस्त में फुटकर महंगाई 4.82% हो गई जुलाई में ये 4.45% थी वहीं सरकार ने 14 सितंबर को जारी रिटेल महंगाई के आंकड़ों में खाने पीने की चीजों की फुटकर महंगाई दर 5.95% का आंकड़ा दिया जबकि रिजर्व बैंक ने रिटेल महंगाई का लक्ष्य 4% रखा है ये जनवरी से लेकर जुलाई तक महंगाई के वो आंकड़े हैं जो बढ़ते ही जा रहे हैं जनवरी में जो महंगाई 2.74% थी वो फरवरी से अप्रैल तक 3 से 3.5 के बीच रही फिर मई में करीब 4% और फिर जुलाई में 4.45% पहुंच गई। बड़ी बात यह है कि लगातार तीसरा महीना है जब रिटेल महंगाई दर RBI के तय पैमाने से ज्यादा दर्ज की गई है
3: महंगाई की मार न केवल राशन के सामान पर देखने को मिल रही है सब्जियों पर भी जो अब महंगाई है वो देखने को मिल रही है चाहे बात की जाए लहसुन अदरक और प्याज टमाटर जैसी सब्जियों की वो भी अब महंगी हो गई जिसका असर किचन बजट पर पड़ा है कौन कौन सी जो सब्जियां महंगी हो गई हैं
4: इस टाइम प्याज भी महंगा है अदरक भी महंगा है लहसुन भी महंगा है मतलब इन सबके अगर देखा तो प्रीवियस ईयर से इस ईयर कम से कम 100 रुपए किलो के मार्जिन बढ़ा है करीबन
2: अब ऐसे में विपक्ष का सवाल है कि सरकार एक तरफ 7.28% की विकास दर का दावा कर रही है, वहीं महंगाई की तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। त्योहार से पहले तेल रिफाइंड के साथ आलू प्याज अदरक के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है।
5: कितना महंगाई का असर जो है वो पड़ रहा है आप लोगों के ऊपर?
6: बहुत ज्यादा पड़ रहा है, हद से ज्यादा। इस वक्त तो बहुत ज्यादा पड़ रहा है महंगाई का असर, सभी लोग परेशान है, जनता सारी परेशान है।
2: सरकार का कहना है कि युद्ध के अलावा महंगाई के बढ़ने में कमजोर और अनियमित मानसून का भी हाथ है, लेकिन आम आदमी का दिल त्योहार से पहले बैठा जा रहा है। वो देख रहा है कि कच्चे तेल की कीमतों में नए सिरे से आते उछाल से वो कब तक बचेगा। आज तक ब्यूरो।
1: देखिए, कुछ दिन पहले ही जनता इस बात से खुश थी कि इकोनॉमी उम्मीद से तेज रफ्तार से दौड़ रही है, इसलिए कुछ राहत मिलेगी, लेकिन महंगाई की वजह से ये राहत भी खत्म ना हो जाए। इस पर एक्सपर्ट का क्या कुछ कहना है, सुनिए।
7: हमारा इन्फ्लेशन और प्राइसेस बहुत कंट्रोल में थे जब तक वेस्ट एशिया क्राइसिस नहीं शुरू हुआ था। जैसे ही ये क्राइसिस शुरू हुआ तो प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए, और अभी हमने देखा कि इन्फ्लेशन भी हाई आया है, 4.9 का इन्फ्लेशन है, तो काफ़ी हाई है एज कम्पेयर्ड विद अर्लियर मंथ्स। और ऊपर से जो WPI है वो तो लगभग कोई 9.8% का WPI जो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। इससे ये पता चलता है कि जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादातर जो इंटरनेशनल कॉमोडिटी प्राइसेस हैं या इंटरनेशनल प्राइस प्रेशर है उसकी वजह से WPI में बढ़ोतरी हुई है, और जो धीरे धीरे पास ऑन हो रहा है CPI ने भी बढ़ना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इकोनॉमी है, जैसे हमने 7.8% का ग्रोथ रेट देखा, तो उसके जो सपोर्टिव फैक्टर हैं, जो उसके पिलर्स हैं, उस जिनको हम कहते हैं कि एक डिमांड एक बहुत बड़ा पिलर है, सेकंड जो स्टेबिलिटी इन इंटरेस्ट रेट, जो RBI ने बहुत ही कैलिब्रेटेड स्टेप्स लिए, स्टेबिलिटी रखा इंटरेस्ट रेट में, रेपो रेट में, उसने बहुत सपोर्ट किया, और थर्डली गवर्नमेंट का हैंड होल्डिंग, जो सरकार ने अपनी पॉलिसीज दी, और इंडस्ट्री एफर्ट्स, इन चारों की वजह से ही हमारा जो GDP है वो 7.8% आया है। तो ये जो इन्फ्लेशन है जो ज़्यादातर जो इंटरनेशनल प्राइस प्रेशर की वजह से है, तो मैं ये समझता हूँ कि धीरे धीरे ये सबसाइड होगा और नॉर्मल हो जाएगा।
1: बात कर लेते हैं गुरुग्राम हिट एंड रन केस की, जहां पर हरियाणा पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारने के मामले में वारदात के वक्त आरोपी कार चालक कल्याण बैसला के साथ कार में मौजूद आरोपी लवनेश को भी गिरफ्तार किया था पुलिस ने। और ऐसे में पुलिस के मुताबिक 34 साल के लवनेश पलवल के न्यू कॉलोनी का रहने वाला है, और उसे इस मामले में नियमानुसार गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि पहले ही मुख्य आरोपी कल्याण बैसला को गिरफ्तार कर लिया गया है।
8: फॉलोअर्स जो है वो
9: नहीं, देखिए उनका इंटरव्यू मैंने सुना, उनके लॉयर का इंटरव्यू सुना, और जो भी उनके XYZ फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो काफी इंटरव्यू दे रहे हैं कि मैं विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हूँ और फॉलोअर्स के लिए कर रही हूँ, और उनका जो भी गुरु है वो इतने शिक्षित हैं और आपको जानता ही कौन है, काफी सारी चीजें। देखिए इन चीजों से देखिए फर्क नहीं पड़ता, आप उनकी पर्सनालिटी बता रहे हैं कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। देखो गवार तो मैं भी नहीं हूँ, पढ़ी लिखी तो मैं भी हूँ, मैं भी एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मुझे कह रहे हैं कि आपको जानता ही कौन है। जो मेरा सिया वाला पेज है, देखो मेरे को कोई शौक नहीं था अपनी आइडेंटिटी रिवील करने का, इवन दोपहर तक जब तक मीडिया मेरे घर आके नहीं बैठी किसी को नहीं पता था सिया कौन है।
10: इतना बड़ा हिट एंड रन का ये मामला सामने आया है, और ये गोल्फ कोर्स रोड का मामला है। इस घटना को लेकर हमने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई की है, और हमने रिकमेंड किया है, पुलिस को निर्देश दिया है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उस लड़के को जो जिसका सामने आया है नाम, वो कल्याण भैसला करके पलवल का रहने वाला है, और शिवानी जो है वो दिल्ली की रहने वाली है, तो उसको राउंड अप कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, और इस पर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के हिदायत पुलिस को दी है।
1: तो वहीं प्रयागराज में थाना क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के युवा नेता पवन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मंगलवार शाम बाइक सवार तीन अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, गोली लगने के बाद पवन यादव को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पवन यादव SP के जिला सचिव और पूर्व प्रधान भी बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक मौके से CCTV फुटेज जुटाए गए हैं, और हमलावरों की पहचान के लिए टीम लगाई गई है। परिजनों ने फिलहाल किसी पारिवारिक रंजिश की आशंका नहीं जताई है। मामले में अभी फिलहाल जांच की जा रही है।
11: व्यक्ति की बाइक पे सवार 3 अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारी गई है और उनके परिजन और उनके साथी जो साथ में थे उनको अस्पताल लेके गए हैं। इस सूचना पे तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची और अस्पताल में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि उनकी मृत्यु अस्पताल में हुई। CCTV फुटेज कुछ प्राप्त किए गए हैं और भी इस संबंध में टीम गठन करके और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और इसका शीघ्र ही गुणदोष के आधार पर अनावरण किया जाएगा और विधिक कार्रवाई प्रचलन में लाई जाएगी।
12: वही इकलौते कमाने वाले थे, घर के पूरे खर्च कैसे चलेंगे? 3 बहनें हैं इनकी, उनके पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह कौन करेगा? तो जब तक उचित मुआवजा नहीं दे दिया जाता है और इनके सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नहीं ले ली जाती है और अपराधियों को पकड़ा करके उनका इनकाउंटर नहीं कर दिया जाता है, तब तक हम लोग इस अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे।
1: बात कर लेते हैं यूपी की, जहां पर योगी सरकार ने 23 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। इन प्रस्तावों में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षा और रोजगार तक के फैसले शामिल हैं। योगी कैबिनेट में रामनगरी अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मिल्कीपुर के लालखां गांव में 65 एकड़ जमीन पर NSG का क्षेत्रीय हब बनाने का फैसला लिया गया। राम मंदिर निर्माण के बाद VIP आवाजाही, श्रद्धालुओं की संख्या और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के बीच सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। योगी कैबिनेट में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, स्मार्ट स्कूल, पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण और किसानों को सस्ती दर पर लोन की मंजूरी दी गई है। बात कर लेते हैं यूपी से आए एक बेहद ही दिलचस्प वाक्य की। जब कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे को अचानक से कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया तो कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे को लखनऊ बुलाने के लिए सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर भेज दिया। मनोज पांडे उस समय उंचाहार में शिव महापुराण कथा में मौजूद थे। मुख्यमंत्री की ओर से हेलीकॉप्टर भेजे जाने के बाद मनोज पांडे उससे लखनऊ पहुंचे, कैबिनेट बैठक में शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने खुद इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भोपाल में असदुद्दीन ओवैसी के काफिले के दौरान VIP रोड पर सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि काफिले पर मोड़ पर रुका हुआ था एक काफिला और इसी दौरान काफिले में शामिल कुछ गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे के दौरान कुछ बाइक सवारों को भी चोट आई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला गया। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। यातायात अतिरिक्त पुलिस आयुक्त वसंत कौल के मुताबिक फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और हादसे की वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। तो ईरान में उड़ान के दौरान एक विमान में जबरदस्त अफरा तफरी मच गई। ईरान के किमरान शाह जा रहे बोइंग 737 विमान में कई यात्री सवार थे। अचानक से विमान के टायर में फटने की आवाज आई, इंजन में खराबी हो गई। उसके बाद विमान के केबिन की छत भी टूटने लग गई, सामान नीचे गिरने लगा। इसे देखकर यात्री बेहद ही खौफ में आ गए। हादसे के बाद सभी यात्री प्रार्थना करते दिखे कि वो सभी विमान के क्रैश होने के डर से सहमे हुए थे। स्थिति संभालने के लिए एयरलाइंस के विमान को मशहद वापस लाया गया और उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी।

0: على محمد آل محمد.
1: चलिए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं सऊदी अरब और हुती विद्रोहियों के बीच चल रही जंग की। सऊदी अरब और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑपरेशन ने हुती विद्रोहियों पर पवित्र शहर मक्का पर हमला करने का आरोप लगाया है। एएफपी न्यूज एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने कहा है कि हुती विद्रोहियों ने मक्का पर घिनौना हमला किया। वहीं हुती की तरफ से कहा गया है कि मक्का की ओर जा रहे ड्रोन को मार गिराने की सऊदी अरब की रिपोर्ट एक घिसी पिटी झूठ बताई जा रही है। वहीं हुती विद्रोहियों का हमला लगातार जारी है। सऊदी अरब के तेल टर्मिनल वाले शहर यानू में मिसाइल और ड्रोन हमले का सायरन बज उठा। ताइफ में भी चेतावनी दी गई, जेदा एयरपोर्ट पर उड़ानें रोक दी गई। लेकिन सबसे बड़ा हमला सऊदी अरब के खमीस मुशैत में एक मिलिट्री एयरबेस पर हुआ, जहां पर एयरक्राफ्ट हैंगर, रडार सिस्टम, रनवे और गोला बारूद के डिपो पर हमले किए गए। दूसरी तरफ हुती विद्रोहियों ने कहा है कि सऊदी अरब पर उसका ताजा हमला पिछले 5 दिनों में यमन पर सऊदी के 300 से ज्यादा हवाई हमलों का जवाब था और चेतावनी दी गई है कि अगर ये अभियान जारी रहा तो और बड़े हमले किए जाएंगे। इसी के साथ सुपर 8 में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: एक तो एक

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: पापा
6: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
6: छक्का?
7: सब कैशलेस हो गया है।
6: हाँ
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
11: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
12: SBI Celebrations Unlimited. ये गणेशोत्सव बनेगा स्पेशल विद फेस्टिव ऑफर्स ऑन कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स।
13: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
14: Take a date, not bites.
15: No added sugar, preservative के बिना। Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया। Lion Dates Nut Bites.
14: Lion Date Nut Bites.
16: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर। दुनिया की सोच से ऊपर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbaugh Group.
17: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
18: GK Max.
19: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
18: JK Max. Best putty.
19: JK Wall Max.
18: Best paint.
19: JK Max.
18: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन most beautiful walls के लिए सिर्फ JK Max paints. JK Max. JK Max paints. खुशियों के रंग।
20: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
21: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफटाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।
22: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
23: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
22: असली शहद, असली स्वाद।
24: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
25: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
26: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
27: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: in association with
1: Signature Finest Cardamom Seeds.
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
3: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल.
4: आज तक के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे बड़ी सभा.
5: आज का बैटलफील्ड 4000 किलोमीटर तक जा रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है.
6: इमीडिएट बालापुर मान जाइए, अब वो जब भी नहीं माने तो फिर सिंदूर की हमारे को नौबत आनी.
7: अंडमान निकोबार आइलैंड तो जरूर हमको उसका एडवांटेज लेना ही चाहिए.
8: जो बाउंड्री प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में, इसका भी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता.
9: कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा, भारत की सेनाएं उसका जवाब देगी.
4: आज तक देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ी आवाज़.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: 2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर चार्ज के फैसले का आरबीआई ने किया बचाव। कहा मिलने वाले पैसे से तकनीक और नेटवर्क होगा मजबूत। 15 अक्टूबर से नया नियम, विपक्ष ने उठाए सवाल। भारत पर मंडराया अमेरिका के 100% टैरिफ का खतरा। आज संशोधन प्रस्ताव पास हुआ तो ट्रंप को मिल जाएगा रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैक्स लगाने का अधिकार। यूसीसी को अखिलेश यादव ने बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। बीजेपी पर साधा निशाना, बोले 15 लाख खाते में पहुंचाओ फिर यूसीसी लाओ। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी नेता की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार तीन बदमाशों ने मारी गोली। समाजवादी पार्टी ने यूपी की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। खाड़ी में खुला युद्ध का एक और मोर्चा। सऊदी अरब ने लगाया हूती पर पवित्र मक्का का हमले का आरोप। भारत ने कहा बॉब अल मंडेब के तेल रूट से गुजरना भी खतरे से खाली नहीं।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: भोपाल में असदुद्दीन ओवैसी के काफिले का एक्सीडेंट। वीआईपी रोड पर आपस में टकराई गाड़ियां, 4 से 5 बाइक सवार घायल। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और हादसे के कारणों की जांच शुरू की। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का यूसीसी पर हमला। भोपाल में बोले गैर हिंदुओं पर हिंदू कानून थोप रही है सरकार। ओवैसी ने बीजेपी शासित राज्यों में मस्जिदों और कब्रिस्तानों को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया। वहीं सागर जहरीली शराब मामले में मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा के एक विवादित बयान पर अत्यंत तीखा पलटवार करते हुए कहा कि खुले मंच से दी चुनौती। वहीं 2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर लगेगा चार्ज। रेलवे, टेलीकॉम, ईंधन जैसे चुनिंदा श्रेणियों पर 5 रुपए की शुल्क। 15 अक्टूबर से नया नियम होगा लागू। राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला। कहा अमेरिका के प्रेशर में लग रहा है यूपीआई ट्रांजैक्शन चार्ज। बीजेपी ने कांग्रेस के दावे को बताया फर्जी। यूसीसी को अखिलेश यादव ने बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेंसी। बीजेपी पर साधा निशाना, बोले 15 लाख खाते में पहुंचा फिर यूसीसी लाओ। नीतीश से मुलाकात के बाद जेडीयू के रुख में आया बदलाव। यूसीसी पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी, हमारी पार्टी नहीं करेगी विरोध अगर प्रावधान हुए ठीक। सेवा संकल्प अभियान पर बोले जेपी नड्डा, पीएम की यात्रा संकल्प की यात्रा। प्रधानमंत्री के जीवन का लक्ष्य सेवा और सुशासन, राजस्थान की जीत उनकी नीतियों का परिणाम। मोदी सरकार का ज्ञान मंत्र जेपी नड्डा ने समझाया, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के सशक्तिकरण का संकल्प। जेपी नड्डा का पोस्ट, लिखा डिजिटल भारत की बड़ी छलांग। 97 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन, डीबीटी से 53 लाख करोड़ रूपए सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे। किशाऊ बांध परियोजना पर ऐतिहासिक करार। अमित शाह की मौजूदगी में यूपी, राजस्थान समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किए मसौदे पर दस्तखत। वहीं गुरुग्राम हिट एंड रन केस में हरियाणा पुलिस का एक्शन जारी। पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। कार में मौजूद आरोपी लवनीश को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस के मुताबिक 34 साल के लवनीश पलवल की न्यू कॉलोनी का रहने वाला है और उसे इस पूरे मामले में नियमानुसार गिरफ्तार किया जा चुका है। पंजाब में बिजली कटौती के खिलाफ एसीडी आज से विधानसभा क्षेत्र स्तर पर करेगी प्रदर्शन, प्रशासन अलर्ट। पंजाब में ड्रग्स और सुसाइड केस पर भारी बवाल। चंडीगढ़ में सड़क पर उतरे कांग्रेस नेता सचिन पायलट, चन्नी और गहलोत। बीजेपी अकाली के निशाने पर भी सीएम भगवंत मान। सचिन पायलट की एंट्री के साथ पंजाब कांग्रेस में दिखी एकजुटता। आम आदमी पार्टी के खिलाफ किया प्रदर्शन। राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी केस में आज होगी सुनवाई। आपत्तियों और आगे की कार्यवाही पर फैसला। दिल्ली कैबिनेट ने आशा वर्कर्स के मासिक इंसेंटिव को दोगुना करने का फैसला किया। अब दिल्ली की आशा वर्कर्स को 3,000 की जगह 6,000 प्रति महीने मिलेंगे। योगी सरकार ने 23 अहम प्रस्तावों पर लगाई मुहर। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षा और रोजगार तक बड़े फैसले। नेपाल बाढ़ में लापता बिहारवासियों की पहचान के लिए परिजनों का होगा डीएनए टेस्ट। दुष्य सालियान मामले और मराठी भाषा को लेकर संजय राउत पर कस सरकार पर हमला, राजनीतिक साजिश का लगाया गया आरोप। सुशांत सिंह राजपूत और दुष्य सालियान केस में नए सिरे से जांच की मांग। नीरज सिंह बबलू बोले सामने आना चाहिए सच। दिल्ली में 10,000 छात्रों के लिए हॉस्टल बनाएगी सरकार। सीएम रेखा गुप्ता ने जमीन चिन्हित होने की दी जानकारी। दिल्ली में पीजी और कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने की तैयारी। स्ट्रक्चर, फायर सेफ्टी समेत सुरक्षा मानकों पर जोर। निर्मला सीतारमण की युवाओं से अपील, देश ने आपके लिए क्या क्या किया है, आप देश के लिए क्या कर सकते हैं ये सोचें। अयोध्या में पिता की स्मृति में मेमोरियल धर्मशाला बनाएंगे अमिताभ बच्चन। 20 से ज्यादा कमरे का होगा निर्माण। वहीं सम्राट कैबिनेट के 17 एजेंडों पर मुहर। मखाना विकास के लिए 79 करोड़ 80 लाख रुपए और विष्णुपद कॉरिडोर के लिए 2,520 करोड़ मंजूर। यूपी के प्रयागराज में समाजवादी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। समाजवादी नेता मर्डर केस में पुलिस सीसीटीवी खंगालने में जुटी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्यारोपियों की तलाश कर रही है। मृतक नेता ने नेता के कारोबारियों के मुताबिक वो कुछ लोगों से बात कर रहे थे। इस बीच हेलमेट लगाकर 3 बदमाश आए, उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। नेता की दिनदहाड़े हत्या पर मचा सियासी घमासान। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने भी प्रदेश की कानून व्यवस्था पर हमला बोलते हुए प्रशासन की मिलीभगत का आरोप लगाया। यूपी कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्ताव पास। बैठक में एथेनॉल प्लांट, अलीगढ़ में नई यूनिवर्सिटी की स्थापना, मकान किराए पर देने लेने की प्रक्रिया आसान करने और परिवहन विभाग से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी। मनोज अरांगे का मुंबई कूच, 19 सितंबर से आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन अनशन का ऐलान। मराठा मोर्चा पर बोले एकनाथ शिंदे, त्योहार के दौरान आंदोलनकारी मुंबई आने के फैसले पर करे पुनर्विचार। देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान, दिघी में 27,000 करोड़ से बनेगा देश का सबसे बड़ा पोर्ट, 90,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। पटना में बीपीएससी, बीएसएससी और दारोगा अभ्यर्थियों का बड़ा प्रदर्शन। जेपी गोलंबर पर बैरिगेटिंग तोड़ी गई, वहीं पुलिस से नोकझोंक के बाद विधानसभा कूच की कोशिश। नोएडा में करोड़ों की लागत वाला एलिवेटेड रोड अचानक से धंसा। 20 फीट लंबा और 10 फीट गहरा गड्ढा देखकर मचा हड़कंप। धारचूला के दोबाट में पहाड़ी से हुआ भारी भूस्खलन, नेशनल हाईवे में यातायात हुआ बंद। चमोली में भारी बारिश से हाईवे पर आया मलबा, गोपेश्वर चोपटा मंडल मार्ग बंद हुआ। गिर सोमनाथ में मूसलाधार बारिश से जल प्रलय जैसे हालात। ऊना और दीव में घरों में घुसा पानी। कच्छ में मूसलाधार बारिश से किसानों के चेहरे खिले। अंजार में 10 घंटे से 7.5 इंच बारिश। बेगूसराय में 15 दिन बाद भी बाढ़ का कहर, घरों से पानी निकला लेकिन सड़कों पर जलजमाव बरकरार। दिल्ली के आनंद विहार क्लब के बाहर फायरिंग में 2 लोग घायल हुए, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। दिल्ली में भारत नगर थाना क्षेत्र में सत्यवती कॉलेज के पास छात्रों के 2 गुटों में झड़प हुई, मामले की जांच जारी। इंदौर में 27 लाख रुपए लेकर फरार होने के आरोप में ड्राइवर गिरफ्तार, पुलिस ने 24 लाख से ज्यादा रुपए की बरामदगी की। जम्मू कश्मीर के भलेसा गंदों में एनएचएम कर्मचारियों की 72 घंटे की नई हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई, रखी गई मांग। समस्तीपुर में नशे के लिए पैसे को लेकर विवाद में बेटे ने पिता की हत्या कर दी, आरोपी फरार। बड़वानी के विभिन्न मांगों को लेकर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं का सड़क पर हुआ प्रदर्शन। मथुरा में 12 करोड़ की ज्वेलरी चोरी का 24 घंटे में हुआ खुलासा, 4 आरोपी किए गए गिरफ्तार। बिजनौर के जंगल में दंपति के शव मिले, जांच में पति द्वारा पत्नी की हत्या के बाद आत्महत्या की बात आई सामने। ग्रेटर नोएडा में 600 ग्राम ड्रग के साथ 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार, मामले की जांच जारी। मेरठ में क्लोरीन गैस रिसाव की सूचना से हड़कंप, कोई जनहानि की खबर नहीं। आजमगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार पेड़ से जाकर टकराई और पलट गई, 3 की मौत, 6 घायल। अहमदाबाद में एक थाने के अंदर मौजूद इलेक्ट्रिक रूम में पंखे से लटककर युवक ने सुसाइड किया, मामले की जांच जारी। नागपुर में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, 4 घंटे के अथक प्रयासों के बाद युवक का रेस्क्यू। मांडिया में भीषण सड़क हादसा, दूध टैंकर की टक्कर की वजह से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। फिरोजाबाद में दलित गर्भवती महिला की मौत पर हंगामा, समाजवादी पार्टी सांसद ने थाने में दिया धरना। एसएसपी ने 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। गाजियाबाद के लोनी में विधायक नंदकिशोर गुर्जर को गाली देने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रिश्तेदार के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, तस्वीर आई सामने। आगर मालवा में गणेश चतुर्थी पर प्रतिबंध के बावजूद मटन चिकन बेचने वालों पर प्रशासनिक कार्यवाही, जेसीबी से तोड़ी गई दुकानें। देवरिया में क्लास में गाली का विरोध करने पर 12वीं के छात्र की घेर कर पिटाई, कान पकड़कर सॉरी बुलवाया, 3 पर केस दर्ज। जालना में 6 साल की बच्ची से गलत हरकत करने पर भड़के लोगों ने आरोपी का तोड़ा घर, 60 साल के आरोपी को हिरासत में लिया। कटिहार में प्रतिबंधित चाइनीज थाई मांगुर मछली की 50 क्विंटल खेप जब्त, मत्स्य विभाग ने 3 लोगों को हिरासत में। मुंबई में गणपति उत्सव पर दिख रहे अलग अलग थीम वाले गणपति के सुंदर रंग, इसी कड़ी में ब्रिक्स समिट की थीम पर सजा बापा का दरबार। गणेश उत्सव की भव्यता के साथ देश की महत्वपूर्ण वैश्विक उपलब्धि का भी किया गया है सुंदर प्रदर्शन, लोगों के लिए बन रहा है आकर्षण का केंद्र। गणेश उत्सव पर पुणे के श्रीमंत दगड़ूशेठ मंदिर में दिखा विशेष उत्साह, महिलाओं ने किया गणेश अर्थशीर्ष का पाठ। वहीं पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में हुआ ये धार्मिक पाठ, करीब 35,000 से अधिक महिलाओं ने किया गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ। पुणे में गणेश उत्सव के दौरान विघ्नहर बप्पा का हुआ अलौकिक श्रृंगार, करोड़ों रुपए के सोने के गहनों से सजे विघ्नहर्ता। बप्पा के रंग में रंगा पूरा पुणे, महागणपति के मुक्त द्वार दर्शन उत्सव की भव्य शुरुआत। गणेश चतुर्थी पर उज्जैन के प्राचीन चिंतामण गणेश मंदिर में गणेश उत्सव की रौनक, भगवान को लगाया गया 1 लाख से ज्यादा लड्डुओं का महाभोग। वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में स्थापित की गई गणेश प्रतिमा, 200 साल जारी रहे शाही परंपरा। ढोल नगाड़ों के बीच राजमहल पहुंची बप्पा की मूर्ति। राजमहल के भव्य दरबार हॉल में राजवी परिवार की मौजूदगी में राजपुरोहित ने की पूजा अर्चना। राजगढ़ में 15 फीट ऊंचे चिंतामण गणेश मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। गणेश चतुर्थी पर हजारों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक, नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में मंथन। राम मंदिर निर्माण की प्रगति, संग्रहालय के विकास और पुरातात्विक अवशेषों पर होगी चर्चा। पुरी में सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार साहू ने बनाया नुआखाई जुहार सैंड एनिमेशन, महज 15 मिनट में तैयार की खूबसूरत कलाकृति। जैसलमेर पहुंची शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स, राजस्थानी परंपरा में हुआ देशी विदेशी सैलानियों का वेलकम। तिलक और फूल मालाओं के साथ सांस्कृतिक नृत्य के बीच हुआ शाही स्वागत। शाही ट्रेन में सवार 75 सैलानियों में 64 देशी और 11 विदेशी पर्यटक शामिल। पूरी आस्था और उमंग के साथ चारधाम यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू, लगातार रजिस्ट्रेशन करा रहे श्रद्धालु। चारधाम यात्रा के दूसरे चरण के लिए केदारनाथ धाम में हेली सेवाओं की दोबारा कर दी गई है शुरुआत। मानसून के दौरान खराब मौसम के कारण रोकी गई थी सुविधा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा पर वर्चुअल समीक्षा बैठक की। यात्रा के दूसरे चरण की तैयारियों का लिया जायजा। पैदल मार्ग पर चिड़वासा में गिर रहे पत्थरों की वजह से चुनौती बनी हुई है यात्रा। पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त होने से रोकनी पड़ी आवाजाही। बद्रीनाथ में करीब 17.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। हेमकुंड साहिब दरबार में भी 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका माथा। विनायक चतुर्थी के मौके पर तमिल स्टार विक्रम की अगली फिल्म का टाइटल आया सामने। मेकर्स ने टीजर जारी किया। करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन की मच अवेटेड फिल्म दायरा का नया प्रोमो आया सामने। दायरा में करीना और पृथ्वीराज पहली बार स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। फिल्म 18 सितंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। नयनतारा स्टारर मुथुन की मुकुति अम्मन 2 का टीजर राइज ऑफ महाशक्ति किया गया रिलीज। उत्तराखंड में फिल्म हनुमान अंश होगी टैक्स फ्री। सीएम धामी के आदेश पर राज्य कर विभाग को पत्र जारी किया। वहीं ईरान में उड़ान के दौरान एक विमान में जबरदस्त मची अफरा तफरी। विमान के टायर फटने और इंजन खराब होने की वजह से यात्रियों में चीख पुकार। स्पेहरान एयरलाइंस के विमान को मशहद वापस लाया गया। फिर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बोइंग 737 विमान में यात्री सवार थे। इंडोनेशिया के जंगलों की आग और धुंध से सांस संबंधी परेशानियां बढ़ी। लोग परेशान, सड़क पर दिखी धुंध की मोटी परत। भारत समेत 4 अन्य देशों पर 100% टैरिफ लगाने वाले बिल पर अमेरिकी हाउस में वोटिंग होगी कल। भारत संघ ट्रेड डील को न्यूजीलैंड की संसद ने दी मंजूरी। 95% भारतीय उत्पादों पर खत्म होगी टैरिफ की मांग।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 16 सितंबर 2026 दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, प्रातः 8:59 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र शाम के 5:22 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 10:49 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, करियर में अभी रुकावट रहेगी, पारिवारिक समस्या का ध्यान दें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

राशि, मानसिक स्थिति बेहतर रहेगी, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज

कर्क राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, ऑफिस की समस्या हल होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के

रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

योग हैं, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

का धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा

स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

पारिवारिक समस्या हो सकती है, चोट चपेट से बचाव करें, हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

अच्छा होता जाएगा, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। गणेश जी की उपासना करें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: भगवंत मान सरकार के खिलाफ ये कांग्रेस का आक्रोश है। ये प्रदर्शन है गुलजार सिंह की खुदकुशी के खिलाफ और उन्हें न्याय दिलाने के लिए। ये विरोध प्रदर्शन है पंजाब में नशे के खिलाफ। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता पंजाब कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट की अगुवाई में पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा के आवास का घेराव करने पहुंचे थे। हाथों में तख्तियां थी और जुबान पर तलखियां, लेकिन पंजाब प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जबरदस्त पानी की बौछार कर दी।
1: गुलजार सिंह सुसाइड केस को लेकर आज कांग्रेस बड़ा प्रोटेस्ट कर रही है और सचिन पायलट जो हैं वो, क्योंकि पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हैं, वो लीड कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग के ऊपर अमरिंदर सिंह, राजा वड़ेंग जो है खुद चढ़े हैं, जो पंजाब कांग्रेस के प्रधान है। एक बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये मार्च करना चाहते हैं हरपाल चीमा के घर की तरफ। इनकी मांग है कि संगरूर के में जो गुलजार सिंह का सुसाइड हुआ था उसमें जो है हरपाल चीमा के ऊपर एक्शन हो। आप देखिए काली झंडी जो है फेंक दी है राजा वड़िंग ने, और वाटर कैनन यहाँ पर यूज हो गया है। आप विजुअल्स में देखिए वाटर कैनन यहाँ पे चला दिया गया है ताकि ये आगे ना जा सके। बड़ी तादाद में यहाँ बैरिकेडिंग की गई, बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई, और जैसे ही अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े तो बैरिकेडिंग चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेडिंग की, जैसे ऊपर चढ़े चंडीगढ़ पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। आज संगरूर सुसाइड केस को लेकर कांग्रेस का बड़ा प्रोटेस्ट है चंडीगढ़ में, और आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह सचिन पायलट यहां पहुंचे, वड़िंग यहां पहुंचे, कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर यूनाइटेड होकर यहां पहुंचे पंजाब सरकार के खिलाफ, भगवंत मान के खिलाफ, हरपाल चीमा के खिलाफ। और यहां पर सिचुएशन किस तरह वाटर कैनन जो चंडीगढ़ पुलिस जो है वो यूज कर रही है।
0: खास बात ये रही कि लंबे समय बाद कांग्रेस के लगभग सभी प्रमुख नेता एक ही मंच पर एक साथ नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग सचिन पायलट के दोनों ओर बैठे नजर आए। बता दें कि पंजाब के संगरूर में गुलजार सिंह नाम के शख्स ने पंजाब में नशे की स्थिति पर चिंता जताई थी और पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल चीमा से सवाल किए थे। आरोप है कि उसके बाद से ही गुलजार सिंह पर माफी मांगने का दबाव बनाया जा रहा था, जिससे परेशान होकर उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। अब कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है और मान सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल रही है। असीम बस्ती, चंडीगढ़, आज तक।

जब हिंदुस्तान तेजी से विकसित भारत बनने की ओर बढ़ रहा है तो सितंबर के महीने ने आम आवाम पर महंगाई और यूपीआई ने डबल सितम ढा दिया है। खबर इसी गजट नोटिफिकेशन में, जिसमें सरकार ने 2007 के कानून की धारा 51 के 10(a) का जिक्र करते हुए खूबसूरती से कहा है कि 2000 रुपए के यूपीआई पेमेंट और रुपए डेबिट कार्ड पर कोई फीस नहीं लगेगी। हालांकि इसमें कहीं नहीं लिखा कि 2000 से ऊपर के ट्रांजेक्शन पर कोई फीस लगेगी, लेकिन विपक्ष ने सवाल उठा दिए। राहुल गांधी ने लिखा कि अब 2000 रुपए से ऊपर के मर्चेंट यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लगाया जा सकता है। इन ट्रांजेक्शन की संख्या भले ही सिर्फ 5% हो, लेकिन यूपीआई के कुल ट्रांजेक्शन वैल्यू का करीब 65% इन्हीं में है। जिस देश में रेहड़ी पटरी से लेकर दान दक्षिणा तक यूपीआई से लिए दिए जा रहे हों, वहां विपक्षी दल सवाल उठाने लगे कि अब 2000 से ज्यादा की यूपीआई ट्रांजेक्शन पर 0.3 से 0.5% के हिसाब से चार्ज वसूला जा सकता है। इसलिए कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है। महंगाई के मोर्चे पर भी आम आदमी की जेब के लिहाज से दो बुरी खबरें हैं। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त में थोक मूल्य आधारित महंगाई बढ़कर 9.92% हो गई, जो जुलाई में 9.78% थी। और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में खुदरा महंगाई दर जुलाई के 4.45% से बढ़कर 4.82% हो गई। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सरकार 7.28% की विकास दर का ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन देश की आवाम पिछले 4 महीनों से करीब 10% के आसपास की थोक महंगाई दर झेल रही है, जिसमें खाने पीने की चीजों, मैन्युफैक्चर्ड सामानों और ईंधन बिजली की महंगाई बढ़ती जा रही है। मसलन अगस्त में खाद्य महंगाई जुलाई के 6.65% से बढ़कर 7.05% हो गई, मैन्युफैक्चर्ड सामानों में 8.29% से बढ़कर 8.37% पहुंच गई। ईंधन और बिजली आधारित महंगाई 22.93% रही। उधर खुदरा महंगाई दर के आंकड़ों में भी एनएसओ ने बताया है कि अगस्त में खाद्य महंगाई दर ही 5.52% से बढ़कर 5.95% हुई है। दूसरी ओर सरकार की दलील है कि ईरान जंग और हॉर्मुज संकट के कारण सप्लाई चेन में आई परेशानी का असर भारत की इकोनॉमी और आम आदमी की जेब पर पड़ा है। हालांकि रिजर्व बैंक ने इस साल के लिए औसत खुदरा महंगाई दर का अनुमान 5% के आसपास ही रखा है, जिसमें दूसरी तिमाही के लिए 4.7%, तीसरी तिमाही के लिए 5.9% और चौथी तिमाही के लिए 5.5% का अनुमान लगाया है। और महंगाई दर को 2% से 9% की सीमा के अंदर बनाए रखने के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव भी नहीं किया है आज तक के रूप में।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

को मिल जाएगा रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैक्स लगाने का अधिकार। यूसीसी को अखिलेश यादव ने बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। बीजेपी पर साधा निशाना, बोले 15 लाख खाते में पहुंचाओ फिर यूसीसी लाओ। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी नेता की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार 3 बदमाशों ने मारी गोली। समाजवादी पार्टी ने यूपी की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। खाड़ी में खुला युद्ध का एक और मोर्चा, सऊदी अरब ने लगाया हुती पर पवित्र मक्का पर हमले का आरोप। भारत ने कहा बाब अल मंदेब के तेल रूट से गुजरना भी खतरे से खाली नहीं।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं खबरें रफ्तार से और विस्तार से। बिल्कुल सबसे पहले बुलेटिन की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। यूपीआई पर एमडीआर को लेकर क्यों मच रहा है सियासी घमासान, आपकी हर आशंका का मिलेगा जवाब बस अब से कुछ ही देर बाद। पीएम मोदी को जन्मदिन पर काशी के बुनकर देंगे यादगार गिफ्ट, क्या है वो गिफ्ट अब से कुछ ही देर बाद दिखाएंगे आपको। पश्चिम बंगाल में चर्चा का केंद्र बन गया है बेलूर बाजार, चाय पर चर्चा थीम पर तैयार किया गया है पंडाल। बुलेटिन के आखिरी हिस्से में दिखाएंगे ये खबर और ठीक आधे घंटे बाद 100 शहर 100 खबर। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करें अमेरिका से आ रही बड़ी खबर के साथ, क्योंकि भारत पर मंडरा रहा है अमेरिका से 100% टैरिफ का खतरा। जी हां, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में आज एक बिल पर मतदान होना है जिसमें भारत समेत 10 देशों पर 100% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। माना जा रहा है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में इस बिल को मंजूरी मिल जाएगी। इस बिल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह अधिकार देने की बात कही गई है कि वो रूस से तेल खरीदने वाले बड़े देशों पर 100% तक टैरिफ लगा सके। पिछले दिनों ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आए थे। कई जान अमेरिका के इस फैसले को इससे भी जोड़कर देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि पुतिन से दोस्ती को लेकर खफा अमेरिका ने बौखलाहट में कदम उठाया है। दरअसल 7 अगस्त को अमेरिकी सेनेट ने यही बिल जब पास किया था तो किसी देश का नाम नहीं था, सिर्फ रूस से तेल लेने वाले देशों की बात कही गई थी। लेकिन अब डेमोक्रेटिक सांसद स्टेनी हॉयर द्वारा पेश किए गए संशोधन में भारत चीन समेत 10 देशों का नाम जोड़ा गया है। रूस से तेल लेने वाले इन देशों पर 100% ड्यूटी लगाई जा सकती है। प्रणय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, जिस तरीके से 100% टैरिफ की बात की जा रही है, किन किन चीजों पर यह लग सकता है और इसका ओरिजिन कहां से, मतलब ये खबर कहां से जनरेट हुई है? जब ब्रिक्स समिट की शुरुआत हुई उसके बाद पुतिन और शी जिनपिंग इसमें शामिल हुए, उसके बाद से ही चर्चा तेज है?
1: नहीं, ये कहना तो थोड़ा सा ठीक नहीं होगा नेहा, क्योंकि ये लिंसे ग्राहम एक्ट जो है, जो कि अमेरिका के पूर्व सेनेटर थे साउथ कैरोलिना के लिंसे ग्राहम, उनकी मृत्यु के बाद में इस बिल का नाम जो कि सैंक्शन एक्ट था, क्योंकि वो इसके लिए लॉबिंग कर रहे थे, इसलिए इसका नाम लिंसे ग्राहम ईरान सैंक्शन एक्ट 2026 किया गया है। और ये अमेरिकी सेनेट में पारित हो चुका है और अब अमेरिकी प्रतिनिधि सभा जो है, अमेरिकन कांग्रेस जो है, उसके अंदर इसको पेश किया जाना है। बहुत हद तक संभावना है कि आज देर रात जो है भारतीय वक्त के अनुसार इस पर वोटिंग भी हो सकती है। अब देखना है कि अमेरिका का जो लोअर हाउस है वो इस पर किस तरीके की वोटिंग करता है और उसके बाद पास होने के बाद ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास जाएगा, उस पर वो मंजूरी देते हैं या नहीं देते हैं, उसके बाद ये तय होगा कि ये कानून में तब्दील होगा या नहीं होगा। तो ये इसकी जो पृष्ठभूमि है, आप देखें कि अमेरिका के अंदर इस समय मध्यावधि चुनाव जिसे मिड टर्म इलेक्शन कहा जाता है, वो राष्ट्रपति का तो नहीं है लेकिन अमेरिकी कांग्रेस अमेरिकी सीनेट के अंदर चुनाव होने हैं और शायद यही वजह है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो अब एक इलेक्टोरल पुश देने के लिए, चूंकि वो रूस के खिलाफ सख्त कार्रवाई के हामी है। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच में ये सवाल भी खड़ा होता, देखिए भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से होंगी कि अगर कोई नया टैरिफ लगता है तो उसके बाद फिर किस तरीके से इंपैक्ट होगा। इसमें केवल तेल या बाकी चीजें नहीं है, भारत से जो निर्यात अमेरिका को हो रहा है वो बड़ा व्यापक है, उसमें बहुत सारी चीजें उत्पाद आएंगे और वो जो ट्रेड डील है वो भी इंपैक्ट होगी इसके बाद, क्योंकि फिर एक नए सिरे से एक नए नंबर के ऊपर आपको नेगोशिएशन करना पड़ेगा जो नेगोशिएशन अभी चल रहा है। तो बहुत उलझी हुई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और लगभग एक साल बाद हम फिर उसी स्थिति पे पहुंच जाएंगे कि ना तो ट्रेड डील हो पाई है ना अभी जो हायर टैरिफ्स हैं उसकी स्थिति है, एक अनिश्चय की एक अनिश्चितता की जो स्थिति है वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन इसके साथ ही नेहा, मैं एक और चीज जोड़ना चाहता हूं यहां पे कि अमेरिका एक तरफ तो

0: के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, रूस से कारोबार करने वालों वाले देशों पर टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। वहीं आपको याद होगा कि ठीक एक साल पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अलास्का में बुलाया था, खुद अपने साथ अमेरिकी जो बिजनेस कंपनीज हैं और अमेरिकी जो जो एनर्जी कंपनीज हैं एग्जॉन मोबाइल समेत जो एनर्जी कंपनीज हैं उनके साथ में वो रूस के साथ कारोबार बढ़ाने की बात कर रहे थे और वहां बड़े बिजनेस डेलीगेशन के साथ राष्ट्रपति पुतिन भी पहुंचे थे और राष्ट्रपति ट्रंप भी पहुंचे थे। तो यार एक तरफ तो अमेरिका खुद रूस के साथ कारोबार बढ़ाना चाहता है, दूसरी तरफ वो दूसरे देशों के ऊपर उस पर पाबंदी लगा रहा है कि वो यूक्रेन की जंग जो है उसको फ्यूल कर रहे हैं, ये जो तेल खरीद है इसके कारण जो रूस यूक्रेन की जंग है वो नहीं रुक पा रही है। तो ये ऐसा लग रहा है कि फिलहाल अमेरिका की जो घरेलू राजनीति है उससे ज्यादा प्रेरित है बजाय कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के घटनाक्रम के।
1: इसके अलावा ये जो पूरा प्रोसेस है आप बता रहे हैं बहुत कॉम्प्लेक्स है, कब तक इसके पूरा होने की संभावना और इसका असर कब तक देखा जा सकेगा?
0: देखिए आज की वोटिंग के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, जैसे भारत में होता है कि संसद के दोनों सदनों से किसी भी बिल के पारित होने के बाद फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाता है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही फिर गजट नोटिफिकेशन और उसका उसके कानून में तब्दील होने की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है। लगभग वैसी ही स्थिति अमेरिका में भी है, अमेरिकी सीनेट इसे पारित कर चुकी है, अमेरिकी जो कांग्रेस है जो अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो इसे पारित करेगा और उसके बाद फिर जो है अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के एसेंट के लिए ये बिल जो है वो जाएगा और उसके बाद अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे मंजूरी देते हैं तब फिर टैरिफ का नोटिफिकेशन जारी होगा कि इन देशों के ऊपर क्या और कैसे टैरिफ लगाए जाएंगे, कितना टैरिफ होगा, क्योंकि इसके अंदर केवल भारत चीन का नाम नहीं है, इसके अंदर हंगरी भी है, इसमें अजरबैजान भी है, इसमें स्लोवाकिया भी है और अन्य देशों की भी के भी नाम इसके अंदर जोड़े गए हैं। ये फिलहाल लागू कब तक होगा इस बारे में कोई टाइमलाइन निर्धारित नहीं है क्योंकि ये तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मूड और मिजाज पर निर्भर करेगा कि वो कब इसके ऊपर दस्तखत करते हैं और कब इसे लागू करते हैं।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात आज की दूसरी बड़ी खबर की करेंगे, यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि एमडीआर लागू करने के फैसले का विपक्ष के विरोध के बीच आरबीआई का बयान आया है। आरबीआई ने एमडीआर का समर्थन करते हुए डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में इसे अहम कदम बताया। आरबीआई ने कहा कि व्यवसायों को आगे बढ़ने, नई सुविधाएं लाने और सेवाएं देने में इससे मदद मिलेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने कल एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक 15 अक्टूबर से यूपीआई में 2000 से ज्यादा पेमेंट पर 0.4% सरचार्ज लगेगा। फीस की मैक्सिमम लिमिट 300 रुपए तक की गई है। ये शुल्क ग्राहकों से नहीं कारोबारियों से लिया जाएगा।
2: ये कदम जो हमारे इंडिजिनस हमारे होम ग्रोन डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है उसको तबाह करने की दिशा में कर रहे हैं।
3: कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही है, किसी भी व्यक्ति को कॉमन मैन को कोई भी 2000 रुपए तक कोई चार्ज नहीं देना होगा, किसी कस्टमर को नहीं देना होगा।
4: यूपीआई के 2000 से ज्यादा के लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लागू करने के फैसले पर मचे सियासी घमासान के बीच आरबीआई का बयान सामने आया है। आरबीआई ने इस पर अपने बयान में कहा है, भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की लंबे समय की स्थिरता को मजबूत करने के दिशा में ये एक अहम कदम है। इससे यूपीआई को देश भर में ग्राहकों और व्यवसायों के लिए आगे बढ़ने, नई सुविधाएं लाने और सेवाएं देने में मदद मिलेगी। इकोसिस्टम में शामिल सभी लोगों के बीच एमडीआर का सही और उचित बंटवारा टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सेप्टेंस नेटवर्क में लगातार निवेश को बढ़ावा देगा। इसे यूपीआई को ज्यादा जगहों पर स्वीकार किए जाने, ग्राहकों की संख्या बढ़ाने और ट्रांजैक्शन की संख्या में लगातार बढ़ोतरी में मदद मिल सकती है। कमोवेश यही बात फोन पे के सीईओ समीर निगम भी कह रहे हैं।
5: पूरा इंडस्ट्री आगे साथ में बढ़ पाएगा, सबके लिए जो है बहुत क्रिटिकल था ये। एमडीआर के बिना जो है काफी तकलीफ हो रही थी पिछले खासकर की 3-4 साल से, वॉल्यूम इतना भाग रहा है, हम लोग को इतने सर्वर्स डालने पड़ रहे हैं और आजकल तो एआई के जमाने में भी और भी ज्यादा रिस्क हो गया, साइबर सिक्योरिटी पे बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। पेमेंट जो है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का, मेरे हिसाब से बिगेस्ट बेनिफिशियरी एक्चुअली अल्टीमेटली कस्टमर ही होगा, उनके लिए कल भी फ्री था आज भी फ्री है।
4: यूपीआई पर एमडीआर को लेकर घमासान सरकार के ताजा फैसले से शुरू हुआ। सरकार ने मंगलवार को 2000 रुपए से ज्यादा के भुगतान पर 0.4% शुल्क लगाने की घोषणा की। ये शुल्क कारोबारियों को किए जाने वाले यूपीआई भुगतान पर लगेगा।
6: नियम 15 अक्टूबर से लागू होगा। हालांकि खास बात यह है कि ग्राहकों से ये शुल्क नहीं लिया जाएगा। MDR केवल कारोबारियों के लिए देय होगा। साथ ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले भुगतान पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा। कांग्रेस इस फैसले को अमेरिका के दबाव में उठाया गया फैसला बता रही है।
2: क्या आप मुझे बताइए, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मजबूत कदम लगेगा आपको? ये कदम जो हमारे इंडिजिनस, हमारे होम ग्रोन डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है, उसको तबाह करने की दिशा में एक कदम है। क्योंकि अमेरिका को हमारा MDR रेजिम नहीं पसंद आ रहा था, अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा था, और हो सकता है हम अमेरिका के सामने कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं ये करके कि साहब हमने ब्रिक्स का समिट यहाँ ऑर्गेनाइज के लिए, हमें माफ कर दो, लो हम आपके लिए कर देते। ये वही है, उसके अलावा कुछ नहीं।
3: कांग्रेस पार्टी एक नाराज फूफा पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो ये कह रही थी कि इस देश का आम आदमी कभी डिजिटल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आज वही कांग्रेस पार्टी आम आदमी की बात उठाने का ढोंग कर रही है। सच्चाई की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात की मिर्ची लगी है कि हर व्यक्ति आज UPI का इस्तेमाल ग्लोबली और देश के अंदर हर भारतीय कर रहा है। कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही है। किसी भी व्यक्ति को, कॉमन मैन को, कोई भी 2000 रुपए तक कोई चार्ज नहीं देना होगा, किसी कस्टमर को नहीं देना होगा। 90% से ज्यादा ट्रांजैक्शंस UPI के लेस देन 2000 रुपीज में होते हैं।
6: भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट होता है। दूध, सब्जी, दवा खरीदना हो या ऑटो रेस्टोरेंट में भुगतान करना हो या फिर किसी को एक क्लिक में पैसे भेजना, UPI भारत के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, जिसमें बड़े दुकानदारों से लेकर रेड़ी पटरी वाले भी शामिल हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, अब 2000 रुपए से ऊपर के मर्चेंट UPI लेनदेन पर MDR लगाया जा सकता है। इन ट्रांजैक्शंस की संख्या भले ही सिर्फ 5% हो, लेकिन UPI के कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू का करीब 65% इन्हीं में है। सरकार कहती है कि ग्राहक से कोई फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन दुकानदार पर लगने वाली फीस आखिर आएगी कहां से? कीमतों में जुड़कर ग्राहक की जेब से। अमेरिकी पेमेंट कंपनियां लंबे समय से भारत की जीरो MDR नीति का विरोध करती रही हैं। अब मोदी सरकार ने ठीक उसी दिशा में नीति बदलने का रास्ता खोल दिया है।
7: अध्ययन करने के बाद ट्विस्ट कैसे किया जाता है मैटर को, इसी में निपुणता हासिल हो चुकी है कांग्रेस पार्टी को। मैन टू मैन ट्रांसफर निःशुल्क, मर्चेंडाइज बेस्ड है, वो मर्चेंट द्वारा है। ये चीज को जो बीच का थिन लाइन है, इसका ट्विस्ट करके ये लोग पेश कर रहे हैं।
6: ये बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भले ही जनता को 2000 रुपए तक के UPI पेमेंट पर कुछ भी नहीं देना होगा, लेकिन जिन दुकानदारों को देना होगा, क्या वो किसी दूसरी तरह जनता से ही नहीं वसूलेंगे? क्या वो कैश को बढ़ावा नहीं देंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या डिजिटल पेमेंट पर इसका असर नहीं होगा? आज तक ब्यूरो।
1: चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि UPI को लेकर क्या बदलाव होने वाले हैं। 15 अक्टूबर से चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शंस के लिए UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR का नया फ्रेमवर्क लागू हो जाएगा। UPI से 2000 से ज्यादा पेमेंट्स पर 0.4% चार्ज लगेगा। MDR का भुगतान ग्राहक नहीं, कारोबारी करेंगे। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होने वाला भुगतान भी फ्री होगा। 75,000 या उससे अधिक के लेन देन पर MDR अधिकतम 300 रुपए प्रति लेन देन होगा। आवश्यक सेवाओं के लिए फ्लैट MDR रखा गया है। रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, ईंधन, कृषि क्षेत्र में 2000 से अधिक के UPI भुगतान पर प्रति लेन देन 5 रुपए का फ्लैट MDR लगेगा। UPI QR कोड के जरिए हर महीने 1,00,000 तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों को P2PM श्रेणी में रखा गया है। सभी लेनदेन पर अनिवार्य रूप से 0 MDR का लाभ लेते रहेंगे। पीयूष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, विपक्ष को आखिरकार दिक्कत क्या है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि बड़े अमाउंट, बड़े ट्रांजैक्शंस पर ये लागू किया जा रहा है और चुनिंदा क्षेत्रों में है, तो इसमें इतनी प्रॉब्लम क्या हो रही है?
8: जी देखिए, इसमें कोई दोराय नहीं है कि जब भी कोई मुद्दा आता है तो उस पर राजनीति होती है और विपक्ष अपनी बात इसमें रखता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है, जिसमें विपक्ष का ये साफ कहना है कि ये इंडिजिनसली डेवलप्ड जो टेक्नोलॉजी इंडिया की है उस पर एक कुठाराघात है और सरकार ने पहले लोगों को इसकी लत लगाई और अब उनसे जो है वसूली शुरू कर दी। इस तरह की बातें विपक्ष के नेताओं के द्वारा की जा रही है, लेकिन इसमें समझने की जरूरत यह है कि पर्सन टू पर्सन, यानी मैं आपको और आप मुझको अगर पेमेंट करेंगे तो उससे उसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा। 2000 रुपए तक का चार्ज, तब 2000 रुपए तक कोई चार्ज नहीं है, 2000 के बाद चार्ज तभी लगेगा जब किसी मर्चेंट को पेमेंट की जाएगी। और ये बात सरकार कई बार साफ कर चुकी है कि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से एमडीआर यूपीआई पर नहीं था, और एमडीआर की अगर हम बात करें तो वो कई अलग अलग मोड ऑफ पेमेंट्स में है। आप डेबिट कार्ड से अगर पेमेंट करते तो उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड परसेंटेज रहता है, क्रेडिट कार्ड से भी करते उसमें भी रहता है, इसके अलावा और भी अलग जो मोड ऑफ पेमेंट्स है उसमें रहता है, लेकिन यूपीआई अब तक फ्री रहा। लेकिन अब जो हमारी बात इंडस्ट्री के लोगों से भी हो रही है, उनका ये मानना है कि इस पूरे सिस्टम को सेफ, सिक्योर और आगे इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर कैसे किया जाए उसको लेकर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को पैसा चाहिए, और इसी बात के इसी चीज को लेकर सरकार ने ये चार्ज लगाना शुरू किया है। पर्सन टू पर्सन पूरी तरह से फ्री है, सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए के बाद ही वो चार्ज लगेगा, और वो भी उन व्यापारियों को जिनको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। आम जनता पर इसका खासा असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी भी अगर हम बात करें आंकड़ों की तो 96% ट्रांजेक्शन पूरी तरह से फ्री रहेंगी, 4% पर ही चार्ज लगेगा, और फिक्स्ड अमाउंट जो है वो 300 कर दिया गया अगर 75,000 से ज्यादा भी अमाउंट का ट्रांजेक्शन होता है तो। लेकिन राजनीति इस पर लगातार जारी है।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब बात यूसीसी पर जारी टकराव की। 2069 से पहले सभी बीजेपी शासित राज्यों में समान नागरिक कानून यानी कि यूसीसी लागू करने का ऐलान गृहमंत्री अमित शाह ने किया। शाह के इस ऐलान पर सियासी घमासान है। कल एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव और एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए।
9: जब से गृहमंत्री अमित शाह ने 2029 से पहले सभी बीजेपी शासित प्रदेशों में यूसीसी यानी समान नागरिक कानून लागू करने का ऐलान किया है, देश में इसे लेकर नया सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस फैसले का विरोध करते हुए एक्स पर लिखा, जनता समझ रही है भाजपा जिस यूसीसी की बात कर रही है, दरअसल उसका फुल फॉर्म कुछ और है, यूसीसी यानी अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। यूसीसी पर जो बात अखिलेश कर रहे हैं वही बात ओवैसी ने कुछ अलग तरीके से कही।
10: देखिए, जब ये एक वीडियो मैं देखा हूँ, जब ये असेंबली में लाया गया था तो मुख्यमंत्री क्या नारा लगा रहे थे आपको याद है? वो उनका जो स्लोगन क्या था, वो क्या नारा लगा रहे थे, इस देश पे कौन राज करेगा? और वही फिर यूसीसी लेके आ रहे आप। उससे ये बात साबित हो गई कि यूसीसी इक्वालिटी के लिए नहीं लाया गया है, यूसीसी भारत के 18 करोड़ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए लाया गया है।
9: दूसरी तरफ संजय राउत ने यूसीसी को आरएसएस के एजेंडे से जोड़ा, आरोप लगाया कि चुनावी फायदे के लिए बीजेपी ने यूसीसी का मुद्दा उठाया है।
11: सब लोग मानते हैं कि देश में सबके लिए कानून होना चाहिए, लेकिन जब आप राजनीति करते हो समान नागरिक कानून के बारे में तो हमारा विरोध रहेगा। आप चुनाव के लिए राजनीति मत करिए, और ये करने के बावजूद भी अमित शाह देश के प्रधानमंत्री नहीं बने।
9: विपक्ष यूसीसी को लेकर बीजेपी की नीति और नियत को लेकर सवाल उठा रही है। यूसीसी को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ी टिप्पणी की है।
12: अगर आपके पास नंबर है तो पार्लियामेंट में लाइए, अलग अलग रियासतों से क्यों कर रहे हैं? और वैसे भी इनके खुद के एनडीए में हर कोई इससे सहमत है नहीं। खबरों के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड ने तो सीधे हाथ ऊपर किए और कहा ये बिहार में लागू नहीं होगा। तो अगर उनके खुद के लोग जो हैं इसके लिए तैयार नहीं हैं, वो कैसे ये कह सकते हैं कि ये पूरे मुल्क में लागू होना चाहिए?
9: कांग्रेस के नेता मानते हैं कि यूसीसी बीजेपी का सियासी हथकंडा है।
13: ऐसा है, देखिए, संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं उनके ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं और सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे को साधने के लिए। क्या फर्क पड़ रहा है यूसीसी से बताओ मुझे, कि निकाह नहीं होगा क्या हमारा? निकाह ही तो होगा, फेरे नहीं होंगे क्या? फेरे ही तो होंगे। क्या तमाशा बना रखा है, कुछ भी नहीं है।
9: विपक्ष के तमाम आक्षेपों को दरकिनार करते हुए बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि यूसीसी तो आजादी के बाद ही नेहरू जी को लागू करना चाहिए था।
14: तथाकथित आजादी मिला तो नेहरू जी को उसी समय कर देना चाहिए था,
15: हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, वोट बैंक के लिए अलग, यही तो हुआ।
9: आइए अब गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान दिखाते हैं जिस पर जुबानी जंग शुरू हुई है।
16: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
9: मोदी सरकार धारा 370, तीन तलाक कानून, वक्फ कानून जैसे बड़े फैसले ले चुकी है, अब यूसीसी की बारी है। लेकिन जिस तरह इसे लेकर एनडीए के कुछ घटक असहज हैं, क्या ये इतनी आसानी से हो पाएगा? आज तक ब्यूरो।
1: और अब बात गुरुग्राम हिटरनन मामले की, जहां हरियाणा पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी 34 साल का लवनीश है, जो पलवल की न्यू कॉलोनी का रहने वाला है। आरोप यह है कि गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर के वक्त लवनीश मुख्य आरोपी कार चालक कल्याण बैसला के साथ कार में ही मौजूद था। पलवल से ही कल मुख्य आरोपी कल्याण बैसला को गिरफ्तार किया गया था और अब ये दूसरी गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। और वहीं गुरुग्राम पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपी कल्याण बैसला ने महिला बाइक राइडर पर आपत्तिजनक कमेंट्स पास किए। गुरुग्राम ईस्ट के डीसीपी संदीप कुमार का बयान सुनिए।
17: विक्टिम ने बोला है कि उसने कुछ कमेंट पास किया है जब वो साइड में गाड़ी चला रहे थे, तो उसके आधार पर जो हमने इसमें 78 और 79 BNSB इजाद की है, इसमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि उसने जो टक्कर मारी है वो साइड से जानबूझ के मारी है, क्योंकि ऑलरेडी उनका आर्ग्यूमेंट हो चुका था और जो पीड़ित महिला है उन्होंने भी अपने कथन में यही अंकित करवाया है कि उन्होंने जान से मारने की नियत पे।
1: वहीं पीड़िता बाइक राइडर शिवानी चौहान ने कल पुलिस में अपना बयान दर्ज कराया है।
18: फॉलोअर्स जो है वो नहीं, देखिए उनका इंटरव्यू मैंने सुना, उनके लॉयर का इंटरव्यू सुना और जो भी उनके XYZ फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो काफी इंटरव्यू दे रहे हैं कि मैं विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हूँ और फॉलोअर्स के लिए कर रही हूँ और उनका जो भी गुरु है वो इतने शिक्षित हैं और आपको जानता ही कौन है, काफी सारी चीजें। देखिए इन चीजों से देखिए फर्क नहीं पड़ता, आप उनकी पर्सनालिटी बता रहे हैं कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। देखो गवार तो मैं भी नहीं हूँ, पढ़ी लिखी तो मैं भी हूँ, मैं भी एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मुझे कह रहे हैं कि आपको जानता ही कौन है। जो मेरा सिया वाला पेज है, देखो मेरे को कोई शौक नहीं था अपनी आइडेंटिटी रिवील करने का, इवन दोपहर तक जब तक मीडिया मेरे घर आके नहीं बैठी किसी को नहीं पता था सिया कौन है।
1: हिमांशु मिश्रा में सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, अब दूसरी गिरफ्तारी हो गई है, दो ही लोग उस कार में मौजूद थे या कोई तीसरा शख्स भी था?
19: देखिए अगर हम विक्टिम की बात माने तो उनका ये क्लियर कहना था कि पीछे बैठे हुए लोग थे लेकिन शीशे काले थे जिसकी वजह से वो देख नहीं पाई, जबकि कल्याण बैसला का ये कहना था जब आज तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी कि पीछे उनकी बहन बैठी थी, इस वजह से कोई गलत भाषा का इस्तेमाल वो कर ही नहीं सकते थे। अब पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, लोकेशन से तमाम CCTV फुटेज की जांच की जा रही है ताकि सही सही ये पता लग सके, क्योंकि क्लेम्स अपनी जगह है लेकिन एग्जैक्टली क्योंकि पीड़िता भी नहीं बता पाई कि पीछे कितने लोग थे और वो कौन थे, क्योंकि उन्होंने वजह बताई टिंटेड ग्लास थे, तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। चूंकि आगे बैठे दोनों लोग, जो कल्याण बैसला गाड़ी चला रहा था और उनका जो रिलेटिव है लवनीश, उसको भी पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया है, तो अब इस पूरे मामले को आगे जैसे बढ़ाया जा रहा है, इसमें महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पुलिस जो वीडियो वायरल हुआ तो जानबूझकर एक्सीडेंट किया गया, ऐसा पुलिस का भी अब मानना है उस वीडियो को देख करके, और यही वजह है कि धारा 109 जो BNS की है, अटेम्प्ट टू मर्डर की, वो जोड़ी गई। इसके अलावा पीड़िता ने यह भी कंप्लेन में अपने लिखा था, जब स्टेटमेंट दिया चाहे पुलिस के सामने, उसके बाद जब रिकॉर्ड करवाया मजिस्ट्रेट के सामने, कि उनके साथ गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया था, और यही वजह है कि ऐसी जुड़ी धाराओं को भी, BNS को भी इस पूरी FIR में जोड़ा गया है। और हिट एंड रन का मामला इसलिए पुलिस ने जोड़ा है क्योंकि आप देखिए एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के बाद वो गाड़ी रोकता नहीं है, आगे जाता है, गाड़ी रोकने की कोशिश होती है, बाकायदा एक बाइकर गेट को खोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन वहां से कल्याण बैसला आगे निकल जाता है। ठीक है, उसका कहना है कि मेरे साथ मारपीट हो सकती थी, लेकिन आप आगे किसी थाने में जाके सरेंडर कर सकते थे, आगे आप किसी पुलिस को बता सकते थे, 112 पे कॉल कर सकते थे, आप पलट के देख सकते थे कि एक लड़की जो बाइक से जा रही है वो गिरी है, उसको कितनी चोट लगी, आपने कुछ भी समझने की जानने की कोशिश नहीं की। तो अब पुलिस जो तमाम बाइकों में जो कैमरे लगे थे उनकी फुटेज ले रही है, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है, साथ ही साथ पूरे रूट का सीसीटीवी भी निकाल रही है। यही आप देखिए सेक्टर 56 थाना है, यहीं पर नेहा एफआईआर हुई है और यहीं के इंस्पेक्टर कल कालका जी पहुंचे थे और शिवानी का उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था और उसके बाद गिरफ्तार करके आरोपियों को पहले यहीं लाया गया था। अब जानकारी है कि पुलिस आज दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी और वहां पर अब तक जितना भी इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ भी पुलिस के हाथ लगा है वो तमाम सबूत सामने रखेगी।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात प्रयागराज की, जहां के हंडिया थाना क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के युवा नेता पवन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मंगलवार शाम बाइक सवार तीन अज्ञात हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। गोली लगने के बाद पवन यादव को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। पवन यादव एसपी के जिला सचिव और पूर्व प्रधान रह चुके हैं। पुलिस के मुताबिक मौके से सीसीटीवी फुटेज जुटाए गए हैं और हमलावरों की पहचान के लिए टीम्स लगाई गई हैं। फिलहाल किसी पारिवारिक रंजिश की आशंका जताई गई है, मामले में जांच जारी है।
20: व्यक्ति की बाइक पे सवार तीन अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारी गई है और उनके परिजन और उनके साथी जो साथ में थे उनको अस्पताल ले गए हैं। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और अस्पताल में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि उनकी मृत्यु अस्पताल में हुई। सीसीटीवी फुटेज कुछ प्राप्त किए गए हैं और भी इस संबंध में टीम गठन करके और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और इसका शीघ्र ही गुणदोष के आधार पर अनावरण किया जाएगा और विधिक कार्रवाई प्रचलन में लाई जाएगी।
21: वही इकलौते कमाने वाले थे, घर के पूरे खर्च कैसे चलेंगे, तीन तीन बहनें हैं इनकी, उनके पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह कौन करेगा। तो जब तक उचित मुआवजा नहीं दे दिया जाता है और इनके सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नहीं ले ली जाती है और अपराधियों को पकड़ा करके उनका इनकाउंटर नहीं कर दिया जाता है, तब तक हम लोग इस अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे।
1: और अब बात गणपति पंडाल को लेकर पश्चिम बंगाल में हुए विवाद की। कोलकाता के पास बेलूर बाजार के शिवचंद चैटर्जी स्ट्रीट पे हिंदू राष्ट्र की थीम पर गणपति पंडाल बनाया गया। पंडाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिद्धिदाता गणेश को एक साथ बैठे दिखाया गया है। दोनों के हाथ में चाय का कप है जिसे चाय पे चर्चा की थीम के तौर पर प्रस्तुत किया गया। तृणमूल कांग्रेस के मध्य हावड़ा के विधायक अरूप रॉय ने इस पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने पलटवार किया है। पंडाल के आयोजक ने इसे अपना निजी फैसला बताया।
22: तो इसको बोलते हैं अति उत्साह में एक आदमी ऐसा कर जाता है, उत्साह में, इसमें कोई वैसा कुछ गलत है नहीं। और बंगला में एक लाइन है, भक्ति ते भगवान अच्छे। तो बंगाल में एक सांस्कृतिक परंपरा रही है, दुर्गा पूजा पंडाल में भी हम लोगों ने बहुत रूप देखे हैं। दुर्गा पूजा पंडाल के बहुत ऐसे रूप हम देखते हैं, कभी ट्रेन एक्सीडेंट, कभी कुछ ऐसा रहा है। ये एक रिच हेरिटेज, रिच कल्चर का एक चीज़ है। तो उसी में भक्त अपने आस्था के साथ एक जो होता है ना उमंग में, अति उत्साह में, ऐसा उन्होंने मूर्ति में दिखाया कि मोदी जी गणेश जी के साथ हैं।
23: देखिए ये मेरा पर्सनल ये है बात है, तो मैं भी हिंदू हूँ तो हम यही चाहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र हो, मेरे घोषित हिंदू राष्ट्र हो। और मोदी जी राष्ट्र है और गणेश जी धर्म है, इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट किया है।
1: बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया है हेडलाइंस का।
24: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
25: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

वक्त होगा मजबूत, 15 अक्टूबर से नया नियम, विपक्ष ने उठाए सवाल। भारत पर मंडरा रहा है अमेरिका के 100% टैरिफ का खतरा, आज संशोधन प्रस्ताव पास हुआ तो ट्रंप को मिल जाएगा रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैक्स लगाने का अधिकार। यूसीसी को अखिलेश यादव ने बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी, बीजेपी पर सारा निशाना, बोले 15 लाख खाते में पहुंचाओ फिर यूसीसी लाओ। समाजवादी पार्टी नेता की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार 3 बदमाशों ने मारी गोली, समाजवादी पार्टी ने यूपी की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। खाड़ी में खुला युद्ध का एक और मोर्चा, सऊदी अरब ने लगाया हूती पर पवित्र मक्का पर हमले का आरोप, भारत ने कहा बाब अल मंदेब के तेल रूट से गुजरना भी खतरे से खाली नहीं।

0: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में विवाद के चलते दबंग पड़ोसी ने 70 साल के बुजुर्ग की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या की। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हिट एंड रन का मामला, युवक को कार ने मारी टक्कर, हादसे के बाद आरोपी गिरफ्तार। अरावली में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने पलटा रिक्शा, सड़क पर गिरी महिला गंभीर रूप से घायल, हादसा सीसीटीवी में कैद। मांडिया में भीषण सड़क हादसा, दूध टैंकर की टक्कर से एक ही परिवार के तीन की मौत, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। फिरोजाबाद में दलित गर्भवती महिला की मौत पर हंगामा, समाजवादी पार्टी सांसद ने थाने में दिया धरना, एसएसपी ने 6 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद गिरी दीवार, 4 गायों की मौत, मलबे में 3 मवेशी फंसे। दक्षिण कन्नड़ में आंगनवाड़ी फूड प्रोडक्शन सेंटर का फूड सेफ्टी विभाग ने किया निरीक्षण, मिलेट लड्डू के सैंपल जांच के लिए भेजे। हाथरस के नगला इमलिया में फायरिंग मामले में 4 गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में 1 घायल। पटना में शराब का बोझ खाने से 20,000 लोगों की बिगड़ी तबीयत, सभी अस्पताल में भर्ती। हैदराबाद में प्ले स्कूल में लगी आग, कोई जनहानि की खबर नहीं। धारचूला के दोबाट में पहाड़ी में हुआ भूस्खलन, नेशनल हाईवे में यातायात ठप। चमोली में भारी बारिश से हाईवे पर आया मलबा, गोपेश्वर चोपटा मंडल मार्ग बंद। गिर सोमनाथ में मूसाधार बारिश और जल प्रलय जैसे हालात, ऊना द्वीप के घरों में घुसा पानी। कच्छ में मूसलाधार बारिश से किसानों के चेहरे के लिए, अंजार में 10 घंटे में 7.5 मिलीमीटर बारिश। बेगूसराय में 15 दिन बाद बाढ़ का कहर, घरों से पानी निकला लेकिन सड़कों पर जल जमाव बरकरार। भोपाल में ओवैसी के काफिले का एक्सीडेंट, वीआईपी रोड पर आपस में टकराई गाड़ियां, 4 से 5 बाइक सवार हुए घायल। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया, हादसों के कारणों की जांच जारी, यातायात हुआ बाधित। ओवैसी का यूसीसी पर हमला, भोपाल में बोले गैर हिंदुओं पर हिंदू कानून थोप रही है सरकार। ओवैसी ने बीजेपी शासित राज्यों में मस्जिदों और कब्रिस्तानों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। वहीं सागर जहरीली शराब मामले में मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की। ओवैसी ने बीजेपी के स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा के विवादित बयान पर तीखा पलटवार किया, खुले मन से दी चुनौती। 2,000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर लगेगा चार्ज, रेलवे टेलीकॉम ईंधन जैसे चुनिंदा श्रेणियों पर 5 रुपए का शुल्क, 15 अक्टूबर से नया नियम होगा लागू। राहुल गांधी सरकार पर बड़ा हमला, कहा अमेरिका के प्रेशर में लग रहा है यूपीआई ट्रांजैक्शन चार्ज, बीजेपी ने कांग्रेस के दावे को बताया फर्जी। यूसीसी को अखिलेश यादव ने बताया अंडरग्राउंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, बीजेपी पर सारा निशाना, बोले 15 लाख खाते पहुंचाओ फिर यूसीसी लाओ। नीतीश से मुलाकात के बाद जेडीयू के रुख में बदलाव, यूसीसी पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी, हमारी पार्टी नहीं करेगी विरोध अगर प्रावधान हुए ठीक। सुल्तानपुर में यूसीसी को लेकर संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, बोले देश की धार्मिक विविधता के लिए खतरा। मोदी सरकार का ज्ञान मंत्र, जेपी नड्डा ने समझाया गरीब युवा अन्नदाता और नारी के सशक्तिकरण का संकल्प है ये। जेपी नड्डा का पोस्ट, लिखा डिजिटल भारत की बड़ी छलांग, 97 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन, डीबीटी से 53 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे। किशाऊ बांध परियोजना पर ऐतिहासिक करार, अमित शाह की मौजूदगी में यूपी राजस्थान समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किए मसौदे पर दस्तखत। गुरुग्राम हिट एंड रन मामले में हरियाणा पुलिस का एक्शन जारी, एक और आरोपी की गिरफ्तारी। पुलिस के मुताबिक 34 साल के लवनीश पलवल की न्यू कॉलोनी का रहने वाला है और उसे इस मामले में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। पंजाब में बिजली कटौती के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल आज से विधानसभा क्षेत्र स्तर पर करेगा प्रदर्शन, प्रशासन अलर्ट मोड पर। पंजाब में ड्रग्स और सुसाइड मामले पर भारी बवाल, चंडीगढ़ में सड़क पर उतरे कांग्रेस नेता सचिन पायलट, चन्नी और गहलोत, बीजेपी अकाली के निशाने पर सीएम भगवंत मान। सचिन पायलट की एंट्री के साथ पंजाब कांग्रेस में दिखी एकजुटता, आपके खिलाफ किया प्रदर्शन। राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी केस में आज होगी सुनवाई, आपत्ति और आगे की कार्रवाई पर फैसला। दिल्ली कैबिनेट ने आशा वर्कर्स के मासिक इंसेंटिव को दोगुना करने का फैसला किया, अब दिल्ली के आशा वर्कर्स को 3,000 की जगह 6,000 प्रति माह मिलेगा। योगी सरकार ने 23 अहम प्रस्तावों पर लगाई मोहर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षा और रोजगार तक बड़े फैसले। नेपाल बाढ़ में लापता बिहार वासियों की पहचान के लिए परिजनों का होगा डीएनए टेस्ट। दिशा सालियान मामले और मराठी भाषा को लेकर संजय राउत का सरकार पर हमला, राजनीतिक साजिश का आरोप। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस में नए सिरे से जांच की मांग, नीरज सिंह बबलू बोले सामने आना चाहिए सच। दिल्ली में 10,000 छात्रों के लिए हॉस्टल बनाएगी सरकार। सीएम रेखा गुप्ता ने जमीन चिन्हित होने की दी जानकारी। दिल्ली में पीजी और कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने की तैयारी। स्ट्रक्चर, फायर सेफ्टी समेत सुरक्षा मानकों पर जोर। निर्मला सीतारमण की युवाओं से अपील। देश ने आपके लिए क्या किया ये नहीं, आपने देश के लिए क्या कर सकते ये सोचे। अयोध्या में पिता की स्मृति में मेमोरियल धर्मशाला बनाएंगे अमिताभ बच्चन। 20 से ज्यादा कमरे का होगा निर्माण। सम्राट कैबिनेट के 17 एजेंडे पर मोहर। मखाना विकास के लिए 89,80,00,000 रुपए। विष्णुपद कॉरिडोर के लिए 2,520 करोड़ रुपए की मंजूरी। यूपी के प्रयागराज में समाजवादी नेता की गोली मारकर हत्या। प्रयाग सवार बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। समाजवादी नेता मर्डर केस में पुलिस सीसीटीवी खंगालने में जुटी। इस फुटेज के आधार पर हत्यारोपियों की तलाश कर रही है। मृतक नेता के करीबियों के मुताबिक वो लोगों से बातचीत कर रहे थे। इस बीच हेलमेट लगाकर 3 बदमाश आए, उन पर फायरिंग कर दी। नेता की दिनदहाड़े हत्या पर मचा सियासी घमासान। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर हमला बोला। यूपी कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्ताव पास। बैठक में इथेनॉल प्लांट, अलीगढ़ में नई यूनिवर्सिटी की स्थापना, मकान किराए पर लेने देने की प्रक्रिया आसान करने और परिवहन विभाग से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी। मनोज जरांगे का मुंबई कूच। 19 सितंबर से आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन अनशन का ऐलान। मराठा मोर्चा पर बोले एकनाथ शिंदे, त्योहार के दौरान आंदोलनकारी मुंबई आने के फैसले पर करें पुनर्विचार। देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान, दीघी में 27,000 करोड़ से बनेगा देश का सबसे बड़ा पोर्ट। 90,000 लोगों से मिलेगा रोजगार। पटना में बीपीएससी, बीएसएससी और दरोगा अभ्यर्थियों का बड़ा प्रदर्शन। जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग तोड़ी। पुलिस से नोकझोंक के बाद विधानसभा कूच की कोशिश, कई लोग हिरासत में। नोएडा में करोड़ों की लागत वाला एलिवेटेड रोड अचानक धंसा। 20 फीट लंबा, 10 फीट गहरा गड्ढा देखकर मचा हड़कंप। दिल्ली के आनंद विहार क्लब के बाहर फायरिंग से 2 लोग घायल, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। दिल्ली के भारत नगर थाना क्षेत्र में सत्यवती कॉलेज के पास छात्रों को के 2 गुटों में झड़प, मामले की जांच जारी। इंदौर में 27 लाख रुपए लेकर फरार होने के आरोप में ड्राइवर गिरफ्तार। 24.5 लाख रुपए पुलिस ने किए बरामद। जम्मू कश्मीर के भलेसा गंदों में एनएचएम कर्मचारियों की 72 घंटे की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित, रखी गई कई मांगे। समस्तीपुर में नशे के लिए पैसे को लेकर विवाद में बेटे ने पिता की हत्या की, आरोपी फरार। बड़वानी में विभिन्न मांगों को लेकर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं का सड़क पर प्रदर्शन। मथुरा में 12 करोड़ की ज्वेलरी चोरी का 24 घंटे में खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। बिजनौर के जंगल में दंपत्ति के शव मिले। जांच में पति द्वारा पत्नी की हत्या के बाद आत्महत्या की बात आई सामने। ग्रेटर नोएडा में 600 ग्राम ड्रग के साथ 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार, मामले की जांच जारी। मेरठ में क्लोरीन गैस रिसाव की सूचना, सरकम, कोई जनहानि की खबर नहीं। गाजियाबाद के लोनी में विधायक नंदकिशोर गुर्जर को गाली देने वाला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रिश्तेदार के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, तस्वीरें आई सामने। आगरमाला में गणेश चतुर्थी पर प्रतिबंध के बावजूद मटन चिकन बेचने वालों पर प्रशासनिक कार्रवाई, बुलडोजर से ध्वस्त की गई दुकानें। देवरिया में क्लास में गाली का विरोध करने पर 12वीं के छात्र को घेर कर पिटाई, कान पकड़कर सॉरी बुलवाया, 3 पर मामला दर्ज। जालना में 6 साल की बच्ची से गलत हरकत करने पर भड़के लोगों ने आरोपी का तोड़ा घर, 60 साल के आरोपी को हिरासत में लिया। कटिहार प्रतिबंधित चाइनीज थाई मांगुर मछली की 50 क्विंटल खेप जब्त, मत्स्य विभाग ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार में श्री राम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक नृपेन्द्र मिश्रा की अध्यक्षता में हुआ मंथन। राम मंदिर निर्माण की प्रगति, संग्रहालय विकास और पुरातात्विक अवशेषों पर होगी चर्चा। पुरी में सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार साहू ने बनाया नुआखाई ज्वार सैंड एनिमेशन। जैसलमेर पहुंची शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स, राजस्थानी परंपरा में हुआ देशी विदेशी सैलानियों का स्वागत। तिलक और फूलमालाओं के साथ सांस्कृतिक नृत्य के बीच हुआ शाही स्वागत। शाही ट्रेन में सवार 75 सैलानियों में 64 देशी और 11 विदेशी पर्यटक हैं। पूरी आस्था और उमंग के साथ चारधाम यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू, लगातार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं श्रद्धालु। चारधाम यात्रा के दूसरे चरण के लिए केदारनाथ धाम की अहली सेवाएं दोबारा शुरू की गई हैं। मॉनसून के दौरान खराब मौसम के कारण रोकी गई थी सुविधा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की वर्चुअल समीक्षा बैठक की। पैदल मार्ग पर चिड़बासा में गिर रहे पत्थरों की वजह से चुनौती बनी है यात्रा, पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त होने से रोकनी पड़ी आवाजाही। बद्रीनाथ में करीब 17.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। हेमकुंड साहिब दरबार में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। विनायक चतुर्थी के मौके पर तमिल स्टार विक्रम की अगली फिल्म का टाइटल आया सामने। मेकर्स ने टीजर किया जारी, फिल्म का नाम है पावर हाउस। रीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन की मच अवेटेड फिल्म दायरा का नया प्रोमो आया सामने। दायरा में करीना और पृथ्वीराज पहली बार स्क्रीन शेयर करते दिखाई देंगे। 18 सितंबर को सिनेमाघर में रिलीज होगी। नयनतारा स्टार और मुकुटी अम्मन 2 का टीजर राइज ऑफ महाशक्ति लॉन्च। टीजर में पौराणिक अतीत से लेकर मुश्किल भरे वर्तमान तक कहानी की झलक। यमन में अल जौफ के पूर्वी हिस्से में हुती लड़ाकों और विरोधी बलों के बीच हुई मुठभेड़, तस्वीरें आई सामने। ईरान में उड़ान के दौरान एक विमान में जबरदस्त अफरा तफरी, विमान के टायर फटने और इंजन खराब होने की खबर से यात्रियों में चीख पुकार। सेपे हरान एयरलाइंस के विमान को मशहद वापस लाया गया, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बोइंग 737 विमान में यात्री सवार थे। इंडोनेशिया के जंगलों में आग और धुंध से सांस संबंधी परेशानियां, लोग परेशान। सड़क पर दिखी धुंध की मोटी परत। भारत समेत 4 अन्य देशों पर 100% टैरिफ लगाने बिल पर अमेरिकी हाउस में वोटिंग कल होगी। भारत संघ ट्रेड डील को न्यूजीलैंड की संसद ने दी मंजूरी। 95% भारतीय उत्पादों पर खत्म होगी टैरिफ की मार। बात क्रिकेट की। भारत ने दूसरे T20 मुकाबले में अफगानिस्तान को 7 विकेट से राखा। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है। 160 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 14.5 ओवर में 3 विकेट पर 163 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया।
1: टीम इंडिया ने फिर एक बार अफगानिस्तान को करारी शिकस्त दी है। भारत ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने उतरी टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के स्कोरबोर्ड पर 159 रनों पर ही ब्रेक लगा दिया। 20 ओवरों में अफगानिस्तान के 8 विकेट चटका दी। नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 ओवर में सिर्फ 24 रन देकर 3 विकेट झटके। अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए। बुमराह, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई को 1-1 विकेट मिला। जवाब में इब्राहिम चदरान ने टीम के लिए 37 रन जोड़े। वहीं रशीद खान ने 16 गेंदों पर 28 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। 159 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने पहले विकेट के लिए 88 रनों की साझेदारी की। सैमसन ने अपना तूफानी अंदाज दिखाते हुए सिर्फ 22 गेंदों में 7 चौके और 4 छक्कों की मदद से 57 रन बना डाले। तो वहीं अभिषेक ने भी 19 गेंदों पर 39 रन ठोककर अपने तेवर दिखा दिए। इस रेस में ईशान किशन भी पीछे नहीं हटे। ईशान ने नाबाद 38 रन बनाकर टीम को जीत के करीब पहुंचाया। भारत ने महज 14.5 ओवर में 163 रन बना डाले और साथ ही 7 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने सीरीज पर 2-0 की मजबूत पकड़ बना ली है। लेकिन अब सबकी निगाहें तीसरे मुकाबले पर होंगी। अगर इंडिया आखिरी मैच को जीतकर अपने नाम कर लेती है तो भारत के पास क्लीन स्वीप करने का सुनहरा मौका है।
0: 9 बज गए। मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एक तो एक श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते
2: पापा।
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ, ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
9: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
10: लायन डेट नट बाइट्स।
11: SBI Celebrations Unlimited. Ye Ganeshotsav banega special with festive offers on car loan, gold loan, personal loan and loan against mutual funds.
12: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
13: जीके मैक्स।
14: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
13: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी?
14: जेके वॉल मैक्स।
13: बेस्ट पेंट?
14: जेके मैक्स।
13: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
15: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
16: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
17: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
18: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
19: EU
20: सोच बदलो और बैंक भी।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: इसमें कहीं दो मत नहीं है, आज तक का यहां तक प्रश्न है। एक बहुत ही क्रेडिबल मीडिया ग्रुप के रूप में इसने अपनी साख बनाई है मीडिया जगत में, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि आज देश की सुरक्षा को लेकर यहां पूरे दिन चिंतन और मंथन हुआ है। मैं टीवी टुडे की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं।

मुंबई की माया नगरी में गणपति बप्पा की भक्ति में डूबे सितारे बप्पा के दर्शन के लिए सलमान खान अपने भाई सोहेल खान के घर पहुंचे, तो बॉलीवुड के कई सितारों ने अपने अपने घरों में गणपति का स्वागत किया। एंटीलिया में अंबानी परिवार के गणपति महोत्सव में भी सितारों का जमावड़ा लगा, जहां बप्पा के दरबार में फिल्मी दुनिया की कई मशहूर हस्तियां पहुंची। नाना पाटेकर ने भी घर पर विधि विधान से बप्पा की स्थापना की। वहीं गोविंदा के घर गणपति उत्सव में दिखी आस्था और परिवार की परंपरा के साथ पूजा अर्चना। नील नितिन मुकेश ने परिवार के साथ पूजा अर्चना कर बप्पा का आशीर्वाद लिया। वहीं सचिन तेंदुलकर के घर भी गूंजे गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। अनन्या पांडे, तुषार कपूर, सोनू सूद, रश्मिका मंदाना, रामचरण और शिल्पा शेट्टी, हर किसी का घर बप्पा की भक्ति में डूबा नजर आया। चेहरों पर आस्था, घरों में उत्सव और हर ओर बस एक ही गूंज, गणपति बप्पा मोरिया। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: ईरान में उड़ान के दौरान एक विमान में जबरदस्त अफरा तफरी मच गई। ईरान के कैमरान शाह जा रहे बोइंग 737 विमान में कई यात्री सवार थे, अचानक विमान की टायर फटा और इंजन में खराबी आ गई। उसके बाद विमान के केबिन की छत भी टूटने लगी, सामान नीचे गिरने लगा। इसे देखकर यात्री खौफ में आ गए। हादसे के बाद सभी यात्री प्रार्थना करते दिखाई दिए, विमान के क्रैश होने के डर से सहम गए थे। बाकी छोटे से ब्रेक का उछला है, अब बने रहिए हमारे साथ, टिकते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: खैबर के सीएम को किसने किया अगवा? हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के पीछे किसकी साजिश? इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर मचा बवाल। मुनीर और शहबाज शरीफ के जुल्म पर उठे सवाल। लाहौर की सड़कों पर हो रहा ये ड्रामा पाकिस्तान की बेशक एक नई सियासी तस्वीर हो, लेकिन नीति और नियत तो वही पुरानी है। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि पिछले 24 घंटों में लाहौर में ऐसा क्या बवाल हो गया जिससे एक राज्य के मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में इसे लेकर बवाल हो गया है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 27 सितंबर को इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। पीटीआई ने 3 साल से जेल में बंद इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर इस्लामाबाद मार्च बुलाया है और राजधानी में बड़ी तादाद में लोगों को जुटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इसे देखते हुए इस्लामाबाद और पंजाब में सुरक्षा इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है और हर दूसरे दिन पीटीआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में लाहौर में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी पहुंचे थे। देर शाम रोड शो के दौरान अफरीदी को लाहौर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरोप है कि पुलिस कई घंटों तक उन्हें गाड़ी में बैठाकर सड़कों पर घुमाती रही। गाड़ी के अंदर से ही बनाए गए वीडियो में आरोप लगाया जा रहा है कि पंजाब में खैबर के सीएम को अगवा कर लिया गया है।
2: एक सीएम केपी को अगवा कर लिया गया, ये देखिए सीएम केपी को अगवा कर लिया गया पंजाब, मरियम नवाज ने, शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने, ये देखिए ये सीएम केपी को अगवा कर लिया गया, इनको शर्म नहीं आ रहा है, इनको शर्म को अगवा कर लिया। ये देखिए पंजाब पुलिस ने सीएम को अगवा कर सीएम केपी सीएम सोहेल अफरीदी को अगवा कर लिया।
1: सीएम के साथ बैठा शख्स पुलिस की गाड़ी के पीछे आ रहे बाइक सवारों को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि सीएम को अगवा कर लिया गया है। आरोप ये भी लगाया गया कि बाद में ऊपर से दबाव बढ़ा तो पुलिस ने सोहेल अफरीदी को सड़क किनारे उतार दिया। घंटों तक लाहौर की सड़कों पर ये सियासी ड्रामा चलता रहा। पीटीआई के कार्यकर्ता इकट्ठा होते रहे और मरियम सरकार को कोसते रहे। पीटीआई लगातार ये आरोप लगा रही है कि पंजाब की मरियम नवाज सरकार अपने पिता नवाज शरीफ और चाचा शहबाज शरीफ की तरह बदले की भावना से काम कर रही है, इसीलिए उनकी पुलिस ने एक सीएम को अगवा कर 3 किलोमीटर तक गाड़ी में घुमाया और लक्ष्मी चौक के पास सड़क पर उतार दिया। अभी कुछ दिन पहले ही मरियम नवाज ने आरोप लगाया था कि पंजाब को पड़ोसी देशों से नहीं अपने पड़ोसी राज्यों से खतरा है, जिनमें खैबर का भी नाम लिया गया था। खैबर और पंजाब के बीच ये सियासी जंग अभी और तेज होने वाली है क्योंकि अगले 10 दिन तक इमरान खान की पार्टी हजारों लोगों को पंजाब में जुटाकर इस्लामाबाद मार्च की तैयारी करेगी और इन हालात में पंजाब पुलिस का हर एक्शन पाकिस्तान में सियासी रिएक्शन का काम करेगा। आज तक ब्यूरो।

0: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोहिया ट्रस्ट की जिम्मेदारी संभाल रहे शिवपाल सिंह यादव से कार्यभार वापस ले लिया है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि पिछले दिनों हुई ट्रस्ट की बैठक में सभी 8 ट्रस्ट सदस्यों ने अखिलेश यादव को ट्रस्ट का कार्यभार सौंपने का फैसला किया, लेकिन जिस तरह 9 साल से ट्रस्ट का कामकाज देख रहे शिवपाल सिंह यादव को चुनाव के एंड पहले हटाया गया, उससे लेकर सियासी हमले शुरू हो चुके हैं। दरअसल अब अखिलेश यादव के पास पार्टी के साथ ही साथ लोहिया ट्रस्ट और जनेश्वर मिश्र की पूरी कमान आ चुकी है, जबकि 2017 में परिवार में हुए विवाद के दौरान मुलायम सिंह यादव ने प्रोफेसर रामगोपाल यादव को हटाकर शिवपाल यादव को इस ट्रस्ट की जिम्मेदारी दी थी। जिस लोहिया ट्रस्ट का गठन समाजवादी पार्टी की स्थापना से भी पहले हुआ था, समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना और पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करना भी है। इस बदलाव को लेकर यूपी के सियासी गलियारों में शुरू हुई एक नई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक आने वाले समय में अखिलेश यादव अपनी बेटी को ट्रस्ट की जिम्मेदारी दे सकते हैं। हालांकि राजनीतिक हलकों में इसे अखिलेश का पावर सेंट्रलाइजेशन प्रैक्टिस माना जा रहा है, क्योंकि जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट के अलावा लोहिया ट्रस्ट के अध्यक्ष बनने के बाद अखिलेश ने समाजवादी विचारधारा से लेकर चुनावी सीजन में फंड तक का पूरा इंतजाम अपने अख्तियार में करने का फैसला किया है, ताकि पार्टी के अंदर सत्ता के दो केंद्र की गलतफहमी ना जाए।
1: फिलहाल विपक्ष अब इस मामले में समाजवादी पार्टी को घेरने में कोई मौका नहीं छोड़ रहा है और ले जा रहा है उस दौर में 2017 में जहां चाचा और भतीजे की तमाम चीजें सबके सामने आई थी। बीजेपी कुल मिलाकर इसे सियासी द्वंद बता रही है और चुनाव से पहले कुल मिलाकर पूरा पुरजोर तरीके से समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़े करने की कोशिश, जबकि समाजवादी पार्टी जो है इसे एक आंतरिक और सर्वसम्मति से लिया गया फैसला बता रही है। अब देखना यह है कि चुनाव से कुछ दिन पहले लिया गया ये निर्णय क्या संगठनात्मक तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए कुछ रंग लाता है, या फिर बीजेपी के आरोप कहीं ना कहीं लोगों के दिमागों में और दिलों में घर करेंगे, ये वक्त बताएगा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

किया बचाव, कहा मिलने वाले पैसे से तकनीक और नेटवर्क होगा मजबूत। 15 अक्टूबर से नया नियम, विपक्ष ने उठाए सवाल। भारत पर मंडराया अमेरिका के 100% टैरिफ का खतरा, आज संशोधन प्रस्ताव पास हुआ तो ट्रंप को मिल जाएगा रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैक्स लगाने का अधिकार। यूसीसी को अखिलेश यादव ने बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कंस्पिरेसी, बीजेपी पर साधा निशाना, बोले 15 लाख खाते में पहुंचाओ फिर यूसीसी लाओ। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के नेता की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार 3 बदमाशों ने की फायरिंग, 3 आरोपी गिरफ्तार, यूपी की कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने उठाए सवाल। खाड़ी में खुला युद्ध का एक और मोर्चा, सऊदी अरब के इलाकों पर हूती के हमले, मिस्र से मांगी मदद, लाल सागर का आसमान धुआं धुआं, बाबल मंदेव के तेल रूट पर भी खतरा।

नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर से हाजिर है। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आज क्या क्या खास है। आगे बात होगी यूपीआई पर चार्ज को लेकर सवाल की, सियासी उबाल की, बताएंगे कि आखिर विपक्ष क्यों सरकार के नोटिफिकेशन को बता रहा है वसूली, और सरकारी अधिसूचना में आखिर है क्या। बात होगी विवादों के एक और यू फैक्टर यूसीसी की, जिसे लेकर सियासत आसमान पर है। गृह मंत्री ने 2029 का दांव चला और यूपी तक सियासी तनाव हो गया। साथ ही बात होगी सात समंदर पार के 100% वाले टैरिफ की, बताएंगे कि आखिर क्यों रूस के तेल को लेकर ट्रंप ने एक नया खेल शुरू कर दिया है। तो ये सारी बातें होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से जो मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां यूसीसी पर भी जुबानी जंग तेज है। आपको बता दें कि भोपाल में यूसीसी के विरोध में हुई सभा के दौरान AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा को सीधी चुनौती दे दी है। रामेश्वर शर्मा ने 4 सितंबर को जन्माष्टमी के कार्यक्रम में एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भोपाल के करोंद इलाके से अकाजी कैंप की तरफ मिसाइल दागेंगे। कल बारी ओवैसी के पलटवार की थी। उन्होंने रामेश्वर शर्मा को चुनौती देते हुए कहा, अगर उनमें दम है तो बताएं कि मिसाइल कब लॉन्च करेंगे। ओवैसी ने कहा कि वो अकेले अकाजी कैंप में खड़े हैं और ऐसी धमकियों से डरते नहीं है। ओवैसी ने काजी कैंप के इतिहास का जिक्र करते हुए वहां के उन लोगों का भी नाम लिया, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान भी दिया था।

0: तो पहले देखिए कि बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का मिसाइल दागने वाला वो बयान क्या था जिस पर ओवैसी को आया गुस्सा।
1: मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, जब हिंदुस्तान में लोग कहते थे सुई बनाना नहीं जानते तो मोदी जी ने कहा कि हम मिसाइल बनाएंगे। जैसे तुम करौत के चौराहे पर खड़े होकर मिसाइल लगाओ और काजी कैंप पे गिरा दो, वैसे ही। अरे मैंने यहाँ का काजी कैंप नहीं बोला, इस्लामाबाद वाला बोला था।
2: ये कोई रामेश्वर शर्मा साहब का बयान सुना, क्या बोले? मैं मिसाइल लॉन्च करूंगा करौत स्क्वायर से काजी कैंप पर। रामेश्वर शर्मा, अगर तुम मई के लाल हो
0: सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह का, जिनके साथ खुद रामेश्वर शर्मा इस वक्त मौजूद है। सीधा उन्हीं का रुक करते हैं, तो चुनौती का क्या जवाब दे रहे हैं रामेश्वर शर्मा?
3: बिल्कुल अंजलि, और एक्सक्लूसिव आज तक पर सबसे पहले बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है विधायक रामेश्वर शर्मा, जो कि विवादों में शुरू से रहे हैं इस पूरे बयान को लेकर, जिसके बाद पलटवार हुआ असदुद्दीन ओवैसी का। तो उन्होंने कल जो आपके लिए कहा है, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है और जिस तरीके से चुनौती दी है, आपको स्वीकार करते हैं?
4: देखिए, मैं एक तो ओवैसी को यह बता देना चाहता हूं कि बैरिस्टर होने के नाते अगर सही भाषा का इस्तेमाल करोगे तो ठीक है। जो भाषा का इस्तेमाल आपने मेरे लिए किया है वो भाषा का इस्तेमाल मैं आपके लिए भी कर सकता हूं। और इतने ध्यान रखना कि भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा और भारत की सरकार प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाई गई मिसाइल और ऑपरेशन सिंदूर में दागी गई मिसाइल से केवल इस्लामाबाद में बैठे हुए जो है आतंकवादी और वहां की सरकार ही परेशान नहीं है, भारत में जिन्ना की औलादें भी परेशान है। वो चाहते हैं कि भारत में भी आतंकवाद और नक्सलवाद पनपता रहे, और इसलिए अब भारत की सरकार ने उन कैंपों को निशाना बनाएगी और भारत की सेना उन कैंपों को निशाना बनाएगी जो भारत के खिलाफ अलगाववाद और आतंकवाद पैदा करते हैं। इसलिए ओवैसी, कान खोलकर सुन लेना, संविधान की मर्यादा का पालन करो। जिस भाषा का आपने इस्तेमाल किया इस भाषा का हम भी जवाब दे सकते हैं। हाँ, यूसीसी हिंदुस्तान में लागू होगी, भोपाल मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार ने लागू किए। माननीय गृह मंत्री का जो स्टेटमेंट है अमित शाह जी का वो सही है, हम 2029 तक भारत के 21 प्रदेशों में यूसीसी लागू करेंगे, क्योंकि आप तुष्टिकरण की नीति अपनाते हो, आप जो है मुस्लिम बेटियों के साथ हलाला जैसा घिनौना कृत्य का समर्थन करते हो, आप मुल्ला और मौलवियों को बढ़ावा देते हो, आप चाहते हो कि भारत की बेटी का अपमान होता रहे, आप चाहते हो कि भारत की बेटी को तलाक तलाक कहकर फोन और मोबाइल पर उससे शादी

0: विच्छेद कर दिया जाए। नहीं जी साहब, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले तीन तलाक का कानून बनाया, अब हलाला जैसे पाप को भी हम बंद करेंगे।
1: लेकिन रामेश्वर जी, आपने जो कहा था वो आपको नहीं लगता विवादित था? मतलब भोपाल के भोपाल में ही आप काजी कैंप में मिसाइल गिराने की बात?
0: मैंने जो पूरा कहा था पूरा सुनना चाहिए बैरिस्टर को, और सबको पूरा सुनकर चलाना चाहिए। मैंने जो कहा था मैं उस पूरे बयान पर आज

0: से ओबीसी छाती पीटने से कुछ मतलब नहीं है। आप ये घबराने की कोशिश मत करो, आप एक कान खोलकर सुन लो कि भारत में अब दूसरा जिन्ना पैदा नहीं होगा। आप कांग्रेस की बी टीम बनकर केवल हिंदू और मुसलमानों के झगड़ा करना चाहते हो। आप हिंदुस्तान के बाबा साहब अम्बेडकर के कानून को चुनौती देना चाहते हो। आप बाबा साहब अम्बेडकर की भावना का सम्मान नहीं करना चाहते, और इसलिए जैसा राहुल गांधी कर रहे हैं वैसा ही आप कर रहे हो। लेकिन हम भारत सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने क्लियर कह दिया है, हम आतंकवाद पैदा नहीं होने देंगे, हम नेक्सलाइट पैदा नहीं होने देंगे। जहां भी पैदा होंगे हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर राहुल पिंडी और इस्लामाबाद भी आतंकवाद के कैंप चलाए जाएंगे तो वो कोई भी कैंप हो उसमें मिसाइल दागी जाएंगी।
1: काजी कैंप आने की चुनौती दे तो रहे हैं आपको।
0: कौन सा काजी कैंप? जाओ काजी कैंप में कौन ना मना किया है? अरे ध्यान रखिए, वसुदेव कुटुंबकम की है। हम भी हैदराबाद में आएंगे, हैदराबाद तुम्हारे बाप का नहीं है। हैदराबाद वो है जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नवाब को रात को बुलाया कि सुबह दस्तखत कर दो, इसे मेरे हिंदुस्तान में मिलाया जाएगा। बदतमीजी की तो कल इलाज कर दूंगा। और इसलिए हैदराबाद भी आएंगे हम, पूरा हिंदुस्तान हमारा है। और यहाँ की तो छोड़िए, एक दिन हम लाहौर कराची पर भी देश का तिरंगा फहराकर भारत के स्वाभिमान का झंडा गाड़ेंगे। आपकी ना अब यूसीसी का विरोध चल पाएगा और ना आप नए जिन्ना बन पाएंगे। आप और कांग्रेस मिलकर जो बी कांग्रेस की बी टीम बनकर मध्य प्रदेश में हिंदू मुस्लिम तनाव करना चाहते हो, हम इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं।
1: तीखी प्रतिक्रिया दी है, पलटवार दोनों तरफ से हो रहा है अंजलि। तो पहले रामेश्वर शर्मा का, फिर ओबीसी का, और अब एक बार फिर से रामेश्वर शर्मा सामने आए हैं चुनौती स्वीकार करते हुए।
2: जी बिल्कुल, तेवर उनके फिर से कायम है, शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। तो समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पर बीजेपी और विपक्ष के बीच सियासी तकरार तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने के 2029 से पहले बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने के ऐलान के बाद विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने यूसीसी की नई फुल फॉर्म बताकर तंज कसा है, तो ओवैसी संजय राउत और उमर अब्दुल्ला ने भी इसके प्रावधानों और बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि यूसीसी का मुद्दा बीजेपी का सियासी एजेंडा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि समान नागरिक कानून आजादी के बाद से लंबित है और इसे लागू करना जरूरी है। तो यूसीसी का विवाद पुराना है, बीजेपी ने हमेशा से चुनावी मुद्दा इसको बनाया है। अब सरकार में है तो कानूनी मुहर लगाने की कवायद भी तेज हो गई है। अमित शाह ने 2029 का लक्ष्य रखा है, लेकिन सियासत 2027 यूपी चुनाव को लेकर उबल पड़ी है।
3: जब से गृह मंत्री अमित शाह ने 2029 से पहले सभी बीजेपी शासित प्रदेशों में यूसीसी यानी समान नागरिक कानून लागू करने का ऐलान किया है, देश में इसे लेकर नया सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस फैसले का विरोध करते हुए एक्स पर लिखा, जनता समझ रही है, भाजपा जिस यूसीसी की बात कर रही है दरअसल उसका फुल फॉर्म कुछ और है, यूसीसी यानी अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। यूसीसी पर जो बात अखिलेश कर रहे हैं वही बात ओवैसी ने कुछ अलग तरीके से कही।
4: देखिए, जब ये एक वीडियो मैं देखा हूँ, जब ये असेंबली में लाया गया था तो मुख्यमंत्री क्या नारा लगा रहे थे आपको याद है? वो उनका जो स्लोगन क्या था, वो क्या नारा लगा रहे थे? इस देश पे कौन राज करेगा, और वही फिर यूसीसी लेके आ रहे आप।
3: दूसरी तरफ संजय राउत ने यूसीसी को आरएसएस के एजेंडे से जोड़ा, आरोप लगाया कि चुनावी फायदे के लिए बीजेपी ने यूसीसी का मुद्दा उठाया है। विपक्ष यूसीसी को लेकर बीजेपी की नीति और नियत को लेकर सवाल उठा रही है। यूसीसी को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ी टिप्पणी की है।
5: अगर आपके पास नंबर है तो पार्लियामेंट में लाइए, अलग अलग रियासतों से क्यों कर रहे हैं? और वैसे भी इनके खुद के एनडीए में हर कोई इससे सहमत है नहीं।
3: कांग्रेस के नेता मानते हैं कि यूसीसी बीजेपी का सियासी हथकंडा है।
6: ऐसा है, देखिए, संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं उनके ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं और सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे को साधने के लिए। क्या फर्क पड़ रहा है यूसीसी से, बताओ मुझे, कि निकाह नहीं होगा क्या हमारा? निकाह ही तो होगा, फेरे नहीं होंगे क्या? फेरे ही तो होंगे, क्या तमाशा बना रखा है? कुछ भी नहीं है।
3: विपक्ष के तमाम आक्षेपों को दरकिनार करते हुए बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि यूसीसी तो आजादी के बाद ही नेहरू जी को लागू करना चाहिए था।
7: तथा कथित आजादी मिला तो नेहरू जी को उसी समय कर देना चाहिए था। हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, वोट बैंक के लिए अलग, यही तो हुआ।
3: आइए अब गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान दिखाते हैं जिस पर जुबानी जंग शुरू हुई है।
8: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
3: मोदी सरकार धारा 370, तीन तलाक कानून, वक्फ कानून जैसे बड़े फैसले ले चुकी है, अब यूसीसी की बारी है। लेकिन जिस तरह इसे लेकर एनडीए के कुछ घटक असहज है, क्या ये इतनी आसानी से हो पाएगा? आज तक ब्यूरो।
2: और इस मुद्दे पर हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। समर्थ, समान कानून हर नागरिक के लिए हो ये कहती है सरकार कि इसलिए लाया जा रहा है कानून, तो आपत्तियां क्या हैं? खास तौर पर अखिलेश जिस तरह की ये मॉनिकर्स बना रहे हैं, ये फुल फॉर्म बना रहे हैं, तो उनकी आपत्तियां क्या हैं?
9: देखिए अंजलि, कुल मिलाकर यूपी का चुनाव नजदीक है और इसलिए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो विपक्ष को लगता है कि बीजेपी का एक सियासी एजेंडा है। जबकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात माने तो उनका साफ कहना है कि हमें अगर समान योजनाएं, समान कानून लागू करने हैं, उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बेहद जरूरी है, खासकर महिलाओं के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, गरीब वर्ग के उत्थान के लिए। चीजों से ऊपर उठकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए योजनाओं के साथ साथ जो समीकरण है वो भी कुल मिलाकर पहुंचेंगे। और उन्होंने ये भी कहा गया है कि ये बात काफी सालों से चलती आ रही थी। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने कल बयान दिया है कि बीजेपी के तो संकल्प पत्र में ये था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम सरकार बनेगी तो लागू करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद कुल मिलाकर, क्योंकि यूपी का चुनाव सबसे नजदीक है पंजाब के साथ साथ, इसलिए यहां पर परेशानियां बढ़ गई हैं। अखिलेश यादव ने एक नया फुल फॉर्म दे दिया है और कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को सांप्रदायिक तौर पर जोड़ने की बात उन्होंने कल के अपने पोस्ट में कही है। तो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि अगर इसको आम भाषा में समझें तो कई सारी बातें हैं। देखिए, हर किसी एक वर्ग या समुदाय विशेष के लिए अपने कानून नहीं रह पाएंगे। जिनके अपने अपने कानून हैं, फिर चाहे वो डायवोर्स को लेकर हो या बच्चा गोद लेने को लेकर हो, तमाम चीजों को लेकर हो। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा तो यानी कि समान नागरिकता
2: बने रहे, क्योंकि हमारे साथ दिल्ली से हिमांशु भी जुड़ गए हैं। हिमांशु, सरकार की क्या रणनीति है इसको लेकर? विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है तो किसी तरीके से तो उन सवालों का हल या उनका जवाब दिया जाएगा, तो क्या ऐसा करने का कोई प्लान है?
10: देखिए, बिल्कुल सरकार का प्लान भी है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने जब से ये कहा है कि जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू हो, अलग अलग राज्यों के अंदर होना चाहिए, उसके बाद से ना सिर्फ विपक्ष बल्कि उनके सहयोगी दल भी जो है इस पर लगातार जो है वो अपना बयान दे रहे हैं। जेडीयू की तरफ से बयान आया था, श्याम रजक जो जेडीयू के नेता है, उन्होंने ये कहा कि हम जो है यूसीसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। संजय झा ने भी नाराजगी जताई और उन्होंने खुद गृह मंत्री अमित शाह से इस पूरे मामले पर जो है वो मिलने का समय मांगा है। और जेडीयू की जो भी रुख है, जो भी इसको लेकर विचार है, वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ वो साझा करेंगे। टीडीपी ने इस मामले पर अपनी चुप्पी को बनाए रखा है, लेकिन टीडीपी का जो पुराना स्टैंड है वो स्टैंड साफ है कि यूसीसी को लेकर ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो और उसके बाद ही जो है यूसीसी लाया जाए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार की रणनीति ये है कि पूरे देश के सामने, चाहे वो उनके सहयोगी हो या विपक्ष के लोग, उनके सामने उत्तराखंड का जो है
2: बिल्कुल चर्चा तो होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल ये सियासी मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। आप दोनों का शुक्रिया। आप बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। बात यूपीआई पेमेंट पर छिड़े घमासान की। यूपीआई को लेकर सरकार ने नए नोटिफिकेशन जो दिया है उसकी वजह से सियासी उफान है। सरकार ने 2000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर चार्ज का फैसला लिया है। यह आम ग्राहकों पर लागू नहीं रहेगा, सिर्फ मर्चेंट पर लागू होगा, लेकिन विपक्ष इसे सरकार का वसूली बताते हुए मोर्चा खोल रही है। विपक्ष का आरोप है कि बिजनेसमैन को लगने वाला चार्ज आखिरकार आम आदमी तक, आम जनता तक पहुंच ही जाएगा।
11: क्या आप मुझे बताइए, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मजबूत कदम लगेगा आपको? ये कदम जो हमारे इंडिजिनस, हमारे होम ग्रोन डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है उसको तबाह करने की दिशा में एक कदम है, क्योंकि अमेरिका को हमारा एमडीआर रेजिम नहीं पसंद आ रहा था, अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा था और हो सकता है हम अमेरिका के सामने कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं ये करके कि साहब हमने ब्रिक्स का समिट यहाँ ऑर्गेनाइज के लिए, हमें माफ कर दो, लो हम आपके लिए कर देते हैं। ये वही है, उसके अलावा कुछ नहीं।
12: कांग्रेस पार्टी एक नाराज फूफा पार्टी बन चुकी है और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जब दुनिया की डिजिटल फाइनेंशियल क्रांति की अनुगवाई भारत ने करी थी यूपीआई के माध्यम से, तो राहुल गांधी के कहने पे पी चिदम्बरम ने ये कहा था कि क्या गरीब आदमी या इस देश का आम आदमी कभी डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकता है। सो कांग्रेस हैज हिस्टोरिकली बीन एन ओपोनेंट ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और आज ये नाराज फूफा पार्टी झूठ फैला रही है। हर आम आदमी आज स्कैनर के माध्यम से पेमेंट कर रहा है और हर आम आदमी स्कैनर के माध्यम से ही पेमेंट करता रहेगा।
13: पता नहीं ये सरकार क्या कर रहे हैं, इनके पॉलिसी क्या है, क्या सोचते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता। अचानक से कोई नियम या कुछ थोप दिया जाता है, फिर जनता पर जब उसकी आदत लग जाती है, जनता उसके आदी हो जाते हैं, फिर उसे बदल दिया जाता है। अगर इसमें भी इतना टैक्स थोप देंगे 2000 के ऊपर के पेमेंट पर, तब तो आने वाले समय में जनता काफी क्राइसिस में आ जाएगी। अब इमीडिएटली इसे बंद करना चाहिए, जो भी निर्णय है ये बिल्कुल गलत निर्णय है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
14: नहीं, यूपीआई में तो ऐसा है कि भाई 2000 तक जो व्यापारी लोग होते हैं वो 2000 तक उसकी सीमा है और उसमें कोई मतलब और ज्यादा पैसा ले रहे, इसी तरह का राहुल गांधी का आरोप है, वो इसमें तथ्य नहीं है। कोई सरकार ने अभी निर्णय ऐसा लिया भी नहीं है। वो किसी व्यापारी को और किसी लोगों को तकलीफ देने की भूमिका हमारी बिल्कुल नहीं है।
15: इनमें लगभग जो है करीब 70-80 करोड़ ट्रांजैक्शन होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं। तो मुझे तो लगता है कि अब इंडस्ट्री के पास आएगा रेवेन्यू, वो इन्वेस्ट कर पाएंगे, ज्यादा और छोटे शहरों में जा पाएंगे, ज्यादा मर्चेंट्स को ये कर पाएंगे, डिजिटाइज कर पाएंगे। कस्टमर साइड पे भी टी पैप्स को भी पैसा मिल रहा है फाइनली 6 साल बाद, तो हम सब जो है और मार्केटिंग कर पाएंगे और यूज केस ला पाएंगे। सारे बिजनेसमैन दुनिया में यही चाहते हैं ना कि वो अपना व्यापार बढ़ाएं, अपना बिजनेस बढ़ाएं, तो पेमेंट कंपनियां अलग क्यों होंगी, पैसे आएंगे तभी तो बढ़ेंगे।
16: ये बहुत ही एक पॉजिटिव स्टेप है इंडिया के लिए, बिकॉज देखिए इसी वर्ष यूपीआई के 10 साल हो गए और यूपीआई की वजह से डिजिटल पेमेंट्स इंडिया में बहुत स्केल हो गया है, सभी लोग यूज करने लग गए। बट अब इसका जो स्केल इतना हो गया है, इसका जो कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बैंक्स और पेमेंट कंपनी सपोर्ट कर नहीं पा रहे। तो जो ये डायरेक्शन आया है ये पेमेंट्स इंडस्ट्री के लिए, बैंक्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव है और जो आम इंडियन है, जो इंडियन ग्राहक है।
2: और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा। पीयूष, ये जो चार्ज लगने वाला है 2000 रुपए से ऊपर का, ये कितने लोगों पर इम्पैक्ट डालेगा? जो कारोबारी हैं, छोटे हैं, मध्यम हैं, कितना उनका पोर्शन होगा जिनके ऊपर असर इसका पड़ने वाला है?
17: ये देखिए, जब से इस नए चार्ज की बात निकल के सामने आई है, हमने कई लोगों से बात की है, हमने कुछ इंडस्ट्री के लोगों से बात की, हमने ट्रेडर्स से बात की है। एक चीज जो अब तक साफ हो पाई है वो ये कि अब तक जो यूपीआई पूरी तरह से फ्री था 100% लोगों के लिए, अब वो सिर्फ 96% लोगों के लिए फ्री रहेगा। यानी 4% का आंकड़ा जो रफली निकाला गया है कुछ ट्रेडर्स और कुछ इंडस्ट्री के अधिकारियों की तरफ से, जिसमें लग रहा है कि 4% लोगों को इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला है। क्योंकि अब तक ट्रांजेक्शन आप कितना ही करिए कोई अमाउंट नहीं लगता था, लेकिन अब 2000 तक अगर आप एक मर्चेंट को पे कर रहे हैं तो आपको 0.4% उसका देना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, अगर मैं और आप आपस में यूपीआई ट्रांजेक्शन से पैसे तो उसमें कोई पैसा, चाहे आप कितने भी बड़े अमाउंट का ट्रांजेक्शन करें।
2: जी चलिए पीयूष, बाद में आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: SBI Celebrations Unlimited. Ye Ganeshotsav banega special with festive offers on car loan, gold loan, personal loan and loan against mutual funds.
3: Papa.
4: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
4: छक्का?
3: सब कैशलेस हो गया है।
4: हाँ,
5: ओले ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
5: बिल्कुल चार्ज हुआ यार।
6: ओले बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
9: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
10: सोच बदलो और बैंक भी।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
12: इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बहुत टायर्ड हो गई।
1: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
2: लायन डेट नट बाइट्स।
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
0: सोच बदलो और बैंक भी।
5: और वही कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
8: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट,
10: जेके मैक्स।
11: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
12: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
13: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
14: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
15: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
16: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
17: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
18: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA।
19: अब मैं क्या ही बोलूं?
14: परिवार अटूट भरोसा।
16: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
8: In association with
13: Signature Finest Cardamom Seeds,
9: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
2: आज तक के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे बड़ी सभा।
5: आज का बैटलफील्ड 4000 किलोमीटर तक जा रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है।
0: इमीडिएट बालापुर मान जाइए, अब वो जब भी नहीं माने तो फिर सिंदूर की हमारे को नौबत आती
11: है। अंडमान निकोबार आइलैंड तो जरूर हमको उसका एडवांटेज लेना ही चाहिए।
1: जो बाउंड्री प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में, इसका भी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता।
6: कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा, भारत की सेनाएं उसका जवाब देंगी।
2: आज तक देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ी आवाज़।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर चार्ज के फैसले का आरबीआई ने किया बचाव। कहा, मिलने वाले पैसे से तकनीक और नेटवर्क होगा मजबूत। 15 अक्टूबर से नया नियम, विपक्ष ने उठाए सवाल। भारत पर मंडराया अमेरिका के 100% टैरिफ का खतरा। आज संशोधन प्रस्ताव पास हुआ तो ट्रंप को मिल जाएगा रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैक्स लगाने का अधिकार। यूसीसी को अखिलेश यादव ने बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कंस्पिरेसी। बीजेपी पर साधा निशाना, बोले 15 लाख खाते में पहुंचाओ फिर यूसीसी ला। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के नेता की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 3 बदमाशों ने की फायरिंग, 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी की कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने उठाए सवाल। खाड़ी में खुला युद्ध का एक और मोर्चा। सऊदी अरब के इलाके पर हुती के हमले, मिस्र से मांगी मदद। लाल सागर का आसमान धुआं धुआं। बाब अल मंदेब के तेल रूट पर भी खतरा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सुबह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करते हैं खाड़ी में खुले युद्ध के एक और मोर्चे की। हुती विद्रोहियों के हमले के बीच सऊदी अरब में तनाव फिर बढ़ गया है। इससे जेदा यानबू समेत 7 शहरों में सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा सऊदी अरब ने हुती पर पवित्र मक्का पर भी हमले का आरोप लगा दिया है। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के बॉर्डर वाले इलाकों पर हमला कर सऊदी सेना की गाड़ियों पर कब्जे का दावा किया है। वहीं भारत ने बाबल मंदेब और लाल सागर के समुद्री मार्ग पर मंडराते खतरे को लेकर गंभीर चिंता भी जताई है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि हुती विद्रोहियों के हमले के चलते इस अहम ऊर्जा और तेल रूट से गुजरना अब सुरक्षित नहीं बचा है। और अब सऊदी अरब और हुती विद्रोहियों के बीच जारी जंग को लेकर बड़ी खबर आ रही है। हुती विद्रोहियों ने सऊदी समर्थित सेना के साथ लड़ाई का एक वीडियो जारी कर बड़ा दावा किया है कि उसने हमले कर सऊदी समर्थित सेना की कई गाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। दावे के मुताबिक ये तस्वीरें उत्तरी प्रांत अल जौफ की है। वीडियो में धमाके, जलते हुए सैन्य वाहन देखे जा रहे हैं। वीडियो में रेगिस्तानी युद्ध क्षेत्र में धुएं और धूल के गुबार उड़ते हुए दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हुती विद्रोहियों ने यह वीडियो जारी कर जबरदस्त लड़ाई का दावा किया है। तो अब बात हुती विद्रोहियों के हमले को लेकर सऊदी अरब का बड़ा आरोप आया है। सऊदी अरब और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने हुती विद्रोहियों पर पवित्र शहर मक्का पर हमला करने का आरोप लगाया है। एएफपी न्यूज एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने कहा हुती विद्रोहियों ने मक्का पर घिनौना हमला किया है। वहीं हुती विद्रोहियों की तरफ से कहा गया है कि मक्का की ओर जा रहे ड्रोन को मार गिराने की सऊदी अरब की रिपोर्ट एक घिसा पिटा झूठ है। सऊदी अरब पर हुती विद्रोहियों के लगातार हमले ने तनाव बढ़ा दिया है। सऊदी अरब के मक्का, जेदा, यानबू समेत कई शहरों में सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी तरफ सऊदी भी यमन में हुती ठिकानों पर हमले कर रहा है। वहीं मक्का पैक्ट के साथियों ने सऊदी अरब के साथ सीधे जंग में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है।
1: सऊदी अरब पर हुती विद्रोहियों के हमलों से मचा हाहाकार। मक्का तक हुती की मिसाइलों ने मचाया हड़कंप। सऊदी के कई शहरों में गूंजा जंग का सायरन। खाड़ी में एक बार फिर युद्ध का मोर्चा खुल गया है। इस बार सऊदी अरब और हुती विद्रोहियों के बीच जंग शुरू हो गई है। सऊदी अरब के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले जारी है। हुती विद्रोहियों ने खबिस, मुशैद, तबहा और ताइफ की ओर कई मिसाइल और ड्रोन ताककर निशाना बनाया। सऊदी अरब के तेल टर्मिनल वाले शहर यानबू को भी हुतियों ने निशाना बनाया। मिसाइल और ड्रोन हमलों के सायरन बज रहे हैं। सबसे बड़ा हमला सऊदी अरब के खबिस मुशैद में एक मिलिट्री एयरबेस पर हुआ। यहाँ एयरक्राफ्ट हैंगर, रडार सिस्टम, रनवे और गोला बारूद के डिपो पर हमले किए गए। अलमंदेब के करीब यमन के तटीय इलाके पर सऊदी की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर कब्जा जमा चुके हैं। ये पाइपलाइन दुनिया की कुल तेल सप्लाई का करीब 4% हिस्सा ले जाती है। यही नहीं, सऊदी अरब और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने हुती विद्रोहियों पर पवित्र शहर मक्का पर हमला करने का आरोप लगाया और कहा मक्का पर घिनौना हमला किया है। सऊदी अरब के आरोपों पर हुती की तरफ से कहा गया है कि मक्का की ओर जा रहे ड्रोन को मार गिराने की सऊदी अरब की रिपोर्ट एक घिसा पिटा झूठ है। वहीं संकट की घड़ी में सऊदी अरब ने मक्का पैक का हवाला देकर पाकिस्तान से मदद मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने सऊदी अरब को गच्चा दे दिया। हुती के हमलों के बावजूद पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए। सऊदी ने तुर्की से मदद मांगी, लेकिन तुर्की ने भी सैन्य मदद से सीधा इनकार कर दिया। यही नहीं, सऊदी अरब ने अमेरिकी राष्ट्रपति से भी हूतियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन ट्रंप ने सऊदी अरब के प्रिंस से बात करने से भी इनकार कर दिया। मतलब संकट की घड़ी में पाकिस्तान, तुर्की और अमेरिका ने सऊदी अरब को अकेला छोड़ दिया है। ये तब है जब पिछले महीने पाकिस्तान और तुर्की ने सऊदी के साथ मक्का डिफेंस पैक्ट साइन किया था, लेकिन अब ये दोनों देश सऊदी की मदद करने के बजाय बहाने बना रहे हैं। तो साफ है जंग में फंसे सऊदी अरब को उनके साथियों का साथ नहीं मिल पा रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: और इस पर चर्चा के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय का। प्रणय, सऊदी अरब बड़ी मुश्किल में फंस गया है, एक नया मोर्चा भी अब इस इलाके में खुल गया है जंग का, तो सारी दुनिया के लिए बड़ी मुश्किल है, लेकिन ऐसे में कोई साथी नहीं है जो उसके साथ खड़ा है, और किस किस के दरवाजे पर दस्तक दी है उसने?
2: अंजलि, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, कुछ लड़ाइयां खुद को ही लड़नी पड़ती हैं और कुछ मोर्चों पर अपने ही सैनिकों पर भरोसा करना पड़ता है। लगभग सऊदी अरेबिया की भी वैसी ही स्थिति है। जहां तक हूती विद्रोहियों के सवाल है, हूतियों के जो हमलों का सिलसिला अचानक तेज हुआ है, इसको एक परिप्रेक्ष्य में देखने और समझने की जरूरत है। चूंकि इसके असर का आपने जिक्र किया, तो आज ही इसका असर सामने आया है कि तेल की जो कच्चे तेल की कीमत है वो $160 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जो कि दुनिया के लिए एक नई रेड लाइन है, एक नया खतरे की घंटी बजा रही है। और खासतौर पर सितंबर के महीने में कच्चे तेल की बढ़ती हुई इस कीमत का मतलब है कि आने वाली सर्दियों के लिए यूरोप के लिए तेल और ऊर्जा और महंगी हो सकती है, क्योंकि ये वो समय है जब तेल का भंडारण किया जाता है। और अमेरिका ने जो है करीब बड़े पैमाने पर करीब 7 मिलियन बैरल जो है वो अपना ऑयल स्टॉक कर लिया है, और प्रतिदिन करीब 14 लाख बैरल जो है वो उसका अमेरिका का उत्पादन हो रहा है तेल का। जो अल्टरनेटिव सप्लाई लाइन थी, देखिए अरब प्रायद्वीप के जो दूसरे हिस्से में, यानी हम अदन की खाड़ी और जो यमन के करीब का इलाका है बाबर मंदेप का, उसका जिक्र इसलिए भी किया जाता रहा कि इस पूरे पश्चिम एशिया की लड़ाई में बीते 6-7 महीनों के दौरान ये चीज सामने आती रही बार बार कि तेल की कीमतें इससे नहीं बढ़ पा रही हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया दूसरी तरफ से अपनी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए, जिसका नक्शे पे हम जिक्र भी कर रहे हैं, तो इसके जरिए तेल की सप्लाई बरकरार रखे हुए, और इसीलिए जो तेल की कीमतें हैं वो $120 से ऊपर नहीं गई। लेकिन जैसे ही इस इलाके के अंदर नया प्रेशर पॉइंट बना हूथी विद्रोहियों के हमलों के जरिए, तेल की कीमतें अचानक स्काई रॉकेट होने लगी हैं। जाहिर तौर पर इसका असर जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं जिसमें भारत भी शामिल है उस पर होगा, और साथ ही इसका एक बड़ा असर केवल तेल का ही नहीं है, बल्कि ये वो रास्ता है जो कि कनाल के रास्ते पश्चिम के इलाकों में जाता है, जो कि ट्रेड और कारोबार का बड़ा अल्टरनेटिव रूट है, और इसके जरिए ही जो कारोबार है यानी जो निर्यात है वो जाता है। तो अगर वो बाधित होता है, इंश्योरेंस की प्राइसेस बढ़ती हैं, तो हर अर्थव्यवस्था के ऊपर उसका प्रेशर बढ़ता है। यमन का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो हूती अकेले यमन के नीति नियंता नहीं है, बल्कि यमन के अंदर जो पावर स्ट्रक्चर है वो 3 में बटा हुआ है। प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल, जिसको सऊदी अरेबिया समर्थन देता है, उसके अलावा यमन के हूती हैं, जो हूती हैं अंसारुल्लाह जिन्हें कहा जाता है, और इसके अलावा जो सदन यमन की डिमांड करने वाले जो विद्रोही या बगावती हैं वो लोग हैं जो कि स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। और इन तीनों पावर सेंटर्स के बीच में यमन बटा हुआ है, और साथ ही इस पूरे इलाके में जो राजनीति है वो बटी हुई है, और इनकी जो स्थिति है वो एक ऐसे नाके पर है जहां से मेजर ट्रेड होकर गुजरता है, और यही इनकी ताकत है। और हाल ही में पेरिमा आइलैंड और साथ ही जो हैनिश ग्रेटर एंड लेसर हैनिश आइलैंड है, जो कि बाबल मंदिर के बीच में है, यानी वो सकरा गलियारा जिसकी चौड़ाई करीब करीब 25 किलोमीटर है, जहां से मेजर ट्रेड सुवेज कनाल के जरिए जाता है, चाहे वो भारत से यूरोप के बाजारों में जाने वाला निर्यात हो या वहां से सऊदी अरेबिया से भारत की तरफ आने वाला तेल हो, इसी रास्ते से होकर गुजरता है। और अब उन द्वीपों पर भी अंसारुल्लाह या हूतियों ने कब्जा कर लिया है, और बड़ा खतरा इस बात का है कि अगर ट्रेड यहां पर भी चोक पॉइंट लगा, यहां पर भी अगर रुका, तो दुनिया के लिए एक और हार्ट अटैक सकता है ऊर्जा सप्लाई के मामले में, क्योंकि दूसरी जो आर्टरी है उसमें तो ऑलरेडी ब्लॉकेज है पिछले 6-7 महीनों से, जिसको हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं।
0: जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहे। तो सऊदी अरब हूती विद्रोहियों का हमला लगातार झेल रहा है। सऊदी अरब के तेल टर्मिनल वाले शहर यानबू में कल मिसाइल और ड्रोन से हमले भी किए गए, जिसके बाद सायरन अलर्ट जारी कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा हमला सऊदी अरब के खमीस मुशैत में एक मिलिट्री एयरबेस पर हुआ है। यहां एयरक्राफ्ट हैंगर, रेडार सिस्टम, रनवे और गोला बारूद के डिपो पर हमले किए गए हैं। दूसरी तरफ हूती विद्रोहियों ने कहा है कि सऊदी अरब पर उसका ताजा हमला पिछले 5 दिनों में यमन पर सऊदियों के 300 से ज्यादा हवाई हमलों का जवाब था, और चेतावनी दी कि अगर यह अभियान जारी रहा तो और बड़े हमले किए जाएंगे। जहां एक तरफ हुती विद्रोहियों से अकेला सऊदी अरब लड़ाई लड़ रहा है, वहीं मक्का पैक्ट के उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया है। और अब यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने इसराइल से खुफिया मदद मांगी है।
1: सऊदी अरब पर हुतियों के हमले जारी। मक्का पैक के साथियों ने सऊदी अरब की नहीं की मदद। क्या होती से सऊदी अरब को बचाएगा इजराइल? खाड़ी में हुती विद्रोहियों के हमले को लेकर अब सऊदी अरब अकेला नजर आ रहा है। मक्का पैक का हवाला देकर सऊदी अरब ने पाकिस्तान तुर्की से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। ऐसे में सऊदी अरब ने अब इसराइल से सैन्य मदद की गुहार लगाई है। द यरूशलम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और सऊदी अरब ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड की मध्यस्थता में बातचीत की। इसमें खुफिया मदद के जरिए हुतियों से निपटने की रणनीति बनाई गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सऊदी के प्रिंस सलमान ने हुतियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर इसराइल से बातचीत की है। मकसद बाब अल मंदीब स्टेट पर मंडरा रहे हुतियों के खतरे से निपटना है। इसराइल के साथ हुई मीटिंग के बाद सऊदी अरब ने हुतियों के 54 ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, क्योंकि हमलों का निर्णायक जवाब देगा। लेकिन सऊदी के हमलों के ठीक बाद हुतियों ने सऊदी अरब पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। इन हमलों में 13 लोगों के जख्मी होने की खबर है। हमलों को देखते हुए सऊदी अरब के खवीस मुशैर, आबहा और ताइफ समेत कई शहरों में इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया है। सऊदी अरब की सेना ने बयान जारी कर कहा, जानबूझकर और बार बार किए जा रहे हमलों की निरंतरता आतंकवादी हुती की चरमपंथी विचारधारा को साबित करती है, जिसमें नागरिकों को निशाना बनाकर हिंसा फैलाई जा रही है। गठबंधन की संयुक्त सेना कमान अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर के सेल्फ डिफेंस के सिद्धांत के मुताबिक राज की संप्रभुता नागरिकों को इन जघन्य हमलों से बचाने के लिए जिम्मेदारी पूर्वक निपटेगी। मतलब यही है कि हुती रुकने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि फ्रांस की अपील पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। इमरजेंसी मीटिंग में हुतियों के हमलों को लेकर चर्चा होनी है। जानकार मानते हैं कि हुतियों के खिलाफ अमेरिकी सीधे तौर पर युद्ध में शामिल नहीं होगा। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब को खुफिया जानकारी, सर्विलांस और हथियारों की ट्रेनिंग देगा। तो साफ है, खाड़ी खुले युद्ध के एक और मोर्चे पर सऊदी अरब को अब सिर्फ इसराइल की ही मदद दिख रही है। आज तक ब्यूरो।
0: तो एक बार फिर से रुक करते हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय का। प्रणय, इसराइल से मदद, इस तरह का दावा यरूशलम पोस्ट कर रहा है, ये कितना मुमकिन हो सकता है?
2: देखिए, अंदर खाने क्या चल रहा है ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि यरूशलम पोस्ट ने ये दावा किया है। और बार बार आप जानती हैं कि इसराइल और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस का डायनामिक क्या है, किस तरीके से। लेकिन जब हम हुतियों की बात करते हैं तो हुती कौन है और उनका हमदर्द कौन है? आखिर हुतियों के पास में अगर वो विद्रोही है तो उनके पास इतने हथियार कहां से आते हैं? तो इसका सीधा तार तेहरान से जुड़ता है, ईरान से जुड़ता है। क्योंकि इस पूरी लड़ाई के दौरान हमने कई बार देखा है कि ईरान के समर्थन में हुतियों ने हमले किए हैं, चाहे वो इसराइल का एलात का पोर्ट हो या फिर सऊदी अरेबिया के खिलाफ हुए हमले हों। और इनफैक्ट अरामको की जो सऊदी अरब की फैसिलिटी थी, उस पर सबसे पहली बार दुनिया में पहली बार स्वार्म ड्रोन अटैक करने वाले भी ये हुती विद्रोही थे, जो कि यमन का जो खास तौर का इलाका है वहां पर अपना दबदबा भी रखते हैं, और साथ ही जो यमन की राजधानी सना है उस पर भी इन्हीं का कंट्रोल है। तो इसको इस पूरे 4H के डायनामिक में देखना चाहिए। अंजलि या जो हिजबुल्ला हो, ये सारे 4H जो कि ईरान की मदद से चल रहे हैं इस पूरे क्षेत्र के अंदर, ये जो है स्टेट विद इन स्टेट है, यानी किसी भी देश के खिलाफ ये एक सत्ता की तरह, एक ताकत की तरह उस देश के अंदर मौजूद होते हैं या उस इलाके को पर एक प्रेशर पॉइंट की तरह काम करते हैं। जी
0: जी, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आइए उसी का रुख करते हैं। बात यमन की, जहां पर जारी जंग को लेकर संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने चेतावनी जारी की है। यूएन से जुड़े मानवीय सहायता संगठनों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जंग के चलते 1,00,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं और लड़ाई में आम नागरिकों की मौत और घायल होने की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऑफिस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स यानी कि OCHA ने कहा है बेहद मुश्किल हालात के बावजूद संयुक्त राष्ट्र और उसके सहयोगी संगठन राहत कार्य जारी रखे हुए हैं। परिवारों को सहायता पहुंचाई जा चुकी है। हालांकि राहत सामग्री की भारी कमी हो रही और उपलब्ध फंडिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। OCHA ने कहा है कि सुरक्षा संबंधी जोखिमों की वजह से राहत एजेंसियों की आवाजाही और सहायता पहुंचाने का काम गंभीर रूप से प्रभावित रहा है। और आइए बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका से आ रही है ये बड़ी खबर। भारत पर मंडरा रहा है अमेरिका से 100% टैरिफ का खतरा। अमेरिका के प्रतिनिधि सभा में आज एक बिल पर मतदान होना है जिसमें भारत समेत 10 देशों पर 100% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। माना यह जा रहा है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में इस बिल को मंजूरी मिल जाएगी। इस बिल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह अधिकार देने की बात कही गई है कि वे रूस से तेल खरीदने वाले बड़े देशों पर 100% तक टैरिफ लगा सकें। पिछले दिनों ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति भी आए थे। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए आइए एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय का। प्रणय, भले ही कुछ लोग इसे ब्रिक्स से जोड़कर देखें, लेकिन ऐसी धमकियां तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार देते ही आए हैं। पहले भी उन्होंने कहा कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है उसे दरअसल इसी तरीके से फंडिंग मिलती है तेल खरीद के। तो एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे को ले जा चुके हैं अपने सबसे ऊंचे पटल पर।
2: देखिए अंजलि, यहाँ पर ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से कहीं ज्यादा बड़ा और गंभीर मामला है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इस बिल को, जिसे लिंडसे ग्राहम ईरान सैंक्शन एक्ट या लिंडसे ग्राहम ईरान प्रतिबंध कानून का 2026 कहा जा रहा है, उसे सेनेट से मंजूरी मिल चुकी है। बायपार्टीजन सपोर्ट है, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी दोनों के सांसदों ने इसे समर्थन दिया है। और आंकड़ा जो पारित होने का था वो 86-11 का था अमेरिकी सेनेट में। और अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी जो निचला सदन है अमेरिका का, वहां पर आज मतदान की संभावना जताई जा रही है। और इसे जोड़कर देखा जा रहा है अमेरिका के अंदर जो मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं उसके लिए, और उसके बाद अगर दोनों हाउसेस से ये पारित हो जाता है तब ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास जाएगा। और देखते हैं अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसको मंजूरी देते हैं नहीं देते हैं, क्या होता है, क्योंकि एक तरफ वो रूस के साथ संवाद के गलियारे भी खोल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपने जो स्टीव विटकॉफ और जेरार्ड कुशनर को भेजा था।
0: शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त एक तस्वीर आ रही है, सीधा आपको ले चलते हैं वहीं जहां पर इस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे हैं महाराष्ट्र के दौरे पर।
3: जय जय जय जय जय भवानी, जय जय जय जय जय शिवाजी। हिंद विश्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा, भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार।
0: तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे उनके मुंबई दौरे की, और नितिन नवीन कुछ ही देर बाद सिद्धि विनायक मंदिर भी जाने वाले हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।
4: इन एसोसिएशन विद
9: सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स,
10: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।

0: भैया मेरे राखी के बंधन को नी 100 रुपए लेंगे तुमसे अभी हम,
1: लो मिठाई भी खाओ।
2: क्योंकि फूफा भी कभी जी जाते।
0: ताओ भी एथेनॉल को लेके फूफा ही कह जाएंगे।
1: हाँ ताओ एथेनॉल फूफा है।
3: हाँ बिल्कुल है, हम नाराज हैं।
0: मेरे फूफा जो है दुनिया के सबसे अच्छे फूफा है।
1: क्या बात कर रहे हैं,
0: कसम से उनका नाम ही अच्छे खां है।
1: अच्छा।
0: सबसे अच्छे हुए।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: भैया मेरे राखी के बंधन को नी 100 रुपए लेंगे तुमसे अभी हम, लो मिठाई भी खाओ।
1: क्योंकि फूफा भी कभी जीजा थे।
0: ताऊ भी एथेनॉल को लेके फूफा ही कहे जाएंगे।
2: हाँ ताऊ एथेनॉल फूफा हैं।
3: हाँ बिल्कुल है, हम नाराज हैं।
0: मेरे फूफा जो है दुनिया के सबसे अच्छे फूफा हैं।
2: क्या बात कर रहे हैं,
0: कसम से उनका नाम ही अच्छे खां है।
2: अच्छा।
0: सबसे अच्छे हुए।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: भगवंत मान सरकार के खिलाफ ये कांग्रेस का आक्रोश है। ये प्रदर्शन है गुलजार सिंह की खुदकुशी के खिलाफ और उन्हें न्याय दिलाने के लिए। ये विरोध प्रदर्शन है पंजाब में नशे के खिलाफ। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता पंजाब कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट की अगुवाई में पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा के आवास का घेराव करने पहुंचे थे। हाथों में तख्तियां थी और जुबान पर तलखियां, लेकिन पंजाब प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जबरदस्त पानी की बौछार कर दी।
1: गुलजार सिंह सुसाइड केस को लेकर आज कांग्रेस बड़ा प्रोटेस्ट कर रही है और सचिन पायलट जो हैं वो, क्योंकि पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हैं, वो लीड कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग के ऊपर अमरिंदर सिंह, राजा वड़िंग जो है खुद चढ़े हैं जो पंजाब कांग्रेस के प्रधान है। एक बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये मार्च करना चाहते हैं हरपाल चीमा के घर की तरफ। इनकी मांग है कि संगरूर के में जो गुलजार सिंह का सुसाइड हुआ था उसमें जो है हरपाल चीमा के ऊपर एक्शन हो। आप देखिए काली झंडी जो है फेंक दी है राजा वड़िंग ने, और वाटर कैनन यहाँ पर यूज हो गया है। आप विजुअल्स में देखिए वाटर कैनन यहाँ पे चला दिया गया है ताकि ये आगे ना जा सके। बड़ी तादाद में यहाँ बैरिकेडिंग की गई, बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई, और जैसे ही अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े तो बैरिकेडिंग चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेडिंग के जैसे ऊपर चढ़े चंडीगढ़ पुलिस ने वाटर कैन का इस्तेमाल किया है। आज संगरूर सुसाइड केस को लेकर कांग्रेस का बड़ा प्रोटेस्ट है चंडीगढ़ में, और आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह सचिन पायलट यहां पहुंचे, वड़िंग यहां पहुंचे, कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर यूनाइटेड होकर यहां पहुंचे पंजाब सरकार के खिलाफ, भगवंत मान के खिलाफ, हरपाल चीमा के खिलाफ। और यहां पर सिचुएशन किस तरह वाटर कैनन जो चंडीगढ़ पुलिस जो है वो यूज कर रही है।
0: खास बात यह रही कि लंबे समय बाद कांग्रेस के लगभग सभी प्रमुख नेता एक ही मंच पर एक साथ नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग सचिन पायलट के दोनों ओर बैठे नजर आए। बता दें कि पंजाब के संगरूर में गुलजार सिंह नाम के शख्स ने पंजाब में नशे की स्थिति पर चिंता जताई थी और पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल चीमा से सवाल किए थे। आरोप है कि उसके बाद से ही गुलजार सिंह पर माफी मांगने का दबाव बनाया जा रहा था, जिससे परेशान होकर उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। अब कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है और मान सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल रही है। असीम बस्सी, चंडीगढ़ आज तक।

0: को मिल जाएगा रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैक्स लगाने का अधिकार।
1: यूसीसी विरोधी सभा में बीजेपी विधायक के मिसाइल अटैक वाले बयान पर भड़के वैसी तो एमएलए की भी जवाबी चेतावनी। अखिलेश यादव ने यूसीसी को बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी।
0: प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के नेता की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार तीन बदमाशों ने की फायरिंग, तीन आरोपी गिरफ्तार। यूपी की कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने उठाए सवाल।
1: खाड़ी में खुला युद्ध का एक और मोर्चा, सऊदी अरब के इलाकों पर हूती के हमले, मिस्र से मांगी मदद, लाल सागर का आसमान धुआं धुआं, बाब अल मंदेब के तेल रूट पर भी खतरा।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज, एक और 11 आपके साथ मैं नेहा बात।
0: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के शतक आज तक के साथ। हजार से ज्यादा की यूपीआई पेमेंट पर लगेगा चार्ज, रेलवे टेलीकॉम ईंधन जैसी चुनिंदा श्रेणियों पर ₹5 का शुल्क, 15 अक्टूबर से नया नियम लागू। राहुल गांधी का सरकार पर हमला, बोले अमेरिका के प्रेशर में लग रहा है यूपीआई का ट्रांजैक्शन चार्ज, बीजेपी ने कांग्रेस के दावों को बताया फर्जी। फोन पे सीईओ समीर निगम का यूपीआई पर बड़ा बयान, बोले ₹2,000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर 0.4% एमडीआर से इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी। यूसीसी को अखिलेश यादव ने बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी, बीजेपी ने साधा निशाना, बोले 15 लाख खाते में पहुंचाओ फिर यूसीसी लाओ। नीतीश से मुलाकात के बाद जेडीयू के रुख में आया बदलाव, यूसीसी पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी, हमारी पार्टी नहीं करेगी विरोध अगर प्रावधान हुए ठीक। सुल्तानपुर में यूसीसी को लेकर संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, बोले देश में धार्मिक विविधता के लिए खतरा। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, बोले यूथ अब

0: सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि हम 2027 में पीडीए की सरकार बनाएंगे, नए जमाने के हिसाब से रोजगार कारोबार के नए अवसर लाएंगे। लखनऊ में सपा नेता दीपक रंजन का बीजेपी पर हमला, बोले जनता समझ गई है सरकार जाने वाली है, पीडीए का बोलबाला है। लखनऊ में यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने छात्र सभा का सदस्यता अभियान किया शुरू, जेन जी और युवाओं को साधने का प्रयास।
1: योगी कैबिनेट का जेन अल्फा के लिए बड़ा फैसला, 14,429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय बनेंगे स्मार्ट स्कूल, 300 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर। यूपी के सरकारी स्कूल के बच्चे अब स्मार्ट क्लास, लैब, डिजिटल बुक्स, डिजिटल लाइब्रेरी और टीचर्स के हाथ में टैबलेट से पढ़ते हुए नजर आएंगे। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला, श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड को स्मार्ट कॉलेज क्लासेस की स्थापना के लिए कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया गया है। योगी सरकार ने निकाली शिक्षक वैकेंसी, यूपी में 15,012 पदों पर भर्ती शुरू, माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक से लेकर पीजीटी तक के पदों पर विज्ञापन जारी, 897 सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी, 11,508 सहायक अध्यापक शहरी और 2,607 प्रवक्ता पदों पर होगी भर्ती, पीजीटी के लिए 18 सितंबर से आवेदन। यूपी में जनप्रतिनिधियों के गनरों के बदले पुराने हथियार, 800 सब मशीन गन खरीदने को मंजूरी। यूपी के प्रयागराज में समाजवादी नेता गोली मारकर हत्या, वारदात में शामिल तीनों आरोपी गिरफ्तार, वारदात में इस्तेमाल बाइक और दोनों तमंचे पुलिस ने किया बरामद, पूछताछ में आरोपियों ने व्यक्तिगत दुश्मनी की बताई बात। हाथरस कांड और आरजी कर केस को सुलझाने वाली सीबीआई अफसर करेंगी दिशा सालियान केस की निगरानी, सीबीआई के तेज तरार अफसर सीमा पाहुजा सीबीआई दिल्ली में स्पेशल क्राइम यूनिट में बतौर एसपी तैनात हैं, 2021 में बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर का गोल्डन अवार्ड मिला है।

0: गुरुग्राम हेड एंड रन केस में हरियाणा पुलिस का एक्शन जारी। पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। कार में मौजूद आरोपी लवनीश को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 34 साल के लवनीश पलवल की न्यू कॉलोनी का रहने वाला है और उसे इस मामले में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। इंदौर में 19 सितंबर को आयोजित होने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर सियासी घमासान। कार्यक्रम की अनुमति देने पर देरी में सवाल। कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरपर्सन ने आयोजकों से 10 लाख रुपए की फीस लिए जाने को लेकर भी सवाल खड़े किए। ब्यावर निकाय चुनाव के बाद से कांग्रेस ने प्रत्याशियों को तीर्थराज पुष्कर के आलिशान रिजॉर्ट में किया शिफ्ट। सभी प्रत्याशी पूल का आनंद लेते नजर आए। भोपाल में असदुद्दीन ओवैसी के काफिले का एक्सीडेंट। वीआईपी रोड पर आपस में टकराई गाड़ियां। 4 से 5 बाइक सवार इसमें घायल। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर। पुलिस ने घटनास्थल का लिया जायजा। हादसे के कारणों की जांच की शुरू। हादसे के बाद यातायात बाधित। एआईएमएम चीफ ओवैसी का यूसीसी पर हमला। भोपाल में बोले, गैर हिंदुओं पर हिंदू कानून थोप रही है सरकार। ओवैसी ने बीजेपी शासित राज्यों में मस्जिदों और कब्रिस्तानों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। कहा, वहीं सागर जरेली शराब मामले पर मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग। ओवैसी ने बीजेपी के स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा के एक विवादित बयान पर अत्यंत तीखा पलटवार किया। खुले मंच से चुनौती दे दी।
1: पंजाब में बिजली कटौती के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल आज से विधानसभा क्षेत्र स्तर पर करेगा प्रदर्शन। प्रशासन अलर्ट मोड पर। पंजाब में ड्रग्स और सुसाइड मामले पर भारी बवाल। चंडीगढ़ में सड़क पर उतरे कांग्रेस नेता सचिन पायलट। चन्नी और गहलोत बीजेपी अकाली के निशाने पर सीएम भगवंत मान। सचिन पायलट की एंट्री के साथ पंजाब कांग्रेस में दिखी एकजुटता। आपके खिलाफ किया प्रदर्शन। राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी केस में आज होगी सुनवाई। आपत्तियों और आगे की कार्रवाई पर फैसला। कोलकाता में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कथित चिटफंड मामले में अमृत ग्रुप से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली में 10,000 छात्रों के लिए हॉस्टल बनाएगी सरकार। सीएम रेखा गुप्ता ने जमीन चिन्हित होने की दी जानकारी। दिल्ली में पीजी और कोचिंग संस्थानों में रेगुलेट करने की तैयारी। स्ट्रक्चर फायर सेफ्टी समेत सुरक्षा मानकों पर जोर। निर्मला सीतारमण की युवाओं से अपील। देश के ने आपके लिए क्या किया या नहीं, आप देश के लिए क्या कर सकते हैं ये सोचें। अयोध्या में पिता की स्मृति में मेमोरियल धर्मशाला बनाएंगे अमिताभ बच्चन। 20 से ज्यादा कमरों की होगी सुविधा। सम्राट कैबिनेट के 17 एजेंडों पर मोहर। मखाना विकास के लिए 89 करोड़ 80 लाख रुपए और विष्णुपद कॉरिडोर के लिए 2,520 करोड़ रुपए की मंजूरी।

0: जरांग के कब मुंबई हुई 19 सितंबर से आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन अनशन का ऐलान। मराठा मोर्चा पर बोले एकनाथ शिंदे, त्योहार के दौरान आंदोलनकारी मुंबई आने के फैसले पर पुनर्विचार करें। देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान, दीघी में 27,000 करोड़ से बनेगा देश का सबसे बड़ा पोर्ट, 90,000 लोगों को मिलेगा इससे रोजगार। पटना में बीपीएससी और बीडब्ल्यूएससी और दरोगा अभ्यर्थियों का बड़ा प्रदर्शन, जेपी गोलम्बोर पर बैरिकेडिंग करके रोका गया, पुलिस ने नोकझोंक के बाद विधानसभा कूच की कोशिश, अभ्यर्थी हिरासत। नोएडा में करोड़ों की लागत से बना हुआ एलिवेटेड रोड अचानक धंस गया, 20 फीट लंबा 10 फीट गहरा गड्ढा देखकर अड़कम। यूपी के मुजफ्फरनगर में विवाद के चलते दबंग पड़ोसी ने 70 साल के बुजुर्ग की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी, घटना सीसीटीवी में कैद। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हिट एंड रन का मामला सामने, युवक को कार से मारे गए टक्कर, हादसे का आरोपी गिरफ्तार। अरावली में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने पलटा रिक्शा, सड़क पर गिरी महिला गंभीर रूप से घायल, घटना सीसीटीवी में कैद हुई। मांडिया में भीषण सड़क हादसा, 2 टैंकर की टक्कर से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। फिरोजाबाद में दलित गर्भवती महिला की मौत पर हंगामा, समाजवादी पार्टी सांसद ने थाने में किया धरना, एसएसपी ने 6 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड।
1: बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद गिरी दीवार, 4 गाय की मौत, मलबे में 3 मवेशी फंसे। दक्षिण कन्नड़ में आंगनवाड़ी फूड प्रोडक्शन सेंटर का फूड सेफ्टी विभाग ने किया निरीक्षण, मिलेट लड्डू के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। हाथरस के नगला इमलिया में फायरिंग मामले में 4 गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में 1 घायल। पटना में शाद का भोज खाने से 20,000 लोगों की तबीयत बिगड़ी, सभी अस्पताल में है भर्ती। हैदराबाद के प्ले स्कूल में लगी आग, कोई जनहानि की खबर नहीं। दिल्ली के आनंद विहार क्लब में बार फायरिंग में 2 लोग घायल, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। दिल्ली में भारत नगर थाना क्षेत्र में सत्यवती कॉलेज के पास छात्रों के 2 गुटों में झड़प, मामले की जांच जारी। इंदौर में 27 लाख रुपए लेकर फरार होने के आरोप में ड्राइवर गिरफ्तार, 24.5 लाख रुपए पुलिस ने किए बरामद। जम्मू कश्मीर के बलेसा गंदोह में एनएचएम कर्मचारियों की 72 घंटे की नई हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। समस्तीपुर में नशे के लिए पैसे को लेकर विवाद में बेटे ने पिता की हत्या की, आरोपी फरार।
0: बड़वानी में अलग अलग मांगों को लेकर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं का सड़क पर प्रदर्शन। मथुरा में 12 करोड़ की ज्वेलरी चोरी का 24 घंटे में खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। बिजनौर के जंगल में दंपति के शव मिले हैं और जांच में पति द्वारा पत्नी की हत्या के बाद आत्महत्या की बात सामने आई। ग्रेटर नोएडा में 600 ग्राम ड्रग से 2 विदेशी गिरफ्तार किए गए हैं, मामले की जांच जारी है। मेरठ में क्लोरीन गैस रिसाव की सूचना के बाद हड़कंप, कोई जनहानि नहीं। गाजियाबाद के लोनी में विधायक को गाली देने वाला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, रिश्तेदार के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, तस्वीरें आई सामने। भदोही में निर्माणाधीन मकान की छत गिर गई, मलबे में दबकर 1 की मौत, 1 घायल। देवरिया में क्लास में गाली का विरोध करने वाले 12वीं के छात्र को घेर कर पीटा गया, कान पकड़कर सॉरी बुलवाई गई, 3 पर केस। जालना में 6 साल की बच्ची से गलत हरकत करने पर भड़के लोगों ने आरोपी का तोड़ा घर, 60 साल के आरोपी को हिरासत में लिया गया। हैदराबाद में बेटे के घर के बाहर बुजुर्ग दंपत्ति का प्रदर्शन, घर से निकालने और उपेक्षा का आरोप लगाया।
1: धारचूला के दोबाट में पहाड़ी से हुआ भारी भूस्खलन, नेशनल हाईवे में यातायात बंद। चमोली में भारी बारिश से हाईवे पर आया मलबा, गोपेश्वर चौपटा मंडल मार्ग बंद। गिर सोमनाथ में मूसलाधार बारिश से जल प्रलय जैसे हालात, ऊना और दीव में घरों में घुसा पानी। कच्छ में मूसलाधार बारिश से किसानों के चेहरे खिले, अंजार में 10 घंटे 7.5 इंच बारिश। बेगूसराय में 15 दिन बाढ़ का कहर, घरों से पानी निकला लेकिन सड़कों पर जल जमाव। सूरत के नानपुरा में अनोखा गणपति पंडाल बना चर्चा का केंद्र, जलमग्न द्वारका की थीम पर बना भव्य गणेश पंडाल। पंडाल में प्रवेश करते नजर आते हैं समुद्र के भीतर दुनिया के जैसा वातावरण, बेहद कलात्मक तरीके से तैयार किया गया है प्राचीन महलों के अवशेष और समुद्री जीवों के मॉडल। पंडाल की खूबसूरती की ओर को और बढ़ा रहे हैं पंडाल में की गई विशेष लाइटिंग और विजुअल इफेक्ट्स। पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज रोड पर स्थित गणेश प्रतिमा ने खींचा ध्यान, 21,000 पानीपुरी शेल से बनाई गई है बप्पा की प्रतिमा। ओडिशा के गणपति जिले में दिखा गणपति का अनोखा स्वरूप, सिक्कों और चॉकलेट से बनाई गई है बप्पा की मूर्ति।
0: अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत, दूसरे टी20 में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। 3 मैचों के सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की, 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 159 रन बनाए। जवाब में भारत ने 31 बॉल शेष रहते 163 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत के लिए संजू सैमसन ने 22 गेंदों पर 57 रनों की पारी खेली, 7 चौके और 4 छक्के जड़े। अभिषेक शर्मा ने 19 गेंदों पर 39 रन बनाए। ईशान किशन ने नाबाद 38 रन। भारत की ओर से नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 विकेट झटके, अर्शदीप को 2 विकेट मिले। विनायक चतुर्थी के मौके पर तमिल स्टार विक्रम की अगली फिल्म का टाइटल आया सामने, मेकर्स ने टीजर किया जा रही, फिल्म का नाम पावर हाउस। करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन की मच अवेटेड फिल्म दायरा का नया प्रोमो आया सामने। दायरा में करीना और पृथ्वीराज पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। फिल्म 18 सितंबर को रिलीज होगी। नयनतारा स्टारर मुकुथी अम्मन 2 का टीजर हुआ रिलीज और राइज ऑफ महाशक्ति इसका नाम है। टीजर में पौराणिक अतीत से लेकर मुश्किल भरे हुए वर्तमान की कहानियों की झलक। यमन में अलजौफ के पूर्वी हिस्से में हुए लड़ाकों और विरोधी बलों के बीच में हुई मुठभेड़ तस्वीरें आई सामने। ईरान में उड़ान के दौरान एक विमान में जबरदस्त अफरा तफरी, विमान के टायर फटने और इंजन खराब होने की खबर से यात्रियों चिपकर मची। सेपी हरान एयरलाइंस के विमान को मशहद वापस लाया गया, फिर इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया। बोइंग 737 विमान में यात्री सवार थे। इंडोनेशिया के जंगलों की आग और धुंध से सांस लेने में परेशानियां, सड़कों पर धुंध की मोटी परत दिखी। भारत समेत 4 अन्य देशों पर 100% टैरिफ लगने वाले बिल पर अमेरिकी हाउस में वोटिंग कल होगी। भारत संघ ट्रेड डील को न्यूजीलैंड की संसद ने दी मंजूरी, 95% भारतीय उत्पादों पर खत्म होगी टैरिफ की मार।

0: इस बीच बड़ी खबर मध्यप्रदेश से, जहां यूसीसी पर जुबानी जंग तेज है। भोपाल में यूसीसी के विरोध में सभा के दौरान एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा को सीधी चुनौती दी है। रामेश्वर शर्मा ने 4 सितंबर को जन्माष्टमी के कार्यक्रम में विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भोपाल के करौंद इलाके के काजी कैंप की तरफ मिसाइलें दागेंगे। कल ओवैसी ने पलटवार किया। उन्होंने रामेश्वर शर्मा को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें दम है तो बताएं कि मिसाइल कब लॉन्च करेंगे। ओवैसी ने कहा कि वह अकेले काजी कैंप में खड़े हैं और ऐसी धमकियों से डरते नहीं हैं।
1: असदुद्दीन ओवैसी ने काजी कैंप के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि उन लोगों का भी नाम लिया जिनके बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया था।
0: और सबसे पहले आपको दिखा रहे थे बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का मिसाइल दागने वाला बयान, जिस पर ओवैसी को गुस्सा आ गया।
2: मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, जब हिंदुस्तान में लोग कहते थे सुई बनाना नहीं जानते तो मोदी जी ने कहा कि हम मिसाइल बनाएंगे। जैसे तुम करौंद के चौराहे पर खड़े होकर मिसाइल लगाओ और काजी कैंप पे गिरा दो, वैसे ही। अरे मैंने यहाँ का काजी कैंप नहीं बोला, इस्लामाबाद वाला बोला था।
1: ये वो विवादित बयान था जो आपको सुनाया। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी विधायक के इस बयान के बाद जवाब दिया और 11 दिन बाद भोपाल आकर उन्होंने इस पर रिएक्ट किया।
3: ये कोई रामेश्वर शर्मा साहब का बयान सुना, तुम क्या बोले? मैं मिसाइल लॉन्च करूंगा करौंद स्क्वायर से काजी कैंप पर। रामेश्वर शर्मा, अगर तुम मई के लाल हो,
0: तो वैसी ने चुनौती दी तो रामेश्वर शर्मा ने भी पलटवार किया है। उन्होंने वैसी को संविधान की मर्यादा में रहने की सलाह दी। उनसे बात की मैं संवाददाता रवीश पाल सिंह ने।
4: एक्सक्लूसिव आज तक पर सबसे पहले बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है विधायक रामेश्वर शर्मा, जो कि विवादों में शुरू से रहे हैं इस पूरे बयान को लेकर, जिसके बाद पलटवार हुआ असदुद्दीन ओवैसी का। तो उन्होंने कल जो आपके लिए कहा है, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है और जिस तरीके से चुनौती दी है, आपको स्वीकार करते हैं?
5: देखिए, मैं एक तो ओवैसी को ये बता देना चाहता हूं कि बैरिस्टर होने के नाते अगर सही भाषा का इस्तेमाल करोगे तो ठीक है। जो भाषा का इस्तेमाल आपने मेरे लिए किया है वो भाषा का इस्तेमाल मैं आपके लिए भी कर सकता हूं। और इतने ध्यान रखना कि भारत के वैज्ञानिक के द्वारा और भारत की सरकार प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाई गई मिसाइल और ऑपरेशन सिंदूर में दागी गई मिसाइल से केवल इस्लामाबाद में बैठे हुए जो है आतंकवादी और वहां की सरकार ही परेशान नहीं है, भारत में जिन्ना की औलादें भी परेशान है। वो चाहते हैं कि भारत में भी आतंकवाद और नक्सलवाद पनपता रहे, और इसलिए अब भारत की सरकार ने उन कैंपों को निशाना बनाएगी और भारत की सेना उन कैंपों को निशाना बनाएगी जो भारत के खिलाफ अलगाववाद और आतंकवाद पैदा करते हैं। इसलिए ओवैसी, कान खोलकर सुन लेना, संविधान की मर्यादा का पालन करो। जिस भाषा का आपने इस्तेमाल किया इस भाषा का हम भी जवाब दे सकते हैं। हाँ, यूसीसी हिंदुस्तान में लागू होगी, भोपाल मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार ने लागू किए। माननीय गृहमंत्री का जो स्टेटमेंट है अमित शाह जी का वो सही है, हम 2029 तक भारत के 21 प्रदेशों में यूसीसी लागू करेंगे। क्योंकि आप तुष्टीकरण की नीति अपनाते हो, आप जो है मुस्लिम बेटियों के साथ हलाला जैसा घिनौना कृत्य का समर्थन करते हो, आप मुल्ला और मौलवियों को बढ़ावा देते हो, आप चाहते हो कि भारत की बेटी का अपमान होता रहे, आप चाहते हो कि भारत की बेटी को तलाक तलाक कहकर फोन और मोबाइल पर उससे शादी से विच्छेद कर दिया जाए। नहीं, जिस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले 3 तलाक का कानून बनाया, अब हलाला जैसे पाप को भी हम बंद करेंगे।
4: लेकिन रामेश्वर जी, आपने जो कहा था वो आपको नहीं लगता विवादित था? मतलब भोपाल के भोपाल में ही आप काजी कैंप में मिसाइल गिराने की बात?
5: मैंने जो पूरा कहा था पूरा सुनना चाहिए बैरिस्टर को और सबको पूरा सुनकर और चलाना चाहिए। मैंने जो कहा था मैं उस पूरे बयान पर आज भी कायम हूं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस्लामाबाद में या लाहौर में या कराची में या किसी भी देश में भारत के खिलाफ कोई भी आतंकवादी गतिविधियां संचालित करेगा तो उन पर भारत की सरकार, भारत की सेना मिसाइल दागेगी। हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है। इसलिए बैरिस्टर छाती पीटने से, ओबीसी छाती पीटने से कुछ मतलब नहीं है।
4: काजी कैंप आने की चुनौती दे तो रहे हैं आपको?
5: कौन सा काजी कैंप बजाओ, काजी कैंप में कौन ना मना किया है? अरे ध्यान रखिए, वसुदेव कुटुंबकम की है, हम भी हैदराबाद में आएंगे। हैदराबाद तुम्हारे बाप का नहीं है, हैदराबाद वो है जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नवाब को रात को बुलाया कि सुबह दस्तखत कर दो, इसे मेरे हिंदुस्तान में मिलाया जाएगा। बदतमीजी की तो कल इलाज कर दूंगा। और इसलिए हैदराबाद भी आएंगे हम, पूरा हिंदुस्तान हमारा है। और यहाँ की तो छोड़िए, एक दिन हम लाहौर कराची पर भी देश का तिरंगा फहराकर भारत के स्वाभिमान का झंडा गाड़ेंगे। आपकी ना अब यूसीसी का विरोध चल पाएगा और ना आप नए जिन्ना बन पाएंगे। आप और कांग्रेस मिलकर जो बी कांग्रेस की बी टीम बनकर मध्य प्रदेश में हिंदू मुस्लिम तनाव करना चाहते हो, हम इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं।
0: वही बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज मुंबई पहुंचे, एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया और आज नितिन नवीन सिद्धिविनायक और लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए जाएंगे। ये तस्वीरें उनके एयरपोर्ट पर आगमन की जहां पर सीएम ने उनका स्वागत किया है।
1: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अब मुंबई पहुंचे हैं और एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं और आज सिद्धि विनायक जाएंगे, लाल बाग राजा के दर्शन करने के लिए भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जानेंगे।
6: कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार जी यांचा मनापासून सहर्ष स्वागत। मी भारतीय जनता युवा मोर्चाचे अध्यक्ष आणि सर्व टीमला विनंती करतो की काल सन्माननीय नितिन नवीन जी आणि सन्माननीय यांचं या ठिकाणी सहर्ष स्वागत करू। महाराष्ट्र माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से पूरे देश में सही शब्द का प्रयोग किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सांस्कृतिक पुनरुद्धार का जो समय पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से देश के हर एक समाज, हर एक वर्ग, हर एक धर्म में आया है, मैं मानता हूं कि आज भारत सही दिशा में मजबूत कदमों से आगे बढ़ रहा है और उसमें महाराष्ट्र भारत के विकास में जो पहले भी योगदान देता रहा और आज भी भारत के विकास में अग्रणी योगदान महाराष्ट्र की सरकार के साथ साथ महाराष्ट्र की जनता दे रही है। मैं आज इस पवित्र अवसर पे जब मुझे आने का मौका मिला, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे तो महाराष्ट्र के संगठनात्मक बैठक में फिर आगे आऊँगा, लेकिन आज केवल उत्सव में आपके साथ शामिल होने आया हूँ, भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लेने आया हूँ कि महाराष्ट्र की भी तरक्की हो, हमारे भारतवर्ष की भी तरक्की हो और जो हमारे ताकत के केंद्र है, हमारे आस्था के केंद्र है, हमारे प्रभु श्री राम जिनके आदर्शों पे पूरा देश, भारतीय संस्कृति और हमारे हिंदू आगे बढ़ता है, हम सब कोई मिलकर भारतीय संस्कृति को, भारत के विकास के उस कदम को कदम से मिला के चले।
1: और ये तस्वीरें आप देखेंगे, सिद्धि विनायक पहुंचे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप थोड़े पहले देर पहले हमने आपको उनका बयान भी सुनाया और उन्होंने कहा कि मैं भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, तो वो सिद्धि विनायक जिनका आशीर्वाद लेने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं, तो वहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं। इस समय की आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी दिखाई दे रहे हैं, महाराष्ट्र के दूसरे बड़े नेता भी उनके साथ इस समय दिखाई दे रहे हैं, सिद्धि विनायक के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। और अब रुकने छोड़े से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।
4: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
7: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट,
7: जेके मैक्स।
5: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
8: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
11: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbagh Group.
12: In association with Hint, ek hint to dete.
13: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
12: Vimal, bolo zubaan kesri.
14: इसमें कहीं दो मत नहीं है, आज तक का यहां तक प्रश्न है। एक बहुत ही क्रेडिबल मीडिया ग्रुप के रूप में इसने अपनी साख बनाई है मीडिया जगत में, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि आज देश की सुरक्षा को लेकर यहां पूरे दिन चिंतन और मंथन हुआ है। मैट टीवी टुडे की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते
4: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: विमल बोलो जुबां केसरी।
5: भैया मेरे राखी के बंधन को नींव। 100 रुपए लेंगे तुमसे अभी हम।
6: लो मिठाई भी खाओ।
7: क्योंकि फूफा भी कभी जी जाते।
8: ताओ भी एथेनॉल को लेके फूफा ही कह जाएंगे।
6: हाँ ताओ एथेनॉल फूफा है।
9: हाँ बिल्कुल है। हम नाराज हैं।
5: मेरे फूफा जो है दुनिया के सबसे अच्छे फूफा है।
6: क्या बात कर रहे हैं,
5: कसम से। उनका नाम ही अच्छे खां है।
6: अच्छा।
5: सबसे अच्छे हुए।
10: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: यानी क्या बचाव, कहां मिलने वाले पैसे से तकनीक और नेटवर्क होगा मजबूत, 15 अक्टूबर से नया नियम, विपक्ष ने उठाए सवाल।
1: भारत पर मंडराया अमेरिका के 100% टैरिफ का खतरा, संशोधन प्रस्ताव पास हुआ तो ट्रंप को मिल जाएगा रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैक्स लगाने का अधिकार।
0: सभा में बीजेपी विधायक के मिसाइल अटैक वाले बयान पर भड़के हुए ऐसी तो एमएलए की भी जवाबी चेतावनी, अखिलेश यादव ने यूसीसी को बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी।
1: प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के नेता की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार तीन बदमाश ने फायरिंग की, तीन आरोपी गिरफ्तार, यूपी की कानून व्यवस्था पर विपक्ष के सवाल।
0: खाड़ी में खुला युद्ध का एक और मोर्चा, सऊदी अरब के इलाकों पर हूती के हमले, मिस्र से मांगी मदद।

0: क्या यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव यूसीसी के बिसात पर लड़ा जाएगा? सियासी संदेशों की अगर माने तो ये मुमकिन है, क्योंकि बीजेपी यूपी में यूसीसी जल्द से जल्द लाने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि योगी के दिल्ली दौरे के दौरान यूसीसी पर मंथन हुआ है।
1: तो उधर विपक्ष भी पूरी तैयारी में है और अखिलेश यादव ने यूसीसी पर देखा हमला किया है। यूसीसी को अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी बताया है। तो कांग्रेस और ओवैसी जैसे नेता यूसीसी का पूरी ताकत के साथ विरोध कर रहे हैं।
2: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
3: क्या गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान यूपी के चुनाव में गेम चेंजर साबित होगा? क्या 2027 में होने जा रहे यूपी विधानसभा चुनाव का एपिसेंटर यूसीसी ही बनेगा? क्या 2027 की चुनावी बिसात को देखते हुए ही बीजेपी ने यूसीसी का मोहरा चला है? इसे ठीक से समझने से पहले जरा अखिलेश यादव का नया संदेश देख लीजिए। अखिलेश ने यूसीसी की नई परिभाषा दी है। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, यूसीसी मतलब अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस यूसीसी का विरोध करते हुए एक्स पर लिखा है, जनता समझ रही है भाजपा जिस यूसीसी की बात कर रही है दरअसल उसका फुल फॉर्म कुछ और है, यूसीसी इक्वल टू अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। अखिलेश ने जिस अंदाज में यूसीसी को परिभाषित किया है उससे साफ है कि समाजवादी पार्टी यूसीसी का खुलकर विरोध करने जा रही है, और उतना ही साफ ये भी है कि बीजेपी यूपी में इसे जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश करेगी। योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली आए थे और खबर है कि यूसीसी पर उनके गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई है।
4: उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचते हैं, भले ही एमयू साइन करने की बात हो अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ और होम मिनिस्टर के साथ मीटिंग, लेकिन इस दौरान यूसीसी पर भी चर्चा हुई। चर्चा इस दौरान भी की क्या कैसे कानून व्यवस्था को सुधारा जाएगा अगर ये लागू होता है, क्योंकि सीएनआरसी के समय काफी अराजकता फैली थी। अब ऐसे में सियासत जरूर जारी है, क्योंकि एक तरफ विपक्ष और माइनॉरिटीज इसको लागू ना करने की बात कह रहे हैं, योगी सरकार के मंत्री इसको लागू करने की कवायद कर रहे हैं। उधर योगी सरकार पूरी तरीके से इसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: यूसीसी को यूपी में जल्द से जल्द लागू करने की बीजेपी की मंशा किसी से छिपी नहीं है। बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे हैं यूपी में यूसीसी का आगाज होकर रहेगा।
5: यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे 2024 के घोषणा पत्र में और संविधान का अनुच्छेद 44 ये कहता भी है, और ये हमारे नीति निर्देशक तत्व में भी शामिल है, और माननीय गृहमंत्री जी ने आज कहा भी है। और निश्चित रूप से अगर महिलाओं के प्रति, उनके अधिकारों के प्रति अगर उसे पूर्ण करना है, उन्हें सुरक्षा देनी है, तो ये बहुत आवश्यक है। बाकी सरकार को निर्णय करना, माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय करना, लेकिन आज गृहमंत्री जी ने जो बोला है वो कहीं ना कहीं हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है, हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा है। और निश्चित रूप से सामान्य नागरिक संहिता की बात हम लोग लंबे समय से करते रहे हैं, और हमारे लिए, हमारा कमिटमेंट है ये, हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। देश, हमारे प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए सामान्य नागरिक संहिता की बात भारतीय जनता पार्टी जनसंघ हमेशा उठाती रही है।
6: उत्तर प्रदेश ये प्रयास करेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मनसा है वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की धरती पर उतरे। सरकार निश्चित तौर पे सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उत्तर प्रदेश में हम सबसे पहले लागू करेंगे।
3: ये भी तय है कि यूपी में यूसीसी लागू होने की कोशिश होती है तो इसका विरोध भी तगड़ा होगा। मुस्लिम वोटों की चाहत में अखिलेश तो विरोध करेंगे ही, ओवैसी जैसे नेता भी सुर में सुर मिलाएंगे।
7: देखिए, जब ये एक वीडियो मैं देखा हूँ, जब ये असेंबली में लाया गया था तो मुख्यमंत्री क्या नारा लगा रहे थे आपको याद है? वो उनका जो स्लोगन क्या था, वो क्या नारा लगा रहे थे? इस देश पे कौन राज करेगा? और वही फिर यूसीसी लेके आ रहे आप। उससे ये बात साबित हो गई कि यूसीसी इक्वालिटी के लिए नहीं लाया गया है। यूसीसी भारत के 18 करोड़ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए लाया गया है।
3: मोदी सरकार धारा 370, तीन तलाक कानून, वक्फ कानून जैसे बड़े फैसले ले चुकी है। अब यूसीसी की बारी है और यूपी में इसे लागू करने की पूरी तैयारी है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: वहीं यूसीसी पर यूपी के 3 मुस्लिम नेता क्या कह रहे हैं सुनिए।
8: संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं उनके ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं और सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे को साधने के लिए। क्या फर्क पड़ रहा है यूसीसी से बताओ मुझे, कि निकाह नहीं होगा क्या हमारा? निकाह ही तो होगा, फेरे नहीं होंगे क्या? फेरे ही तो होंगे, क्या तमाशा बना रखा है? कुछ भी नहीं है।
9: छात्रों के मूवमेंट से डरी हुई सरकार के पास अब इसी तरह का कार्ड खेलने के अलावा और कोई चारा नहीं। और चुनाव में गिनाने के लिए क्या है? नौकरियां वो दे नहीं पाए, स्टूडेंट्स जो है वो परेशान है, प्रोटेस्ट कर रहा है पूरे देश में, जेनजी से लेकर जेन अल्फा तक। तो सरकार के पास मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यही सब है राज्यों में। ये भारत जो है वो विविधताओं का देश है, भारत जो है वो तमाम अलग अलग तरह के फूलों से मिलके बना। आप सब कुछ एक रंग का कर देना चाहते हैं, सब कुछ एक जैसा कर देना चाहते हैं, डाइवर्सिटी कहाँ चली जाएगी? तो गृहमंत्री जी को ये समझना पड़ेगा कि ये देश बहुत अलग अलग भाषाओं, अलग अलग बोलियों, अलग अलग कल्चर, अलग अलग तहजीब, अलग अलग धर्मों सबसे मिल करके भारत बनता है। आप सब कुछ एक कर देना चाहते हैं एक रंग का, तो हम तिरंगे के साथ खड़े हैं, हम तिरंगे वाले लोग हैं।
1: हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, बहुत स्मार्ट मूव जो है बीजेपी हमेशा चलती है, मतलब जहां राम मंदिर चंदा चोरी का शोर था वो पूरी तरह से डाइवर्ट होकर अब यूसीसी पर आ गया, अब सब के सब यूसीसी पर पूरी तरह से फोकस दिखाई दे रहे हैं।
10: नहीं बिल्कुल, देखिए राजीव, तो अखिलेश यादव तक ने इस पर कमेंट किया है और उनका कहना है कि ये जो अंडरग्राउंड कम्युनल कंस्पिरेसी है ये दरअसल, और अब तमाम जो मुस्लिम नेता हैं, तमाम जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं वो इस पर लगातार बोल रहे हैं। और ये भी बात साफ दिखाई दे रही है कि पहली बार यूसीसी को लेकर के जो विपक्ष है वो बहुत ज्यादा मुखर होता जा रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि 2027 के पहले उत्तर प्रदेश में कहीं योगी सरकार इसे लागू न कर दे। हालांकि कल गृहमंत्री से मुलाकात हुई है, ऐसी चर्चा निकल करके आई है कि शायद इस विषय पर बात भी हुई है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में यूसीसी को लागू करने को लेकर कोई बात सामने नहीं आई है। ये बात जरूर अभी आई है कि जो मंत्री हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि चूंकि हमारे एजेंडे में है, हमारे संकल्प पत्र में है, इसलिए बीजेपी इसको लागू करे। बहुत मुमकिन है कि 2027 के पहले बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपना ये कार्ड चल सकती है, लेकिन इंतजार करना होगा हमें कि आखिर सरकार इस पर फैसला लेती क्या है।
0: कुमार अभिषेक, साथ ही जो इस पर अब सियासत का रंग तो चढ़ ही गया है, कम्युनल रंग भी लगातार चढ़ता जा रहा है, जितने भी मुस्लिम नेता हैं इसका भरसक विरोध कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये महिलाओं के लिए तो फायदेमंद है ही, और ऐसे में जो महिलाओं का वोट बैंक है वो 2027 में काफी निर्णायक हो सकता है।
10: देखिए, निश्चित तौर पर अगर यूसीसी की बात की जाए तो कई राज्यों में लागू हो चुका है, बगल में उत्तराखंड ने इसे लागू कर दिया है। शुरू में काफी हो हल्ला हुआ, लेकिन अब लगता है कि वहां चीजें सेटल्ड हैं। जिस तरीके से गृहमंत्री ने ये बात कही कि 2029 के पहले 21 राज्यों में जहां बीजेपी के शासित राज्य हैं वहां लागू होंगे, जो बीजेपी के दूसरे सहयोगी दल हैं वो इससे थोड़े असहज हैं, लेकिन ये बात सही है कि यूसीसी को संविधान ने मेंशन किया है, संविधान सभा में मेंशन है, बीजेपी के संकल्प पत्र में है, और बीजेपी लाने का हर संभव कोशिश करेगी। ये अगर आप देखें तो चाहे हलाला जैसी चीजें, ट्रिपल तलाक, ये सब बीजेपी ने एक एक करके खत्म किया है, तो अब उनकी अगली निशाने पर निश्चित तौर पर यूसीसी है, और नेचुरल है कि इसका फायदा भी है, लेकिन जो मुस्लिम तबका है वो इससे बेहद नाराज दिखाई देता है।
1: बिल्कुल कुमार अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच में यूसीसी को लेकर जमियत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने बड़ा बयान दिया है, और मदनी ने यूसीसी को धार्मिक स्वतंत्रता खत्म करने की सुनियोजित साजिश बताया। मदनी ने कहा है कि सरकार का कोई धर्म नहीं होता है, देश संविधान से चलना चाहिए, वैचारिक एजेंडे से नहीं। तो यूसीसी धार्मिक स्वतंत्रता खत्म करने की एक साजिश है, जो मुस्लिम धर्म गुरु है वो ये बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देश को संविधान से चलाइए, वैचारिक एजेंडे से नहीं।
0: वही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने उम्मीदवारों को लेकर मंथन तेज कर दिया है। पार्टी की ओर से 4 अलग अलग स्तरों पर समानांतर पैरामीटर तैयार किए जा रहे हैं और इस पैरामीटर में विधायकों के कामकाज, जनता और कार्यकर्ताओं के बीच छवि, विकास कार्य, चुनावी आंकड़े, जातीय समीकरण और संभावित उम्मीदवारों की जीत की संभावना का आकलन किया जाएगा।
1: इसके अलावा आरएसएस की जमीनी रिपोर्ट भी टिकट के फैसले में इनपुट देगी। लगातार दो बार सत्ता में रहने के बाद बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने मौजूदा विधायकों को लेकर है। कई विधानसभा सीट पर विधायकों के कामकाज और उपलब्धता को लेकर अब फीडबैक सामने आया। कई सीटों पर टिकट के लिए दावेदारों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में बीजेपी अब नए सिरे से जमीनी फीडबैक जुटाकर जिताऊ उम्मीदवारों की पहचान करने के कदात में है।
0: आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, बीजेपी की सबसे खास बात यह है कि सबसे पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब विधायकों के नाम पर किस तरीके से, किस कैटेगरी के हिसाब से, किस आधार पर चुनाव किया जाएगा, ये तक सुनिश्चित कर लिया गया है।
11: अब बिल्कुल नया देखिए, बीजेपी वह पार्टी है जो सबसे पहले अपने कैंडिडेट को तैयार भी करती है और साथ ही साथ उसकी एक सीट पर कई कैंडिडेट होते हैं, इसको भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। तो इस वजह से भी अब उनका जो पैरामीटर है वो बहुत अहम हो जाता है, जिसमें कि वो उनका क्षेत्रीय यानी कि जातिगत उनका विशेष वहाँ पर किस तरीके से प्रभाव है, इसके साथ साथ उसका उस जनता में कितना प्रभाव है जो प्रत्याशी उस सीट से लड़ना चाहता है, यही नहीं जो विपक्ष का वहाँ पर प्रत्याशी लड़ रहा है उस पर उसका कितना प्रभाव होगा, यानी कि जो पैरामीटर्स हैं उसमें आरएसएस यानी संघ की भी कहीं ना कहीं एक सहमति भी चाहिए होगी कि वो किस तरीके से रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। तो ये जो पैरामीटर है इसी से एक कैंडिडेट तैयार होगा जो जिताऊ कैंडिडेट माना जाता है विधानसभा के लिए, और इसीलिए ये सारे पैरामीटर सब तैयार किए गए हैं। अब इन पैरामीटर पे जो खरा उतरेगा उसको तो टिकट दिया जाएगा, लेकिन जो खरा नहीं उतर रहा है उसका टिकट कट भी जाएगा। तो इस वजह से चिंता अब उन जो कैंडिडेट है उनमें ज्यादा हो रही कि कौन कौन इस पैरामीटर पर आ रहा है, क्योंकि जिसका भी टिकट कटेगा मांगने वाले एक सीट पर दो दो तीन तीन प्रत्याशी तक नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात है कि अपने पुराने नेताओं और नए नेताओं को जोड़ते हुए ये पैरामीटर सेट करेगी और उनकी रिपोर्ट तैयार करके ही उनको ये टिकट देगी।
1: लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि लंबा प्रोसेस होगा। बहुत शुक्रिया आशीष आपका जानकारी के लिए। और अब तक रिजॉर्ट पॉलिटिक्स लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक सीमित रहती थी, लेकिन अब राजस्थान की बात करेंगे जहां पर निकाय चुनाव में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का खेल शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने पार्षदों को टूट से बचाने में लगे हुए हैं।
0: ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चार नगर निगमों में मुकाबला बराबरी पर छूटा है, यानी ना बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है और ना ही कांग्रेस को, इसीलिए इस बार खींचतान जारी है।
12: ये अजमेर के कांग्रेसी पार्षद हैं। अजमेर के नगर निकाय चुनाव में मुकाबला बराबरी पर क्या छूटा, इन पार्षदों की बल्ले बल्ले हो गई। कांग्रेस ने अपने पार्षदों को टूट के डर से रिजॉर्ट में ठहराया है, यानी कि इनकी बाड़े बंदी की जा रही है। रिजॉर्ट में इनके लिए मनोरंजन के तमाम साधन पेश किए गए हैं, मकसद है इन पर निगाह रखना, इनकी पहरेदारी करना। साथ ही ने घुट्टी पिलाई जा रही है कि लिफाफे आएंगे, पैसों का लेन देन होगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं है।
13: 36 साल में अजमेर का विकास कुछ भी नहीं हुआ, भ्रष्टाचारी निगम था पूरा, मेयर भ्रष्टाचार थे, भ्रष्टाचारी थे, और साथ ही जो कहते हैं कि साहब ये स्मार्ट सिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है, नील है। तो 500 करोड़ की योजना थी सेवन वंडर्स की, चाहे वो फूड कोर्ट थी, सब मतलब पैसा का बर्बादी हुई है। अब अजमेर का चहुंमुखी विकास होगा।
12: कांग्रेस का ये वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। कांग्रेस बसों में भरकर अपने पार्षदों को खरीद फरोख्त के दायरे से दूर ले जा रही है, इस डर से कि उनके पार्षदों में सेंध ना लग जाए।
14: पैसे का लेन देन होता है, लिफाफे पड़ते हैं, वो सब आप दूर करेंगे। साथियों, मैं एक बात आपको बता दूं कि मैंने कल भी परसों भी यही कहा था कि अनुशासन सबसे बड़ा है। आपको किसी भी हालत में, चाहे कोई भी हो, आपको आज से लेके 21 तारीख तक कहीं नहीं जाना है, न मोबाइल यूज करना है, न किसी से बात करनी है।
12: अजमेर में कांग्रेस को अपने पार्षदों की सुरक्षा करनी पड़ रही है, तो फतेहपुर में बीजेपी ने बसों में भरकर अपने पार्षदों को होटल लाकर उनकी बाड़ेबंदी करती। कुछ ऐसी ही स्थिति अलवर की भी है, जहां किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। यहां भी बीजेपी कांग्रेस दोनों को अपने पार्षदों के टूटने का खतरा सता रहा है, लिहाजा यहां भी पार्षदों की जबरदस्त बाड़ेबंदी की जा रही है। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
1: अब ऐसे एक रिसोर्ट के बाहर आपको ले चलते हैं, हमारे संवाददाता शरद इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, अब आप एक रिसोर्ट के बाहर हैं, तो किस दल के विधायक भीतर हैं बताएं? मार्क मॉफी जी के पार्षद हैं।
15: देखिए राजीव, ये जयपुर के बीजेपी के जयपुर के ये बीजेपी के पार्षद हैं। ये फाइव स्टार रिजॉर्ट है, पलारा पैलेस, वहां पर रुके हुए हैं। बहुत सारे यहां पर बाहर निकल के आए, उनकी पत्नी किसी की, किसी के भाई, किसी का बेटा, कोई दवाई देने आ रहा है, कोई कपड़े देने आ रहा है। लेकिन ये 12 तारीख से बंद है यहां पर बीजेपी के सभी पार्षद, और चूंकि चुनाव टल गया है, ये कब तक बंद रहेंगे पता नहीं। इसी तरह से पूरे राजस्थान में करीब 10,000 से ज्यादा पार्षद अलग अलग रिजॉर्ट में बंद कर दिए गए हैं, होटलों में कैद कर दिए गए हैं, बसों में भर के ले जाया जाता है, इन्हें शपथ दिलवाया जाता है, वापस बस में भर कर लाया जाता है इन्हें, यहां तक कि जश्न भी नहीं मना पाए हैं। अब बताइए, इतने करोड़ रुपया खर्च हो रहा है पिछले 12 दिन तक, तब ये रहेंगे और पता नहीं कब तक ये रहेंगे, चूंकि चुनाव टल गया है जयपुर में मेयर का। तो पूरे राजस्थान की बात करें तो ये करोड़ रुपया स्वाहा हो रहा है, ये माले मुफ्त दिले बेरहम जो निकलेगा, ये जनता की गाढ़ी कमाई से तो निकलेगा, कहां से निकलेगा जब पार्षद चुनाव की ये स्थिति है। करोड़ों करोड़ की बोलियां लग रही, इतनी निर्दलीय जीते हैं आप ये समझिए। एक होटल से दूसरे होटल भाग रहे हैं, पुलिस उनके पीछे भाग रही है, ऐसी लूट की जनता खुद शर्मा जाए कि हमने चुनकर किसे भेजा है। तो ये स्थिति है पूरे राजस्थान की, जहां पर कोई भी नगर पालिका आप देख रहे हैं, 309 में से कोई भी नगर पालिका, जिला, नगर परिषद और नगर निगम नहीं है जहां के जो पार्षद सब कैद नहीं कर दिए गए हैं। ये देख रहे हैं, ये ताला लगा हुआ है, होटल में ताला लगा हुआ है, गार्ड ताला खोलता है किसी को दवाई भी लेकर जाना हो तो, इस तरह से ये बंद करके रखे गए हैं। और कोई स्विमिंग पूल में नहा रहा है, कोई संगीत सुन रहा है, कोई रात को पार्टी कर रहा है, मतलब इस तरह का माहौल पूरे राजस्थान में जनता देखकर स्तब्ध है कि हमने चुना किसके है। पार्टियों को अपने पार्षदों पर भरोसा नहीं है कि ये भाग न जाएं, बिक न जाएं। दरअसल पिछली बार हुआ भी ऐसा है, बीजेपी ने इसी तरह से एक होटल में कैद कर रखा था अपने पार्षदों को, वहां से विश्रू लाटा नाम के पार्षद चारदीवारी फांद गए आधी रात को, पैर टूट गया, टूटे पैरों के साथ स्ट्रेचर पर कांग्रेस में मिलकर और जयपुर के मेयर पद का शपथ ले लिए। आप समझिए किस तरह की नौटंकियां चलती है यहां पर मेयर पद के लिए, नगर पालिका पद के लिए, नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए। जी
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहां रुकेंगे शो से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: एयू
2: सोच बदलो और बैंक भी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: aqui. Olha a rocha ali, aqui,
1: खैबर के सीएम को किसने किया अगवा? हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के पीछे किसकी साजिश? इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर मचा बवाल। मुनीर और शहबाज शरीफ के जुल्म पर उठे सवाल। लाहौर की सड़कों पर हो रहा ये ड्रामा पाकिस्तान की बेशक एक नई सियासी तस्वीर हो, लेकिन नीति और नियत तो वही पुरानी है। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि पिछले 24 घंटों में लाहौर में ऐसा क्या बवाल हो गया जिससे एक राज्य के मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में इसे लेकर बवाल हो गया है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 27 सितंबर को इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। पीटीआई ने 3 साल से जेल में बंद इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर इस्लामाबाद मार्च बुलाया है और राजधानी में बड़ी तादाद में लोगों को जुटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इसे देखते हुए इस्लामाबाद और पंजाब में सुरक्षा इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है और हर दूसरे दिन पीटीआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में लाहौर में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी पहुंचे थे। देर शाम रोड शो के दौरान अफरीदी को लाहौर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरोप है कि पुलिस कई घंटों तक उन्हें गाड़ी में बैठाकर सड़कों पर घुमाती रही। गाड़ी के अंदर से ही बनाए गए वीडियो में आरोप लगाया जा रहा है कि पंजाब में खैबर के सीएम को अगवा कर लिया गया है।
0: एक सीएम केपी को अगवा कर लिया गया, ये देखिए सीएम केपी को अगवा कर लिया गया पंजाब, मरियम नवाज ने, शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने, ये देखिए ये सीएम केपी को अगवा कर लिया गया, इनको शर्म नहीं आ रहा है, अगवा कर लिया। ये देखिए पंजाब पुलिस ने सीएम को अगवा कर सीएम
1: सीएम के साथ बैठा शख्स पुलिस की गाड़ी के पीछे आ रहे बाइक सवारों को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि सीएम को अगवा कर लिया गया है। आरोप ये भी लगाया गया कि बाद में ऊपर से दबाव बढ़ा तो पुलिस ने सोहेल अफरीदी को सड़क किनारे उतार दिया। घंटों तक लाहौर की सड़कों पर ये सियासी ड्रामा चलता रहा। पीटीआई के कार्यकर्ता इकट्ठा होते रहे और मरियम सरकार को कोसते रहे। पीटीआई लगातार ये आरोप लगा रही है कि पंजाब की मरियम नवाज सरकार अपने पिता नवाज शरीफ और चाचा शहबाज शरीफ की तरह बदले की भावना से काम कर रही है, इसीलिए उनकी पुलिस ने एक सीएम को अगवा कर 3 किलोमीटर तक गाड़ी में घुमाया और लक्ष्मी चौक के पास सड़क पर उतार दिया। अभी कुछ दिन पहले ही मरियम नवाज ने आरोप लगाया था कि पंजाब को पड़ोसी देशों से नहीं अपने पड़ोसी राज्यों से खतरा है, जिनमें खैबर का भी नाम लिया गया था। खैबर और पंजाब के बीच ये सियासी जंग अभी और तेज होने वाली है क्योंकि अगले 10 दिन तक इमरान खान की पार्टी हजारों लोगों को पंजाब में जुटाकर इस्लामाबाद मार्च की तैयारी करेगी और इन हालात में पंजाब पुलिस का हर एक्शन पाकिस्तान में सियासी रिएक्शन का काम करेगा। आज तक ब्यूरो।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

होगा मजबूत, 15 अक्टूबर से नया नियम, विपक्ष ने उठाए सवाल। यूसीसी विरोधी सभा में बीजेपी विधायक के मिसाइल अटैक वाले बयान पर भड़के ओवैसी, तो एमएलए की जवाबी चेतावनी, अखिलेश यादव ने यूसीसी को बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। दिशा सालियन की मौत मिस्ट्री सुलझाएगी सीबीआई अफसर सीमा पहुजा, हाथरस और आरजीकर कांड से लेकर गुड़िया केस तक कर चुके हैं जांच, सीबीआई के स्पेशल क्राइम यूनिट में एसपी हैं सीमा। यूपी में जनप्रतिनिधियों के गनर्स के लिए खरीदे जाएंगे हथियार, 809 mm सब मशीन गन और 2.5 लाख कारतूस खरीदने की तैयारी, राम मंदिर समेत हाई सिक्योरिटी जगहों के लिए स्नाइपर राइफल। खाड़ी में खुला युद्ध का एक और मोर्चा, हुती विद्रोहियों का दावा, मार गिरा है सऊदी अरब का F-15 फाइटर जेट, बाब अल मंदेब के तेल रूट पर भी खतरा।

0: नमस्कार, 12 बजे 12 रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं राजीव ढोंडिया। शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिपोर्ट यूपी के प्रयागराज से, जहां पर समाजवादी पार्टी के युवा नेता पवन यादव की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पवन यादव की हत्या हुई थी और गिरफ्तार आरोपियों के नाम है लल्ला यादव, ब्रजेश यादव और निहाल अली। पुलिस के मुताबिक वारदात में तीनों ही आरोपी बाइक से पहुंचे थे। पुलिस के मुताबिक निहाल बाइक चला रहा था, ब्रजेश बीच में बैठा था और लल्ला ठीक सबसे पीछे बैठा था। पुलिस के मुताबिक व्यक्तिगत दुश्मनी में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मंगलवार शाम बाइक सवार 3 हमलावरों ने प्रयागराज के हंडिया इलाके में गोली मारकर पवन यादव की हत्या कर दी थी। पवन यादव समाजवादी पार्टी के जिला सचिव और पूर्व प्रधान भी बताए जा रहे हैं।
1: प्रयागराज हंडिया हत्याकांड में जिस तरीके से पवन यादव की हत्या हुई थी, कई तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें ब्रजेश यादव, इसके साथ साथ निहाल अली और इसके साथ साथ लल्ला यादव, तीनों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें हत्या में प्रयुक्त की गई जो मोटरसाइकिल थी उसको भी बरामद कर लिया गया है।

0: जांच कर रही है। लेकिन इस हत्या के बाद चूंकि समाजवादी पार्टी से लिंक जुड़ा हुआ था जिनकी मौत हुई थी, अब ऐसे में लगातार कयास लगाए जा रहे थे और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था, लेकिन पुलिस ने समय रहते ही खुलासा करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
1: अब समाजवादी पार्टी के एमएलसी मान सिंह पवन यादव के परिवार को मुआवजा और सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं।
2: वही इकलौते कमाने वाले थे, घर के पूरे खर्च कैसे चलेंगे, तीन तीन बहनें हैं इनकी, उनके पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह कौन करेगा। तो जब तक उचित मुआवजा नहीं दे दिया जाता है और इनके सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नहीं ले ली जाती है और अपराधियों को पकड़ा करके उनका इनकाउंटर नहीं कर दिया जाता है, तब तक हम लोग इस अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे।
1: 12 बजे 12 रिपोर्टर में बात करेंगे योगी सरकार के बड़े फैसले की। यूपी में जनप्रतिनिधियों के गनर्स के पुराने हथियारों को बदलने का फैसला लिया गया। 809 mm सब मशीन गन और लगभग 2.5 लाख कारतूस खरीदे जाएंगे। राम मंदिर समेत हाई सिक्योरिटी प्रतिष्ठानों पर स्नाइपर्स की तैनाती की जाएगी। विशेष सुरक्षा बल को ये नई स्नाइपर राइफलें मिलेंगी और पूरी खबर बता रहे हैं संवाददाता कुमार अभिषेक। राम मंदिर की सुरक्षा में अब स्नाइपर्स की तैनाती होगी जिससे सिक्योरिटी और पुख्ता हो, लेकिन जो खास बात यह है कि जो पुरानी हथियार थे उन हथियारों को बदला जाएगा, नई आधुनिक गन उनको दी जाएगी ताकि नई टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल कर सके, सुरक्षा और ज्यादा मजबूत हो और जो हाई सिक्योरिटी जोन है, हाई सिक्योरिटी प्रतिष्ठान है राम मंदिर जैसे, वहां पर स्नाइपर्स की तैनाती अब की जाएगी। 2.5 लाख कारतूस खरीदने का निर्णय लिया गया। इसके साथ साथ 809 mm सब मशीन गन लेने का निर्णय लिया गया है।

0: अगली रिपोर्ट भी लखनऊ से है। कल योगी कैबिनेट की बैठक थी और कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे को लखनऊ बुलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने हेलीकॉप्टर भेज दिया। मनोज पांडे उस समय ऊंचाहार में शिव महापुराण कथा में मौजूद थे। मुख्यमंत्री की ओर से हेलीकॉप्टर भेजे जाने के बाद मनोज पांडे उसे लखनऊ पहुंचे, कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने खुद इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है।
1: रायबरेली के ऊंचाहार में महाशिव पुराण चल रही थी, लेकिन तभी पंडाल से निकलकर एक मंत्री बाहर आते हैं और सरकारी हेलीकॉप्टर पर बैठ जाते हैं और वो हेलीकॉप्टर सीधे लैंड करता है लखनऊ की उस जगह पर जहां से कुछ दूरी पर कैबिनेट की जरूरी बैठक शुरू होनी है। ये मंत्री हैं यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे, जो समाजवादी पार्टी में मुख्य सचेतक हुआ करते थे, लेकिन आम भाषा में समझें तो कुल मिलाकर ये हेलीकॉप्टर नहीं है बल्कि वो सियासी कद है जो मनोज पांडे का बीजेपी में आने के बाद बढ़ा है। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर एक कैबिनेट मंत्री को लेने आता है जिससे वो कैबिनेट बैठक में समय से पहुंचे। कुल मिलाकर ब्राह्मण समीकरण साधने के साथ साथ रायबरेली और अमेठी के दुर्ग की ओर देखती भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो हाथ जो मनोज पांडे पर अब साफ दिखाई पड़ता है।
0: अब बात भोपाल की करेंगे। भोपाल में यूसीसी के विरोध में हुई सभा के दौरान एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा को सीधी चुनौती दी है। रामेश्वर शर्मा ने 4 सितंबर को जन्माष्टमी के कार्यक्रम में विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भोपाल के करौंद इलाके में काजी कैंप की तरफ मिसाइल दागेंगे। अब कल बारी असदुद्दीन ओवैसी के पलटवार की थी। उन्होंने रामेश्वर शर्मा को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें दम है तो बताएं कि मिसाइल कब लॉन्च करेंगे। ओवैसी ने कहा कि वो अकेले काजी कैंप में खड़े हैं और ऐसी धमकियों से डरते नहीं हैं।
2: भोपाल से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा के काजी कैंप पर मिसाइल दागने वाले बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मंगलवार को जब भोपाल में यूसीसी के खिलाफ एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने रामेश्वर शर्मा के इसी बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें चुनौती दे डाली कि अगर वो माई के लाल हैं तो फिर काजी कैंप पर मिसाइल चला कर दिखाएं। इस मामले में अब रामेश्वर शर्मा का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि अगर ओवैसी को लगता है तो वो खुद इस चुनौती को स्वीकार करने के बाद हैदराबाद आने के लिए भी तैयार है। ये मामला तब गर्माया था जब जन्माष्टमी पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने

0: एक बयान दिया था। उन्होंने तब भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति और मिसाइल तकनीक का जो इस्तेमाल है उसको लेकर के एक बयान दिया था और कहा था कि आज की तारीख में भारत के पास मिसाइलें जो हैं वो इतनी सक्षम है, करोत से चलाओ और काजी कैंप पे गिरेगी। इस दौरान काफी विवाद हुआ था, रामेश्वर शर्मा पे FIR की मांग भी उठी थी। काजी कैंप दरअसल पुराने भोपाल का एक इलाका है, जिसे लेकर के जब ये बयान सामने आया तो फिर सूबे की सियासत गर्मा गई थी और अब इसमें AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है।
1: अब आपको दिखाते हैं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का विवादित बयान और उस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार।
2: मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, जब हिंदुस्तान में लोग कहते थे सुई बनाना नहीं जानते तो मोदी जी ने कहा कि हम मिसाइल बनाएंगे। जैसे तुम करोत के चौराहे पर खड़े होकर मिसाइल लगाओ और काजी कैंप में गिरा दो, वैसे ही अरे मैंने यहाँ का काजी कैंप नहीं बोला, इस्लामाबाद वाला बोला था।
3: ये कोई रामेश्वर शर्मा साहब का बयान सुना? तुम क्या बोले, मैं मिसाइल लॉन्च करूंगा करोड़ स्क्वायर से काजी कैंप पर। रामेश्वर शर्मा, अगर तुम मई के लाल हो
1: अब अगली रिपोर्ट जयपुर से। राजस्थान निकाय चुनावों के नतीजों के बाद अब रिसॉर्ट पॉलिटिक्स तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक नतीजों के बाद से बीजेपी कांग्रेस समेत निर्दलीय जीते लगभग 10,000 नवनिर्वाचित पार्षद होटलों और रिसॉर्ट में अलग अलग जगहों पर बंद हैं और यहां तक कि मतगणना के बाद से जीत का सर्टिफिकेट लेने तक भी इनको नहीं जाने दिया गया है और इनके एजेंटों ने ही जीत का सर्टिफिकेट लिया है।
4: माले मुफ दिले बेरहम, राजस्थान में निकाय चुनाव खत्म हो गए मगर 12 दिनों तक 10,000 से ज्यादा पार्षद 5-स्टार होटल से लेकर रिजॉर्ट तक में कैद कर दिए गए हैं, क्योंकि पार्टियों को भरोसा नहीं है कि पार्षद बिक भी सकते हैं। लिहाजा इन्हें शपथ दिलाने के लिए बसों में भरकर लेकर जाया जा रहा है और फिर वापस लाकर होटल में कैद कर दिया जा रहा है। मोबाइल तक जमा करा लिए गए हैं कि कहीं से ऑफर ना आ जाए। जीतने के बाद जीतने का जश्न भी नहीं मना पाए हैं, परिवार वालों से मिलना दुभर हो गया है। जो जनता इन्हें चुनकर भेजी है वो तरस रही है कि अपने पार्षद का दीदार कर लें, मगर यहाँ एक एक पार्षद की लड़ाई चल रही है और करोड़ों वारा न्यारा हो रहा है। अब सवाल उठता है कि जो पैसे खर्च हो रहे हैं ये क्या जनता से वसूले जाएंगे?
1: अगली रिपोर्ट पश्चिम बंगाल से। नंदीग्राम में नामांकन का आज अंतिम दिन है। 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की मां हसीरानी रथ को उम्मीदवार बनाया है। तृणमूल कांग्रेस ने ममता ग्रुप से संचिता डे मैदान में है। ऋतपथ ग्रुप ने मोहम्मद एहतिशामुल हक को उतारा है और कांग्रेस से मिलन प्रधान तो CPI से शांति गोपाल गिरी कैंडिडेट बनाए गए हैं। तो हाथीरानी रस जो कि शुभेंदु अधिकारी के पीए जिनकी हत्या कर दी गई थी उनकी माता हैं, बीजेपी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया, जबकि हर दल की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है। आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है, अंतिम तारीख है। खुद शुभेंदु अधिकारी इस चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं।
5: नंदीग्राम उपचुनाव की लड़ाई काफी रोचक हो चुकी है। उसकी वजह है कि इस बार काफी सारी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। CPM अलग लड़ रही है, बीजेपी अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग है, तृणमूल कांग्रेस के दो गुट, दो फैक्शन अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं और आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। बीजेपी ने नामांकन भर दिया है, कांग्रेस की ओर से भी नामांकन पत्र दाखिल किया जा चुका है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों और CPM की ओर से आज नामांकन पत्र दाखिल किया जा रहा है। आज आखिरी तारीख है और पिछले दो बार से ये सीट बीजेपी के पास है और ऐसे में इतनी सारी पार्टियों के एक साथ लड़ने से बीजेपी को थोड़ा फायदा होने की आशंका या संभावना जताई जा रही है।
1: अब बड़ी खबर आपको देते हैं। भारत पर अमेरिका से 100% टैरिफ का खतरा मंडरा रहा है और अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में आज एक बिल पर मतदान होना है। इसमें भारत समेत 10 देशों पर 100% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। माना जा रहा है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में इस बिल को मंजूरी मिल जाएगी। इस बिल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह अधिकार देने की बात कही गई है कि वो रूस से तेल खरीदने वाले बड़े देशों पर 100% तक टैरिफ लगा सकें।
6: भारत और अमेरिका के रिश्तों की चाल टैरिफ का कांटा कई बार गड़बड़ाता रहा है। अमेरिका में एक बार फिर भारत पर ज्यादा टैरिफ की तलवार लटक रही है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस के साथ तेल व्यापार और कारोबार करने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने की इजाजत देने वाला और उनको अधिकार देने वाला लिंडसे ग्राहम ईरान सैंक्शन एक्ट, जो कि अमेरिकी सीनेट से पारित हो चुका है, अब अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वोटिंग के लिए तैयार हो रहा है। इस बिल के पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह अधिकार मिल जाएगा कि वो रूस के साथ तेल व्यापार और कारोबार करने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगा सकें, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है। अब ये बात अलग है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला कब और कैसे लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये भी खड़ा होता है कि जहां एक तरफ भारत जैसे मुल्कों पर ज्यादा टैरिफ की छड़ी चलाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद रूस के साथ व्यापार कारोबार और समाधान के रास्ते तलाश रहे हैं, जिसके अंदर ऊर्जा कारोबार भी शामिल है।
1: 12:12 रिपोर्टों में अब उस खबर की बात जो सीधा आपकी जेब से जुड़ी हुई है। 2,000 रुपए से ज्यादा के चुनिंदा मर्चेंट यूपीआई पेमेंट पर 0.4% एमडीआर लागू करने के फैसले का अब आरबीआई ने समर्थन किया। आरबीआई का कहना है कि इससे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मजबूत होगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पेमेंट नेटवर्क है, उसमें निवेश को इससे बढ़ावा मिलेगा।
7: विपक्षी पार्टियों का कहना है कि लोगों को अब ये जो स्कैनर है, जो यूपीआई आपको यहाँ नजर आ रहा है, इसको पे करने के एडिशनल चार्जेस देने होंगे, लेकिन आरबीआई का ये कहना है कि एडिशनल चार्जेस नहीं लगेंगे। आरबीआई सरकार के साथ खड़ा है और आरबीआई ने ये साफ कर दिया है कि वो चाहते हैं कि सरकार ने जिस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया है, उसका जो कारण है वो ये है कि जिस तरीके से बैकएंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरीके से पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाया जाता है, उस सिस्टम को और स्ट्रेंथन किया जा सके। अगर हम और आप किराने की दुकान पर जाते हैं और हमारा महीने का बिल 1,00,000 रुपए से कम होता है, तो किसी भी तरीके का हम पे कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप स्कूल फी यूपीआई के थ्रू पे करते हैं तो उस पर भी चार्ज नहीं होगा, लेकिन ये जो चार्ज है जो शॉपकीपर्स हैं उन लोगों को जरूर पे करना पड़ेगा। तो बड़ा सवाल ये है कि सरकार क्या कोई ऐसे नियम लेके आएगी जिससे कि जो ये चार्जेस हैं वो कस्टमर के ऊपर ना लगे। इस समय ये एक बड़ा सवाल है। 1 महीने तक का समय हालांकि सरकार ने दिया है, सरकार विचार विमर्श कर रही है, एक्सपर्ट्स की भी ओपिनियन ली जा रही है, लेकिन एक बड़े तबके का मानना है कि अगर कंज्यूमर के ऊपर इसका भार आया तो वो नुकसानदेह होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे जो मेरा और आपका मंथली बजट है उस पर जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यूपीआई हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है।
1: और यूपीआई प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए लोग इस पर क्या कुछ करें, दो बड़े बयान आपको सुनाते हैं।
8: इनमें लगभग जो है करीब 70 से 80 करोड़ ट्रांजैक्शन होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं। तो मुझे तो लगता है कि अब इंडस्ट्री के पास आएगा रेवेन्यू, वो इन्वेस्ट कर पाएंगे, ज्यादा और छोटे शहरों में जा पाएंगे, ज्यादा मर्चेंट्स को ये कर पाएंगे, डिजिटाइज कर पाएंगे। कस्टमर साइड पे भी टीपैप्स को भी पैसा मिल रहा है फाइनली 6 साल बाद, तो हम सब जो है और मार्केटिंग कर पाएंगे और यूज केस ला पाएंगे। सारे बिजनेसमैन दुनिया में यही चाहते हैं ना कि अपना व्यापार बढ़ाएं, अपना बिजनेस बढ़ाएं, तो पेमेंट कंपनियां अलग क्यों होंगी, पैसे आएंगे तभी तो बढ़ेंगे।
9: ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है इंडिया के लिए, बिकॉज देखिए इसी वर्ष यूपीआई के 10 साल हो गए, और यूपीआई की वजह से डिजिटल पेमेंट्स इंडिया में बहुत स्केल हो गया है, सभी लोग यूज करने लग गए। बट अब इसका जो स्केल इतना हो गया है, इसका जो कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बैंक्स और पेमेंट कंपनी सपोर्ट कर नहीं पा रहे। तो जो ये डायरेक्शन आया है ये पेमेंट्स इंडस्ट्री के लिए, बैंक्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव है, और जो आम इंडियन है, जो इंडियन ग्राहक है, उसके लिए बिल्कुल भी न्यूट्रल है, कोई चेंज नहीं है। बिकॉज जितनी भी पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति टू व्यक्ति जो ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे मान लीजिए मैंने अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में किसी को पेमेंट की है, उस पर कोई चार्ज नहीं है।
1: अब बात गुरुग्राम हिट एंड रन केस की करेंगे, जहां पर हरियाणा पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने एक और आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी 34 साल का लवनिश है, जो पलवल की न्यू कॉलोनी का रहने वाला है। आरोपी है कि गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइकर को कार से टक्कर जब मारी गई थी, तो उस समय लवनिश कार में मौजूद था। मुख्य आरोपी कार चालक कल्याण बैंसला के साथ उसी कार में मौजूद था। अब अगली रिपोर्ट दिल्ली से। दिल्ली में हुए एक हत्याकांड की, दिल्ली के केशवपुरम थाना इलाके के कन्हैया नगर इलाके में डीडी ना देने पर चाकू चला दिया गया। एक युवक की इसमें जान चली गई, दूसरा इसमें जख्मी भी है और पूरी जानकारी दे रहे संवाददाता हिमांशु मिश्रा।
5: राजधानी दिल्ली के केशवपुरम इलाके से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां पर माचिस मांगने को लेकर के विवाद हो गया और इस विवाद में चाकूबाजी हो गई और इस चाकूबाजी में 30 साल के भवानी की तो मौत हो गई, जबकि आशाराम नाम के एक शख्स को कई चाकू लगे, वो गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है, 3 लोगों को डिटेन कर लिया है और पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कैमरामैन लोकेन्द्र पांडे के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
1: 12:12 रिपोर्टर में बात करेंगे दिशा सालियान केस की, इस मौत मिस्ट्री की। दिशा सालियान केस की निगरानी सीबीआई के अधिकारी सीमा पहुजा को सौंपी गई है। सीमा पहुजा फिलहाल सीबीआई दिल्ली में स्पेशल क्राइम यूनिट में बतौर एसपी तैनात हैं और सीमा पहुजा को उन्नाव केस, हाथरस केस, आर्जिकल केस की जांच का अनुभव है।
10: एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में सीबीआई ने FIR दर्ज कर ली है। डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच के जांच अधिकारी हैं, वहीं इस जांच की निगरानी करेंगी सीबीआई की तेज तरार अफसर सीमा पहुजा। उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड की 15 सदस्यीय जांच कमेटी में शामिल थी सीमा पहुजा, जबकि कोलकाता का आर्जकर अस्पताल में रेप और मर्डर कांड की जांच भी सीमा पहुजा ने ही की थी। इसके अलावा हिमाचल के शिमला में गुड़िया कांड, जो बेहद चर्चित कांड था, उसको भी सीमा पहुजा ने ही सुलझाया था। 2021 में बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का अवार्ड भी सीमा पहुजा के नाम था। सीमा पहुजा बेहद ईमानदार अफसर है। दिशा सालियान की मौत की मिस्ट्री मामले की निगरानी भी अब सीमा पहुजा ही करेंगी।
1: अब सऊदी अरब और हुती विद्रोहियों के बीच में जारी जंग को लेकर एक बड़ी खबर आपको देते हैं। हुती विद्रोहियों ने सऊदी समर्थित सेना के साथ लड़ाई का एक वीडियो जारी किया है, बड़ा दावा किया है। अब उसने हमला करके सऊदी समर्थित सेना की गाड़ियों पर कब्जे का दावा किया है। दावे के मुताबिक ये तस्वीरें उत्तरी प्रांत अल जौफ की है। वीडियो में धमाके में जलते हुए सैन्य वाहन देखे जा सकते हैं। वीडियो में रेगिस्तानी युद्ध क्षेत्र में धुएं और धूल का गुबार उड़ता हुआ दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक हुती ने यह वीडियो जारी करके जबरदस्त लड़ाई का दावा किया है। तो एक और मोर्चा खुल गया है ईरान के साथ। तनाव पहले अमेरिका का लगातार बनाए हुआ था, ईरान की तरफ से लगातार पलटवार भी हो रहा था और अब हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और इसके साथ साथ पोल उस समझौते की भी खोल दी हैं जिसे मक्का समझौता कहा गया। लेकिन इस समय विद्रोहियों की तरफ से बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। अब सैन्य वाहनों पर नियंत्रण का पूरा दावा है।
11: यमन के हूतियों और सऊदी अरब के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। हूतीज ने न सिर्फ सऊदी अरब में तेल के जखीरों पर हमले किए बल्कि साथ ही साथ सऊदी अरब के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है। अल खालिद एयरबेस में पहले ही हूतियों ने कई सारे हथियारों के भंडारों को निशाना बनाते हुए उनको तबाह कर दिया है। दूसरी तरफ यमन में भी सऊदियों की बनाई गई सरकार जो है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं बिखर रही है, क्योंकि एक के बाद एक यमन में हूतियों का कब्जा जारी है। इस बीच सऊदी अरब का दावा है कि हूतीज की तरफ से मुसलमानों के सबसे पवित्र शहर मक्का की ओर भी ड्रोन दागे गए जिनको हवा में ही तबाह कर दिया गया है। अब सऊदी अरब ने फिलहाल लोडिंग जहाजों में करने को रोक दिया है जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है।
1: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: SBI Celebrations Unlimited. ये गणेशोत्सव बनेगा स्पेशल विद फेस्टिव ऑफर्स ऑन कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
5: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
11: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
12: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
13: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
14: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
15: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है।
16: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
17: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
18: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
19: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA।
20: अब मैं क्या ही बोलूं?
21: परिवार, अटूट भरोसा।
22: In association with
23: Signature Finest Cardamom Seeds, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Anmol Biscuits, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
24: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: आज तक के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे बड़ी सभा।
4: आज का बैटलफील्ड 4000 किलोमीटर तक जा रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है।
5: इमीडिएट बालापुर मान जाइए, अब वो जब भी नहीं माने तो फिर सिंदूर की हमारे को नौबत आ गई।
6: अंडमान निकोबार आइलैंड तो जरूर हमको उसका एडवांटेज लेना ही चाहिए।
7: जो बाउंड्री प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में, इसका भी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता।
8: कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा, भारत की सेनाएं उसका जवाब देगी।
3: आज तक देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ी आवाज़।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

योगी कैबिनेट का चयन, एल्फा के लिए बड़ा फैसला। 14,429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय बनेंगे स्मार्ट स्कूल। 300 करोड़ की धनराशि मंजूर। यूपी के सरकारी स्कूल के बच्चे अब स्मार्ट क्लास, लैब, डिजिटल बुक्स, डिजिटल लाइब्रेरी और टीचर्स के हाथ में टैबलेट से पढ़ते हुए नजर आएंगे। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड को स्मार्ट क्लासेस की स्थापना के लिए कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया गया। योगी सरकार ने नकली शिक्षक वैकेंसी यूपी में निकली हुई 15,012 पदों पर भर्ती शुरू कर दी है। माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक से लेकर पीजीडी तक के पदों पर विज्ञापन जारी किया गया। 897 सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी, 11,508 सहायक अध्यापक शहरी और 2,607 प्रवक्ता पदों पर भर्ती होगी और पीजीटी के लिए 18 सितंबर से आवेदन। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, बोले यूथ अब सरकार बदलने के मूड में, 2027 में पीडीए की बनेगी सरकार। अखिलेश यादव ने कहा हम 2027 में पीडीए सरकार बनाएंगे और नए जमाने के हिसाब से फैसले लेंगे। लखनऊ में सपा नेता दीपक रंजन का बीजेपी पर हमला, जनता समझ गई सरकार जाने वाली है, पीडीए का बोलबाला है। अखिलेश यादव के रोजगार वाले बयान पर राजभर का पलटवार, गिनाई योगी सरकार की उपलब्धियां और नौकरियां। लखनऊ में यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने छात्र सभा की सदस्यता अभियान का शुरुआत किया और जेन जी और युवाओं को साधने का प्रयास। यूसीसी को अखिलेश यादव ने बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी, बीजेपी पर साधा निशाना का, 15 लाख खाते में पहुंचाओ फिर यूसीसी लाओ। मुरादाबाद में यूसीसी पर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन बोले कि धार्मिक परंपराओं का पालन करते रहेंगे। सुल्तानपुर में यूसीसी को लेकर संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, बोले देश की धार्मिक विविधता के लिए खतरा है। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर प्रदर्शन, कोविड काल के हेल्थ केयर वर्कर्स, आशा वर्कर्स और आईटीआई इंस्ट्रक्टर बनने के इच्छुक उम्मीदवारों ने मिलने की मांग की थी। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद का अखिलेश पर हमला, बोले कि सपा पहले अपना वजूद बचाए, निषाद पार्टी को किसी की बैसाखी की आवश्यकता नहीं। यूपी में जनप्रतिनिधियों के गनर्स के बदलेंगे पुराने हथियार, 800 सब मरीन गन खरीदने की मंजूरी। यूपी के प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के नेता की गोली मारकर हत्या, वारदात में शामिल तीनों ही आरोपी गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल बाइक और दोनों तमंचे पुलिस ने किया बरामद, पूछताछ में आरोपियों ने व्यक्तिगत दुश्मनी की बात बताई। मुजफ्फरनगर में विवाद के चलते दबंग पड़ोसियों ने 70 साल के बुजुर्ग को लाठी डंडों से पीटा और पीट पीट कर हत्या कर दी, घटना कैद सीसीटीवी में। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हिट एंड रन का मामला, युवक को कार से टक्कर मारी गई और हादसे का आरोपी गिरफ्तार।

0: उत्तर प्रदेश में चुनावों से पहले जिस तरह हर मोर्चे पर राजनीतिक दांव आजमाए जा रहे हैं, अब स्कूली शिक्षा और जेन एल्फा के मुद्दों को लेकर भी सरकार एक्शन में है। योगी सरकार ने फैसला किया है कि यूपी के 14,000 से ज्यादा बेसिक स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में बदला जाएगा। इत्तेफाकन ये फैसला तब आया है जब कॉकरोच जनता पार्टी ने यूपी में स्कूल ठीक करो अभियान के तहत स्कूलों की पड़ताल शुरू की है।
1: उत्तर प्रदेश के 32,000 से अधिक बेसिक स्कूलों में स्मार्ट सुविधाएं पहले से मिल रही हैं। इन स्कूलों में स्मार्ट टीवी, 3D एनिमेशन और डिजिटल कंटेंट के साथ क्लासरूम को स्मार्ट बनाया गया है। 1,33,000 से अधिक बेसिक स्कूलों में से भले 32,000 स्कूलों में ही सही, लेकिन यूपी में स्कूली शिक्षा को स्मार्ट बनाने की दिशा में योगी सरकार ने पहल जारी रखी है और अब इसी कोशिश में योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है, जिसमें जेन एल्फा की स्कूली शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए बेसिक स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में बदलने की तैयारी हुई है। 15 सितंबर को लखनऊ में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ कि प्रदेश के 14,429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय अब स्मार्ट स्कूल बनेंगे। इसके लिए शुरुआती तौर पर 300 करोड़ की धनराशि मंजूर भी कर दी गई है। इससे बेसिक स्कूलों में स्मार्ट क्लास बोर्ड, ICT लैब और डिजिटल संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। श्रीटॉन इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी को स्मार्ट क्लासेस का काम सौंपा गया है। इसमें हर स्कूल को 2,07,910 रुपए मिलेंगे। CM योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है कि विद्यार्थियों की संख्या और नामांकन के आधार पर स्मार्ट क्लास एवं ICT लैब की सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। CM योगी कहते हैं कि 2017 से पहले स्कूलों की जर्जर हालत को दुरुस्त करने का अभियान जारी रहेगा।
2: कोई मानता था पहले कि बेसिक शिक्षा के परिषद के विद्यालयों में वहां कोई सुविधा होगी? कठिन था, जर्जर विद्यालय थे, शिक्षक नहीं थे, भवन अपने आप में जर्जर थे। भाई जैसा राज्य बीमारू है तो बीमारू वही है जहां पे जर्जर व्यवस्था सब कुछ थी, सरकारें ही जर्जर थी, तो सिस्टम अपने आप जर्जर हो जाता और यही था। हम लोगों ने बेसिक में ऑपरेशन कायाकल्प चलाया
1: और बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए चलाए गए ऑपरेशन कायाकल्प का असर 2021 के बाद ऐसा हुआ कि यूपी में 32,000 से अधिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस चलती हैं, 15,000 से अधिक विद्यालयों में ICT लैब की सुविधा है, 1,129 विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा भी दी जा रही है। प्रदेश में 2,61,000 से अधिक शिक्षकों को टैबलेट उपलब्ध कराए जा चुके हैं, लेकिन योगी सरकार की इन कोशिशों पर CJP सवाल खड़े करती है। 14,000 से अधिक स्कूलों को स्मार्ट बनाने के लिए सिर्फ 300 करोड़ का बजट झांसा है।
3: अब बताइए 300 करोड़ 14,000 प्लस स्कूलों के लिए, मतलब कि एक स्कूल को मिलेगा 2,00,000 रुपए। स्कूल में देश का फ्यूचर पढ़ने वाला है, वो 14,000 स्कूलों में 2,00,000 रुपए लगा के 300 करोड़ का झांसा दे रहे हैं।
1: दरअसल यूपी के चुनावी सीजन में CJP की टीम भी स्कूलों की सुध लेने में लगी है। सौरभ दास ने नोएडा के बिसरक इलाके में स्कूलों के दौरे किए, वहीं टीचर से बात की, बच्चों को उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया और सुधार की जरूरतों वाले स्कूलों का सच सामने लाने की बात कही। हालांकि बाद में CJP ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उन्हें स्कूलों में नहीं घुसने दिया जा रहा है। नोएडा से भूपेंद्र सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: वैसे भी दिल्ली में जंतर मंतर के आंदोलन के बाद से सरकारें सतर्क हैं। जेन जी और जेन एल्फा के मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाने लगा है और ऐसे में जब चुनाव दरवाजे पर है तो योगी सरकार ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रही है, फैसले ले रही है। अब यूपी में टीचर्स के बंपर वैकेंसी निकली है, जिसमें 15,012 पदों पर तो सहायक अध्यापक और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की भर्ती हो रही है। इसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग में 897 सहायक अध्यापक और उनसे जुड़े हुए स्कूलों में 11,508 सहायक अध्यापक शहरी पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में प्रवक्ता संवर्ग के 2,607 पदों पर भी भर्ती हो रही है। कुल 15,012 पदों पर भर्ती के लिए यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ये पद जारी किए हैं, लेकिन सियासत अपना किनारा नहीं छोड़ रही है। समाजवादी पार्टी यूपी में नौजवानों और स्कूली बच्चों के मुद्दों को नजरअंदाज करने का आरोप लगातार योगी सरकार पर लगा रही है। 25,000 से ज्यादा स्कूल बंद करने का आरोप भी अखिलेश यादव लगाते रहे हैं और अब जब यूपी में बेसिक स्कूलों को स्मार्ट बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए मिले और 15,000 टीचर्स की भर्तियां निकली हैं, फिर भी अखिलेश यादव सरकार पर हमलावर हैं। और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यूपी के युवा का मूड बदल गया है और अब सरकार बदलेगी। अखिलेश आरोप लगाते हैं कि नौकरी बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं, इसीलिए बेरोजगार बीजेपी के खिलाफ है। वैसे जब यूपी सरकार टीचर्स की भर्तियां निकाल रही है और स्कूलों के स्मार्ट बनाने के लिए चुनाव में ही लेकिन 300 करोड़ रुपए तो दे रही है, मंजूर कर रही है, तो अखिलेश यादव की ये आरोप और दावा किस बिना पर है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन पिछले कुछ दिनों की सियासत पर अगर आप नजर डालें तो इसी 3 सितंबर को लखनऊ में अखिलेश यादव और सीजेपी नेता आशुतोष रांका की मुलाकात हुई थी। उसके बाद 15 सितंबर से सीजेपी ने यूपी के स्कूल ठीक करो अभियान की शुरुआत की है। हालांकि पहले ही दिन के बाद से दावा है कि सीजेपी नेताओं को तो स्कूलों के अंदर दाखिल होने ही नहीं दिया जा रहा है, उनको परमिशन नहीं दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में कल तमाम महत्वपूर्ण फैसले हुए, जिसमें स्कूल, इसमें युवा, इसमें नौकरी, रोजगार से जुड़े हुए फैसले हैं। और उन्हीं में से एक फैसला अग्निवीरों से जुड़ा हुआ भी है। यूपी में अब पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी आरक्षण का रास्ता खुला हुआ है। यूपी में होने वाले जेल वार्डर प्रवर्तन सिपाही भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिलेगा। उन्हें उम्र सीमा में भी 3 साल की विशेष छूट मिलेगी। यह छूट उन्हीं अग्निवीरों को मिलेगी जो 4 साल की सैन्य सेवा पूरी कर लेंगे। सेवा अवधि हटाकर उनकी उम्र सीमा में 3 साल की छूट उनको मिलेगी। उत्तर प्रदेश में जेल वार्डों के लगभग 3,385 से ज्यादा पदों पर अगले महीने ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लेकिन चुनाव सामने है और चुनाव सामने देखकर यूपी के युवा अलग अलग विभागों में भर्तियों की मांग को लेकर अक्सर सरकार के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर के बाहर आईटीआई अनुदेशक की भर्ती निकालने की मांग पर युवाओं ने प्रदर्शन किया है। हालांकि इससे पहले हुए 2,500 पदों पर भर्ती के नतीजे आने ही वाले हैं, लेकिन 6,000 से ज्यादा खाली पदों पर भर्ती की मांग उठ रही है। इन युवाओं में कोविड के समय ठेके पर रखे गए और बाद में नौकरी गंवा चुके युवा भी शामिल हैं, जो कि अपनी बहाली की मांग कर रहे हैं। तो योगी सरकार एक तरफ भर्तियां, कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं और विकास योजनाओं की सौगात बांट रही है, तो दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर टिकट बंटवारे का फॉर्मूला भी फिक्स कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी में बीजेपी ने टिकट बंटवारे के लिए 15 सूत्रीय फॉर्मूला तय किया है। अब क्या है वो फॉर्मूला, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
4: में चुनाव का शंखनाद भर बाकी है, वरना सियासी दलों के अंदर खाने तैयारी पूरी है। अब खबर है कि बीजेपी ने टिकट को लेकर मंथन तेज कर दिया है। पार्टी की ओर से 4 अलग अलग स्तरों पर समानांतर पैरामीटर तैयार किए गए हैं। इस पैरामीटर में विधायकों के कामकाज, जनता और कार्यकर्ताओं के बीच छवि, विकास कार्य, चुनावी आंकड़ों, जातीय समीकरण और संभावित उम्मीदवारों की जीत की संभावना का आकलन किया जाएगा। इसके अलावा आरएसएस की जमीनी रिपोर्ट भी टिकट के फैसले में इनपुट देगी। सूत्रों के मुताबिक खराब रिपोर्ट वाले मौजूदा विधायकों के टिकट पर पुनर्विचार हो सकता है।
5: 4 जो पैरामीटर्स हैं उनको रिपोर्ट बनाकर दे दिया गया है, जिससे कि ये साफ हो गया है कि जो भी इसमें फेल पाया जाएगा उसका टिकट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो भी पास पाएगा उसको टिकट दिया जाएगा।
4: जिन 4 स्तरों पर टिकट के उम्मीदवारों की पैमाइश होगी उसमें कुल 15 बिंदु हैं, जिन पर उम्मीदवारों को खरा उतरना होगा। पहले बिंदु में मौजूदा विधायकों की सदन में उपस्थिति से लेकर सवाल उठाने और विधायक निधि के इस्तेमाल से लेकर पार्टी में छवि का पैमाना होगा। दूसरे बिंदु में जनता के बीच विधायक की उपलब्धता, विकास कार्यों से जनता की संतुष्टि, क्षेत्र में स्वीकार्यता का पैमाना होगा। तीसरे बिंदु में जीत की संभावना, जाति समीकरण और भागीदारी के पैमाने होंगे। और चौथे बिंदु में बूथ स्तर का फीडबैक और संघ की रिपोर्ट का पैमाना होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि कम से कम 20-25% विधायकों के टिकट पर खतरा मंडरा रहा है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: अब बढ़ते हैं आगे। यूपी में क्या आपके बार चुनाव यूसीसी की बिसात पर लड़ा जाएगा? अब यह सवाल इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद से यूपी में यूसीसी सबसे पहले लागू करने को लेकर मंत्रियों के बयान आ चुके हैं। खबर है कि मुख्यमंत्री योगी के दिल्ली दौरे में भी यूसीसी पर बात हुई है। उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दरअसल यूसीसी अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी है और मांग की है कि पहले 15 लाख का वादा पूरा करें, फिर यूसीसी लागू करें।
6: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
7: क्या गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान यूपी के चुनाव में गेम चेंजर साबित होगा? क्या 2027 में होने जा रहे यूपी विधानसभा चुनाव का एपिसेंटर यूसीसी ही बनेगा? क्या 2027 की चुनावी बिसात को देखते हुए ही बीजेपी ने यूसीसी का मोहरा चला है? इसे ठीक से समझने से पहले जरा अखिलेश यादव का नया संदेश देख लीजिए। अखिलेश ने यूसीसी की नई परिभाषा दी है। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, यूसीसी मतलब अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस यूसीसी का विरोध करते हुए एक्स पर लिखा है, जनता समझ रही है भाजपा जिस यूसीसी की बात कर रही है दरअसल उसका फुल फॉर्म कुछ और है, यूसीसी इक्वल टू अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। अखिलेश ने जिस अंदाज में यूसीसी को परिभाषित किया है उससे साफ है कि समाजवादी पार्टी यूसीसी का खुलकर विरोध करने जा रही है और उतना ही साफ ये भी है कि बीजेपी यूपी में इसे जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश करेगी। योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली आए थे और खबर है कि यूसीसी पर उनके गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई है।
5: उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचते हैं, भले ही एमयू साइन करने की बात हो अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ और होम मिनिस्टर के साथ मीटिंग, लेकिन इस दौरान यूसीसी पर भी चर्चा हुई। चर्चा इस दौरान भी की कैसे कानून व्यवस्था को सुधारा जाएगा अगर ये लागू होता है, क्योंकि सीएनआरसी के समय काफी अराजकता फैली थी। अब ऐसे में सियासत जरूर जारी है क्योंकि एक तरफ विपक्ष और माइनॉरिटीज इसको लागू ना करने की बात कह रहे हैं, योगी सरकार के मंत्री इसको लागू करने की कवायद कर रहे हैं। उधर योगी सरकार पूरी तरीके से इसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
7: यूसीसी को यूपी में जल्द से जल्द लागू करने की बीजेपी की मंशा किसी से छिपी नहीं है। बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे हैं यूपी में यूसीसी का आगाज होकर रहेगा।
8: यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे 2024 के घोषणा पत्र में और संविधान का अनुच्छेद 44 ये कहता भी है और ये हमारे नीति निर्देशक तत्वों में भी शामिल है और माननीय गृहमंत्री जी ने आज कहा भी है। और निश्चित रूप से अगर महिलाओं के प्रति उनके अधिकारों के प्रति अगर उसे पूर्ण करना है, उन्हें सुरक्षा देनी है तो ये बहुत आवश्यक है। बाकी सरकार को निर्णय करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय करना है, लेकिन आज गृहमंत्री जी ने जो बोला है वो कहीं ना कहीं हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है, हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा है और निश्चित रूप से सामान्य नागरिक संहिता की बात हम लोग लंबे समय से करते रहे हैं और हमारे लिए हमारा कमिटमेंट है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। देश हमारे प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए सामान्य नागरिक संहिता की बात भारतीय जनता पार्टी जनसंघ हमेशा उठाती रही है।
9: उत्तर प्रदेश ये प्रयास करेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मनसा है वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की धरती पर उतरे। सरकार निश्चित तौर पे सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उत्तर प्रदेश में हम सबसे पहले लागू करेंगे।
7: ये भी तय है कि यूपी में यूसीसी लागू होने की कोशिश होती है तो इसका विरोध भी तगड़ा होगा। मुस्लिम वोटों की चाहत में अखिलेश तो विरोध करेंगे ही, ओवैसी जैसे नेता भी सुर में सुर मिलाएंगे।
10: देखिए, जब ये एक वीडियो मैं देखा हूँ, जब ये असेंबली में लाया गया था तो मुख्यमंत्री क्या नारा लगा रहे थे आपको याद है? वो उनका जो स्लोगन क्या था, वो क्या नारा लगा रहे थे? इस देश पे कौन राज करेगा? और वही फिर यूसीसी लेके आ रहे आप। उससे ये बात साबित हो गई कि यूसीसी इक्वालिटी के लिए नहीं लाया गया है, यूसीसी भारत के 18 करोड़ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए लाया गया है।
7: मोदी सरकार धारा 370, तीन तलाक कानून, वक्फ कानून जैसे बड़े फैसले ले चुकी है, अब यूसीसी की बारी है और यूपी में इसे लागू करने की पूरी तैयारी है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह नगर गोरखपुर में मौजूद हैं और गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वहां पर एक कम्युनिटी सेंटर का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हैं जिसे कल्याण मंडपम कहा जाता है। 3 करोड़ रुपए की लागत से 2462 वर्ग मीटर में तैयार यह कम्युनिटी सेंटर मध्यम और कमजोर तबके के पारिवारिक मांगलिक कार्यक्रमों के लिए बनाया गया है। आम लोगों का रहन सहन स्तर सुधारने की दिशा में यूपी सरकार ने कल्याण मंडपम की सीरीज शुरू की है। गोरखपुर में 8 कल्याण मंडपम समेत प्रदेश में अब तक 45 से ज्यादा कल्याण मंडपम का लोकार्पण हो चुका है, जबकि 63 जिलों में 66 ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स का जो काम है वो जारी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी ने तारामंडल इलाके में IMA के चैरिटेबल ब्लड सेंटर का भी उद्घाटन किया है।
11: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक केवल प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों की एक अखिल भारतीय संस्था ही नहीं है। अपने चिकित्सीय पेशे के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए ब्लड बैंक और निःशुल्क OPD की भी शुरुआत गोरखपुर जैसे क्षेत्र में करके IMA गोरखपुर की इकाई ने यह साबित किया है कि जहां चाह वहां रहा। हम सब इस बात को जानते हैं, दुनिया बदल रही है, हम अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, आधुनिक तकनीक दे सकते हैं, दवा आधुनिक बना सकते हैं, हम संसाधन अत्याधुनिक उपलब्ध करवा सकते हैं, लेकिन ब्लड खून ये बनाया नहीं जाता है, ये उस संवेदना का प्रतीक है जो एक चिकित्सक एक जरूरतमंद के लिए एक डोनर को तैयार करता है और फिर वह रक्तदान के माध्यम से किसी एक नए जीवन को जीवन दान देकर के आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
0: और अब एक बड़ी खबर आपको देते हैं, और ये बड़ी खबर मिल रही है, विदेश मंत्रालय ने पाक हाई कमीशन को तलब किया है। ये बड़ी खबर, विदेश मंत्रालय की तरफ से ये तलब किया गया है, पाकिस्तानी हाई कमीशन को तलब किया गया है, और बताया जा रहा है कि ये जहाज की टक्कर के संबंध में ये तलब किया गया है। तो पाकिस्तानी नौसैनिक के आचरण का विरोध भी जताया गया है। पाकिस्तानी जो है हाई कमीशन को भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से तलब किया गया है, और अपनी जो नाराजगी है, जो चिंता है, वो भी व्यक्त की गई है, विरोध जताया गया। हमारी संवाददाता शिवानी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शिवानी, पूरा मामला क्या है?
12: देखिए, ये बहुत ही अहम खबर है। इसके हिसाब से जो विदेश मंत्रालय है उसने पाकिस्तान के शादी अफेयर्स जो वहां का राजदूत है उसको तलब किया है। वो इसलिए क्योंकि कल की ये घटना है जब अरब सागर में भारतीय नौसेना के बेहद नजदीक जो पाकिस्तान के कुछ नेवल यूनिट्स थे वो आए और वहां पर एक टकराव की स्थिति पैदा हुई है, और ये जो अग्रीमेंट है भारत और पाकिस्तान के बीच उसको उसकी अवहेलना की गई है जो बेहद गंभीर है। अरब सागर में अंतरराष्ट्रीय जल में इस तरह का एक कोलिजन हुआ है, ये कोलिजन रिपोर्ट किया गया है, जहां पर भारतीय नौसेना तैनात है, भारतीय नौसेना की एक यूनिट के साथ ये टकराव हुआ। और उसके बाद जो MEA है उसने शादे अफेयर्स को यहाँ पर पाकिस्तान के तलब करते हुए कहा है कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना आचरण यहाँ पर उनका रहा है, और अपनी आपत्ति जताई है, उनको समन किया है, और पाकिस्तान को इस तरह की जो आचरण है उससे बाज आने के लिए भी चेतावनी दी गई है।
0: शिवानी, जो कल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बारे में थोड़ा और डिटेल बताएं कि ये कितने लंबे समय तक ये कॉन्फ्लिक्ट चला, क्या जानबूझकर इंटेंशनली ये टक्कर हुई, ये टकराव हुआ, या फिर ये समुद्र में था तो हो गया?
12: देखिए राजीव, जानबूझकर ही हुआ है, क्योंकि जिस तरह से इतने नजदीक अगर पाकिस्तान की यूनिट आई है, पाकिस्तान के जो वाटर्स हैं वो और भारत की जो नौसेना है उसके बीच में ये टकराव हुआ है, तो भारतीय नौसेना अग्रीमेंट के हिसाब से जो नियम है, तय मानक है, उनके हिसाब से चल रही थी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई और जानबूझकर इस तरह से एक टकराव की स्थिति पैदा की गई है। कल की ये घटना है, इसमें और ज्यादा औपचारिक जानकारी जुटाने की कोशिश हम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील ये मामला है, तो किस तरह से ये घटना हुई, क्या हुआ, एक एक जो डिटेल है उसकी वो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये जानकारी अभी आई है विदेश मंत्रालय के हवाले से कि शादे अफेयर्स जो है उसको पाकिस्तान के उनको समन किया गया है और आपत्ति जताते हुए इस पूरे वाकये को की निंदा भी की गई, उसको कंडेम किया गया है और एक
0: बिल्कुल बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है। इस पर जवाब तो उनको देना ही होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: भैया मेरे राखी के बंधन को नीभा। 100 रुपए लेंगे तुम सभी, लो मिठाई भी खाओ।
1: क्योंकि फूफा भी कभी जीजा थे।
0: ताऊ भी एथेनॉल को लेके फूफा ही कहे जाएंगे।
2: हाँ ताऊ एथेनॉल फूफा हैं।
3: हाँ बिल्कुल है, हम नाराज हैं।
0: मेरे फूफा जो है दुनिया के सबसे अच्छे फूफा हैं।
2: क्या बात कर रहे हैं,
0: कसम से उनका नाम ही अच्छे खां है।
2: अच्छा। सबसे अच्छे हुए।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: भैया मेरे राखी के बंधन को नी 100 रुपए लेंगे तुमसे अभी हम,
1: लो मिठाई भी खाओ।
2: क्योंकि फूफा भी कभी जी जाते।
0: ताओ भी एथेनॉल को लेके फूफा ही कह जाएंगे।
1: हाँ ताओ एथेनॉल फूफा है।
3: हाँ बिल्कुल है, हम नाराज हैं।
0: मेरे फूफा जो है दुनिया के सबसे अच्छे फूफा है।
1: क्या बात कर रहे हैं,
0: कसम से उनका नाम ही अच्छे खां है।
1: अच्छा।
0: सबसे अच्छे हुए।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

समुद्री सीमा में पाकिस्तानी नेवी से टक्कर पर भारत का कड़ा रुख। पाक हाई कमीशन के राजनयिक को विदेश मंत्रालय ने तलब किया। पाक नौसेना के गैर पेशेवर रवैये पर एतराज जताया। दो हजार से ज्यादा की यूपीआई पेमेंट पर चार्ज के फैसले का आरबीआई ने किया स्वागत। कहा मिलने वाले पैसे से तकनीक और नेटवर्क होगा मजबूत। 15 अक्टूबर से नया नियम, विपक्ष ने उठाए सवाल। यूसीसी विरोधी सभा में बीजेपी विधायक के मिसाइल अटैक वाले बयान पर भड़के हुए ऐसी तो एमएलए की जवाबी चेतावनी। अखिलेश यादव ने यूसीसी को बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। मामले में सीबीआई जांच की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश। का अदालत के सामने लाए इन्वेस्टिगेशन की स्टेटस रिपोर्ट। मुंबई में गणपति पूजा की धूम। सिद्धिविनायक के दरबार पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम देवेंद्र फडणवीस। लालबाग के राजा से भी लिया आशीर्वाद।

2000 से ज्यादा की यूपीआई पेमेंट पर लगेगा चार्ज। रेलवे, टेलीकॉम, ईंधन जैसे चुनिंदा श्रेणियों पर ₹5 का शुल्क। 15 अक्टूबर से नया नियम लागू। बेंगलुरु में यूपीआई एमडीआर को लेकर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का केंद्र पर हमला, बोले ये जनता के साथ धोखा है। फोन पे सीईओ समीर निगम का यूपीआई पर बड़ा बयान, बोले 2000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर 0.4% एमडीआर से इकोसिस्टम को मिलेगी मजबूती। यूसीसी को अखिलेश यादव ने बताया अंडरग्राउंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, बीजेपी पर सारा निशाना, बोले 15 लाख खाते में पहुंचाओ फिर यूसीसी लाओ। यूसीसी पर अरशद मदनी का केंद्र से सवाल, पूछा देश संविधान से चलेगा या पार्टी के एजेंडे से। मुरादाबाद में यूसीसी पर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन, बोले धार्मिक परंपराओं का पालन करते रहेंगे। सुल्तानपुर में यूसीसी लेकर संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, बोले देश की धार्मिक विविधता के लिए खतरा है।

सरकार बदलने के मूड में, 2027 बनाएंगे पीडीए की सरकार। अखिलेश यादव ने कहा 2027 से पीडीए सरकार बनाएंगे, नए जमाने के हिसाब से रोजगार कारोबार में नए अवसर लाएंगे। लखनऊ में सपा नेता दीपक रंजन का बीजेपी पर हमला, बोले जनता समझ गई है सरकार जाने वाली। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद का अखिलेश पर हमला, बोले सपा पहले अपना वजूद बचाए, निषाद पार्टी को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव के रोजगार वाले बयान पर राज्यभर का पलटवार, गिनाई योगी सरकार की नौकरियां। लखनऊ में यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने छात्र सभा का सदस्य अभियान शुरू किया, जेएनजी और युवाओं को साधने की कोशिश की। करनी सेना को झटका, जंतर मंतर प्रदर्शन पर जल्द सुनवाई से हाईकोर्ट का इनकार। योगी कैबिनेट का जैन अल्फा के लिए बड़ा फैसला, 14,429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय बनेंगे स्मार्ट स्कूल, 300 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर। यूपी के सरकारी स्कूल के बच्चे अब स्मार्ट क्लास, लैब्स, डिजिटल बुक्स, डिजिटल लाइब्रेरी, टीचर्स के हाथ में टैबलेट से पढ़ते नजर आएंगे। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला, श्री ट्रॉन इंडिया लिमिटेड को स्मार्ट क्लासेस की स्थापना के लिए कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया गया। योगी सरकार ने निकाली शिक्षक वैकेंसी, यूपी में 15,012 पदों पर भर्ती शुरू, माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक से लेकर पीजीटी तक के पदों पर विज्ञापन जारी, 897 सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी, 11,508 सहायक अध्यापक शहरी और 2,607 प्रवक्ता पदों पर होंगे भर्ती, पीजीटी के लिए 18 सितंबर से आवेदन। यूपी में जनप्रतिनिधियों के गनर्स के बदलेंगे पुराने हथियार, 800 सब मशीन गन खरीदने को मंजूरी। यूपी के प्रयागराज में समाजवादी नेता की गोली मारकर हत्या, वारदात में शामिल तीनों आरोपी गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल बाइक और दोनों तमंचे बरामद, पुलिस ने पूछताछ में आरोपियों ने व्यक्तिगत दुश्मनी की बात बताई। हाथरस कांड और आरजी कर केस को सुलझाने वाली सीबीआई अफसर करेंगी दिशा सालियान केस की निगरानी। सीबीआई की तेज तरार अफसर सीमा पाहुजा, सीबीआई दिल्ली में स्पेशल क्राइम यूनिट बतौर एसपी तैनात है, 2021 में बेस्ट इन्वेस्टिगेटर अफसर का गोल्डन अवार्ड भी उन्हें मिल चुका है। गुरुग्राम हिट एंड रन मामले में हरियाणा पुलिस का एक्शन, पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया, कार में मौजूद आरोपी लवनीश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 34 साल के लवनीश पलवल की न्यू कॉलोनी का रहने वाला है और उसे इस मामले में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। इंदौर में 9 सितंबर को आयोजित होने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छात्रों के गूंज कार्यक्रम को लेकर सियासत तेज, कार्यक्रम की अनुमति देने में देरी पर उठाए गए हैं सवाल। कांग्रेस ने मीडिया विभाग के चेयरपर्सन ने आयोजकों से 10 लाख रुपए फीस ले जाने के लेकर भी सवाल खड़े किए। ब्यावर निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस ने प्रत्याशियों को तीर्थराज पुष्कर के आलिशान रिजॉर्ट में शिफ्ट किया, सभी प्रत्याशी पुल का आनंद लेते नजर आए। बड़वानी में विभिन्न मांगों को लेकर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं का सड़क पर हो रहा है प्रदर्शन। मथुरा में 12 करोड़ की

भोपाल में ओवैसी के काफिले का एक्सीडेंट, वीआईपी रोड पर आपस में टकराई गाड़ियां, 4 से 5 बाइक सवार घायल। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया, हादसों के कारणों की जांच शुरू की, हादसे के बाद यातायात बाधित। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का यूसीसी पर हमला, भोपाल बोले गैर हिंदुओं पर हिंदू कानून थोप रही है सरकार। ओवैसी ने बीजेपी शासित राज्यों में मस्जिदों और कब्रिस्तानों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया, सागर जैली शराब मामले में मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की। ओवैसी ने बीजेपी के स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा के एक विवादित बयान पर तीखा पलटवार किया, खुले मंच से चुनौती दी। पंजाब में बिजली कटौती के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल आज से विधानसभा क्षेत्र स्तर पर करेगा प्रदर्शन। पंजाब में ड्रग्स और सुसाइड केस पर भारी बवाल, चंडीगढ़ में सड़क पर उतरे कांग्रेस नेता सचिन पायलट, चन्नी और गहलोत बीजेपी अकाली के निशाने पर, सीएम भगवंत मान। सचिन पायलट के एंट्री के साथ पंजाब कांग्रेस में दिखी एकजुटता, आपके खिलाफ प्रदर्शन। राहुल गांधी खिलाफ वाराणसी केस में आज होगी सुनवाई, आपत्ति और आगे की कार्रवाई पर फैसला। कोलकाता में ईडी की बड़ी कार्रवाई, कथित चिटफंड मामले में अमृत ग्रुप के

से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी। मुंबई पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, सीएम फडणवीस ने किया स्वागत। तेलंगाना विधानसभा में बीजेपी विधायक पेरी राकेश रेड्डी की चेतावनी, बोले बोले नहीं दिया गया तो इस्तीफा दे सकता हूं। कर्नाटक के विधायक की भतीजी पर पीजी के साथ मेडिकल ऑफिसर की नौकरी करने का आरोप, वेतन मामले की जांच के आदेश। मुजफ्फरपुर में शराबबंदी वाले बिहार में नशे का बढ़ता कारोबार, ड्रग तस्करी में कई महिलाएं गिरफ्तार। यूपी के भावनगर में व्यापारी को हनी ट्रैप फंसाकर 3 लाख ऐंठे, महिला समेत 3 गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में विवाद के चलते दबंग पड़ोसी ने 70 साल के बुजुर्ग की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या की, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हिट एंड रन का मामला, युवक को कार ने मारी टक्कर, हादसे का आरोपी गिरफ्तार। अरावली में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने पलटा रिक्शा, सड़क पर गिरी महिला गंभीर रूप से घायल, हादसा सीसीटीवी में कैद। मांडिया में भीषण सड़क हादसा, दूध टैंकर की टक्कर से एक ही परिवार के 3 की मौत, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। फिरोजाबाद में दलित गर्भवती महिला की मौत पर हंगामा, समाजवादी पार्टी सांसद ने थाने में दिया धरना, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद गिरी दीवार, 4 गाय की मौत, मलबे में 3 मवेशी फंसे। दक्षिण कन्नड़ में आंगनवाड़ी फूड प्रोडक्शन सेंटर का फूड सेफ्टी विभाग ने किया निरीक्षण, मिलेट लड्डू के सैंपल जांच के लिए भेजे। हाथरस में नगला इमलिया की फायरिंग मामले में 4 गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में 1 घायल। पटना में श्राद्ध का भोज खाने से 20 की तबीयत बिगड़ी, सभी अस्पताल में भर्ती। हैदराबाद में प्ले स्कूल में लगी आग, जनहानि की खबर नहीं। दिल्ली के आनंद विहार क्लब के बाहर फायरिंग में 2 लोग घायल, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। दिल्ली में भारत नगर थाना क्षेत्र में सत्यवती कॉलेज के पास छात्रों को की 2 गुटों में झड़प, मामले की जांच जारी। इंदौर में 27 लाख रुपए लेकर फरार होने के आरोप में ड्राइवर गिरफ्तार, 24.5 लाख रुपए पुलिस ने बरामद किए। जम्मू कश्मीर के भलेसा गंदों में एनएचएम कर्मचारियों की 72 घंटे की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। समस्तीपुर में नशे के लिए पैसे को लेकर विवाद में बेटे ने पिता की हत्या की, आरोपी फरार। बड़वानी में विभिन्न मांगों को लेकर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं का सड़क पर प्रदर्शन। मथुरा में 12 करोड़ की ज्वेलरी चोरी का 24 घंटे में खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। बिजनौर के जंगल में दंपति के शव मिले, जांच पति द्वारा पत्नी की हत्या के बाद आत्महत्या की बात सामने आई। ग्रेटर नोएडा में 600 ग्राम ड्रग के साथ 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार, मामले की जांच जारी। मेरठ में क्लोरीन गैस रिसाव की सूचना, सरकम, कोई जनहानि नहीं। मेरठ में फिर शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में बुलडोजर एक्शन शुरू, सेंट्रल मार्केट की घेराबंदी, भारी पुलिस बल तैनात। मुंबई मशहूर कैफे मॉन्टेगर पर एफडीए की कार्रवाई, खाद्य सुरक्षा खामियां मिलने पर लाइसेंस निलंबन। पटना में शिकारपुर ओवरब्रिज के फ्रेम पर एक व्यक्ति के चढ़ने से हड़कंप, पुलिस ने क्रेन की मदद से किया सुरक्षित। भदोही में निर्माणाधीन मकान की छत ढही, मलबे में दबकर 1 की मौत, 1 घायल। हैदराबाद में बेटे के घर के बाहर बुजुर्ग दंपत्ति का प्रदर्शन, घर से निकालने और उपेक्षा का आरोप। सूरत के नानपुरा में अनोखा गणपति पंडाल बना, चर्चा का विषय, जलमग्न द्वारका की थीम पर बना भव्य गणेश पंडाल। मुंबई में एक्टर सुहेल खान के घर गणपति उत्सव, शामिल हुए कई फिल्मी सितारे। सचिन तेंदुलकर ने अपने घर में किया मूर्ति विसर्जन, बेटे अर्जुन तेंदुलकर साथ रहे, पूरी विधि विधान के साथ गणपति की आराधना की गई। पुणे के फर्गसन कॉलेज रोड पर स्थित गणेश प्रतिमा ने खींचा ध्यान, 21,000 पानीपुरी शैल से बनी है ये प्रतिमा। ओडिशा के गजपति जिले में दिखा गणपति का अनोखा स्वरूप, सिक्कों और चॉकलेट से बनाई गई बप्पा की मूर्त। अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत, दूसरे टी20 में अफगानिस्तान को 7 विकेट से दीमान, 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर बनाए 159 रन, 31 बॉल रहते 3 विकेट पर 163 रन बनाकर जीत हासिल की। भारत के लिए संजू सैमसन ने खेली 22 गेंद पर 57 रन की पारी, संजू ने 7 चौके और 4 छक्के लगाए। अभिषेक शर्मा ने 19 गेंद पर 39 रन बनाए, ईशान किशन ने बनाए 38 रन, नाबाद। भारत की ओर से नीतीश कुमार रेड्डी ने लिए 3 विकेट, अर्शदीप सिंह को मिले 2 विकेट। विनायक चतुर्थी के मौके पर तमिल स्टार विक्रम की अगली फिल्म टाइटल आया सामने, मेकर्स ने टीजर किया जारी, फिल्म का नाम है पावर हाउस।
करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन की मच अवेटेड फिल्म दायरा का नया प्रोमो आया सामने। दायरा में करीना और पृथ्वीराज पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगे। 18 सितंबर को सिनेमाघर में होगी लॉन्च। नैन तारा स्टारर मुकुति अम्मन 2 का टीजर राइज ऑफ महाशक्ति लॉन्च। यमन में अल जौफ के पूर्वी हिस्से में हुती लड़ाकों और विरोधी बलों के बीच मुठभेड़, तस्वीरें आई सामने। ईरान में उड़ान के दौरान एक विमान में जबरदस्त अफरा तफरी, विमान के टायर फटने और इंजन खराब होने की खबर से यात्रियों में चीख पुकार। सोपे हरान एयरलाइंस के विमान को मशहद वापस लाया गया, इमरजेंसी लैंडिंग हुई, बोइंग 737 विमान में यात्री थे। इंडोनेशिया के जंगलों की आग और धुंध से सांस संबंधी परेशानियां, लोग परेशान, सड़क पर दिखी धुंध की मोटी परत। भारत समेत चार अन्य देशों पर 100% टैरिफ लगाने वाले बिल पर अमेरिकी हाउस में वोटिंग कल होगी। भारत संघ ट्रेड डील को न्यूजीलैंड की संसद ने दी मंजूरी, 95% भारतीय उत्पाद पर खत्म होगी टैरिफ की मार। सऊदी अरब और इस्लामिक सहयोग संगठन में हुती विद्रोहियों पर जघन्य हमले के लगाए गए आरोप। अमेरिकी सेना ने मंगलवार को एक एयरमैन को सुरक्षित निकालने का वीडियो जारी किया। ईरान में साल की शुरुआत में उच्च जोखिम वाले मिशन में शामिल था जवान। चीन के परमाणु ऊर्जा में शांतिपूर्ण इस्तेमाल, बहुपक्षवाद की अपील। बीजिंग रवाना हुआ उत्तर कोरिया प्रतिनिधिमंडल का वीडियो जारी। 3 दिन के फोरम में शामिल होने के लिए उत्तर कोरिया का सैन्य प्रतिनिधिमंडल रवाना। रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए जर्मनी और अमेरिका में समझौता। जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने समझौते पर लगाई मुहर।

0: पंजाब के संगरूर जिले में गुलजार सुसाइड मामले और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। आज इस मसले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पूछा कि इस मामले में एक मंत्री को आरोपी कैसे बनाया जा सकता है। चीफ जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा ने कहा कि सरपंच और अन्य लोगों को पहले ही इस मामले में आरोपी बनाया जा चुका है। हाईकोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने पंजाब सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
1: साहब ने दो चीजें कही हैं। एक तो केस की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो फाइल करने को कहा है और दूसरा जो है ये इंश्योर किया जाए कि जो इन्वेस्टिगेशन है केस की वो प्रॉपर रहे।
2: तो उसमें कोई टाइम लिमिट भी है? हम उसको स्टेटस रिपोर्ट फाइल
1: ये ऑर्डर्स में क्लियर होएगा।
2: मैं व्हाट इज द स्टेटस अबाउट दी सिट जो सिट फॉर्म की थी उसमें वो कहां तक पहुंचा है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने भी सिट फॉर्म की थी उसको लेकर। नॉनियाल सिंह और लीडिंग दी
1: जी जी, जो केस की इन्वेस्टिगेशन है वो सिट के थ्रू ही अभी जो है चल रही है। सो मतलब आई कैन नॉट डिस्क्लोज द डिटेल्स।
3: अभी कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्वेशन की कोई भी नाम किसी का ले लेगा दैट इज नॉट कंसिडर्ड, कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट या कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन भी आई?
1: जी बिल्कुल, ऑब्जर्वेशंस मतलब इस तरह दी जज साहब ने दी, चीफ जस्टिस साहब ने, जो मुझे लगता है इट्स अ वेरी न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन एंड गोज इन फेवर ऑफ एवरीबडी, एवरी पब्लिक फिगर आई मस्ट से।
0: तो हाईकोर्ट ने कहा है कि सरपंच और अन्य पहले ही आरोपी बनाए जा चुके हैं। अब इस मामले पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है, जल्द से जल्द सरकार स्टेटस रिपोर्ट जांच की दाखिल करे, यह हाईकोर्ट द्वारा कहा गया है। पूरे मामले में एक ही मंत्री को कैसे आरोपी बनाया गया है, यह भी कोर्ट ने सवाल पूछा है। असीम बस्सी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। असीम, क्या कमलजीत मेरी सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कमलजीत, क्या कुछ कहा आज कोर्ट ने?
4: देखिए, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक तो स्टेटस रिपोर्ट मांगने को बोला है और खास तौर पे एक पीआईएल फॉर्म की गई थी और खास तौर पे जो बोला गया था वो यही था कि इसमें सीबीआई प्रोब होनी चाहिए। अब ये मामला काफी राजनीतिक टूर पकड़ता जा रहा है। हमने देखा कि किस तरह से भाजपा है या शिवसेना अकाली दल है या फिर कांग्रेस पार्टी है, सभी ने इस मुद्दे को उठाया है। लेकिन आज की जो पिटिशन थी वो यही थी कि स्टेट पुलिस एसआईटी फॉर्म कर चुकी है लेकिन ये पिटिशन है वो सीबीआई में ट्रांसफर हो जानी चाहिए। तो इसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि क्योंकि किसी मंत्री का नाम आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जांच ठीक से नहीं हो रही है। तो उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि ये जो केस है इस पे स्टेटस रिपोर्ट पंजाब पुलिस फाइल करे। तो फिलहाल एक तरह से आप देखिए कि राहत की सांस है वो आम आदमी पार्टी के लिए है और इसी पे शायद हरपाल सिंह बातचीत भी करेंगे कुछ देर में। लेकिन यही वाली बात आ रही है क्योंकि जहाँ पे इतने दावपेच चल रहे हैं, जहाँ पे सवालिया निशान उठा जा रहा है और खासतौर पे जो गुलजार सिंह के पूरे मामले पे जहाँ पे हमने देखा है कि एनएचआरसी ने भी रिपोर्ट मांगी, वहां पे एक चीज जो बोली जा रही है वो ये है कि उनके जो डाइंग डिक्लेरेशन है यानी जो उनका आखिरी वीडियो है उसमें उन्होंने हरपाल सिंह का नाम एक वीडियो में लिया था। तो उसी वजह से अब ये बोला जा रहा है कि ये केस है ये पंजाब पुलिस इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि पंजाब पुलिस पंजाब सरकार के नीचे ही काम करती है। और उसी बीच में अगर आपको बता दें जो बात सामने अब आ रही है वो ये है
5: कि स्टेटस रिपोर्ट की मांग पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कही है तो वो स्टेटस रिपोर्ट फाइल करी जाएगी और फिलहाल जो सुनवाई है उसकी अगली तारीख अब पड़ चुकी है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब खबर गुरुग्राम हिटरन मामले से जुड़ी हुई। आज इस केस में गिरफ्तार दो आरोपी कल्याण बैसला और लवनीश की कोर्ट में पेशी है। गुरुग्राम पुलिस कल्याण और लवनीश को लेकर कोर्ट पहुंच चुकी है। गुरुग्राम पुलिस गिरफ्तार आरोपियों की रिमांड की मांग करेगी। रिटर्न रन ये मामला जिसमें अब दूसरा आरोपी लवनीश भी गिरफ्तार हो चुका है। दोनों की आज कोर्ट में पेशी होनी है जिसमें पुलिस रिमांड की मांग करेगी। इस पूरे मामले में दरअसल अब अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा भी जुड़ गई है। वहीं पीड़िता बाइक राइडर शिवानी चौहान ने कल पुलिस में अपना बयान दर्ज करवाया।
6: इससे हुई कि फॉलोअर्स जो है वो बढ़ाए
7: नहीं। देखिए, उनका इंटरव्यू मैंने सुना, उनके लॉयर का इंटरव्यू सुना और जो भी उनके एक्स वाई जेड फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो काफी इंटरव्यू दे रहे हैं कि मैं विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हूं और फॉलोअर्स के लिए कर रही हूं और उनका जो भी गुरु है वो इतने शिक्षित हैं और आपको जानता ही कौन है, काफी सारी चीजें। देखिए इन चीजों से देखिए फर्क नहीं पड़ता, आप उनकी पर्सनालिटी बता रहे हैं कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। देखो गवार तो मैं भी नहीं हूँ, पढ़ी लिखी तो मैं भी हूँ, मैं भी एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मुझे कह रहे हैं कि आपको जानता ही कौन है। जो मेरा सिया वाला पेज है, देखो मेरे को कोई शौक नहीं था अपनी आइडेंटिटी रिवील करने का, इवन दोपहर तक जब तक मीडिया मेरे घर आके नहीं बैठी किसी को नहीं पता था सिया कौन है।
0: डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इस वक्त में सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, कितने दिन की पुलिस रिमांड मांगेगी दोनों आरोपियों के लिए?
8: दो दिन की रिमांड मांगी गई है पुलिस के द्वारा कोर्ट में, और अभी कोर्ट का फैसला कुछ देर में यहां पर नेहा आ जाएगा। फिलहाल जब पेश किया गया दोनों को, लवनीश को और कल्याण को, तो साथ साथ ये भी पुलिस ने कहा जो गाड़ी में कितने लोग थे, ये पुलिस की तरफ से दलील थी रिमांड मांगते वक्त, ये पता करना है। क्योंकि देखिए आगे जो दो लोग थे उनकी पहचान हो गई, उनकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन पिछली सीट पे कौन था इसको लेकर के कंट्राडिक्टी स्टेटमेंट दोनों ओर से थे। क्योंकि जहां शिवानी का ये कहना था कि पीछे दो लोग थे लेकिन वो क्लियर नहीं देख पाई क्योंकि टिंटेड ग्लास थी, वहीं दूसरी तरफ कहा गया कल्याण बैसला की तरफ से कि उनकी बहन बैठी थी पीछे। अब पुलिस इसकी जांच कर रही है, इसलिए पुलिस ने कहा कि इन दो दिनों के दौरान वो ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि कौन पीछे बैठा था, और साथ ही साथ पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। क्योंकि कहा जाए इनकी तरफ से लगातार कल्याण बैसला की तरफ से कि उसने जानबूझकर नहीं किया, हालांकि वीडियो में सब कुछ साफ दिख रहा है, तो इसलिए पुलिस क्लियर करने के लिए चीजों को सीन रिक्रिएट कराने की बात कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो कल्याण बैसला के वकील थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि कोई मोटिव नहीं था हत्या के प्रयास, अगर इस तरीके की कोई धारा होती है तो कोई मोटिव होता है और यहाँ पे मोटिव नहीं था, इस वजह से ये धारा यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी है, दो दिन की रिमांड की मांग की गई है पुलिस के द्वारा। अब जब कोर्ट का भी फैसला आएगा तो चीजें क्लियर हो जाएगी। जी
0: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का, पाकिस्तान हाई कमीशन के चार्ज डी अफेयर्स को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया। उनसे समुद्र में पाकिस्तानी नौसेना की यूनिट्स के अस्वीकार्य और गैर पेशेवर व्यवहार पर कड़ा विरोध जताया, जिसकी वजह से भारतीय नौसेना की एक यूनिट के साथ टक्कर हुई। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में इस घटना से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तानी नौसेना के जहाज का व्यवहार अप्रैल 1991 में दोनों देशों के बीच समझौते का सीधा उल्लंघन था। पाकिस्तान के चार्ज डी अफेयर्स को सलाह दी गई कि वो संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों तक ये बात पहुंचाएं। इस्लामाबाद में भारत के चार्ज डी अफेयर्स को भी निर्देश दिया गया है कि वो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के समक्ष इसी तरह का विरोध दर्ज कराएं। रुक रहे हैं आज छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट।
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
7: SBI Celebrations Unlimited. Ye Ganeshotsav banega special with festive offers on car loan, gold loan, personal loan and loan against mutual funds.
8: Mera rutba hai mera signature. Duniya ki soch se upar. Bebaak hai mera signature. Signature finest silver ilaichi, a premium product from Dilbagh Group.
9: AU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
10: AU सोच बदलो और बैंक भी।
11: इन एसोसिएशन विद हिंट। एक हिंट तो देते
12: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
11: विमल बोलो जुबां केसरी।
13: इसमें कहीं दो मत नहीं है, आज तक का यहां तक प्रश्न है। एक बहुत ही क्रेडिबल मीडिया ग्रुप के रूप में इसने अपनी साख बनाई है मीडिया जगत में, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि आज देश की सुरक्षा को लेकर यहां पूरे दिन चिंतन और मंथन हुआ है। मैं टीवी टुडे की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
1: जीके मैक्स।
2: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
1: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
3: जेके वॉल मैक्स
1: बेस्ट पेंट,
4: जेके मैक्स।
1: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
5: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
6: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
7: AU, सोच बदलो और बैंक भी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: समुद्री सीमा में पाकिस्तानी नेवी से टक्कर पर भारत का कड़ा रुख, पाक हाई कमीशन के राजनयिक को विदेश मंत्रालय ने तलब किया, पाक नौसेना के गैर पेशेवर रवैये पर एतराज जताया। 2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर चार्ज के फैसले का आरबीआई ने किया बचाव, कहा मिलने वाले पैसे से तकनीक और नेटवर्क होगा मजबूत, 15 अक्टूबर से नया नियम, विपक्ष ने उठाए सवाल। सभा में बीजेपी विधायक के मिसाइल अटैक वाले बयान पर भड़के ओवैसी, तो एमएलए की भी जवाबी चेतावनी, अखिलेश यादव ने यूसीसी को बताया अंडरग्राउंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। संगरूर सुसाइड मामले में सीबीआई जांच की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश, का अदालत के सामने लाए इन्वेस्टिगेशन की स्टेटस रिपोर्ट। पूजा की धूम, सिद्धिविनायक दरबार पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम देवेंद्र फडणवीस।

0: नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। यूपीआई से पेमेंट को लेकर सरकार ने नए फैसले को लेकर कई कयासबाजी हो रही है और सियासी सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन अब तस्वीर दरअसल साफ हो गई है। अब स्पष्ट हो गया है कि यूपीआई से 2000 रुपए से कम के पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, जबकि 2000 से ज्यादा पेमेंट पर 0.4% ही चार्ज लगेगा। हालांकि 2000 से ज्यादा पेमेंट पर लगने वाला चार्ज मर्चेंट यानी कि सेलर को देना होगा, उसे आम आदमी नहीं देगा। एमडीआर केवल कारोबारियों के लिए दे होगा, साथ ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए गए जाने वाले ट्रांसफर या फिर भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये फैसला हुआ है कि 2000 से ज्यादा पेमेंट पर जो चार्ज लगेगा उसकी मैक्सिमम लिमिट 300 रुपए होगी। ये अमाउंट अलग अलग ट्रांजैक्शंस पर निर्भर करेगा। ये शुल्क ग्राहकों से नहीं बल्कि बिजनेसमैन से लिया जाएगा। हालांकि 2000 तक पेमेंट करने पर ग्राहक और बिजनेसमैन दोनों को किसी तरह की फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर चार्ज के फैसले का आरबीआई ने बचाव किया और कहा कि इससे मिलने वाले पैसे से तकनीक और नेटवर्क मजबूत होगा। आरबीआई ने साफ किया कि P2P और P2M यानी सभी यूपीआई ट्रांजैक्शंस यूजर के लिए मुफ्त रहेंगे। ऐसे में आप P2P और P2M में फर्क समझना जरूरी है। अगर आप दोस्त या परिवार के किसी सदस्य को 5000 या फिर 10000 रुपए भेजते हैं तो ये P2P पेमेंट है। ऐसे पेमेंट पर आम यूजर से कोई फीस नहीं ली जाएगी। वहीं जब आप किसी दुकानदार या कारोबारी को यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो वो P2M यानी पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन कहलाता है। 2000 रुपए से कम के P2M यूपीआई पेमेंट की भी दुकानदारों के लिए मुफ्त रहेंगे, जबकि 2000 रुपए से ज्यादा के P2M पेमेंट पर 0.4% का MDR लगाया जाएगा। आरबीआई के मुताबिक इस एमडीआर का सीधा चार्ज आम यूपीआई यूजर से नहीं लिया जाएगा बल्कि इसे कारोबारियों को देना होगा। उपासना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, को फाउंडर मोबीक्विक की। उपासना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि चार्ज सुनकर दरअसल लोग घबरा जाते हैं, तो कैसे आप इसे एक्सप्लेन करेंगी, इसके क्या हार्म या फिर फायदे होने वाले हैं, और साथ ही आरबीआई ने भी इसे रिकमेंड किया है?
1: पहले तो नेहा जी थैंक यू वेरी मच मुझे अपने शो आने की, और मैं बोलना चाहूंगी कि हर चीज में ना कोई नई चीज होती है तो लोगों को पहले डर लग जाता है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, आपकी मेरी तरह पूरी भारतीय लेकिन मैं यूज करती हूँ। मान लीजिए कोई बदलाव नहीं आना, मान लीजिए कि मैंने कैब बुक की, मैंने ग्रोसरीज ऑर्डर की, मैंने अपनी फ्रेंड को, अपनी माता जी को, अलग अलग लोगों को यूपीआई से पैसे पे की, तो जो पहले तो P2P ट्रांजैक्शन है, जैसे कि आपने किसी को भी, अपने मित्र को, अपनी फैमिली में किसी को भी पेमेंट की, तो उसपे कोई चार्ज नहीं आने वाला। दूसरी बात यह है कि जो हमारी रोज की जिंदगी की ट्रांजैक्शन है, जैसे कि मैंने बोला कि आपने कैब बुक की, उसके 300 रुपए लगे, आपने ब्रेड कुछ खरीदा, दूध खरीदा, इन सब चीजों की 400-500 रुपए की जो बिल आते हैं, इनमें कोई भी चार्ज नहीं आने वाला है। जो ट्रांजेक्शन पहले तो कस्टमर पे, ग्राहक पे, किसी भी ट्रांजेक्शन पे कोई चार्ज नहीं आया, तो बिल्कुल उनको डरने की जरूरत नहीं। दूसरी बात है कि जब ग्राहक दुकानदारों से सामान खरीद रहे हैं उसमें भी 2000 रुपए तक की जो ट्रांजेक्शन है उसमें कोई चार्ज नहीं है। 2000 रुपए से ऊपर की जो ट्रांजेक्शन है, मान लीजिए आपने अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीदे हैं, जूते खरीदे हैं, उस टाइप की जो ट्रांजेक्शन होगी, या अमेजोन से बहुत सारी ग्रोसरीज ऑर्डर की है, तो उन सब ट्रांजैक्शन पे अमेज़न को, बाटा को, जो कि दुकानदार है, जो मर्चेंट है, उनको एमडीआर 0.4% का पे करना पड़ेगा, ग्राहक को कुछ नहीं पे करना। और ये आपने नोटिस किया होगा, ये जितने भी मैंने बिजनेसेस की बात की है ये सब बड़े बिजनेसेस हैं, नामची ब्रांड्स हैं, तो इनकी दुकानों में ऑलरेडी लोग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्रेडिट कार्ड पे जो चार्ज है वो ये मर्चेंट्स करीबन 1.6-1.8% पे करते हैं, और डेबिट कार्ड पे 2000 रुपए से ऊपर की ट्रांजैक्शन पे ये 0.9% पे करते हैं। उसके मुकाबले में यूपीआई की ट्रांजैक्शन पे 0.4% पे करने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बात आती है कि जो छोटे दुकानदार हैं, तो उसमें भी ये मैं बताना चाहती हूँ कि मैक्सिमम ट्रांजैक्शन जो बहुत ही छोटे दुकानें हैं उसमें 1000 रुपए से कम की होती है, बहुत ही कम ट्रांजेक्शन है जो 2000 रुपए से ऊपर की होती, और अगर वो दुकान का मंथली सेल मान लीजिए 1 लाख से कम है तो उनपे कोई भी ट्रांजेक्शन पे कभी कोई चार्ज नहीं होता। और एक और बात है जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, सीएनजी हो गया, बिजली बिल, इन सब चीजों पे फ्लैट रेट है 5 रुपए, रेलवेज पे भी। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो एमडीआर डिजाइन किया गया है बहुत ही एफिशिएंटली और बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है, जिससे कि जो मैक्सिमम रोजमर्रा की ट्रांजेक्शन है आपके और मेरे जैसे सभी ग्राहकों की, उनमें कोई चार्ज होने ही नहीं वाला है। बहुत कम प्रतिशत ट्रांजेक्शन पे चार्ज लगेगा, और वो भी बिजनेसेस पे लगेगा जिनको ऑलरेडी आदत है बाकी पेमेंट मेथड्स पे पेमेंट करने।
0: उपासना जी, क्या इससे कैश ट्रांजैक्शंस प्रमोट होंगे और जो पेमेंट सर्वर्स हैं, जो पेमेंट ऐप्स हैं, उन पर लोड थोड़ा सा कम होगा उनके सर्वर्स पर?
1: देखिए, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कैश की सेवाएं बढ़ेंगी और लोग यूपीआई कम यूज करेंगे। आप ये बोल सकते हैं कि कुछ दिनों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डरा रहे हैं, उल्टी सीधी खबरें निकाल रहे हैं और अननेसेसरीली मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है कि पहले कुछ हफ्ते या एक आधे महीने के लिए नंबर्स ऊपर नीचे हों। बट अगर आप लॉन्ग टर्म सोचें, पिछले 10 सालों में, इसी साल यूपीआई के 10 साल कंप्लीट हुए हैं, पिछले 10 सालों में जितने भारतीयों ने यूपीआई से डिजिटल पेमेंट्स करना शुरू किया है, वो एक रेवोल्यूशन है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है भारत का। और अभी भी 100% भारतीय डिजिटल पेमेंट्स नहीं यूज करते, तो अभी ये नंबर और डबल होने वाला है। और ये जो मैं आपको बता रही थी कि जितनी भी ट्रांजेक्शन अभी हो रही है, वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका फ्रॉड मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, प्रोडक्ट इनोवेशन, ये सब करने में बहुत पैसे लगते हैं बैंक्स के भी और पेमेंट कंपनीज के भी, जिसके लिए कोई भरपाई मिल नहीं पा रही है पिछले 10 सालों से। आई थिंक कि अगले लेवल की ग्रोथ के लिए ये एमडीआर बहुत जरूरी है, और ये इसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है ताकि यूपीआई का और उद्धार हो, भारत का और उद्धार हो, और फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी जो डिजिटल पेमेंट्स की वजह से इम्प्रूव हुई है, लोगों को लोन आसानी से मिल रहे हैं, बिजनेसेस को भी और ग्राहकों को भी, वो सब अगले 10 सालों तक भी होता रहे, उसके लिए ये मिनिमम एमडीआर जरूरी है, मिनिमम चार्ज जरूरी है, और वो चार्ज भी वही बिजनेसेस पे करेंगे जो ये अफोर्ड कर सकते।
0: उपासना जी, साथ ही एग्जाम्पल से मैं जाना चाहूंगी, जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं, कुछ आपने नेम करी हैं, इसके अलावा अगर कुछ सर्विसेज के लिए 2,000 के ऊपर का पेमेंट है, उसमें 5 रुपीज फ्लैट एमडीआर लगेगा या 0.4% लगेगा?
1: जो देखिए, कुछ चीजों को एसेंशियल सर्विसेज में गिना गया है, जैसे इंश्योरेंस है, जैसे बिल पेमेंट्स है, बिकॉज आपका बिजली का बिल दिल्ली की गर्मी में हजारों रुपए का आ सकता है, तो उसपे, इन सब चीजों पे, रेलवेज, बिल पेमेंट्स, इंश्योरेंस, इन्हीं सारी सेवाओं पे, और एंड फ्यूल, पेट्रोल, सीएनजी वगैरह, गैस, इन सब पे 5 रुपीज फ्लैट फी है। तो आप 2,000 की पेमेंट करें या 10,000 की या 1 लाख की, फ्लैट 5 रुपीज। इन सेवाओं के सिवाय जितनी ट्रांजैक्शंस हैं, उसमें भी जब आपके और मेरे जैसे आम आदमी बिजनेसेस को पे कर रहे हैं, जो कि रजिस्टर्ड बिजनेस है, रजिस्टर्ड मर्चेंट है, और वो मर्चेंट की अगर मंथली सेल 1 लाख से ज्यादा की है, तब उनकी 2,000 से ऊपर की जो ट्रांजेक्शन, मान लीजिए एक ट्रांजेक्शन 2,500 की है, तो उसपे उनको 0.4% कॉस्ट लगेगा। बट अगर उनकी मैक्सिमम ट्रांजेक्शन 1,000 रुपए की है, 500 रुपए की है, तो वो फ्री रहेंगे। तो अगर आप देखें, अगर किसी दुकानदार ने दिन में 10,000 की सेल की है और 10,000 में से सिर्फ 1,000 रुपए या 2,000 रुपए की उनकी एक ट्रांजेक्शन है, तो उनको एक ही ट्रांजेक्शन पे चार्ज लगेगा, बाकी 9,000 रुपए की जो सेल हुई है वो फ्री ही रहेगी। तो उनको ये इतना पिंच नहीं करेगा जितना कि इसका भय बनाया जा रहा है बिना बात।
0: उपासना जी, अगर हम ऑनलाइन बैंकिंग पेमेंट्स करते हैं या म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस हैं या फिर शेयर्स के कोई ट्रांजैक्शंस हैं, उन पर एमडीआर किस तरह से लागू होगा?
1: उस पे कम एमडीआर रखा गया है, बिकॉज अगेन वहां पे टिपिकली ट्रांजेक्शन हाई वैल्यू की होती है, तो ये भी एक अलग कैटेगरी ली गई है। इस पे 0.2% का चार्ज रखा गया।
0: कुल कितनी कैटेगरीज हैं इस एमडीआर में?
1: मैम, वैसे तो काफी सारी हैं, 7-8 कैटेगरीज डिफाइन की गई है, बट आपके श्रोताओं को समझाने के लिए मैं उनको सिंपल तरीके से समझा रही थी कि इन्वेस्टमेंट के लिए अलग कैटेगरी है, जैसे अभी हमने बात की, उसके सिवा ईंधन, और बिल पेमेंट्स, रेलवेज, इनकी अलग कैटेगरी है। ऐसे चार पांच और कैटेगरीज हैं जिसको किया गया है डिफरेंशिएट। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत ही नॉर्मल है, वीजा और मास्टर कार्ड की भी जो स्कीम्स हैं उनमें भी इसी टाइप की कैटेगरीज बनी गई। टिपिकली जो कैटेगरीज बहुत एसेंशियल है उनपे बहुत कम मार्जिन रखा जाता है, और जहां पे रेगुलर इंटरचेंज चलता है वहीं पे 0.4% लगाया जाता है।
0: और किस तरह के ट्रांजैक्शंस हम जिसे माने मान लीजिए अगर मैं अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करती हूँ क्या उस पर भी एमडीआर लागू होगा?
1: नहीं, वो बिल पेमेंट में होगा, 5 रुपए लगेंगे। करेक्ट।
0: उसमें फ्लैट 5 रुपीज है। तो उपासना जी इसको किस तरीके से देखा जाए, क्या ये पेमेंट एप्स के लिए एक वेलकम कदम है?
1: बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैं बताना चाहूंगी कि पेमेंट कंपनीज और बैंक्स पिछले कई सालों से आरबीआई से, इंडियन गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिक्वेस्ट करते जा रहे थे कि प्लीज कुछ तो एमडीआर दीजिए। बिकॉज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर एक यूपीआई ट्रांजेक्शन को, और नंबर कितना है ट्रांजेक्शन का पर मंथ आपको पता ही है, हर ट्रांजेक्शन को जो प्रोसेस करने का सिर्फ सर्वर का कॉस्ट है वो करीबन 15 से 20 पैसे पड़ता है हर प्लेयर को। और आप सोचिए, ये ट्रांजेक्शन मिलियंस में हो रही है और इन ट्रांजैक्शंस पे हम कुछ नहीं कमा रहे हैं। इसके बाद ये सर्विसेज मैनेज करने के लिए जो आपका प्रोडक्ट एंड इंजीनियरिंग टीम लगती है, जो आपको रिस्क मैनेजमेंट के लिए करना पड़ता है, सभी चीजों का बहुत कॉस्ट है। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पिछले 3-4 साल गवर्नमेंट ने सब्सिडी निकाली थी, यूपीआई सब्सिडी, यूपीआई इंसेंटिव जो मिनिस्ट्री दे रही थी बैंक्स को, और बैंक्स के द्वारा पेमेंट कंपनीज को भी उसका कुछ क्षण मिल रहा था, बट उससे ये ओवरऑल कॉस्ट का सिर्फ 10% कवर हो पाता। तो सारी पेमेंट कंपनीज, मतलब मार्केट्स में, कैपिटल मार्केट्स में तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि पेमेंट कंपनीज मुनाफा नहीं कर पाती है, इसीलिए नहीं कर पाती है बिकॉज इतना सारा स्केल है बट उस पे रेवेन्यू कुछ भी नहीं।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उपासना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: धन्यवाद।
0: हमारे साथ फोन पे के फाउंडर और सीईओ समीर निगम जी इस वक्त जुड़ गए हैं। समीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहला सवाल मेरा यही है, 2,000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर चार्ज को आप किस तरीके से देखते हैं, क्या एक वेलकम कदम है?
2: बिल्कुल वेलकम कदम है नेहा। ये पिछले 6 साल से यूपीआई पे कोई भी डायरेक्ट रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं थी पूरी पेमेंट इंडस्ट्री के लिए। इस पे काफी लिखा गया है, इस पे काफी चर्चा हुई है पिछले 4-5 साल से। हर साल यूपीआई के ट्रांजैक्शन बढ़ते ही जा रहे हैं, जो बहुत अच्छी चीज है। हम भी चाहते हैं, पूरी पेमेंट इंडस्ट्री चाहती है। आज की तारीख में यूपीआई 10 साल में दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट नेटवर्क बन गया है, रियल टाइम पेमेंट्स का, और ये बहुत गर्व की बात है। मगर उस गर्व के साथ में कॉस्ट भी आते हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डालना पड़ता है, साइबर सिक्योरिटी है, रिस्क, फ्रॉड, अलग अलग चीजों के लिए जो है हम लोग को पैसे खर्चने पड़ते हैं, केवाईसी करना पड़ता है, और उस सब के लिए इंडस्ट्री को एक रेवेन्यू स्ट्रीम चाहिए थी। तो उसके लिए जो है दुनिया भर में मॉडल यही है कि मर्चेंट पेमेंट्स के लिए एक छोटा एमडीआर लगता है। यूपीआई में जो अभी चार्ज आया है 2,000 रुपए से ज्यादा पे, इसमें अच्छी चीज ये करी है सरकार ने, कस्टमर को तो कोई भी चार्ज नहीं है तो 100% फ्री रहेगा, इसलिए यूपीआई भागता रहेगा। मर्चेंट साइड में भी 96% 96% जो है ट्रांजैक्शन 2,000 के नीचे ही होते हैं हिंदुस्तान में, तो वो भी फ्री रहेंगे। 4% ट्रांजैक्शन पे जो है एमडीआर आ रहा है, और वो भी जो है 0.4%, जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स में से, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट में, आप वीजा ले लें, मास्टर कार्ड ले लें, रुपए ले लें, क्रेडिट कार्ड ले लें, डेबिट कार्ड ले लें, वॉलेट ले लें, ये उन सबसे सस्ता है। यूपीआई का एमडीआर 0.4% पे आज भी दुनिया का सबसे सस्ता एमडीआर है, मगर वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि होपफुली उसके वजह से फोन पे और बाकी जितने भी पेमेंट कंपनीज हैं, अब हम लोग भी जो है इन्वेस्ट कर पाएंगे वापस मार्केट को ग्रो करने में, हम भी जो है अपना रेवेन्यू कमा पाएंगे।
0: 0.4% में इतना हल्ला क्यों मच रहा है? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि ये फिर भी उतना रेवेन्यू स्ट्रीम्स को बैलेंस नहीं कर पाएगा, लंबे वक्त से आप सारा भान जो भार था वो खुद ही वहन कर रहे थे, तो ऐसे में क्यों इसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है?
2: 2 वजह हैं। एक, जब यूपीआई चालू हुआ था तो यूपीआई फ्री नहीं था। यूपीआई पे इनफैक्ट एमडीआर 0.65% था जब शुरू हुआ था। ये कम होता गया और फिर एकदम से सरकार ने 2020 में इसको जीरो कर दिया था। और मानना ये था कि अगर जीरो करेंगे तो सारे मर्चेंट एकदम से बहुत जल्दी आएंगे। इंडस्ट्री के अंदर में तो उस टाइम भी ये व्यू था कि मर्चेंट्स आ ही जाएंगे, बस टाइम लग रहा था, इन्वेस्ट करे आ रहे थे, और कोविड के बाद और ज्यादा बढ़ गया था। अब अगर आपको फ्री की आदत पड़ी है किसी चीज की, और बाद में कोई बोले कि उस चीज की आपको इतनी आदत पड़ गई है मगर अब उस पे चार्ज है, तो थोड़ा हल्ला होना तो मुमकिन है, वो तो हो रहा है। दूसरा ये है कि इस पे मुझे लग रहा है कि जो है बाकी सारे जो इम्पैक्ट नहीं हो रहा, मैं दुकानदारों की बात नहीं कर रहा, उनको एमडीआर लगेगा। ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि सोशल मीडिया से लेके, मीडिया से लेके पॉलिटिक्स में सब लोग इसमें हाथ मार रहे हैं। तो बात जो है इतनी बड़ी हो रही है, वापस बोलूंगा 96% ट्रांजेक्शन पे मर्चेंट को कोई एमडीआर नहीं है। बाकी कैटेगरीज में भी पेट्रोल पे 5 रुपए मैक्स है, इंश्योरेंस पे 5 रुपए मैक्स है। अगर आप स्टॉक ब्रोकिंग बोले 0.02% है जो कैपिटल मार्केट्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप वहां पे आईफोन खरीदने जाएं 1.5 लाख रुपए का, उसमें भी जो है 300 रुपए का मैक्स कर दिया है, तो ये 0.4% भी 0.4% नहीं है, उससे कमी हो रहा है पूरा अगर आप देखें तो क्योंकि फ्री की आदत पड़ गई है देश में, तो वापस अभी उसको रिस्टोर कर रहे हैं एमडीआर को, थोड़ा आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा।
0: तो ये जो फ्लैट रेट है 0.4% और 5 रुपीज का, इसको थोड़ा और ब्रॉडन करने की जरूरत है आने वाले वक्त में, या फिर फ्लैट रेट ही इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे चीजें थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाती हैं?
2: देखिए ये जो 5 रुपए वाला जो है खास करके, वो बिल पेमेंट्स, इंश्योरेंस और पेट्रोल जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए है, रिटेल या ई कॉमर्स जैसे सेक्टर्स के लिए नहीं है, ट्रैवल वगैरह के लिए नहीं है, क्योंकि उनका मार्जिन स्ट्रक्चर ज्यादा होता है, उस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होते हैं। तो गवर्नमेंट ने, और करेक्टली, उन्होंने क्रिटिकल सर्विसेज को अलग रखा है और उस पर कैप डाल दिया है 5 रुपए का। देश चाहता है, पॉलिसी मेकर चाहते हैं, हम और आप चाहते हैं कि लोग ज्यादा इंश्योरेंस खरीदें। अब इंश्योरेंस पे एमडीआर का इतना नहीं किया है, मतलब 5 रुपए पे चाहते हैं लाइफ इंश्योरेंस खरीदें लोग, ना सोचे हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें। पेट्रोल वैसे ही महंगा हो गया है, 10 वजह है उसकी। अब महंगे पेट्रोल के ऊपर में एमडीआर डालने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पे 5 रुपए पे भी चलेगा, क्योंकि पेट्रोल बहुत बिकता भी है, तो वॉल्यूम से कवर हो जाता है। तो ये बैलेंसिंग एक्ट है जैसे कहते हैं, और इसमें एनपीसीआई और आरबीआई और इंडस्ट्री सबने जो है अपने इनपुट्स दिए हैं, और सरकार के साथ में फिर फाइनली ये एनपीसीआई ने रेट कार्ड बनाया है। मेरे हिसाब से एक्चुअली बहुत ही बैलेंस्ड और अच्छा है। कस्टमर के लिए हर चीज फ्री रहती है यूपीआई पे, जो होनी चाहिए। पी टू पी हमेशा से फ्री था, रहेगा। पी टू एम हमेशा फ्री था, रहेगा। मर्चेंट के लिए भी अधिकतर मर्चेंट 1 पैसा एमडीआर नहीं देंगे, छोटी दुकानें तो बिल्कुल नहीं देंगी, 2,000 रुपए के ऊपर कोई ट्रांजेक्शन होते नहीं उनके। और 4% ट्रांजेक्शन पे बड़े बिजनेसेस देंगे, वो तो आज आज भी दे रहे हैं। आप अगर क्रेडिट कार्ड यूज करें किसी मॉल में जाके, 1.5 से 2 से 2.5% एमडीआर लगता है, दुकानदार देता है। ऐसा नहीं है कि वो सब साइन लगा के बैठे हैं, पे मी मोर मनी, ऐसा नहीं करते हैं आजकल, वो पुरानी 20 साल
0: राइट.
2: पुरानी आदत है।
0: तो आप जिस इनपुट्स का जिक्र कर रहे हैं, उन इनपुट्स में और क्या-क्या शामिल था जो नहीं माना गया है सरकार द्वारा, जिसे नहीं इंप्लीमेंट किया गया है?
2: देखिए अलग अलग सेक्टर में अलग अलग लोगों का ज्यादा कॉस्ट या कम कॉस्ट है। अब एक दो उदाहरण देता हूं। वॉलेट्स अब यूपीआई पे इंटॉपरेबल है। वॉलेट के लिए यूपीआई पे क्या इंटरचेंज होगा अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है। तो पहले वॉलेट्स अलग होते थे और यूपीआई अलग चलता था, तो वॉलेट अपना एमडीआर करते थे। अभी वॉलेट पे क्या एमडीआर आएगा उस पर कोई मतलब नोटिफिकेशन नहीं आया। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने सुना नहीं है, अभी बस हुआ नहीं है। फिर बिल पेमेंट्स में कुछ कैटेगरीज हैं जहां पे 5 रुपए भी ज्यादा है, क्योंकि बिल पेमेंट कंपनी 1-2 रुपए से ज्यादा देती नहीं कमीशन में। तो कॉस्ट अगर 5 पे रखेंगे और रेवेन्यू 1-2 रुपए, तो वो मुमकिन नहीं है, वो भी सेटल हो जाएगा। इसमें मुझे लगता है थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। 6 साल का जितना भी, 6 साल से फ्री रखा है सब कुछ, तो वापस रीबैलेंस होगा ये।
0: तो ये जो सोशल मीडिया पर इस वक्त डिबेट चल रही है, ये जल्द इस पर विराम लगेगा, लोगों को समझ आ जाएगा कि ये वाकई फायदेमंद है?
2: मतलब डिबेट भी कितनी चल रही है, वो 1-2 इंसान वहां पे आके हल्ला मचा रहे हैं उसके ऊपर में, फिर वो लूप में चलते हैं। आजकल दुनिया ऐसी चलती है, लूप भी खत्म हो जाएगी, कल की कहानी आएगी। मतलब 50 करोड़ लोग यूपीआई एप्स यूज कर रहे हैं, और वहां पे 5 करोड़ दुकानदार वहां पे क्यूआर लगा के बैठे हैं। तो ये डिसाइड तो मतलब ऑन द ग्राउंड होगा, जो बोलते हैं, ये सोशल मीडिया पे नहीं डिसाइड होगा, ये ऑन द ग्राउंड ही डिसाइड हो जाएगा। कस्टमर को अगर चार्ज नहीं लग रहा है, तो कस्टमर तो यूपीआई फर्स्ट ही बोलेगा, ज्यादा
0: ठीक
2: कन्वीनियंट
0: है
2: है।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।
2: धन्यवाद।
0: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हो गया हाजिर, टिकते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
6: सोच बदलो और बैंक भी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: सॉरी।

0: में लगभग जो है करीब 70 से 80 करोड़ ट्रांजैक्शन होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं। तो मुझे मुझे तो लगता है कि अब इंडस्ट्री के पास आएगा रेवेन्यू, वो इन्वेस्ट कर पाएंगे ज्यादा और छोटे शहरों में जा पाएंगे, ज्यादा मर्चेंट्स को ये कर पाएंगे, डिजिटाइज कर पाएंगे, कस्टमर साइड पे भी टीपैप्स को भी पैसा मिल रहा है फाइनली 6 साल बाद, तो हम सब जो है और मार्केटिंग कर पाएंगे और यूज केस ला पाएंगे। सारे बिजनेसमैन दुनिया में यही चाहते हैं ना कि अपना व्यापार बढ़ाएं, अपना बिजनेस बढ़ाएं, तो पेमेंट कंपनियां अलग क्यों होंगी, पैसे आएंगे तभी तो बढ़ेंगे।
1: ये बहुत ही एक पॉजिटिव स्टेप है इंडिया के लिए, बिकॉज देखिए इसी वर्ष यूपीआई के 10 साल हो गए, और यूपीआई की वजह से डिजिटल पेमेंट्स इंडिया में बहुत स्केल हो गया है, सभी लोग यूज करने लग गए. बट अब इसका जो स्केल इतना हो गया है, इसका जो कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बैंक्स और पेमेंट कंपनी सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं. तो जो ये डायरेक्शन आया है ये पेमेंट्स इंडस्ट्री के लिए, बैंक्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव है, और जो आम इंडियन है, जो इंडियन ग्राहक है, उसके लिए बिल्कुल भी न्यूट्रल है, कोई चेंज नहीं है. बिकॉज जितनी भी पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति टू व्यक्ति जो ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे मान लीजिए मैंने अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में किसी को पेमेंट की है, उस पर कोई चार्ज नहीं है.
2: भैया मेरे राखी के बंधन को नी 100 रुपए लेंगे तुमसे अभी, हम
3: लो मिठाई भी खाओ
2: क्योंकि फूफा भी कभी जीजा
3: जीजा
2: थे.
3: ताऊ भी एथेनॉल को लेके फूफा ही कहे जाएंगे.
4: हाँ, ताऊ एथेनॉल फूफा है.
5: हाँ बिल्कुल है, हम नाराज हैं.
3: मेरे फूफा जो है दुनिया के सबसे अच्छे फूफा है.
4: क्या बात कर रहे हैं,
3: कसम से उनका नाम ही अच्छे खां है.
4: अच्छा
3: सबसे अच्छे हुए.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

समुद्र सीमा में पाकिस्तानी नेवी की भिड़ंत पर भारत का कड़ा रुख। विदेश मंत्रालय ने पाक हाई कमीशन के राजनयिक को किया तलब। पाक नौसेना के गैर पेशेवर रवैये पर जताया एतराज। दो हजार से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर चार्ज के फैसले का आरबीआई ने किया बचाव। कहा, मिलने वाले पैसे से तकनीक और नेटवर्क होगा मजबूत। 15 अक्टूबर से नया नियम, विपक्ष ने उठाए सवाल। यूसीसी विरोधी सभा में बीजेपी विधायक के मिसाइल अटैक वाले बयान पर भड़के ओवैसी, तो एमएलए की भी जवाबी चेतावनी। अखिलेश यादव ने यूसीसी को बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। संगरूर सुसाइड मामले में सीबीआई जांच की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश। कहा, अदालत के सामने लाए इन्वेस्टिगेशन की स्टेटस रिपोर्ट। मुंबई में गणपति पूजा की धूम। सिद्धिविनायक के दरबार पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम देवेंद्र फडणवीस। लालबाग के राजा से भी लिया आशीर्वाद।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दो बज चुके हैं, न्यूज रूम लाइव में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम लाइव में जैसा होता है, सबसे पहले हम बताते हैं कौन सी खबरें हैं जिनके बारे में आज बात करने जा रहे हैं, तो वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की हिमाकत की। पाकिस्तान सुधरने वाला है नहीं। इस बार पाकिस्तान ने कैसे 1991 के एक समझौते का उल्लंघन किया, समुद्र में कैसी आर पार की स्थिति बन गई, और पाकिस्तान को कैसे अब भारत करारा जवाब दे रहा है, तलब किया गया है हाई कमीशन को, वो हम आपको बताएंगे। दूसरी जो हमारी बड़ी खबर रहेगी, ये तो पाकिस्तान वाली होगी। दूसरी खबर यूसीसी को लेकर भोपाल में इस वक्त किस तरह से सियासी बयानबाजी, मिसाइलें चल रही हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले रामेश्वर शर्मा विधायक बीजेपी के, उसके बाद ओवैसी का बयान आ गया, और उसके बाद और भी बहुत सारे लोगों का बयान आ रहा है, डिटेल में आपको बताएंगे। जो तीसरी हमारी बड़ी खबर होगी वो भी हम आपको बता देते हैं। और तीसरी जो बड़ी खबर होगी वो होगी उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई की। अब स्कूलों पर गर्म आ गई है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ फैसले लिए गए हैं, तो सीजेपी भी एक्टिव है, स्कूलों में जाके बता रही है कि वहां पर क्या कमियां हैं। और ठीक आधे घंटे बाद ये भी हम आपको बता दें, आधे घंटे बाद हम आपको बताएंगे हनुमान अंश का चमत्कार, कैसे इस मूवी के जो दर्शक हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ये नए नए चमत्कार हनुमान अंश कर रही है, ये हम आपको बताएंगे दोपहर 2:30 बजे। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता दें कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, और ये हम क्यों कह रहे हैं, तो डिटेल में हम आपको खबर बताते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसी हरकत की गई है जिसको लेकर समुद्र में एक बार फिर से तनाव के हालात हो गए, आर पार की स्थिति हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो कड़ा विरोध भारत की तरफ से दर्ज कराया गया है, विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में पाकिस्तान के कार्यवाहक हाई कमिश्नर यानी चार्ज डी अफेयर्स को तलब किया है। देखिए कल शाम की यह घटना है, उत्तर और अप सागर में नियमित निगरानी मिशन पर तैनात भारतीय नौसेना एक अग्रिम युद्धपोत के बेहद करीब पाकिस्तानी नौसेना का जहाज तेज रफ्तार से आता है, और भारतीय नौसेना के मुताबिक वहां पर जब भारत की तरफ से ऐतराज जताया जाता है तो पाकिस्तान का जो जहाज था वो बहुत तेज दिशा में बदल देता है अपनी दिशा, और उसके बाद वहां पर टकराव की स्थिति बन जाती है। अब देखिए यहां पर आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि हुआ क्या है। देख प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ में है और बेहतर तरीके से ये बताएंगे कि पाकिस्तान क्यों बार बार ऐसी हरकत करता है। लेकिन आज

0: पर वो टकराव की स्थिति आ जाती है, टकरा जाता है। भारतीय युद्धपोत को ज्यादा नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ, ये बताया कि बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान का जहाज आता है। कल शाम उत्तरी अरब सागर की एक घटना बताई जा रही है जिसका जिक्र किया जा रहा है, और भारत की तरफ से कड़ा विरोध इस पर जताया गया है। और इस घटना के बारे में अब चर्चा की जा रही है, और प्रणय हमारे साथ में बने हुए हैं। प्रणय, क्या वजह है पाकिस्तान अब इस तरह की हरकतें कर रहा है? जानते हैं कि 1991 का समझौता है, आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, जो हाईली सेंसिटिव जोन होती है वहां पर भी इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत।
1: ये वैसी ही चीजें हैं मानशु, कि आप एक बड़े चौड़े मैदान में या एक बड़े चौड़े हाईवे पर भी, जहां केवल दो गाड़ियां हों, वो भी आपस में टकरा जाएं, तो इसे जानबूझकर की गई हरकत ही कहा जाएगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर्स में, ये किसी संकरे रास्ते से गुजरते हुई टक्कर नहीं है। साथ ही एग्रेसिव मनूवर जिसे कहा जाता है, जब जहाज तेजी से टर्न लेते हैं या अपनी पोजिशन चेंज करते हैं, जिसे मिलिट्री टर्म्स में, सैन्य भाषा के अंदर जिसे मनूवर कहा जाता है, तो उसने एक एग्रेसिव मनूवर लिया जिसके कारण भारतीय नौसेना का जो युद्धपोत है उसके साथ टक्कर हुई उसकी। हालांकि जो ज्यादा जानकारी है, जो भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत इसमें शामिल था, उस बारे में भारत सरकार की तरफ से अभी नहीं बताया गया। लेकिन पाकिस्तान के जो सबसे बड़े राजनयिक हैं दिल्ली के अंदर, साद अहमद वरीच, उनको बुलाया गया था आज विदेश मंत्रालय में, भारत ने इस पर सख्त नाराजगी दर्ज कराई है। और साथ ही इस्लामाबाद में जो भारत के जो उच्चायु के जो चार्जरी अफेयर्स हैं सत्यांजल पांडे, उन्होंने भी इस्लामाबाद के अंदर विदेश जो पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय है उसके साथ नाराजगी दर्ज कराई है। लेकिन ये पहली घटना नहीं है, 1991 के बाद इस घटना ने एक बार फिर 2011 में इसी तरीके की घटना हुई थी, जब INS गोदावरी और पाकिस्तानी सेना का जो युद्धपोत था PNS बाबर, वो इसी तरीके से टकराए थे, और उसमें भी पाकिस्तान की ही गलती थी, वही एग्रेसिव मनूवर, उसी तरीके की पोस्चरिंग करने की कोशिश। और ये घटना करीब 220 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान बताई जा रही है, यानी ये उत्तरी अरब सागर का जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये उस जगह की घटना है।
0: मैं थोड़ा सा और समझना चाहता हूं, देखिए समुद्र बहुत विशाल होता है, बहुत विशाल होता है, युद्धपोत वहां पर है, वहां पर हालात कैसे हैं ये हम देखे जा रहे हैं, लेकिन इतने बड़े समुद्र में टक्कर जब हो जाती है तो ये आप ये नहीं कह सकते कि अरे वो तो धोखे से हो गया, ये तो आप कह नहीं सकते हैं। मंजीत नेगी भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। मंजीत, अब भारत की तरफ से कड़ा एतराज जताया जा रहा है, अब इस मामले को आप आगे किस ओर जाते हुए देख रहे हैं?
2: देखिए हिमांशु, पहले इस घटना के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। ये कल शाम को 6 से 7 बजे की घटना है अरब सागर में, और भारतीय सेना के जो वेस्टर्न कमांड है उसका ये युद्धपोत था, जो यहाँ पर इस वक्त जो सरहद पर जो डिप्लॉयमेंट होता है भारतीय नौसेना का, उसमें ये तैनात था। और ये हल्की टक्कर बताई जा रही है, पाकिस्तान भारतीय नौसेना की तरफ से पहले उसका पाकिस्तानी नौसेना का जो युद्धपोत था उसकी हरकत को देखते हुए उसको चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तानी नौसेना का युद्धपोत था, जो कि संभवतः कराची से निकला हुआ था, उसको चेतावनी देने के लिए उसके बावजूद बहुत मनूवर करते भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जो सरहद है समुद्री, वहां पर भारतीय युद्धपोत के बिल्कुल नजदीक आ गया। और ये आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पिछले एक साल के बाद ये सबसे बड़ी घटना है भारतीय समुद्र में, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में, जहां पर पाकिस्तानी जो युद्धपोत है नौसेना का, उसने इस तरह का जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है नौसेना के, उनका उल्लंघन किया है।
0: ठीक है, ये मंजीत भी बता रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बहुत बड़ी घटना है, जिसको लेकर आने वाले वक्त को लेकर अब भारत की तरफ से तो विरोध जताया जा रहा है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम सही नहीं होंगे, ऐसा कहा जा रहा है।
1: निश्चित रूप से इसके परिणाम सही नहीं होंगे, दूसरी बात यह है कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर एक नए तनाव का फ्लैश पॉइंट बनता है। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये समंदर का इलाका है, जहां पर दोनों नौसेनाओं के पास एक दूसरे की पोजिशन को ट्रैक करने के तरीके भी हैं, टेक्निकल तरीके भी हैं, कम्युनिकेट करने के तरीके भी हैं। भारत ने इसी चीज पर एतराज दर्ज कराया है मानशु, 1991 के प्रोटोकॉल के तहत जब भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है तो एक दूसरे को एडवांस इंफॉर्मेशन दी जाती है, आर्टिकल 10 उसका यही कहता है। पर अगर वो एडवांस जानकारी नहीं दी गई है, पाकिस्तान ने जानबूझकर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है, तो स्वाभाविक रूप से इसके ऊपर चिंता के सवाल भी खड़े होते हैं और एक नए तनाव का बिंदु बनता है। और इस कार्रवाई को लेकर जो जवाबदेही है वो न केवल पाकिस्तान की बनती है बल्कि एक्सप्लेनेशन भी पाकिस्तान की तरफ से आना चाहिए कि आखिर इस तरीके की घटना को अंजाम क्यों दिया गया और आखिर इसके पीछे मंशा क्या है।
0: और बिल्कुल ये बात यहाँ पर कही जा सकती है कि पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि छोटी छोटी सी बातें बहुत बड़े मामले को एस्केलेट कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं यूसीसी को लेकर, जो जुबानी जंग इस वक्त चली जा रही है, एक बयान सामने आता है उसके बाद फिर दूसरा बयान सामने आता है। मध्य प्रदेश की बात यहां पर की जा रही है, मध्य प्रदेश में बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा की तरफ से एक विवादित बयान दिया जाता है, उसकी जवाब दिया जाता है ओवैसी की तरफ से, और जब ओवैसी उसका जवाब देते हैं तो फिर मामला और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब रामेश्वर शर्मा की तरफ से फिर से बयान जारी किया गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, और यूसीसी को लेकर। यूसीसी

0: को लेकर ये सब इस वक्त घटनाक्रम चल रहा है। तो देखिए ये बात मध्य प्रदेश की जा रही है, यूसीसी। अब रामेश्वर शर्मा की तरफ से एक बयान दिया गया, उसके बाद ओवैसी की तरफ से बयान दिया गया। काजी कैंप पर मिसाइल अटैक की बात की गई, हालांकि उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद की बात कर रहे थे। पहले बीजेपी विधायक की तरफ से कहा जाता है, पहले बात कह दी उन्होंने, फिर वो कहते हैं कि हम इस्लामाबाद की बात कर रहे थे। और फिर ओवैसी की तरफ से पलटवार किया जाता है कि खुली चुनौती, और यह भी कहा कि ओवैसी संविधान की मर्यादा का पालन करें। अब आप ऐसे समझिए कि सियासी मिसाइलें निकाली क्यों जा रही है, शुरुआत इसकी कहां से हुई थी। तो बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की तरफ से जो बयान दिया गया, पहले वो आपको सुनाते हैं।
1: मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, जब हिंदुस्तान में लोग कहते थे सुई बनाना नहीं जानते, तो मोदी जी ने कहा कि हम मिसाइल बनाएंगे। जैसे तुम करोत के चौराहे पर खड़े होकर मिसाइल लगाओ और काजी कैंप पे गिरा दो, वैसे ही। अरे मैंने यहाँ का काजी कैंप नहीं बोला, इस्लामाबाद वाला बोला था।
0: बाद में वो कहते हैं कि इस्लामाबाद वाला बोला था। अब एक बयान आता है तो दूसरा बयान आने में देर नहीं लगती, और इसी का जवाब दिया अजहरुद्दीन ओवैसी ने। और उन ओवैसी ने क्या कहा वो भी आपको सुनिए।
2: ये कोई रामेश्वर शर्मा साहब का बयान सुना, क्या बोले, मैं मिसाइल लॉन्च करूंगा करोल स्क्वायर से खाजी कैंप पर। रामेश्वर शर्मा, अगर तुम मई के लाल हो,
0: दोनों तरफ के बयान आपने सुन लिया। अब दोनों तरफ से जब बयानबाजी हो रही है तो उसके बाद फिर एक बार फिर से रामेश्वर शर्मा जो बीजेपी के विधायक हैं उनकी तरफ से स्पष्टीकरण दिया जाता है। उनसे बात की हमारे सहयोगी रवीश पाल ने, वो बातचीत आपको सुनवाते हैं।
3: एक्सक्लूसिव आज तक पर सबसे पहले बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है विधायक रामेश्वर शर्मा, जो कि विवादों में शुरू से रहे हैं इस पूरे बयान को लेकर, जिसके बाद पलटवार हुआ असदुद्दीन ओवैसी का। तो उन्होंने कल जो आपके लिए कहा है, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है और जिस तरीके से चुनौती दी है, आपको स्वीकार करते हैं?
4: देखिए, मैं एक तो ओवैसी को यह बता देना चाहता हूं कि बैरिस्टर होने के नाते अगर सही भाषा का इस्तेमाल करोगे तो ठीक है। जो भाषा का इस्तेमाल आपने मेरे लिए किया है, वो भाषा का इस्तेमाल मैं आपके लिए भी कर सकता हूं। और इतने ध्यान रखना कि भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा और भारत की सरकार प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाई गई मिसाइल और ऑपरेशन सिंदूर में दागी गई मिसाइल से केवल इस्लामाबाद में बैठे हुए जो है आतंकवादी और वहां की सरकार ही परेशान नहीं है, भारत में जिन्ना की औलादें भी परेशान है। वो चाहते हैं कि भारत में भी आतंकवाद और नक्सलवाद पनपता रहे, और इसलिए अब भारत की सरकार ने उन कैंपों को निशाना बनाएगी और भारत की सेना उन कैंपों को निशाना बनाएगी जो भारत के खिलाफ अलगाववाद और आतंकवाद पैदा करते हैं। इसलिए ओवैसी कान खोलकर सुन लेना, संविधान की मर्यादा का पालन करो। जिस भाषा का आपने इस्तेमाल किया, इस भाषा का हम भी जवाब दे सकते हैं। हाँ, यूसीसी हिंदुस्तान में लागू होगी, भोपाल मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार ने लागू किए। माननीय गृह मंत्री का जो स्टेटमेंट है अमित शाह जी का, वो सही है। हम 2029 तक भारत के 21 प्रदेशों में यूसीसी लागू करेंगे, क्योंकि।
0: और इसी दौरान एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मामला सामने आता है जहां युवती को टक्कर मार के कार सवार फरार हो जाता है। अब ये बताया जा रहा है शाहनवाज नाम के एक शख्स था जिसने युवती को टक्कर मारी और उसके बाद वहां से फरार हो गया है। वीडियो भी वायरल हुआ। अब ये फुटेज देखिए, ये एक सफेद कलर की आप कार देख रहे हैं, उसमें गाड़ी का नंबर भी आपको दिखाई दे रहा है। सामने एक युवती है और उसके बाद वो टक्कर मार के, ये देखिए, ये युवती को टक्कर मारी और गाड़ी बहुत तेजी के साथ यहाँ पर भाग जाती है। और सबसे पहले आप देखिए कि पहले तो बोनट पर उस लड़की को काफी दूर तक घसीटता है, लड़की बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन लड़की सामने गाड़ी रुकवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो शख्स गाड़ी नहीं रोकता है। और उसके बाद आप देखिए गाड़ी की रफ्तार अचानक तेज होती है और फिर यह बताया जा रहा है कि लड़की दूर जाकर गिरती है और गाड़ी तेजी के साथ वहां से भाग जाती है। अब देखिए, ये कहानी बताया जा रहा है सिर्फ सड़क पर हुई टक्कर तक सीमित नहीं है, युवती की तरफ से कार सवार शाहनवाज पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप यह है कि शाहनवाज ने अपनी पहचान छुपाई, खुद को हिंदू बताया, युवती को प्रेम जाल में फंसाया। इसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ, जनेश्वर पार्क के सामने युवती को कार से टक्कर मारने का आरोप लगाया है। वायरल वीडियो में क्या हुआ, टक्कर किन परिस्थितियों में हुई, इस पूरे मामले के पीछे असल विवाद क्या है, पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। लेकिन ये बताया गया कि शुरुआत में हिंदू बनकर इसने अपनी पहचान छुपाई शाहनवाज ने, उसके बाद जब विवाद हुआ लड़की ने रोकने की कोशिश की, जनेश्वर मिश्र पार्क की घटना बताई जा रही है, तो शख्स बहुत तेजी के साथ भाग गया जिसका नाम शाहनवाज था। आशीष श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष, पुलिस की पड़ताल कहां तक पहुंची, क्या है ये मामला?
5: हेलो
0: आशीष, सुन पा रहे हैं?
5: या जी, मेरी आवाज आ रही है आपको?
0: हाँ बताइए आशीष, ये पूरा मामला है क्या, कहाँ तक जांच पहुंची है?
5: देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज तक पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जनेश्वर मिश्र पार्क की, और वहां पर ही ये युवती जो थी वो पहुंची थी इससे मिलने, जो इनका साथी है कह सकते हैं, या जिसके साथ में ये पहले मौजूद रही थी, यानी साथ में कहीं ना कहीं शाहनवाज ने इस युवती को अपना नाम जो है पहले हिंदू करके बताया था और उससे बातचीत कर देखा गया कि कहीं ना कहीं इसको लेकर उस युवती को बाद में जब इस बारे में पता चला तब जाकर ये पूरी घटना सामने आई, और उसके बाद जब आज बात करने पहुंची थी वहां पर, उस दौरान ही ना ही शाहनवाज बात करना चाहता था और ना ही किसी प्रकार से रुकना चाहता था। हालांकि लड़की ने कार से रोकने की कोशिश की थी वहां पर कि किसी भी तरीके से रोका जा सके, लेकिन वहां पर ना ही वह रुकता है, और इसी बात सीधे सीधे वह उस पर कार चढ़ाने की जरूरत करता है, और यही नहीं उसको कार से मारने की कोशिश करता है। जब ये पूरा मामला सामने आता है तो वीडियो, क्योंकि वहां पर जो लोग खड़े होते हैं वो बचाने की कोशिश कहीं ना कहीं होती है, लेकिन तब तक कार बहुत तेजी से आगे बढ़ गई होती है, तो ये कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है वो काफी कह सकते हैं संगीन मामला है, जिसमें वो शाहनवाज फरार मिल जाता है। पुलिस भले ही इसमें अब मामले को दर्ज करके आगे की कार्रवाई कर रही हो, जांच कर रही हो, लेकिन ये तो जरूर है कि जिस तरीके से अब महिला रोकने की कोशिश करती, जनेश्वर मिश्र पार्क यहाँ का सबसे बड़ा पार्क है, और वहीं पर ज्यादातर कहीं ना कहीं जो देखा गया है कि जो लोग जाते हैं शाम को घूमने, ऐसी स्थिति में ये कपल भी वहां पहुंचा था बताया गया ऐसा जहां के लोगों ने, लेकिन उस दौरान ही जब उसको रोकने की कोशिश की
0: तो उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई जहां पर जो शख्स है जिसका नाम शाहनवाज बताया जा रहा है बहुत तेजी के साथ गाड़ी भगाते हुए निकल जाता है, और जो युवती जो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी वो दूर जाकर गिरती है। देखिए गाड़ी का नंबर भी दिखाई दे रहा है, हालांकि कुछ लिखा भी है गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट के ऊपर, अब पुलिस जांच करेगी। हिट एंड रन का ये केस सामने आया है, लेकिन बेहद गंभीर मामला, क्योंकि ऐसा ही हाल ही में अभी आपने एक मामला गुरुग्राम में देखा था, वहां पर गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन यहाँ एक दूसरा मामला इसमें एंगल सामने आ रहा है कि पहचान छुपाई, खुद नहीं बताया कि शख्स का नाम शाहनवाज है, युवती से दोस्ती होती है, उसके बाद मामला आगे बढ़ता है और उसके बाद दोनों के बीच विवाद होता है जब पहचान सामने आती है, और युवती रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता, उसके बाद मामला आप जानते हैं, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वायरल वीडियो युवती की ओर से लगाए गए आरोपों के आधार पर पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है, और वो तस्वीरें एक बार फिर से आप यहां पर देखेंगे तो समझेंगे कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क का ये मामला है। अब इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वीडियो में यहां पर दिखाई देगा ये सफेद रंग की कार है, और यहां पर ये लड़की इसको रोकने की कोशिश करती है, दोनों के बीच में ये विवाद हो रहा है काफी दूर तक। ये देखिए ये आगे आगे जा रही है, गाड़ी के बोनट पर हाथ मार रही है, रोकने का प्रयास किया जा रहा है, और ये गाड़ी का नंबर यहां पर सामने आ जाता है, कुछ लिखा भी हो सकता है कि कोई वीआईपी इसमें ऐसा कुछ हो, उसकी जांच बाद में होगी, और उसके बाद जब ये तेजी से गाड़ी भगाता है तो ये लड़की दूर जाकर गिरती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क का ये मामला, एक बार फिर देखिए कि कितनी बार ये गाड़ी रोकने की कोशिश करती है लेकिन गाड़ी रुकती नहीं है, और उसके बाद ये शख्स तेजी के साथ जब भागता है तो यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर ये युवती दूर जाकर गिरती हुई दिखाई देती है। हिट एंड रन का मामला है, पुलिस जांच करेगी उसके बाद पता चलेगा। आशीष श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। आजी आशीष, युवती से कुछ बात हो पाई है, युवती की तरफ से क्या कहा गया है, शिकायत दर्ज करा दी गई है युवती की तरफ से?
6: देखिए अभी जो है युवती से बातचीत नहीं हो पाई है, क्योंकि जिस तरीके से उसको घायल किया गया था उसके बाद उसके परिजनों तक ये बात गई थी।
0: जी
5: जरूर इस पूरे मामले को लेकर उससे बात करना चाह रही थी शाहनवाज से, लेकिन शाहनवाज वहाँ पर रुका नहीं, और इसको लेकर लगातार
6: ये कहा जा रहा था कि काफी देर से ये बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन शाहनवाज जो अपनी कार चढ़ाने की हत्या करने की एक तरीके से कोशिश करता है और वह वहां से फरार होता है, जिसके बाद लगातार जो लोग वहां मौजूद थे वो भी इस बात को देखते हैं, तफ्तीश करते हैं, क्योंकि जो वीडियो बनाया वहां के लोकल लोगों ने बनाया, उसके बाद जब इनके सामने वो चढ़ाता हुआ जाता जाता है, ये घटना लोगों को चौंका देती थी। हालांकि पुलिस चौकी वहां पर मौजूद है और संपर्क करने की कोशिश किया जाता है पुलिस से, लेकिन उस दौरान भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंच पाती है। बाद में भले ही पुलिस को सूचना दी जाती है इस पूरे मामले को लेकर और हॉस्पिटल के लिए उसको ले जाया जाता है, लेकिन ये तो जरूर है कि शहनवाज से ये काफी देर से बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि जो इसके साथ में फ्रॉड हुआ, जो कह सकते हैं इसको पहचान।
0: आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जब ये वीडियो चल रहा है तो उसमें ये जो महिला, ये युवती है, ये काफी जोर से चिल्ला भी रही है, गाड़ी को रोकने की कोशिश जब कर रही है, बोनट पर हाथ मार के तो चीख चिल्लाने की वो आवाज, वो हम आपको सुनाते हैं कि कैसे गाड़ी रोकने का प्रयास कर रही है ये युवती। कुछ कहते हुए युवती नजर आ रही है, गुस्से में है, नाराजगी है, और इसलिए वो गाड़ी रोकने की प्रयास भी करते हुए दिखाई दे रही है और गाड़ी रोको बार बार ये कह रही है। पुलिस इस मामले में कहां तक पहुंची, क्योंकि देखिए मामला अब चर्चा में जरूर आ गया है, अब ये वीडियो भी आज तक पर सब देख ही रहा है, देश की तरफ से देखा जा रहा है, एक युवती को कैसे बीच रोड पर गाड़ी से धकेला जा रहा है ये भी देखा जा रहा है। तो क्या आशीष इस मामले में एक्शन अभी तक हो पाया है, आपकी कोई बातचीत हो पाई है?
6: बिल्कुल, देखिए पुलिस से जो बात हुई है, पुलिस ने एक टीम लगाई है इसमें पूरी तरीके से छानबीन करने के लिए, जांच करने के लिए, इस आरोपी शहनवाज को तलाशने के लिए भी, क्योंकि जो ये मामला आया उसके बाद पुलिस तक ये पूरी मामला पहुंचा, जिसके बाद अब डीसीपी ईस्ट खुद इस पूरे मामले को लेकर संगीन है और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनसे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जहां पर ये मामला हुआ है उसके आसपास लोगों से भी बातचीत की जा रही है कि कैसे इस बर्बरता से इस तरीके से गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और रन करा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला दिखाता है कि महिला बार बार कोशिश कर रही थी कि रोकने की, किसी भी तरीके से रुक जाए, लेकिन वो रुकने की कोशिश नहीं करता है, वो बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन इस दौरान वो बात करना चाह रही थी, क्योंकि जिस तरीके से उसके साथ चीट हुआ था वो इस बात से सवाल कर रही थी और यही बात थी शहनवाज को, क्योंकि शहनवाज इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं था और वो कार चढ़ाने की कोशिश करता है और इसी बात से वो पूरी तरीके से लड़की को हत्या कह सकते हैं कि मारने की कोशिश करता है, इसी वजह से वो कार तेजी से उसके ऊपर चढ़ाता हुआ निकल है, क्योंकि कई बार कोशिश की जाती है इस दौरान जो आसपास के लोग थे वो भी कोशिश करते हैं कि कैसे भी इसको रोका जाए, क्योंकि कुछ लोग जो वीडियो दूर से बना रहे होते हैं, लड़की यही चाहती है कि वो कहती है पीड़िता कि कहीं ना कहीं उसको उसकी हेल्प की जाए, मदद की जाए, लेकिन उस दौरान भी क्योंकि आरोपी जो है वो लगातार गाड़ी आगे बढ़ाता है और चढ़ा के ऊपर से निकल जाता है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम बनी है और वो जांच कर रही है और इसको लेकर लगातार कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन ये तो जरूर है कि इस मामले के बाद जनेश्वर मिश जो कि बहुत ही रिहायशी इलाका है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि लोग आते हैं और इतने लोग मौजूद रहते हैं, इसके बावजूद अगर इस तरीके की घटना हो रही है तो काफ़ी कड़ा सवाल खड़ा होता है पुलिस पर भी कि आखिर उस समय पुलिस कहाँ पर मौजूद थी, क्योंकि कुछ ही दूर पर वहाँ पर चौकी भी जनेश्वर मिश्र है, वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिलती और ऐसे हालात में पुलिस की कार्यशैली पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर किस तरीके से शहनवाज एक लड़की को इस तरीके से मारकर आगे बढ़ता है। इस पूरे मामले पर पुलिस जांच जरूर कर रही है, लेकिन ये तो जरूर है कि कहीं ना कहीं ये जो बीच कह सकते हैं रिहायशी इलाके का जहां पर गोमती नगर एरिया है वहां का ये मामला है और उसी जगह पर इस तरीके से गाड़ी चढ़ाना अपने आप में एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर रही है। हालांकि युवती कई बार कोशिश करती है उस दौरान कि कैसे ना कैसे उसको रोका जाए, कैसे ना कैसे उससे बात की जाए, लेकिन कार की स्पीड इतनी तेज होती है कि वो उस पर चढ़ाकर निकल जाता है और अब ऐसे में पुलिस जांच कर रही है इस मामले पे जो आरोपी है उसकी तलाश भी कर रही है। बताया जा रहा है कि इसमें एक दो लोग और भी हैं, जानकारी ये भी मिली है कि जो शहनवाज की मदद कर रहे थे पुलिस उनके बारे में भी जानकारी कर रही है, हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि उसमें भी क्योंकि उस लड़की और शहनवाज के बारे में जो बातचीत चल रही थी वो उन लोगों को भी पता थी और वो वहां पर भी पहुंचे थे, तो अब पुलिस उस दिशा में भी तलाश कर रही है कि वो और कौन लोग भी इसमें शामिल है। तो अभी तो शुरुआती में जिस तरीके से जानकारी आई है उसमें उस युवती को इलाज के लिए भेजा गया, उसके बाद शहनवाज की तलाश की जा रही है और पुलिस ने इस पूरे
0: देखिए पुलिस की तरफ से ये बयान आया है कि आरोपित लड़का और पीड़ित लड़की परिचित हैं, ये पुलिस की तरफ से बयान जारी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, इस मामले से जुड़ी आरोपित लड़का पीड़ित लड़की ये आपस में एक दूसरे से परिचित थे, ये पुलिस की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी खबर इस मामले में आपको बता रहे हैं, अपडेट इस मामले में बता रहे हैं। पीड़ित लड़की को मेडिकल के लिए भेजा गया है, ये पुलिस की तरफ से इस वक्त कहा गया। ये आप वीडियो देखिए, रोकने की कोशिश बार बार की जा रही है बोनट पर, और ये शख्स गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है बोनट पर। ये लड़की काफी कई मीटर तक इसको घसीटता है, और उसके बाद जब लड़की ये दाईं तरफ आती है गाड़ी के, तो गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है और लड़की दूर जाकर गिरती है। अब ये बताया जा रहा है कि पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन ले रही है। अब जो पीड़ित लड़की है और जो आरोपित लड़का है वो एक दूसरे से परिचित है, मेडिकल के लिए भेज दिया गया है, ये पुलिस की तरफ से भी जानकारी दी गई है। आशीष, जांच आगे बढ़ गई है और अब मामला यह गंभीर भी है, क्योंकि आप देखिए जनेश्वर पार्क जिस जगह पर बहुत व्यस्तता रहती है, हर जगह चाक चौबंद व्यवस्था रहती है, पुलिस भी रहती है, वहां पर इस तरह से युवती को अगर ढकेला जाए तो कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कहेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवार।
9: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
3: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
6: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट।
8: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।
9: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
12: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर। मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर। बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
13: इन एसोसिएशन विद सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स E3 HDMR। ये रिश्ता लंबा चलेगा। अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
2: आज तक के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे बड़ी सभा।
14: आज का बैटलफील्ड 4000 किलोमीटर तक जा रहा है। कोई भी सुरक्षित नहीं है।
15: इमीडिएट बालापुर मान जाइए। अब वो जब भी नहीं माने तो फिर सिंदूर की हमारे को नौबत आ गई।
16: अंडमान निकोबार आइलैंड तो जरूर हमको उसका एडवांटेज लेना ही चाहिए।
17: जो बाउंड्री प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में इसका अभी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता।
18: कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा भारत की सेनाएं उसका जवाब देगी।
2: आज तक देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ी आवाज।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: पता नहीं ये सरकार क्या कर रहे हैं, इनके पॉलिसी क्या हैं, क्या सोचते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता। अचानक से कोई नियम या कुछ थोप दिया जाता है, फिर जनता पर जब उसकी आदत लग जाती है, जनता उसके आदी हो जाते हैं, फिर उसे बदल दिया जाता है। अगर इसमें भी इतना टैक्स थोप देंगे 2000 के ऊपर के पेमेंट पर, तब तो आने वाले समय में जनता काफी क्राइसिस में आ जाएगी। इमीडिएटली इसे बंद करना चाहिए, जो भी निर्णय है ये बिल्कुल गलत निर्णय है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
4: नहीं, यूपीआई में तो ऐसा है कि भाई 2000 तक जो व्यापारी लोग होते हैं वो 2000 तक उसकी सीमा है, और उसमें कोई मतलब और ज्यादा पैसा ले रहे, इसी तरह का राहुल गांधी का आरोप है, वो इसमें तथ्य नहीं है। कोई सरकार ने अभी निर्णय ऐसा लिया भी नहीं है। वो किसी व्यापारी को और किसी लोगों को तकलीफ देने की भूमिका हमारी बिल्कुल नहीं है।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: तो देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, उसके बारे में बात करेंगे। राजधानी लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क पर एक मामला सामने आता है, वीडियो बहुत वायरल होता है। एक युवती को एक युवक गाड़ी के सामने काफी दूर तक घसीटता है। युवती गाड़ी रुकवाने की कोशिश करती है, बोनट पर हाथ मारती है, गाड़ी रोको कहती है, लेकिन शख्स रुकता नहीं है। वो गाड़ी के ब्रेक पर ब्रेक मारने की जगह वो रेस देता है और उसके बाद युवती दूर जाकर गिरती है। गाड़ी का नंबर आप देख सकते हैं, शख्स की पहचान हो गई। अब ये मामला बताया जा रहा है, पुलिस का ये कहना है कि दोनों युवक युवती एक दूसरे को जानते थे, परिचित थे एक दूसरे के। युवती को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। अब ये भी बताया जा रहा है, जो युवती की तरफ से कहा गया, कि इस शख्स ने अपनी पहचान छुपाकर, इसका नाम शाहनवाज था, पहचान छुपाकर युवती को अपने पाले में किया। और देखिए,
1: लड़की को भी,
0: ये बड़ी खबर और आपको बता दें, ये शख्स अपने आप को शाहनवाज की जगह यश ठाकुर बता रहा था। ये अपनी पहचान यश ठाकुर नाम से इसने युवती से दोस्ती की, जो प्यार की बात कही जा रही है दोनों के बीच में। और उसके बाद जब युवती को सच्चाई सामने पता चली, असलियत सामने आई, तो विवाद हुआ तो गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि युवती को टक्कर मारते हुए शख्स आके निकल गया। फिर आपको बता दे, शाहनवाज इसने अपने आप को यश ठाकुर बताया था युवती के सामने।
1: लड़की को भी
0: देखिए, आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, बताया जा रहा है यश ठाकुर बता रहा था ये अपने आप को, इसका नाम था शाहनवाज। लड़की को असलियत पता चली और जब सामने बात करने की कोशिश की, तब ये शख्स फरार हो जाता है, युवती को टक्कर मारते हुए गाड़ी भगा देता है।
2: बिल्कुल निमांशु, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से युवती को टक्कर मारी, इसका इरादा उसकी हत्या करने को था। और यश ठाकुर पहले बताता है, जिससे दोस्ती करता है, और उसके बाद में शाहनवाज निकलता है। पूरी तरीके से नाम बदलकर, पहचान बदलकर वो उस लड़की युवती को फंसाता है, और कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रेम जाल में फंसाने के बाद ये एक प्रकरण हम कह सकते हैं कि जैसे लव जिहाद का होता है, उसी तरीके से ये प्रकरण है, जिसमें उस महिला को फंसाया गया। जब वह पहुंचता है जनेश्वर मिश्र पार्क पर दूसरी महिला के साथ, ये भी जानकारी सामने आई है कि दूसरी महिला के साथ वहां पर पहुंचता है, इस दौरान वो महिला देख लेती है, और जब देखती है पीड़िता, तब उससे सवाल करती है, लेकिन वह गाड़ी से नहीं,
3: और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इस दौरान वो लड़की पर, यानी पीड़िता पर, वो गाड़ी चला देता है और उसके बाद वहाँ से फरार होता है। इस पूरे मामले पर कह सकते हैं कि पुलिस की बड़ी लापरवाही
2: पर कह सकते हैं कि पुलिस की बड़ी लापरवाही भी सामने है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद नहीं था। जब वहाँ पर घटना होती है, उसके बाद भी काफी पुलिस को कॉल की जाती, नहीं पहुँचती है। तो ऐसे में तो जरूर है कि सवाल खड़े होते हैं पुलिस पर भी, कि एक शख्स जिस तरीके से वहाँ पर हिट करके भागता है, यानी कि जो कार से मारने की कोशिश करता है और फरार होता है। अब ऐसे में देखिए, जो शाहनवाज है और वह यश ठाकुर बनकर दोस्ती कर रहा है और पीड़िता को फंसा रहा है, उसके बाद से उसको प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसको उसकी हत्या करने तक कोशिश की जाती है, इस गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की जाती है, ये बड़ा मामला, और वो भी रिहायशी इलाके में, कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है कि ऐसी और कई युवतियां हैं जो उसके प्रेम जाल में, ये भी
0: पूरा वीडियो दिखाते हैं, ये युवती किस तरह से चिल्ला रही है, किस तरह से चीख रही है, ये पूरा वीडियो फुटेज एक बार देखिए, जहां पर ये गाड़ी को रोकने का प्रयास करती है, बोनट पे हाथ मारती है, लेकिन शख्स रुकता नहीं है। देखिए, बोल रही है वो मरूंगी नहीं, कुछ भी करवा लो तुम, और गाड़ी के बोनट पर हावी है, लेकिन ये शख्स रुक नहीं रहा। इस वक्त हमारे साथ जॉइंट सीपी लखनऊ की अपर्णा कुमार जुड़ चुकी हैं। अपर्णा जी, बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर एक शख्स युवती पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मामले में अभी तक आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया गया है? चलिए दोबारा जुड़ेंगे बात करेंगे। आशीष हमारे साथ में बने हुए हैं। आशीष, तीन टीमें बनाई गई हैं, गाड़ी का नंबर दिख रहा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जहां हर जगह कैमरा लगा हुआ है, गाड़ी बहुत दूर तक नहीं जा सकती, लेकिन क्या अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है इस गाड़ी से जुड़ी हुई, शाहनवाज से जुड़ी हुई, जिसने अपना नाम बताया था? यश ठाकुर,
2: ऑडियो। बिल्कुल, देखिए राजीव, जिस तरीके से ये पूरा मामला हिमांशु है उसमें मैं बताऊं कि गाड़ी जो है उसका नंबर तो जरूर सामने आया है। पुलिस उस नंबर को लेने के बाद ट्रेस कर रही है इस पूरी गाड़ी को और आगे, क्योंकि वो गाड़ी जनेश्वर मिश्र से भागने के बाद सीधे पहुंची थी शहीद पथ की तरफ, क्योंकि शहीद पथ पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसमें जाँच की जा रही है, उसमें बात की जा रही है कि वो किधर गया, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ी लेकर फरार होता है ऐसे में कई टीमें भी लगाई जाती है कि उसको पकड़ा जाए, पर अभी तक जानकारी नहीं लगी थी कि वो कहां का शख्स था। हालांकि गाड़ी नंबर से जरूर आइडिया लगा है, पुलिस उस दिशा में जा रही है, टीमें जो बनाई गई हैं वो लगातार तफ्तीश करके आगे कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मामला आया है उसमें तो जरूर है कि इस पूरे मामले पर यश ठाकुर ने ना कि सिर्फ उस महिला को धोखा दिया, जबकि जब उसकी असलियत सामने आई है तब उसने उसको जो मुस्लिम युवक था उसके द्वारा उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई, उसे मारने की कोशिश की गई, और इस पूरे मामले पर वीडियो बनता रहा, वहां पर पुलिस नहीं पहुंच पाई मौके पर, क्योंकि इस पूरे मामले को संवेदनशीलता से देखते हुए कहीं ना कहीं अब कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला आया है वो काफी बेहद चौंकाने वाला भी है, क्योंकि वो रोड ऐसी है जहां पर पिकेट भी रहती है, पुलिस भी मौजूद रहती है, लेकिन आप देखिए कि जिस वीडियो में हम देख रहे हैं ना ही वहां पुलिस मौजूद है ना ही दूर दूर तक कोई आता है बचाने, तो ऐसे में साफ जरूर कि इरादे उसके नेक नहीं थे, वह जरूर मारना चाहता था और यही वजह थी कि वह उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता है।
0: जिस जगह के आप ये वीडियो देख रहे हैं जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया शाहनवाज की तरफ से, लड़की को टक्कर मारते हुए भाग जाता है, ये गाड़ी भगा देता है, उसी जगह से समर्थ श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। समर्थ, इस मामले में अभी तक क्या अपडेट है, कुछ एक्शन हो पाया है, क्योंकि आप उस जगह पर मौजूद हैं?
4: लखनऊ से डरा देने वाली घटना सामने आई है। एक तरीके से अगर आप वीडियो में देखें तो एक हिट एंड रन का मामला है, जहां पर एक लड़की एक कार के आगे है उसे रोकने की कोशिश कर रही है, जबकि अंदर बैठा जो युवक है वो उसको घसीटता हुआ ले जा रहा है। इस वक्त हम उसी जगह पर हैं जहां पूरा मामला घटित हुआ है। ये जनेश्वर मिश्र पार्क की लोकेशन है, सामने जनेश्वर मिश्र पार्क है और गेट नंबर 4 के पास इस वक्त हम मौजूद है, और जो आप वीडियो में देख रहे हैं वो ये जगह है, ये सड़क है जहां से वो गाड़ी सामने की तरफ से आती है और एक महिला है वो उस गाड़ी को रोकने का प्रयास करती है। आपको मैं थोड़ा समझा दूं, अगर अनामिका नाम की लड़की है जिसका शहनवाज के साथ जिसकी गहरी दोस्ती थी, उसने जब शहनवाज को किसी और लड़की के साथ देखा, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है, तो दोनों के बीच बहस हुई, जब उसने उसको रोकने की कोशिश की तो शहनवाज नहीं रुका, बल्कि रुकने के बजाय वो ऊपर चलता चला गया। देखिए ये वो स्पॉट है, पहले को मैं जगह दिखा देता हूं, यहां पर जो आप देखें तो अनामिका यहीं से धक्का बकायदा दे रही है, धक्का देने की कोशिश कर रही है, गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रही है, और गाड़ी उस तरफ से आती हुई इधर उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। एक वक्त तक वो घसीटती हुई काफी आगे तक जाती है, फिर एक मूवमेंट ऐसा आता है जब वो गाड़ी की स्पीड को शहनवाज तेज कर देता है, और जब शहनवाज गाड़ी की स्पीड को तेज कर देता है तो घसीट कर अनामिका यहीं इसी जगह पर गिर जाती है और गाड़ी आगे निकल जाती है। प्रत्यक्षदर्शी जो उस वक्त यहाँ मौजूद थे वो इस वक्त हमारे साथ है। आपका क्या नाम है?
5: मेरा नाम है आकाश कुमार।
4: आकाश, ये बताइए आप उस वक्त यहाँ पर थे जब घटना हुई है?
5: जी, मेरी दुकान है सुरेश टी स्टॉल, आज सारी दुकानें हट गई यहाँ पे, तो हमने देखे यहाँ पे पहले कार आई, कार आने के बाद में फिर क्या हुआ, फिर रोके, शीशा खोले उसने, ठीक है, शीशा खोलने के बाद में फिर वो जो दीदी,
4: आपकी चाय की दुकान चल रही थी, पहले गाड़ी आई,
5: पहले गाड़ी आई, फिर दीदी स्कूटी अपनी स्कूटी खड़ी की,
4: ठीक है, गाड़ी कितनी देर पहले आई थी?
5: तुरंत बस गाड़ी आई, तुरंत स्कूटी आई।
4: मतलब कैसा लग रहा था कि फॉलो कर रही हो?
5: वो नहीं दीदी, मतलब कि उसके ऊपर ऐसे रुक गई, रोक रोकने की कोशिश कर रही थी, तो उसने नहीं रोका, फिर यहाँ यही मेरी दुकान के सामने रोका, ठीक है, रोकने के बाद में फिर आगे रुकते रुकते वहाँ रुक गई दीदी, फिर वहाँ रुकी और दीदी बस जैसे साइड से ना साइड से मतलब बात करने की कोशिश कर रही थी, बस तुरंत ही रुक गई, बस रोकने के बाद में बस इतनी स्पीड में भगाया जैसे दीदी थोड़ा साइड में, बस दीदी फिर ऐसे रोकने की कोशिश, बहुत गिर गई दीदी ने, पर यहाँ चोट खा गई, मेरे दुकान पे कस्टमर बैठे वो भी वीडियो बनाए, और भैया भी बैठे थे, हम अपने भी फोन से, तो वहाँ भैया भी बैठे थे, वो भी कुल्हर मारे कि रुक जाए, तब भी नहीं रुका, और दीदी को चोट खाए, उनके साथ में उनकी बुआ भी थी,
4: दीदी के साथ?
5: हाँ, दीदी के साथ में बुआ, जिसको चोट,
4: गाड़ी उसके अंदर कौन कौन था?
5: उसके अंदर दो लड़के थे,
4: वो लड़के थे,
5: जी
4: महिला कोई नहीं,
5: महिला कोई नहीं थी।
4: अनामिका कुछ चिल्ला भी रही थी उस,
5: बहुत तेज
4: कह रही थी उससे,
5: कह रही थी मुझे बुआ बचाओ, मुझे बुआ बचाओ, मैं तो मर गई, मैं तो मर गई।
4: जब रोक रही थी उस वक्त कुछ नाराजगी थी दोनों के बीच में,
5: वो बहुत तेज से शीशा पे आवाज कर रही थी कि रोक रोक, वो रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था अपनी कार।
4: क्यों रुकवा रही थी?
5: अब ये नहीं मुझे भाई पता है,
4: कुछ बताया नहीं उन्होंने उस वक्त,
5: ये कुछ नहीं बताया, सिर्फ रोकने की कोशिश कर रहे थे कि रोक, वो रोक नहीं, तो बहुत तेज से लेके गया बस, इतनी तेज से गिर, वीडियो देखे होंगे ना आप? हाँ वीडियो, ऐसे जैसे
4: भी जा रहा है, कुछ नाराजगी दोनों के बीच में थी, दोनों जानते थे दूसरे को पहले,
5: इतना नहीं देखे, मेरी दुकान के सामने तुरंत आए, जैसे भी आए बस तुरंत, बहुत है 2 मिनट।
4: अच्छा मुझे समझाइए, जैसे क्राइम, जैसे एक सीन है, यहाँ पर ये स्कूटी से पोस्ट खड़ी है, यहाँ पर एक कार है, ठीक, कार यहाँ से यहाँ, अनामिका आप अनामिका है, आप यहाँ पर आ गए,
5: पहले कार आई थी,
4: पहले कार आई,
5: कार उसके आगे दीदी स्कूटी,
4: कितनी देर बाद अनामिका
5: तुरंत, जैसे कार आई तुरंत स्कूटी आई, दीदी
4: अनामिका उतनी स्कूटी से फिर
5: तुरंत रोकने की कोशिश कर रही थी, तुरंत रोकने,
4: क्या समय क्या था उस वक्त?
5: उस समय 6 बज रहा था भैया,
4: सुबह का,
5: तुरंत हम देखे थे अपने मोबाइल,
4: 6 बजे की घटना है
5: जी, सुबह 6 की,
4: सुबह ठीक है, फिर गाड़ी, फिर अनामिका अपनी स्कूटी से उतरी, ये स्कूटी अनामिका ने खड़ी की, अनामिका ने स्कूटी खड़ी की और यहाँ पर कार खड़ी है, पीछे आगे कार आगे खड़ी थी, आगे कार खड़ी, अब स्कूटी से अनामिका उतर गई है और कार के आगे आई है, कार के आगे आई थी या विंडोज की तरफ आई?
5: कार के आगे आके तुरंत ऐसे लेट गई, देखे होंगे वीडियो ना, आके लेट गई कि रोकिए रोकिए, उधर
4: कार उस वक्त चल रही थी जब ये कहा रोकने की,
5: आगे आगे बढ़ा रहा था कार
4: धीरे धीरे 10-20 की स्पीड,
5: हाँ आगे आगे बढ़ा रहा था,
4: स्पीड रही होगी
5: स्पीड नहीं मगर सर, क्योंकि जितनी तेज कार बढ़ रही थी वीडियो में देखेंगे,
4: हम देखें दर्शकों को समझाते हैं, ये स्कूटी यहाँ से अनामिका उतरती है और यहाँ सपोज एक कार खड़ी है, इधर आइए मेरे साथ मनीष, यहाँ कार खड़ी थी, यहाँ पर उन्होंने ऐसे हाथ रख दिया,
5: हाँ, ऐसे हाथ, दोनों
4: फिर
5: हाथ रखा,
4: फिर गाड़ी कितना आगे तक गई है?
5: अरे लमसम में यहाँ से वो रखो जिसे वो कार,
4: थोड़ा सा कैमरा मैन से कहूंगा अगर आगे आ पाए, ये आगे जो कार खड़ी उसके भी आगे तक,
5: उसके भी आगे तक, बीच रोड पे गिर पड़े तेज से
4: 400-500 मीटर तक गाड़ी घिसटती रही,
5: हाँ यहाँ से, हाँ वो कार इतनी दूर,
4: कार के आगे तक, मतलब 200-300 मीटर,
5: हाँ 200-300 मीटर,
4: कई लोग कंकड़ पत्थर मार रहे,
5: हाँ वो भैया भी लोग थे जो कस्टमर वस्टमर थे ना, वो भी मार रहे थे, बचाने की कोशिश कर रहे थे कि वो रुक जाए कार वाला, तो रुका ही नहीं भैया,
4: नहीं आप देखिए किस तरीके से आपको हम दिखा रहे हैं, ये आप देखिए अनामिका यहाँ पर रुकती है, देखिए आपको मैं बता दूं, ये सामने खूबसूरत सा पार्क है, यहाँ पर यूजुअली लोग सुबह 6 बजे का जो समय बता रहे हैं, लोग आते हैं टहलते हैं फिर चाय पीते हैं, यहाँ पर तमाम चाय की टपरियां लगी हुई हैं, आप देखिए समय, कुछ लोग क्योंकि दोपहर का समय है इस समय लोग हटा रहे हैं अपनी दुकानें, यहाँ पर ही वो चाय पीने की उससे आए थे।
0: अब दौरान एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इस शख्स को हिरासत में ले लिया गया है, जिस शख्स ने युवती पर गाड़ी चढ़ाई थी, शाहनवाज को हिरासत में ले लिया गया, कार के नंबर के आधार पर पहचान हुई और उसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए, त्वरित कार्रवाई करते हुए इस शख्स को हिरासत में ले लिया है। आरोपी शाहनवाज पकड़ लिया गया है, जो अपना नाम यश ठाकुर बता रहा था और यश ठाकुर बताकर इसने युवती से प्रेम किया, दोस्ती की, उसके बाद ये युवती जब रोकने की कोशिश करती है तो ये शख्स गाड़ी चढ़ा देता है, फरार होता है, लेकिन बहुत देर तक ये फरार नहीं रह पाया और पुलिस ने गाड़ी के नंबर को ट्रेस करते हुए इस शख्स को पकड़ लिया है, हिरासत में ले लिया है। समर्थ, समर्थ शाहनवाज को हिरासत में ले लिया गया जी,
4: थी वो गठित कर दी गई थी, बिल्कुल आप मुझे सुन पा रहे हैं, 3 पुलिस की टीमें जो थी जो गठित की गई थी और 3 पुलिस की टीमें गठित करने के बाद कार्रवाई लगातार तेजी से चल रही थी, क्योंकि सुबह 6 बजे की यह घटना है और पुलिस कंप्लेंट होने के बाद पुलिस ने शुरुआत की है इन्वेस्टिगेट करने की, जिसमें शहनवाज को अभी हिरासत में कुल मिलाकर ले लिया गया है। ये बड़ी खबर है, शहनवाज के पास ही वो सारे राज है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक लड़की को गाड़ी रोकनी पड़ी। बड़ी बात थी तो यहां पर यह है कि अगर वो रुकने के लिए कह रही थी तो ऐसा क्या चीज थी दोनों के बीच में कि शहनवाज नहीं रुक पाए। अरे आप गाड़ी से उतर कर बात सुन थे, शीशा नीचे करके बात कर सकते थे, लेकिन एक लड़की को आप कुचलने की नियत से गाड़ी आगे बढ़ा रहे। 400 मीटर में आपको स्पॉट से दिखाया कि कैसे गाड़ी आगे बढ़ रही है, ये देखिए ये पूरी रोड कितनी, यहां गाड़ियां ना काफी स्पीड में चलती हैं, पहले भी यहां पर कई हिट एंड रन की घटनाएं हुई हैं, कई बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हुए हैं, जो स्टंट्स की आप कहानियां सुनते हैं वो भी इसी तरह की रोड पे ही जनेश्वर में अक्सर हो चुकी हैं। ये देखिए ऐसे गाड़ी जा रही है, यहां पर ये गाड़ी गई, अब इस तरह से गाड़ियां स्पीड में यहां से निकलती हैं, तो बड़ी बात यह कि शहनवाज ने आखिर गाड़ी क्यों नहीं रोकी। अगर महिला के चोटें तो बहुत आई है, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी ने हम लोग को बताया है, कंधे में चोट आई है, इधर चोट आई है, आप ये समझे कि अगर गाड़ी के नीचे वो बकायदा आ गई होती तो शायद वो अनामिका आज जीवित भी नहीं होती। तो सवाल तो यहाँ पर यही उठता है कि किस तरह की मतलब मानसिकता है यहाँ पर कि आप गाड़ी से अगर कुछ कितनी भी किसी की लड़ाई हो सकती है लेकिन कैसे कोई किसी को कुचल देगा, ये एक बड़ी बात है। और जो वीडियो सामने आए हैं, जो विजुअल सामने आए हैं वो डरा देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर यूजुअली बहुत भीड़ भी नहीं होती है। सामने देखिए कुछ चाय की टपरियां जैसे लगी हुई है अभी, क्योंकि दोपहर का समय है, सुबह के समय तो नगर निगम की जो टीम्स है वो भी यहाँ पर देखिए अब पहुंची हुई हैं। अब नगर निगम की टीमें जो है दुकान यहाँ पर खाली करवाने की कवायद से यहाँ पर दुकानें हटवा रही हैं, तो ये इस तरह की कार्रवाई भी इस वक्त यहाँ पर शुरू हो गई है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये है, प्रत्यक्षदर्शियों ने जैसे कि हम लोगों को बताई है तमाम कहानियां कि ये किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। और इतना ही नहीं, कई जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो काफी ज्यादा गुस्से में थे। आप अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो वीडियो में जो है कुल मिलाकर यहाँ पर जो कई लोग जो है यहाँ पर जो कंकड़ पत्थर ईंटे पड़े हैं वो जो भी हाथ में आ रहा था उसको उठाकर कार पर मार रहे हैं।
0: लेकिन बड़ी बात यहाँ पर समर्थ ये कही जा सकती है कि जब इस मामले को आज तक ने भी प्रमुखता से उठाया, जिम्मेदारों से सवाल पूछे और कुछ ही वक्त बाद टीम गठित होती है और उसके बाद हिरासत में ले लिया जाता है, यानी त्वरित एक्शन हुआ है और ये आरोपी बहुत ज्यादा दूर तक भी नहीं जा पाया, ये भी एक बड़ी अहम बात है।
4: बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि समय रहते आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। जैसा कि मैंने बताया आपको, तीन टीमें लखनऊ पुलिस ने गठित कर ली थी, सुबह 6 बजे की घटना थी, हालांकि कंप्लेंट होते होते थोड़ी देर हुई है, तो पुलिस ने कम समय में आरोपी को डिटेन कर लिया है। और अभी इस वक्त जो है शहनवाज जो मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में है वो हिरासत में है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही। देखिए, आपसी झगड़े आपसी विवाद किसी भी के बीच हो सकता है, फिर वो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, दोस्त हो या रिश्तेदार हो, लेकिन ये जो वीडियो में दिखाई पड़ रहा है ये मानवीय तो नहीं है, ये अमानवीय है। ऐसे समझ ले कि गाड़ी एक यहां आकर रुकी और यहां एक व्यक्ति अगर उसको रोकने की कोशिश कर रहा है तो वो गाड़ी उसको ही उसके ऊपर ही चढ़ा देगी। तो यहां पर आप देखें पूरी की पूरी दुकानें जो है साफ करा दी गई हैं, सुबह तक यहां पर तमाम दुकानें मौजूद थी और अभी आपको दिखाएं तो अभी ये सारी दुकानें यहां से हटवाई जा रही हैं। हालांकि क्यों हटवाई जा रही हैं ये अभी बहुत साफ नहीं है, क्या घटना ही कारण है जिसकी वजह से जो है फटाफट अधिकारियों की तरफ से आदेश हुए हैं कि यहां से दुकानें ही आप हटा दीजिए, लेकिन दुकानें हटवाने से शायद उतना जो सोल्यूशन है वो नहीं निकलेगा। बड़ी बात तो ये है कि मानसिकता किस तरह की है कि आपकी अगर किसी से लड़ाई है।
0: देखिए, पुलिस की तरफ से तुरंत एक्शन लिया गया, तीन टीमें गठित की गई थी और उसके बाद ज्यादा दूर तक शाहनवाज भाग नहीं पाया और उसको आखिर में पकड़ ही लिया, पूछताछ की जा रही है। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: भैया मेरे राखी के बंधन को नहीं। 100 रुपए लेंगे तुमसे अभी हम।
1: लो मिठाई भी खाओ।
2: क्योंकि फूफा भी कभी जीजा थे।
0: ताऊ भी एथेनॉल को लेके फूफा ही कहे जाएंगे।
1: हाँ ताऊ एथेनॉल फूफा हैं।
3: हाँ बिल्कुल है। हम नाराज हैं।
0: मेरे फूफा जो है दुनिया के सबसे अच्छे फूफा हैं।
1: क्या बात कर रहे हैं।
0: कसम से उनका नाम ही अच्छे खां है।
1: अच्छा।
0: सबसे अच्छे हुए।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: पंजाब के संगरूर जिले में गुलजार सिंह सुसाइड मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। इस पूरे मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई करते हुए ये कहा गया कि इस मामले में एक कैबिनेट मंत्री को कैसे आरोपी बनाया जा सकता है, जबकि इस पूरे मामले में सरपंच और अन्य लोगों को वैसे ही आरोपी बनाया गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट हालांकि कोर्ट ने पंजाब सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
1: क्या गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान यूपी के चुनाव में गेम चेंजर साबित होगा? क्या 2027 में होने जा रहे यूपी विधानसभा चुनाव का एपिसेंटर यूसीसी ही बनेगा? क्या 2027 की चुनावी बिसात को देखते हुए ही बीजेपी ने यूसीसी का मोहरा चला है? इसे ठीक से समझने से पहले जरा अखिलेश यादव का नया संदेश देख लीजिए। अखिलेश ने यूसीसी की नई परिभाषा दी है। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, यूसीसी मतलब अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस यूसीसी का विरोध करते हुए एक्स पर लिखा है, जनता समझ रही है भाजपा जिस यूसीसी की बात कर रही है दरअसल उसका फुल फॉर्म कुछ और है, यूसीसी इक्वल टू अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। अखिलेश ने जिस अंदाज में यूसीसी को परिभाषित किया है उससे साफ है कि समाजवादी पार्टी यूसीसी का खुलकर विरोध करने जा रही है, और उतना ही साफ ये भी है कि बीजेपी यूपी में इसे जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश करेगी। योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली आए थे और खबर है कि यूसीसी पर उनके गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई है। यूसीसी को यूपी में जल्द से जल्द लागू करने की बीजेपी की मंशा किसी से छिपी नहीं है। बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि यूपी में यूसीसी का आगाज होकर रहेगा।
2: यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे 2024 के घोषणा पत्र में और संविधान का अनुच्छेद 44 ये कहता भी है और ये हमारे नीति निर्देशक तत्व में भी शामिल है और माननीय गृहमंत्री जी ने आज कहा भी है। और निश्चित रूप से अगर महिलाओं के प्रति उनके अधिकारों के प्रति अगर उसे पूर्ण करना है, उन्हें सुरक्षा देनी है तो ये बहुत आवश्यक है। बाकी सरकार को निर्णय करना, माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय करना, लेकिन आज गृहमंत्री जी ने जो बोला है वो कहीं ना कहीं हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है, हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा है। और निश्चित रूप से सामान्य नागरिक संहिता की बात हम लोग लंबे समय से करते रहे हैं और हमारे लिए हमारा कमिटमेंट है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। देश हमारे प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए सामान्य नागरिक संहिता की बात भारतीय जनता पार्टी जनसंघ हमेशा उठाती रही है।
3: उत्तर प्रदेश ये प्रयास करेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मनसा है वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की धरती पर उतरे। सरकार निश्चित तौर पे सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उत्तर प्रदेश में हम सबसे पहले लागू करेंगे।
1: ये भी तय है कि यूपी में यूसीसी लागू होने की कोशिश होती है तो इसका विरोध भी तगड़ा होगा। मुस्लिम वोटों की चाहत में अखिलेश तो विरोध करेंगे ही, ओवैसी जैसे नेता भी सुर में सुर मिलाएंगे। मोदी सरकार धारा 370, तीन तलाक कानून, वक्फ कानून जैसे बड़े फैसले ले चुकी है। अब यूसीसी की बारी है और यूपी में इसे लागू करने की पूरी तैयारी है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
4: भैया मेरे राखी के बंधन को नीव
5: 100 रुपए लेंगे तुमसे, अभी लो मिठाई भी खाओ।
6: क्योंकि फूफा भी कभी जी जाते।
5: तो भी एथेनॉल को लेके फूफा ही कहे जाएंगे।
7: हाँ ताऊ एथेनॉल फूफा है।
8: हाँ बिल्कुल है, हम नाराज हैं।
5: मेरे फूफा जो है दुनिया के सबसे अच्छे फूफा है।
7: क्या बात कर रहे हैं,
5: कसम से उनका नाम ही अच्छे खां है।
7: अच्छा।
5: सबसे अच्छे हुए।
9: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

में एक्स गर्लफ्रेंड को कार के बोनट पर घिसटते हुए भागने वाला शहनवास फरार यश ठाकुर के नाम से गलत पहचान बताकर प्रेम जाल में फंसाने का आरोप, विरोध करने पर अपने कार से मारी टक्कर। समुद्र सीमा में पाकिस्तानी नेवी की भिड़ंत पर भारत का कड़ा रुख, विदेश मंत्रालय ने पाक हाई कमीशन के राजनयिक को किया तलब, पाक नौसेना के गैर पेशेवर रवैये पर एतराज जताया। दो हजार से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर चार्ज के फैसले का आरबीआई ने किया बचाव, कहा मिलने वाले पैसे से तकनीक और नेटवर्क होगा मजबूत। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, नियम को वापस ले मोदी सरकार। यूसीसी विरोधी सभा में बीजेपी विधायक के मिसाइल अटैक वाले बयान पर भड़के हुए वैसी, तो एमएलए की भी चेतावनी, अखिलेश यादव ने यूसीसी को बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। मुंबई में गणपति पूजा की धूम, सिद्धि विनायक के दरबार पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम देवेंद्र फडणवीस, लालबाग के राजा से भी आशीर्वाद।

नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और अब वक्त हो गया है सौ शहर सौ खबर का। लखनऊ से हिट एंड रन का खौफनाक मामला सामने आया। युवती को कार से टक्कर मारने के बाद मुस्लिम युवक फरार, पहचान छिपाकर हिंदू बनकर प्रेम जाल में फंसाने का भी आरोप। युवती का आरोप है और बेहद गंभीर आरोप है कि पहचान छिपाकर आरोपी ने संबंध बनाए थे। पुलिस के अनुसार दोनों ही लड़का और लड़की आपस में परिचित थे और घायल युवती का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी शहनवाज ने अपना नाम यश ठाकुर बताया था और आरोपियों की तलाश में तीन टीमें लगी हुई हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पर एक पाकिस्तानी नौसेना पोत की भारतीय नौसेना की यूनिट से टक्कर को बेहद कड़ा रुख इस पर अपनाया, इसे अस्वीकार्य और गैर पेशेवर बताया। इस घटना के बाद से भारत सरकार ने उठाए कड़े कदम। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के कार्यवाहक प्रमुख को तलब किया है। नेपाल त्रासदी में 21वें दिन भी खोज तलाश अभियान जारी। 1399 शव बरामद, 5000 से ज्यादा लापता। केरल कैबिनेट ने एर्नाकुलम में दो विशेष एनआई अदालतों को मंजूरी दी, मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने जानकारी दी। बेंगलुरु में यूपीआई चार्ज को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने इस बीच में दखल दिया और पोस्टर्स जब्त किए। 2000 से ज्यादा की यूपीआई पेमेंट पर लगेगा चार्ज। रेलवे, टेलीकॉम, ईंधन जैसी चुनिंदा श्रेणियों पर 5 रुपए शुल्क, 15 अक्टूबर से नया नियम लागू। बेंगलुरु में यूपीआई एमडीआर को लेकर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का केंद्र पर हमला, बोले ये जनता के साथ धोखा। फोन पे के सीईओ समय निगम का यूपीआई पर बैन, बोले कि 2000 से ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर 0.4% एमडीआर से इकोसिस्टम मजबूत होगा। यूसीसी पर अखिलेश यादव ने इसे अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी बताया, बीजेपी पर साधा निशाना, बोले कि 15 लाख पहले खाते में पहुंचाओ फिर यूसीसी लाओ। यूसीसी पर अर्शद मदनी ने केंद्र से पूछा सवाल, पूछा कि देश संविधान से चलेगा या एक पार्टी के एजेंडे से। मुरादाबाद में यूसीसी पर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन, बोले कि धार्मिक परंपराओं का तो हम पालन करते रहेंगे। सुल्तानपुर में यूसीसी को लेकर संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, के देश की धार्मिक विविधता के लिए खतरा है। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर प्रदर्शन देखने को मिला। कोविड काल के हेल्थ केयर वर्कर्स, आशा वर्कर्स, आईटीआई इंस्ट्रक्टर बनने के इच्छुक उम्मीदवार प्रदर्शन करते दिखे और मिलने की मांग। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, बोले कि यूथ अब सरकार बदलने के मूड में है, 2027 में बनेगी पीडीए की सरकार। अखिलेश यादव ने कहा कि हम 2027 में पीडीए सरकार बनाएंगे और नए जमाने के हिसाब से रोजगार कारोबार के नए अवसर लाएंगे। लखनऊ में सपा नेता दीपक रंजन का बीजेपी पर हमला, जनता अब समझ गई कि पीडीए का बोलबाला है, बीजेपी जाने वाली।

लखनऊ में यूपी चुनाव से पहले सपा ने छात्र सभा का सदस्यता अभियान शुरू किया, जेन जी और युवाओं को साधने की कोशिश। कारिणी सेना को झटका, जंतर मंतर प्रदर्शन पर जल्द सुनवाई से हाईकोर्ट का इनकार। योगी कैबिनेट का जेन जी जेन अल्फा के लिए बड़ा फैसला, 14,429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय स्मार्ट स्कूल बनेंगे। यूपी के सरकारी स्कूल के बच्चे अब स्मार्ट क्लास, लैब, डिजिटल बुक्स, डिजिटल लाइब्रेरी और टीचरों के हाथ में टैबलेट भी अब दिखाई देंगे, उसी से पढ़ाएंगे। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में फैसला, श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड को स्मार्ट क्लासेस की स्थापना के लिए कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया। योगी सरकार ने शिक्षक वैकेंसी निकाली, यूपी में 15,012 पदों पर भर्तियां शुरू, सहायक अध्यापक से लेकर पीजीटी तक के पदों पर विज्ञापन, 897 सहायक अध्यापक संबंध प्राइमरी, 11,508 सहायक अध्यापक शहरी और 2,607 प्रवक्ता पदों पर होगी भर्ती, पीजीटी के लिए 18 सितंबर से आवेदन। यूपी में जनप्रतिनिधियों के गनर के अब हथियार बदलेंगे, 800 सब मशीन गन खरीदने को मंजूरी। यूपी के प्रयागराज में समाजवादी नेता की गोली मारकर हत्या, वारदात में शामिल तीनों आरोपी गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल बाइक और दोनों तमंचे पुलिस ने किए बरामद, पूछताछ में आरोपियों ने व्यक्तिगत दुश्मनी की बात बताई है। हाथरस कर्ण और आरजीकर केस उलझाने वाले सीबीआई अफसर करेंगे दिशा सालियान केस की निगरानी। सीबीआई की तेजतर्रार ऑफिसर सीमा पाहुजा सीबीआई दिल्ली में स्पेशल क्राइम यूनिट में बतौर एसपी तैनात हैं, 2021 में बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर का गोल्डन अवार्ड मिला है। गुरुग्राम हिट एंड रन केस में हरियाणा पुलिस का एक्शन जारी, पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया जो उस समय गाड़ी में मौजूद था, आरोपी लवनिश को पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक 34 साल के लवनिश ये कि पलवल की न्यू कॉलोनी का रहने वाला है और नियमानुसार इसे गिरफ्तार किया गया। इंदौर में 19 सितंबर को आयोजित होने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर सियासी घमासान, कार्यक्रम की अनुमति देने में देरी पर सवाल। कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरपर्सन ने आयोजकों से 10 लाख रुपए की फीस लिए जाने को लेकर भी खड़े किए सवाल। ब्यावर निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस ने प्रत्याशियों को तीर्थराज पुष्कर के आलिशान रिजॉर्ट में किया शिफ्ट, सभी प्रत्याशी पूल का आनंद लेते दिखाई दिए। भोपाल में असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर का एक्सीडेंट हुआ और वीआईपी रोड पर आपस में कई गाड़ियां टकरा गई, 4 से 5 बाइक सवार घायल। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और हादसे के कारणों की जांच शुरू की। असदुद्दीन ओवैसी का यूसीसी पर हमला, भोपाल में बोले कि गैर हिंदुओं पर हिंदू कानून थोप रही है सरकार। ओवैसी ने बीजेपी शासित राज्यों में मस्जिदों और कब्रिस्तानों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया, वहीं सागर जहरीली शराब मामले में भी मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग। ओवैसी ने बीजेपी के स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा के विवादित बयान पर अत्यंत पलटवार तीखा किया और खुले मन से उनको चुनौती दी। पंजाब में बिजली कटौती के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल का विधानसभा क्षेत्र पर प्रदर्शन और प्रशासन अलर्ट पर। वहीं पंजाब में ड्रग्स और सुसाइड केस मामले में भी बवाल, चंडीगढ़ में सड़क पर उतरे कांग्रेस नेता सचिन पायलट, चरणजीत सिंह चन्नी, गहलोत बीजेपी अकाली के निशाने पर सीएम मान। सचिन पायलट की एंट्री के साथ ही पंजाब कांग्रेस में एकजुटता देखी, आपके खिलाफ प्रदर्शन किया। राहुल गांधी मानहानी केस में सुनवाई टली, बीजेपी नेता के अधिवक्ता को चेतावनी के साथ बहस के लिए अंतिम मौका मिला, 21 सितंबर को अगली सुनवाई। कोलकाता में ईडी की बड़ी कार्रवाई, कथित चिटफंड घोटाला मामले में अमृत ग्रुप से जुड़े हुए 17 ठिकानों पर छापे मारे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में विवाद के चलते दबंग पड़ोसियों ने 70 साल के बुजुर्ग को लाठी डंडों से पीट पीट करके मार डाला, घटना सीसीटीवी में कैद हुई। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हिट एंड रन का मामला, युवक ने कार से मारी टक्कर, हादसे के बाद आरोपी गिरफ्तार। अरावली में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने पलटा रिक्शा, सड़क पर गिरी महिला गंभीर रूप से घायल, घटना सीसीटीवी में कैद। मांडिया में भीषण सड़क हादसा, दो टैंकर की टक्कर से एक परिवार के 3 लोगों की मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। फिरोजाबाद में दलित गर्भवती महिला की मौत पर हंगामा, समाजवादी पार्टी सांसद ने थाने में दिया धरना, एसएसपी ने 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद गिरी दीवार, 4 गायों की मौत, मलबे में 3 मवेशी भी फंसे। दक्षिण कन्नड़ में आंगनबाड़ी फूड प्रोडक्शन सेंटर का फूड सेफ्टी विभाग ने निरीक्षण किया और यहां मिलेट लड्डू के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। हाथरस के नगला इमलिया में फायरिंग मामले में 4 गिरफ्तार, पुलिस या मुठभेड़ में 1 शख्स घायल। पटना में शाद का बोझ

आने से 20 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई, सभी अब अस्पताल में भर्ते। हैदराबाद में एक प्ले स्कूल में लगी आग, कोई जान हानि की खबर नहीं। दिल्ली के आनंद विहार क्लब के बाहर फायरिंग में दो घायल, दो आरोपी गिरफ्तार भी, एक फरार है। दिल्ली में भारत नगर थाना इलाके में सत्यवर्ती कॉलेज के पास में छात्रों के दो गुटों में झड़प, मामले की जांच जारी है। इंदौर में 27 लाख रुपए लेकर फरार होने वाले आरोप में ड्राइवर अब गिरफ्तार, और इस मामले में पुलिस ने 24.5 लाख भी बरामद किया। जम्मू कश्मीर के भलेसा गंदोह में एनएचएम कर्मचारियों की 72 घंटों की नई हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुए हैं, उन्होंने कई मांग रखी है। समस्तीपुर में नशे के लिए पैसे को लेकर विवाद में बेटे ने पिता की हत्या कर दिया, आरोपी फरार। बड़वानी में अलग अलग मांगों को लेकर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं का सड़क पर प्रदर्शन। मथुरा में 12 करोड़ की ज्वेलरी चोरी का 24 घंटों में खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। बिजनौर के जंगल में दंपति के शव मिले, जांच में पति के द्वारा पत्नी की हत्या के बाद आत्महत्या की बात आई सामने। ग्रेटर नोएडा में 600 ग्राम ड्रग्स के साथ दो विदेशी नागरिक गिरफ्तार, मामले की जांच चल रही है। मेरठ में क्लोरीन गैस रिसाव की सूचना से हड़कंप, कोई जनहानि की खबर नहीं। मेरठ में फिर से शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में बुलडोजर एक्शन, सेंट्रल मार्केट की घेराबंदी, कई पुलिस फोर्स तैनात। मुंबई के मशहूर कैफे मोंडेगर पर एफडीए की कार्रवाई, खाद्य सुरक्षा में खामियां मिलने पर अब लाइसेंस निलंबित हुआ। पटना में शिकारपुर ओवरब्रिज के फ्रेम पर एक व्यक्ति के चढ़ने से हड़कंप मचा, पुलिस ने क्रेन की मदद से सुरक्षित रेस्क्यू किया। भदोही में निर्माणाधीन मकान की छत ढह गई, मलबे में दबकर एक शख्स की मौत, एक घायल। हैदराबाद में बेटे के घर के बाहर बुजुर्ग दंपति का प्रदर्शन, घर से निकालने और उपेक्षा का आरोप। सूरत के नानपुरा में अनोखा गणपति पंडाल बना चर्चा का विषय, जलमग्न द्वार का थीम पर बना है ये गणेश पंडाल। मुंबई में एक्टर सुहेल खान के घर पर गणपति उत्सव, कई सितारे पहुंचे, विसर्जन के को लेकर भी जमकर डांस। सचिन तेंदुलकर ने भी अपने घर में मूर्ति विसर्जन किया, बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी रहे साथ, पूरे विधि विधान के साथ सचिन ने गणपति की आराधना की। पुणे के फोग्यूसन कॉलेज रोड पर स्थित गणेश प्रतिमा ने खींचा सबका ध्यान, 21,000 पानी पूरी शिल्प से बनी बप्पा की यह प्रतिमा। ओडिशा के गजपति जिले में गणपति का अनोखा स्वरूप दिखाई दिया, सिक्कों और चॉकलेट से बनाई गई है बप्पा की मूर्त। ईरान में उड़ान के दौरान एक विमान में जबरदस्त अफरा तफरी और विमान के टायर फटने और इंजन खराब होने की सूचना के बाद यात्रियों की चीख पुकार मच गई। सुपेहरान एयरलाइन के विमान को फिर मशहद वापस लाया गया, फिर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी, बोइंग 737 विमान में यात्री सवार थे। इंडोनेशिया के जंगलों में आग और धुंध से सांस लेने में लोगों को परेशानी और धुंध की मोटी परत जमी दिखी। भारत समेत 4 अन्य देशों पर 100% टैरिफ वाले बिल पर अमेरिकी हाउस में वोटिंग होगी कल। भारत संघ ट्रेड डील को न्यूजीलैंड की संसद ने दी मंजूरी, 95% भारतीय उत्पादों पर खत्म होगी टैरिफ की सीधी मार। सऊदी अरब और इस्लामिक सहयोग संगठन ने हुती विद्रोहियों पर जघन्य हमले के लगाए आरोप और मुसलमानों के पवित्र शहर मक्का पर हमले की निंदा की। अमेरिकी सेना ने मंगलवार को एक एमन को सुरक्षित निकालने का वीडियो किया जा रहा है। ईरान में इस साल की शुरुआत में उच्च जोखिम वाले मिशन में शामिल था जवान। चीन की परमाणु ऊर्जा में शांतिपूर्ण इस्तेमाल में बहुपक्षवाद की अपील, मानवता के हित में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। चीन के बीजिंग रवाना हुए उत्तर कोरिया प्रतिनिधिमंडल का वीडियो जारी, 3 दिनों के फोरम में शामिल होने के लिए उत्तर कोरिया का सैन्य प्रतिनिधिमंडल रवाना। सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए जर्मनी और अमेरिका में समझौता, जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीटर सेथ ने समझौते पर लगाई मुहर। अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत, दूसरी T20 में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया, 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की, 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 159 रन बनाए, जवाब में भारत ने 31 गेंद शेष रहते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से संजू सैमसन ने 22 गेंदों पर 57 रनों की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 4 छक्के जड़े। अभिषेक शर्मा ने 19 गेंदों पर 39 रन बनाए, ईशान किशन ने नाबाद 38 रन। भारत की ओर से नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 विकेट लिए, अर्शदीप को 2 विकेट मिले। विनायक चतुर्थी के मौके पर तमिल सर विक्रम की अगली फिल्म का टाइटल आया सामने, मेकर्स ने टीजर किया जा रही, फिल्म का नाम
पावर हाउस। करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन की मच अवेटेड फिल्म दायरा का नया प्रोमो आया सामने। दायरा में करीना और पृथ्वीराज पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए आएंगे नजर, 18 सितंबर को रिलीज होगी। अंतिम चरण में सिखों की पवित्र हेमकुंड साहिब यात्रा, 10 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे कपाट। यमन में अल ज़ौफ के पूर्वी हिस्से में हुती लड़ाकों और विरोधी बलों के बीच में मुठभेड़, तस्वीरें आई सामने।

0: और अब बड़ी खबर इस समय आपको देते हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, पोस्ट करके उन्होंने फिर सरकार पर निशाना साधा है। यूपीआई को लेकर उनका ये पोस्ट है। यूपीआई पर सरकारी नोटिफिकेशन का राहुल गांधी ने विरोध किया है। उन्होंने मर्चेंट पर लगने वाले इस पेमेंट चार्ज को वापस लेने की मांग की है। यूपीआई विवाद अपने समय अब चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है और वित्त मंत्रालय की तरफ से एक स्पष्टीकरण भी आया कि आम आदमी पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये व्यापारियों के लिए और भी उसमें बहुत मामूली चार्ज लिया जा रहा है, लेकिन इसका विरोध हो रहा है। राहुल गांधी ने हमला बोला है।
1: इंदिरा जी वॉज वंस आस्क्ड वेदर शी लीन्स लेफ्ट और राइट एंड हर रिस्पॉन्स वॉज आई डोंट लीन लेफ्ट आई डोंट लीन राइट आई स्टैंड स्ट्रेट। मोदी जी हैज अ कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। He is neither left nor right. He has decided to lie down straight and prostrate himself in front of Donald Trump. He's put a tax on every single Indian person by taxing UPI and giving huge amount of money to the United States. Modi ji, please stop lying down in front of the United States. Have a spine, khade ho jaiye aur UPI tax ko wapis lijiye. Dhanyawad.
0: Aur ab aapko dikhate hain vishesh peshkash। अंतरिक्ष में भी जंग।

तो सबसे पहले हैरान कर देने वाली खबर कि क्या आपने सोचा है कि अंतरिक्ष में भी हथियारों की तैनाती हो सकती है और वहां पर भी युद्ध हो सकता है। जी हाँ, ये सच है। अमेरिका ने कुछ ऐसा ही ऐलान करके सबको चौंकाया है। अमेरिका ने पहली बार माना है कि उसने अंतरिक्ष में हथियार तैनात किए हैं। अमेरिका ने स्पेस फोर्स ने इसकी जानकारी दी है और उसके मुताबिक स्पेस हथियार रक्षा और दोनों ही यानी कि हमले दोनों में इस्तेमाल हो सकता है, रक्षा में भी और हमले में भी। अमेरिका के इस कदम को लेकर रूस और चीन ने नाराजगी जताई है।

0: दुनिया ने जमीन पर कई लड़ाइयां देखी हैं, समंदर के सीने पर संग्राम होता देखा है, जल और थल के बाद अब नभ में भी अमेरिका अपनी ताकत में इजाफा कर चुका है। 21वीं सदी में अब अमेरिका ने अंतरिक्ष तक मोर्चा खोल दिया है। सुपर पावर अमेरिका ने एक ऐलान कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, कह दिया है कि उसने अंतरिक्ष में हथियार तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी स्पेस फोर्स के मुताबिक स्पेस वेपन्स रक्षा और हमले दोनों में इस्तेमाल हो सकते हैं। खुलासे के मुताबिक अमेरिकी हथियार अंतरिक्ष की कक्षा यानी ऑर्बिट में तैनात हैं। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने यह भी कहा है कि ये हथियार अंतरिक्ष में अमेरिकी सैन्य बलों को दुश्मन की कार्रवाई से बचाने और उसका मुकाबला करने के लिए है।
1: अभी अमेरिका ने क्या किया, क्या ये लीगल है? हाँ, लीगल तो है, करना नहीं चाहिए था, मॉरली गलत है। लेकिन अगर आप जो ट्रीटी के शब्द देखो तो आर्टिकल 4 में, जैसे मैंने पहले बताया है, उसमें सिर्फ लिखा है कि न्यूक्लियर वेपन्स और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। इसका मतलब बाकी की उन्होंने कोई बात नहीं की है। तो ये जो स्पेस रेस हो जाएगी, ये मैं समझता हूँ एक बहुत खतरनाक चीज़ है विश्व के लिए। ये सिर्फ मेजर पावर्स की बात नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है। और अगर इस प्रकार की स्पेस वॉर अगर शुरू हो जाए तो मैं समझता हूँ आगे वाले दिन बहुत कठिन हो जाएंगे।
0: चिंताएं कई हैं, सवाल उठना लाजमी है कि आखिर स्पेस में हथियारों की होड़ क्यों? लेकिन अमेरिका ने अभी इसके कई तथ्यों का खुलासा नहीं किया है। स्पेस फोर्स का कहना है कि उसके पास ऑर्बिट में मौजूद स्पेस कंट्रोल वेपन्स हैं, जिनका इस्तेमाल अमेरिकी सैन्य बलों की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। हालांकि हथियारों की सही संख्या, उसके प्रकार या उनकी तैनाती की जगह की जानकारी देने से इनकार किया है। अमेरिका के इस कदम के बाद रूस और चीन ने चिंता जताई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है, कहा है कि चीन अंतरिक्ष में किसी भी तरह की सैन्य होड़ या उसे युद्ध क्षेत्र में बदलने की कोशिश का कड़ा विरोध करता है। अमेरिका के स्पेस वेपन्स को लेकर कुछ ऐसी ही चिंता रूस ने भी जताई है। रूस ने कहा है कि अंतरिक्ष को किसी भी हथियार से मुक्त रखना चाहिए। तमाम चिंताओं के बीच अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ शुरू होने का नया खतरा है।
1: मिलिट्राइजेशन बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन स्पेस के ऊपर हथियार नहीं डाले थे। अब हथियार आगे हैं, ये पहली बार आगे हैं, और मैं समझता हूँ अब ये एक रेस अलग से शुरू हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने किया है। अब यकीन मानिए रूस और चीन भी साथ जाएंगे, वो भी करेंगे, और रूस और चीन करेंगे तो भारत भी जरूर है, भारत पीछे नहीं रहेगा इसमें।
0: अमेरिका पहले भी अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाने को लेकर लगातार काम करता रहा है। रूस, चीन और भारत समेत कई अन्य देश भी स्पेस में अपनी ताकत बढ़ा चुके हैं, जिनका इस्तेमाल सैन्य संचार, निगरानी और नेविगेशन से जुड़े सैटेलाइट को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन अब अंतरिक्ष में हथियारों की अमेरिकी तैनाती के बाद फिर से नई चिंता बढ़ा चुका है। आज तक ब्यूरो।
2: और अब बात करते हैं खाड़ी में खुले एक और युद्ध के मोर्चे की। हुती विद्रोहियों के हमले के बीच में सऊदी अरब में तनाव फिर से बढ़ गया है। अब इससे जेद, यानबू समेत 7 शहरों में सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया, और इसके अलावा सऊदी अरब ने हुती पर पवित्र मक्का पर हमले का आरोप भी लगाया। इसके अलावा हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के बॉर्डर वाले इलाकों पर हमला करके सऊदी सेना की गाड़ियों पर कब्जे का दावा किया। वहीं भारत ने बाब अल मंदेब और लाल सागर के समुद्री मार्ग पर मंडराते खतरे को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोस इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
6: SBI Celebrations Unlimited. ये गणेशोत्सव बनेगा स्पेशल विद फेस्टिव ऑफर्स ऑन कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स।
7: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
8: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
9: सोच बदलो और बैंक भी।
10: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफटाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
4: जेके वॉल मैक्स
2: बेस्ट पेंट,
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
6: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
7: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते
8: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
7: विमल बोलो जुबां केसरी।
9: इसमें कहीं दो मत नहीं है, आज तक का यहां तक प्रश्न है। एक बहुत ही क्रेडिबल मीडिया ग्रुप के रूप में इसने अपनी साख बनाई है मीडिया जगत में, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि आज देश की सुरक्षा को लेकर यहां पूरे दिन चिंतन और मंथन हुआ है। मैट टीवी टुडे की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
5: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
4: विमल बोलो जुबा केसरी।
6: भैया मेरे राखी के बंधन को नींव, 100 रुपए लेंगे तुमसे अभी हम।
7: लो मिठाई भी खाओ।
6: क्योंकि फूफा भी कभी जीजा थे।
7: ताऊ भी एथेनॉल को लेके फूफा ही कहे जाएंगे।
8: हाँ ताऊ एथेनॉल फूफा हैं।
9: हाँ बिल्कुल है, हम नाराज हैं।
6: मेरे फूफा जो है दुनिया के सबसे अच्छे फूफा है।
8: क्या बात कर रहे हैं,
6: कसम से उनका नाम ही अच्छे खां है।
8: अच्छा।
6: सबसे अच्छे हुए।
10: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

Koga mazbut? यूसीसी विरोधी सभा में बीजेपी विधायक के मिसाइल अटैक वाले बयान पर भड़के हुए वैसी तो एमएलए की भी जवाबी चेतावनी। अखिलेश यादव ने यूसीसी को बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। समुद्र सीमा में पाकिस्तानी नेवी की भिड़ंत पर भारत का खड़ा रुख। विदेश मंत्रालय ने पाक हाई कमीशन की राजनयिक को तलब किया। पाक नौसेना के गैर पेशेवर रवैये पर जताया एतराज। लखनऊ में एक्स गर्लफ्रेंड को कार के बॉनेट पर घिसटते हुए भागने वाला शहनवाज फरार। यश ठाकुर के नाम से गलत पहचान बताकर प्रेम जाल में फंसाने का आरोप। विरोध करने पर अपनी कार से मारी टक्कर। मुंबई में गणपति पूजा की धूम से दिवनायक के दरबार पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम देवेंद्र फडणवीस। लालबाग के राजा से लिया आशीर्वाद।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से इन एसोसिएट।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं खबरें असरदार, आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम सबसे पहले बात लखनऊ की करेंगे, जहां पर एक लड़की को कार से टक्कर मारने और कुचलने की कोशिश के खौफनाक वारदात सामने आई है। मामला गोमती नगर से जनेश्वर मिश्र पार्क का है। जानकारी के मुताबिक जनेश्वर मिश्र पार्क के सामने लड़की मौजूद थी। उस लड़की ने शाहनवाज को रोकने की कोशिश की, जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, लेकिन आरोपी कार सवार नहीं रुका, वो भागने की कोशिश करने लगा। लड़की कार के बोनेट पर झूलती रही, चीखती रही, लेकिन शाहनवाज ने उसे बोनेट पर ही कई देर तक घसीटा। अपनी कार से वो कुछ मीटर तक लड़की को बोनेट पर लेकर आगे बढ़ता रहा। लड़की सड़क के किनारे जा गिरी। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है। युवती को टक्कर मारकर कार सवार वहां से फरार हो गया। और इस बीच पता ये चला है कि कार चला रहे आरोपी शाहनवाज के साथ दानिश नाम का एक शख्स भी मौजूद था। अब आरोपी की तलाश में पुलिस की तीन टीमें लग गई हैं। बताया जा रहा है कि आज कुछ लड़कियों के साथ शाहनवाज जनेश्वर मिश्र पार्क के पास चाय की टपरी पर पहुंचा। पीड़ित लड़की सुबह सुबह चाय पीने जनेश्वर मिश्र पार्क के पास गई, तभी उसकी नजर शाहनवाज पर पड़ी। उसने देखते ही शाहनवाज को पहचान लिया। खुद को यश ठाकुर बताकर शाहनवाज लड़की से रिलेशनशिप में था। उसकी सच्चाई सामने आते ही लड़की ने विरोध किया। उसी दौरान लड़की को ये पता चला कि वो यश नहीं बल्कि शाहनवाज है। लड़की ने युवक पर धोखेबाजी के आरोप लगाए हैं। उसी दौरान शाहनवाज ने उसे कार से रौन दिया। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ये लड़की शाहनवाज की कार की बोनट पर घिसटते हुए चीखती रही, चिल्लाती रही, और शाहनवाज नाम का वो शख्स कार रोकने के बजाय उसकी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करने लगा। सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, क्या कार्रवाई हुई अब तक शाहनवाज के खिलाफ?
2: जाती है, पुश करती जाती है, लेकिन ये गाड़ी फिलहाल रुकती नहीं है। और डिस्पाइट की अनामिका लगातार इस गाड़ी को पुश कर रही होती है, गाड़ी की जो स्पीड होती है वो बढ़ती जाती है। ये वो हिस्सा है जहां ड्राइविंग सीट है, और यहां पर आप देखें कुछ इस तरीके से अनामिका का हाथ होता है और वो लगातार इसको रोकने की कोशिश कर रही होती है, चीख रही होती है कि जो शाहनवाज है वो उसकी बात सुन ले, समझ ले और रुक जाए। लेकिन ये गाड़ी जो है, जो
1: जॉइंट सीपी अपर्णा कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपर्णा जी, बहुत ही भयावह ये वीडियो है, और ये दर्शाता है कि किस तरीके से एक लड़की को घसीटा जाता है सरेआम सरेराह दिन दहाड़े, और वहां पर मौजूद कई लोग हैं, कोई उसको बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है बल्कि वीडियो बनाया जा रहा है।
3: हेलो
1: जी, अपर्णा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
3: जी
1: अपर्णा जी, मैं ये आपसे जानना चाह रही थी कि काफी ज्यादा डरा देने वाला वीडियो है, खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा लेकर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार दिन दहाड़े सरे राम सरे राह एक शख्स तरीके से कुचलने की कोशिश लड़की को करता है और कोई उसे बचा भी नहीं रहा है।
3: देखिए, ये सूचना के क्रम में सुबह की घटना है, और ये लड़की जनेश्वर मिश्रा पार्क गई थी, और इसका जो जानकार और दोस्त बताया जाता है, तो वो भी अपने दोस्तों के साथ, और उसमें दो लड़कियां भी हैं वो भी थी, और अपने गाड़ी में आया है। इसको देख के ये जो लड़की है क्योंकि लड़कियों के साथ देखा है तो दोनों में वाद विवाद हुआ है कि और वाद विवाद में कि वो लड़का जो है गाड़ी में बैठ के जाने का कोशिश कर रहा था तो ये लड़की रोकने के लिए कोशिश की है तो उसी में ये घटना हुई है। लड़की का चिकित्सीय परीक्षण के लिए तत्काल भेजा गया है और जैसे ही तहरीर मिल जाएगी विधिक कार्रवाई और सख्त कार्रवाई किया जाएगा।
1: अभी तक क्या कार्रवाई हुई है आरोपी शख्स के खिलाफ और उसके साथ जो शख्स बैठा था? ठीक है, अपर्णा कुमार हमारे साथ जुड़ी हुई थी, बता रही कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन वाकई डरा देने वाला ये वीडियो। और ये प्राइम इलाका है लखनऊ का जहां पर ये घटना हुई है। समर्थ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, अभी तक क्लैरिटी हमें नहीं मिल पाई कि शाहनवाज के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है अभी तक। शाहनवाज के साथ कार में एक और शख्स मौजूद था और ये घटना अब मोबाइल कैमरे में कैद हो चुकी है। इसका पूरा फुटेज वीडियो वायरल हो रहा है और इससे ये साफ प्रतीत होता है कि लड़की बार बार गिड़गिड़ा रही है, चीख रही, चिल्ला रही है और मदद के लिए आसपास कई लोग हैं लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता है। उसके बाद जब ये गाड़ी रुकती है तो इधर पहले मेरे सहयोगी समर्थ ने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको वो दिखाते हैं।
2: जो आप वीडियो में देख रहे हैं वो ये जगह है, ये सड़क है जहां से वो गाड़ी सामने की तरफ से आती है और एक महिला है वो उस गाड़ी को रोकने का प्रयास करती है। आपको मैं थोड़ा समझा दूं, अगर अनामिका नाम की लड़की है जिसका शहनवाज के साथ जिसकी गहरी दोस्ती थी, उसने जब शहनवाज को किसी और लड़की के साथ देखा, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है, तो दोनों के बीच बहस हुई। जब उसने उसको रोकने की कोशिश की तो शहनवाज नहीं रुका बल्कि रुकने के बजाय वो ऊपर चलता चला गया। देखिए ये वो स्पॉट है, पहले आपको मैं जगह दिखा देता हूं। यहां पर जो आप देखें तो अनामिका यहीं से धक्का बकायदा दे रही है, धक्का देने की कोशिश कर रही है, गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रही है और गाड़ी उस तरफ से आती हुई इधर उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। एक वक्त तक वो घसीटती हुई काफी आगे तक जाती है, फिर एक मूवमेंट ऐसा आता है जब वो गाड़ी की स्पीड को शहनवाज तेज कर देता है और जब शहनवाज गाड़ी की स्पीड को तेज कर देता है तो घसीट कर अनामिका यहीं इसी जगह पर गिर जाती है और गाड़ी आगे निकल जाती है। प्रत्यक्षदर्शी जो उस वक्त यहां मौजूद थे वो इस वक्त हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है?
4: मेरा नाम है आकाश कुमार।
2: आकाश ये बताइए, आप उस वक्त यहाँ पर थे जब घटना हुई है?
4: जी जी, मेरी दुकान है सुरेश टी स्टॉल, आज सारी दुकानें हट गई यहाँ पे। तो हमने देखे यहाँ पे पहले कार आई, कार आने के बाद में फिर क्या हुआ, वो फिर रोके, शीशा खोले उसने, ठीक है, शीशा खोलने के बाद में फिर वो जो दीदी,
2: आपकी चाय की दुकान चल रही थी, पहले गाड़ी आई,
4: पहले गाड़ी आई, फिर दीदी स्कूटी अपनी स्कूटी खड़ी की।
2: ठीक है, गाड़ी कितनी देर पहले आई थी?
4: तुरंत, बस गाड़ी आई तुरंत स्कूटी आई।
2: मतलब कैसा लग रहा था कि फॉलो कर रही है
4: वो? नहीं दीदी, मतलब कि उसके ऊपर ऐसे रुक गई, रोक रोक रोक रोकने की कोशिश कर रही थी, तो उसने नहीं रोका, फिर यहाँ यही मेरी दुकान के सामने रोका, ठीक है, रोकने के बाद में फिर आगे रोकते रोकते वहाँ रुक गई दीदी, फिर वहाँ रुकी और दीदी बस जैसे साइड से ना, साइड से मतलब बात करने की कोशिश कर रही थी, बस तुरंत ही रुक गई। पर रोकने के बाद में बस इतनी स्पीड में भगाया जैसे दीदी थोड़ा साइड में, दीदी फिर ऐसे रोकने की कोशिश, बहुत से बहुत गिर गई दीदी ने, पर यहाँ चोट खा गई। मेरे दुकान पे कस्टमर बैठे वो भी वीडियो बनाए और भैया भी बैठे थे, हम अपने भी फोन से, तो वहाँ भैया भी बैठे थे, वो भी कुल्हर मारे कि रुक जाए, तब भी नहीं रुका और दीदी को चोट खाए, उनके साथ में उनकी बुआ भी थी।
1: इस बीच बड़ी खबर, इस वारदात से जुड़े आरोपी शाहनवाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ पुलिस की गिरफ्तारी अब से कुछ ही देर पहले हुई है, उसकी तलाश की जा रही थी, हिरासत में ले लिया गया है आरोपी शाहनवाज। गोमती नगर थाने के भीतर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर पुलिस ने आरोपी शाहनवाज को पकड़ लिया है।
5: अच्छा एक बार फेस लेयर दिखा दो शाहनवाज।
1: आशीष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, शहनवाज हिरासत में तो ले लिया गया है, अपने बचाव में वो क्या कह रहा है?
6: अब बिल्कुल देखिए, सबसे पहले हम एक्सक्लूसिव खबर आपको दिखा रहे हैं और वीडियो भी दिखा रहे हैं जिसमें कि शहनवाज को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है इस समय और पुलिस ने रखा हुआ है इसको लगातार, अब उसको आगे ले जाया जाएगा आगे कार्रवाई के लिए। अभी हालांकि शुरुआत में हमने पूछा लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया शहनवाज ने, बिल्कुल वो लगातार उससे पूछने की कोशिश की जा रही है कि उसने क्यों ऐसा किया, इसके बाद भी वो लगातार जवाब नहीं दे रहा है। इस पूरे मामले पर शहनवाज को पुलिस लेकर जा रही है क्योंकि वो अब आगे की कार्रवाई करेगी। पीड़िता के साथ जो FIR दर्ज हुई है उसके बाद से ये कार्रवाई की जा रही थी। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से शहनवाज जिस तरीके से यहाँ पर लाया गया, उसके बाद उसकी गाड़ी बरामद की गई और फिर अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि पूरे मामले पर पुलिस का यही मानना है कि जिस तरीके से उसको गिरफ्तार किया गया, कहीं ना कहीं और एक और आरोपी साथ में था डानिश, जिससे पुलिस तलाश कर रही है और साफ तौर से जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। क्योंकि जब जब ये किया गया गिरफ्तार, उस दौरान इसने पुलिस को बताया कि मैं उस दौरान भागना चाह रहा था, आगे जाना चाह रहा था, इसी वजह से कहीं ना कहीं ये कार्रवाई जिस तरीके से एक्शन हुआ। हालांकि पुलिस ने अभी इसको गिरफ्तार कर लिया और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आज तक पर कि किस तरीके से इसको गिरफ्तार किया गया है, और गिरफ्तार करने के बाद अब आगे पुलिस कार्रवाई इसमें कर रही है। और दूसरा
1: आशीष, इस पूरे मामले में FIR लिखी गई है और कौन कौन सी धाराएं शहनवाज पर लगाई गई हैं?
6: देखिए, जो जो पीड़िता ने तहरीर दी है उसमें साफ तौर से जो छेड़छाड़ कह सकते हैं, शादी के नाम पर धोखा देने की कह सकते हैं, ये धाराओं के साथ में मुकदमा लिखाया गया है और पुलिस उसी मामले अरेस्ट किया। दूसरी हिट एंड रन के केस के मामले में भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये पूरा मामला आया था, उस वीडियो का आधार भी पुलिस बना रही है जिसको यहाँ पर बरामद हुआ था। साथ ही साथ शहनवाज की कार जिस तरीके से हिट एंड रन करके गई थी उसको लेकर भी उसमें जो व्यक्ति मौजूद था उससे भी पूछताछ की गई, क्योंकि अभी पुलिस ने जब उसको अरेस्ट किया तो हमने एक्सक्लूसिव तस्वीर आज तक को दिखाई कि जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो कुछ नहीं बोल रहा था। उससे हमने कई बार कोशिश की बात करने की लेकिन उसने नहीं बताया, क्योंकि वह ये सब चीज जानता था कि इसके पीछे मकसद उसका बड़ा था। यही वजह है कि वह हत्या के प्रयास में था एक तरीके से पीड़िता के, जिस दौरान ये पूरी कह सकते हैं कि पूरी तरीके से घटनाक्रम सामने आ, पुलिस ने एक एक करके जो उसके लिंक है, क्योंकि उसने कई प्रोफाइल्स बना रखी थी, उस प्रोफाइल से कई लड़कियों को जो है संपर्क कर रखा था, उनमें से एक पीड़िता थी और इसी वजह से पीड़िता ने जब उसको रंगे हाथों पकड़ा कहीं पर किसी और के साथ में, उस दौरान बहस भी होती है, साथ ही साथ जब वो रोकने की कोशिश करती है तब शहनवाज उसको कुचल कर आगे बढ़ता है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अब इस अब पुलिस गिरफ्तारी के बाद एक एक तार से तार जोड़ रही, क्योंकि जो दानिश साथ में था
7: वो कहीं ना कहीं पुलिस अभी पूरी तरीके से उसके भी जांच कर रही है कि आखिर वो दानिश कहां गया है और किस तरीके से उसने मदद की शहनवाज की, क्योंकि शहनवाज और दानिश से ऐसा बताया गया पुलिस के द्वारा, जिसमें अब पुलिस शहनवाज को तो अरेस्ट कर चुकी है और आगे की जानकारी कर रही है इस पूरे मामले पर। नेहा, चूंकि जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई वो थाने के अंदर की है जहां पर पुलिस ने उसको अरेस्ट करके रखा हुआ है और अब आगे की कार्रवाई के लिए ले जा रही है, चूंकि मेडिकल कराया गया है पीड़िता का, पीड़िता ने तहरीर दी है लिख के और लिखने के बाद उसके ये कार्रवाई आगे बढ़ी है, जो तीन टीमें लगाई गई
1: थी उसी सर्विलांस के आधार पर ही अटेम्प्ट टू मर्डर की भी धारा लगाई गई है।
7: आगे की कार्रवाई अटेम्प्ट टू रेप की अभी धारा जो है नहीं उसमें क्लियर है कि लगाई गई है, क्योंकि जिस तरीके से अभी शुरुआती तहरीर सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि जो हिट एंड रन का केस है, इसके अलावा जिस तरीके से धोखे से नाम बदलकर उसके साथ ये रिश्ता बना है उसको लेकर है, और साथ ही साथ जो अटेम्प्ट कह सकते हैं कि जब वो हिट एंड रन का मामला है जिसमें अटेम्प्ट टू कह सकते हैं मर्डर, वो कहीं ना कहीं परिस्थिति बनी है उसको पुलिस आगे धारा बढ़ा रही है ये कहा जा रहा है इसमें, क्योंकि जो वीडियो के आधार पर है जिस तरीके से दिखा है, जिस तरीके से लोगों ने उसमें बयान दिया है उसको आधार बना रही है और FIR में उस आधार के बेस पर धाराओं को बढ़ाया जा रहा है, साथ ही साथ कार्रवाई आगे की जा रही है। तो ये तो माना जा रहा है कि शहनवाज के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होनी है।
1: रोकेंगे आपको समर्थ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, FIR में क्या लिखा गया है और अब जब गिरफ्तारी होगी तो कोर्ट में पेशी की जाएगी?
2: नेहा, देखिए ये सभी प्रक्रियाएं अभी की जाएंगी, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि शहनवाज को डिटेन किया गया था, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और आज तक ने सवाल भी कुछ कड़े शहनवाज से किए हैं। जिस वक्त शहनवाज को सामने बनी पुलिस चौकी से निकाला जा रहा था, जीप में लाया जा रहा था और बाहर लाया जा रहा था, तो तीन सवाल मैंने शहनवाज से उस वक्त किए हैं, लेकिन शहनवाज के पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। आज तक ने शहनवाज से पूछा कि आखिर आपने उस लड़की को कुचलने की कोशिश क्यों की, लेकिन शहनवाज के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। उस पुलिस चौकी के अंदर लगभग एक डेढ़ घंटे शहनवाज रहा है, तस्वीरें दिखा दें एक बार यहां से कि वो पुलिस चौकी सामने की जो है जहां से इस वक्त शहनवाज कुछ देर पहले ही जीप से यहां से निकला है और यहीं से जाते हुए जीप यहां से कुल मिलाकर निकली है, यहीं पर मौजूद था पुलिस चौकी, जनेश्वर मिश्रा पार्क है ये जहां पर कुछ देर पहले शहनवाज मौजूद था। बड़ी बात यह है, गाड़ी भी आपको हम दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं आप, वो गाड़ी है नेहा जिस गाड़ी से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। इस गाड़ी को आप देखें तो पीछे तो नंबर प्लेट इसमें लगी हुई है और लेकिन अगर आप आगे की तरफ आए तो इस गाड़ी में आगे के पोर्शन में नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई है। हम आपको वो गाड़ी दिखा रहे हैं जिस गाड़ी से अनामिका को शहनवाज ने कुचलने की कोशिश की थी। अब आपको मैं दिखाऊं इस गाड़ी के आगे का जो छोर है, तो यहां पर नंबर प्लेट ही नहीं है। ये देखिए, ये जो गाड़ी है काफी महंगी गाड़ी है और आगे यहां पर नंबर प्लेट होती है, लेकिन यहां पर आपको कोई नंबर प्लेट यहां पर भी नजर नहीं आएगी। इसके अलावा क्योंकि अनामिका जो थी वो यहां से इस गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रही थी, इस गाड़ी में थोड़ा डैमेज भी यहां पर मैं देख पा रहा हूं। ये देखिए, ये जो है ये निशान आपको दिखाई पड़े, खुद समझे कि किस चीज के निशान है। और आगे की तरफ जो डैमेज गाड़ी का है मैं वो भी आपको दिखा दूं। यूजुअली गाड़ी के जो दोनों पोर्शन बोनेट से चिपके हुए होते हैं, लेकिन यहां की तरफ देखेंगे तो ये दोनों पोर्शन भी अलग है। यानी कि जिस वक्त जो है अनामिका इस तरीके से कुछ गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रही थी, ये गाड़ी रुकी नहीं, ये गाड़ी जो है आगे चलती चली गई। और जिस तरीके से गाड़ी आगे चलती चली गई, जो अनामिका है उसके कंधे पर, उसके बैक पर चोट आई और वो घसीट कर आगे ही गिर गई। तो कुल मिलाकर ये वो गाड़ी है, यहां पर पुलिस की टीम भी आपको खड़ी नजर आएगी जो यहां पर मौजूद है। इस गाड़ी को तो फिलहाल पुलिस ने जब्त कर लिया है, इसको रिकवर कर लिया है और इसी के साथ डिटेन कर लिया है इस पूरे प्रकरण के मुख्य आरोपी शहनवाज को, जो असली राज खोलेगा, असली राज उगलेगा कि क्या महज ये एक लड़ाई थी, आपसी विवाद था जिसके चलते सारी चीजें हुई हैं, या इसके पीछे कोई और बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। ये एक बहुत बड़ी घटना प्रतीत होती है। फिलहाल आरोपी हिरासत में है, पूछताछ जारी है और वो गाड़ी जो वीडियो में आपको दिखाई पड़ी वो हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। पुलिस टीम भी आपको यहां पर मौजूद नजर आएगी और इस गाड़ी के जरिए कहीं ना कहीं आगे की तफ्तीश को बढ़ाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। तो फिलहाल इस केस में अभी कई और मोड़ आएंगे। पुलिस अभी यहां से शहनवाज को और एक स्थान पर यहां से ले गई है, जिसके बाद आगे की पूछताछ होगी और FIR में कुछ संगीन धाराएं लगाई जाएंगी और फिर देखना होगा कि ये केस किस ओर जाता है। जी नेहा,
1: इसके अलावा ये जो पूरी घटना हुई है, दरअसल ये प्राइम इलाका है, वहां पर बहुत सारे लोगों की मौजूदगी थी, किसी ने रोकने की कोशिश, थ्रेटन करने की कोशिश, लड़की को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। हम देख रहे हैं कि लड़की अपने आप ही जूझ रही है, वही बोनेट पर घिसटती हुई दिखाई दे रही है।
8: बता दो
9: अनामिका, क्या परिचित है आपकी? शहनवाज वहीं से बैठे बैठे बता दो।
1: ये आरोपी शहनवाज की आप थाने के भीतर की तस्वीरें देख रहे हैं, जो कुछ भी कहने की परिस्थिति में इस वक्त नहीं दिखाई दे रहा है। जाहिर तौर पर यह मामला बेहद गंभीर, क्योंकि कई तरह की संगीन धाराओं के तहत अब मामला दर्ज कर लिया गया है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले इस लड़की को यश ठाकुर अपना नाम बताया था, उसके बाद जब लड़की को इसकी असली पहचान मालूम चली तो उसने बात करने से इनकार किया। इसी बात से शायद नाराज होकर इस तरीके की घटना को अंजाम शहनवाज द्वारा दिया गया है। हमने आपको वो गाड़ी भी दिखाई जिससे इस वारदात को अंजाम दिया गया, उसमें आगे नंबर प्लेट मिसिंग है। इसके बावजूद अब ये शख्स पुलिस की गिरफ्त में है और जल्द इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो दो तस्वीरें आपके सामने, एक में जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त का वीडियो आप देख पा रहे हैं, कैसे ये लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन शहनवाज गाड़ी नहीं रोक रहा है। उसके बाद दूसरी तस्वीर देखिए, जल्द इसकी गिरफ्तारी हो गई है और इसके साथ एक और शख्स गाड़ी के भीतर मौजूद था।
8: लड़की को भी
1: खबर असरदार में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
11: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
12: सोच बदलो और बैंक भी।

0: यूपी में चुनाव का शंखनाद भर बाकी है, वरना सियासी दलों के अंदर खाने तैयारी पूरी है। अब खबर है कि बीजेपी ने टिकट को लेकर मंथन तेज कर दिया है। पार्टी की ओर से चार अलग अलग स्तरों पर समानांतर पैरामीटर तैयार किए गए हैं। इस पैरामीटर में विधायकों के कामकाज, जनता और कार्यकर्ताओं के बीच छवि, विकास कार्य, चुनावी आंकड़ों, जातीय समीकरण और संभावित उम्मीदवारों की जीत की संभावना का आकलन किया जाएगा। इसके अलावा आरएसएस की जमीनी रिपोर्ट भी टिकट के फैसले में इनपुट देगी। सूत्रों के मुताबिक खराब रिपोर्ट वाले मौजूदा विधायकों के टिकट पर पुनर्विचार हो सकता है।
1: चार जो पैरामीटर्स हैं उनको रिपोर्ट बनाकर दे दिया गया है, जिससे कि ये साफ हो गया है कि जो भी इसमें फेल पाया जाएगा उसका टिकट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो भी पास पाएगा उसको टिकट दिया जाएगा।
0: जिन चार स्तरों पर टिकट के उम्मीदवारों की पैमाइश होगी उसमें कुल 15 बिंदु हैं, जिन पर उम्मीदवारों को खरा उतरना होगा। पहले बिंदु में मौजूदा विधायकों की सदन में उपस्थिति से लेकर सवाल उठाने और विधायक निधि के इस्तेमाल से लेकर पार्टी में छवि का पैमाना होगा। दूसरे बिंदु में जनता के बीच विधायक की उपलब्धता, विकास कार्यों से जनता की संतुष्टि, क्षेत्र में स्वीकार्यता का पैमाना होगा। तीसरे बिंदु में जीत की संभावना, जाति समीकरण और भागीदारी के पैमाने होंगे। और चौथे बिंदु में बूथ स्तर का फीडबैक और संघ की रिपोर्ट का पैमाना होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि कम से कम 20 से 25 फीसदी विधायकों के टिकट पर खतरा मंडरा रहा है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं, उनके ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं और सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे को साथ लेकर, क्या फर्क पड़ रहा है यूसीसी से? बताओ मुझे कि निकाह नहीं होगा क्या? हमारा निकाह ही तो होगा, फेरे नहीं होंगे क्या? फेरे ही तो होंगे, क्या तमाशा बना रखा है? कुछ भी नहीं है।
1: छात्रों के मूवमेंट से डरी हुई सरकार के पास अब इसी तरह का कार्ड खेलने के अलावा और कोई चारा नहीं। और चुनाव में गिराने के लिए क्या है? नौकरियां वो दे नहीं पाए, स्टूडेंट्स जो है वो परेशान है, प्रोटेस्ट कर रहा है पूरे देश में, जेंजी से लेके जेन अल्फा तक। तो सरकार के पास मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यही सब है राज्यों में। ये भारत जो है वो विविधताओं का देश है, भारत जो है वो तमाम अलग अलग तरह के फूलों से मिलके बना। आप सब कुछ एक रंग का कर देना चाहते हैं, सब कुछ एक जैसा कर देना चाहते हैं, डाइवर्सिटी कहां चली जाएगी? तो गृहमंत्री जी को यह समझना पड़ेगा कि ये देश बहुत अलग अलग भाषाओं, अलग अलग बोलियों, अलग अलग कल्चर, अलग अलग तहजीब, अलग अलग धर्मों सबसे मिलकर के भारत बनता है। आप सब कुछ एक कर देना चाहते हैं, एक रंग का, तो हम तिरंगे के साथ खड़े हैं, हम तिरंगे वाले लोग हैं।

0: भैया मेरे राखी के बंधन को नहीं। 100 रुपए लेंगे तुमसे अभी, हम लो मिठाई भी खाओ।
1: क्योंकि फूफा भी कभी जी जाते।
0: ताऊ भी एथेनॉल को लेके फूफा ही कह जाएंगे।
2: हाँ ताऊ एथेनॉल फूफा हैं।
3: हाँ बिल्कुल है, हम नाराज हैं।
0: मेरे फूफा जो है दुनिया के सबसे अच्छे फूफा है।
2: क्या बात कर रहे हैं,
0: कसम से उनका नाम ही अच्छे खां है।
2: अच्छा। सबसे अच्छे हुए।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

पेमेंट पर चार्ज के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने खोला मोर्चा, कहा नियम को वापस ले सरकार। आरबीआई की दलील, मिलने वाले पैसे से तकनीक और नेटवर्क और होंगे मजबूत। यूसीसी विरोधी सभा में बीजेपी विधायक के मिसाइल अटैक वाले बयान पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, एमएलए की भी जवाबी चेतावनी। अखिलेश यादव ने यूसीसी को बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। समुद्र की सीमा में पाकिस्तानी नौसेना की भिड़ंत पर भारत का सख्त रुख। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी राजनयिक को किया तलब, पाकिस्तानी नौसेना के गैर पेशेवर रवैये पर जताया कड़ा एतराज। पाकिस्तानी मूल के आतंकवादी शहजाद भट्टी के नेटवर्क को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने टेरर संगठन किया घोषित। भारत में आईएसआई और गैंगस्टर नेटवर्क का अहम चेहरा, यूएपीए के तहत एक्शन।

0: हिरासत में। यश ठाकुर के नाम से गलत पहचान बताकर प्रेम जाल में फंसाने का आरोप, विरोध पर कार से मारी टक्कर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सो।
3: अरब सागर में जबरदस्त तनाव, भारत पाक की नौसेना की टक्कर, पाकिस्तानी नौसेना ने मारी टक्कर, भारतीय नौसेना के जहाज से टकराया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी राजनयिक क्लब, भारत ने दर्ज कराया कड़ा विरोध, पाकिस्तान की हरकत से बिगड़ा माहौल, कितना नुकसान, क्या होगा पाक का अंजाम।
0: नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत, आप देख रहे हैं रणभूमि और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच अरब सागर में, उत्तरी अरब सागर में जबरदस्त तनाव है। यह तनाव अरब सागर में भारत और पाकिस्तान के जो नौसैनिक जहाज हैं उनके बीच टक्कर के बाद जबरदस्त तरीके से बढ़ गया है और इस टक्कर के बाद भारत ने कूटनीतिक माध्यम से पाकिस्तान के साथ कड़ा विरोध जताया है। लेकिन अभी अभी ताजा खबर यह है कि भारतीय नौसेना को टक्कर मारने वाला जो पाकिस्तानी नौसेना का जहाज है वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। जी हां, पीएनएस हुनेन, पाकिस्तान नेवल शिप पीएनएस हुनेन के तौर पर इस जहाज की पहचान हुई है। यह जहाज बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के बाद अब घिसटता हुआ पाकिस्तान के बंदरगाह लौट रहा है। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन को अरब सागर में नौसेना के युद्धपोत के साथ हुई टक्कर की घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। भारतीय नौसेना ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से उकसावे की तमाम कोशिशों के बावजूद भारतीय नौसेना के कैप्टन ने बहुत संयम बरता और एक बड़े हादसे को टालने के लिए जरूरी कदम उठाए जिससे जान और माल दोनों का भारी नुकसान हो सकता था। इस पाकिस्तानी जहाज के बारे में मैं आपको और बताता हूं, ये जो पीएनएस हुनेन है F-273 इसका नंबर है, ये दरअसल एक यारमूक क्लास का गाइडेड मिसाइल कॉर्विट है। 2024 में ये पाकिस्तान की नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ और कल शाम यानी 15 सितंबर को पाकिस्तान का यही नौसैनिक जहाज भारतीय नौसेना के एक जहाज के बेहद करीब आके उससे टकरा गया। हमारे पास जानकारी भारतीय नौसेना के जहाज की भी है लेकिन जब तक वो औपचारिक तौर पर भारतीय नौसेना उसका उसकी इंफॉर्मेशन नहीं देती हम आपको भारतीय जहाज के नाम के बारे में नहीं बता सकते। ये पाकिस्तानी जहाज से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये टक्कर उस वक्त हुई जब भारतीय नौसेना का जहाज उत्तरी अरब सागर में एक नियमित ऑपरेशन में, एक अभियान में भाग ले रहा था। पाकिस्तान का जहाज तेज रफ्तार आया और उसने बेहद असुरक्षित और गैर पेशेवर, अनसेफ एंड अनप्रोफेशनल तरीके से भारत के नौसेना के जहाज को टक्कर मारी और यही वजह है कि आज भारत के विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में पाकिस्तान के कार्यवाहक हाई कमिश्नर यानी जो उनका शार्डे अफेयर्स है उसको तलब किया। भारत ने समुद्र में पाकिस्तानी नौसेना की जो यूनिट है उसके अस्वीकार्य, अनएक्सेप्टेबल और गैर पेशेवर, अनप्रोफेशनल व्यवहार को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है और भारत ने, विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान की नौसेना के जहाज का जो व्यवहार था वो दरअसल अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो एक सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास और सैनिकों की आवाजाही की अग्रिम सूचना से जुड़े समझौते के अनुच्छेद 10 आर्टिकल 10 ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान 1991 में इस पर हस्ताक्षर

0: उन अफसरों तक ये संदेश पहुंचाए कि संबोधित जो संबंधित पाकिस्तानी अधिकारी हैं वो इस तरह की कार्रवाई दोबारा ना करें। जो भारतीय शार्डे अफेयर्स इस्लामाबाद में है उनसे भी कहा गया है कि वो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय तक भारत का ये गुस्सा उन तक पहुंचाए। सभी सैन्य इकाइयां जो है समुद्र में उचित सावधानी बरतें, पाकिस्तान से यह अपेक्षा भारत करता है। सूत्रों के मुताबिक बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद जो पाकिस्तानी नौसेना का जहाज था, जो गाइडेड मिसाइल कॉर्विट था, यह भारतीय नौसेना के जहाज के बेहद करीब आया और एक आक्रामक तरीके से उसने आगे बढ़ने की कोशिश की। तो पाकिस्तानी जहाज का जो अगला हिस्सा है वो भारतीय नौसेना के युद्धपोत से छूता हुआ निकला। मामूली सी टक्कर हुई, भारतीय पक्ष को यानी भारतीय नौसेना के जहाज को कोई ढांचागत नुकसान, कोई स्ट्रक्चरल डैमेज इंडियन नेवी के वॉरशिप को नहीं हुआ और ना ही इसमें कोई भारतीय नौसेना का जो नौसैनिक था कोई भी इसमें घायल नहीं हुए हैं और ना ही भारतीय नौसेना के जहाज की क्षमता में कोई कमी आई है। इस घटना के बाद भारतीय युद्धपोत ने अपना मिशन जारी रखा। भारत ने दोनों देशों के बीच हुई संबंधित समझौते का पालन करने की जरूरत पर बल दिया ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न हो। भारत के इस्लामाबाद स्थित शार्डे अफेयर्स को भी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सामने इसी तरह का विरोध दर्ज कराने का निर्देश दे दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान को अप्रैल 1991 में हुए करार की याद दिलाई जिसके अनुच्छेद 10 में साफ तौर पर लिखा गया है और दोनों देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया है कि दोनों देश सैन्य अभ्यासों और गतिविधियों की अग्रिम सूचना देंगे। अगर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं तो दूसरे देश को इसके बारे में बताया जाएगा। अगर सीमाओं के पास यह अग्रिम एक्सरसाइज हो रही है अग्रिम क्षेत्र में तो अग्रिम सूचना दी जाएगी। इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय नियम भी हैं जिनमें जल क्षेत्र को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए तो इसके लिए सुरक्षित दूरी और सुरक्षित स्पीड दोनों का जिक्र है। और यह भी नियम है कि अगर एक जहाज सामने से आ रहा है और आपका जहाज जा रहा है तो दोनों की टक्कर ना हो तो दोनों जहाज किस तरह से अलग अलग दिशा में आगे बढ़ेंगे ताकि टक्कर की कोई गुंजाइश भी ना रहे। लेकिन फिर भी इसके बावजूद ये दुर्घटना हुई है। संदीप उन्नीथन और शिवानी शर्मा मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवानी, नौसेना मुख्यालय से इसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है कि यह घटना किस तरह से घटी?
1: देखिए, कल देर शाम की ये घटना है और उत्तरी अरब सागर में हमारा यानी कि भारतीय नौसेना का एक वॉरशिप था जो एक सर्वेलेंस मिशन पर था। उसका रूटीन सर्वेलेंस मिशन था, वो अपने रास्ते अपने मिशन को अंजाम दे रहा था। उतने में ही पाकिस्तान नौसेना का जहाज जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे हुनैन, तेज रफ्तार में आया, अनप्रोफेशनल अनसेफ तरीके से वो वहां पर बढ़ा। गैर पेशेवर तरीके से उसने जानबूझकर वो प्रॉक्सिमिटी भी हासिल की और एक टक्कर उसके द्वारा मारी गई भारत की इस वॉरशिप में। हालांकि भारतीय वॉरशिप को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो पता चल रहा है सूत्रों के मुताबिक गौरव की पाकिस्तान के शिप को नुकसान पहुंचा है और अब वो अपने बंदरगाह में पहुंच रहा है। और इस पर आप देखिए कि विदेश मंत्रालय की तरफ से एक कड़ी चेतावनी भी जारी की गई है। शार्डे अफेयर्स पाकिस्तान के उनको समन किया गया और ऑब्जेक्शन रेज किया गया। और साथ ही भारतीय नौसेना की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह की सफलता भारतीय नौसेना की वजह से मिली थी, जो ताकत भारतीय नौसेना की है और जो रोबस्ट डिप्लॉयमेंट है, शायद उसकी खीज पाकिस्तान में अब तक दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि किस तरह से उकसाने की कोशिश की गई अरब सागर में। भारतीय नौसेना के कैप्टन ने संयम बरता, जो सूत्रों के मुताबिक हमें खबर मिल रही है कि बहुत उकसाने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय नौसेना ने पेशेवर तरीके से उनके कैप्टन ने संयम बरता, पूरी कोशिश की कि जान और माल का कम से कम नुकसान हो। और इसी तरह भारतीय नौसेना ने अपना जो मिशन था उसको जारी रखा।
0: मैं अपने दर्शकों को इन तस्वीरों के बारे में भी बताना चाहता हूं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जनरेटेड तस्वीरें हैं उत्तरी अरब सागर में, जिनके जरिए हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय नौसेना का जहाज, और इन तस्वीरों के जरिए आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि दोनों जहाजों की शक्ति और क्षमता दोनों में कितना अंतर भी है। संदीप उन्नीथन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, पाकिस्तान ये जानता है और फिर भी ये मूर्खता बार बार करता है। उसकी नौसेना की क्षमता कहीं कम है भारत के आगे, लेकिन अपने गाइडेड मिसाइल कॉर्विट PNS हुनैन से उसने अपने से बड़े जहाज को टारगेट करने की कोशिश की या ये अपना बुली करने की कोशिश की,

0: और मुंह की खाई संदीप।
1: बिल्कुल गौरव, और ये पाकिस्तान नेवी जो है एक बहुत ही एक विचित्र सर्विस है जो कि पीस टाइम में ये सारे जो कारनामे करती रहती है, बेलिजरेंस और शोल्डरिंग, इसको नेवी में एक टेक्निक है जिसको कहते हैं शोल्डरिंग, या जब दूसरी एक जहाज आपके जहाज को कट करने की कोशिश करती है। आपने 2011 की जो वीडियोस देखे हैं उसमें
0: जी
1: साफ ये जाहिर होता है किस तरह से INS गोदावरी को PNS बाबर ने शोल्डर करने की कोशिश की। इस तरह के सारे जो स्टंट्स हैं पाकिस्तान नेवी ज्यादातर पीस टाइम में करती रहती है। सीरियस नेवी इस तरह के कुछ चीजें करती नहीं है जिस
0: अव्वल
1: तरह से
0: दर्जे की,
1: पाकिस्तान
0: आपने
1: में।
0: बिल्कुल सही कहा, अव्वल दर्जे की ये मूर्खता है पाकिस्तान की कि आप अपने से
1: बिल्कुल
0: बड़े जहाज से इस तरह से गुंडागर्दी करने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है कि वो डर जाएगा। अच्छा, जब असल युद्ध होता है, मतलब
1: जब असल
0: ऑपरेशन
1: युद्ध
0: सिंदूर की
1: होता
0: भी
1: है,
0: बात करें, वो भाग गए, हार्बर में छिप गए संदीप।
1: बिल्कुल गौरव, और जब असली वक्त आता है पाकिस्तान नेवी को अपना तेवर दिखाना, अपना जलवा दिखाना, तब वो गायब हो जाते हैं। जैसे कि 88 आवर वाले जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक भी पाकिस्तान नेवी की जहाज बाहर नहीं आए अरब सागर में, एक भी उन्होंने सॉर्टी नहीं फ्लाई किया। उनके जो सारे जो एयरक्राफ्ट थे, वॉरशिप्स थे, सबमरीन, सब छुपे हुए थे। बहुत सारे जहाज निकल के ग्वादर में छुप गए थे, कई सारे जहाज और जाके सिविलियन बर्थ्स में छुप गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि किसी भी वक्त इंडियन नेवी के जो वेस्टर्न फ्लीट है, पश्चिमी बेड़ा है, वहां से बहुत सारे ब्रह्मोस मिसाइल्स निकल जाएंगे और वो बहुत ही जल्द उनकी जो सरफेस शिप्स है वो सबमरीन्स बन जाएंगी। इसीलिए वो वॉर टाइम में बहुत ही संयम बरतते हैं, एकदम छुपे हुए मिलते हैं आपको, लेकिन ये पीस टाइम के दौरान वो ये टाइगर बन, जिस तरह से हाईवे में लोग ये बदमाश बाइक्स चलाते हैं,
0: जी,
1: कार चलाते हैं, उस तरह के स्टंट्स जो हैं ये पीस टाइम के लिए रखते हैं।
0: बड़ी बात
1: और
0: आप कर रहे हैं, और शिवानी ये बिल्कुल सही है। शिवानी, जिस तरह का रोडरेज, या रोडरेज की बात करें, हम सड़कों पर देखें, गुंडई जिसे कहते हैं, रोडरेज जो है ये शिपरेज है। हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन हम आपको दिखाते हैं एआई के जरिए और इसके जरिए कि आखिर ये हुआ क्या था। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि भारत के पास, जो दोनों की नौसेनाओं का अंतर आप देखिए, भारतीय नौसेना से पिटेगा पाकिस्तान, ये जानता है, ये इतिहास साक्षी है। 65 हो, 71 हो, पाकिस्तान की नौसेना हमेशा पिटी है। कराची 11 दिन तक जला था, भारतीय नौसेना ने जला दिया था। भारत के पास 350 से ज्यादा नौसैनिक, अलग अलग जहाज, हेलीकॉप्टर, विमान है। हम लोग का सपना करीब 200 जहाजों की नौसेना, बड़ी नौसेना का है। पाकिस्तान के पास तो 120 से 100 जहाज और पनडुब्बियां हैं। पनडुब्बी की इस नौसेना में वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। भारत के पास दो दो विमान वाहक युद्धपोत हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स हैं अब भारत के पास। पाकिस्तान के पास शून्य, 0/0, क्योंकि हमारी सी कंट्रोल की फिलॉसफी है, उनकी सी डिनायल की फैसिलिटी है। यानी हम जहाज पर, हम लहरों पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, हम लहरों पर राज करते हैं, वो समुन्दर के नीचे छिपकर वार करने की रणनीति अपनाते हैं, लेकिन वहां भी पिटेंगे, क्योंकि भारत के पास अब से कुछ समय में 4 न्यूक्लियर सबमरीन, 3 हमारे पास है, एक और अभी जल्द आ जाएगी। और अगर हम विध्वंसक की बात करें, यानी डिस्ट्रॉयर्स की बात करें, तो भारत के पास 13 डिस्ट्रॉयर्स है, यह संख्या भी और बढ़ेगी। पाकिस्तान के पास शून्य, एक भी डिस्ट्रॉयर नहीं है। उसके पास फ्रिगेट्स हैं, उसके पास गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट्स हैं, यानी छोटे जहाज हैं, बड़े जहाज नहीं है। पनडुब्बियों की अगर बात करें या फ्रिगेट्स की बात करें, तो भारत के पास 23 फ्रिगेट्स हैं। ये लड़ाकू जहाज है, ये थोड़े छोटे होते हैं साइज में, लेकिन बहुत ज्यादा मिसाइलों से लैस होते हैं और बहुत तेजी से वार करने की इनमें क्षमता होती है। पाकिस्तान के पास 15 फ्रिगेट्स हैं, लेकिन उनके फ्रिगेट्स पुराने हो रहे हैं, हमारे फ्रिगेट्स नए हैं। जैसे उनका PNS बाबर, जैसे गोदावरी का इंसिडेंट का संदीप ने जिक्र किया, वो अब उनकी नौसेना में है ही नहीं। लेकिन पनडुब्बी क्षेत्र में हंगोर क्लास सबमरीन्स, या जो पनडुब्बियां चीन पाकिस्तान को दे रहा है, 8 से 13 पनडुब्बियां, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं हमारे पास। कुल मिलाकर मतलब चार तो हमारे पास परमाणु पनडुब्बियां होंगी, तीन अभी हैं, कुल मिलाकर 16 से 20 पनडुब्बियां हमारे पास स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन भी हैं, और हम और नई HDW सबमरीन, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, प्रोजेक्ट 75I भविष्य की ओर हम लोग देखते हुए और पनडुब्बियां भी हम ला रहे हैं। इस क्षेत्र में हमको और विकास तेजी से विकास करने की आवश्यकता है। एक बार फिर संदीप और शिवानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवानी, अगर शक्ति की बात की जाए तो पाकिस्तान की शक्ति भारत के सामने टिकती नहीं है, और इसीलिए वो इस तरह की गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश करता है। शिवानी,
2: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गौरव। आप देखिए कि जल हो, थल हो या नभ हो, तीनों ही जगह आप देख लीजिए पाकिस्तान लगातार पिटा है भारत से। और यहां पर आप देखिए ये जो इंसिडेंट है, और संदीप इसका जो जिक्र कर रहे थे इसका बहुत ही रेलेवेंट एक एग्जांपल दे रहे थे, रोड रेज से जो एक इंसिडेंट हमने देखा कि किस तरह से एक बाइकर को छूकर निकल गई गाड़ी, और ऐसा ही कुछ रोड रेज जो हम देख रहे हैं सड़कों पर वो शिप रेज आप यहां पर देखिए। तो पाकिस्तान की कमजोरी है, पाकिस्तान की बेवकूफी है, मूर्खता है, क्योंकि जो नियम है, जो नियम बनाए गए हैं, जो नियमों की हम बात कर रहे हैं, जिस अग्रीमेंट के तहत एक दूसरे से अपने मूवमेंट की जानकारी को शेयर करना होता है, उसका भी पालन यहां पर पाकिस्तान ने नहीं किया। तो ना ही सिद्धांत के तौर पर, ना ही ताकत के तौर पर, ना ही सच्ची बात बोलने के तौर पर पाकिस्तान कहीं भारत के सामने टिकता नहीं है।
0: और बिल्कुल सही कहा आपने संदीप और शिवानी, फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, बात खाड़ी में खुले युद्ध की एक और मोर्चे की। जी हां, हूथी विद्रोहियों के सामने के हमले के बीच सऊदी अरब में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जेद्दा हो, यानबू हो, का 7 शहरों पर सुरक्षा अलर्ट इस समय जारी किया गया है। इसके अलावा सऊदी अरब ने हूथी विद्रोहियों पर पवित्र मक्का पर हमला करने का आरोप लगाया है, हमला करने की कोशिश का आरोप लगाया है। इसके अलावा हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब के बॉर्डर वाले इलाकों पर हमला कर सऊदी गाड़ियों की, सेना की गाड़ियों पर कब्जे का दावा किया है। भारत ने बाब अल मंदब और लाल सागर के समुद्री मार्ग पर मंडराते खतरे को लेकर गंभीर चिंता जताई है। बड़ी खबर इस समय आ रही है, भारत ने मक्का के पास ड्रोन हमले की कोशिश को लेकर गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एडिशनल सेक्रेटरी रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत इसे हमले की कड़ी निंदा करता है, जो सऊदी अरब की संप्रभुता, उसकी संप्रभु जमीन पर नागरिकों की जान और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालते हैं। उन्होंने कहा कि मक्का के पास हुई घटना खासतौर पर चिंताजनक है, क्योंकि यह शहर दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, अहम है, पवित्र है। भारत ने उस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की जल्द बहाली की भी उम्मीद जताई। और इस्लाम का सबसे पवित्र शहर है मक्का, मक्का शहर को निशाना बनाने की कोशिश हूथी विद्रोहियों ने की, और इन दावों को लेकर सऊदी अरब और हूथी विद्रोहियों के बीच अब एक तनाव पर जो है वो चरम पर पहुंच गया है। दरअसल सऊदी अरब और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन 57 देशों का यह समूह है OIC, उन्होंने हूथी गुट पर पवित्र शहर मक्का की ओर ड्रोन हमला करने का आरोप लगाया है। हूथी विद्रोहियों ने इस खबर को सिरे से खारिज करते हुए कहा यह झूठी खबर है, यह मनगढ़ंत दावा है और ऐसा नहीं होना चाहिए।
3: सोशल मीडिया पर वायरल ये मक्का पर ड्रोन हमले की तस्वीर है। इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में से एक मक्का के आसमान पर ड्रोन मंडरा रहा है। नीचे धार्मिक यात्रा के लिए पहुंचे लोग हैरानी और परेशानी से इस खौफनाक स्थिति को देख रहे हैं। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने बयान जारी किया कि उनकी वायुसेना ने मक्का शहर के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे हूतियों के एक हथियारबंद ड्रोन को हवा में ही मार गिराया है। सऊदी अधिकारियों के मुताबिक इस ड्रोन को मक्का के दक्षिणी हिस्से में ही रोक दिया गया था और इसका मलबा शहर से दूर दक्षिण में गिरा। सऊदी गठबंधन के प्रवक्ता तुर्की अल मलिकी ने कहा है कि मक्का और मदीना जैसे पवित्र स्थलों और वहां आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सऊदी अरब के लिए एक रेड लाइन यानी लक्ष्मण रेखा है, जिसे पार करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ हुती संगठन के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य हजीम अल असद ने सऊदी अरब के इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मक्का को निशाना बनाने का दावा एक घिसा पिटा झूठ है। हुतियों का कहना है कि वो किसी भी पवित्र धार्मिक स्थल को निशाना नहीं बनाते हैं। उनका आरोप है कि सऊदी अरब इस तरह के झूठे दावे केवल दुनिया भर के मुस्लिमों की सहानुभूति बटोरने और उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए कर रहा है। इस सफाई के बीच दुनिया के 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने सऊदी अरब का खुलकर समर्थन किया है। OIC ने अपने बयान में हुतियों के इस कथित कदम की कड़ी निंदा करते हुए इसे एक जघन्य और आतंकी हमला करार दिया है। OIC ने कहा कि पवित्र स्थलों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है और वो सऊदी अरब की संप्रभुता की रक्षा के लिए उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। पिछले कुछ दिनों में हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के कई शहरों, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन और रिफाइनरी को निशाना बनाया है, लेकिन पवित्र शहर मक्का पर कथित हमले के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया है।
0: क्षेत्र में तनाव चिंता की एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ेगा। इस खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: SBI Celebrations Unlimited. ये गणेशोत्सव बनेगा स्पेशल विद फेस्टिव ऑफर्स ऑन कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स।
3: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स। बेस्ट फुटी?
6: जेके वॉल मैक्स।
4: बेस्ट पेंट?
6: जेके मैक्स।
4: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
7: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
8: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
9: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
10: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRF।
11: अब मैं क्या ही बोलूं?
12: परिवार अटूट भरोसा।
13: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
14: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
15: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
16: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
17: In association with Signature Finest Cardamom Seeds, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
18: आज तक के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे बड़ी सभा।
19: आज का बैटलफील्ड 4000 किलोमीटर तक जा रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है।
20: इमीडिएट बालापुर मान जाइए, अब वो जब भी नहीं माने तो फिर सिंदूर की हमारे को नौबत आ गई।
21: अंडमान निकोबार आइलैंड तो जरूर हमको उसका एडवांटेज लेना ही चाहिए।
22: जो बाउंड्री प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में, इसका अभी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता।
23: कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा, भारत की सेनाएं उसका जवाब देगी।
18: आज तक देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ी आवाज़।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

एआई ने इंसानों का काम आसान किया है, लेकिन एआई की बढ़ती ताकत ही सबसे बड़ी चिंता बनती जा रही है। डर यह है कि एआई जितनी तेजी से ताकतवर हो रहा है, क्या उसकी सुरक्षा भी उतनी ही तेजी से मजबूत हो रही है। एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोडेई ने इसी को लेकर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि एआई मॉडल की क्षमता तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सुरक्षा इंतजाम अभी भी पीछे है, जबकि अगले 6 से 12 महीनों में एआई एजेंट्स की क्षमता काफी बढ़ने का अनुमान है, जिसके गलत इस्तेमाल से साइबर अटैक और फ्रॉड का खतरा बढ़ सकता है, और एआई के लिए मजबूत सुरक्षा मानक बनाने की जरूरत है। अमोडेई का कहना है कि आने वाले महीनों में एआई एजेंट्स इंटरनेट पर बड़े पैमाने पर काम करने की क्षमता हासिल कर सकते हैं। अगर ऐसी ताकत का गलत इस्तेमाल हुआ तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। ये खतरा कागजी नहीं है। एंथ्रोपिक की थ्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट में उसके क्लॉड मॉडल के साइबर ऑपरेशन, निगरानी, फ्रॉड और हथियारों से जुड़े काम में गलत इस्तेमाल की कोशिशों का जिक्र है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा पिंच यही है कि दुनिया एआई से डर भी रही है और एआई की रेस से पीछे भी नहीं हटना चाहती। अमेरिका और चीन दोनों एआई को आर्थिक ताकत के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देख रहे हैं। अमेरिका की कोशिश है कि चीन एआई की रेस में आगे ना निकले, जबकि चीन एआई में आत्मनिर्भर बनने पर जोर दे रहा है। इससे अमेरिका और चीन के बीच एआई की बढ़त को लेकर मुकाबला तेज होता जा रहा है। चीन का फोकस एआई में आत्मनिर्भरता और घरेलू टेक्नोलॉजी पर है, वहीं अमेरिकी एजेंसियों ने चीनी कंपनियों पर एआई मॉडल से क्षमता निकालने का आरोप लगाया है, जबकि चीन ने इन आरोपों को अमेरिकी टेक दबाव की रणनीति बताया है। यानी समस्या ये नहीं है कि दुनिया एआई को रोकना चाहती है, समस्या ये है कि हर देश चाहता है कि एआई की अगली बड़ी छलांग उसके हाथ से निकले, और इसी रेस में सुरक्षा पीछे छूटने का डर है। एआई की इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दुनिया एआई की रफ्तार को इतनी तेजी से आगे बढ़ा सकती है कि आर्थिक और तकनीकी बढ़त भी बनी रहे, लेकिन सुरक्षा उसके पीछे न छूटे। असल में आने वाले वक्त में एआई केवल चैटबॉट या स्मार्ट टूल नहीं रहेगा, इसका असर नौकरी, कारोबार, साइबर सिक्योरिटी और राष्ट्रीय सुरक्षा तक दिखाई देगा। एआई की रेस में अमेरिका और चीन अपनी बढ़त के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन इस दौड़ में असली जीत तभी होगी जब एआई की ताकत के साथ उसकी जिम्मेदारी और सुरक्षा भी उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। आज तक ब्यूरो।

0: भैया मेरे राखी के बंधन को नहीं। 100 रुपए लेंगे तुमसे अभी हम।
1: लो मिठाई भी खाओ।
2: क्योंकि फूफा भी कभी जीजा थे।
1: ताओ भी एथेनॉल को लेके फूफा ही कहे जाएंगे।
3: हाँ ताओ एथेनॉल फूफा है।
4: हाँ बिल्कुल है। हम नाराज हैं।
1: मेरे फूफा जो है दुनिया के सबसे अच्छे फूफा है।
3: क्या बात कर रहे हैं।
1: कसम से उनका नाम ही अच्छे खां है।
3: अच्छा।
1: सबसे अच्छे हुए।

चार्ज के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने खोला मोर्चा, कहा नियम को वापस ले सरकार। आरबीआई की दलील, मिलने वाले पैसे से तकनीक और नेटवर्क और होंगे मजबूत। नौकरी पेशा कर्मचारियों को सरकार से बड़ी राहत, कैबिनेट ने अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रति माह किया, 51 लाख से अधिक लोगों को होगा फायदा। यूसीसी विरोधी सभा में बीजेपी विधायक के मिसाइल अटैक वाले बयान पर भड़के ओएसी, एमएलए की भी जवाबी चेतावनी, अखिलेश यादव ने यूसीसी को बताया अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। पाकिस्तानी मूल के आतंकी शहजाद भट्टी के नेटवर्क को गृह मंत्रालय ने टेरर संगठन किया घोषित, भारत में आईएसआई और गैंगस्टर नेटवर्क का है महत्वपूर्ण चेहरा, यूएपीए के तहत एक्शन। और लखनऊ में एक्स गर्लफ्रेंड को कार से टक्कर मारकर भागने वाला शाहनवाज हिरासत में, यश ठाकुर नाम से प्रेम जाल में फंसाने का आरोप, विरोध करने पर की वारदात।

0: आप देख रहे हैं रणभूमि, मैं हूं गौरव सावंत। इस समय बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, सेवा संकल्प अभियान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस समय कोलकाता में वो हैं और कोलकाता में क्या कहा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, हम आपको वो सुनाते हैं।
1: एन फॉर न्यू एज, टी फॉर डिजिटल और आई अगेन आई फॉर इनोवेटिव और ए फॉर आत्मनिर्भर। और साथियों, 25 साल में नरेंद्र मोदी जी पब्लिक लाइफ में, लेकिन यह बात सिर्फ सरकार बनाने या किसी पद पर बने रहने की नहीं है, यह बात ट्रस्ट की है कि राजनीति में इतने लंबे समय तक रहते हुए भी उस नेता के प्रति जनता का विश्वास बना हुआ है। और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा कैपिटल यदि उस नेता का कुछ है तो जनता का ट्रस्ट है। जनता का ट्रस्ट नहीं टूटने पाया और उनके 25 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है वो इस बात का गवाह है कि जनता उनके ऊपर कितना भरोसा करती है, जनता उनके ऊपर कितना ट्रस्ट करती है। और साथियों, 2014 के बाद 9 राज्यों में पहली बार भाजपा के मुख्यमंत्री बने और आज आपको जानकारी है कि 20 से अधिक राज्यों में हमारी सरकारें हैं। यानी जनता लगातार बार बार मोदी जी के नेतृत्व को एक्सेप्ट भी कर रही है और अपना अप्रूवल भी दे रही है। वेस्ट बंगाल में भी आपने देखा, लोग कहते थे कि यहां सरकार बीजेपी की बनना तो संभव ही नहीं है, यहां भी ह्यूज मेजोरिटी के साथ हम लोगों ने गवर्नमेंट बनाने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन यह विश्वास जो उनके प्रति है वह एकतरफा नहीं है। मोदी जी को देश की जनता पर उतना ही भरोसा है जितना कि देश की जनता को मोदी जी पर। मैं उसका एक उदाहरण भी देता हूं आपको। कोरोना काल से पहले यह माना जाता था कि इमरजेंसी सिचुएशन में बिना फोर्स का प्रयोग किए लोगों को घर से बाहर निकलने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन मोदी जी ने देशवासियों को घर में रहने की अपील की और आपने देखा, यह भी आग्रह किया कि आप डिसिप्लिन को बनाए रखें। उन्हें विश्वास था जनता उनकी बात सुनेगी, जनता उनकी बात को टालेगी नहीं, और हुआ भी वैसा ही। उनकी अपील पर देशवासियों ने कोरोना के समय अनप्रेसिडेंटेड डिसिप्लिन दिखाई, अनप्रेसिडेंटेड डिसिप्लिन दिखाई और हम सभी ने मिलकर कोरोना को डिफीट की। और साथियों, अच्छा लीडर सिर्फ वह नहीं होता है जो बड़े बड़े पदों पर रहे, बल्कि वह होता है जो अपने देश के लिए बड़े बड़े सपने देखे, वही अच्छा लीडर होता है। लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए और उन गोल्स को हासिल भी करे, वही अच्छा लीडर कहा जाता है। मोदी जी के विजन और उनकी फार साइटनेस यानी दूरदर्शिता, ये कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। पहला, मैं यूपीआई की चर्चा करना चाहता हूं। जब यूपीआई की शुरुआत हुई थी तो बहुत लोगों को लग रहा था कि यह इनिशिएटिव किसी भी सूरत में सफल नहीं होने पाएगा और बहुत लोग यह पूछ रहे थे इससे गरीब को कैसे फायदा पहुंचेगा इस यूपीआई से। पिछले महीने ही यूपीआई को लागू किए 10 साल पूरे हुए हैं। सिर्फ अगस्त महीने में ही यूपीआई से 23.66 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं, 23.66 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जिनकी वैल्यू भी सुनकर आपको आश्चर्य होगा, जिनकी वैल्यू अप्रॉक्सिमेटली 29.88 लाख करोड़ रही है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रन ने यूपीआई की प्रशंसा करते हुए कहा कि यूपीआई केवल एक टेक स्टोरी नहीं है, यह एक सिविलाइजेशनल स्टोरी है और यूपीआई अब दुनिया के कई देशों में लाइव है। यूपीआई सफल हुआ तो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स जो थे उनकी भी आमदनी बढ़ी।
0: बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ में जनेश्वर पार्क के सामने एक लड़की को कार से टक्कर मारने और कुचलने की कोशिश की एक खौफनाक वारदात सामने आई है। मामला गोमती नगर से जनेश्वर पार्क का इलाके का है। जानकारी के मुताबिक जनेश्वर मिश्रा पार्क के सामने ये लड़की मौजूद थी। उस लड़की ने शाहनवाज नाम के एक आदमी को रोकने की कोशिश की, इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, ये आपको विचलित भी कर सकती हैं। लेकिन आरोपी कार सवार नहीं रुका, वो भागने लगा। हम आपको इनकी बात भी सुनाएंगे। लड़की कार की बॉनेट पर थी, झूलती रही, चीखती रही, लेकिन शाहनवाज बॉनेट पर इस लड़की को घसीटता रहा और अपनी कार को वो कुछ मीटर आगे तक ले गया, बढ़ता चला गया। इसके बाद लड़की सड़क किनारे जा गिरी। इस घटना का वीडियो किसी ने ले लिया, ये वीडियो वायरल हुआ। युवती को टक्कर मारकर कार सवार फरार हो गया। बड़ी खबर ये कि ये जो आरोपी है शाहनवाज, इसे हिरासत में अब ले लिया गया है। देखिए, वहां कई लोग मौजूद थे, देख रहे थे वहां क्या हो रहा है। लड़की रोकने की कोशिश कर रही थी इस गाड़ी को, लेकिन वो शाहनवाज रुक नहीं रहा था। अब वो भाग गया, लड़की घिसटती चली गई। तब जाकर लोग सामने आए।
2: शहनवाज ने अनामिका पर चढ़ाने की कोशिश की, जिस कार को हम उस वक्त मौजूद है वहीं पर, उस कार के साथ। ये वो कार है जो जिसमें शहनवाज बैठा था। ये ड्राइविंग सीट देखें पहले, इसी तरफ शहनवाज बैठा था और इसके बगल में उसका जो दोस्त था वो बैठा था। अनामिका जब पहुंचती है उस वक्त क्या होता है, हम आपको एक बार रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं सीन को। देखिए, ये वो कार है, यहाँ किनारे की तरफ वो जनेश्वर मिश्र पार्क के पास लगी थी। अनामिका यहाँ पहुंचती है और आपको दिखाऊंगा तस्वीरों में कि यहाँ से अनामिका उसको रोकने की कोशिश करती है। तो कुल मिलाकर जब अनामिका यहाँ से रोकने की कोशिश करती है तो सामने बैठा शहनवाज यहाँ से गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर देता है। अब एक बार मैं कहूंगा कैमरा नीरज, एक बार वहां पर जाके एस्टैब्लिश करेंगे अगर, तो सामने की तरफ आप देखेंगे कि ये जो उसका विंडो एरिया है, यहाँ पर अनामिका खड़ी है और अनामिका बकायदा इस गाड़ी को ऐसे पुश कर रही होती है, पुश करती जाती है, लेकिन ये गाड़ी फिलहाल रुकती नहीं है। और डिस्पाइट कि अनामिका लगातार इस गाड़ी को पुश कर रही होती है, गाड़ी की जो स्पीड होती है वो बढ़ती जाती है। ये वो हिस्सा है जहां ड्राइविंग सीट है और यहां पर आप देखें कुछ इस तरीके से अनामिका का हाथ होता है और वो लगातार इसको रोकने की कोशिश कर रही होती है, चीख रही होती है कि जो शहनवाज है वो उसकी बात सुन ले, समझ ले और रुक जाए। लेकिन ये गाड़ी जो है, जो हिट एंड रन केस का एक हिस्सा बनी हुई है, वो नहीं रुकती है। ये आप गाड़ी देखेंगे तो एक तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। यहां से ये गाड़ी है, काफी आलिशान ये गाड़ी दिखाई पड़ती है और यहाँ पर इस गाड़ी के पीछे हालांकि अधिवक्ता भी लिखा हुआ है। और आगे देखाऊंगा तो मैं गाड़ी का नंबर भी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ेगा, तो वो भी आपको हम तस्वीरें एक-एक दिखा रहे हैं यहाँ से कि क्या हालात है। ये देखिए, ये वो हिस्सा है, यहाँ यूजुअली आपने कार प्लेट कार नंबर देखा होगा, लेकिन यहाँ पर आप देखिए तो कोई गाड़ी का नंबर या कोई नंबर प्लेट गाड़ी का यहाँ पर नहीं लगा हुआ है।
3: आज सुबह जनेश्वर मिश्र पार्क के बाहर एक लड़की को किसी एक युवक द्वारा गाड़ी से टक्कर मार देने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। मौके पर जानकारी करने से प्राप्त हुआ कि जिस युवती को टक्कर मारी गई थी, वो जो व्यक्ति है उससे पूर्व में मित्रता थी। आज जब सब लोग मौके पर थे तो किसी बात को लेकर इनमें विवाद हुआ, जिसके बाद लड़का और उसका दोस्त गाड़ी में बैठ के लड़की को टक्कर मारते हुए वहां से फरार हो गए। लड़की का तत्काल मेडिकल परीक्षण करा दिया गया है, तहरीर प्राप्त करके हत्या के प्रयास की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें जो नामजद एक अभियुक्त है उसको डिटेन करके उससे डिटेन में पूछताछ की जा रही है और जो वाहन जो इस घटना में यूज हुआ था उसको भी बरामद कर लिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
0: अच्छा, प्रारंभिक जांच के बाद जो सूचना मिली है, जो इन्फॉर्मेशन अभी आई है, उसके मुताबिक ये जो आरोपी है शाहनवाज, इसके साथ दानिश नाम का एक और व्यक्ति भी था। आज कुछ लड़कियों के साथ शाहनवाज जनेश्वर पार्क आया, चाय की टपरी पर पहुंचा, वहां चाय पी रहे थे लोग। तब ये पीड़ित लड़की भी सुबह सुबह चाय पीने वही जनेश्वर मिश्रा पार्क के पास पहुंची, उसकी नजर शाहनवाज पर गई। उसे देखते ही शाहनवाज ने भी उसे पहचान लिया। ये शाहनवाज दरअसल खुद को यश ठाकुर बताकर शाहनवाज लड़की से रिलेशनशिप में आया था, यानी उसे अपना नाम गलत बताया, अपना धर्म गलत बताया। शाहनवाज ने अपना नाम यश ठाकुर बताया। जब ये सच्चाई सामने आई तो लड़की ने इसका विरोध किया और उसी दौरान लड़की को पता चला कि जिसे वो यश के नाम से जानती थी, दरअसल वो तो शाहनवाज है। लड़की ने युवक पर धोखेधड़ी का आरोप लगाया, धोखेबाजी का आरोप लगाया। उसी दौरान शाहनवाज अपनी गाड़ी में बैठा वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन लड़की भी निडर थी। लड़की वहां खड़ी रही, गाड़ी के सामने आ गई। वो चाहती थी कि सच्चाई सबके सामने आए। किसी ने जब कैमरे पे तस्वीरें खींची तो उसका नंबर भी गाड़ी का आ गया। और इसी के बाद शाहनवाज ने देरी नहीं की, टक्कर मारने के बाद वो मौके से भाग गया। पुलिस ने कार और शाहनवाज की तलाश में नाकेबंदी की। महत्वपूर्ण बात, गाड़ी का नंबर मिल गया, इसीलिए पुलिस को वहां पहुंचने में, उस तक पहुंचने में मदद मिली। अच्छा, अब हम आपको दिखाते हैं, ये जो गाड़ी का नंबर है UP 32 KH 8090, यही वो गाड़ी है जो आरोपी शाहनवाज चला रहा था और इसमें फरार हुआ। लड़की कार को रोकना चाहती थी, लेकिन आरोपी शाहनवाज रुका नहीं। टक्कर मारने के बाद वो मौका वारदात से फरार हो गया। पुलिस ने कार और शाहनवाज की तलाश तेज की, कई जगह नाकेबंदी की, फिर RTO से नंबर का एड्रेस तलाशा और कार के नंबर के जरिए पुलिस शाहनवाज तक पहुंच गई। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे जो लड़की है ये शाहनवाज की गाड़ी के बोनेट पर घिसटते हुए चीखती रही, गाड़ी रोको। शाहनवाज नाम का ये शख्स गाड़ी रोकने के बजाय और तेजी से गाड़ी को बढ़ाने की कोशिश करता रहा। लेकिन आखिर हुआ क्या, कैमरे में क्या सच कैद हुआ, इन तस्वीरों में देखिए।
2: जो आप वीडियो में देख रहे हैं वो ये जगह है, ये सड़क है जहां से वो गाड़ी सामने की तरफ से आती है और एक महिला है वो उस गाड़ी को रोकने का प्रयास करती है। आपको मैं थोड़ा समझा दूं, अगर अनामिका नाम की लड़की है जिसका शहनवाज के साथ जिसकी गहरी दोस्ती थी, उसने जब शहनवाज को किसी और लड़की के साथ देखा, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है, तो दोनों के बीच बहस हुई। जब उसने उसको रोकने की कोशिश की तो शहनवाज नहीं रुका, बल्कि रुकने के बजाय वो ऊपर चलता चला गया। देखिए ये वो स्पॉट है, पहले आपको मैं जगह दिखा देता हूं। यहां पर जो आप देखें तो अनामिका यहीं से धक्का बकायदा दे रही है, धक्का देने की कोशिश कर रही है, गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रही है, और गाड़ी उस तरफ से आती हुई इधर उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। एक वक्त तक वो घसीटती हुई काफी आगे तक जाती है, फिर एक मूवमेंट ऐसा आता है जब वो गाड़ी की स्पीड को शहनवाज तेज कर देता है, और जब शहनवाज गाड़ी की स्पीड को तेज कर देता है तो घसीट कर अनामिका यहीं इसी जगह पर गिर जाती है और गाड़ी आगे निकल जाती है। प्रत्यक्षदर्शी जो उस वक्त यहाँ मौजूद थे वो इस वक्त हमारे साथ है। आपका क्या नाम है?
4: मेरा नाम है आकाश कुमार।
2: आकाश, ये बताइए आप उस वक्त यहाँ पर थे जब घटना हुई है?
4: जी, मेरी दुकान है सुरेश टी स्टॉल, आज सारी दुकानें हट गई यहाँ पे। तो हमने देखे यहाँ पे पहले कार आई, कार आने के बाद में फिर क्या हुआ, वो फिर रोके, शीशा खोले उसने, ठीक है, शीशा खोलने के बाद में फिर वो जो दीदी,
2: आपकी चाय की दुकान चल रही थी, पहले गाड़ी आई,
4: पहले गाड़ी आई, फिर दीदी स्कूटी, अपनी स्कूटी खड़ी की,
2: ठीक है। गाड़ी कितनी देर पहले आई थी?
4: तुरंत, बस गाड़ी आई, तुरंत स्कूटी आई।
2: मतलब कैसा लग रहा था कि फॉलो कर रही हो?
4: वो नहीं दीदी, मतलब कि उसके ऊपर ऐसे रुक गई, रोक रोकने की कोशिश कर रही थी, तो उसने नहीं रोका, फिर यहाँ यही मेरी दुकान के सामने रोका, ठीक है। रोकने के बाद में फिर आगे रुकते रुकते वहाँ रुक गई दीदी, फिर वहाँ रुकी, और दीदी बस जैसे साइड से ना, साइड से मतलब बात करने की कोशिश कर रही थी, बस तुरंत ही रुक गई। बस रोकने के बाद में बस इतनी स्पीड में भगाया जैसे दीदी थोड़ा साइड में, दीदी फिर ऐसे रोकने की कोशिश, बहुत गिर गई दीदी ने, तो यहाँ चोट खा गई। मेरे दुकान पे कस्टमर बैठे वो भी वीडियो बनाए, और भैया भी बैठे थे, हम अपने भी फोन से, तो वहाँ भैया भी बैठे थे, वो भी कुल्हर मारे कि रुक जाए, तब भी नहीं रुका, और दीदी को चोट खाए, उनके साथ में उनकी बुआ भी थी।
0: बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात UCC पर तेज हुई जुबानी जंग की। भोपाल में UCC के विरोध में एक सभा के दौरान AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा को सीधी चुनौती दे दी। रामेश्वर शर्मा ने 4 सितंबर को जन्माष्टमी के कार्यक्रम में एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि भोपाल में करौंद इलाके से काजी कैंप की तरफ मिसाइल दगेगी या मिसाइल दागेंगे, इस तरह की शब्दावली। कल असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया, बारी पलटवार की थी। उन्होंने रामेश्वर शर्मा को चुनौती देते हुए कहा, अगर उनमें दम है तो मुझे बताएं मिसाइल कब लॉन्च करेंगे। ओवैसी ने कहा वो अकेले काजी कैंप में खड़े हैं और ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। ओवैसी ने काजी कैंप के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा, वहां उन लोगों का नाम लिया जिन्हें आजादी की लड़ाई में जिन्होंने योगदान दिया था। असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी विधायक के विवाद पे बोल के जवाब में 11 दिन बाद उसका उत्तर भोपाल में आकर दिया। किस तरह से दिया, आरोप प्रत्यारोप यूसीसी पर सुनिए।
5: मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, जब हिंदुस्तान में लोग कहते थे सुई बनाना नहीं जानते तो मोदी जी ने कहा कि हम मिसाइल बनाएंगे। जैसे तुम करौंद के चौराहे पर खड़े होकर मिसाइल लगाओ और काजी कैंप पे गिरा दो, वैसे ही। अरे मैंने यहाँ का काजी कैंप नहीं बोला, इस्लामाबाद वाला बोला था।
6: ये कोई रामेश्वर शर्मा साहब का बयान सुना, क्या बोले, मैं मिसाइल लॉन्च करूंगा करौंद स्क्वायर से काजी कैंप पर। रामेश्वर शर्मा, अगर तुम मई के लाल हो लॉन्च करके अकेला फिरता काजी कैंप में आकर, मैं शहीद होने तैयार हूँ, मरने तैयार हो, तुम्हारे जैसे सामने सर झुकाने वाला हूँ।
0: यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी खबरों पर रहेगी नजर, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: सिर्फ एक शौचालय पूरे गांव की तस्वीर बदल सकता है, तो जवाब है हाँ। यूपी में नई स्वच्छता सुविधाएं और ODF अभियान के बाद गांवों की ही नहीं लोगों की तस्वीर बदल गई है। योगी सरकार ने 2025 को विकास का स्वर्णिम वर्ष कहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत यूपी में 2,15,00,000 घरों में शौचालय बनवाए गए, जबकि दूसरे चरण में 48,99,000 अतिरिक्त शौचालयों का निर्माण हुआ। प्रदेश के 15.50 लाख नालों, सेप्टिक टैंकों और गोवर्धन प्लांटों के रखरखाव पर हर साल 750 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी की गई। इन्हीं प्रयासों के बदौलत स्वच्छ भारत मिशन में यूपी ने देश में तीसरा स्थान हासिल किया। यूपी के बदलते गांवों की तस्वीर देखने के लिए हमारी टीम पहुंची मुरादाबाद के डिडोरी गांव में और इसका असर जमीन पर दिखाई दिया। गांव की रहने वाली प्रीति कहती है,
10: जितने मतलब परेशान थे वो लोग, अब कोई परेशानी नहीं है, उन्हें साफ सफाई बिल्कुल बढ़िया है सर।
9: लीलावती बताती हैं,
11: बहुत लाभ है हमें इस टाइम, सब कुछ लाभ है, देखो बाहर नहीं जाते, अब टाइम से खुला मिला है।
9: वहीं मंगूपुरा गांव में ग्रामीण समरपाल सिंह कहते हैं,
12: साफ सफाई समय से होती है गांव में, सफाई कर्मचारी समय से आते हैं और शौचालय मुक्त है हमारा गांव, खुले में कोई शौच नहीं करने जाता, समय समय से फॉगिंग भी होती है गांव में जिससे कि बीमारी ना आए।
9: यानी तस्वीर सिर्फ शौचालय बनाने तक सीमित नहीं है, साफ सड़कें, नियमित सफाई, सामुदायिक शौचालय और ODF अभियान ने कई गांवों में बदलाव की नई कहानी लिखी है।
13: संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं, उनके ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं और सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे को साधने के लिए, क्या फर्क पड़ रहा है यूसीसी से बताओ मुझे, कितने का नहीं होगा क्या हमारा निकाय तो होगा, फेरे नहीं होंगे क्या, फेरे ही तो होंगे, क्या तमाशा बना रखा है, कुछ भी नहीं है।
14: छात्रों के मूवमेंट से डरी हुई सरकार के पास अब इसी तरह का कार्ड खेलने के अलावा और कोई चारा नहीं, और चुनाव में गिराने के लिए क्या है, नौकरियां वो दे नहीं पाए, स्टूडेंट्स जो है वो परेशान है, प्रोटेस्ट कर रहा है पूरे देश में जेंजी से लेके जेन अल्फा तक, तो सरकार के पास मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यही सब है राज्यों में। ये भारत जो है वो विविधताओं का देश है, भारत जो है वो तमाम अलग अलग तरह के फूलों से मिलके बना, आप सब कुछ एक रंग का कर देना चाहते हैं, सब कुछ एक जैसा कर देना चाहते हैं, डाइवर्सिटी कहाँ चली जाएगी। तो गृहमंत्री जी को ये समझना पड़ेगा कि ये देश बहुत अलग अलग भाषाओं, अलग अलग बोलियों, अलग अलग कल्चर, अलग अलग तहजीब, अलग अलग धर्मों सबसे मिल करके भारत बनता है। आप सब कुछ एक कर देना चाहते हैं, एक रंग का, तो हम तिरंगे के साथ खड़े हैं, हम तिरंगे वाले लोग हैं।

0: पश्चिम एशिया में हो रही जंग से कच्चे तेल में नए सिरे से उबाल आ गया है और वो $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। इसने जनता की चिंता को बढ़ा दिया है जो पहले ही महंगाई की मार झेल रही है। खबरदार हो गई है कि आने वाले महीनों में घर का बजट दबाव में आ सकता है। अगस्त में थोक और खुदरा महंगाई दर में लगातार बढ़ोतरी ने इसे लेकर तस्वीर भी साफ कर दी है। अगस्त में फुटकर महंगाई 4.82% हो गई, जुलाई में ये 4.45% थी। वहीं सरकार ने 14 सितंबर को जारी रिटेल महंगाई के आंकड़ों में खाने पीने की चीजों की फुटकर महंगाई दर 5.95% का आंकड़ा दिया, जबकि रिजर्व बैंक ने रिटेल महंगाई का लक्ष्य 4% रखा है। ये जनवरी से लेकर जुलाई तक महंगाई के वो आंकड़े हैं जो बढ़ते ही जा रहे हैं। जनवरी में जो महंगाई 2.74% थी वो फरवरी से अप्रैल तक 3 से 3.5 के बीच रही, फिर मई में करीब 4% और फिर जुलाई में 4.45% पहुंच गई। बड़ी बात यह है कि लगातार तीसरा महीना है जब रिटेल महंगाई दर RBI के तय पैमाने से ज्यादा दर्ज की गई है।
1: महंगाई की मार ना केवल राशन के सामान पर देखने को मिल रही है, सब्जियों पर भी जो अब महंगाई है वो देखने को मिल रही है। चाहे बात की जाए लहसुन अदरक और प्याज टमाटर जैसी सब्जियों की, वो भी अब महंगी हो गई, जिसका असर किचन बजट पर पड़ा है। कौन कौन सी जो सब्जियां महंगी हो गई?
2: इस टाइम प्याज भी महंगा है, अदरक भी महंगा है, लहसुन भी महंगा है। मतलब इन सबके अगर देखा है तो प्रीवियस ईयर से इस ईयर कम से कम 100 रुपए किलो के मार्जिन बढ़ा है करीबन।
0: अब ऐसे में विपक्ष का सवाल है कि सरकार एक तरफ 7.28% की विकास दर का दावा कर रही है, वहीं महंगाई की तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। त्योहार से पहले तेल रिफाइंड के साथ आलू प्याज अदरक के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है।
3: कितना महंगाई का असर जो है वो पड़ रहा है आप लोगों के?
4: बहुत ज्यादा पड़ रहा है, हद से ज्यादा। इस वक्त तो बहुत ज्यादा पड़ रहा है महंगाई का असर, सभी लोग परेशान है, जनता सारी परेशान है।
0: सरकार का कहना है कि युद्ध के अलावा महंगाई के बढ़ने में कमजोर और अनियमित मानसून का भी हाथ है, लेकिन आम आदमी का दिल त्योहार से पहले बैठा जा रहा है। वो देख रहा है कि कच्चे तेल की कीमतों में नए सिरे से आते उछाल से वो कब तक बचेगा। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: 2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर चार्ज के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी का मोर्चा, कहा नियम को वापस ले सरकार। आरबीआई की दलील, मिलने वाले पैसों से तकनीक और नेटवर्क होगा और मजबूत। नौकरी पेशा कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, कैबिनेट ने अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रति माह किया। 51 लाख से अधिक लोगों को होगा फायदा। पीएम मोदी के जन्मदिन से एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ का बयान, कहा 2014 के बाद से भारत में नियम कानून और शासन दोनों ही अच्छे। कल से बीजेपी चलाएगी सेवा संकल्प अभियान। गोरखपुर में सीएम योगी की चुनावी हुंकार, कहा पहले एसपी और कांग्रेस सरकार में अपराध और डर, आज का यूपी दंगा और कर्फ्यू मुक्त, 1 लाख सरकारी नौकरी देने का किया वादा। लखनऊ में एक्स गर्लफ्रेंड को कार से टक्कर मारकर भागने वाला शाहनवाज हिरासत में, यश ठाकुर नाम से प्रेम जाल में फंसाने का आरोप, विरोध करने पर की वारदात।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल देश में शिक्षा को लेकर हुए सियासी जागरण पर है। जब से दिल्ली में जंतर बंतर का आंदोलन हुआ है, जेनजी और जेन अल्फा के मुद्दों की चर्चा होने लगी है। कॉकरोच जनता पार्टी वाले चुनिंदा स्कूलों का ऑडिट करने लगे हैं। राहुल गांधी छात्रों की गूंज करने चल पड़े हैं। बीजेपी सरकारें स्कूलों पर ज्यादा ध्यान देने लगी है। आज खबर आई है कि अब यूपी के 14,000 से अधिक बेसिक स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाया जाएगा। 300 करोड़ रुपए का फंड भी दिया जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी इसे अपनी कामयाबी बताती है कि 15 सितंबर से यूपी के नोएडा में स्कूल ठीक करो अभियान क्या शुरू किया, सरकारी स्कूलों को स्मार्ट बनाने की होड़ लगने लगी। हालांकि इस 300 करोड़ वाले फंड का ऐलान फरवरी में ही वित्त मंत्री ने बजट में कर दिया था, जिसमें समय शिक्षा के लिए आवंटन किया गया था। लेकिन कल योगी कैबिनेट की बैठक के बाद खबर आई है कि अब और 14,000 प्राइमरी स्कूल स्मार्ट बनाए जाएंगे। तो पढ़ाई लिखाई पर एक सियासी लड़ाई उधर चल रही है। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में 19 सितंबर को राहुल गांधी छात्रों की गूंज करने वाले हैं। बड़ी मुश्किल से इजाजत मिल पाई है, 10 लाख रुपए देने भी पड़े हैं। अभी पुलिस की परमिशन बाकी है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि 10 लाख कुछ ज्यादा अहम नहीं है, युवाओं की बात ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस ने तमाम आंकड़े जमा किए हैं कि देश में युवा कैसे घट रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, बच्चे स्कूल से दूर हो रहे हैं, कांग्रेस कॉलेज में टीचर नहीं मिल पा रहे हैं और नौजवानों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। और यही चर्चा कांग्रेस अब सियासत में आगे बढ़ाना चाहती है। तो सवाल आखिरकार यह है कि देश में स्कूलों की ओर लौटती राजनीति की चर्चा क्या सचमुच में शिक्षा की बेहतरी के लिए की जा रही है, या इसके पीछे सिर्फ सियासत बनकर रह जाएगी, क्योंकि यह चुनिंदा चर्चा हो रही है। और क्या आने वाले दिनों में जेनजी और जेन अल्फा के मुद्दे सरकारी नीतियों के केंद्र में रहने वाले हैं? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं।

0: कॉलेज क्लासरूम टीचर पढ़ाई रोजगार, इसकी इतनी चर्चा देश में हो रही है पहले नहीं देखी गई। चाहे वो यूपी में तेजी से स्मार्ट होते प्राइमरी स्कूलों की खबर हो या देश भर में छात्रों की गूंज करते घूम रहे राहुल गांधी की राजनीति।
1: हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम।
0: अटल बिहारी वाजपेयी के स्कूल चले अभियान के बाद पहली बार स्कूल सियासी चर्चा का मरकजी मुद्दा बना है। यूपी के 32,000 स्मार्ट बेसिक स्कूलों की फहरिस्त अब और लंबी होने वाली है, क्योंकि योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक के बाद स्कूलों के कायाकल्प को लेकर बड़ा ऐलान किया है कि प्रदेश के 14,429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय अब स्मार्ट स्कूल बनेंगे। इसके लिए शुरुआती तौर पर 300 करोड़ की धनराशि मंजूर भी कर दी गई है। इससे बेसिक स्कूलों में स्मार्ट क्लास बोर्ड, ICT लैब और डिजिटल संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। शिट्रॉन इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी को स्मार्ट क्लासेस का काम सौंपा गया है। इसमें हर स्कूल को 2,07,910 रुपए मिलेंगे, यानी अब इन स्कूलों में स्मार्ट टीवी, 3D एनिमेशन और डिजिटल कंटेंट के साथ क्लासरूम को स्मार्ट बनाया गया है। 1,33,000 से अधिक बेसिक स्कूलों में से भले 32,000 स्कूलों में ही सही, लेकिन यूपी में स्कूली शिक्षा को स्मार्ट बनाने की दिशा में योगी सरकार ने पहल जारी रखी है।
2: कोई मानता था पहले कि बेसिक शिक्षा के परिषद के विद्यालयों में वहां कोई सुविधा होगी, कठिन था, जर्जर विद्यालय थे, शिक्षक नहीं थे, भवन अपने आप में जर्जर थे। भाई जैसा राज्य बीमारू है तो बीमारू वही है जहां पे जर्जर व्यवस्था सब कुछ थी, सरकारें ही जर्जर थी, तो सिस्टम अपने आप जर्जर हो जाता, और यही था। हम लोगों ने बेसिक में ऑपरेशन कायाकल्प चलाया
0: और बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए चलाए गए ऑपरेशन कायाकल्प का असर 2021 के बाद ऐसा हुआ कि यूपी में अब 32,000 से अधिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस चलती हैं, 15,000 से अधिक विद्यालयों में ICT लैब की सुविधा उपलब्ध है, 1,129 विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा भी दी जा रही है। प्रदेश में 2,61,000 से अधिक शिक्षकों को टैबलेट उपलब्ध कराए जा चुके हैं। लेकिन विपक्ष 14,000 स्कूलों को स्मार्ट बनाने के लिए 300 करोड़ के फंड के ऐलान को चुनावी झांसा कहता है, क्योंकि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 11 फरवरी 2026 को ही कह दिया था कि समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत राज्य निधि से सभी प्राथमिक स्कूल के रूप में विकसित करने की नई योजना हेतु 300 करोड़ प्रस्तावित कर दिया गया है। शिक्षा पर सियासत की गूंज मध्य प्रदेश में भी सुनाई दे रही है। यहां राहुल के कार्यक्रम के लिए नेहरू स्टेडियम की जगह IDA मैदान का विकल्प 5 शर्तों और 10 लाख की जमानत पर 12,000 वर्ग मीटर का मैदान कार्यक्रम के लिए मिला है।
3: अपोजिशन लीडर को देश के जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जनता के द्वारा प्रदत्त जो लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़ा पद है, उसको परमिशन नहीं दे रहे। जैसे तैसे परमिशन दी, 10 लाख रुपए की फीस जमा कराई। कभी आपने सुना किसी से, किसी नेता से 10 लाख रुपया की फीस ली हो?
0: ऊपर से 5 तरह की शर्तें भी आयत की गई। IDA की केवल खाली जमीन में ही कार्यक्रम होगा, जरूरी सुरक्षा का इंतजाम आयोजक खुद करेंगे, सभी संबंधित विभाग से अनुमति आवश्यक होगी, ध्वनि विस्तार यंत्र के लिए जरूरी अनुमति चाहिए होगी, तय तारीख के अलावा जमीन इस्तेमाल हुई तो लीज रेंट देना होगा। फिर भी अभी मंजूरी बाकी है, क्योंकि पुलिस पुख्ता इंतजामों को लेकर पुरसकून नहीं हो सकती है।
4: हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो है, वरिष्ठ अधिकारी और आयोजनकर्ता के बीच लगातार बात चल रही है और उसके बाद संतुष्ट होने पर उनको अनुमति प्रदान की जाए।
0: लेकिन ये तय हो चुका है कि 29 सितंबर को राहुल गांधी इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं। उससे पहले कांग्रेस ने डेटा इकट्ठा कर लिया कि देश में 10 करोड़ युवा कॉलेज तक नहीं पहुंच पाए, 12 करोड़ बच्चे स्कूल पूरा नहीं कर पाए, 8 करोड़ 70 लाख युवा न पढ़ रहे, न रोजगार में है, न किसी ट्रेनिंग में, जन्म दर 2.1 से नीचे जा चुकी है, यानी युवा आबादी घट रही है। 2021 में 27.3% युवा आबादी 2026 में 25.8% पहुँच चुकी है। ऐसे ही चलता रहा तो 2047 तक 15-16% हो जाएगा। उधर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार दावा कभी 23,000 स्कूटी बांटने, तो कभी समग्र शिक्षा पर 36,000 करोड़ खर्च करने, कभी मेधावी बच्चों के लिए सुपर 100 स्कीम से लेकर संदीपनी विद्यालय तक की कामयाबियां गिनाती है। इधर कांग्रेस निराशाजनक आंकड़े निकाल लाई है, कहती है कि देश में 47.2% बच्चे ही 12वीं तक पढ़ पाते हैं, क्योंकि 44% घर का खर्च चलाने के लिए कामकाज में जुट जाते हैं, ऊपर से स्कूल भी बंद हो रहे हैं। 2014-15 में 11,07,000 स्कूल थे, जो 2025-26 में 10,05,000 बचे थे, यानी 1,02,000 स्कूल बंद हो गए, और इसमें MP में 30,650 स्कूल कम हुए, और पूरे देश में टीचरों की भी 16% की कमी है, जिसमें MP में 19, UP में 22, उत्तराखंड में 24, बिहार में 32% कम टीचर है। 1,843 स्कूल एक टीचर के भरोसे है, जिसमें 33,77,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। 5,663 सरकारी स्कूलों में कोई

0: कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी देश के विपक्ष के नेता गैर राजनीतिक रूप से एक सामूहिक प्रयास कर रहे हैं
1: और उसका नाम है छात्रों की गूंज, जिसे कांग्रेस गैर सियासी बताती है। कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एंट्री भी नहीं होती है, लेकिन बीजेपी से झूठ की गूंज बताती है और राहुल के कार्यक्रम को मनोरंजन।
2: हमारे यहाँ लोगों ने, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम शौचालय बनाएंगे, तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। स्वच्छ भारत का जो अभियान चलाया तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। क्या है ये, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, नगर पालिका और नगर निगम का?
1: और मनोरंजन में ही कांग्रेस ने वो सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं जो देश के युवाओं के मुद्दों से मेल खाते हैं। कांग्रेस आरोप लगाती है कि आज देश की उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सिर्फ 30% है, सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों में 34% प्रोफेसर पद खाली है, IIIT में 54, IIT में 39%, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 29% टीचिंग पोस्ट खाली है, MP के 17 सरकारी यूनिवर्सिटी में 81% पद खाली, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 74% पद खाली है। हालांकि मोहन यादव की सरकार ने MP को शिक्षित करने के लिए 45,358 करोड़ रुपए का भारी भरकम 13.7% बजट रखा है, फिर भी कांग्रेस याद दिलाती है कि कमलनाथ सरकार ने 15% बजट शिक्षा के लिए रखा था। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
3: एक डेटा हम भी दे देते हैं, क्योंकि UDISC के रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में सिर्फ 30% यानी 30% स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम्स उपलब्ध है और उसमें भी कोई बड़ा राज्य नजर नहीं आता। तो कहीं ना कहीं अभी भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कितने पिछड़े हैं स्कूलों में, ये डेटा ये साफ दिखा देता है। लेकिन चर्चा यही होनी चाहिए कि क्या सचमुच में शिक्षा अब फोरफ्रंट पर आया है, या क्लासरूम्स का मुद्दा चर्चा में राजनीतिक पार्टियां भी लाना चाहती है, महज एक सियासत बनकर यह रह जाएगा। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं, अभय दुबे कांग्रेस पार्टी की तरफ से चर्चा में शामिल होंगे, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से इस चर्चा में आएंगे और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की भूमिका रखेंगे। समाजवादी पार्टी को लगता है कि जो 300 करोड़ का ऐलान हुआ है वो महज चुनावी ऐलान के तौर पर रह जाएगा। सुधीर सांगवान CJP के प्रवक्ता भी इसमें आएंगे, क्योंकि CJP दरअसल इस पूरे माहौल का क्रेडिट लेना चाहती है। उनका कहना है कि जैसे ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के भीतर अनाउंस किया, घोषणा की कि वो क्लासरूम्स का ऑडिट करेंगे, उसके बाद यूपी सरकार से ये घोषणा की गई है। 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहूंगा। पहला सवाल, क्या जंतर मंतर आंदोलन के बाद शिक्षा पर चर्चा गंभीर है या राजनीतिक पार्टियों की महज सियासत है? दूसरा सवाल, क्या जेनजी, जैन अल्फा और शिक्षा के नाम पर CJP और कांग्रेस चुनिंदा राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि यही CJP जब पंजाब जाती है तब उन्हें सब कुछ ठीक ठाक लगता है, लेकिन बाकी राज्यों में उनका ऑडिट कुछ और कहता है। तीसरा सवाल, क्या देश की सरकारों के लिए शिक्षा प्राथमिकता का मुद्दा बन पाएगा? और यही सबसे बड़ा अहम सवाल होगा। चर्चा की शुरुआत करते हैं शिवम त्यागी। डिस्कनेक्ट हो गए, दोबारा मेरे ख्याल से वो जोड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं समाजवादी पार्टी से, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लगता है कि 300 करोड़ का जो ऐलान किया गया है ये सिर्फ चुनावी ऐलान है। पॉजिटिव भी देख लीजिए कभी कभी, अनुराग भदौरिया, अगर सरकार कहती है कि हम स्मार्ट क्लासरूम्स बनाएंगे, स्कूल्स बनाएंगे, 14,000 स्कूलों को हम लोग स्मार्ट स्कूल्स बनाएंगे, तो अच्छी बात है, स्वागत करिए उसका।
4: बिल्कुल, ये तो बात तो अच्छी है, लेकिन बात तो 10 साल पहले कर देनी चाहिए थी। ये तो आपको आज ही क्यों याद आया? क्योंकि आप छात्र, चूंकि अपने अधिकार को, जैन जी अपने अधिकार को समझ गया है। जब जैन जी अपने अधिकार को, अधिकार मांग रहा था, जंतर मंत्र पे जब आंदोलन कर रहा था, तभी सरकार को समझ जाना चाहिए था ना। तो कहते ना, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, अब तो चली चलाई की बेला है, 3-4 महीने बचे, कितनी स्मार्ट क्लास बना लोगे? मुझे तो आपका एक शीर्षक बहुत अच्छा लगा, पढ़ाई लिखाई सियासत पे आई, तो हमने भी उसी में 2 लाइन जोड़ दी बैठे बैठे, पढ़ाई लिखाई सियासत पे आई, युवा की आवाज नई रोशनी लाई, किताबों से निकले सवाल जब, राजनीति बदलने की शुरुआत हुई तब। अब राजनीति देश की कैसे बदल रही है, देखिए आप, जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी लगातार देश के अंदर में धर्म के नाम पे राजनीति कर रही थी, नफरत के नाम पे राजनीति कर रही थी, आज वो राजनीति को छात्रों ने और विपक्ष के नेताओं ने मिलके उस राजनीति को कहां पे लेके आ गए, हम शिक्षा पे लेके आके खड़ी कर दी, बेरोजगारी महंगाई पे लाके खड़ी कर दी। अब इनकी मजबूरी हो रही है, जो भाषण किस तरह के होते थे पहले, भाषण कैसे होते थे आप जानते हो, अब वो भाषण भाषा शैली बदल रही है, अब स्मार्ट

0: क्लास की बात होने लगी। आप 10 साल पहले का आप भाषण सुनाइए मुख्यमंत्री जी का या बीजेपी के बड़े नेताओं का, क्या कभी स्मार्ट क्लास की बात की उन्होंने? अगर स्मार्ट क्लास की बात की होती तो शायद आज वो बच्चे जो जैन अल्फा हैं रोड पे खड़े होकर नहीं बोलते कि डीएम साहब हमारे स्कूल की रास्ता बनवा दो, डीएम साहब हमारे स्कूल में पानी भर जाता है, जाने को रास्ता नहीं है, फिसल के गिर जाते हैं, पैर टूट जाता है, वहां पे सही से किताबें नहीं है, पैर में जूते नहीं है, उनको आपने देखा होगा समय से टीचर नहीं आते हैं, उनका जो मिड डे मील है उसमें किस तरह का खाना उन्हें मिलता है। तो सवाल उठता है इस पे अगर पहले ही काम हुआ होता जो समाजवादी लगातार कह रहे थे, समाजवादी यही तो बात कर रहे थे, समाजवादी अपना काम गिना रहे थे कि हमने सरकार जो हमारी सरकार थी तो हमने क्या क्या काम किए थे, विकास किए, तो हम विकास की राजनीति कर रहे थे, ये कब कर रहे थे? हम इनसे रोजगार
1: थोड़ा क्रेडिट तो जरा जंतर मंतर को दीजिएगा। नहीं नहीं, जंतर मंतर के पहले तो आप वोटों को कैसे जोड़ा जाए, पीडीए कैसे बनाया जाए, मुस्लिम यादव समीकरण कैसे बनाया जाए, जाति के समीकरण के आधार पर चुनाव कैसे जीता जाए, उसी में आप लोग भी तो लगे हुए थे। चलिए सरकार की बात हम करेंगे, लेकिन आपकी बात भी तो करिए, आपको भी तो उस एजेंडे पर लाकर रख दिया है। जो जो कुछ युवाओं को सूझा की बाही जाके स्कूलों का ऑडिट करेंगे, वो आपके नेताओं को कभी नहीं सूझा है।
0: अब साहिब जी मेरी सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने प्राइमरी स्कूल मॉडल बनाए थे, स्मार्ट रूप के बनाए थे। समाजवादी एकमात्र पार्टी है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार लैपटॉप बांट रहे थे, आपके चैनल भी दिखाते थे, हम सरकार में नहीं थे, लेकिन जो भी बच्चे अच्छे नंबर से पास होते थे 10th के 12th के उनको हम लैपटॉप देते थे। आप देखिए कितने आज भी देते हैं, लगातार हम
1: नंबर है आपके पास,
0: हम सरकार में नहीं है।
1: 2012 से 2017
0: जब तक डिबेट
1: कितने स्मार्ट स्कूल बने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, कितने स्मार्ट स्कूल बने?
0: सुन तो लीजिए,
1: क्या बजट था
0: वो आपको नहीं, वो आपको भी मैं दे दूंगा। दूसरा, हम सरकार में 2017 से नहीं है, उसके बावजूद लगातार हम समाजवादी लोग, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लैपटॉप बांट रहे हैं, उनकी संख्या भी बता दूंगा कि लगातार जो बच्चे 10th में 12th में जो बच्चे उत्तीर्ण हो रहे हैं, अच्छे मार्क्स ला रहे हैं,
1: मुझे आप स्मार्ट स्कूल के नंबर बता दीजिएगा बस।
0: की बात की है, बिल्कुल बताएंगे आपको, बिल्कुल अभी आपको
1: 2012 से 2017 के बीच में स्मार्ट स्कूल का नहीं, स्मार्ट स्कूल का आंकड़ा बता दीजिएगा, क्योंकि ये आंकड़े बड़े दिलचस्प है और उसमें कोई भी बड़ा राज्य नहीं है जो 30% क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम्स के तौर पर पूरे देश में जानी जाती है। उसमें नंबर एक पर छत्तीसगढ़ है, जहां पर 95% जो क्लासरूम है वो स्मार्ट रूम कह सकते हैं। उसके बाद लक्षद्वीप का नंबर आता है, फिर पंजाब है, दिल्ली है और उसके बाद पुडुचेरी है। ये स्थिति है आज देश में स्मार्ट क्लासरूम्स की। लेकिन शिवम त्यागी, एक बात आपको भी तो माननी पड़ेगी कि जिस तरीके से हमीरपुर, फतेहपुर, लखनऊ में छात्रों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार को भी लगा कि फरवरी में 300 करोड़ का बजट हमने रखा था, पहले ही आउट को दिखाया था हम लोग ने बजट में, उसको अब खर्च करने का वक्त आ गया, वरना यही मुद्दा चल पड़ेगा।
2: नहीं साहिल जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो एक चीज और कहना चाहता हूं यहां पर कि जब आप किसी भी राज्य की स्थिति देखेंगे और उसका इवैल्यूएशन आप करेंगे तो जाहिर है उसकी मूलभूत सुविधाएं क्या रही, पहली सरकारों में क्या रहा, अभी में क्या है, उसको देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी आई तो 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में मात्र 36% बुनियादी सुविधाएं उत्तर प्रदेश के स्कूलों में हुआ करती थी। 4,336 नए स्कूल भवन हमने बनाए, 7,229 जर्जर स्कूलों का पुनर्निर्माण हमने कराया, 1,32,000 जो परिषदीय विद्यालय थे उनका जो पूरा कायाकल्प था उसको अलावा वो किया, ऑपरेशन कायाकल्प में अप्रोक्सीमेटली जो है 1,32,000 से ज्यादा स्कूल बढ़ाए, 1,22,255 यूनिट्स हमने बनाई। इसके अलावा 51,000 विद्यालयों में चार दीवारी तक नहीं थी, खुले में स्कूल चल रहे थे, उनको बेहतर किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जाहिर है 4.5 लाख से ज्यादा जो शिक्षक थे उनको FLN के अंतर्गत लेकर आए डिजिटल शिक्षा प्रणाली में। इसके अलावा 150 जो विश्वविद्यालय थे हमने हर जिले में दो, वो मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट योजना के तहत लेकर आए। अब दो चीजें इसमें, हां इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और सुधार की आवश्यकता है बिल्कुल है, और बेहतर करने की आवश्यकता है बिल्कुल है, लेकिन स्थितियां इतनी खराब थी उत्तर प्रदेश में कि जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जैसे कि टॉयलेट, जैसे कि एक बेसिक चार दीवारी, जैसे कि एक बेसिक क्लासरूम, जैसे कि एक बोर्ड, वो मात्र 36% थे। और इन्होंने एक और चीज कही कि अब शिक्षा की बात होने लगी। हम चाहते हैं कि भाई केंद्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक शिक्षा की बात हो, बेहतर है हमारे लिए। मैं तो कहता हूं हमारे ये दाग भी धुल जाएंगे जो आप ये तमाम तरह की बातें करते हो कि शिक्षा की बात ही नहीं करते। जितना हमने काम किया है हम बताएंगे, जितना आप काम करके गए थे वो बताएंगे, जाहिर है जनता अपने आप देखेगी और तय कर लेगी और चुनाव करेगी। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब इसकी बात हो तो राज्य दर राज्य, केंद्र से लेकर पहली सरकारें, अभी की सरकारें, सबका मिलान बराबर हो और एक एग्जाम्पलरी सेट हो कि भाई वहां पर ये कितना हुआ था, वो कितना हुआ था। अनुराग जी के सामने मैं उत्तर प्रदेश का डेटा लेकर बैठा हूं, केंद्र का भी लेकर बैठा हूं, आइए चर्चा करते हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि सुधार की आवश्यकता है, बिल्कुल है, बहुत सुधार की आवश्यकता है, शिक्षा प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन आंकड़े जिस तरीके का राज्य छोड़कर गए थे और जिस तरीके का राज्य बना उसमें बेहद बदलाव है, वो आपके सामने है।
1: यानी आप कहीं ना कहीं कंपैरिजन करना चाहते हैं पिछले की सरकारों के मुकाबले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद क्या बदलाव इसमें हुआ है। अभय दुबे ने हाथ खड़ा किया है, उनको बात करनी है मेरे ख्याल से उसमें, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सीजेपी को एक मौका देना चाहिए। सुधीर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुधीर, आप कहां से क्रेडिट ले रहे हैं कि नोएडा में आपने कार्यवाही वहां पर शुरू की, उसके बाद योगी जी की सरकार ने तुरंत 300 करोड़ दे दिए। एक मिनट जरा उससे पहले, लेकिन शिवम त्यागी जरा एक ये बात भी क्लैरिफाई कर दीजिएगा कि फरवरी में बजट में जो 300 करोड़ का आवंटन किया गया था ये वही है कि उससे अलावा अलग से 300 करोड़ दिए जाएंगे जिससे हर स्कूल को करीब 2 लाख रुपए मिल पाएंगे। अब मैं उस चर्चा में नहीं जाऊंगा कि 2 लाख में कैसे स्कूल स्मार्ट बन पाएगा, सिर्फ 2 लाख में, लेकिन ये 300 करोड़ अलग से हैं या वही 300 करोड़ है जो फरवरी में आवंटित किए गए थे, ये जरा क्लैरिफाई कर दीजिए। उसके बाद सुधीर आप भूमिका रखिए, फिर अभय दुबे जी के पास।
2: 300 करोड़ का बजट आवंटन हुआ है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि 2 लाख रुपए से कैसे होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जिन स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी, जिन स्कूलों में हालात इतने खराब थे कि एक बेसिक टॉयलेट नहीं था, उन स्कूलों के लिए टोटल बजट में फर्क हुआ है। जब हम 2017 में आए टोटल जो शिक्षा बजट था वो 62,351 करोड़ रुपए था, लेकिन आज वही बजट जो है 108,154 करोड़ रुपए हुआ है। बजट लगातार बढ़ाना, समय पर लगातार उसमें जो बजट्स हैं वो पंप इन करना, चीजों को बेहतर करते रहना, अलग अलग योजनाओं के तहत चीजों को बेहतर करते रहना, यह किसी भी सरकार की एक सतत प्रक्रिया है, वही हम कर रहे हैं। जहां तक बात सीजेपी का विषय है, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, हम ऐसा तो नहीं है कि भाई सीजेपी अब से 5 साल पहले थी, जब हम 2017 में आए, 9 साल पहले टू बी प्रिसाइज, तो स्टेट बजट मात्र 62,000 करोड़ रुपए था। जब हम अब सरकार में आए 2017 में, उस समय सारी स्थितियां 36% थी, यानी कि 100 स्कूल अगर थे तो 36% वहां पर वॉशरूम्स थे, 100 स्कूल्स थे तो 36% वहां पर स्कूलों की 4 दीवारी थी, 100 स्कूल थे तो सभी क्लासरूम्स में 36% जो है क्लासरूम्स बने हुए थे। उसको लेकर आज अगर हम बेहतर करके यहां तक पहुंचे हैं, शिक्षा का बजट बढ़ाया है, चीजों को बेहतर किया है, और स्मार्ट क्लासरूम्स की भी अगर हम बात करें तो 1,25,000 बनाने का जो है एक प्रॉमिस हुआ है और उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो जाहिर है सरकार ने बदलाव किया है और परिवर्तन होने की आवश्यकता है। हाँ बिल्कुल है।
1: सुधीर
0: जवाब दे दो,
1: उनके मन में पहले से था, आप बेवजह क्रेडिट ले रहे हैं, आपके नोएडा में जाने का और इसका कोई लेना देना है नहीं उससे, उनके मन में पहले से था इस बात को।
3: साहिल जी और तमाम पैनलिस्ट को और देख रही जनता को, जितने भी हमारे युवा नौजवान साथी हैं, सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बधाई देना चाहता हूं कि आज देश के सबसे बड़े हिंदी न्यूज चैनल्स के ऊपर शिक्षा के ऊपर डिबेट हो रही है, ये आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। और दूसरी चीज जो बात आपने पूछी, जो सीएम त्यागी ने भी बताया, तो हमारा क्रेडिट लेने का कोई मंशा नहीं है, हम कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते आपसे। दूसरी बात कि जब हम बात स्कूलों की कर रहे हैं तो हम बात बुनियादी सुविधाओं की कर रहे हैं कि 6 से 14 वर्ष के आयु तक के हर बच्चे को फंडामेंटल राइट है कि उसको फ्री और क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। अब आपके आंकड़े क्या कहते हैं, आपके खिताबी आंकड़े क्या हैं, उन पे मैं जाना नहीं चाहता। आपके आंकड़ों के अनुसार मैं सिर्फ इतना आपके जहन में डालना चाहता हूं कि लास्ट माइल स्कूल के ऊपर करीब 36,000 स्कूल्स यूपी में ही ऐसे हैं जिनमें कई सारे रूम, 1 रूम या 10 रूम उसका मैं कहना नहीं चाहता, और मेरे पास अभी उसका आधिकारिक ये आंकड़ा नहीं कि उन 36,000 स्कूलों में 1 रूम है या 10 रूम जर्जर हैं। ऐसे आंकड़े मैं आपके पास मैं बाद में आपको जरूर दे दूंगा। उसके अलावा ये मैं, आप स्मार्ट स्कूल की तरफ जा रहे हो, अच्छी सुविधा है, अच्छी पहल है, लेकिन उससे अलग जो बुनियादी चीजें हैं देश की उनके ऊपर हमें बात कर लेनी चाहिए, जो शिक्षा की बुनियादी चीजें हैं उन पर बात कर लेनी चाहिए कि वॉशरूम, टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी, पंखे, उन सब चीजों पर हमें जरूर बात करनी चाहिए, और उसके बाद हमें टीचर्स पे बात करनी चाहिए, फिर क्वालिटी पे बात करनी चाहिए एजुकेशन की। और सबसे लास्ट, जो हमने अपने फंडामेंटल राइट्स को ही हटा दिया है, जो इक्वलिटी हमें देता है स्टूडेंट्स में, वो हमने हटा दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ का 50% के आसपास का छात्र जो प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट कर दिया है और 50% जो सरकारी स्कूल में बच गया है, वो बहुत बड़ी इम्पेरिटी क्रिएट कर रहा है। इक्वलिटी, जो इक्वलिटी का जो फंडामेंटल राइट्स हमें मिला है, उसको बिल्कुल तार तार कर दे रहा है, तोड़ दे रहा है। तो इससे मुझे नहीं पता कि ये बहस कहां तक जाएगी, चुनावी मुद्दे में आएगी या नहीं आएगी, लेकिन मैं ये कहता हूं, अगर पॉलिटिकल पार्टीज शिक्षा व्यवस्था को पहल बना के इसी पर डिस्कशन करें और बुनियादी सुविधाओं को पहल बना के इसी पर डिस्कशन करें, तो ये 2 महीने पहले हुए सीजेपी के आंदोलन की इस देश के तमाम युवा जेंजीज की
1: नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये तो पहले से हम कर रहे थे। सुधीर, आपने मेरा सवाल सुना कि नहीं? वो तो कह रहे हैं हम तो पहले से कर रहे हैं, उन्होंने आंकड़े भी रखे हैं कि 62,000 करोड़ का बजट था, वो 108,000 करोड़ तक पहुंचा दिया, नंबर एक। दूसरी बात ये कि आपने भी तो यूपी को चुना है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं ना, और उससे पहले कई लोग ये कहते हैं, मतलब सुगबगाहट है इस तरीके से कि आशुतोष रांका और अखिलेश यादव मुलाकात होती है 7 तारीख को और उसके बाद आपका अभियान शुरू हो जाता है नोएडा के भीतर, 3 सितंबर को। ये इसका कोई कनेक्शन नहीं है ना, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई नोएडा के आपके इसका कोई कनेक्शन नहीं है, हम तो पहले से कर रहे थे।
3: सर, इससे पहले भी देश में ना सारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की लगभग नॉर्थ इंडिया का कॉम्प्लेक्स देखे तो यहाँ पे है। राजस्थान में हम जाते हैं, 1-2 स्कूल हमने तबेले के स्कूल दिखाते हैं, राजस्थान सरकार 12,500 करोड़ रुपए तुरंत रिलीज कर देती है। हरियाणा में हम जाते हैं, हरियाणा की हम रिपोर्टिंग करते हैं, 400 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार जारी कर देती है और 200 करोड़ इमीडिएटली मेरे ट्वीट के ऊपर ही रिलीज करके देते हैं वो। उसके बाद हम राजस्थान, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में हमारी सौरभ दास की कल क्या मीटिंग्स देख लीजिए कि बहुत कुछ 2-4 स्कूलों में उन्होंने विजिट की है, उसके बाद एक आंकड़ा जारी होता है यूपी सरकार की तरफ से। तो मुझे नहीं पता ये हमारा इंपैक्ट है या हम इसको क्रेडिट लेना चाहिए, क्योंकि आप ये फिगर्स देख लीजिए कि
1: आप ले रहे हैं किस मुहिम में। आपने आपने ट्वीट देखा कि नहीं? आप तो सोशल मीडिया पर ऑलरेडी क्रेडिट ले रहे हैं, जवाब दीजिए, उसके बाद अभय दुबे बोलेंगे। जी जी बोलिए।
3: हाँ, तो क्रेडिट ले रहे हैं
2: सीजेपी में, वो आप चाहे वो आशुतोष रांका हो, प्लीज मुझे मौका दीजिए, चाहे आशुतोष रांका हो और चाहे सौरभ दास हो, वो हिपोक्रेट हैं, झूठे हैं। मेरे पास डेटा है, मैं वही कह रहा हूं कि सीजेपी में चाहे वो आशुतोष हो चाहे वो सौरभ दास हो, वो झूठे हैं, हिपोक्रेट हैं। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। आशुतोष रांका ने अपने ट्विटर पर लिखा, यह रामपुरा का वही स्कूल है जो भैंसों के तबेले में चल रहा था, वहां अब काम शुरू हो गया है। निरीक्षण के दौरान हम पर पत्थर फेंके गए, महिलाओं से मारपीट, गाड़ियों के कांच तोड़े गए, लेकिन जब हमारे बच्चों के लिए अच्छा स्कूल बन जाए तो सब वर्थ इट होगा। भाई, जब आप वहां गए उससे पहले वहां पर ये ऑर्डर पास हो चुका है, सरकार 12 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से, 6 लाख रुपए विधायक निधि से हो चुके थे। आपको क्रेडिट लेना है लीजिए, हमारा काम एजुकेशन ठीक करना है, आपका काम क्रेडिट लेना है। एग्जांपल और दीजिए। हाँ, एग्जांपल और देता हूं आपको। इन्होंने कुछ टीचर्स और कुछ विषयों पर बात कही, पंजाब जाकर आम आदमी पार्टी का सॉफ्ट लॉन्च कर आप हमें बता रहे हैं आप शिक्षा बेहतर करना चाहते हैं। उसी पंजाब में 31,370 टीचर्स नहीं है? बताइए कितने सवाल पूछे। किसी भी एक ट्विटर लाइन पर अगर दिखाई दे जाए मुझे सौरभ दास के, दिखाई दे जाए आशुतोष रांका के, दिखाई दे जाए दीपके के, दिखाई दे जाए, नहीं दिखाई देगी। उसी पंजाब में 70% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, बताइए 1,113 प्रिंसिपल की कमी है अगर आपने कुछ किया हो उसमें। चंडीगढ़ से 10 किलोमीटर दूर सुहाना, इंडिया टुडे की रिपोर्टर है कमलजीत सिंधु, स्कूल में महिलाओं की बच्चियों की बाथरूम पर छत नहीं है, ये तस्वीर है, ये नहीं दिखा आपको? इंडिया टुडे की एक और रिपोर्ट है, यहां पर भी दीवारें नहीं है, ये नहीं दिखा आपको? इंडिया टुडे की
1: तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, बीच में मोहाली की स्कूल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मोहाली की स्कूल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं।
2: हाँ, मैं वही मैं कह रहा हूं, मैं
1: कहने का मतलब यह है सुधीर,
2: साहिल जी आपके लिए
1: कहने का मतलब यह है कि पंजाब में चंगा सी और उत्तर प्रदेश के भीतर, ये बात अच्छी है कि स्कूलों का इस तरीके से ऑडिट होना चाहिए, लेकिन पंजाब में अच्छा और बाकी जगह पे बुरा।
2: मैं 10 सेकंड में साहिल जी,
3: फिल्म की थोड़ा सा बैरियर रखिए आप,
2: मैं 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। हिपोक्रेसी बस यही है कि यहां पर ये बोलते नहीं।
1: सुधीर,
3: आपको कुछ भी, आपको हिपोक्रेसी लगे, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि वो स्कूल 1 साल पहले ही तबेले में चल रहा था, 1 साल पहले की रिपोर्ट थी। उसके बाद आपने कहा कि सैंक्शन हो गए हैं, सैंक्शन तो हरियाणा में भी बहुत दिन पहले हो गए थे, लेकिन कार्रवाई कब हो रही है? सीजेपी के साथी या दूसरे साथी स्कूल में विजिट कर रहे तो कार्रवाई क्यों कर रहे हो आप लोग, पहली बात। दूसरी चीज, आपने कहा पंजाब में हमने अच्छे स्कूल दिखाए, आपने कहा कि हम अच्छे स्कूल दिखा के हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। चलो मैं आपकी बात को ऊपर कर लेता हूं, आपकी बात को हम आपके नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताना चाहते हैं। आपको भी पता है कि पंजाब के स्कूल 27वें नंबर से पहले नंबर पे आए हैं, मैं उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता, आप ले लीजिए उसका क्रेडिट। दूसरी चीज, मैं अगर पंजाब का कोई स्कूल दिखा के आ रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी पंजाब के दूसरे स्कूल क्यों नहीं दिखा रही है, क्यों विजिट नहीं कर रही है वहां पे? आप वहां पे ओपोजिशन में है सर, आप क्यों नहीं जाते हैं स्कूल विजिट करने के लिए? आप दिखाओ स्कूल विजिट करके, बहुत अच्छी बात है। हम खुद जाते हैं, मैंने खुद एक लेटर लिखा हरियाणा के मुख्यमंत्री को कि आप हमें बताए, हम आपके साथ मिलकर स्कूल ठीक करना चाह रहे हैं, हम अलग से नहीं, आप अपनी बता दीजिए, आप उनके साथ भेज रहे हैं। बहुत शानदार बात है, आप करो
1: अभय दुबे,
3: हम तो चाहते हैं कि आप इस मुहिम में शामिल
1: हो। आपको लगता है, आपको लगता है कि सीजेपी के आंदोलन के बाद शिवम त्यागी,
2: साहिल जी
1: चलिए 10 सेकंड, उसके बाद अभय दुबे जी को लाना,
2: 10 सेकंड, आप तो मेरे भाई हैं, थैंक यू।
1: 10 सेकंड,
2: मेरे मित्र, पहले तो सीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते ये मानने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आम आदमी पार्टी की मदद कर रहे हैं। दूसरी बात ये, जिस नीति आयोग के रिपोर्ट आप बात कर रहे हैं, वो नीति आयोग 2021 में पंजाब सबसे बेहतर कर रहा था, पंजाब और उत्तर प्रदेश की बराबरी नहीं है। और एक और चीज, आप झूठे और हिपोक्रेट क्यों हैं? नोएडा में आकर सौरभ दास कहते हैं कि नहीं, मुझे तो स्कूलों में जाने नहीं दिया गया, स्कूल बंद पड़े थे। ये नोएडा के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है राहुल परवार, आधिकारिक बयान है उनका भाई सामने, कोई स्कूल बंद नहीं है आपके लिए। और मैं फिर से,
1: अच्छी बात है,
2: अगर शिक्षा का
1: अगली बार से आप कोई स्कूल में विजिट पे जाएंगे तो आपको अटकाव नहीं किया जाएगा राजस्थान की, ये बात एकदम साफ हो गई।
3: आपने विजुअल्स नहीं देखे, टीचर अंदर से बता रहे हैं, आपने वो विजुअल्स देखा गेट बंद करने के बाद, अंदर से टीचर बता रहे हैं कि हाँ फोन किया गया है।
2: विजुअल पंजाब,
1: क्या आपको लगता है कि जंतर मंतर का असर है, छात्रों की गूंज का असर है, या ये सही वक्त है कि छात्रों के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे अब सतह पर आ गए हैं, अब खुलकर उसी पर बात होगी, किसी जाति समूह की बात नहीं होगी या धर्म की बात?
4: देश के लोगों, 27 मिनट तक आज तक पर साहिल जोशी झूठ बोलते रहे और कांग्रेस पार्टी को उसका अवसर तक नहीं दिया। ये झूठ बोलते रहे कि ये जो सारा राहुल गांधी की छात्रों की गूंज है, ये कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बाद हुआ। पहला हमारा कार्यक्रम
1: 17 जून 2026
4: को कोटा में हुआ।
1: सर मैंने कब बोला ये?
4: ठीक, आपने बोला, आप सुनिए,
1: मैंने कब बोला ये?
4: अच्छा मुझे मत बोलने दीजिए फिर, छोड़िए।
1: अरे मैंने कब बोला कि छात्रों की गूंज का कार्यक्रम आपके इसके बाद हुआ है?
4: बोलना है बोलने दीजिए, आपने बोला,
1: लेकिन मैंने नहीं बोला
4: कि छात्रों की गूंज,
1: आरोप लगा रहे, गलत आरोप लगा रहे।
4: आप सुनिएगा शो को, आप शो को सुनिएगा, देश के लोगों से कहता हूँ, प्रायोजित भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए।
1: पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं हम सर, पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, प्रोग्राम की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, प्रोग्राम की बात नहीं कर रहे हैं, आप गलत आरोप मत लगाइए अभय दुबे जी, कम से कम मुझ पर गलत आरोप मत लगाइएगा, बोलिए।
4: नहीं, मैं जो आरोप लगाता हूं प्रामाणिक लगा रहा हूं, लोक चैनल को देखिएगा। उसके बाद 17 जुलाई को देहरादून में कार्यक्रम हुआ, उसके पहले 7 अप्रैल 2025 को, उसके पहले 7 अप्रैल 2025 को राहुल गांधी जी बिहार गए आदिवासी छात्रों के बीच, और वहां से हमने प्रारंभ किया कार्यक्रम। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने 160 आंदोलन इस छात्रों की गूंज की तरह छात्रों की समस्या के किए हैं। आज मुझे दुख हुआ, मेरे देश के प्रधानमंत्री, जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी 24.69 करोड़ एनरोलमेंट हिंदुस्तान में है, स्कूलों का रिटेंशन रेट 47% रह गया है, अर्थात 13 करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर रहे हैं। अगर देश के 15 करोड़ में से 10.5 करोड़ बच्चे कॉलेज का चेहरा तक नहीं देखते प्रधानमंत्री जी, तब ये सवाल खड़ा किया हमने। यूनाइटेड किंगडम में वो परसेंट 80 है, यूनाइटेड स्टेट में 79 है, जर्मनी में 77 है, चाइना में 72 है। और डेमोग्राफिक डिविडेंड का प्रधानमंत्री जी राग अलापते हैं 2014 से, लाल किले की प्राचीर से, कि डेमोग्राफिक डिविडेंड 27% युवा हिंदुस्तान के। जब आप विकसित भारत का संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री 47 में, तब वो 15% रह जाएंगे। इसलिए राहुल गांधी कह रहा है कि आज ही वो सही वक्त है। आपने खबर चला दी उत्तर प्रदेश में इतने स्मार्ट क्लासेस, इतने स्मार्ट, पूछिए तो कितने वहां पर डिजिटली कनेक्टेड, कंप्यूटराइज कितने स्कूल है, पूछिए आदित्यनाथ जी से। तो वो स्कूलों की संख्या है 4,729 सिर्फ। 95,000 स्कूलों में से देश में ऐसे हैं जिसमें 6.2 लाख बच्चे जो एक शिक्षकों पर चल रहे हैं, एक शिक्षक पर, बताइए। और जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है हमारे, उसमें जो IITs में 39% वैकेंसीज है, IIIT में 54%, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 29%। प्रधानमंत्री जी, तो क्या हाल कर दिया इस देश का? अगर राहुल गांधी जी और प्रतिपक्ष के लोग कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को ठीक कीजिए, ये हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए, तो कहते हैं ये आ गए झूठ की गूंज वाले, ये आ गए नाराज फूफा। अरे आपको संकल्प लेना चाहिए था प्रधानमंत्री जी कि हाँ, राहुल गांधी ने कहा है अगले 5 साल में 4 साल में मैं सारी चीजें ठीक करके बताऊंगा। प्रोटेक्ट मत कीजिए उस बेदी लाल को, जो विधायक है उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी का साझा विधायक, जो घोषित रूप से कह रहा है कि मैं पेपर लीक कराता हूं। एक मंत्री कह रहा है कि आओ किस किस को एडमिशन चाहिए मैं करा दूंगा। अरे जेल के पीछे डालिए उनको, बच्चों का भविष्य लूटना बंद कीजिए। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी आ रहे हैं, वो प्रांत है
1: कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जब आज इंदौर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर उन्होंने कुछ आंकड़े रखे हुए हैं, वो आंकड़े हम यहां पर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आंकड़ों के जरिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, वो आंकड़े हम यहां पर दिखा रहे हैं, और उसी उन्हीं आंकड़ों को लेकर मुझे शिवम त्यागी के पास जाना है इसी सवालों को लेकर। लेकिन अभय दुबे जी, जो सवाल मैंने ओरिजिनली पूछा था, जो मेरा आप पर अभी आरोप है कि आपने गलत तरीके से उसको सुना है
4: जी।
1: नहीं नहीं, सुनिए अभी आप, अभय दुबे जी सुनिए अभी आप, आपने उसको गलत तरीके से सुना। मैं एक बार फिर आपको दोहराता हूं ताकि आपको सही तरीके से इस बात को समझ में आ जाए। आपने एक लंबी फहरिस्त गिनाई कि आपके NSUI ने, आपके युवक कांग्रेस ने अलग अलग जगह पर बड़े बड़े आंदोलन किए, और पिछले 12 साल में आपने कई सारे आंदोलन गिराने की कोशिश की, छात्रों की गूंज के कार्यक्रम भी आपने दिखाने की कोशिश की। राहुल जी ने कार्यक्रम किए हैं, उसके कार्यक्रम भी आपने बताने, देहरादून से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, चलिए ठीक है। आप मुझे एक बात को बताइएगा कि लेकिन ये बात आप ठुकरा सकते हैं कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद ही, जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद ही, जंतर मंतर के कोटा और देहरादून, जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद ही इस देश में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो पाया, और वो आंदोलन किसी और ने शुरू किया था। अगर आपके आंदोलन इतने कारगर थे तो सरकार आपके सामने झुकने को तैयार क्यों नहीं थी? तब ये मामला सतह पर आकर उस पर बातचीत क्यों नहीं हो रही थी? इस बात का भी जवाब दे दीजिए। ये सवाल दरअसल हम डालने की कोशिश कर रहे हैं।
4: साहिल जी,
1: जंतर मंतर के आंदोलन के बाद इस मामले पर बातचीत दोबारा शुरू हुई है, सारी पार्टियां इस पर प्राथमिकता से बात करना चाहती, ये मेरा दरअसल सवाल था।
4: राहुल गांधी तो वो नेता हैं जो प्रधानमंत्री जी को क्रेडिट देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी लीजिए ना क्रेडिट, आइए, क्यों नहीं कहेंगे? अगर आंदोलन किया देश भर के छात्रों ने, और इसमें आप देखिए राजनीति करने की कोशिश मत कीजिए, जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है चीफ जस्टिस के कमेंट के बाद बनी, वो तो खुद कह रहे हैं कि हम इसको ओन नहीं करना चाहते। राहुल गांधी वो नेता थे एकमात्र कि अगर छात्रों को पैलेट गन मारी तो वो गए थाने पर धरना देने, और ये साहस नहीं जुटा पाई जो पुलिस कह रही थी कि हम FIR दर्ज नहीं करेंगे, FIR दर्ज करनी पड़ी, कलेक्टिवली लड़ना पड़ेगा ना। राहुल गांधी जी कहां कह रहे हैं, वो तो चाहते थे प्रधानमंत्री कहे कि ये सारी समस्याएं आओ राहुल जी नेता प्रतिपक्षों आप और हम बैठते हैं। इतने गंभीर भयानक डाटा हैं कि आप ये देखिए कि जो 25,126 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हो गए, 30,900 मध्य प्रदेश में बंद हो गए, और ये कह रहे हमने नए स्कूल खोल दिए साहब। वे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का आपने सुना, कह रहे नए स्कूल, तो ये मैंने नहीं कहा, ये DISE जिसका डेटा आप कोट कर रहे हैं वो मैं कह रहा हूं। तो भयावह परिस्थितियां हैं पूरे देश की शिक्षा जगत की। प्रधानमंत्री जी से आग्रह है नकारात्मक बातें छोड़ दीजिए। भाजपा प्रवक्ता से भी कहता हूं मैं कि एक सकारात्मक आंदोलन राहुल गांधी जी ने चालू किया है, और किसी को भी श्रेय दीजिए, लेकिन देश का भविष्य को आप सुरक्षित रखिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाइए, आबादी युवाओं की लगातार कम हो रही है।
1: लेकिन सुधीर, आप मानते हैं कि जंतर मंतर के बाद ये चर्चा शुरू हुई है? क्योंकि कोई भी पार्टी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ये चर्चाएं आखिरकार उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता भी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी, हालांकि ये चर्चा का टॉपिक नहीं है, लेकिन जो मेरा ओरिजिनल सवाल था मैं उस पर एक बार फिर जाना चाहता हूं सुधीर, और उसके बाद अनिल दुबे उस पर बात करेंगे।
3: ये आप देखिए, आप डिसाइड करिए, और
4: पूरा देश इस बात को डिसाइड करेगा। राहुल गांधी की गूंज के कारण छात्रों की गूंज,
3: तो
4: मैं
3: वो
4: भी कहना चाहूंगा
3: कि आप सब डिसाइड करिए, पूरा देश देख रहा है, वो डिसाइड करेगा ये चर्चा कब स्टार्ट हुई है, किसने स्टार्ट की है। लेकिन विषय ये है नहीं ना सर, विषय ये है कि इतने सालों से ये चर्चा हुई क्यों नहीं है। विषय ये है कि इतने सालों से भी देश के स्कूलों की स्थिति ऐसी क्यों है। आज जब अभिजीत जा रहे हैं आदिवासी स्कूल कैंपिंग लॉन्च करने के लिए, तो आदिवासी जो देश के 8% जनसंख्या है उनका ऐसा ऐसा दुर्दांत स्थिति क्यों है, वहां पे इस तरह की स्थिति क्यों है कि वहां के जो स्कूल है वहां पे जानवरों जैसा व्यवहार बच्चों के साथ क्यों किया जाता है, एक ही गढ़चिरौले में 584 बच्चे क्यों मर जाते हैं, तो ये सब चीजें क्यों हो जाती हैं, ये सारे सवाल है। बेसिक बुनियादी सुविधाओं पे हम क्यों नहीं आ रहे हैं, 1 लाख स्कूल क्यों बंद हो जाते हैं, क्यों 1 लाख से ऊपर स्कूलों में एक टीचर है, मेरे हरियाणा में पूरे 90% प्राइमरी स्कूलों में
1: सरकार की तरफ से वादे करें, हम तो शिक्षा पर प्रोग्राम करेंगे और यही सवाल पूछे जाएंगे उसमें। अनिल दुबे,
5: जी साहिल जी,
1: अभी नहीं सवाल आप ही से, कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे
5: जी। मैं वही बात साहिल जी कह रहा हूँ कि आप बड़ी देर से आप सब लोगों से बात, हमारे कांग्रेस के मित्र अभी गिना रहे थे कि राहुल गांधी जी की यूनिट के कार्यक्रम के बारे में बता रहे थे। राहुल गांधी जी यूनिट के कार्यक्रम को पोलिटिकली की गिन तो कर रहे हैं, जब राजस्थान में उनकी सरकार थी तो वहां पर यूनिट का कार्यक्रम कराने क्यों नहीं चले, भाई इनको वो ये भी तो देखना पड़ेगा। ठीक है, आज लोकतांत्रिक तरीके से छात्र युवाओं का प्रदर्शन हो रहा, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जिन बातों तो उनकी जो चिंता है वो जाएगी, लेकिन हमारा रालोद हमारे नेता मनीषेन्द्र चौधरी जी छात्रों युवाओं के मुद्दे पर पहले से संवेदनशील है, सरकार पहले से उन मुद्दों पर संवेदनशील है, उन मुद्दों के ऊपर सरकार पहले से ही कार्रवाई कर रही है, चाहे वो इनके जो भी जेल जी के मुद्दे थे कि पेपर लीक की बात इन्होंने उठाई, पेपर लीक पर सरकार ने कितनी कड़ी कार्रवाई की, गिरफ्तारियां लोगों की हुई और निष्पक्षता के साथ काम हो रहा। आज विपक्ष जिन मुद्दों को उठाने की बात उठा रहे हैं, जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, ये अगर अपने कार्यकाल में जाए, इनके समय में कि जो भर्तियां होती थी कभी कोई निष्पक्ष हुई, कितने आरोप लगे, भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार सारे आरोप लगते थे, लेकिन आज के इस सरकार में सारी चीजें निष्पक्षता के साथ हो गई, नौजवानों को निष्पक्षता के साथ नौकरी में नहीं है, स्कूलों की शिक्षा में सुधार हो रहा है, तो आज क्या चाहते हैं कि लौट करके वही स्थिति आ जाए।
0: जवाब दे दो साहिल जी,
5: अब नहीं लेने
0: जवाब दे दो
1: भाई दुबे,
4: साहिल जी
0: साहिल
1: अभय दुबे,
4: साहिल जी आप साहिल जी कल्पना कीजिए, भारतीय जनता पार्टी शासित सारे प्रांत देख लीजिए, मध्य प्रदेश के व्यवसायिक परीक्षा मंडल से घोटाला चालू हुआ, 13 भर्ती और प्रवेश परीक्षा में 1 करोड़ छात्रों का भविष्य लूटा, मध्य प्रदेश का डीमेट का स्कैम डेंटल और मेडिकल स्कैम वो था जिसमें सीबीआई ने यह हलफनामा दिया कि हम इतना भयानक कांड है कि इसके लिए हमारे पास लोग ही नहीं है कि हमारी संस्था जांच कर पाए, सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ने मेडिकल और डेंटल की सरकारी सीटें बेच दी। आप सोचिए तो सही, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में एजुटेस्ट कंपनी गुजरात का मालिक है, वो बिहार की जेल में बंद था परीक्षा घोटाले में, उसको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का ठेका दे दिया, वो भाग गया अमेरिका, अमेरिका में इन्होंने एसआईटी गठित की, उसके बाद उस पर माला डाल दी।
1: लेकिन यही तो बात है ना अभय दुबे जी, शिक्षा पर चर्चा तब शुरू हुई है जबकि शिक्षा ये स्टेट प्रोजेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट माना जाता है, आप भी कई राज्यों में स्टेट में सरकार में रहे हैं, उसके बावजूद भी शिक्षा की आज जो स्थिति नजर आ रही है उसके पीछे तो पिछले कई सालों का एक जो जबावड़ा है वही तो दिखाई देता है ना यहाँ पर, और इसी के वजह से तो शिक्षा की व्यवस्था ये यहाँ पर ये दिखाई दे रही है आज की स्थिति में, वो तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ना कहीं के पहले कई राज्यों में और अचानक 2014 के बाद गायब हो गए, ये तो स्थिति है नहीं ना
0: कॉन्करेंट। साहिल जी हम लोग बोल रहे
4: हैं कॉन्करेंट लिस्ट में है, एजुकेशन केंद्र की और राज्य की जिम्मेदारी है, लेकिन ये सवाल कब खड़ा हुआ, जब एक के बाद एक राज्य दर राज भारतीय जनता पार्टी के सत्ता की सरपरस्ती में प्रवेश और भर्ती परीक्षा के घोटाले होने लगे और वो उस पर सत्ता ने पर्दा डाल कर रखा। आज भी कह रहा हूं
1: आखिर में
4: उत्तर प्रदेश के उस मंत्री को जेल में डालिए जो
0: साहिल जी
4: कह रहा है।
0: साहिल जी अब आवाज थोड़ी, साहिल जी
1: अनुराग
0: मैं कह रहा हूं जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय हमने जो आप बार बार स्कूल की बात कर रहे थे, हमने कम से कम 10,000 से ज्यादा मैंने आंकड़े थे 10,364 और अच्छी बिल्डिंगें हमने स्कूलों की बनाई थी, वो स्कूलों की व्यवस्था लास्ट 10 साल से ये सरकार आने के बाद उस स्कूलों की कोई देखरेख ही नहीं करते, ये उसकी व्यवस्था, जो आप कोई बिल्डिंग बनती है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना उसमें टीचर्स, उसमें व्यवस्थाएं जो हमने बना के दी उसको ठीक चलाते रहिए। चलाने तो छोड़ो, इन्होंने जो 1 लाख से ज्यादा माने 1,13,000 स्कूल थे उनमें इन्होंने करीब 26,000 स्कूल को तो मर्जर कर दिया और कह दिया वहां बच्चे जाते नहीं है। बच्चे नहीं जाना ये सरकार की फेलियर है कि नहीं है बता दीजिए। आपने ऐसी व्यवस्था ही नहीं की कि बच्चे स्कूल तक आए। सोचो आपको स्कूल बंद करने पड़ते हैं, मर्जर करना पड़ रहा है कि अब बच्चे आ नहीं रहे क्योंकि आपने वो
1: आज की स्थिति में हर कोई अलग अलग बात कर रहा है। कोई कह रहा है हमने तो लैपटॉप बांटे थे, सीजेपी यहाँ पर कह रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना चाहिए, अभय दुबे की पार्टी कह रही है कि पेपर लीक हमें ठीक करना चाहिए। लेकिन शिवम त्यागी आखिर में आखिरकार ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम की बात कब की जाएगी? कब ये बात होगी कि जब जो एनईपी की बात की जा रही है जिसको लेकर यहाँ पर एनईपी को लेकर नीति आयोग कह रहा है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन जॉब्स में नहीं हो पा रहा है, उस सिस्टम को सुधारने की बात कब की जाएगी? 2026 आ चुका है।
2: देखिए साहिल जी, मेरा एक निवेदन है कि मेरे प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के पूर्व संध्या है ये, कम से कम ऐसे झूठ नहीं बोले जाने चाहिए जो लगातार बोले गए। सीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि अहम जो है आदिवासियों के बीच गए। भाई जब आप पैदा नहीं हुए थे, यानी कि पार्टी के तौर पर जब मेरे देश के प्रधानमंत्री ने आदिवासियों के लिए 700 एकलव्य स्कूल चला दिए थे फंक्शनल, पीएम श्री स्कूल 13,046 ऑलरेडी चल रहे हैं। और सुनिए अभय जी, आपने जो टीचर्स की कमी कही हायर
1: तो एक बात तो अच्छी है कि कम से कम शिक्षा व्यवस्था को लेकर बातचीत तो शुरू हो चुकी है। लेकिन उम्मीद सिर्फ यह है कि सिर्फ चुनाव के पहले यह बातचीत ना की जाए, चुनाव के बाद भी इस पर लगातार कोई प्रेशर ग्रुप काम करे ताकि सिर्फ सियासत बनकर यह ना रह पाए। फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
6: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर। दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
7: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
9: जेके वॉल मैक्स
8: बेस्ट पेंट।
9: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट। जेके मैक्स पेंट खुशियों के रंग।
10: इन एसोसिएशन वे हिंट, एक हिंट तो देते।
11: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
10: विमल बोलो जुबा केसरी।
12: इसमें कहीं दो मत नहीं है आज तक का। यहां तक प्रश्न है, एक बहुत ही क्रेडिबल मीडिया ग्रुप के रूप में इसने अपनी साख बनाई है मीडिया जगत में। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि आज देश की सुरक्षा को लेकर यहां पूरे दिन चिंतन और मंथन हुआ है। मैं टीवी टुडे की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं।

0: पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की।
1: जिस रायबरेली इलाके में समाजवादी पार्टी ने 2022 में 4 के मुकाबले 1 पर बीजेपी को समेट रखा था, उसी रायबरेली की उचाहार सीट पर ये भव्य शिव महापुराण का कथा आयोजन हुआ। और इस कथा में सीएम योगी की मौजूदगी ने इस आयोजन को सिर्फ एक धार्मिक कथा तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले रायबरेली के सियासी समीकरण साधने की मजबूत कवायद के रूप में देखा जा रहा है।
0: याद रखना, ये पावन कथा जब तक भारत की धरती पर चलती रहेंगी, सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी, और सनातन की ध्वजा पताका ऊंची रहेगी तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा।
1: ये मंच भले ही पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का था, लेकिन संदेश पूरी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव का है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे के इस भव्य धार्मिक आयोजन में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी अवध के इस गढ़ में विपक्ष के जातीय चक्रव्यूह को हिंदुत्व आउटरीच और सोशल इंजीनियरिंग से भेदने की पूरी तैयारी कर चुकी है।
2: फैलाव करना अच्छी बात है, लेकिन सनातन संस्कृति के नाम पर चढ़ावा चोरी करना, सनातन संस्कृति के नाम पर वोट मांगना, वोट लूटना, नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी महिला नौजवान किसान और अल्पसंख्यक के हितों को ऊपर प्रतिघात करना, ये कहां से सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है।
1: दरअसल जिस उचाहार इलाके में समाजवादी पार्टी के पुराने नेता और अब योगी सरकार में मौजूदा कैबिनेट मंत्री की इस शिव महापुराण कथा जैसे धार्मिक आयोजन के पीछे बीजेपी की कोशिश, करीब 18% ब्राह्मण वोटों के साथ करीब 12% क्षत्रिय और 23% ओबीसी वोट को जोड़ने की है, जिससे कि विपक्ष के साथ साथ दलित मुस्लिम यादव वोट बैंक के खिलाफ जनाधार तैयार किया जा सके। समर श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: क्या सिर्फ एक शौचालय पूरे गांव की तस्वीर बदल सकता है? तो जवाब है हाँ। यूपी में नई स्वच्छता सुविधाएं और ODF अभियान के बाद गांवों की ही नहीं लोगों की तस्वीर बदल गई है। योगी सरकार ने 2025 को विकास का स्वर्णिम वर्ष कहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत यूपी में 2,15,00,000 घरों में शौचालय बनवाए गए, जबकि दूसरे चरण में 48,99,000 अतिरिक्त शौचालयों का निर्माण हुआ। प्रदेश के 15.50 लाख नालों, सेप्टिक टैंकों और गोवर्धन प्लांटों के रखरखाव पर हर साल 750 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी की गई। इन्हीं प्रयासों के बदौलत स्वच्छ भारत मिशन में यूपी ने देश में तीसरा स्थान हासिल किया। यूपी के बदलते गांवों की तस्वीर देखने के लिए हमारी टीम पहुंची मुरादाबाद के डिडौरी गाँव में और इसका असर जमीन पर दिखाई दिया। गांव की रहने वाली प्रीति कहती है,
1: जितने मतलब परेशान थे वो लोग, अब कोई परेशानी नहीं है उन्हें, साफ सफाई बिल्कुल बढ़िया है सर।
0: लीलावती बताती हैं,
2: बहुत लाभ है भैया इस टाइम, सब कुछ लाभ है, देखो बाहर नहीं जाते, अब टाइम से खुला मिला है।
0: वहीं मंगूपुरा गांव में ग्रामीण समरपाल सिंह कहते हैं,
3: साफ सफाई समय से होती है गांव में, सफाई कर्मचारी समय से आते हैं और शौचालय मुक्त है हमारा गांव, खुले में कोई शौच नहीं करने जाता, समय समय से फॉगिंग भी होती है गांव में जिससे कि बीमारी ना आए।
0: यानी तस्वीर सिर्फ शौचालय बनाने तक सीमित नहीं है, साफ सड़कें, नियमित सफाई, सामुदायिक शौचालय और ODF अभियान ने कई गांवों में बदलाव की नई कहानी लिखी है।

0: उत्तर प्रदेश के 32,000 से अधिक बेसिक स्कूलों में स्मार्ट सुविधाएं पहले से मिल रही हैं। इन स्कूलों में स्मार्ट टीवी, 3D एनिमेशन और डिजिटल कंटेंट के साथ क्लासरूम को स्मार्ट बनाया गया है। 1,33,000 से अधिक बेसिक स्कूलों में से भले 32,000 स्कूलों में ही सही, लेकिन यूपी में स्कूली शिक्षा को स्मार्ट बनाने की दिशा में योगी सरकार ने पहल जारी रखी है और अब इसी कोशिश में योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है, जिसमें जेन अल्फा की स्कूली शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए बेसिक स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में बदलने की तैयारी हुई है। 15 सितंबर को लखनऊ में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ कि प्रदेश के 14,429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय अब स्मार्ट स्कूल बनेंगे। इसके लिए शुरुआती तौर पर 300 करोड़ की धनराशि मंजूर भी कर दी गई है। इससे बेसिक स्कूलों में स्मार्ट क्लास बोर्ड, ICT लैब और डिजिटल संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। श्रीटॉन इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी को स्मार्ट क्लासेस का काम सौंपा गया है। इसमें हर स्कूल को 2,07,910 रुपए मिलेंगे। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है कि विद्यार्थियों की संख्या और नामांकन के आधार पर स्मार्ट क्लास एवं ICT लैब की सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। सीएम योगी कहते हैं कि 2017 से पहले स्कूलों की जर्जर हालत को दुरुस्त करने का अभियान जारी रहेगा और बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए चलाए गए ऑपरेशन कायाकल्प का असर 2021 के बाद ऐसा हुआ कि यूपी में 32,000 से अधिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस चलती हैं, 15,000 से अधिक विद्यालयों में ICT लैब की सुविधा है, 1,129 विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा भी दी जा रही है। प्रदेश में 2,61,000 से अधिक शिक्षकों को टैबलेट उपलब्ध कराए जा चुके हैं, लेकिन योगी सरकार की इन कोशिशों पर CJP सवाल खड़े करती है। 14,000 से अधिक स्कूलों को स्मार्ट बनाने के लिए सिर्फ 300 करोड़ का बजट झांसा है।
1: अब बताइए, 300 करोड़ 14,000 प्लस स्कूलों के लिए, मतलब कि एक स्कूल को मिलेगा 2,00,000 रुपए। स्कूल में देश का फ्यूचर पढ़ने वाला है, वो 14,000 स्कूलों में 2,00,000 रुपए लगा के 300 करोड़ का झांसा दे रहे हैं।
0: दरअसल यूपी के चुनावी सीजन में CJP की टीम भी स्कूलों की सुध लेने में लगी है। सौरभ दास ने नोएडा के बिसरक इलाके में स्कूलों के दौरे किए, वहीं टीचर से बात की, बच्चों को उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया और सुधार की जरूरतों वाले स्कूलों का सच सामने लाने की बात कही। हालांकि बाद में CJP ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उन्हें स्कूलों में नहीं घुसने दिया जा रहा है। नोएडा से भूपेंद्र सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोहिया ट्रस्ट की जिम्मेदारी संभाल रहे शिवपाल सिंह यादव से कार्यभार वापस ले लिया है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि पिछले दिनों हुई ट्रस्ट की बैठक में सभी 8 ट्रस्ट सदस्यों ने अखिलेश यादव को ट्रस्ट का कार्यभार सौंपने का फैसला किया, लेकिन जिस तरह 9 साल से ट्रस्ट का कामकाज देख रहे शिवपाल सिंह यादव को चुनाव के एंड पहले हटाया गया, उसे लेकर सियासी हमले शुरू हो चुके हैं। दरअसल अब अखिलेश यादव के पास पार्टी के साथ ही साथ लोहिया ट्रस्ट और जनेश्वर मिश्र की पूरी कमान आ चुकी है, जबकि 2017 में परिवार में हुए विवाद के दौरान मुलायम सिंह यादव ने प्रोफेसर रामगोपाल यादव को हटाकर शिवपाल यादव को इस ट्रस्ट की जिम्मेदारी दी थी। जिस लोहिया ट्रस्ट का गठन समाजवादी पार्टी की स्थापना से भी पहले हुआ था, समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना और पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करना भी है। इस बदलाव को लेकर यूपी के सियासी गलियारों में शुरू हुई एक नई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक आने वाले समय में अखिलेश यादव अपनी बेटी को ट्रस्ट की जिम्मेदारी दे सकते हैं। हालांकि राजनीतिक हलकों में इसे अखिलेश का पावर सेंट्रलाइजेशन प्रैक्टिस माना जा रहा है, क्योंकि जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट के अलावा लोहिया ट्रस्ट के अध्यक्ष बनने के बाद अखिलेश ने समाजवादी विचारधारा से लेकर चुनावी सीजन में फंड तक का पूरा इंतजाम अपने अख्तियार में करने का फैसला किया है, ताकि पार्टी के अंदर सत्ता के दो केंद्र की गलतफहमी ना जाए।
1: फिलहाल विपक्ष अब इस मामले में समाजवादी पार्टी को घेरने में कोई मौका नहीं छोड़ रहा है और ले जा रहा है उस दौर में 2017 में जहां चाचा और भतीजे की तमाम चीजें सबके सामने आई थी। बीजेपी कुल मिलाकर इसे सियासी द्वंद्व बता रही है और चुनाव से पहले कुल मिलाकर पूरा पुरजोर तरीके से समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़े करने की कोशिश, जबकि समाजवादी पार्टी जो है इसे एक आंतरिक और सर्वसम्मति से लिया गया फैसला बता रही है। अब देखना यह है कि चुनाव से कुछ दिन पहले लिया गया ये निर्णय क्या संगठनात्मक तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए कुछ रंग लाता है या फिर बीजेपी के आरोप कहीं ना कहीं लोगों के दिमागों में और दिलों में घर करेंगे, ये वक्त बताएगा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: 1000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर शुल्क के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी का मोर्चा। कहा नियम को वापस ले सरकार, आरबीआई की दलील, मिलने वाले पैसे से तकनीक और नेटवर्क होगा मजबूत। सरकारी कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, कैबिनेट ने अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रति माह किया, 51,00,000 लोगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा 2014 के बाद से भारत में नियम कानून और शासन दोनों ही अच्छे हैं, कल से बीजेपी चलाएगी सेवा संकल्प अभियान। गोरखपुर में सीएम योगी की चुनावी हुंकार, कहा पहले एसपी और कांग्रेस सरकार में अपराध और डर, आज का यूपी दंगा और कर्फ्यू मुक्त, 1,00,000 सरकारी नौकरी देने का किया वादा। कन्नड़ एक्टर अनंत नाग को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड, प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट कर दी बधाई।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: मोदी जी प्लीज स्टॉप लाइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, हैव अ स्पाइन, खड़े हो जाइए और यूपीआई टैक्स को वापस लीजिए।
1: यूपीआई पर मार गरीब परिवार और फिर झुकी अमेरिका के आगे मोदी सरकार।
2: हिंदुस्तान इकलौता देश था जहां पे एमडीआर नहीं था यूपीआई पे, तो अब आ गया है तो यहां पे भी होपफुली जो है अभी यूपीआई का मार्केट जो है बढ़ेगा।
3: जो ये डायरेक्शन आया है ये पेमेंट्स इंडस्ट्री के लिए, बैंक्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव है।
4: मुझे लगता है कांग्रेस का काम ही केवल गुमराह करना और आलोचना करने का रह गया है।

0: हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप। 15 अक्टूबर से दुकानदारों को भुगतान होने वाले 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर लगने जा रहे चार्ज को लेकर आज सियासत का हंगामा और बढ़ गया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर डाले वीडियो में सरकार पर अमेरिका के दबाव में आने का आरोप लगाया है और इसे फौरन वापस लेने के लिए कहा है, लेकिन यूपीआई पर लग रहे चार्ज को आरबीआई जरूरी बता रही है। सरकार की दलील है कि इससे यूपीआई का जो पूरा इकोसिस्टम है, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है दूर दराज के इलाकों में, वो बेहतर होगा। सवाल है कि क्या वाकई यूपीआई पर यह दलील लोगों को समझ में आएगी? क्या यूपीआई पर लगने वाले चार्ज की आड़ में ग्राहकों पर बोझ पड़ेगा, या फिर ये दावा जो किया जा रहा है कि ये सिर्फ मर्चेंट ही इसका खर्च उठाएंगे, ये कहा गया है इस ऑर्डर में, एमडीआर नाम ही है मर्चेंट को जो पैसा देना है, तो क्या ये सिर्फ बेचने वाला उठाएगा इस बोझ को? क्या यूपीआई पर इस फैसले से नगद का बोलबाला बढ़ेगा? क्या आने वाले वक्त में लोग फिर से कैश की तरफ लौटने लगेंगे क्योंकि ये महंगा हो जाएगा? इन सब पर बातचीत करेंगे, विस्तार से आपको समझाएंगे। एक घंटे में रहिए हमारे साथ। वाकई यूपीआई आम ग्राहकों के लिए अभी भी क्या मुफ्त का बना रहेगा? आखिर यूपीआई पर हो रही सियासत का सच क्या है? यूपीआई चार्ज, सियासत रिचार्ज, हल्ला बोल में हम चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए।
1: भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई, इसने पॉपुलेशन स्केल पर फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल ट्रांजेक्शन को नई गति दी है। आज विश्व के 50% रियल टाइम पेमेंट्स इसी टेक्नोलॉजी पर होते हैं।
0: अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ जब ब्रिक्स बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की ताकत दुनिया को बताई थी, लेकिन ग्राहक से दुकानदार को 2000 रुपए से ऊपर के भुगतान पर 0.4% या 300 रुपए अधिकतम चार्ज लगाने का फैसला राजनीतिक तूफान खड़ा कर गया है। कांग्रेस इसे अमेरिकी कंपनियों के दबाव में लोगों से सरकार की वसूली कह रही है। पार्टी का आरोप है कि भले ग्राहक से दुकानदार को भुगतान कुल यूपीआई ट्रांजैक्शंस का 4% हो, लेकिन इसमें भुगतान राशि की वैल्यू करीब 67% है, जो सीधे फोन पे, गूगल पे और अमेजॉन पे जैसी कंपनियों को फायदा पहुंचाएगा। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा है, मोदी जी यूपीआई टैक्स को वापस लीजिए तुरंत।
2: इंदिरा जी वाज वंस आस्क्ड वेदर शी लीन्स लेफ्ट और राइट एंड हर रिस्पॉन्स वॉज I don't lean left, I don't lean right, I stand straight. Modi ji has a completely different concept. He is neither left nor right. He has decided to lie down straight and prostrate himself in front of Donald Trump. He's put a tax on every single Indian person by taxing UPI and giving huge amount of money to the United States. Modi ji, please stop lying down in front of the United States. Have a spine, khade ho jaiye. और यूपीआई टैक्स को वापस लीजिए।
0: यूपीआई पर चार्ज लगाने के पीछे सरकार की सबसे बड़ी दलील है कि इसके वित्तीय सिस्टम को चलाने में भारी भरकम खर्च आता है। यूपीआई लेन देन में चार्ज लेने का जो फैसला हुआ है उसमें पर्सन टू पर्सन यानी आपसी लेन देन पर यूपीआई पहले की तरह मुफ्त है। रेलवे, इंश्योरेंस, ईंधन जैसी सेवाओं पर 5 रुपए प्रति लेन देन शुल्क ही लगेगा। यूपीआई से हर महीने के ऑटो पे भुगतान पहले की तरह मुफ्त रहेंगे। महीने में यूपीआई से 1,00,000 रुपए तक भुगतान पाने वाले दुकानदार दायरे में नहीं आएंगे। 2,000 रुपए से ऊपर के भुगतान पर लगने वाली फीस ग्राहकों पर नहीं डाली जा सकेगी। आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट्स पर चार्ज लगाने के फैसले को भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को टिकाऊ बनाए रखने के लिए जरूरी कहा है, लेकिन यूपीआई पर चार्ज लगाने के वित्तीय दलीलों से परे सवाल राजनीति का भी है, जिस पर राहुल गांधी के आरोपों के बाद हंगामा मच गया है।
3: मुझे लगता है कांग्रेस का काम ही केवल गुमराह करना और आलोचना करने का रह गया है। मुझे लगता है इसको और जानकारी ज्यादा से ज्यादा विस्तार में मीडिया के मित्रों को और सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको और केंद्र सरकार को भी देनी चाहिए, ताकि ये जो भ्रम और भय की स्थिति कांग्रेस खड़ी करने का प्रयास करती है वो नहीं होना चाहिए।
0: यूपीआई भारत की बड़ी सफलताओं में है, जिसको अब तक दुनिया के 11 देशों में अपनाया जा चुका है। 2016 में नोटबंदी के बाद भारत में लेस कैश और डिजिटल पेमेंट्स का मुद्दा राजनीतिक चर्चा में आया था। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के उस बयान पर खूब सियासत भी हुई थी, जिसमें उन्होंने डिजिटल पेमेंट की व्यावहारिकता पर सवाल उठाया था।
4: गो टू योर विलेज फेयर, बाय पोटैटोज एंड tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? What kind of a false picture that you are present?
0: UPI पर चार्ज से डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की राजनीति नए मोड पर आ गई है। 15 अक्टूबर से UPI की नई व्यवस्था लागू होगी। ये दिवाली और उसके पहले भारत में त्योहारी सीजन की शुरुआत का समय है, जब खरीदारी और लेन देन बढ़ेगी। आज तक ब्यूरो। चर्चा की शुरुआत करते हैं अजय आलोक, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमिताभ दुबे हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं, शहजाद पूनावाला पहली बार आज हल्ला बोल में आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, आशुतोष हमारे साथ, आशुतोष जी जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस पूरी बहस में। कुछ ही देर में हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ने वाली हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि देखिए अगर आपको दूध का दूध पानी का पानी, कौन क्या फैसले से किसका असर, कितना असर, क्या होने वाला है, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है। सोहिनी राजोला जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ग्रोथ है उसी NPCI की, वो हमारे साथ जुड़ने वाली है, जो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है जिसके हस्ताक्षर से ये पूरा ऑर्डर निकला है। आपके साथ मैं आऊंगी आपके पास चर्चा करने के लिए सोजोला जी, लेकिन उससे पहले जो राजनीतिक मेहमान है उनसे छोटा एक ही कमेंट मैं चाहती हूं, उसके बाद मैं आपसे चर्चा करती रहूंगी और बीच बीच में सवाल आपके पास लाती रहूंगी। अजय आलोक जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। अब सबके मन में ये सवाल है, देखिए तीन बड़ी आलोचनाएं जो हो रही हैं वो सीधा आपके सामने रखती हूं, आप उस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। पहला कि भाई आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट कर रहे थे देश में, है ना, आप कह रहे थे कि हमको कैश से दूर जाना है, तो कैश से दूर जाने के लिए डिजिटल पेमेंट, और इसकी बड़ी आपकी वाहवाही भी हुई कि भाई डिजिटल पेमेंट को देखिए कैसे भारत ने किया है, 11 देश अपना रहे हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता है जब ये MDR लगेगा, ये मर्चेंट को ही लगेगा, किसी के भी जेब से जाए अल्टीमेटली वो कंज्यूमर को पास ऑन करेगा ही करेगा, कोई इसे माने ना माने, ये मर्चेंट को ही लगे, लेकिन ये धीरे धीरे वापस कैश को प्रमोट करेगा, डिजिटल से लोग हटने की ना सोचने लगे, क्या ये चिंता आपको नहीं होनी चाहिए? दूसरा, जो MDR देंगे ऐसे जो बिजनेसमैन है, जो मर्चेंट्स है, जो छोटे बिजनेसमैन है, वो उनको आप कैसे सेफ्टी नेट दे रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बड़ी चीज, कंज्यूमर पे अल्टीमेटली तो पास ऑन करेगा ही, अगर चाहे IRCTC को देना पड़ रहा है 5 रुपए एक्स्ट्रा,

0: तो भाई पैसा वापस लेगा ही लेगा कंज्यूमर से। तीन आरोप है, तीनों का जवाब।
1: अंजना जी, तीनों आरोप बेबुनियाद है। ये यूपीआई आया था तो एक विजन था, ये कोई बराक ओबामा से पूछ के या डोनाल्ड ट्रंप से पूछ के यूपीआई मोदी जी लेके नहीं आए थे। एक विजन था, जब जनधन खाता खुला तो यूपीआई भी आएगा ताकि ये ट्रांजैक्शन हमारी पूरी डिजिटल हो सके। उस यूपीआई का कॉन्सेप्ट था अल्ट्रा प्रॉस्परस इंडिया, ये बनाने की। और आज जो नौटंकी हुई है यूपीआई में, ये उठा पटक इंडिया है। जिनको 24 घंटे इंडिया में उठा पटक होते रहे, ऐसे राहुल गांधी जी की सोच है। और इसलिए यूपीआई पे अननेसेसरी क्वेश्चंस। मुझे ये बताइए, 96% ट्रांजैक्शन पिछले 10 साल में रिकॉर्ड निकाल के लोगों ने देख लिया है कि 2000 से नीचे के रहते हैं यूपीआई में, तो 96% ट्रांजैक्शन को तो कोई छू ही नहीं रहा है। मैं अंजना ओम कश्यप जी को 5 लाख रुपए भेजूंगा, मुझे कोई यूपीआई नहीं भेजेगा। आप भेजिएगा मुझे, आपको कोई यूपीआई नहीं लेगा, पर्सन टू पर्सन फ्री है। जो छोटे छोटे व्यापारी है हमारे, आइसक्रीम सेलर, हमारे जूस सेलर, हमारे फोकचा वाला, जिनको हम लोग छोटा व्यापारी, छोटे दुकानदार कहते हैं, उनके लिए 1 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर महीना उनका टर्न ओवर लेगा, उनको कोई टैक्स नहीं है। टैक्स लग कहां रहा है भाई? वैसे मर्चेंटाइज और जिनका ट्रांजैक्शन 1 लाख से ऊपर हो उनको 0.4%, और वो पैसा भी बैंक के पास जाएगा। उस बैंक में भी शेयरिंग है, 70% बैंक रखेगा, 30% फोन पे या गूगल पे या उनको जाएगा। तो ये भी नहीं है कोई अमेरिकन प्रेशर को हम अमेरिकन प्रेशर में ये हो रहा है। ये फॉल्स नैरेटिव जो फैलाने की कोशिश की जा रही है, जरा वो लोग बताएं कि जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं 2% लगता है कि नहीं? कई कई दुकान है हिंदुस्तान में जहां क्रेडिट कार्ड दीजिएगा तो कहेगा 2% बिल ऐड कर दीजिए क्योंकि मेरा ये होता है। ये तो 0.4% है। किसी भी, इतनी बड़ी संस्था ये बन चुकी है इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम विच इज इंट्राऑपरेबल, ये इतना बड़ा संस्था बन चुका है अपने आप में कि इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको एक फीस चाहिए। दूसरा, बड़े ट्रेडर्स का जो पैसा आएगा वो री इन्वेस्ट होके छोटे ट्रेडर्स में जाएगा, तो उससे फायदा नहीं होगा। ग्रेट 4 टू ग्रेट 6 सिटीज और रूरल इकोनॉमी में हमारी बढ़ोतरी होगी तो उससे फायदा नहीं होगा। क्यों लोग जाएंगे भाई कैश की तरफ? ये इतना कन्वीनियंट मेथड हो गया है, लोग वॉलेट कैरी करना, पर्स कैरी करना महिलाएं छोड़ रही है, फोन से सब कुछ हो रहा है। एक इंटीग्रेटेड पेमेंट है। कांग्रेस ने आज क्या क्या हलंगामा उड़ाया। 5,000 रुपए का ट्रांजैक्शन करेंगे तो 25 रुपए लगेगा, 10,000 का ट्रांजैक्शन करेंगे तो 50 रुपए लगेगा। मतलब कहां कहां से झूठ फूट की खबर फैला के उठा पटक इंडिया करने की तैयारी कर लेते हैं। तुरंत सेकेंड नहीं लगता है प्रवक्ता, ठीक है, बहुत लोग, कई बार होमवर्क नहीं होता है, गलती चीज मुंह से निकलती है, लेकिन आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो साहब, कम से कम होमवर्क करके तो बैठ के बोलो। जिस यूपीआई को मोदी जी ने दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट इकोसिस्टम बनाया है, उसे मजबूत और सस्टेनेबल बनाने की जिम्मेदारी क्या आपकी नहीं है?
0: ठीक है,
1: मतलब हर चीज फर्जी फैलाना, राजनीति करना, मतलब ये कहां से कहीं सही है?
0: दुबे जी, हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये ट्रांजैक्शन बढ़ा है। यूपीआई ट्रांजैक्शन का जो वॉल्यूम है, सोर्स हमारा पीआईबी है जिसके जरिए हम ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, 24,162 करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है, और 16-17 से ये लगभग 4,000 गुना की वृद्धि हुई है, जो कि फिर से सोर्स हमारा पीआईबी है। एक एक करके ये सारी जानकारियां हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अमेरिकन प्रेशर कैसे आ गया, इससे क्या फायदा हो रहा है अमेरिका को?
2: देखिए, पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आलोक जी ने कहा है कि ये यूपीआई जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है, अब इसका हम पूरा समर्थन करते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ नेशनल एसेट, इसकी कोई, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। एनपीसीआई की स्थापना 2008 में कांग्रेस सरकार ने की थी, यूपीए ने। आधार 2010 में आया था, 60 करोड़ आधार कार्ड दिए गए थे यूपीए के समय। जो यूपीआई का की जो नींव है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, वो भी 2010 में यूपीए के कार्यकाल में स्थापना हुई थी। बीएसबीडीए अकाउंट्स, जिसको मोदी जी ने जनधन योजना बताया है, 28 करोड़ अकाउंट्स यूपीए के समय गए थे। तो जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये यूपीए की देन है और मोदी जी ने आगे काम लिया है, इसकी, इसके बारे में हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। सवाल उठता है, पहली बात है कि जो चार्ज लगा है 2,000 रुपए से ज्यादा, वो सिर्फ 94% 95% टैक्स फ्री नहीं है, क्योंकि जो 2/3 वैल्यू है जो ट्रांजैक्शंस के, उन पे ये टैक्स लगा है। तो ऐसा नहीं है कि बस एक छोटे हिस्से को टैक्स किया गया है, ये बहुत सारे वॉल्यूम पे टैक्स लगाया गया है। दूसरा सवाल है हमारे वित्त मंत्री की नियत के बारे में। 6 अगस्त को जब ये बिल पास किया गया, उन्होंने कहा कि कोई फैसला नहीं लिया गया है, ठीक है। 4 दिन बाद उन्होंने कहा कि एमडीआर का कोई फ्रेमवर्क नहीं लगा रहे हैं, और 5 हफ्ते बाद उन्होंने जल्दबाजी से, बिना सोच समझे, बिना कोई जस्टिफिकेशन, ये चार्ज लागू किया है।

0: तो वो डिनाइल डिनाइल करते करते अचानक ही हमारे सामने आ चुका है। अब यूएस का सवाल आता है, इस ये जो यूपीआई मार्केट शेयर सबसे ज्यादा किन कंपनीज का है? गूगल पे का है 49%, फोन पे का है 37% या 38%, और फोन पे का एक आईपीओ अभी फेल हो गया था, उन्होंने विड्रॉ कर लिया था क्योंकि उनकी वैल्यूएशन कम हो गई। अब इस कानून के बाद या इस नोटिफिकेशन के बाद उनका आईपीओ आगे जाएगा, तो ये किसके लिए किया गया है? ये छोटे दुकानदारों के लिए नहीं किया गया है, ये आम नागरिक के लिए नहीं किया गया है, ये अमरीकी कंपनियां जिनको फायदा मिलेगा उनके लिए किया गया है। इसलिए राहुल जी और कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि बाहर के दबाव से किया गया है, छुपे रूप से ये पारित किया गया है, और ये
1: ठीक
0: फायदा
1: है,
0: किसी को, भारत के नागरिक को नहीं होने वाला है।
1: ठीक है शहजाद जी, जल्दी से आपका एक रिएक्शन, उसके बाद से आशुतोष जी का, उसके बाद मैं सीधे सोहनी जी के पास जाऊंगी। शहजाद जी, उनका ये कहना है कि ये अमेरिकी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये किया जा रहा है।
2: अच्छा, पहले तो अंजना जी, आपने बचपन में रॉबिनहुड की कहानी सुनी होगी। रॉबिनहुड अमीरों से चुरा कर गरीबों को देता था। हमारे देश में रिवर्स रॉबिनहुड है, ये गरीबों से चुरा कर अमीरों को देना चाहते हैं। बाय द वे, मैं आपको बता दूं कि मैंने तो भाजपा ही न केवल छोड़ी है, बल्कि मैं पर्सनल इनकम टैक्स के खिलाफ, तो मैं उस पोजीशन से आता हूं कि मैं तो चाहता हूँ पर्सनल इनकम टैक्स ना, मैं इसलिए बता रहा हूं कि कंज्यूमर पर अगर अजय आलोक की सरकार 1 रुपया भी एक्स्ट्रा डालेगी ना, तो सबसे पहले मैं उसको अपोज करूंगा। पर मैं आज अजय आलोक को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूंगा, पता है क्यों? क्योंकि जो देश में आज 80 करोड़ यूपीआई ट्रांजेक्शन होते हैं, उसमें से 96% P2P या 2,000 रुपए से कम, या जिसको बोलते हैं माइक्रो जो है मर्चेंट्स करते हैं, जो जिसकी वैल्यू महीने में 1 लाख से कम की यूपीआई होती है, ये 96% पर कोई टैक्स नहीं है। परंतु मेरे और आप जैसे टैक्स पे रंजना जी, अभी तक वो 4% को सब्सिडाइज कर रहे थे, क्योंकि इसका खर्चा है 20,000 करोड़। मतलब अंजना जी की इनकम से टैक्स का पैसा, शहजाद के पैसों से जो रेंट भी नहीं दे सकता बेचारा, और बाकी लोगों के टैक्स का पैसा उन 4% को जा रहा था जो मेगा कॉरपोरेशन है और मेगा ट्रांजेक्शन कर रहे थे। तो आज ये सब रिवर्स रॉबिनहुड चाह रहे हैं कि मेरा टैक्स का पैसा उन अमीरों को फंड करने के लिए दिया जाए। आज सरकार ने क्या किया है, डिस्टिंक्शन बना दिया, पी टू पी इज कंप्लीटली फ्री, पी टू स्मॉल एम, स्मॉल एम मतलब छोटा सा, माइक्रो माइक्रो जो आदमी है उसको भी नो टैक्स, मतलब नो फी, नो चार्ज, नो एमडीआर। सिर्फ 4% ट्रांजैक्शन जो 2/3 वॉल्यूम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 2/3 ट्रांजैक्शन साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको पैसा देना पड़ेगा। क्योंकि एनपीसीआई को पैसा कहां से मिलेगा? वो अंजना और मेरे टैक्स पैसे से मिलेगा। और क्या मैं 20,000 करोड़ रुपए हर साल देता रहूं उनको? उनके पास कमाई आती है 980-1,000 करोड़ की, वो भी उसमें लगाते हैं, इसके ऑपरेशन में, साइबर सिक्योरिटी में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी पैसा आएगा कहां से? टैक्स पेयर के लिए पैसों से प्रोविजन हो रहा है बजट में। तो अब ये कह रहे हैं कि जो बड़े कॉरपोरेशन वो करें, दूसरे अमेरिकन कंपनी। वाह अंजना जी वाह, जो यूपीआई का खड़े होकर विरोध कर रहे थे और बोल रहे थे कि कौन से सब्जी वाला इसका इस्तेमाल करेगा, जो वीजा और मास्टर कार्ड के पक्ष में थे, वो कह रहे हैं कि हम लोग जो है अब अमेरिकन कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई, आप तो यूपीआई को आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे, आप तो मोदी को मॉक कर रहे थे। आप तो कहते हाँ, मोदी कौन यूज करेगा, कौन यूज करेगा? आज 80 करोड़ ट्रांजेक्शन दिन में हो रहा है, आप वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड के एजेंट बन के घूम रहे थे। और आपने जब भारत की वैक्सीन बन रही थी तब भी यूएस वैक्सीन का सपोर्ट किया, जब ऑपरेशन सिंदूर में हमने ठुकाई की पाकिस्तान की तब भी आपने पाकिस्तान का सपोर्ट किया, जब हम भारत में एआई समिट करते हैं तब नग्न होकर ये नाचने लग जाते हैं। मैं मोदी जी को कहूंगा, बाकी कोई निर्णय वापिस लो ना लो, ये निर्णय वापिस मत लेना, मेरे टैक्स का पैसा इन अमीर ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं हो सकता। बाय द वे,
1: ठीक
2: कांग्रेस इतनी
1: है,
2: झूठी पार्टी है,
1: जल्दी
2: पता है क्या
1: जल्दी,
2: बोल रही, 10 सेकंड और, वो कह रही है 0.5 लगेगा, 0.5 तो है नहीं पैसे, वो बोल रही है हर कंज्यूमर को लगेगा। कैसे कंज्यूमर को लगेगा? पास ऑन करने की परमिशन ही नहीं, एनपीसीआई वाली आपके साथ जुड़ने वाली है, उनसे पूछ लीजिए, ये तो मर्चेंट को ही लिमिटेड है।
1: बिल्कुल
2: तो
1: मेरा,
2: प्लीज कांग्रेस पार्टी, मोदी का विरोध करो, देश का मत करो।
1: ठीक है आशुतोष जी, आपका क्रिटिसिज्म किन पॉइंट्स पर है, या आपको लगता है कि एमडीआर कई देशों में पहले से लागू है और अल्टीमेटली आपको एक एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर सरकार को यह फैसला लेना पड़ा?
3: देखिए, 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट इस बात को लेकर हमें समझना पड़ेगा कि जो यूपीआई के फ्रेमवर्क में जो सबसे सफल कंपनीज कौन है, फोन पे जिसका मार्केट शेयर कितना 48.9%, गूगल पे जिसका मार्केट शेयर कितना 37.7%, फोन पे कौन ओ करता ओन ओन कौन करता है? वॉलमार्ट। कितने परसेंट उसका शेयर है? 74.5%। यानी फोन पे बेसिकली एक अमेरिकन कंपनी है, दूसरा गूगल पे अमेरिकन कंपनी, 100% इन पे अल्फाबेट इनका है। तो अगर इस पे 0.4% बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इन कंपनियों को फायदा होगा, इसमें कोई दोहरा नहीं, क्योंकि टोटल कमांड मार्केट कितना करते हैं? 86.6%। दूसरा मैं आपको बता दूं कि यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 2026 नेशनल ट्रेड एस्टिमेट रिपोर्ट ऑन फॉरेन ट्रेड, इसने दो देशों को क्रिटिसाइज किया था डिजिटल पेमेंट को लेके। भारत को किया था यूपीआई और रुपे फ्रेमवर्क को, और ब्राजील को किया था पिक्स पे। ब्राजील उनकी बात नहीं माना तो 25% का टैरिफ एक्स्ट्रा अमेरिका ने उसके ऊपर लगा दिया कि आपकी वजह से जो डोमेस्टिक जो आप डोमेस्टिक फर्म्स को फायदा मिलता है और जो हमारी अमेरिकन कार्ड कंपनीज हैं उनका उनको नुकसान पहुंचता है। ब्राजील पे ऑलरेडी 25% का टका ये का एक्स्ट्रा वो लगा चुके हैं। इसके अलावा अगर हम फिर इसी के इंडो यूएस ट्रेड माफ करिएगा, ये जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की रिपोर्ट है 2026 का, साफ तौर पर कहती है कि यूपीए की वजह से, यूपीआई की वजह से जो बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स में दिक्कत पैदा हो रही है और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इसी के संदर्भ में आपको बताऊं, जीटीआरआई एक थिंक टैंक कंपनी, थिंक टैंक है, जिसने साफ तौर पे कहा था कि अमेरिका के प्रेशर में, जब अगस्त के महीने में कानून पास हुआ था कि अमेरिका के प्रेशर में भारत को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। आज की तारीख में अमेरिका डिजिटल डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं, इंडोनेशिया में जबरदस्त तरीके से दबाव डाले हुए उसके ऊपर, वहां की जो एनपीजी है उसको कह रही कि भाई आप इस पर कुछ करिए, वियतनाम के ऊपर दबाव डाल रखा है, गल्फ कंट्रीज के ऊपर दबाव डाल रखा है, चाइना के ऊपर दबाव डाल रखा है, क्योंकि चाइना का जो यूनियन पे है और वियतनाम का एनएपीएस है उस पर। तो
1: ठीक
3: अमेरिका की ग्लोबल तक कोशिश यह है कि उनकी जो कार्ड कंपनीज है, जो डिजिटल पेमेंट को भारी नुकसान हो रहा है, जो क्रेडिट कंपनीज हैं, उसको उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। तो
1: ठीक
3: भारत
1: है
3: अकेला नहीं है,
1: ठीक है
3: ब्राजील को
1: ठीक
3: उन्होंने
1: है
3: ऑलरेडी पेनलाइज कर दिया है और भारत ने इस कानून के तहत एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनकी बात मान ली है।
1: ठीक है, इसका डायरेक्ट जवाब मैं लूंगी अजय आलोक जी से भी, लेकिन एक बार ये नंबर्स देखिएगा आशुतोष जी, यूपीआई चार्ज से कौन कितना लेगा, ये मैं सवाल अभी सोहिनी जी से भी करने वाली हूँ कि भाई किसको अल्टीमेटली ये पैसा जाएगा। अब जो ये एमडीआर फंड बन रहा है, ठीक है, 8 रुपया अगर दुकानदार अदा करेगा तो इसमें कितना कितना पैसा किसको जाता है, तो आप देखिए उस बैंक को मिलेंगे जिसके खाते में पेमेंट हुआ है 40%, यानी लगभग 3, जिसके खाते से पेमेंट हुआ है, ठीक है, तो ये 3 रुपया हो गया, 3 रुपया 20 पैसा। उस बैंक को मिलेंगे जिसके खाते में पेमेंट आया है 2 रुपया 40 पैसा, 2 रुपया 40 पैसा, ये 30% है। 20% जाएगा उस यूपीआई ऐप को जिसके जरिए ये पेमेंट हो रहा है, जिसमें आपने वो अमेरिकन बेस्ड कंपनीज की बात की थी, ठीक है, कि भाई फोन पे है, जो भी है, गूगल पे है, जितनी भी हैं कंपनियां, तो उनको जाएगा 20%, बाकी पैसा बैंक्स को जा रहा है। 80 पैसे जो है, 10% उस बैंक को मिलेंगे जिसने लेन देन को प्रोसेस किया है। क्या इस जानकारी के सामने आने के बाद, क्योंकि बड़ा हिस्सा यही माना जा रहा है कि जो बैंक्स हैं, जो बड़े बैंक्स हैं, उनको बड़ा हिस्सा मिलेगा इसका, जो भी ये एक्स्ट्रा एमडीआर दिया जा रहा है, क्या उसके मद्देनजर भी अब ये कहा जा सकता है? जल्दी से एक छोटा सा जवाब, जो बैंक्स का ब्रेकअप है वो भी दिखा दीजिए कि एसबीआई को लगभग 25% जाएगा, यूनियन बैंक को साढ़े, हाँ ये वाला दिखा दीजिए, हम अपने दर्शकों को बता दें एक बार, 25% जा रहा है एसबीआई को, एचडीएफसी को 6.2%, कैनरा बैंक को 5.9%, यूनियन बैंक को 5.6%, और बैंक ऑफ बड़ौदा को 8%। हाँ पूरी करें अपनी बात।
3: देखिए इसके इसके पीछे दो तर्क है, एक तो ये कि 2007 में जब पेमेंट सेटलमेंट एक्ट बना था
1: कुछ अन्य
3: उसके
1: बैंक
3: बाद
1: है, एक सेकंड एक क्लैरिफिकेशन सिर्फ दे दूं, अन्य बैंक भी है जिनका जिक्र नहीं इस डेटा में दिया गया था, इसीलिए जिन बैंक्स का था हमने सिर्फ वो आपको दिखा दिया है। अब अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से आशुतोष।
3: अंजना जी 2007 में जब पेमेंट सेटलमेंट एक्ट था उसको आपने 2019 में आपने बाकायदा कानून में बदलाव करके अमेंड किया और फिर आपने कहा जो एमडीआर चार्जेस है हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो 2000 ये आपका, जबकि जो जो डिजिटल पेमेंट शुरुआत थी तो 2016 में यूपीआई की शुरुआत हुई, 3 साल बाद आपने कहा कि इसमें जीरो पेमेंट होगा, हम नहीं करेंगे। अब आप 7 साल के बाद आप उसमें बदलाव करने की बदलाव आप कर रहे हैं, तो या तो आपको 2019 की पॉलिसी सही थी या 2026 की पॉलिसी सही थी, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए, बहुत साफ तौर पर मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात यह
1: ट्रेस
3: कि
1: किया
3: जो
1: है वो, हाँ
3: हमारा
1: हाँ कि बैंक्स को बड़ा
3: हमारा
1: चंक जा रहा है इस पैसे का।
3: हमारा हमारा ये कहना है कि पिछले दिनों भारत सरकार ने जो है वो गूगल टैक्स भी 6% था उसको भी विड्रॉ किया है। और उसका वो जो टैक्स एप्पल अमेजोन गूगल फेसबुक को पे करना पड़ता था। तो इसलिए ये संदेह लोगों के मन में है कि क्या ये दबाव में हो रहा है, क्योंकि आप फेसबुक गूगल एप्पल जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उस पर 6% का टैक्स मिलता था, आपने उसको भी हटा दिया, अब आप इसको भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकन बार बार आपसे कह रहे हैं कि भाई ये जो सिस्टम है वो हमारी क्रेडिट कार्ड कंपनीज को नुकसान पहुंचता, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है उस कॉन्टेक्स्ट में। और जीटीआरआई जैसी एक थिंक टैंक साफ तौर पर कह रही है कि आप अमेरिका के प्रेशर में मत आइए।
1: अब सेकंड राउंड में इसका जवाब अजय आलोक देंगे। इस बीच आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है सोहिनी जी, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ग्रोथ की, उसी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, जिसके हस्ताक्षर के साथ आपने ये पूरा ऑर्डर देखा है। मैं इधर उधर की बात किए बिना सीधा सवाल पर आती हूं, क्योंकि आम लोगों के नजरिए से जब इसको देखते हैं सोहिनी जी, भाई उनको इतने दिन से, अब इतने सालों से ये फ्री सुविधा उपलब्ध थी, ठीक है, उनको जब ये फ्री की सुविधा उपलब्ध थी, उनकी जिंदगी का ये हिस्सा बन गया, उनके उनके रोजमर्रा का इकोनॉमिक लाइफस्टाइल का एक हैबिट बन गया, तब जाकर आप लोगों ने अचानक से ये चार्ज लगाया है। तो मतलब आरोप ये लग रहा है कि आप लोग इंतजार कर रहे थे क्या इतना दिन फ्री देकर कि लोगों की जिंदगी का हैबिट बन जाए, लोग जब इस पर आ जाएंगे उसके बाद हम ये चार्ज लगाएंगे। कई अब ये आरोप है, लोगों के आरोप है, उसका जवाब दीजिए।
4: जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मतलब मुझे लगता है कि ये गलत तरीका है इसको देखने का। यूपीआई में आज भी अगर हम देखें तो डेली जो एक्टिव यूजर्स है वो करीब 250 मिलियन है, महीने में करीब 450 मिलियन लोग हमारे देश की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में से डिजिटल यूज करते हैं। अगर आप देखेंगे तो आज की तारीख में भी जो लोगों के पास बैंक के खाते हैं, जिनके पास मोबाइल फोन है और इंटरनेट कनेक्शन है, डेली एक्टिव जो इंटरनेट पे लोग हैं वो करीब 700-750 मिलियन है। तो अगर देखा जाए तो यूपीआई की जो जर्नी है वो अभी बहुत लंबी है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला अच्छा अब सबकी आदत लग गई है तो अब कर लेते हैं। अभी तक बहुत ज्यादा हम लोगों को रास्ता तय करना है। देर आर स्टिल इंटरनेट एक्टिव बैंक अकाउंट होल्डर्स हु हैव मोबाइल फोन्स एंड आर यूजिंग इट एवरी डे, हु आर स्टिल नॉट ऑन डिजिटल पेमेंट्स। हम लोग अपने वेबसाइट पे, एनपीसीआई के वेबसाइट पे स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज पेनिट्रेशन पब्लिश करते हैं। अगर आप देखेंगे तो अभी भी बहुत ज्यादा काम है हमारे देश के लिए डिजिटल पेनिट्रेशन और डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ाने के लिए।
1: ठीक है,
4: और हमारा फोकस अभी वही है।
1: ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि भाई इसको और हमको प्रमोट करना है और बढ़ाना है, उस पर आपका फोकस है, लेकिन इसकी जरूरत, अचानक इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई? अब ये फैसला आ जाएगा और जो मर्चेंट है यानी जो बिजनेसमैन है जो बेच रहा है बेसिकली, उसको भाई ये एमडीआर देना पड़ेगा 0.4%। अब इतने दिनों से जब ये चल रहा था तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये आप लोगों को क्यों लागू करना पड़ रहा है ये मॉडल?
4: देखिए, सबसे पहले तो ये अचानक तो नहीं है। अगर हम देखें यूपीआई, इस साल हम यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सो ये 10 सालों में यूपीआई हैज रियली रियली ग्रोन। अगर आप देखें, इट इज नाउ टूडे द लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट पिछले पूरे साल में करीब 24,000 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं यूपीआई के। डेली बेसिस पे वी डू अबाउट 750-780 मिलियन ट्रांजेक्शन। तो ये जो यूपीआई की स्टुपेंडस ग्रोथ हुई है, ये विश्व में और कहीं इसका कोई मायने नहीं है। सो वन इज दैट। द सेकेंड पार्ट इज कि ऐसा एकदम नहीं है कि ये डिसीजन अचानक हुआ है, बल्कि पूरी पेमेंट इंडस्ट्री जो है, अगर आप जब एक यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका एक बैंक होता है, एक आपकी ऐप होती है, आपके मर्चेंट पे किसी ने क्यूआर लगाया होता है, तो बहुत सारे इंटरमीडियरीज होते हैं और इसके बारे में बातचीत सरकार के साथ, बाकी एसोसिएशंस के साथ, आरबीआई के साथ पिछले 4-5 वर्षों से चल रही है। उसमें इनफैक्ट पिछले साल 1.5 साल में आपने देखा होगा, वेदर इट इज ऑन टीवी न्यूज चैनल्स और इन यू नो रिपोर्ट्स इन द मीडिया, इन प्रिंट एटसेट्रा, देर हैज बीन अ लॉट ऑफ डिस्कशन। सो ये कहना कि ये डिसीजन एकदम अचानक आया है, मुझे लगता है थोड़ा सा गलत है। इसके ऊपर बहुत टाइम से काफी काम हो रहा है और बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, दे हैव ऑल बीन टेकन इनटू अकाउंट व्हेन यू लुक एट वेदर द स्केल, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट वी कंटिन्यू दिस ग्रोथ।
1: ठीक है, सोहिनी जी सुनिए ना, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब कांग्रेस पार्टी विपक्ष का आरोप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब इतना बड़ा फैसला है लोगों की जिंदगी को प्रभावित करेगा। उनका यह आरोप है कि अमेरिका के दबाव में फैसला लिया गया है, आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? उनका सीधा कहना है कि जो अमेरिकी कार्ड कंपनीज थी, वीजा, मास्टर कार्ड, ऐसे कार्ड पेमेंट कंपनीज और जो बड़े बड़े जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो यूपीआई एप्स चलाते हैं, उनको फायदा करने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है।
4: देखिए, हमारा, मैं एनपीसीआई की तरफ से मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जो डिसीजन के लिए जो फैक्टर्स हैं, द फैक्टर्स आर क्लियरली इन थ्री और फोर कैटेगरीज। वन ऑफ द कैटेगरी इज सिंपली अबाउट सेइंग व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट दैट इज नीडेड टू इंक्रीज द डिजिटाइजेशन। हम कैसे नेक्स्ट 400-500 मिलियन कस्टमर्स पे, जो पूरे स्टेट्स हैं टीयर थ्री एंड फोर के बियॉन्ड, जो सिटीज एंड टाउन्स एंड विलेजेस हैं, उसमें डिजिटाइजेशन कैसे पहुंचाया जाए। द सेकेंड पार्ट इज दैट द इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड ऑल्सो फॉर इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, कस्टमर प्रोटेक्शन, उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से आएंगे। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये हमें देखना चाहिए कि विच इज अबाउट कंज्यूमर एंड स्मॉल मर्चेंट प्रोटेक्शन। अगर आप सर्कुलर देखें या जो हमने रिलीज किया है हमारा कम्युनिकेशन, उसके अंदर फॉर वन, फॉर कस्टमर्स इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फ्री फॉर 95% ऑफ द ट्रांजेक्शंस। आज की तारीख में आप बोलें, जैसे वीजा मास्टर कार्ड की बात होती है, आप देखिए कोई एक बड़ी दुकान में जाता है, अभी 4,000-5,000 रुपए की अगर आप कोई ड्रेस खरीदते हैं या कोई भी सामान खरीदते हैं 4,000-5,000 रुपए का, आमतौर पे उस ट्रांजैक्शन पे दैट लार्ज मर्चेंट, जहां आप कार्ड्स यूज करते हैं, वो लार्ज मर्चेंट को जो कॉस्ट आएगी 1.5-2.5% की कॉस्ट आती है। तो 4,000 रुपए की अगर कोई सामान खरीदता है तो उनको 60-80 रुपए का कॉस्ट लगता है। अगर वही 4,000 रुपए का ट्रांजैक्शन कोई यूपीआई से करने वाला है तो मर्चेंट को 16 रुपए कॉस्ट लगेगी, वो भी अगर ये 4,000 रुपए का ट्रांजैक्शन है तो। अगर वो 2,000 रुपए का ट्रांजैक्शन है या 2,000 से कम का ट्रांजैक्शन, तो उस मर्चेंट को कोई कॉस्ट नहीं लगने वाली है। तो ये जो पूरा डिसीजन है हैज बीन रियली टेकन इनटू अकाउंट ऑल द नेसेसरी फैक्ट्स, ऑल द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंज्यूमर्स, स्मॉल मर्चेंट्स, इंश्योरिंग दैट टीयर टू टीयर थ्री टाउन्स वेयर यू नो डेली एक्सपेंसेस, ऑल ऑफ दोज आर टेकन केयर ऑफ।
1: और उसमें एक और सवाल है मेरा, देखिए कि क्रिटिसिज्म एक बड़ा है जिस पर अब मैं चाहती हूँ आप जवाब दीजिए, कि वो कह रहे हैं कि बड़े बैंकों को पहले से ही बहुत बड़ा मुनाफा हो रहा है। तो सबसे पहले तो बेसिक सवाल, ये पैसा, ये जो एमडीआर फंड है, ये पैसा किसको जाएगा, किस किस के पास जाएगा? और ये बड़े बैंकों को एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म, कई लोग जो इन्फ्लुएंसर्स है वो कह रहे हैं कि भाई बैंकों को पहले से ही फायदा हो रहा था, अब बड़े बैंकों को और भी मुनाफा जाएगा। सोनी जी,
4: देखिए, नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। आई थिंक ये बहुत जरूरी है ये बताना कि अगर ये चार्ज होगा, और ये बात बिल्कुल सही है कि ना कस्टमर को चार्ज होने वाला है ना स्मॉल मर्चेंट को चार्ज होने वाला है, इवन इफ इट इज चार्ज टू अ लार्ज मर्चेंट और फॉर लार्ज ट्रांजैक्शंस, तो ये जाएगा कहाँ पैसा? तो ये पैसा जो जाएगा वो चार भागों में बटा जाएगा। पहला तो ये कि, और ये सारे जो जिन भागों में बटा जाएगा, आई मेंशन कि यूपीआई का आप ट्रांजैक्शन करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, इन मिली सेकेंड्स कहीं पे भी, मतलब अबाउट 6.5 करोड़ मर्चेंट्स के यहाँ, छोटे से छोटे मर्चेंट से लेके बड़े से बड़े मर्चेंट तक आप स्कैन कर सकते हैं, या आप अपना यू नो बायोमेट्रिक से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप टैप करके भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये सब जो टेक्नोलॉजी है, इस सब में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, तो एक है बैंक, जिस बैंक से आपका ट्रांजैक्शन जाता है, ठीक है ना, जहां आपका खाता है। दूसरा होता है वो अक्वायरिंग एंटिटी, या तो बैंक या कोई और एंटिटी, आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी, जिसने वो मर्चेंट को अक्वायर किया है जहां पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो जिसने वो क्यूआर या पॉस टर्मिनल लगाया है। तीसरा होता है वो ऐप जिससे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आपने जो भी ऐप डाउनलोड की है, भीम है, फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, बहुत सारी 30 से ज्यादा ऐप्स हैं हमारे देश में, वो जो भी ऐप से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। और चौथा होता है एक बैंक इस ऐप के पीछे जो इस पूरे ट्रांजैक्शन की लायबिलिटी लेता है, तो वो जो उसको पीएसपी बैंक बोलते हैं, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक, जो पीएसपी है। तो ये जो चार एंटिटीज इस ट्रांजैक्शन को मुहैया कराती है उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये
1: ठीक है। लेकिन अगला सवाल मेरा ये है कि आपने शुरू में कहा था कि डिजिटल इंफ्रा बढ़ाना जरूरी है, हमें दूर दराज के इलाकों तक पहुंचना है। अब ये बैंक्स को पैसा जाएगा, यूपीआई ऐप कंपनीज को जाएगा, फिर ये डिजिटल इंफ्रा पर ही खर्च करेंगे, उसको बढ़ाने पर ही खर्च होगा, ये कैसे इंश्योर होगा, ये कैसे होगा कि ये डिजिटल इंफ्रा पर खर्च करेंगे?
4: देखिए, क्योंकि यही है, यही एंटिटीज हैं जो जाके इन जगहों पे इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक तो वो बढ़ाएंगे ये जो बैकएंड पे इनका चलता है, दूसरा आपको जाके एक्वायर करने पड़ते हैं मर्चेंट्स, देर इज अ रियल कॉस्ट। अगर आज आप बोलेंगे कि भाई सिक्किम में यूपीआई की पेनिट्रेशन जो है वो 30% से कम है, अगर आप कहते हैं, तो कौन जाके इस सिक्किम के मर्चेंट्स को अक्वायर करेगा, कौन वहां पे जाके अकाउंट्स खोलेगा, कौन वहां पे जाके कस्टमर्स को इंसेंटिवाइज करेगा ताकि वो डिजिटल पेमेंट्स पे आए। ये तो एक फ्रंट एंड का काम है, एक बैक एंड का काम है। टुडे इफ वी आर सेइंग 750 मिलियन ट्रांजेक्शन का प्रोसेसिंग इन अ सीमलेस, सिक्योर एंड ट्रस्टेड वे, इट टेक्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। द थर्ड पार्ट इज साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। इतने ज्यादा साइबर सिक्योरिटी जो एडवांसमेंट्स होते हैं टेक्नोलॉजी में, इतना ज्यादा अभी ये जितने भी एंटिटीज हैं
1: ठीक
4: उनको
1: है।
4: अपने जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको
1: हाँ
4: अपग्रेड करने के लिए इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट
1: जी
4: करना पड़ेगा, क्योंकि ये इवॉल्विंग है। आप जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नई आ रही है, जो भी उन्होंने पुरानी टेक्नोलॉजी लगाई
1: ठीक
4: है
1: है।
4: उसके उसको
1: हाँ
4: उन्हें इवॉल्व करते रहना
1: ठीक ठीक
4: पड़ेगा।
1: अब एक रियल कंसर्न वाला सवाल है, सिंपल सवाल, सीधा सवाल। एमडीआर का बोझ अल्टीमेटली कोई भी दुकानदार हो, भाई मैं उससे लूंगी, उसको पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है, वो अल्टीमेटली तो पास करेगा ही करेगा ना, वो बोझ कैसे नहीं पास ऑन करेगा? आज ना करे कल करेगा कंज्यूमर पर।
4: नहीं देखिए, ऐसा है ना, एमडीआर कोई नई चीज नहीं है इंडस्ट्री में। आप एक चीज बताइए, आज भी जब कोई मर्चेंट है, चाहे वो बहुत बड़ी दुकान हो या कोई बहुत बड़ा ऑनलाइन मर्चेंट है, वे लोग आज भी एमडीआर तो देते हैं। इनफैक्ट 1.5 से 2.5% एमडीआर देते हैं। जब आप कोई भी चीज खरीदते हैं वहां पे जाके, जब कार्ड से खरीदते हैं, तो क्या वो आप मर्चेंट आपको पास ऑन कर रहा है? वो मर्चेंट नहीं पास ऑन कर रहा है। क्यों नहीं पास ऑन कर रहा है? क्योंकि जो डिजिटल पेमेंट की सुविधा है उससे मर्चेंट्स को के लिए भी काफी सारे फायदे हैं। उनके लिए सेल्स बढ़ती है, उनका जो बैकएंड अकाउंटिंग है वो थोड़ा सिंपल होता है, कस्टमर्स के लिए सहूलियत होती है। तो एक मर्चेंट को क्या चाहिए? आप जो भी करते हैं, आप जब मर्चेंट्स, वो कस्टमर्स ज्यादा लाने के लिए, कस्टमर्स की सहूलियत के लिए करते हैं, राइट?
1: ठीक
4: सो एमडीआर ऑन यूपीआई फॉर सेलेक्ट ट्रांजेक्शंस इज अ न्यू थिंग।
1: बट एक चिंता जाहिर की जा रही है ना सोनी जी, कि अल्टीमेटली लोग वापस कैश इकोनॉमी की तरफ, क्योंकि इतना एक कदम उठाए गए कि लोग डिजिटल पे आए, डिजिटल पे आए, वापस कैश इकोनॉमी की तरफ ना चले जाएं, क्योंकि उनको जो भी देना पड़ रहा है, कम हो ज्यादा हो, वो भी अगर बचा लें, उनको लगेगा वो बेहतर है, कैश इकोनॉमी की तरफ वापस ना जाएं, नकदी की तरफ, वो कैसे आप सुनिश्चित करेंगे?
4: नहीं देखिए, कंज्यूमर्स की जो चॉइस होती है, और कंज्यूमर्स के लिए स्पेसिफिकली, बिकॉज देर इज द कंज्यूमर इज नॉट गोइंग टू गेट चार्ज्ड, तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए कि कस्टमर, जिनको डिजिटल पेमेंट्स इज नॉट जस्ट अबाउट द चार्ज, डिजिटल इज अबाउट सिक्योरिटी, अबाउट सेफ्टी, अबाउट कन्वीनियंस एंड हैबिट। इट इज नाउ टुडे यूपीआई इज अ हैबिट फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस। सो ये एप्रिहेंशन है, लोग बोल रहे हैं, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कस्टमर्स इसकी वजह से, स्पेशली एज दे अंडरस्टैंड द फैक्ट्स, विच इज दैट द कस्टमर इज नॉट गोइंग टू गेट चार्ज। आज आप यूपीआई सिर्फ मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए नहीं यूज करते हैं, आप बिल पेमेंट के लिए यूज करते हैं, आपको जो भी मनी ट्रांसफर करना होता है उसके लिए यूज करते हैं। और हमने बहुत सारी जो जो बिग टिकट कैटेगरीज है उसके लिए हमने एक इंडस्ट्री प्रोग्राम भी बनाया है
1: हाँ ठीक है।
4: जिसके अंदर
1: आपने चूंकि एक सोहिनी जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ, बाकी मेहमान मेरा इंतजार कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है कि रेलवे जैसी सेवाओं पर जो फिक्स 5 रुपए का चार्ज है, जो हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को ग्राफिक्स में, ये पैसा मतलब मैं ट्रैवल कर रही हूँ ट्रेन से और मैंने एक टिकट बुक किया, अल्टीमेटली मेरे हर टिकट पर 5 रुपए एक्स्ट्रा IRCTC देगा या रेलवे देगा, उन्हीं में से कोई देगा, रेलवे देगा, तो अगर वो देते हैं वो 5 रुपया, तो कीमत तो बढ़ाएंगे ही ट्रैवलर के लिए, वो कहां से लाएंगे पैसे?
4: देखिए, ये बहुत ही सिंपल एमडीआर जो लगता है, इसका फुल फॉर्म है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो ये मर्चेंट देगा, जो भी आपको सेवा उपलब्ध करा रहा है मर्चेंट वो पे करेगा। तो इसके अंदर अगर IRCTC करा रहा है तो ये IRCTC का चार्ज है।
1: और वो पास ऑन ही करेंगे अल्टीमेटली ट्रैवलर्स को।
4: देखिए, हमारा सर्कुलर बहुत क्लियरली बोलता है कि यूपीआई का चार्ज कस्टमर्स को नहीं पास ऑन किया जा सकता है।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। आने वाले वक्त में सब अभी इंतजार कर रहे हैं कैसे ये प्ले आउट होता है, उसके बाद से शायद और क्लैरिटी आएगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब यहीं से अजय आलोक जी आपके पास सीधा आते हैं और ये सवाल पूछते हुए आते हैं। आप सबने उनकी बात सुन ली है जो उनका इन्फॉर्मेशन है, जाहिर तौर पर वो पॉलिटिकल बातों पर ज्यादा नहीं बोल रही है, लेकिन अजय आलोक जी अल्टीमेटली अब भाई रेलवे को ही 5 रुपया हर टिकट पर ज्यादा देना पड़ रहा है, कहां से लाएगा पैसा?
5: देखिए अंजना जी, रेलवे को भी जाएगा पैसा 2000 के ट्रांजैक्शन के ऊपर। पूरी इसकी डिटेलिंग है कि 2000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन होगा, चाहे रेलवे में हो, बिजली बिल में हो, किसी इंश्योरेंस में हो, तब जाएगा। म्यूचुअल फंड में 0.02% जाएगा अगर आपको म्यूचुअल फंड पे करना है यूपीआई से। तो दूसरी बात यह समझिए अंजना जी, इस देश में कैश इकोनॉमी खत्म नहीं हुई है। हम आज भी कैश इकोनॉमी 1.8% 1.9% की तरह ग्रो कर रहे हैं। आज की तारीख में हमारे यहाँ टोटल लगभग 42 लाख करोड़ रुपए सर्कुलेशन में है। इतने डिजिटल पेमेंट होने के बावजूद भी, इतने ट्रांजैक्शन होने के बाद भी कैश ट्रांजैक्शन कम नहीं हुआ है, क्योंकि ग्रोथ है। फॉर्मल इकोनॉमी और इनफॉर्मल इकोनॉमी दोनों में ग्रोथ है। ये भारत की स्ट्रेंथ इसी मिलाई करती है, तो उसका टेंशन ही नहीं कि हम कैश की तरफ लौटेंगे। आज ये जो चीज किया गया है भाई, आप सस्टेनेबल कैसे बनाइएगा? आपको कॉन्स्टेंट रिसर्च चाहिए कि आपकी साइबर सिक्योरिटी इंप्रूव रहे, आपको कॉन्स्टेंट इसको बढ़ाते रहना है। जैसे भी वो बता रही थी कि सिक्किम में हम रीच कैसे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, तो ये उन डिजिटल मनी, दिस इज नॉट अ टैक्स, ये टैक्स नहीं है, ये मर्चेंट ही पे कर रहा है। मुझे नहीं समझ में आता है कि इसमें हाय तौबा मचाना, जैसे मैंने बोला ना कि हम बनाना चाहते हैं अर्बन प्रॉस्पर इंडिया, यूपीआई अर्बन प्रॉस्परस इंडिया, इनका काम हो गया कांग्रेस वालों का उठापटक इंडिया। हर चीज आप मीन मेक लगा के ले आएंगे बिना होमवर्क किए हुए, बिना रिसर्च किए हुए,
1: और पॉलिटिक्स में गए बिना। सोहिनी ने रिस्पॉन्ड किया उस सवाल पर, उन्होंने कहा कि कार्ड से अल्टीमेटली जो एमडीआर देना पड़ रहा है बिजनेसमैन को, वो उसको नेट फायदा ही हो रहा है इसके बावजूद। तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए कार्ड ट्रांजैक्शन ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया और लोग अचानक से कार्ड की तरफ वापस चले जाएंगे।
0: नहीं, वैसे ये बिल्कुल यही होगा, और मैं आपको अभी समझाता हूं कैसे। जैसे सोहिनी जी ने कहा था कि ये टैक्स दुकानदार पे लगेगा, हाँ। अब ये दूसरी बात है कि एक सर्वे हुआ है लोकल सर्कल्स का 15 सितंबर का, 80% दुकानदार कह रहे हैं कि वो पास ऑन करने वाले हैं कंज्यूमर ग्राहक पे, लेकिन वो दूसरी बात है। अब आप दुकानदार का देखिए, ये अजय आलोक जी और बीजेपी के प्रवक्ता लगातार कह रहे हैं कि 95% जो ट्रांजैक्शंस हैं वो टैक्स फ्री हैं, उन पे एमडीआर नहीं लगेगा, लेकिन बाय वैल्यू जो दुकानदार का मतलब वैल्यू से है, 2/3 पे ये चार्ज लगने वाला है, 2/3 बाय वैल्यू पे चार्ज लगने वाला है, और 90% जो हमारे डिजिटल दुकानदार हैं वो छोटे हैं, उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है, लगातार मेरे पास आंकड़े हैं, 5% का प्रॉफिट मार्जिन है, और 0.4 इसका 8% लेने वाला है। तो ये कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं है, ये छोटे दुकानदार हैं, इनके बड़े छोटे मार्जिन हैं, और ये फिर से अब इरोड होने वाला है। अब दूसरी बात आती है कि जैसे शहजाद पूनावाला ने कहा, एक आरोप लगाया था कि ये कांग्रेस पार्टी मास्टर कार्ड वीजा के पक्ष में है। अब देखिए, जैसे ही आप चार्ज लगाएंगे, सब्सटीट्यूशन होगा, कुछ लोग कैश की तरफ जाएंगे। अजय आलोक जी ने खुद अभी स्वीकार किया है कि कैश इकोनॉमी अभी भी चल रही है, और जैसे ही आप चार्ज लगाएंगे कैश इकोनॉमी की ओर और लोग जाएंगे। और इसी सर्वे के अनुसार 53% यूपीआई यूजर्स ने कहा है कि वो अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड का यूज करेंगे, यानी कि इस चार्ज के कारण अब मास्टर कार्ड और वीजा को भी फायदा मिलेगा, ना केवल वॉलमार्ट और गूगल को।
1: क्या तो ये चारों इसका कहने का अमिताभ जी, यही बात मैंने आपसे पूछा था, जहां पर आप अंत में आए वही बोल गए। अमिताभ जी, मेरा सवाल आपसे यह है, क्योंकि ये सवाल मैंने सोहिनी से पूछा, उनका कहना है कि भाई जो एमडीआर है वो अभी भी जो 2% के आसपास है इन कार्ड्स पर, वो उनके लिए 0.4% है यहाँ पर, तो कोई 0.4% छोड़कर 2% पर क्यों जाएगा, इस पर आपका आर्ग्यूमेंट?
0: ये मैं नहीं कह रहा ना, ये एक लोकल सर्कल्स का सर्वे है,
1: ये लोकल सर्कल सर्वे ने ये सर्वे कब किया है, ये सब ऑर्डर आने के पहले ही सर्वे कर लिया।
0: 15 सितंबर को सर्वे किया है, जैसे ये घोषणा हुई थी ये सर्वे किया था, इसके आंकड़े सामने आए हैं,
1: और उन्होंने सारे
0: सेगमेंटेशन होता है, नहीं मेरी बात सुनिए, सेगमेंटेशन होता है। यूपीआई यूजर गरीब लोग इसमें शामिल हैं, अब गरीब लोग क्रेडिट कार्ड तो यूज नहीं करते, कुछ गरीब लोग ज्यादातर मिडिल क्लास वाले डेबिट कार्ड यूज करते हैं, उसमें भी चार्जेस आते हैं, अलग अलग टाइप्स के डेबिट कार्ड होते हैं। तो
1: है।
0: जब आप किसी एक सिस्टम पे अगर आप चार्जेस लगाएंगे तो दूसरे सिस्टम पे लोग यूज करने लगेंगे, क्योंकि और फायदे मिलेंगे उनको, पॉइंट्स मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा।
1: जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए शहजाद जी।
2: सबसे पहले अंजना जी, मैं आपसे
1: शहजाद जी, एक तो बहुत ज्यादा खुश होने की बात ये है नहीं भाई, पैसा तो लगाया गया है, चाहे मर्चेंट पर लगा हो कंज्यूमर पर ना लगा हो, तो ऐसे कोई वाहवाही वाला काम तो ये हुआ नहीं है। तो जो लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, जिनके लिए जीवन का हिस्सा है, उनके लिए तो सेटबैक है ही।
2: अंजना जी, अश्नीर ग्रोवर की बातों पर इतना ध्यान मत दो, प्रॉब्लम यही है कि हम अश्विनी ग्रोवर को अपना इकोनॉमिक्स मास्टर समझ के जो अपना बिजनेस नहीं संभाल पा रहा है उसके ऊपर हम आधारित कर रहे हैं अपने एनालिसिस को. मैं आपको कह रहा हूं ऑन अथॉरिटी, माई टैक्स पेयर मनी इज गोइंग टू सब्सिडाइज 4% ऑफ दोज बिग मर्चेंट्स जो अभी तक इतने बड़े हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शन कर रहे थे. मैं जरूर खुश होऊंगा कि मेरे एवरेज कॉमन टैक्स पेयर से ये भार हटाकर अब 96% जो एलिजिबल है उनको तो फ्री मिलेगा, पर जो 4% अमीर है मर्चेंट ट्रांजेक्शन करते बड़े उनको पैसा देना.
1: बीच में ही काटना पड़ा, वक्त अचानक हो गया. सोनी जी से आज लंबी बात हो गई, लेकिन उम्मीद करते हैं कि थोड़ी स्पष्टता हमारे दर्शकों के लिए आई होगी. हालांकि अभी भी जब ये लागू होगा उसके बाद धीरे धीरे देखिए तस्वीर कैसे बदलती है, हमारी नजर इस पर बनी रहेगी. आप सब हमारे साथ रहिएगा, आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाएंगे. जिस सऊदी अरब के मक्का में मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल मौजूद है वहां हमले की कोशिश किसने की, इसके बाद आपको बताएंगे कि यूपीआई पेमेंट पर चार्ज तो व्यापारी चुकाएगा लेकिन ये जेब से किसकी जाएगा. आखिर में आपको बताएंगे कि समंदर में भारत और पाकिस्तान के जंगी जहाज कैसे भिड़ गए. देखते रहिए आज तक.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
2: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
3: लायन डेट नट बाइट्स।
4: SBI Celebrations Unlimited. Ye Ganeshotsav banega special with festive offers on car loan, gold loan, personal loan and loan against mutual funds.
5: Aur bhai kahan gaye the ghumne?
6: GK Max.
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: JK Max. Best putty.
8: JK Wall Max.
6: Best paint.
8: JK Max.
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन most beautiful walls के लिए सिर्फ JK Max paints. JK Max. JK Max paints. खुशियों के रंग।
9: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
11: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
12: सोच बदलो और बैंक भी।
13: एक तो एक
14: श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
3: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
4: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
5: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
6: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
7: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
5: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंग्स मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द PR। अब मैं क्या ही बोलूं?
8: परिवार अटूट भरोसा।
9: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
10: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद। लायन कश्मीर हनी,
9: असली शहद असली स्वाद।
11: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with
1: Signature Finest Cardamom Seeds.
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
3: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल.
4: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच. हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें.
5: आज तक के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे बड़ी सभा.
6: आज का बैटलफील्ड 4000 किलोमीटर तक जा रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है.
7: इमीडिएट बालापुर मान जाइए, अब वो जब भी नहीं माने तो फिर सिंदूर की हमारे को नौबत आती.
8: अंडमान निकोबार आइलैंड तो जरूर हमको उसका एडवांटेज लेना ही चाहिए.
9: जो बाउंड्री प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में, इसका भी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता.
10: कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा, भारत की सेनाएं उसका जवाब देगी.
5: आज तक देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ी आवाज़.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: क्या सिर्फ एक शौचालय पूरे गांव की तस्वीर बदल सकता है? तो जवाब है हाँ। यूपी में नई स्वच्छता सुविधाएं और ODF अभियान के बाद गांवों की ही नहीं लोगों की तस्वीर बदल गई है। योगी सरकार ने 2025 को विकास का स्वर्णिम वर्ष कहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत यूपी में 2,15,00,000 घरों में शौचालय बनवाए गए, जबकि दूसरे चरण में 48,99,000 अतिरिक्त शौचालयों का निर्माण हुआ। पर देश के 15.50 लाख नालों, सेप्टिक टैंकों और गोवर्धन प्लांटों के रखरखाव पर हर साल 750 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी की गई। इन्हीं प्रयासों के बदौलत स्वच्छ भारत मिशन में यूपी ने देश में तीसरा स्थान हासिल किया। यूपी के बदलते गांवों की तस्वीर देखने के लिए हमारी टीम पहुंची मुरादाबाद के डिडोरी गाँव में और इसका असर जमीन पर दिखाई दिया। गांव की रहने वाली प्रीति कहती है,
6: जितने मतलब परेशान थे वो लोग, अब कोई परेशानी नहीं है, उन्हें साफ सफाई बिल्कुल बढ़िया है सर।
5: लीलावती बताती हैं,
7: बहुत लाभ है भैया इस टाइम, सब कुछ लाभ है, देखो बाहर नहीं जाते, अब टाइम से खुला मिला है।
5: वहीं बंगूपुरा गांव में ग्रामीण समरपाल सिंह कहते हैं,
8: साफ सफाई समय से होती है गांव में, सफाई कर्मचारी समय से आते हैं और शौचालय मुक्त है हमारा गांव, खुले में कोई शौच नहीं करने जाता, समय समय से फॉगिंग भी होती है गांव में जिससे कि बीमारी ना आए।
5: यानी तस्वीर सिर्फ शौचालय बनाने तक सीमित नहीं है, साफ सड़कें, नियमित सफाई, सामुदायिक शौचालय और ODF अभियान ने कई गांवों में बदलाव की नई कहानी लिखी है।

0: ये कदम जो हमारे इंडिजिनस हमारे होम ग्रोन डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है उसको तबाह करने की दिशा में चल रहा है।
1: कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही है, किसी भी व्यक्ति को कॉमन मैन को कोई भी 2000 रुपए तक कोई चार्ज नहीं देना होगा और किसी कस्टमर को नहीं देना होगा।
2: यूपीआई के 2000 से ज्यादा के लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लागू करने के फैसले पर मचे सियासी घमासान के बीच RBI का बयान सामने आया है। RBI नेक्स्ट पर अपने बयान में कहा है, भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की लंबे समय की स्थिरता को मजबूत करने के दिशा में ये एक अहम कदम है। इससे UPI को देश भर में ग्राहकों और व्यवसायों के लिए आगे बढ़ने, नई सुविधाएं लाने और सेवाएं देने में मदद मिलेगी। इकोसिस्टम में शामिल सभी लोगों के बीच MDR का सही और उचित बंटवारा टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सेप्टेंस नेटवर्क में लगातार निवेश को बढ़ावा देगा। इसे UPI को ज्यादा जगहों पर स्वीकार किए जाने, ग्राहकों की संख्या बढ़ाने और ट्रांजैक्शन की संख्या में लगातार बढ़ोतरी में मदद मिल सकती है। कमोवेश यही बात फोनपे के CEO समीर निगम भी कह रहे हैं।
3: पूरा इंडस्ट्री आगे साथ में बढ़ पाएगा, सबके लिए जो है बहुत क्रिटिकल था ये। MDR के बिना जो है काफी तकलीफ हो रही थी पिछले खास करके 3-4 साल से, वॉल्यूम इतना भाग रहा है, हम लोग को इतने सर्वर्स डालने पड़ रहे हैं और आजकल तो AI के जमाने में भी और भी ज्यादा रिस्क हो गया, साइबर सिक्योरिटी पे बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। पेमेंट्स जो है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का, मेरे हिसाब से बिगेस्ट बेनिफिशियरी एक्चुअली अल्टीमेटली कस्टमर ही होगा, उनके लिए कल भी फ्री था आज भी फ्री है।
2: UPI पर MDR को लेकर घमासान सरकार के ताजा फैसले से शुरू हुआ। सरकार ने मंगलवार को 2000 रुपए से ज्यादा के भुगतान पर 0.4% शुल्क लगाने की घोषणा की। ये शुल्क कारोबारियों को किए जाने वाले UPI भुगतान पर लगेगा। नियम 15 अक्टूबर से लागू होगा। हालांकि खास बात ये है कि ग्राहकों से ये शुल्क नहीं लिया जाएगा, MDR केवल कारोबारियों के लिए देय होगा। साथ ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले भुगतान पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा। कांग्रेस इस फैसले को अमेरिका के दबाव में उठाया गया फैसला बता रही है। भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट होता है। दूध, सब्जी, दवा खरीदना हो या ऑटो रेस्टोरेंट में भुगतान करना हो या फिर किसी को एक क्लिक में पैसे भेजना, UPI भारत के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, जिसमें बड़े दुकानदारों से लेकर रेहड़ी पटरी वाले भी शामिल हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, अब 2000 रुपए से ऊपर के मर्चेंट UPI लेन देन पर MDR लगाया जा सकता है। इन ट्रांजैक्शंस की संख्या भले ही सिर्फ 5% हो, लेकिन UPI के कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू का करीब 65% इन्हीं में है। सरकार कहती है कि ग्राहक से कोई फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन दुकानदार पर लगने वाली फीस आखिर आएगी कहां से? कीमतों में जुड़कर ग्राहक की जेब से। अमेरिकी पेमेंट कंपनियां लंबे समय से भारत की जीरो MDR नीति का विरोध करती रही हैं। अब मोदी सरकार ने ठीक उसी दिशा में नीति बदलने का रास्ता खोल दिया है। ये बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भले ही जनता को 2000 रुपए तक के UPI पेमेंट पर कुछ भी नहीं देना होगा, लेकिन जिन दुकानदारों को देना होगा, क्या वो किसी दूसरी तरह जनता से ही नहीं वसूलेंगे? क्या वो कैश को बढ़ावा नहीं देंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या डिजिटल पेमेंट पर इसका असर नहीं होगा? आज तक ब्यूरो।
4: पता नहीं ये सरकार क्या कर रहे हैं, इनकी पॉलिसी क्या है, क्या सोचते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता। अचानक से कोई नियम या कुछ थोप दिया जाता है, फिर जनता पर जब उसकी आदत लग जाती है, जनता उसके आदी हो जाते हैं, फिर उसे बदल दिया जाता है। अगर इसमें भी इतना टैक्स थोप देंगे 2000 के ऊपर के पेमेंट पर, तब तो आने वाले समय में जनता काफी क्राइसिस में आ जाएगी। इमीडिएटली इसे बंद करना चाहिए, जो भी निर्णय है ये बिल्कुल गलत निर्णय है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
5: नहीं, UPI में तो ऐसा है कि भाई 2000 तक जो व्यापारी लोग होते हैं वो 2000 तक उसकी सीमा है, और उसमें कोई मतलब और ज्यादा पैसा ले रहे, इसी तरह का राहुल गांधी का आरोप है, वो इसमें तथ्य नहीं है। कोई सरकार ने अभी निर्णय ऐसा लिया भी नहीं है। वो किसी व्यापारी को और किसी लोगों को तकलीफ देने की भूमिका हमारी बिल्कुल नहीं है।
6: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: तक इस खास शो में अगले आधे घंटे में दिनभर की तमाम बड़ी खबरें शामिल होंगी, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं हेडलाइंस के साथ। 2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर शुल्क के फैसले खिलाफ राहुल गांधी का मोर्चा, कहा नियम वापस ले सरकार। वित्त मंत्री का जवाब, फैसले के पीछे कोई विदेशी दबाव नहीं। पीएम मोदी के जन्मदिन से एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा 2014 के बाद से भारत में नियम कानून और शासन दोनों ही अच्छे, कल से बीजेपी चलाएगी सेवा संकल्प अभियान। गोरखपुर में सीएम योगी की चुनावी हुंकार, कहा पहले एसपी और कांग्रेस सरकार में अपराध और डर, आज का यूपी दंगा और कर्फ्यू मुक्त, 1,00,000 सरकारी नौकरी देने का किया वादा। छत्तीसगढ़ के जीरम घाटी नक्सली हमले में 10 दोषियों को फांसी की सजा, 27 लोग की हत्या मामले में 13 साल बाद एनआई कोर्ट का फैसला, कई कांग्रेसी नेताओं की हुई थी मौत। कन्नड़ एक्टर अनंत नाग को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड, अभिनय में शानदार योगदान के लिए सम्मान, पीएम मोदी ने दी बधाई। और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं यूपी की राजधानी लखनऊ से आई उस खबर के साथ जिसने हड़कंप मचा दिया। दरअसल लखनऊ में एक शख्स ने अपनी कार से एक लड़की को कुचलने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि शाहनवाज नाम के आरोपी ने लड़की से पहचान छिपाकर दोस्ती की थी, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ। अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 1098 यानी हत्या का प्रयास और बीएनएस की धारा 352 यानी जानबूझकर गाली गलौज का मामला दर्ज किया है। उधर पीड़िता ने महिला आयोग की अध्यक्ष अपर्णा यादव से मुलाकात की। लड़की ने आरोप लगाया कि शाहनवाज उस पर जबरन शादी का दबाव बना रहा था। अपर्णा यादव ने इसे लव जिहाद का मामला बताया।
1: ये तस्वीरें डरावनी हैं। सफेद रंग की ये वरना कार एक महिला को टक्कर मारकर इस तरह निकलती है। तस्वीरें शुरू से देखिए। यहाँ ये UP 32 KH 8090 नंबर की सफेद रंग की वरना कार है। इस कार के भीतर एक आदमी बैठा हुआ है जो कार चला रहा है और दूसरा उसके बगल में बैठा है। सामने बोनट पर एक महिला लगभग लटकी हुई है। वो इस कार को रोकने की कोशिश कर रही है मगर कार सवार कार नहीं रोक रहा। महिला चिल्लाती है मगर कार सवार उसे टक्कर मारकर भाग जाता है।
2: पहले कार आई, कार आने के बाद में फिर क्या हुआ, वो फिर रोके, शीशा खोले उसने, ठीक है, शीशा खोलने के बाद में फिर वो जो दीदी,
3: आपकी चाय की दुकान चल रही थी, पहले गाड़ी आई,
2: पहले गाड़ी आई, फिर दीदी स्कूटी, अपनी स्कूटी खड़ी की,
3: ठीक है, गाड़ी कितनी देर पहले आई थी,
2: तुरंत बस गाड़ी आई, तुरंत स्कूटी आई।
3: मतलब कैसा लग रहा था कि फॉलो कर रही हो?
2: वो नहीं, दीदी मतलब कि उसके ऊपर ऐसे रुक गई, रोक रोकने की कोशिश कर रही थी, तो उसने नहीं रोका, फिर यहाँ यही मेरी दुकान के सामने रोका, ठीक है, रोकने के बाद में फिर आगे रुकते रोकते वहाँ रुक गई दीदी, फिर वहाँ रुकी और दीदी बस जैसे साइड से ना, साइड से मतलब बात करने की कोशिश कर रही थी, बस तुरंत ही रुक गए। बस रोकने के बाद में बस इतनी स्पीड में भगाया जैसे दीदी थोड़ा साइड में, बस दीदी फिर ऐसे रोकने की कोशिश, बहुत गिर गई दीदी ने, तो यहाँ चोट खा गई। मेरे दुकान पे कस्टमर बैठे, वो भी वीडियो बनाए, और भैया भी बैठे थे, हम अपने भी फोन से, तो वहाँ भैया भी बैठे थे, वो भी कुल्हर मारे कि रुक जाए, तब भी नहीं रुका, और दीदी को चोट खाए, उनके साथ में उनकी बुआ भी।
1: अब इस तस्वीर की पूरी कहानी समझिए। कार के भीतर गाड़ी चला रहे शख्स का नाम है शहनवाज और जिस लड़की को इसने टक्कर मारी है उसका नाम अनामिका है। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। किसी बात पर दोनों का विवाद हुआ जिसके बाद शहनवाज ने अनामिका को टक्कर मारी। आरोप है कि शाहनवाज ने अनामिका से अपना नाम छिपाकर दोस्ती की थी। उसने अपना नाम यश ठाकुर बताया था। घटना का वीडियो सामने आया तो पुलिस एक्शन में आई और शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया है।
4: लड़की का तत्काल मेडिकल परीक्षण करा दिया गया है। तहरीर प्राप्त करके हत्या के प्रयास की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें जो नामजद एक अभियुक्त है उसकी उसको डिटेन करके उससे डिटेन में पूछताछ की जा रही है और जो वाहन जो इस घटना में यूज हुआ था उसको भी बरामद कर लिया गया है।
1: आरोपी को जब हिरासत में लिया गया था तब हमने उससे बात करने की कोशिश की मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया।
5: समय मौजूद हूँ थाने पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि शहनवाज को रखा गया है, शहनवाज को यहाँ पर रखा गया है। तो बस प्लीज इस तरीके से देख सकते हैं आपकी शहनवाज। शहनवाज
1: अब पुलिस पड़ताल कर रही है कि आखिर मामला क्या था, शहनवाज को लड़की क्यों रोकना चाहती थी और ऐसा क्या हुआ कि शहनवाज ने लड़की को कुचलने की कोशिश की। समर्थ श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: बात अब यूपीआई की। यूपीआई पर केंद्र सरकार की तरफ से टैक्स लगाने को लेकर सियासत तेज है। विपक्ष सरकार के टैक्स वापस लेने की मांग कर रही है, तो वहीं सरकार इसकी वजह भी बता रही है।
6: भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई, इसने पॉपुलेशन स्केल पर फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल ट्रांजेक्शन को नई गति दी है। आज विश्व के 50% रियल टाइम पेमेंट्स इसी टेक्नोलॉजी पर होते हैं।
7: ब्रिक्स के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस यूपीआई की ताकत को दुनिया को बताया था, आज वो यूपीआई देश में सियासत का नया मुद्दा बन गया है। ग्राहक से दुकानदार को 2,000 रुपए से ऊपर के भुगतान पर 0.4% या 300 रुपए अधिकतम चार्ज लगाने का फैसला राजनीतिक तूफान खड़ा कर गया है।
8: मोदी जी हैज अ कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ही इज नाइदर लेफ्ट नॉर राइट। ही हैज डिसाइडेड टू लाई डाउन स्ट्रेट एंड प्रोस्ट्रेट हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। ही हैज पुट अ टैक्स ऑन एवरी सिंगल इंडियन पर्सन बाय टैक्सिंग यूपीआई एंड गिविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी to the United States. Modi ji, please stop lying down in front of the United States. Have a spine, khade ho jaiye aur UPI tax ko wapas lijiye.
7: उधर सरकार की अपनी दलील है। सरकार का कहना है कि इसके वित्तीय सिस्टम को चलाने में भारी भरकम खर्च आता है। यूपीआई लेन देन में चार्ज लेने का जो फैसला हुआ है, उसमें पर्सन टू पर्सन यानी आपसी लेन देन पर यूपीआई पहले की तरह मुफ्त है। रेलवे, इंश्योरेंस, ईंधन जैसी सेवाओं पर 5 रुपए प्रति लेन देन शुल्क ही लगेगा। यूपीआई से हर महीने के ऑटो पे में भुगतान पहले की तरह ही मुफ्त रहेंगे। महीने में यूपीआई से 1,00,000 रुपए तक भुगतान पाने वाले दुकानदार दायरे में नहीं आएंगे। 2,000 रुपए से ऊपर के भुगतान पर लगने वाली फीस ग्राहकों पर नहीं डाली जा सकेगी। उधर आरबीआई ने भी यूपीआई पेमेंट में लगने वाले चार्ज का बचाव किया है। आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट्स पर चार्ज लगाने के फैसले को भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को टिकाऊ बनाए रखने के लिए जरूरी बताया है। 15 अक्टूबर से यूपीआई की नई व्यवस्था लागू होगी। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब दिवाली जैसे त्योहार का मौसम आने वाला है, जहां खरीदारी बढ़ती है। आज तक ब्यूरो।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में थे और यहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक दृष्टिकोण यानी मोदी नॉमिक्स ने भारत की तेज आर्थिक विकास की नींव रखी और देश प्रगति और सुशासन के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ रहा है।
9: भारत की इकॉनमी 7.8% की दर से बढ़ गई है। भारत की इकॉनमी की सक्सेस यानी इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी की नींव में यदि कुछ है तो मोदी नॉमिक्स है। मोदीनॉमिक्स को अगर एक शब्द में समझना हो तो वह शब्द है इंडिया। इंडिया, आई फॉर इंक्लूसिव, एन फॉर न्यू एज, टी फॉर डिजिटल और आई अगेन आई फॉर इनोवेटिव और ए फॉर आत्मनिर्भर। और साथियों, 25 साल में नरेंद्र मोदी जी पब्लिक लाइफ में है, लेकिन यह बात सिर्फ सरकार बनाने या किसी पद पर बने रहने की नहीं है, यह बात ट्रस्ट की है कि राजनीति में इतने लंबे समय तक रहते हुए भी उस नेता के प्रति जनता का विश्वास बना हुआ है। और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा कैपिटल यदि उस नेता का कुछ है तो जनता का ट्रस्ट है।
0: और इस बीच आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर अंडा फेंकने के मामले में अब तूल पकड़ लिया है। नादिया में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को एक बार फिर विरोध का सामना करना पड़ा, जहां वो एक बैठक में हिस्सा लेने पहुंची थी। कुछ लोगों ने उन्हें घेर कर गो बैक के नारे लगाए, काले झंडे दिखाए।
10: Supreme Court of India told me, please go face some eggs. Freedom fighters have faced bullets. So I came to my constituency and we were doing a meeting inside when the BJP, newly elected BJP Mandal Sabhapati, the BJP Panchayat Samiti Sabhapati and the ex and the Sabha Saha Sabhapati and others BJP, it started off with about 7 to 10 people outside. I had police with me, 4 police on the court's orders who had accompanied me. With the police there, this continued.

0: करते हैं, दिखाई दे रहे हैं।
1: रिजॉर्ट पॉलिटिक्स इतनी जबरदस्त भी हो सकती है, कभी सोचा नहीं होगा इन पार्षदों ने। क्या मस्त पूल पार्टी चल रही है, पार्षद नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं। ये कांग्रेस के पार्षद हैं जिन्हें तीर्थराज पुष्कर के आलीशान रिजॉर्ट में शिफ्ट किया गया है। कांग्रेस को डर है कि कहीं उसके पार्षदों पर डाका न पड़ जाए या किसी पार्षद का मन न भटक जाए, इसलिए पार्षदों की बाड़ाबंदी हो गई है। और ये बाड़ाबंदी अकेले कांग्रेस नहीं कर रही है। राजस्थान निकाय चुनाव में जीतने वाले करीब 10,000 के आसपास पार्षद, चाहे वो जिस दल के हों, इसी तरह राज्य के अलग अलग रिजॉर्ट में बंद हैं। ये तस्वीरें देखिए, अजमेर रोड के होटल भंवर सिंह पैलेस की है। यहाँ बीजेपी के पार्षदों को रखा गया है, यानी डर वही है कि कहीं किसी पार्षद की अंतरात्मा न जाग जाए। देखिए, ये पार्षद नारायण लाल निनावत के परिजन हैं, वो शुगर के पेशेंट हैं, इसलिए उनके परिजन दवाई देने आए हैं।
2: दवाइयों के लिए मैसेज आया था, उनको शुगर की प्रॉब्लम है। नारायण जी निनावत हैं, वार्ड 66 से जीते हुए, तो उनके शुगर की प्रॉब्लम है, तो इंजेक्शन वो दवाई देने आए हैं यहाँ।
1: इसी तरह पार्षद राजेंद्र सैनी की पत्नी उन्हें कपड़े देने पहुंची हैं।
3: हाँ, गणेश जी का लड्डू।
4: क्या कर रहे हैं पति?
3: पति अभी तो प्रशिक्षण शिविर में है उधर ही।
4: क्या नाम है उनका?
3: राजेंद्र सैनी।
4: किस वार्ड से जीते हैं?
3: वार्ड 12 से। अभी कपड़े देने आई थी मैं उनको।
1: बता दें कि राजस्थान में निकाय चुनाव के नतीजे आ गए हैं और 5 नगर निगम में जीत कर एक बार फिर बीजेपी ने अपना दबदबा कायम रखा है। लेकिन इस बार चुनाव की खास बात यह है, 4 नगर निगम में त्रिशंकु की स्थिति है। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने पार्षदों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं।
5: माले मुफ दिले बेरहम, राजस्थान में निकाय चुनाव खत्म हो गए मगर 12 दिनों तक 10,000 से ज्यादा पार्षद 5-स्टार होटल से लेकर रिजॉर्ट तक में कैद कर दिए गए हैं, क्योंकि पार्टियों को भरोसा नहीं है कि पार्षद बिक भी सकते हैं। लिहाजा इन्हें शपथ दिलाने के लिए बसों में भरकर लेकर जाया जा रहा है और फिर वापस लाकर होटल में कैद कर दिया जा रहा है। मोबाइल तक जमा करा लिए गए हैं कि कहीं से ऑफर ना आ जाए। जीतने के बाद जीतने का जश्न भी नहीं मना पाए हैं, परिवार वालों से मिलना दुभर हो गया है। जो जनता इन्हें चुनकर भेजी है वो तरस रही है कि अपने पार्षद का दीदार कर लें, मगर यहाँ एक एक पार्षद की लड़ाई चल रही है और करोड़ों वारा न्यारा हो रहा है। अब सवाल उठता है कि जो पैसे खर्च हो रहे हैं ये क्या जनता से वसूले जाएंगे? शरद कुमार, जयपुर आज तक।
6: बात पाकिस्तान की गुस्ताखी की करेंगे, जिसने समुद्र में भारतीय जहाज को निशाना बनाने की कोशिश की है। हालांकि इसमें भारत को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पूरे मामले में भारत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे दी है।
7: पाकिस्तान नौसेना ने अरब सागर में भारत के खिलाफ बड़ी हिमाकत की कोशिश की है। पाकिस्तानी नौसेना का हुनैन क्लास कॉर्वेट उत्तरी अरब सागर में भारतीय नौसेना के जहाज से टकराया। हुनैन क्षतिग्रस्त होने के बाद कराची बंदरगाह पर लौट आया है।
8: वॉर टाइम में बहुत ही संयम बरतते हैं, एकदम छुपे हुए मिलते हैं आपको, लेकिन ये पीस टाइम के दौरान वो ये टाइगर बन, जिस तरह से हाईवे में लोग ये बदमाश बाइक्स चलाते हैं, कार चलाते हैं, उस तरह के स्टंट्स जो हैं ये पीस टाइम के लिए रखते हैं।
7: 15 सितंबर को ये टक्कर उस वक्त हुई जब भारतीय नौसेना का जहाज उत्तरी अरब सागर में नियमित टोह लेने के अभियान पर था। सूत्रों के मुताबिक बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद पाकिस्तानी जहाज बहुत करीब आ गया और आक्रामक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की। पाकिस्तानी जहाज का अगला हिस्सा भारतीय युद्ध पोत से छू गया, जिससे बावली टक्कर हुई।
9: भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने समय रहते उसे चेतावनी दी, उसके बावजूद वो बहुत नजदीक से भारतीय नौसेना के युद्धपोत से टकरा गया और उसके बाद क्षतिग्रस्त होने के बाद तेजी के साथ अपने कराची बंदरगाह की तरफ बढ़ गया। इस पूरी घटना में भारतीय नौसेना

0: के दुपोत ने समय रहते कार्रवाई की, सूझबूझ के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया।
1: भारतीय पक्ष को कोई ढांचागत नुकसान नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ और न ही क्षमता में कोई कमी आई। इस घटना के बाद भारतीय युद्धपोत ने अपना मिशन जारी रखा। पाकिस्तानी नौसेना के उकसावे के बावजूद भारतीय नौसेना ने संयम बरता और गंभीर दुर्घटना को रोकने के लिए कार्रवाई की।
2: ये इनकी पुरानी आदत है और इनको अब इनका इनको, उनको इस बात का इलाज करना होगा। और आपको मालूम है ऑप सिंदूर चल रहा है, अगर हमारे शिप ने अगर कुछ किया होता तो वो कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। हमारे शिप्स बहुत पावरफुल शिप्स हैं।
1: भारत के विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में पाकिस्तान के कार्यवाहक हाई कमिश्नर को तलब किया। भारत ने समुद्र में पाकिस्तानी नौसेना की यूनिट के व्यवहार को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। आज तक ब्यूरो
3: रबा दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2026 की, जो कि कन्नड़ एक्टर अनंत नाग को दिया जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार चयन समिति की सिफारिश पर भारत सरकार की ओर से ऐलान कर दिया गया है। इसका उनकी इस यात्रा ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। अनंत नाग ने 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है, जिसमें से 250 से अधिक कन्नड़ फिल्में हैं। कई हिंदी, तेलुगु, तमिल, मराठी, मलयालम और अंग्रेजी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने थिएटर, समानांतर सिनेमा और टेलीविजन कार्यक्रमों में भी काम किया है। उन्होंने लोकप्रिय टेलीविजन सीरीज मालगुडी डेज में अभिनय किया है, जो आर के नारायण की कहानियों पर आधारित है। अनंत नाग ने ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF चैप्टर 1 में वरिष्ठ पत्रकार लेखक आनंद इंगलागी का किरदार निभाया था। अनंत नाग जनता दल के सदस्य रहे और उन्होंने बैंगलोर के बसवनगुड़ी निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार विधायक को चुने गए। 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड के साउथ के विजेता रह चुके हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया और अब उन्हें 2024 का दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट करके उन्हें बधाई दी है। ये पुरस्कार 22 सितंबर 2026 को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा। बात बॉक्स ऑफिस की करेंगे। कम बजट में बनी हनुमान अंश का कमाल रुक नहीं रहा है। फिल्म ने अपनी लागत से 100 गुना ज्यादा कमाई कर ली है और तो और दिन बीतने के साथ फिल्म की कमाई बढ़ती जा रही है।
4: कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो,
5: इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर आजकल आम लोगों के बीच बस एक ही नाम गूंज रहा है और वो है हनुमान अंश।
6: अरे हनुमान चालीसा पढ़ते हो फिर भी डरते हो?
7: हनुमान जी को सोने का चढ़ावा नहीं चाहिए,
6: चाहिए तो बस।
5: फिल्म समीक्षकों से लेकर बॉलीवुड के गलियारों तक के लिए ये फिल्म चर्चा का विषय बन गई है और हो भी क्यों ना, ना तामझाम और ना पब्लिसिटी, फिर भी कामयाबी और कमाई का हर दिन नया कीर्तिमान बनाती जा रही है हनुमान अंश।
8: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती समझाने पहुंचे।
5: हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक अपनी कुल लागत से 100 गुना से भी ज्यादा की कमाई कर ली है और अभी भी ये सुनामी थमने का नाम नहीं ले रही। हनुमान अंश ने 40वें दिन 8 करोड़ 25 लाख रुपए की नेट कमाई की और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इसी वक्त दूसरी बड़ी फिल्में जैसे धुरंधर, पठान और छावा को हनुमान अंश ने पीछे छोड़ दिया है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 270 करोड़ के पार पहुंच गई है। वहीं 40वें दिन 8 करोड़ 25 लाख रुपए की नेट कमाई की, जिसने धुरंधर, पठान और छावा को पीछे छोड़ा। सेक्नेल के डेटा के मुताबिक फिल्म ने 9000 शो में 27% ऑक्यूपेंसी दर्ज की, जिससे भारत में नेट कलेक्शन 231 करोड़ रुपए और ग्रॉस कलेक्शन करीब 273 करोड़ रुपए हो गया।
8: मूड पे आधो चंदा और बेला पे घूमे शंकर।
5: सिनेमा घरों में चल रही बाकी की फिल्मों का हाल हनुमान अंश के सामने पस्त है। चाहे वो मिर्जापुर हो या फिर हैवान, सभी को हनुमान अंश ने पीछे छोड़ दिया है। हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। एक्सपर्ट पहले ही अंदाजा जता चुके हैं कि अगर हनुमान अंश 300 या 400 करोड़ का आंकड़ा भी छू जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है।
6: अरे हनुमान चालीसा पढ़ते हो फिर भी डरते हो?
7: हनुमान जी को सोने का चढ़ावा नहीं चाहिए।
5: आज तक ब्यूरो
7: भक्तों को प्रसाद मिले और भूखों को भोजन।
3: और बात शेयर बाजार की। कारोबार के दौरान घरेलू शेयर बाजार आज 2 दिन की गिरावट के बाद बढ़त के साथ बंद हुआ है। इस दौरान सेंसेक्स 333 अंक चढ़कर 74,336 और निफ्टी 99 अंक की बढ़त के साथ 23,218 के स्तर पर बंद हुआ है। पिछले सत्र की तेज गिरावट के बाद निचले स्तरों पर खरीदारी से बाजार को सहारा मिला। खासतौर पर बैंकिंग शेयर्स में खरीदारी से तेजी देखने को मिली। हालांकि कच्चे तेल की कीमत 107 से $108 प्रति बैरल के आसपास बनी रही और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड भी करीब 5% रही। फेड के ब्याज दरों पर फैसले से पहले बाजार में सतर्कता बनी रही। शेयर बाजार में तेजी के बावजूद रुपए में लगातार सातवें दिन कमजोरी देखने को मिली है और डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे कमजोर होकर 95.95 के स्तर पर बंद हुआ है। अमेरिकी डॉलर मजबूती, महंगे कच्चे तेल और विदेशी निवेशकों की बिकवाली से रुपए पर दबाव रहा। हालांकि घरेलू शेयर बाजार में तेजी से रुपए की गिरावट कुछ सीमित रही है, लेकिन सराफा बाजार में तेजी का रुख रहा और सोना 992 रुपए बढ़कर 151,894 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 2,418 रुपए बढ़कर 231,159 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। IBJA के मुताबिक पिछले कारोबारी दिन के PM रेट के मुकाबले सोने और चांदी दोनों में तेजी दर्ज की गई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का को निशाना बनाने के दावों को लेकर। सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच तनाव इस वक्त चरम पर है। सऊदी अरब और OIC ने हूती गुट पर पवित्र शहर मक्का की ओर ड्रोन हमला करने का आरोप लगाया, जबकि हूतियों ने इसे पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत दावा बताया।
1: सोशल मीडिया पर वायरल ये मक्का पर ड्रोन हमले की तस्वीर है। इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में से एक मक्का के आसमान पर ड्रोन मंडरा रहा है। नीचे धार्मिक यात्रा के लिए पहुंचे लोग हैरानी और परेशानी से इस खौफनाक स्थिति को देख रहे हैं। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने बयान जारी किया कि उनकी वायुसेना ने मक्का शहर के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे हूतियों के एक हथियारबंद ड्रोन को हवा में ही मार गिराया है। सऊदी अधिकारियों के मुताबिक इस ड्रोन को मक्का के दक्षिणी हिस्से में ही रोक दिया गया था और इसका मलबा शहर से दूर दक्षिण में गिरा। सऊदी गठबंधन के प्रवक्ता तुर्की अल मलिकी ने कहा है कि मक्का और मदीना जैसे पवित्र स्थलों और वहां आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सऊदी अरब के लिए एक रेड लाइन यानी लक्ष्मण रेखा है, जिसे पार करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ हूती संगठन के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य हजेम अल असद ने सऊदी अरब के इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मक्का को निशाना बनाने का दावा एक घिसा पिटा झूठ है। हूतियों का कहना है कि वो किसी भी पवित्र धार्मिक स्थल को निशाना नहीं बनाते हैं। उनका आरोप है कि सऊदी अरब इस तरह के झूठे दावे केवल दुनिया भर के मुस्लिमों की सहानुभूति बटोरने और उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए कर रहा है।
3: रुके यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
9: इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
1: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया
1: है।
3: हां ओ ला भाई मेरा बैट।
1: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
3: ओ बिलोटे चार्ज हुआ यार।
4: ला बैट किसका है?
5: टाटा AIG है तो भरोसा है।
6: एक दो एक
7: श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: SBI Celebrations Unlimited. ये गणेशोत्सव बनेगा स्पेशल विद फेस्टिव ऑफर्स ऑन कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स।
3: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
4: Take a date, not bites.
5: No added sugar, preservative के बिना। Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया। Lion Dates Nut Bites.
4: Lion Date Nut Bites.
6: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर। दुनिया की सोच से ऊपर। बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
7: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
8: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
9: सोच बदलो और बैंक भी।
10: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
11: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
12: जीके मैक्स।
13: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
12: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
13: जेके वॉल मैक्स
12: बेस्ट पेंट,
13: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
14: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
15: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है।
2: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
3: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
4: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
5: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द टीआरएफ।
6: अब मैं क्या ही बोलूं?
7: परिवार अटूट भरोसा।
8: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: इसमें कहीं दो मत नहीं है आज तक का, यहां तक प्रश्न है। एक बहुत ही क्रेडिबल मीडिया ग्रुप के रूप में इसने अपनी साख बनाई है मीडिया जगत में, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि आज देश की सुरक्षा को लेकर यहां पूरे दिन चिंतन और मंथन हुआ है। मैं टीवी टुडे की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं।
3: में लगभग जो है करीब 70 से 80 करोड़ ट्रांजैक्शन होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं। तो मुझे मुझे तो लगता है कि अब इंडस्ट्री के पास आएगा रेवेन्यू, वो इन्वेस्ट कर पाएंगे, ज्यादा और छोटे शहरों में जा पाएंगे, ज्यादा मर्चेंट्स को ये कर पाएंगे, डिजिटाइज कर पाएंगे। कस्टमर साइड पे भी टीपैप्स को भी पैसा मिल रहा है फाइनली 6 साल बाद, तो हम सब जो है और मार्केटिंग कर पाएंगे और यूज केस ला पाएंगे। सारे बिजनेसमैन दुनिया में यही चाहते हैं ना कि अपना व्यापार बढ़ाएं, अपना बिजनेस बढ़ाएं, तो पेमेंट कंपनियां अलग क्यों होंगी, पैसे आएंगे तभी तो बढ़ेंगे।
4: ये बहुत ही एक पॉजिटिव स्टेप है इंडिया के लिए, बिकॉज देखिए इसी वर्ष यूपीआई के 10 साल हो गए, और यूपीआई की वजह से डिजिटल पेमेंट्स इंडिया में बहुत स्केल हो गया है, सभी लोग यूज करने लग गए। बट अब इसका जो स्केल इतना हो गया है, इसका जो कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बैंक्स और पेमेंट कंपनी सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं। तो जो ये डायरेक्शन आया है ये पेमेंट्स इंडस्ट्री के लिए, बैंक्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव है, और जो आम इंडियन है, जो इंडियन ग्राहक है, उसके लिए बिल्कुल भी न्यूट्रल है, कोई चेंज नहीं है। बिकॉज जितनी भी पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति टू व्यक्ति जो ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे मान लीजिए मैंने अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में किसी को पेमेंट की है, उस पर कोई चार्ज नहीं है।

0: भैया मेरे राखी के बंधन को नी 100 रुपए लेंगे तुमसे अभी हम,
1: लो मिठाई भी खाओ।
2: क्योंकि फूफा भी कभी जीजा थे।
0: ताऊ भी एथेनॉल को लेके फूफा ही कहे जाएंगे।
1: हाँ ताऊ एथेनॉल फूफा हैं।
3: हाँ बिल्कुल है, हम नाराज हैं।
0: मेरे फूफा जो है दुनिया के सबसे अच्छे फूफा है।
1: क्या बात कर रहे हैं,
0: कसम से उनका नाम ही अच्छे खां है।
1: अच्छा।
0: सबसे अच्छे हुए।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर शुल्क के फैसले खिलाफ राहुल गांधी का मोर्चा, कहा नियम वापस ले सरकार। वित्त मंत्री का जवाब, फैसले के पीछे कोई विदेशी दबाव नहीं। से एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, का 2014 के बाद से भारत में नियम कानून और शासन दोनों ही अच्छे। कल से बीजेपी चलाएगी सेवा संकल्प अभियान। गोरखपुर में सीएम योगी के चुनावी हुंकार, का पहले एसपी और कांग्रेस सरकार में अपराध और डर, आज का यूपी दंगा और कर्फ्यू मुक्त। बोले 19 सितंबर से 1,00,000 नई नौकरियों की शुरुआत। के झीरम घाटी नक्सल हमले के 10 दोषियों को फांसी की सजा, 13 साल बाद एनआईए कोर्ट का फैसला। 27 लोगों की हत्या में कई कांग्रेसी नेता थे शामिल। कन्नड़ एक्टर अनंत नाग को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड, अभिनय से शानदार योगदान के लिए सम्मान। पीएम मोदी ने दी बधाई।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं नेहा बाथम। यूसीसी पर धर्म युद्ध शुरू हो चुका है। तीन दिन पहले अमित शाह ने कहा था कि वो एनडीए और बीजेपी शासित 21 राज्यों में यूसीसी लाने की तैयारी कर रहे हैं, और इन तीन दिन में ही अच्छा खासा सियासी संग्राम खड़ा हो गया है। ओवैसी ने तो यूसीसी के खिलाफ सभाएं करनी शुरू कर दी है। देश भर के मुस्लिम नेता यूसीसी पर एक सुर में बोल रहे हैं। ओवैसी ने साफ किया है कि किसी भी कीमत पर यूसीसी को नहीं मानेंगे।
1: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है, और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
2: यूनिफॉर्म सिविल कोड, भाड़ में जाए तुम्हारा यूनिफॉर्म, तुम यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर आरएसएस का एजेंडा लागू करना चाहते हो। अच्छा बोल रहे हैं कि प्रोहिबिटेड माने मामूजात, मामू की बेटी, मामू का बेटा शादी नहीं कर सकते, चिचा का बेटा और फिर चिचा की बेटी से शादी नहीं कर सकते, पुप्पू के बेटी से नहीं, खाला की बेटी से नहीं।
3: तय तो तभी हो गया था कि भीषण विरोध होगा, जब अमित शाह ने 13 सितंबर को मुंबई में यह ऐलान किया था कि 2029 से पहले बीजेपी एनडीए शासित 21 राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। अमित शाह के ऐलान के दो दिन के भीतर ही ओवैसी ने यूसीसी के नाम पर बड़ा जलसा किया। सीधे निशाने पर बीजेपी आरएसएस थी। ओवैसी ने यूसीसी को भी मुसलमानों पर जुल्म और सितम का नाम दे दिया है।
2: तुम जुल्म के एतबार से मस्जिदों को शहीद कर रहे हो, हम ईमान की ताकत पर, इत्तेहाद की ताकत पर उस मस्जिद की एक एक ईंट को जमा करके दोबारा मस्जिदें बनाएंगे और उसको आबाद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम हमको कब तक दबाओगे? अरे दबाते रहो, मगर हम दबने वाले हैं। तुम जितना दबाओगे उतनी ताकत से हम उठेंगे इंशाअल्लाह ताला।
3: यूसीसी की मौजूदा स्थिति यह है कि यह उत्तराखंड और गोवा में अभी लागू है, और मध्य प्रदेश, गुजरात और असम में विधानसभा से पारित हो गया है लेकिन लागू नहीं है। और अमित शाह ने कह दिया है कि एनडीए और बीजेपी शासित 21 राज्यों में 2029 तक लागू हो जाएगा। बीजेपी के सामने अभी से ये सवाल है कि क्या बीजेपी यूसीसी के लिए अपने सहयोगियों को मना पाएगी, क्या यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में लागू कर पाएगी, और जिन राज्यों में उसके सहयोगियों की सरकारें हैं वहां क्या होगा, जैसे आंध्र प्रदेश। क्या चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में यूसीसी लागू होने देंगे? अब ये तस्वीर तो 2029 तक साफ होगी। लेकिन यूसीसी पर बीजेपी और केंद्र के खिलाफ सियासी जमावड़ा शुरू हो गया है। तीन तलाक, सीए और वक्फ बिल पर जैसा माहौल बनाया गया था वही फिर से हो रहा है। ओवैसी मुसलमानों को एक कर रहे हैं, उन्हें कसमें खिला रहे हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन यूसीसी लागू नहीं होने देंगे। ओवैसी ने शुरुआत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से की है।
4: मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और आसाम में बीजेपी ने यहां पर जो यूसीसी का कानून बनाया, ये कानून सिर्फ इसलिए बनाया गया कि भारत के मुसलमानों को टारगेट बनाया जाए। ये यूसीसी का कानून मसावात के लिए, इक्वालिटी के लिए नहीं बनाया गया। ये कानून इसलिए बनाया गया ताकि जो लोग हिंदू नहीं है उनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू डिवोर्स एक्ट और इन तमाम ऐसे कानून का निफाद उन गैर हिंदू कौमों पर किया जाए। हम इसीलिए इस कानून की मुखालिफत करते हैं क्योंकि ये कानून भारत के आईन के खिलाफ है। और मुझे ये कहना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में करीब 21% के करीब आदिवासी हैं, उनको उससे मुस्तस्ना कर दिया गया, एग्जम किया गया, और मध्य प्रदेश के 9% मुसलमानों पर इस तरह के खाले कानून को नाफिज़ किया गया है।
3: विपक्ष का सबसे बड़ा तर्क है अनुच्छेद 25, जो हर नागरिक को अपने धर्म और निजी कानूनों के पालन करने की आजादी देता है। उनका कहना है कि शादी, तलाक और संपत्ति जैसे निजी मामलों में यूसीसी लागू करना अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों पर चोट है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार अनुच्छेद 44 की ढाल लेकर खड़ी है। सरकार का कहना है कि संविधान निर्माताओं ने खुद नीति निर्देशक तत्वों में पूरे देश में यूसीसी लागू करने का निर्देश दिया था और वो केवल डॉक्टर अंबेडकर के उसी अधूरे सपने को पूरा कर रहे हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा विविधता और राष्ट्रीय एकता का है। विपक्ष का मानना है कि भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में एक कानून थोपना राज्यों की स्वायत्तता और हमारी विविधता को खत्म कर देगा, विशेषकर पूर्वोत्तर और आदिवासियों के प्रथागत कानूनों पर खतरा मंडराएगा। इसके जवाब में सरकार एक देश एक कानून का नारा देती है। सरकार का स्पष्ट तर्क है कि जब देश में क्रिमिनल लॉ, VNS और टैक्स, GST सबके लिए एक है, तो सिविल मामलों में भेदभाव क्यों? रही बात आदिवासियों की, तो सरकार ने UCC की धारा 2(1) में उन्हें इससे छूट दी है। वो वैसी भी अपनी रैलियों में इन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं।
4: हमारे हिंदू भाई बहन के पास जब शादी होती है तो कहते हैं ये जन्म जन्म का साथ है। मुसलमानों में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये जन्म जन्म का साथ नहीं होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट जो दो लोग बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, उनके दरमियान में निकाह होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया जाता है। BJP ये बताना चाहती है कि मुसलमानों में भी जन्म जन्म का साथ होता है। मुसलमानों में निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। हमारे हिंदू भाई बहन के पास जन्म जन्म का साथ होता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जायदाद का जो बंटवारा है मुसलमानों में, उसके ताल्लुक से पूरे विरासत का कानून अल्लाह सुबहाना ताला ने कुरान करीम में उसको बतला दिया। हमारे पास एडॉप्शन नहीं होता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तमाम चीजें हिंदू मैरिज एक्ट की लाकर आज UCC में उसको शामिल करके BJP एक नापाक कोशिश कर रही है।
3: ओवैसी अपनी कौम को याद दिला रहे हैं कि उन्हें यूसीसी नहीं बल्कि शरीयत को मानना है, क्योंकि मुसलमानों की शादी, तलाक या जायदाद से जुड़े फैसले शरीयत से ही होते हैं।
4: नौजवानों, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं। मेरे नौजवानों, तुम कौम का मुस्तकबिल हो। कानून बनते हैं, मिट जाएंगे बनाने वाले इंशाल्लाह, मगर याद रखो नौजवानों, तुम जब तक अपनी तबीयत पर शरीयत को गालिब नहीं करोगे, हम इनकलाब नहीं ला पाएंगे। जब तुम्हारे तबीयत पर शरीयत गालिब हो जाएगी, जब तुम्हारी सोच में शरीयत गालिब हो जाएगी, जब तुम्हारा एक एक सांस लेना अल्लाह का शुक्र अदा करेगी, याद रखो ये तमाम बातिल ताकतें जो आज बड़े शान और शौकत से चमक रहे हैं, तुम्हारे तख्वे और ईमान के सामने ये सब वीरान हो जाएंगे। मगर नौजवानों, तुमको अपनी मिजाज पर, अपनी तबीयत पर शरीयत को गालिब करना है।
3: ओवैसी की कल की भोपाल की रैली में एक नया विवाद भी हो गया। ये BJP के विधायक हैं रामेश्वर शर्मा। असल में इन्होंने 4 सितंबर को भोपाल में एक विवादित बयान दिया था। सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए भोपाल के एक मुस्लिम इलाके में मिसाइल गिराने की बात कही थी।
5: मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। जब हिंदुस्तान में लोग कहते थे सुई बनाना नहीं जानते, तो मोदी जी ने कहा कि हम मिसाइल बनाएंगे। ये तो तुम करोत के चौराहे पर खड़ा होकर मिसाइल लगाओ और काजी कैंप पे गिरा दो, कैसे ही। अरे मैंने यहाँ का काजी कैंप नहीं बोला, इस्लामाबाद वाला बोला था।
3: जन्माष्टमी के दिन रामेश्वर शर्मा भोपाल के जिस करौन चौक में स्पीच दे रहे थे, वहां से भोपाल का काजी कैंप बहुत करीब है। काजी कैंप भोपाल के पुराने शहर का बेहद घनी आबादी वाला मुस्लिम बहुल, रिहायशी और व्यापारिक इलाका है। ओवैसी कल भोपाल पहुंचे तो उन्होंने अपनी स्पीच के अंत में रामेश्वर शर्मा के इस बयान का जिक्र किया और उन्हें खुली चुनौती दे डाली।
5: कोई रामेश्वर शर्मा साहब का बयान सुना, मैं मिसाइल लॉन्च करूंगा करोल स्क्वायर से खाजी कैंप पर। रामेश्वर शर्मा, अगर तुम मई के लाल हो, लॉन्च करूंगा मैं अकेला करता हूँ खाजी कैंप में आकर। मैं शहीद होने तैयार हूँ, मरने तैयार हूँ, तुम्हारे जैसे सामने से जुटा।
3: ओवैसी ने भी रामेश्वर शर्मा के लिए आपत्तिजनक शब्द कहे। अब रामेश्वर शर्मा भी ओवैसी पर भड़के हुए हैं।
6: देखिए, मैं एक तो ओवैसी को ये बता देना चाहता हूँ कि बैरिस्टर होने के नाते अगर सही भाषा का इस्तेमाल करोगे तो ठीक है, जो भाषा का इस्तेमाल आपने मेरे लिए किया है वो भाषा का इस्तेमाल मैं आपके लिए भी कर सकता हूँ। और इतने ध्यान रखना कि भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा और भारत की सरकार प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाई गई मिसाइल और ऑपरेशन सिंदूर में दागी गई मिसाइल से केवल इस्लामाबाद में बैठे हुए जो है आतंकवादी और वहां की सरकार ही परेशान नहीं है, भारत में जिन्ना की औलादें भी परेशान है। वो चाहते हैं कि भारत में भी आतंकवाद और नक्सलवाद पनपता रहे, और इसलिए अब भारत की सरकार ने उन कैंपों को निशाना बनाएगी और भारत की सेना उन कैंपों को निशाना बनाएगी जो भारत के खिलाफ अलगाववाद और आतंकवाद पैदा करते हैं। इसलिए ओबीसी कान खोलकर सुन लेना, संविधान की मर्यादा का पालन करो, जिस भाषा का आपने इस्तेमाल किया इस भाषा का हम भी जवाब दे सकते हैं। हाँ, यूसीसी हिंदुस्तान में लागू होगी, भोपाल मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार ने लागू की है। माननीय गृहमंत्री का जो स्टेटमेंट है अमित शाह जी का वो सही है, हम 2029 तक भारत के 21 प्रदेशों में यूसीसी लागू करेंगे।
3: हालांकि काजी कैंप पर मिसाइल हमले के बयान पर रामेश्वर शर्मा अब भी घिरे हैं। बार बार उनकी सफाई यही है कि उन्होंने पाकिस्तान के काजी कैंप का जिक्र किया था।
7: आपने जो कहा था वो आपको नहीं लगता विवादित था? मतलब भोपाल के भोपाल में ही आप काजी कैंप में मिसाइल गिराने की
6: मैंने जो पूरा कहा था पूरा सुनना चाहिए बैरिस्टर को और सबको पूरा सुनकर और चलाना चाहिए। मैंने जो कहा था मैं उस पूरे बयान पर आज भी कायम हूँ। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद में या लाहौर में या कराची में या किसी भी देश में भारत के खिलाफ कोई भी आतंकवादी गतिविधियां संचालित करेगा तो उन पर भारत की सरकार भारत की सेना मिसाइल दागेगी। हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है। इसलिए वैरिस्टर छाती पीटने से ओबीसी छाती पीटने से कुछ मतलब नहीं है। और काली कैंप गिरा दो।
3: अब ये तो राजनीतिक बातें हैं, लेकिन ये तो तय है कि यूसीसी लागू करने से पहले बड़ा सियासी हंगामा होने वाला है। ओवैसी जैसे नेता अभी मुस्लिम मोहल्लों में ऐसी और सभाएं करने वाले हैं। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
0: वक्त इस वजह से ब्रेक का उछला, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ओले ला भाई मेरा बैट।
5: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
6: अभी तो चार्ज हुआ यार।
7: ओले बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
10: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
11: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
12: सोच बदलो और बैंक भी।
13: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
14: जीके मैक्स।
15: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
14: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
16: जेके वॉल मैक्स
14: बेस्ट पेंट,
16: जेके मैक्स।
14: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints. JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।
17: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

सबसे पहले सवाल, क्या 2000 रुपए यूपीआई की नई पेमेंट लिमिट है? 2000 रुपए कोई नई यूपीआई पेमेंट लिमिट नहीं है, यानी पहले की तरह आप 2000 रुपए से ज्यादा का यूपीआई पेमेंट भी कर सकेंगे। अब सवाल ये है कि फिर 2000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट को लेकर नियम की बातें क्यों हो रही हैं? इसकी बड़ी वजह है कारोबारी पेमेंट वित्त वर्ष 2025-26 में दुकानदारों को किए गए यूपीआई पेमेंट में करीब 4% ट्रांजैक्शन ही 2000 रुपए से ज्यादा के थे, लेकिन कुल रकम में इनकी हिस्सेदारी करीब 2/3 थी। यानी ऐसे पेमेंट की संख्या कम है लेकिन इनमें जाने वाली रकम काफी ज्यादा है। आरबीआई का कहना है कि 2000 रुपए से ज्यादा के बड़े यूपीआई लेन देन पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने से डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को लंबे समय तक मजबूत और टिकाऊ बनाने में मदद मिलेगी। आरबीआई के मुताबिक एमडीआर से टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और पेमेंट स्वीकार करने वाले नेटवर्क में निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। अब सबसे अहम सवाल है कि क्या इसका बोझ सीधे आम यूजर पर आएगा? आरबीआई ने साफ किया है कि P2P और P2M यानी सभी यूपीआई ट्रांजैक्शन यूजर के लिए मुफ्त रहेंगे, लेकिन यहाँ P2P और P2M का फर्क समझना जरूरी है। अगर आप दोस्त या परिवार के किसी सदस्य को 5000 या 10000 रुपए भेजते हैं तो ये P2P पेमेंट है। ऐसे पेमेंट पर आम यूजर से कोई फीस नहीं ली जाएगी। वही जब आप किसी दुकानदार या कारोबारी को यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो P2M यानी पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन होता है। 2000 रुपए से कम के P2M यूपीआई पेमेंट भी दुकानदारों के लिए मुफ्त रहेंगे, जबकि 2000 रुपए से ज्यादा के P2M पेमेंट पर MDR लगाया जा सकता है। यानी 2000 रुपए यूपीआई की नई पेमेंट लिमिट नहीं है। बड़ा बदलाव पेमेंट की लिमिट में नहीं बल्कि 2000 रुपए से ज्यादा के कारोबारी यानी P2M ट्रांजैक्शन पर MDR से जुड़ा है, और RBI के मुताबिक इस MDR का सीधा चार्ज आम UPI यूजर से नहीं लिया जाएगा। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड UCC को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा NDA शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले UCC को इंट्रोड्यूस करेंगे।
5: क्या गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान यूपी के चुनाव में गेम चेंजर साबित होगा? क्या 2027 में होने जा रहे यूपी विधानसभा चुनाव का एपिसेंटर UCC ही बनेगा? क्या 2027 की चुनावी बिसात को देखते हुए ही BJP ने UCC का मोहरा चला है? इसे ठीक से समझने से पहले जरा अखिलेश यादव का नया संदेश देख लीजिए। अखिलेश ने UCC की नई परिभाषा दी है। UCC मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, UCC मतलब अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस UCC का विरोध करते हुए एक्स पर लिखा है, जनता समझ रही है भाजपा जिस UCC की बात कर रही है दरअसल उसका फुल फॉर्म कुछ और है, UCC इक्वल टू अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। अखिलेश ने जिस अंदाज में UCC को परिभाषित किया है उससे साफ है कि समाजवादी पार्टी UCC का खुलकर विरोध करने जा रही है, और उतना ही साफ ये भी है कि BJP यूपी में इसे जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश करेगी। योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली आए थे और खबर है कि UCC पर उनके गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई है। UCC को यूपी में जल्द से जल्द लागू करने की BJP की मंशा किसी से छिपी नहीं है। BJP के नेता खुलकर कह रहे हैं कि यूपी में UCC का आगाज होकर रहेगा।
6: यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे 2024 के घोषणा पत्र में और संविधान का अनुच्छेद 44 ये कहता भी है, और ये हमारे नीति निर्देशक तत्व में भी शामिल है, और माननीय गृहमंत्री जी ने आज कहा भी है। और निश्चित रूप से अगर महिलाओं के प्रति, उनके अधिकारों के प्रति अगर उसे पूर्ण करना है, उन्हें सुरक्षा देनी है, तो ये बहुत आवश्यक है। बाकी सरकार को निर्णय करना, माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय करना, लेकिन आज गृहमंत्री जी ने जो बोला है वो कहीं ना कहीं हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है, हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा है। और निश्चित रूप से सामान्य नागरिक संहिता की बात हम लोग लंबे समय से करते रहे हैं, और हमारे लिए, हमारा कमिटमेंट है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। देश, हमारे प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए सामान्य नागरिक संहिता की बात भारतीय जनता पार्टी जनसंघ हमेशा उठाती रही है।
7: उत्तर प्रदेश ये प्रयास करेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मनसा है वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की धरती पर उतरे। सरकार निश्चित तौर पे सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उत्तर प्रदेश में हम सबसे पहले लागू करेंगे।
5: ये भी तय है कि यूपी में UCC लागू होने की कोशिश होती है तो इसका विरोध भी तगड़ा होगा। मुस्लिम वोटों की चाहत में अखिलेश तो विरोध करेंगे ही, ओवैसी जैसे नेता भी सुर में सुर मिलाएंगे। मोदी सरकार धारा 370, 3 तलाक कानून, वक्फ कानून जैसे बड़े फैसले ले चुकी है। अब UCC की बारी है और यूपी में इसे लागू करने की पूरी तैयारी है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
8: संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं, उनके ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं और सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे को साथ लेकर, क्या फर्क पड़ रहा है UCC से? बताओ मुझे कि निकाह नहीं होगा क्या? हमारा निकाह ही तो होगा, फेरे नहीं होंगे क्या? फेरे ही तो होंगे, क्या तमाशा बना रखा है? कुछ भी नहीं है।
9: छात्रों के मूवमेंट से डरी हुई सरकार के पास अब इसी तरह का कार्ड खेलने के अलावा और कोई चारा नहीं, और चुनाव में गिराने के लिए क्या है? नौकरियां वो दे नहीं पाए, स्टूडेंट्स जो है वो परेशान है, प्रोटेस्ट कर रहा है पूरे देश में, जेंजी से लेकर जेन अल्फा तक। तो सरकार के पास मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यही सब है राज्यों में। ये भारत जो है वो विविधताओं का देश है, भारत जो है वो तमाम अलग अलग तरह के फूलों से मिलके बना। आप सब कुछ एक रंग का कर देना चाहते हैं, सब कुछ एक जैसा कर देना चाहते हैं, डाइवर्सिटी कहाँ चली जाएगी? तो गृहमंत्री जी को ये समझना पड़ेगा कि ये देश बहुत अलग अलग भाषाओं, अलग अलग बोलियों, अलग अलग कल्चर, अलग अलग तहजीब, अलग अलग धर्मों सबसे मिल करके भारत बनता है। आप सब कुछ एक कर देना चाहते हैं, एक रंग का, तो हम तिरंगे के साथ खड़े हैं, हम तिरंगे वाले लोग हैं।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: विशेष शुभ साथ अभी के लिए बस इतना ही. आगे देखिए खबरदार मेरी सहयोगी श्वेता सिंह के साथ.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.

राहुल गांधी का मोर्चा, कहा नियम वापस ले सरकार। वित्त मंत्री का जवाब, फैसले के पीछे कोई विदेशी दबाव नहीं। पीएम मोदी के जन्मदिन से एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा 2014 के बाद से भारत में नियम कानून और शासन सब अच्छे, कल से बीजेपी चलाएगी सेवा संकल्प अभियान। गोरखपुर में सीएम योगी की चुनावी हुंकार, कहा पहले एसपी और कांग्रेस सरकार में अपराध और डर, आज का यूपी दंगा और कर्फ्यू मुक्त। बोले 19 सितंबर से 1,00,000 नई नौकरी की शुरुआत।

को फांसी की सजा। 13 साल बाद एनआईए कोर्ट का फैसला। 27 लोगों की हत्या में कई कांग्रेसी नेता थे शामिल। सेंसर बोर्ड की नई टीम में 18 सदस्यों के नाम का ऐलान। पल्लवी जोशी, प्रीति जिंटा, सुनील शेट्टी और पंकज त्रिपाठी जैसी हस्तियां शामिल।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: करती हूँ। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। देश में इस वक्त यूपीआई की चर्चा है, जिसमें 15 अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यूपीआई से जब 2000 रुपए से ऊपर के पेमेंट पर 0.4% की फीस लगेगी तो इसका क्या असर होगा? क्या लोग कैश की तरफ फिर से लौटेंगे? भारत की डिजिटल क्रांति क्या इससे प्रभावित होगी या फिर ये सारी चिंताएं फिजूल साबित होंगी? इसके साथ ही चावल भी अब महंगा हो गया है, त्योहार से पहले इसके दाम में बढ़ोतरी की वजह पर हम बात करेंगे। एमबीबीएस एडमिशन में फर्जी सर्टिफिकेट से एडमिशन के फर्जीवाड़े से आपको खबरदार साथ ही हम करेंगे। पर शुरुआत डिजिटल पेमेंट से। भारत में डिजिटल क्रांति ने पिछले 10 सालों में देश की तस्वीर पूरी तरीके से बदल दी। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने भारत में लेन देन के तौर तरीकों को ही बदल कर रख दिया। इसीलिए जब यूपीआई से 2000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट पर चार्ज लगाने का फैसला हुआ तो हर आदमी खबरदार हो गया। घर से ऑफिस तक हर जगह हिसाब किताब शुरू हो गया। लेकिन सरकार कह रही है कि आम ग्राहक को ये चार्ज नहीं देना होगा, इसके दायरे में सिर्फ और सिर्फ व्यापारी आएंगे। वो अगर व्यापारी महीने भर में 1 लाख रुपए तक का ही लेन देन करता है तो उसे कोई शुल्क नहीं देना होगा। लेकिन सवाल खत्म होते नहीं दिखते। इसमें सबसे अहम है कि क्या दोबारा कैश का चलन तो नहीं शुरू हो जाएगा?
1: यूपीआई के माध्यम से हर महीने अरबों डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं।
2: He's put a tax on every single Indian person by taxing UPI.
3: भ्रम और भय की स्थिति कांग्रेस खड़ी करने का प्रयास करती है, वो नहीं होना चाहिए।
4: हमारे होम ग्रोन डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है, उसको तबाह करने की दिशा में चल रही
5: है। कांग्रेस यूपीआई पे झूठ फैला रही है।
6: मोदी गवर्नमेंट इज कन्वर्टिंग इट इनटू ए टैक्स इम्पोजिशन एंड कलेक्शन मशीन टारगेटिंग द कॉमन मैन।
7: राहुल गांधी का आरोप है उसमें तथ्य नहीं है, कोई सरकार ने अभी निर्णय लिया भी नहीं है।
2: यूपीआई टैक्स को वापस लीजिए।
8: यूपीआई को लेकर सरकार और विपक्ष में ठन गई है, लेकिन सवाल उस डिजिटल पेमेंट क्रांति को लेकर है जिसे मोदी सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक बताती है।
1: आज भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म का सफल संचालन कर रहा है। आज भारत में यूपीआई के माध्यम से हर महीने अरबों डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आज दुनिया के दर्जनों देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
8: जिसने देश में पेमेंट का तरीका ही बदल दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या 2000 रुपए से ऊपर के यूपीआई पर फीस लगाने का फैसला इस कामयाबी को कमजोर तो नहीं कर देगी?
9: कैब बुक की, मैंने ग्रोसरीज ऑर्डर की, मैंने अपनी फ्रेंड को, अपनी माताजी को, अलग अलग लोगों को यूपीआई से पैसे पे की, तो जो पहले तो P2P ट्रांजैक्शन है, जैसे कि आपने किसी को भी, अपने मित्र को, अपनी फैमिली में किसी को भी पेमेंट की, तो उसपे कोई चार्ज नहीं आने वाला। दूसरी बात यह है कि जो हमारी रोज की जिंदगी की ट्रांजेक्शन है, जैसे कि मैंने बोला कि आपने कैब बुक की, उसके 300 रुपए लगे, आपने ब्रेड कुछ खरीदा, दूध खरीदा, इन सब चीजों की 400-500 रुपए की जो बिल आते हैं, इनमें कोई भी चार्ज नहीं आने वाला है। जो ट्रांजेक्शन पहले तो कस्टमर पे, ग्राहक पे, किसी भी ट्रांजेक्शन पे कोई चार्ज नहीं आया।
10: इसमें अच्छी चीज ये करी है सरकार ने, कस्टमर को तो कोई भी चार्ज नहीं है तो 100% फ्री रहेगा, इसलिए यूपीआई भागता रहेगा। मर्चेंट साइड में भी 96% जो है ट्रांजैक्शन 2000 के नीचे ही होते हैं हिंदुस्तान में, तो वो भी फ्री रहेंगे। 4% ट्रांजैक्शन पे जो है MDR आ रहा है, और वो भी जो है 0.4%, जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स में से, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट में, आप वीजा ले लें, मास्टर कार्ड ले लें, रुपए ले लें, क्रेडिट कार्ड ले लें, डेबिट कार्ड ले लें, वॉलेट ले लें, ये उन सबसे सस्ता है।
8: भारत के जिस यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए विदेशी मेहमान हैरान होते रहे, भारत की शान में कसीदे पढ़ते रहे, क्या उसी यूपीआई से कमाई करने का इरादा इसके असल मकसद पर ही भारी पड़ने वाला है? सवाल उठाने वालों में सरकार का समर्थन करने वाले कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम शामिल हैं, जिन्होंने एक्स पर लिखा, यूपीआई के लिए सबसे बड़ा आर्थिक मौका ट्रांजेक्शन के लिए पैसे लेन देन नहीं बल्कि ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल करके क्रेडिट यानी उधार देने में आसानी में है। यूपीआई ऐसी चीज बना रहा है जिसकी भारत में हमेशा कमी रही है, वो है आर्थिक गतिविधियों का डिजिटल रिकॉर्ड। एक छोटे कारोबारी जिसका पहले कोई क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं था, उसके यूपीआई ट्रांजेक्शन की जानकारी का इस्तेमाल बैंक उसे कर्ज देने, ब्याज से कमाई करने में कर सकता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। यूपीआई पर नए नियम को लेकर सरकार और बीजेपी की तरफ से ये समझाने की कोशिश हो रही है कि इसका सीधा असर जनता पर नहीं होगा। यूपीआई पर MDR 15 अक्टूबर से लागू होगा, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से आइसक्रीम खरीदकर ये बताने की कोशिश हुई कि ऐसे छोटे ट्रांजेक्शन पर जनता पर कोई असर नहीं होगा।
11: एक चॉकोबार दे दो, यूपीआई है दो, चलो यूपीआई करेंगे। और इस वक्त मैं यूपीआई कर रहा हूँ, स्कैनर लाया, स्कैनर किया, 30 रुपए पेमेंट, जितना यूपीआई में पहला पैसा आप दे रहे थे स्कैनर के जरिए वैसे ही बाद में दोगे।
8: लेकिन जनता के मन में डर ये है कि भले ही दुकानदार को 2000 से ऊपर के भुगतान पर MDR शुल्क देना होगा, लेकिन आखिरकार इसे ग्राहक पर ही डाल दिया जाएगा।
12: पहले तो सरकार हैबिट डला रही है डिजिटल हो जाओ, सारी चीज डिजिटल हो गई। आज के डेट में आदमी कैश लेके नहीं चलता है, जेब में मोबाइल लेके घर जाके पेमेंट कर देंगे। सामान खरीदने का मानिए 2000 के ऊपर का है तो दुकानदार कहेगा कि आप 2000 के ऊपर दे रहे हो तो मर्चेंट फीस आप दो, हम नहीं देंगे, तो सरकार क्या वहाँ आएगी निपटारा कराने? बस मेरा सरकार से यही सवाल है।
13: मुझे तो लगता है कि दुकानदार जनता से फीस लेंगे। अगर मान लो हमने कोई 2500 रुपए का सामान लिया और उस पर वो फीस लगेगी तो सरकार थोड़ी हमें मतलब दुकानदार के पास हमारा निपटारा करवाने आएगी कि नहीं इनसे फीस नहीं लेनी और पर्सन टू पर्सन चार्जेस नहीं लगाने, मर्चेंट टू मर्चेंट है। तो मुझे तो लगता है कि दुकानदार जनता से लेंगे।
14: कोई भी स्कीम आती है तो इसमें जनता ही पिसती है, कोई भी स्कीम रहेगी वो जनता पे ही जाके सारा कुछ भार जाता है, क्योंकि अगर GST भी आई थी उसके पहले भी जनता को ही देना पड़ रहा है, हर एक चीज जनता को ही देना पड़ता है।
15: कहीं ना कहीं हम ही लोगों से लिया जाएगा। और जैसे कि आज हम कई जगह गए थे दुकानों पे तो अब वो ऑनलाइन पेमेंट लेने से मना कर रहे हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास कैश है तो माल लीजिए। अब इससे हो कह रहा है कि जो कस्टमर अभी तक का ऑनलाइन में पूरा डिपेंड हो चुका था अब उसको कैश रखना पड़ रहा है।
8: कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम जैसे विशेषज्ञ जो कुछ दिनों पहले तक GDP के आंकड़ों पर सरकार की तरफदारी कर रहे थे, वो इससे आगे की बात कर रहे हैं। सरकार को याद दिला रहे हैं कि UPI से कमाई करने का सबसे फायदेमंद तरीका मुफ्त ट्रांजेक्शन है, जिससे बैंक को बेहतर जानकारी मिलेगी, उससे वो ज्यादा उधार दे पाएगी, जिससे ज्यादा उद्योग, ज्यादा निवेश, नौकरियां और ग्रोथ का पहिया घूमेगा। कई विशेषज्ञों को डर है कि UPI की 15 अक्टूबर से शुरू हो रही नई व्यवस्था से छोटे और मध्यम व्यापारी दोबारा ग्राहकों से नकद में पेमेंट करने की मांग करने लगेंगे, जिससे डिजिटल इंडिया मुहिम को झटका लग सकता है। आज तक ब्यूरो।
0: इस फैसले के बाद सरकार की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है कि वो देखे कि कोई व्यापारी UPI से बढ़ा शुल्क ग्राहक से न वसूले, क्योंकि मामला जनता से जुड़ा है। जो विपक्ष डिजिटल क्रांति में अविश्वास को लेकर सरकार की तरफ से घेरा जाता था, वो अब सरकार पर हमलावर है।
1: 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा तो कुछ लोगों को ये असंभव लगता था, और मैं वेल इन्फॉर्म्ड लोगों की बात कर रहा हूं। चेहरा याद कर लीजिए,
16: गो टू योर विलेज फेयर, बाय पोटेटोज एंड टोमेटोज एंड पे 7 रुपीज 50 पैसा बाय क्रेडिट कार्ड, व्हाट विल द पुअर लेडी डू? डज शी हैव अ POS मशीन देयर? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? What kind of a false picture that you are presenting?
1: यहाँ 10 वर्ष बाद देखिए, वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं।

0: वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं।
1: यूपीआई को लेकर अक्सर प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस और उसकी सोच पर हमला करते रहे। यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे चिदंबरम के बहाने पीएम मोदी देश से ये कहते रहे कि कांग्रेस भारत की डिजिटल क्षमता पर सवाल उठाती थी, लेकिन यूपीआई से 2000 रुपए से ज्यादा पेमेंट पर फीस लगाने के फैसले ने कांग्रेस को पहली बार मोदी सरकार को यूपीआई पर घेरने का मौका दे दिया है।
2: इंदिरा जी वाज वंस आस्क्ड व्हेदर शी लीन्स लेफ्ट और राइट एंड हर रिस्पांस वाज आई डोंट लीन लेफ्ट आई डोंट लीन राइट आई स्टैंड स्ट्रेट। मोदी जी हैज अ कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ही इज नाइदर लेफ्ट नॉर राइट। ही हैज डिसाइडेड टू लाई डाउन स्ट्रेट एंड प्रोस्ट्रेट हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ Donald Trump. He's put a tax on every single Indian person by taxing UPI and giving huge amount of money to the United States. Modi ji, please stop lying down in front of the United States. Have a spine, khade ho jaiye aur UPI tax ko wapis lijiye.
1: UPI par charge lagane ke piche sarkar ki apni daleel hai. Uski taraf se vittiya system ko chalane mein bhari bharkam kharch ki baat kahi jati hai. यूपीआई लेनदेन में चार्ज लेने का जो फैसला हुआ है उसमें सरकार का कहना है कि आम लोगों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, वो चाहे एक दूसरे को पैसा भेजें या फिर दुकानदार को। सरकार ने किसी भी तरह की यूपीआई ऐप फीस लगाने से भी सख्त मना कर दिया है। सरकार कह रही है कि वो बैंक व्यापारी के लेनदेन पर नजर रखेगी ताकि ग्राहक से व्यापारी कोई शुल्क न ले। रेलवे, इंश्योरेंस, ईंधन जैसी सेवाओं पर 5 रुपए प्रति लेनदेन शुल्क ही लगेगा। यूपीआई से हर महीने के ऑटो पे भुगतान पहले की तरह मुफ्त होंगे। महीने में यूपीआई से 1,00,000 रुपए तक भुगतान पाने वाले दुकानदार दायरे में नहीं आएंगे। आरबीआई ने भी यूपीआई पेमेंट्स पर चार्ज लगाने के फैसले को भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को टिकाऊ बनाए रखने के लिए जरूरी कहा है। लेकिन यूपीआई पर चार्ज लगाने के वित्तीय दलीलों से परे सवाल राजनीति का भी है, जिस पर राहुल गांधी के आरोपों के बाद हंगामा मच गया है।
3: मुझे लगता है कांग्रेस का काम ही केवल गुमराह करना और आलोचना करने का रह गया है। मुझे लगता है इसको और जानकारी ज्यादा से ज्यादा विस्तार में मीडिया के मित्रों को और सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको और केंद्र सरकार को भी देनी चाहिए, ताकि ये जो भ्रम और भय की स्थिति कांग्रेस खड़ी करने का प्रयास करती है वो नहीं होना चाहिए।
4: जो भी टैक्स है लोगों पर आएगा, पीपुल इन जनरल पे आएगा, टैक्स लगेगा तो इसका कोई भी विरोध करेगा। इसमें कोई कांग्रेस पार्टी कोई और पार्टी का मामला नहीं है। ये इस तरह का टैक्स से लोगों को नुकसान है, भारत में रह रहे लोगों को नुकसान होगा, चाहे वो व्यवसायी हो चाहे जनरल लोग हो, तो इसका तो विरोध होगा।
1: एक दलील ये भी है कि आम ग्राहक और दुकानदार के बीच कुल लेन देन में 2000 से कम के पेमेंट की भागीदारी 95% है। इसके अलावा यूपीआई में 2000 रुपए से ऊपर के पेमेंट पर 0.4% की दर से फीस लगाने के बावजूद ये क्रेडिट कार्ड या पेमेंट गेटवे जैसे वैकल्पिक भुगतान माध्यमों की तुलना में अब भी काफी कम है। सामान्य क्रेडिट कार्ड MDR आमतौर पर प्रति लेन देन 1.5 से 2.5% तक होता है, जबकि डेबिट कार्ड MDR 0.90% तक सीमित होता है। 2 रुपए से ज्यादा के लेन देन पर UPI MDR को 0.4% और अधिकतम 300 रुपए तक सीमित किया गया है।
5: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में थे। यहाँ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक दृष्टिकोण यानी मोदीनॉमिक्स ने भारत की तेज आर्थिक विकास की नींव रखी है और देश प्रगति और सुशासन के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ रहा है।
6: भारत की इकॉनमी 7.8% की दर से बढ़ गई है। भारत की इकॉनमी की सक्सेस यानी इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी की नींव में यदि कुछ है तो मोदीनॉमिक्स है। मोदीनॉमिक्स को अगर एक शब्द में समझना हो तो वह शब्द है इंडिया। इंडिया आई फॉर इंक्लूसिव, एन फॉर न्यू एज, टी फॉर डिजिटल और आई अगेन आई फॉर इनोवेटिव और ए फॉर आत्मनिर्भर। और साथियों 25 साल में नरेंद्र मोदी जी पब्लिक लाइफ में हैं, लेकिन यह बात सिर्फ सरकार बनाने या किसी पद पर बने रहने की नहीं है, यह बात ट्रस्ट की है कि राजनीति में इतने लंबे समय तक रहते हुए भी उस नेता के प्रति जनता का विश्वास बना हुआ है। और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा कैपिटल यदि उस नेता का कुछ है

0: तो जनता का ट्रस्ट है।
1: चीनी प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब चावल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चावल के दाम बढ़ने से आम आदमी को झटका लगा है। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में बासमती चावल की कीमतों में इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में करीब 15-20% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। उस समय लगभग 85 रुपए प्रति किलो के भाव पर मिल रहा बासमती चावल अब करीब 100 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। बीते दिनों जहां चीनी की कीमत में तेज इजाफे ने त्योहारों पर मिठाई की मिठास कम करने का काम किया था, तो वहीं प्याज ने भी महंगाई का झटका देकर आंसू निकाले थे। चीनी, आलू, प्याज के दाम जहां कम होते नजर आए हैं, चावल की बढ़ती कीमत ने इस समय टेंशन बना रखी है। अब तक बीते साल के मुकाबले जहां बासमती चावल की कीमतों में 15-20% की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं गैर बासमती चावल की किस्मों की कीमतों में भी करीब 20-25% की वृद्धि हुई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर चावल महंगा क्यों हो रहा है और क्या फेस्टिव सीजन के दौरान भी ये कीमतें ऊपर बनी रहेंगी?
2: बासमती और नॉन बासमती इस साल दोनों में ही काफी ज्यादा तेजी आई है। बासमती में खासकर जनवरी से देखें तो लगातार एक तरफ मार्केट गई है और टोटल जनवरी से लेकर आज तक 30-35% भाव बढ़े हैं मार्केट में। एंड इसका मेजर कारण ये है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 में जो क्रॉप आई थी वो 15% कम थी बिकॉज ऑफ बारिश और फ्लड्स पंजाब हरियाणा में। उसने पूरी क्रॉप को अफेक्ट किया और फिर मार्च में जब वॉर हुई तो डिमांड फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट इंक्रीज हो गई बहुत ज्यादा, जिसने उन्हें प्राइसेस को और इंक्रीज करा। तो दैट ये मेजर कारण था बासमती का। नॉन बासमती का मेजर कारण है कि जो नए मानसून, जो न्यू इस क्रॉप में मानसून आने वाली है वो अच्छी नहीं लग रही एल नीनो इफेक्ट की वजह से। कहीं पे ज्यादा बारिश है, कहीं पे बहुत कम बारिश है, जो क्रॉप को अफेक्ट करती है। तो एक्सपेक्टेशन है कि अक्टूबर नवंबर में जो नॉन बासमती की क्रॉप आएगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी, वो एक कारण है नॉन बासमती में इंक्रीज होने का।
1: उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले जिस तरह हर मोर्चे पर राजनीतिक दांव आजमाए जा रहे हैं, अब स्कूली शिक्षा और जेन अल्फा के मुद्दे को लेकर भी सरकार एक्शन में है। योगी सरकार ने फैसला किया है कि यूपी की 14,000 से ज्यादा बेसिक स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में बदला जाएगा। इत्तेफाकन ये फैसला तब आया जब कॉकरोच जनता पार्टी ने यूपी में स्कूल ठीक करो अभियान के तहत स्कूलों की पड़ताल शुरू की।

0: उत्तर प्रदेश के 32,000 से अधिक बेसिक स्कूलों में स्मार्ट सुविधाएं पहले से मिल रही हैं। इन स्कूलों में स्मार्ट टीवी, 3D एनिमेशन और डिजिटल कंटेंट के साथ क्लासरूम को स्मार्ट बनाया गया है। 133,000 से अधिक बेसिक स्कूलों में से भले 32,000 स्कूलों में ही सही, लेकिन यूपी में स्कूली शिक्षा को स्मार्ट बनाने की दिशा में योगी सरकार ने पहल जारी रखी है और अब इसी कोशिश में योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है, जिसमें जेन अल्फा की स्कूली शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए बेसिक स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में बदलने की तैयारी हुई है। 15 सितंबर को लखनऊ में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ कि प्रदेश के 14,429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय अब स्मार्ट स्कूल बनेंगे। इसके लिए शुरुआती तौर पर 300 करोड़ की धनराशि मंजूर भी कर दी गई है। इससे बेसिक स्कूलों में स्मार्ट क्लास बोर्ड, ICT लैब और डिजिटल संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। श्रीटॉन इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी को स्मार्ट क्लासेस का काम सौंपा गया है। इसमें हर स्कूल को 2,07,910 रुपए मिलेंगे। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है कि विद्यार्थियों की संख्या और नामांकन के आधार पर स्मार्ट क्लास एवं ICT लैब की सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। सीएम योगी कहते हैं कि 2017 से पहले स्कूलों की जर्जर हालत को दुरुस्त करने का अभियान जारी रहेगा।
1: कोई मानता था पहले की बेसिक शिक्षा के परिषद के विद्यालयों में वहां कोई सुविधा होगी, कठिन था, जर्जर विद्यालय थे, शिक्षक नहीं थे, भवन अपने आप में जर्जर थे। भाई जैसा राज्य बीमारू है तो बीमारू वही है जहां पे जर्जर व्यवस्था सब कुछ थी, सरकारें ही जर्जर थी, तो सिस्टम अपने आप जर्जर हो जाता और यही था। हम लोगों ने बेसिक में ऑपरेशन कायाकल्प चलाया
0: और बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए चलाए गए ऑपरेशन कायाकल्प का असर 2021 के बाद ऐसा हुआ कि यूपी में 32,000 से अधिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस चलती हैं, 15,000 से अधिक विद्यालयों में ICT लैब की सुविधा है, 1,129 विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा भी दी जा रही है। प्रदेश में 261,000 से अधिक शिक्षकों को टैबलेट उपलब्ध कराए जा चुके हैं। लेकिन योगी सरकार की इन कोशिशों पर CJP सवाल खड़े करती है। 14,000 से अधिक स्कूलों को स्मार्ट बनाने के लिए सिर्फ 300 करोड़ का बजट झांसा है।
2: अब बताइए 300 करोड़ 14,000 प्लस स्कूलों के लिए, मतलब कि एक स्कूल को मिलेगा 2,00,000 रुपए। स्कूल में देश का फ्यूचर पढ़ने वाला है, वो 14,000 स्कूलों में 2,00,000 रुपए लगा के 300 करोड़ का झांसा दे रहे हैं।
0: दरअसल यूपी के चुनावी सीजन में CJP की टीम भी स्कूलों की सुध लेने में लगी है। सौरभ दास ने नोएडा के बिसरक इलाके में स्कूलों के दौरे किए, वहीं टीचर से बात की, बच्चों को उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया और सुधार की जरूरतों वाले स्कूलों का सच सामने लाने की बात कही। हालांकि बाद में CJP ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उन्हें स्कूलों में नहीं घुसने दिया जा रहा है। नोएडा से भूपेंद्र सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
3: राजस्थान निकाय चुनाव तो खत्म हो गए लेकिन जाते हुए पार्षद गायब हैं, जीते हुए जो पार्षद हैं वो गायब हैं। कांग्रेस BJP समेत निर्दलीय जीते करीब 10,000 नव निर्वाचित पार्षद होटलों और रिजॉर्ट में अलग अलग जगहों पर बंद हैं। जनता ने भरोसा कर इन्हें चुन लिया, मगर ये बताया जा रहा है कि मतदान खत्म होते ही प्रत्याशी के मोबाइल लिए गए और वोटिंग के बाद सीधे होटल पहुंच गए।
4: राजस्थान में टूरिज्म का भले ही ऑफ सीजन चल रहा, लेकिन फिर भी वहां रिजॉर्ट और होटल फुल। राजस्थान के पार्षद स्विमिंग पूल में चिल कर रहे हैं, तो कहीं परिवार का जन्मदिन मनाने के लिए सबको रिजॉर्ट में बुला ले रहे हैं। देर रात तक गीत संगीत की महफिल चल रही है। नाली पानी सड़क बिजली के लिए संघर्ष कर रही जनता को पसीने पसीने छोड़कर पुष्कर के रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल में मजे कर रहे हैं। ये ब्यावर के कांग्रेस के पार्षद 9 सितंबर को वोटिंग के बाद स्विमिंग पूल में चिल कर रहे हैं, तो कहीं परिवार का जन्मदिन मनाने के लिए सबको रिजॉर्ट में बुला ले रहे हैं। देर रात तक गीत संगीत की महफिल चल रही है। नाली पानी सड़क बिजली के लिए संघर्ष कर रही जनता को पसीने पसीने छोड़कर पुष्कर के रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल में मजे कर रहे हैं। ये ब्यावर के कांग्रेस के पार्षद 9 सितंबर को वोटिंग के बाद हमारे पार्षदों को तोड़ने में लगी। होटलों में पार्षदों की आवभगत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, लजीज पकवान खिलाए जा रहे हैं, मौज मस्ती का भी पूरा इंतजाम है ताकि वफादारी निभाने के समय ये भाग न जाए। जयपुर में तो बीजेपी ने बहुमत मिलने के बाद भी पार्षदों को 30 किलोमीटर दूर बगलू के होटल में बंद कर रखा है। गेट पर ताला बंद, किसी की पत्नी प्रसाद लेकर पहुंच रही है तो किसी का बेटा दवाई लेकर आ रहा है।
5: प्रसाद खिला के आ रही है?
6: हाँ, गणेश जी का लड्डू।
5: क्या कर रहे हैं पति?
6: पति अभी तो प्रशिक्षण शिविर में है उधर ही।
5: क्या नाम है उनका?
6: राजेंद्र सैनी।
5: किस वार्ड से जीते हैं?
6: वार्ड 12 से। अभी कपड़े देने आई थी मैं उनको।
7: राजस्थान में नगर निकाय के चुनाव तो हो गए हैं मगर किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। पार्टियों को अपने चुने हुए पार्षदों पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, निर्दलीय, सभी बाड़े बंदी में हैं। जयपुर का ये भंवर सिंह पैलेस है जहां पर बीजेपी के सभी पार्षद यहां पर कैद किए गए हैं। बीजेपी के पास मेजोरिटी है जयपुर में, बहुमत है, उसके बावजूद डर है कि कहीं बिक न जाए, कहीं फूट न पड़ जाए, कहीं भाग न जाए, जिसकी वजह से इस तरह से सारे पार्षदों को यहां पर कैद करके रखा गया है। ये देख रहे हैं होटल में मुख्य द्वार पर ताला लगाया गया है, इस ताले को देखिए। और ताला जब गार्ड खोलता है तब जाकर किसी की पत्नी आ रही है प्रसाद लेकर, तो किसी का बेटा आ रहा है दवाई लेकर, और फिर तस्दीक करके अंदर भेजा जा रहा है। राजस्थान के 10,000 से ज्यादा पार्षद पूरे राजस्थान के अलग अलग रिजोर्ट में, होटल में बंद हैं। कई तो हरियाणा के रिजोर्ट में पहुंचे हैं, गुजरात के रिजोर्ट में पहुंचे हैं।
4: डूंगरपुर में बीजेपी के जीते पार्षदों को जश्न मनाने का मौका नहीं, बस से लाए, सामूहिक शपथ दिलाई और वापस ले गए। घरवाले और समर्थक बस के बाहर से मिलते दिखे, कोई कपड़े दे रहा था तो कोई मिठाई तो कोई जीत की बधाई। इस पूरे बाड़ेबंदी का सबसे दिलचस्प पहलू

0: निर्दलीय और बागी प्रत्याशियों को लेकर सामने आया। चुनाव से पहले या मतदान के बाद जिन निर्दलीय प्रत्याशियों को राजनीतिक दलों ने अपने संभावित काम के चेहरे के तौर पर देखा, उन्हें भी अपने साथ होटल में रखा गया। वजह साफ थी, बोर्ड बनाने के लिए एक एक पार्षद की गिनती महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन जैसे ही नतीजे आए और इनमें से कुछ प्रत्याशी चुनाव हार गए, कहानी भी बदल गई। जो कल तक पार्टी के मेहमान थे, जीत की उम्मीद खत्म होते ही उनकी होटल वाली मेहमान नवाजी भी खत्म हो गई। हारने वाले निर्दलीय प्रत्याशियों को होटल से वापस घर भेज दिया गया, जबकि जीतने वाले या बोर्ड बनाने के समीकरण में उपयोगी माने जा रहे पार्षदों की बाड़ेबंदी अभी भी जारी है। महापौर और सभापति चुनाव 21 सितंबर को होना है, ऐसे में आने वाले दिनों में बाड़ेबंदी और तेज होने की संभावना है।
1: कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी बाड़ेबंदी कर रहे हैं और होटल भी बदल रहे हैं। ऐसा नहीं है दो दिन एक होटल में जा रहे हैं तो तीसरे दिन किसी और होटल में भाग रहे हैं। पुलिस भी पीछे पीछे पहुंच रही है, हंगामा भी हो रहा है, जांच के नाम पर पुलिस भी जा रही है। आप समझिए बाड़ेबंदी के नाम पर किस तरह का तमाशा लोकतंत्र के नाम पर राजस्थान में चल रहा है। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
2: पेपर लीक के बाद अब MBBS की काउंसलिंग में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। मामला उत्तराखंड के हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विद्यालय का है, जहां दाखिले में स्वतंत्रता सेनानी आश्रित कोटे के फर्जी प्रमाण पत्र का मामला गहरा रहा है। यहां MBBS एडमिशन में एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम से 4 सर्टिफिकेट जांच में फर्जी निकले, जिसके बाद शक के घेरे में पटवारी से SDM तक आ गए। देहरादून में 5 महिलाओं पर केस दर्ज किया गया है।
3: अनुष्का बंसल है, देखिए इसने जो नीट में जो अप्लाई किया था जनरल कोटे से किया था, ठीक है,
4: और डोमिसाइल उत्तराखंड का डाला,
3: और इसको डोमिसाइल इसको उत्तराखंड का बना दिया इसने, फ्रीडम फाइटर कोटे से इसने अप्लाई कर दिया।
5: उत्तराखंड में नीट UG में दाखिले के लिए स्वतंत्रता सेनानी आश्रित कोटे का दुरुपयोग किया जा रहा है। फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर कोटे से MBBS में एडमिशन लेने के फर्जीवाड़े का उत्तराखंड में खुलासा हुआ है। इस फर्जीवाड़े की सूची दिखाते ये प्रदीप बहुगुणा हैं, जिनकी शिकायत पर इस पूरे गोरख धंधे का खुलासा हुआ है। प्रदीप बहुगुणा मशहूर पर्यावरणविद पद्मश्री सुंदरलाल बहुगुणा के बेटे हैं, जिन्होंने राज्य में MBBS दाखिले के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कोटे का फायदा लेने के लिए फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।
3: उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय है, उसने अपनी साइट पे केवल एक डाटा डाला था, वो था फ्रीडम फाइटर के उत्तराधिकारियों की सूची, वो 24 थी। तो जब मैंने उसकी पड़ताल की तो मैंने उसमें उन्होंने डोमिसाइल की डेट भी लिखी हुई थी आगे, जब मैंने और उसमें फ्रीडम फाइटर उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र का नंबर डाला हुआ था।
5: बहुगुणा के मुताबिक ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी के आधार पर कुछ मामलों की जांच तो कर पाए, लेकिन जिन प्रमाण पत्रों से जुड़े रिकॉर्ड ऑफलाइन थे उनके बारे में जानकारी जुटाना मुश्किल रहा। उन्होंने बताया कि सूची से ये सामने आया कि ज्यादातर प्रमाण पत्र काउंसलिंग की अंतिम तारीखों के आसपास जारी किए गए।
3: ज्यादातर सर्टिफिकेट लास्ट डेट में, मतलब 13-19 तक काउंसलिंग थी और 18-17 में बाद में बढ़ के 25 हो गई थी, तो 24 में भी प्रमाण पत्र जारी हुए। तो मैं समझ गया कि भाई जो हकीकत में यहाँ का स्थायी निवासी होगा या उस कैटेगरी का होगा, फ्रीडम फाइटर या OBC SC कैटेगरी का, वो आखिरी दिन तक क्यों रुका रहेगा। फिर मैंने इनके साइड से देखा तो उसमें मुझे ये देखने में आया कि ज्यादातर यहाँ के मूल के भी नहीं है और उनकी पढ़ाई भी दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बाहरी प्रदेशों से हुई है।
5: प्रदीप बहुगुणा ने आज तक से बातचीत में बताया कि उत्तराखंड में स्टेट कोटे के तहत MBBS की करीब 855 सीटें हैं। उनकी पड़ताल में सामने आया है कि इन सीटों में आरक्षण का लाभ लेने के लिए कथित तौर पर फर्जी डोमिसाइल प्रमाण पत्र बनाए गए।
3: मैं एक हफ्ते से इसमें लगा हूं और नीट की वेबसाइट से भी जाके जो ऑल इंडिया की है उससे मैंने निकाला है डाटा, तो उससे मुझे मोटा मोटा ये पता चला है कि 200 से ऊपर फर्जी डोमिसाइल बने हैं, जिससे कि उसकी फिर सब कैटेगरी होती है, ऑर्फन होता है, फ्रीडम फाइटर होता है, PWD होता है, SC होता है, ST होता है। फिर जब एक बार डोमिसाइल बन गया तो सब फिर वो उससे फायदा मिल जाता हूँ।
5: मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण पत्रों की जांच शुरू करवाई है। जांच में कुछ दस्तावेजों और आवेदकों के पते को लेकर गड़बड़ियां सामने आने की बात कही गई है। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि दस्तावेज फर्जी थे या नहीं, और अगर थे तो उन्हें तैयार करने में कौन कौन लोग शामिल थे।
3: देखो ये असल में ये जो लूप होल है इसके पीछे मुख्य रूप से स्थायी निवास वाली बात है। पहले मूल निवास जारी हुआ करता था, यहाँ के लोग होते थे उनको मूल निवास, उसमें फिर कई पीढ़ियों का वो देखा जाता था, खसरा खतौनी सब देखा जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब कोई अपना कोई 15 साल से भी यहाँ रह रहा है वो एक एफिडेविट लगा देता तो उसका प्रमाण पत्र बन जाता है। और इवन अब पटवारी लोग क्या करते हैं कि एफिडेविट के बेस पे बिना कोई जांच किए हुए प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं। ये देखा आप, ये स्पष्ट है कि जो प्रमाण पत्र जो है, जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो तहसीलदार जारी करते हैं, और जो स्थायी निवास का होता है उसको उपजिलाधिकारी और फ्रीडम फाइटर का भी एसडीएम ही जारी करते हैं।
5: उत्तराखंड में स्वतंत्रता सेनानी फर्जी सर्टिफिकेट मामले में जगदीश राठौड़ नाम के पटवारी आरोपों के घेरे में हैं, लेकिन जब आज तक ने राठौड़ से बात की तो इन्होंने एसडीएम अपूर्व सिंह पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उनके अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी बनती है।
4: ये जो आप लोग के पास जैसे अभी बात आई कि जो सर्टिफिकेट जो जारी हुए जिसमें फ्रीडम फाइटर के रहे या अन्य जाति वर्ग के रहे, तो इसमें कैसे हो गए, क्या वजह रहती है?
6: काम का दबाव के कारण ज़्यादा दबाव रहता है जी, SRI है, जनगणना है, VIP ड्यूटी है, मौके में जाना है, उनको चिन्हित करना है,
4: तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो आपके पास आए। क्या रहा उसमें, मतलब कैसी कोई ये जो कागज ज़्यादा दबाव की वजह से जो कागज चेक नहीं हो पाए?
6: ज़्यादा दबाव के चेक ना होने के कारण।
5: पटवारी ने SDM पर उंगली उठाई तो जिलाधिकारी आशीष चौहान तक मामला पहुंचा और उसके बाद उनकी तरफ से पूरी जांच की बात कही गई।
7: इस संबंध में जैसा आप जो बता रहे हैं कि अगर डोमिसाइल का एक उनमें भी किसी किस्म की कोई मैनिपुलेशन या फेक सर्टिफिकेट जारी होने जैसी स्थितियां हैं, तो जो जांच समिति है वो सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए अपने स्पेक्ट्रम को या अपनी जाँच के एरिया या स्कोप को बढ़ा देगी।
5: इस खुलासे के बाद अब RTI एक्टिविस्ट विकेश सिंह नेगी ने इस मामले में हाई कोर्ट का रुख करने की तैयारी कर ली है।
8: इस मामले को मुख्य सचिव को पत्र लिखा, DM को पत्र लिखा, पर लेकिन किसी के द्वारा समाज कल्याण को पत्र लिखा, लेकिन किसी के द्वारा ये कराया नहीं गया, इसमें कोई जांच और ना कोई मुकदमे दर्ज करवाए गए।
5: इस पूरे मामले में पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर SIT बना दी है, जिसकी जांच से पता चलेगा कि कथित फर्जी डोमिसाइल कैसे तैयार किए गए, इन्हें जारी करवाने में किन लोगों की भूमिका रही और इनका इस्तेमाल किन किन सरकारी लाभों के लिए किया गया। अंकित शर्मा, देहरादून आज तक।
2: जम्मू कश्मीर में इस वक्त NHM कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ये लोग अपनी लंबित मांगों को लेकर कैंडल मार्च से लेकर धरना प्रदर्शन तक कर रहे हैं। मांग है कि इन्हें दूसरे मेडिकल कर्मचारियों के समान वेतन दिया जाए, इनकी नौकरी को स्थायी किया जाए।
9: तनख्वाह कितनी मिलती है
10: सर? वो तो बताने लायक नहीं है ना।
11: 15 साल की नौकरी के बाद रोज अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करने के बाद भी अगर किसी कर्मचारी को अपनी तनख्वाह बताने में शर्म महसूस हो, तब सरकारों को खबरदार करना जरूरी हो जाता है।
9: कितने वर्षों से काम कर रहे हैं?
10: मुझे 18 साल हो।
9: 18 वर्ष हो गए। किस पद पर हैं, किस पोजीशन पर?
10: मैं हेल्थ वर्कर हूँ सर।
9: हेल्थ वर्कर हैं और 18 वर्ष?
10: जी सर।
9: कितनी तनख्वाह है
10: सर? बताने के लायक ही नहीं है।
11: सोचिए, इन लोगों ने अपनी जिंदगी के सबसे अहम वक्त जनता की सेवा में दे दिया, लेकिन इन्हें बदले में स्थायी नौकरी तक नहीं मिल सकी।
12: समूचे जम्मू कश्मीर में हजारों की संख्या में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो धरने प्रदर्शन पर है। इनका कहना है कि ये पिछले कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कई इनमें जो कर्मचारी हैं वो पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी जो सेवाएं वो स्थायी नहीं की गई है, यानी कि इनको स्थायी नौकरी नहीं मिल रही है। और इनकी मांग है कि जो इनकी तनख्वाह है उसमें भी बढ़ावा होना चाहिए।
11: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जम्मू कश्मीर में 13,550 कर्मी स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल से लेकर सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक स्थायी नहीं हो पाए।
9: संभाल जी, आप कितने वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं?
13: जब सर, हम पिछले 20-25 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
9: 20-25 वर्ष
13: सर, सभी जहां पे जितने आप मुलाजिम देख रहे हैं सभी को 20 साल से ऊपर ही हो गए जहां पे सेवा देते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकारें इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हर बार कोई नई सरकार आती है, हम देंगे, हम आपके लिए सोचेंगे, हम आपके लिए जॉब पॉलिसी बनाएंगे, कुछ भी नहीं है। हम इनको कहते हैं कौन सा रेगुलाइजेशन, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है जो 25 साल से चलता है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो 20 साल से चलता है, 20-25 साल से काम जॉब पे कर रहे हैं जो कौन सा, जबकि सरकारें 5 साल के लिए आती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे होती हैं, फिर हर बार उनको आना पड़ता है, वोट लेने पड़ते हैं, हर बार हमें सड़कों पे आना पड़ता है। जब तक सड़कों पे नहीं आए उतरे नहीं, सरकारें सुनती नहीं है।
11: अब सवाल ये है कि इन लोगों की सरकार क्यों नहीं सुनती, इस सवाल का जवाब भी इनके पास नहीं है।
9: किस पद पर कार्यरत है?

0: मैं इधर लैब टेक्नीशियन के पद पे हूँ।
1: अच्छा,
0: जी
1: स्वास्थ्य विभाग।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: तो मुझे पता है आप अपनी सेवाएं कितने वर्षों से दे रहे हैं?
0: मेरे को सर हो गया 14-15 साल इसी से।
1: 14-15 वर्षों?
0: हाँ जी।
1: अभी भी आप अस्थायी तौर पर ही काम?
0: हाँ जी, हाँ जी सर।
1: क्या वजह है कि आप लोगों की सेवाएं जो है स्थायी नहीं की जाती, आपको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा?
0: ये अभी हमें समझ नहीं आ रहा। अब इतना हमारा अच्छा प्रोफेशन है जो कि हमें स्ट्राइकों पे हमारा हम नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूर किया जा रहा है कि आप लोग स्ट्राइक्स पे आइए। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कोई ना कोई हमारी जिम्मेदारी ले और हमें जल्दी से कोई हमारी जॉब पॉलिसी बनाए, ताकि जिससे हमें भी लगे कि हमारा फ्यूचर सेव है।
1: तो अभी कितनी तनख्वाह मिल रही है? जैसे आप लैब टेक्नीशियन है, कितनी
0: हमें मिल रहा है? 25,000।
1: 25,000 मात्र?
0: हाँ जी।
1: कितने वर्षों से आप काम कर?
0: मैं सर 15 साल से हो गया हूँ।
1: तो इतनी महंगाई में परिवार का गुजर बसर कैसे हो पाता?
0: तभी हम लोग आज रोड पे आए हैं।
2: 15 साल की नौकरी के बाद 25,000 रुपए महीने की सैलरी में क्या ही कोई घर चलाएगा, समझा जा सकता है। लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत काम कर रहे डॉक्टर तक भविष्य को लेकर चिंतित दिखते हैं।
3: डॉक्टरों को भी सर जो इनका बेसिक वेतन है वही है 40,000।
1: बेसिक
3: वेतन 40,000 ही मिल रहा है। देखिए काम सेम है, इक्वल वर्क का सब कुछ सेम है, सब कुछ काम सेम है, काम सेम है, सब कुछ दे रहे, दाम अलग अलग। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब
1: चाहते हैं कि एक तो आपकी सेवाएं जो है वो स्थायी की जाएं और दूसरा जो आपका वेतन है, जो परमानेंट यहाँ पोजीशंस हैं, यानी कि जो स्थायी तौर पर जो लोग काम कर रहे हैं उसी के बराबर आपका वेतन रहे।
3: हमारा हम चाहते हैं वही हो, जॉब पॉलिसी बने। देखिए हमारी सबसे बड़ी बात है, जहाँ पे अगर कोई आदमी, हमारे बहुत से मुलाजिम थे जो रिटायर भी हो गए, तो रिटायर होके उनके हाथ में क्या जाता? कुछ भी नहीं, खाली हाथ जाएंगे।
1: ग्रेचुटी वगैरह कुछ
3: नहीं है, नथिंग एल्स कुछ भी नहीं है सर। हम यही तो चाह रहे हैं, यही तो रोना रो रहे हैं गवर्नमेंट से पिछले 20-25 सालों को, भाई कुछ तो करो, कुछ तो सोचो इन मुलाजिमों के, आप ही के लोग हैं।
2: इन कर्मचारियों की मांग है कि इन्हें स्थायी किया जाए, नौकरी की उचित नीति बनाई जाए, इसके अलावा रिटायरमेंट और ईपीएफ कवरेज समेत सामाजिक सुरक्षा के फायदे दिए जाएं जो इनके साथ काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को मिलते हैं।
4: मेरे को 15 साल हो गए हैं।
1: 15 वर्षों?
4: जी जी।
1: तो अभी भी आप कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन पर ही?
4: जी बिल्कुल।
1: मतलब अभी भी कच्ची नौकरी है, पक्की नौकरी नहीं मिल?
4: जी जी बिल्कुल।
1: तो आप मुझे बताइए कि आप लोगों ने क्या सरकार से गुहार की है इतने वर्षों से, 15 वर्षों से, 20 वर्षों से? आप कह रहे हैं कि कई लोग 15 वर्षों से कार्य करें, कई 20 वर्षों से कार्य करें, आपने सरकार से गुहार की है, दरवाजे खटखटाए?
4: जी, ये पिछले 7-8 साल से ये हमारी चौथी स्ट्राइक है जो अब 3 दिन की है। इससे पहले 30 दिन के 34 दिन 35 दिन की हो चुकी है। एक बार जो आखिर में हुई थी जब पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें अनशन पे भी हमारे एम्प्लॉय बैठे थे, खुद मैं भी बैठा था एनटीपी की तरफ से। 9 दिन का अनशन था, तो पुलवामा अटैक हुआ 7वें-8वें दिन, तो हमें सत्यपाल मलिक जी जो तब गवर्नर थे उनका पर्सनली फोन आया कि आप उठ जाओ, ये देश का मसला है।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत काम करने वाले इन लोगों का कहना है कि कोरोना महामारी हो या फिर विपरीत और गंभीर हालात, इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर अग्रिम पंक्ति के योद्धा के रूप में काम किया। इसके बावजूद सरकार लगातार इनकी जायज मांगों की अनदेखी कर रही है। नियमित कर्मचारियों के समान ही काम करने के बाद भी इन्हें ना तो स्थायी दर्जा दिया जा रहा है और ना ही उचित वेतन भत्ते मिल रहे हैं। इस भेदभाव के खिलाफ इन लोगों को कांग्रेस का भी समर्थन मिल गया है।
5: जो जेपी नड्डा जो सकीना जी कह रही थी कि मैंने तो इनका केस रिकमेंड किया है, मैं तो जेपी नड्डा से फिर बात करूंगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, मगर वो चीज यहां क्लियर हो रहा है कि जेपी नड्डा ने 20 सितंबर 2025 को सर्कुलर दिया है तमाम यूटी स्टेट्स को कि इन एनआरएम बच्चों को आप स्टेट पॉलिसी के तहत में आपको जो वहां पर सिचुएशन लग रही है उसके हिसाब से अडॉप्ट कीजिए। हमारा काम है खाली फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, स्टेटों का काम है इनकी क्वालिफिकेशन इनके एक्सपीरियंस के मुताबिक उनको नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जाएं, ये स्टेट का काम है, यूटी का काम है। तो इस हवाले से स्टेट हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट की गवर्नमेंट को, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री को, हमारे चीफ मिनिस्टर को मेरे ख्याल से हाथ खुले हैं।
2: इस बारे में जब आज तक ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सकीना ईटू से बात की, पहले तो उन्होंने इन कर्मचारियों से हमदर्दी जताई, लेकिन इनके स्थायी न किए जाने का दोष केंद्र के सिर पर दिया।
6: उनका प्रोटेस्ट पे जाना जो है वो जायज नहीं रहता है। जो हमारे हाथ में है वो हम करेंगे, जो हमारे हाथ में नहीं है उसको ऑलरेडी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है आपका प्रपोजल। मैं उस प्रपोजल के लिए एक बार फिर मैंने इनको कहा है कि मैं एक रिमाइंडर जो है वो वहाँ पे दिल्ली में उनको दे दूंगी ताकि वो इनकी किसी तरह मदद कर सके।
2: कर्मचारियों का सवाल ये है कि जब दूसरे राज्यों ने एनएचएम के स्टाफ को स्थायी करने के लिए पॉलिसी बनाकर उसे लागू कर दिया है, तो फिर जम्मू कश्मीर सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही? अगर दूसरे राज्यों में एनएचएम का स्टाफ स्थायी हो सकता है तो जम्मू कश्मीर का क्यों नहीं? सरकार को खबरदार करते हुए प्रदर्शनकारी इस बार

0: अपना आंदोलन मांग पूरी तरह मानने के बाद ही खत्म करने की बात कह रहे हैं, ताकि अगली बार कोई इनसे तनख्वाह पूछे तो इन्हें बताने में शर्म नहीं आए। सुनील भट्ट, जम्मू, आज तक।
1: अब आपको हिमाचल प्रदेश के एक मेडिकल कॉलेज का हाल दिखाते हैं, जहां पर आने वाले मरीजों को इलाज के लिए रुई से लेकर सिरिंज तक खुद लानी पड़ती है। अब मरीज के तीमारदार कह रहे हैं कि हम अपने मरीज को देखें या फिर दवा लेने बार बार बाहर जाते रहें।
0: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरकारी मेडिकल कॉलेज उत्तर भारत के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में शुमार है। कुछ दिन पहले ये मेडिकल कॉलेज नर्सिंग स्टाफ की कमी के चलते सुर्खियों में था, लेकिन आज तक की पड़ताल में जो सामने आया वो ज्यादा गंभीर है। सरकारी अस्पताल के बाहर निजी मेडिकल शॉप की भीड़ देखिए, ये वो लोग हैं जो हिमाचल में दूर दूर से अपनों का इलाज करवाने इस मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, लेकिन देखकर हैरान रह गए कि इतने बड़े अस्पताल में डॉक्टरों के पास रुई, सिरिंज और ग्लव्स तक नहीं। मतलब लोग खुद बाहर से खरीद कर ये चीजें डॉक्टर नर्स को लाकर दे रहे हैं ताकि इलाज हो सके।
2: हम इमरजेंसी में आए हैं और यहाँ पे जो भी सामान है बाहर से लिख के दिया और हम बाहर से लेके आए हैं, जैसे सिरिंज है, ग्लूकोज के लिए बॉटल्स हैं और ग्लव्स वगैरह सब, जबकि हॉस्पिटल के अंदर ही मिलना चाहिए। और जिस पेशेंट के साथ अगर कोई एक ही जना आए हो तो वो पेशेंट को संभाले या सामान लेने जाएंगे।
0: हिमाचल प्रदेश का ये कैसा मेडिकल कॉलेज है जो कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, चंबा और यहाँ तक कि पठानकोट के लोगों की जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
3: पहले तो मिल जाता था यहाँ पे सब कुछ, अब सब कुछ ऑलमोस्ट बाहर से ही लाना पड़ता है। एक एक चीज जो भी है सब बाहर से ही मिलती है, अब अंदर से कुछ नहीं मिलता। इवन मैं अपने फादर को भी लेके आता हूँ यहाँ पे, वो अस्थमेटिक पेशेंट हैं, तो उनको डॉक्टर ने वैक्सीन रिकमेंड करी थी। जब पहले उनको रिकमेंड करी थी तब तो हॉस्पिटल की तरफ से वो लगी थी, बट इस बार जो वैक्सीन उनको लगी हैं वो सारी बाहर से लगी, और वो एक एक की कीमत 6,000 और 7,000 की है वो वैक्सीन। और तो सर मैं क्या बोलूँ, छोटी छोटी चीज़ भी, सिरिंज भी बाहर से लेके आना, और तो क्या ही।
4: कुछ लोग बता रहे थे कि ग्लव्स भी बाहर से लानी पड़ते हैं डॉक्टर्स के लिए,
3: ईच एंड एवरीथिंग, ग्लव्स भी बाहर से।
4: ये इमरजेंसी की बात आप कर रहे हैं?
3: नहीं नहीं, ये पूरे हॉस्पिटल में, ये पूरे हॉस्पिटल में।
0: सोचिए, हिमाचल के इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में जैसे ही कोई तीमारदार अपने मरीज को लेकर आता है, उसे सिरिंज, ग्लव्स और जीवन रक्षक दवाइयों का पर्चा थमा दिया जाता है, क्योंकि अस्पताल में सभी सामान की किल्लत।
5: मेरे पति यहाँ एडमिट है, पर हमें किसी भी चीज़ की फैसिलिटी नहीं मिल रही है। हमें ग्लव्स, कॉटन, सिरिंजेस वगैरह सब कुछ बाहर से अरेंज करना पड़ रहा है। एनएस तक भी हमें बाहर से लाने पड़ रहे हैं, जहाँ मरीज की हालत ख़राब है और हमें बोला जा रहा है कि आप बाहर जाके ये सामान लाओ।
6: इवन ग्लव्स हो गए या स्टिप्स, ऐसी कुछ जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं वो पहले मिल जानी चाहिए। मतलब पहले तो मिलती थी, बट इस सेशन में प्रॉब्लम है इसके रिगार्डिंग। सिरिंजेस एंड ग्लव्स जो है वो बाहर से लाना पड़ रहा है।
0: एक समस्या यहाँ आयुष्मान कार्ड को लेकर भी, लोगों का आरोप है कि यहाँ पर ये काम नहीं करता, इसलिए इस श्रेणी के मरीजों को अपनी दवाइयाँ खुद खरीदनी पड़ती है।
7: ये पूरा कंप्लीट किया हमने, डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने साइन किए, कंप्लीट किया आयुष्मान कार्ड। ये जब पूरा कंप्लीट करिए तो मेडिकल स्टोर में गए, तो मेडिकल बोलते हैं हमारे पास दवाई नहीं चाहिए। एक में गए, दूसरे में गए, तीसरे में गए, वो बोलते हैं नहीं दवाई नहीं चाहिए, बाहर से लाओ बालाजी से। फिर आगे वहीं पर दुकान से लाए, फिर ये पैसे दे के लाए थे, जेब से पैसे खर्च किए।
0: इस बारे में जब आज तक ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन से बात की तो भरोसा दिया गया कि इन सब चीज़ों का ऑर्डर दे दिया गया है।
8: जहां तक सवाल है हिम केयर का, आयुष्मान का या जो एक्सीडेंट केस है, उसको हम सारी जो दवाई है वो अवेलेबल करवा रहे हैं। 5 या 7 दिन पहले हमारे पास कुछ प्रॉब्लम रही है कि जैसे ग्लव्स नहीं थे, क्योंकि जो वेंडर है उसको हमने ऑर्डर किया था, वो सप्लाई नहीं कर पाया, उसके भी कुछ अलग से रीज़न है। और कुछ जो सिरिंजेस हैं, जो 10 ml की या 15 ml की, वो अवेलेबल नहीं थी। बाकी जो छोटी सिरिंज है 2 ml की, वो अवेलेबल थी।

0: अभी हमने सरिंजेस की ऑर्डर कर दिया है, ग्लव्स अभी अभी हमने 5,000 ग्लव्स जो है वो अवेलेबल करा दिया है इमरजेंसी में।
1: इस मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले डॉक्टरों ने नाम ना बताने की शर्त पर हमें बताया कि सरकार की उदासीनता के कारण डीआरपीजीएमसी टांडा को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। मतलब कहने को ये अस्पताल मेडिकल कॉलेज है, लेकिन दवाएं और सीरीज तक यहाँ नहीं। अशोक रैना, कांगड़ा, आज तक।
2: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए खबरदार।
3: पाटलिपुत्र की पावन धरा से उठेगा सियासत का सबसे बड़ा शोर, जनता के सबसे बड़े सवाल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ। पंचायत आज तक 18 सितंबर, सिर्फ आज तक पर।

0: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है, जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल टू इन वन बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।
1: आगे आगे,
2: अरे उधर,
1: करेक्ट करेक्ट,
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
5: SBI Celebrations Unlimited. ये गणेशोत्सव बनेगा स्पेशल विद फेस्टिव ऑफर्स ऑन कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स।
6: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
7: नो एडेड शुगर, प्रिजर्वेटिव के बिना। डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
8: लायन डेट नट बाइट्स।
9: पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया
3: है। ओला ला भाई मेरा बैट,
5: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
6: अभी तो चार्ज हुआ यार।
7: ओला बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
10: जीके मैक्स।
11: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
10: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
12: जेके वॉल मैक्स
10: बेस्ट पेंट,
13: जेके मैक्स।
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
14: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
15: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
16: ओए जाके से खड़ी की, पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी?
17: क्या
18: बिस्किट? पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।
16: कहीं पार्किंग यार, कहीं भी लगा ले।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: पाटलिपुत्र की पावन धरा से उठेगा सियासत का सबसे बड़ा शोर, जनता के सबसे बड़े सवाल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ पंचायत आज तक 18 सितंबर सिर्फ आज तक पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: spa state of mind with a Kohler spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Kohler spa at home.
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर यार
2: करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर यार करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Kohler spa at home.
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है। जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल 2-in-1 बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।
8: In association with Signature Finest Cardamom Seeds, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
9: क्या आप मुझे बताइए, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मजबूत कदम लगेगा आपको? ये कदम जो हमारे इंडिजिनस, हमारे होम ग्रोन डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है, उसको तबाह करने की दिशा में एक कदम है। क्योंकि अमेरिका को हमारा MDR रेजिम नहीं पसंद आ रहा था, अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा था, और हो सकता है हम अमेरिका के सामने कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं ये करके कि साहब हमने ब्रिक्स का समिट यहाँ ऑर्गेनाइज के लिए, हमें माफ कर दो, लो हम आपके लिए कर देते हैं। ये वही है, उसके अलावा कुछ नहीं।
10: कांग्रेस पार्टी एक नाराज फूफा पार्टी बन चुकी है, और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जब दुनिया की डिजिटल फाइनेंशियल क्रांति की अनुगवाई भारत ने करी थी UPI के माध्यम से, तो राहुल गांधी के कहने पे पी चिदम्बरम ने ये कहा था कि क्या गरीब आदमी या इस देश का आम आदमी कभी डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकता है। सो कांग्रेस हैज हिस्टोरिकली बीन एन ओपोनेंट ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और आज ये नाराज फूफा पार्टी झूठ फैला रही है। हर आम आदमी आज स्कैनर के माध्यम से पेमेंट कर रहा है, और हर आम आदमी स्कैनर के माध्यम से ही पेमेंट करता रहेगा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: खबरदार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना के साथ और हरदम रहिए खबरदार।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि मुसलमानों का सबसे पवित्र शहर मक्का आज अलर्ट पर क्यों है। दावों के मुताबिक 15 सितंबर को हूती लड़ाकों ने मक्का को निशाना बनाकर आत्मघाती ड्रोन से बड़ा हमला करने की कोशिश की, लेकिन सऊदी एयर डिफेंस सिस्टम ने मक्का में दाखिल होने से पहले ही इस ड्रोन को मार गिराया। लेकिन इस घटना के बाद मक्का शहर में इमरजेंसी अलर्ट जारी करना पड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हूती सच में मक्का पर हमला कर सकता है या ये सऊदी अरब का कोई नया दांव है।

इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या आपकी तेल और गैस सप्लाई खतरे में पड़ सकती है। जहां दुनिया का सबसे बड़ा तेल का खजाना मौजूद है, वहां बारूद सुलग रहा है। लिबिया में तीन बड़े ऑयल फील्ड्स पर खूंखार आतंकी समूहों ने कब्जा जमा लिया है। और सवाल यह है कि जिस मिडिल ईस्ट में दुनिया का बड़ा तेल भंडार है, उस क्षेत्र में मौजूदा आतंकी संगठन पूरे तेल गैस की सप्लाई चेन को एक झटके में ठप कर देंगे तो दुनिया का क्या होगा। हम और आप ये मान रहे थे कि अब ईरान और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ है, युद्ध रुका हुआ है, अब वहां स्थिति सामान्य है। अगर लड़ाइयां भी हो रही हैं तो छिटपुट होती रहेंगी, जिस तरह से रशिया यूक्रेन के बीच में होता रहा। लेकिन ये जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में नौबत बन रही है, ये बहुत भयावह है। हमारी जिंदगी पर कैसा असर पड़ेगा आपको बताएंगे। इधर अरब सागर में भारत और पाकिस्तान के जंगी जहाजों के बीच टक्कर से तनाव बढ़ गया है। इंटरनेशनल वाटर्स में पाकिस्तानी नेवी के युद्धपोत पीएनएस हनैन ने भारतीय नौसेना के कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर को जानबूझकर टक्कर मार दी। अब इस हिमाकत पर भारत भड़क गया है। बड़ी और कड़ी चेतावनी हमने दी है। हालांकि इस टक्कर से पीएनएस हनैन को भारी नुकसान हुआ, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक हादसा था या समंदर में भारत को उकसाने की एक पाकिस्तानी साजिश। और इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या रशिया से भारत की दोस्ती की वजह से अमेरिका चढ़ा हुआ है। अमेरिकी संसद में एक बिल पेश हुआ है जहां भारत समेत कई देशों पर सीधे 100% का भारी भरकम टैरिफ का खतरा मंडरा रहा है। क्या इस खतरनाक टैरिफ वॉर का मकसद रशिया और उसके साथी देशों की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है, डायरेक्ट अटैक करना है। और इसके बाद आपको बताएंगे कि यूपीआई पेमेंट पर लगा चार्ज दुकानदार चुकाएगा, लेकिन ये किसकी जेब से आएगा। एनपीसीआई की जो गाइडलाइन है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसकी गाइडलाइन के मुताबिक इस चार्ज की मार ग्राहक पर नहीं पड़ेगी, बल्कि दुकानदारों के एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट चुकाना होगा। पर असली पेच यही है, क्या दुकानदार ये 0.4% का बोझ चुपचाप खुद सहेंगे या पुरानी चालाकी अपना कर घूम फिर

0: कर ये चार्ज ग्राहक से ही वसूलेंगे। इसके बाद आपको लखनऊ से आया एक खतरनाक वीडियो, जहां शाहनवाज नाम के आरोपी ने एक लड़की को कार के बोनट पर घसीटा। देखने में ये एक हिट एंड रन का मामला नजर आया, लेकिन जांच में सामने आ रहा है कि शाहनवाज ने इस लड़की को अपनी हिंदू पहचान बताकर धोखा दिया। फिलहाल पुलिस ने शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के एक विधायक को मिसाइल दागने की चुनौती दे डाली है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा मुस्लिम बहुल इलाके पर मिसाइल गिराने का तंज कसते नजर आए, जिस पर ओवैसी ने जमकर जुबानी बारूद बरसाया। UCC को भी मुसलमानों के खिलाफ बताते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला।
1: यूनिफॉर्म सिविल कोड, भाड़ में जाए तुम्हारा यूनिफॉर्म। तुम यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर RSS का एजेंडा लागू करना चाहते हो।
0: ये तो सिर्फ ट्रेलर है। इधर प्रयागराज में जिस जमीन पर कभी अतीक अहमद का कब्जा हुआ करता था, आज वहां लोग दिए जला रहे हैं। इस जमीन पर बने 76 प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों में एक अनोखा जश्न है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर यहां रहने वाले लोग अपने आवास पर दिए जला रहे हैं। और इसके बाद आपको बताएंगे कि मुंबई के मशहूर मोंडेगार कैफे का लाइसेंस कैसे रद्द कर दिया गया। महाराष्ट्र FDA की जांच में
1: के नाम पर RSS का एजेंडा लागू करना चाहते हो।
0: ये तो सिर्फ ट्रेलर है। इधर प्रयागराज में जिस जमीन पर कभी अतीक अहमद का कब्जा हुआ करता था, आज वहां लोग दिए जला रहे हैं। इस जमीन पर बने 76 प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों में एक अनोखा जश्न है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर यहां रहने वाले लोग अपने आवास पर दिए जला रहे हैं। और इसके बाद आपको बताएंगे कि मुंबई के मशहूर मोंडेगार कैफे का लाइसेंस कैसे रद्द कर दिया गया। महाराष्ट्र FDA की जांच में 94 साल पुराने कैफे के किचन में भारी गंदगी, ड्रेनेज में लीकेज, खाने के सही तापमान मेंटेन ना करने जैसे गंभीर कमियां पाई गई। फूड सेफ्टी मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने पर प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया, लाइसेंस ही रद्द कर दिया। और आखिर में आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आई एक ऐसी खबर दिखाएंगे, जहां EMI ना चुकाने पर शरीर से खून निकाल लेने का आरोप है। आरोप है कि रिकवरी एजेंट्स ने लड़के का अपहरण किया, बंधक बनाया, बंधुआ मजदूरी कराई, फिर ब्लड बैंक ले जाकर जबरदस्ती 1 यूनिट खून निकाल लिया और बेच दिया। लेकिन आज शुरुआत हम इस वीडियो से करना चाहते हैं, जिसे यमन में हुती समर्थित मीडिया ने जारी किया है और यह दावा किया है कि अल जौफ के पूर्वी इलाकों में ऐसे तमाम सुरक्षा बल पीठ दिखाकर भाग रहे हैं जिन्हें सऊदी अरब से मदद और हथियार मिलते हैं। देखिए,

हूती का दावा है कि उसके सैकड़ों विद्रोहियों ने यमन के मोखा बंदरगाह और ग्रेटर और लेसर हानिश द्वीपों पर कब्जा कर लिया है और इसके कारण 1,00,000 से ज्यादा लोग यमन में विस्थापित हो चुके हैं। इस नक्शे में दिखाई दे रहा है ये तमाम जो द्वीप हैं अभी हूती विद्रोहियों के नियंत्रण में माने जा रहे हैं और अभी हूती इस युद्ध को 2 मोर्चों पर लड़ रहा है। पहला, उसने लाल सागर और बाबल मंदेप से गुजरने वाले जहाजों को रोकने के लिए कई द्वीपों पर जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं और दूसरा,

सऊदी अरब के जो अलग अलग शहर हैं, उन पर बैलिस्टिक मिसाइल्स, आत्मघाती ड्रोन से हवाई हमले भी कर रहा है। इनमें भी सबसे बड़ा हमला इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र शहर मक्का पर बताया जा रहा है, और यह दावा सऊदी अरब की सरकार ने खुद किया है। सऊदी अरब ने कहा है कि 15 सितंबर को हूती विद्रोहियों ने मक्का की तरफ ड्रोन भेजकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सऊदी अरब की वायु रक्षा यानी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने उस ड्रोन को मक्का के दक्षिण में ही मार गिराया। यानी यह ड्रोन मक्का के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में दाखिल होने से पहले नष्ट कर दिया गया, और यह पूरी घटना कल शाम की है। इस हमले के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब सऊदी अरब की सरकार ने मक्का शहर को लेकर इमरजेंसी अलर्ट जारी किया। सरकार ने मक्का शहर में रहने वाले सभी लोगों से कहा कि वो तुरंत किसी सुरक्षित इमारत या फिर खिड़कियों से दूर अंदरूनी कमरे, ऐसी जगहों पर चले जाए। खतरा खत्म होने तक घर या इमारत से बाहर ना निकले। खुले इलाकों, खिड़कियों, कांच बालकनी या छत से दूर रहे। और ये गाइडलाइंस हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, ये तमाम ऐसे हाई अलर्ट के बाद सऊदी अरब ने ही ये तमाम रिस्ट्रिक्शंस या फिर समझ लीजिए इंस्ट्रक्शंस जारी किए। अगर उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति या परिवार बाहर है तो नजदीकी इमारत में शरण ले ले, मजबूत आड़ के पीछे जाए। इन चेतावनियों से आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरब का मक्का शहर इस वक्त कितनी बड़ी दहशत में जी रहा है, और ये भी तब हो रहा है जब हमला करने वाले हूती विद्रोही खुद इस्लाम धर्म को मानते हैं, और इसी इस्लाम धर्म में मक्का को सबसे पवित्र शहर माना गया है। इतना पवित्र कि दुनिया में कहीं भी कोई मुसलमान अगर नमाज पढ़ता है तो उसकी दिशा मक्का शहर के काबा की तरफ होती है, कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी कोने में। यही नहीं, मक्का शहर की पवित्रता को देखते हुए वहां मस्जिद अल हरम और काबा में गैर मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। यानी मक्का दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में शामिल है जहां गैर मुसलमानों को प्रवेश की इजाजत तक नहीं है। इसलिए जब इस्लाम धर्म को ही मानने वाले हूती लड़ाकों ने मक्का शहर पर हमला किया जैसा सऊदी अरब का दावा है, तो ये पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर बन गई। अब 57 मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन OIC, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और 22 अरब देशों के संगठन अरब लीग ने इस हमले की निंदा की है, और भारत, पाकिस्तान, इजिप्ट, बहरेन, कुवैत ने इन हमलों को चिंताजनक बताया। जानते हैं, इन हमलों के बाद मक्का शहर को रेड अलर्ट पर रखा गया है, और रेड अलर्ट का मतलब यह है कि किसी भी वक्त मक्का शहर पर फिर से कोई भी मिसाइल या आत्मघाती ड्रोन से हमला, हवाई हमला हो सकता है। सऊदी अरब का मक्का शहर वहां के मक्का प्रांत में आता है जिसका कुल क्षेत्रफल 3004 वर्ग किलोमीटर है। यानी मक्का शहर क्षेत्रफल के मामले में दिल्ली से दोगुना बड़ा है। पूरे मक्का शहर में 24,27,924 लोगों की आबादी रहती है। आबादी के लिहाज से मक्का को सऊदी अरब का चौथा सबसे बड़ा शहर माना जाता है, क्योंकि चाहे वो हज हो और उमरा हो, उसके लिए हर साल लगभग 2 करोड़ लोग सऊदी अरब के मक्का शहर जाते हैं। यहां लोगों की बसावट, इमारतें बहुत ज्यादा है, और इसीलिए मिसाइलों और ड्रोन हमलों के लिहाज से मक्का शहर सबसे संवेदनशील माना जाता है। इतना संवेदनशील माना जाता है कि सऊदी अरब की सरकार ने मक्का शहर की सुरक्षा के लिए अमेरिका के सोचे पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को वहां पर तैनात किया है। हालांकि यहां यह समझना भी जरूरी है कि अब तक सऊदी अरब ने मक्का पर हुए ड्रोन हमले का कोई वीडियो, कोई सबूत जारी नहीं किया है, और हूती विद्रोही भी इस दावे को घिसा पिटा बताकर खारिज कर रहे हैं। और ऐसा क्यों हो सकता है वो भी समझिए। अब तक हूती खुद को गाजा और फिलिस्तीन के समर्थन में लड़ने वाले रेजिस्टेंस के रूप में पेश कर रहे थे, रेजिस्टेंस फोर्स वो कहते हैं अपने आप को, जिससे उन्हें मुस्लिम दुनिया के एक हिस्से में सहानुभूति मिल रही थी। लेकिन मक्का जैसे पवित्र स्थल को खतरे में डालने की खबरों से जाहिर तौर पर उनकी छवि पर एक गैर जिम्मेदाराना और एक पवित्रता का सम्मान ना करने वाले हिंसक संगठन की छवि बन सकती है। और हूती का आरोप है कि इसी मकसद से सऊदी अरब ने इस हमले का एक झूठा आरोप उस पर लगाया है। तो सऊदी अरब तो यह दावा कर ही रहा है कि मक्का पर हमला हुआ है, लेकिन हूती इससे साफ इनकार कर रहा है। हालांकि यह पक्ष हूती विद्रोहियों का है, जिन पर दुनिया को ज्यादा विश्वास नहीं है, और ये अपने आप को रेजिस्टेंस फोर्स कहते हैं, और रेजिस्टेंस फोर्स के नाम पर एक से बढ़कर एक अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया है जिनमें कई मासूमों की जान गई है। तो ऐसी

बारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक हो सकती है, जबकि यमन की सीमा मक्का शहर की दूरी सिर्फ 560 किलोमीटर, मदीना शहर की दूरी 1425 किलोमीटर है। अब इसका सीधा मतलब है कि हूती के पास इन शहरों को निशाना की क्षमता भी है, और अभी सऊदी अरब में जिस तरह की बेचैनी है उसे देखकर यही लगता है कि हूती के हमलों ने सऊदी अरब के लिए उसकी रेड लाइन यानी लाल रेखा को पार कर दिया है। देखिए,

अब इन हमलों की तस्वीरें देखिए जो हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर किए हैं। सऊदी अरब के मुताबिक हूती लड़ाकों ने उसके पश्चिमी तट के शहरों, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और 14 सितंबर को हुए हमलों में उसके कम से कम 13 लोग घायल हुए हैं। हूती के इन्हीं हमलों के कारण सिर्फ मक्का ही नहीं बल्कि जेद्दा और ताइफ में भी रेड अलर्ट या हवाई हमलों का इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर सिर्फ आज सुबह की बात करें तो सऊदी अरब के 6 शहरों जेद्दा, अबहा, जाजान, अलुला, ताइफ और यानबू में हवाई हमलों का अलर्ट था। इनमें भी यानबू शहर सऊदी अरब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लाल सागर के किनारे मौजूद इस शहर को सऊदी अरब का सबसे बड़ा ऑयल हब माना जाता है और आप कह सकते हैं कि सऊदी अरब का तेल यहीं से होते हुए दुनिया के अलग अलग शहरों में जाता है। इसके अलावा हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के किंग खालिद एयरबेस जो है और तेल रिफाइनरीज जैसे जाजान, यानबू पर भारी मिसाइल्स और भारी ड्रोन हमले किए। सऊदी अरब ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए हूतियों के ठिकानों पर 100 से अधिक हवाई हमले कर दिए हैं। देखिए

अब इस युद्ध के कारण बड़ी संख्या में लोग यमन छोड़कर समुद्र के रास्ते पूर्वी अफ्रीकी देश जिबूती में शरण लेने के लिए भाग रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक 2000 से ज्यादा लोग यमन से जिबूती पहुंच चुके हैं। 1,00,000 से ज्यादा लोग यमन के अंदर ही विस्थापित हैं और इसके कारण सऊदी अरब अभी बहुत बड़ी दुविधा में फंसा हुआ है। पहले अमेरिका ने सऊदी अरब की मदद करने से इनकार किया, फिर पाकिस्तान ने भी सऊदी अरब को धोखा दिया और जब मक्का शहर पर ड्रोन हमले की खबर आई तब भी मक्का समझौता करने वाला पाकिस्तान निंदा करके चुपचाप निकल गया। तुर्की ने भी मक्का समझौते पर हस्ताक्षर किए थे लेकिन उसने भी सऊदी अरब को कोई सैन्य मदद नहीं दी। और जिस यूएई ने आज से 10 साल पहले यमन में हुती के खिलाफ लड़ाई में सऊदी अरब का साथ दिया था वो यूएई भी इस बार सऊदी अरब के साथ नहीं है। उल्टा जो इसराइल सऊदी अरब का कट्टर दुश्मन माना जाता है और जिसे सऊदी अरब एक राष्ट्र की मान्यता तक नहीं देता, उस इसराइल ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जरिए सऊदी अरब को हूती विद्रोहियों के बारे में खुफिया जानकारी दी है। और अब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी एमबीएस मदद के लिए इजिप्ट पहुंच चुके हैं। एमबीएस इजिप्ट में क्यों मदद चाहते हैं वो भी समझिए। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो लाल सागर और स्वेज नगर में ये देखिए सामने स्वेज नहर जो है, स्वेज कैनाल, इजिप्ट की भूमिका बहुत बड़ी है।

और अगर हुती विद्रोहियों के खिलाफ इजिप्ट का खुला समर्थन सऊदी अरब को मिलता है तो वो अपने तेल की आपूर्ति को जारी रख पाएगा। यानी सऊदी अरब को इजिप्ट से तीन चीजें चाहिए, हुती के हमलों के खिलाफ समर्थन चाहिए, लाल सागर यानी रेड सी उसकी सुरक्षा, और इस पूरे क्षेत्र में जो संकट गहरा रहा है उसे रोकने के लिए सैन्य मदद। देखिए

जिस तरह लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल की जंग का कोई अंत नहीं दिखता, ठीक वही कहानी इस युद्ध की भी नजर आती है। अगर आंकड़ों में समझे तो हूती विद्रोहियों का सऊदी अरब से कोई मुकाबला नहीं दिखता। सऊदी अरब के पास लगभग 4 लाख सैनिकों की फौज है, जबकि हूती के पास 20,000 लड़ाके या विद्रोही कह लीजिए। हूती कहता है कि ट्राइबल फोर्सेस और जो पूर्व सैनिकों को मिलाकर उसकी फौज 3.5 लाख जवानों की हो सकती है, लेकिन इन आंकड़ों पर कोई यकीन नहीं करता। इसी तरह सऊदी अरब की सेना का एक साल का रक्षा बजट 8 लाख करोड़ रुपए है और इसे पूरी दुनिया का 7वां सबसे बड़ा रक्षा बजट माना जाता है, जबकि सऊदी अरब की तुलना में हूती विद्रोहियों का अपना कोई रक्षा बजट नहीं। हूती विद्रोही अपने सारे हथियार ब्लैक इकोनॉमी से खरीदते हैं, यानी तस्करी के जरिए। ये जो हूती विद्रोही हैं वो हर साल 1,30,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है, उसी में से सेना, हथियार, यमन के कब्जे वाले इलाकों को बरकरार रखने का पूरा खर्च निकलता है। जबकि टैक्स और दूसरे तरीकों से जो $2.5 बिलियन यानी 24,000 करोड़ रुपए कमाए जाते हैं, वो भी हूती विद्रोही अपने पास रख लेते हैं। हालांकि इसके बाद भी सऊदी अरब से हूती विद्रोहियों की कोई तुलना नहीं हो सकती। सऊदी अरब की सेना के पास दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार मौजूद है, इनमें F-15 ईगल लड़ाकू विमान शामिल है, 70 यूरोफाइटर टाइफून कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लंबी दूरी की डोंगफेंग थ्री मिसाइल है जिन्हें सऊदी अरब ने चाइना से खरीदा है, बैलिस्टिक मिसाइल्स को नष्ट करने वाला अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम थर्ड भी उनके पास है, और इसी सऊदी अरब के पास दुनिया के सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम में से एक पेट्रियट मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। और इन हथियारों को देखकर ऐसा लगता है कि हूती का सऊदी अरब से क्या मुकाबला। लेकिन अब ये देखिए कि कहां हूती के लड़ाके सऊदी अरब पर 21 साबित होते हैं, यानी उसे बैकफुट पर धकेलने की क्षमता आखिर क्यों रखते हैं। सबसे पहले हूती विद्रोही गुरिल्ला युद्ध में माहिर है, दूसरा हूती के पास कम लागत वाली बैलिस्टिक मिसाइलें खूब हैं, एंटी शिप मिसाइलें, आत्मघाती ड्रोन्स हैं, 1,000 से ज्यादा इनकी संख्या हो सकती है, 800 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली बुरकान 1, 1,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली बुरकान 2, 2,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली तूफान बैलिस्टिक मिसाइल, 2,500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला वेट 2 आत्मघाती ड्रोन, ये सब शामिल है। ये ड्रोन और मिसाइल्स इतनी सस्ती हैं कि इन्हें सऊदी अरब के लिए रोकना उतना ही महंगा साबित होगा जितना ईरान युद्ध में अमेरिका, इजराइल, दूसरे मुस्लिम देशों के लिए साबित हुआ। अब बड़ी बात यह है कि हूती विद्रोहियों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो दुर्गम पहाड़ी इलाकों में गुफाओं में लड़ते हैं जिसके कारण युद्ध को सालों साल खींच सकते हैं, बड़े बड़े देश की सेना को युद्ध में ये थका सकते हैं, जबकि यही सऊदी अरब ऐसा नहीं कर सकता। सऊदी अरब के पास खाने के लिए, मतलब उनके पास सब कुछ है, मिडल ईस्ट क्षेत्र की बड़ी अर्थव्यवस्था है, एक पूरी सिस्टम को उनको चलाना है उस तरीके से, उनके पास तेल के कई कुएं हैं, बड़ी बड़ी ऑयल फील्ड्स हैं, और जब जब हूती इन्हें निशाना बनाता है तो सऊदी अरब के लिए उसकी कमजोर नस साबित होता है। संक्षेप में कहें तो हवाई और तकनीकी मोर्चे पर सऊदी अरब आगे है, लेकिन जमीनी और गुरिल्ला युद्ध में हूती को हराना बहुत मुश्किल है। सऊदी अरब पहले भी ये करके देख चुका है कोशिश। साल 2015 की बात है जब हूती विद्रोहियों ने यमन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, तब सऊदी अरब को यही डर था कि उसकी सीमा के ठीक पास ईरान समर्थित एक जो मजबूत संगठन है, आतंकी संगठन, वो खड़ा हो जाएगा, और इसी चिंता को देखते हुए सऊदी अरब ने उस वक्त हूती विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। अगले करीब 7 साल में सऊदी अरब ने हूती ठिकानों पर हवाई हमले किए, बारंबार किए, और यह आरोप भी लगता रहा कि कई आम लोग भी इन हमलों में मारे गए। लेकिन हूती विद्रोहियों को जमीन से पीछे धकेलने में सऊदी अरब, यमनी सेना और दक्षिणी अलगाववादी ताकतें कामयाब नहीं हो सकी। साल 2022 में जब युद्ध विराम हुआ तब लड़ाई की मुख्य सीमाएं काफी हद तक वहीं बनी रही, और जानते हैं जब सऊदी अरब हूती के खिलाफ युद्ध में हर दिन 144 करोड़ रुपए खर्च कर रहा था, तब भी वो उसे खत्म नहीं कर पाया, और अब जब ये युद्ध फिर से शुरू हुआ है और हूती लड़ाके बहुत कम लागत वाले ड्रोन से सऊदी अरब पर हमले कर रहे हैं, तब सऊदी अरब सैन्य रूप से कई गुना शक्तिशाली होने के बावजूद हूती विद्रोहियों के आगे रणनीतिक रूप से
बैकफुट पर ही दिखाई दे रहा है और अब बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश शुरू हो गई है। हम चाहते हैं कि आप एक बार 2015 से 2022 के बीच लड़े गए उस युद्ध की भी तस्वीरें देखें जिनमें सारी ताकत झोंकने के बाद भी सऊदी अरब मकसद में कामयाब नहीं हुआ, हार गया।

0: यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जब सऊदी अरब और हुती के बीच साल 2022 में सीज फायर लागू हुआ, तब ये युद्ध फिर से क्यों शुरू हो गया। जुलाई महीने में जब ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतल्ला अली खामनेई के अंतिम जनाजे की रस्में पूरी हुई, तब इसमें यमन से हुती के नेता भी शामिल हुए थे। और उसी वक्त जब ईरान से एक जहाज वापस यमन के सना एयरपोर्ट पर उतरने वाला था, तब उस जहाज को रोकने के लिए यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकारी सेना ने हवाई हमला किया। अब इस हमले में हुती विद्रोही इतना नाराज हो गए कि उन्होंने इसके लिए सीधे सऊदी अरब को दोषी बताया और यहीं से दोनों देशों के बीच साल 2022 का सीज फायर टूटने लगा। सबसे पहले हुती विद्रोहियों ने बदला लेने के लिए सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में मौजूद अभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइलें दागी और 20 जुलाई 2026 को लाल सागर में सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी की घोषणा कर दी और केवल सऊदी अरब के तेल टैंकर्स और जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये संघर्ष तब और बढ़ा जब सितंबर 2026 की शुरुआत में हुती विद्रोहियों ने यमन के पश्चिम तट पर तेजी से आगे बढ़ते हुए बाबल मानदेव के पास के इलाकों पर नियंत्रण कर लिया। उन्होंने समुद्री रास्ते के मुहाने पर मौजूद पेरिम द्वीप और हनीश द्वीपों पर कब्जा किया। सऊदी अरब का वैश्विक तेल व्यापार ठप होने की कगार पर पहुंच गया और युद्ध ने भीषण रूप ले लिया। अब इस पूरे युद्ध में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर मिडिल ईस्ट के देश एक एक करके इस युद्ध में घिरते जाएंगे तो दुनिया को होने वाली तेल गैस की आपूर्ति का क्या होगा। आप खुद सोचिए, मिडिल ईस्ट के जिन देशों में दुनिया का 50% यानी आधा कच्चा तेल का भंडार है, इन देशों में 40% प्राकृतिक गैस का भंडार है। अगर वहीं पर आतंकी समूह, विद्रोही गुट इन तेल के कुओं पर आग लगा देंगे, समुद्री रास्तों पर कब्जा कर लेंगे, तो फिर ये तेल और गैस की पूरी जो सप्लाई चेन है उस पर कैसा हाहाकार मचेगा। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो दुनिया का 15.1% कच्चा तेल का भंडार सऊदी अरब के पास है, 11.8% ईरान, 8.2% इराक, 6.4% यूएई, 5.8% कुवैत, 1.4% कतर और 0.14% कच्चे तेल का भंडार सीरिया के पास है। और ये सारे वो देश हैं जहां या तो कोई युद्ध है या कोई संघर्ष चल रहा है, एक से ज्यादा आतंकी संगठन मौजूद है, जैसे इराक में कातैब हिजबुल्ला, असाइब अल हक, हरकत अल नजबा, ये आतंकी और विद्रोही संगठन सक्रिय हैं। सीरिया में हयाते तहरीर अल शाम, इस्लामिक स्टेट और कुर्दिश जो मिलिशिया है, ऐसे तमाम संगठन सक्रिय हैं। ईरान खुद अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है और यही स्थिति सऊदी अरब में है। यमन में मौजूद हुती विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध है। सोचिए, जिन देशों में दुनिया का आधा कच्चा तेल है वहां युद्ध संघर्ष चल रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और पाकिस्तान के बीच समंदर में तनाव बढ़ गया है। अरब सागर में भारतीय युद्धपोत और पाकिस्तानी युद्धपोत के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई और इस टक्कर के बाद भारत ने पाकिस्तानी नौसेना को हद में रहने की चेतावनी दी है। भारतीय युद्धपोत को यह टक्कर पीएनएस हुनैन ने मारी। यह पाकिस्तान का एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। पाकिस्तानी नौसेना इसे अपनी समुद्री सीमा की निगरानी के लिए इस्तेमाल करती है। हुआ यह कि 15 सितंबर को शाम करीब 7 बजे भारतीय नौसेना का कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर निगरानी के मिशन पर था। इसी दौरान इंटरनेशनल वाटर्स में पाकिस्तानी नेवी का ये युद्धपोत बहुत तेजी से आया। अचानक उसने अपनी दिशा बदली, भारतीय युद्धपोत को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी नौसेना 8 से 16 सितंबर के बीच समंदर में सी पार्क नाम से एक युद्धाभ्यास कर रही थी। भारतीय युद्धपोत भी ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के तहत समुद्री व्यापार के मार्ग पर निगरानी के काम कर रहा था। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर चल रहे ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से समुद्री व्यापार के मार्ग पर खतरा बढ़ा है। ऐसे में भारतीय नौसेना ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के तहत जितने भी व्यापारी जहाज है उनको सुरक्षा दे रही है। पाकिस्तानी युद्धपोत ने भारत के इस ऑपरेशन में बाधा डालने की कोशिश की थी और इसी दौरान उसने भारतीय युद्धपोत को टक्कर मार दी। अब पाकिस्तान की इस हरकत से भारत भड़क गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले को लेकर पाकिस्तानी हाई कमीशन के चार्ज डी अफेयर्स को समन किया है। उनसे कहा है कि वो अपने नौसेना के अधिकारियों को सावधानी बरतने के लिए कहें। भारत ने उन्हें सेनाओं के बीच हुए अग्रीमेंट को भी याद दिलाया है और आगे से ऐसी कोई भी हरकत ना करने की चेतावनी दी है। भारत ने पाकिस्तान को याद दिलाया कि उनकी नौसेना ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए अग्रीमेंट ऑन एडवांस नोटिस ऑन मिलिट्री एक्सरसाइजेस मनूवर्स एंड ट्रूप मूवमेंट्स 1991 के आर्टिकल 10 का उल्लंघन किया है। यह अग्रीमेंट इसलिए हुआ था ताकि दोनों देशों की सेनाएं युद्धाभ्यास को एक दूसरे पर हमले की तरह ना देखें। और अगर कोई देश युद्धाभ्यास कर रहा हो तो इसके बारे में वो पहले से ही दूसरे देश को जानकारी दे दे। लेकिन पाकिस्तान के युद्धपोत ने बार बार दी जाने वाली चेतावनियों के बावजूद ना अपनी स्पीड कम की ना दिशा बदली और इसी वजह से भारतीय युद्धपोत की कोशिशों के बावजूद टक्कर हो गई। इस टक्कर के बाद पाकिस्तानी युद्धपोत को काफी नुकसान हुआ। यह नुकसान इतना गंभीर था कि पीएनएस हुनैन को एक्सीडेंट के तुरंत बाद पाकिस्तानी बंदरगाह रवाना कर दिया गया। पाकिस्तान नेवल शिप हुनैन यारमुख क्लास का एक कवर्ट यानी छोटा युद्धपोत पोत है जो साल 2024 में पाकिस्तानी नेवी में शामिल किया गया था। इसे नीदरलैंड्स की एक कंपनी है डायमन उसने रोमेनिया के शिपयार्ड में बनाया था और डायमन कंपनी ने अपने यारमुख क्लास के ओपीवी डिजाइन्स पर इसे बनाया है। ओपीवी यानी ऑफशोर पेट्रोल वेसल जिसका काम निगरानी का होता है। लेकिन निगरानी करने वाले इस जहाज ने जिस तरह की हरकत भारतीय युद्धपोत के साथ की है उसने भारतीय सुरक्षा अधिकारियों को सतर्क कर दिया है। पीएनएस हुनैन की इस टक्कर को अधिकारी काफी गंभीर मान रहे हैं क्योंकि वो इसकी क्षमता को जानते हैं। अब इस पाकिस्तानी युद्धपोत की लंबाई करीब 98 मीटर है, रफ्तार 40 से 44 किलोमीटर प्रति घंटा। पीएनएस हुनैन समंदर में करीब 40 दिनों तक रह सकता है। इसमें कई तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं जैसे इसमें एंटीशिप मिसाइल्स, जमीन से हवा में और जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें लगा सकते हैं। इसमें दो तरह के ऑटोमेटिक गन सिस्टम भी हैं जिन्हें रिमोट कंट्रोल से चलाया जा सकता है। सिस्टम को तुर्की की कंपनी ने विकसित किया है। इस जहाज को अगर आप देखिए तो मुख्य तौर पर निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसे एयर सर्च रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी लगा है। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना यही है कि इस तरह के निगरानी वाले जो जहाज है उनको युद्ध के वक्त में ही हथियारों से लैस किया जाता है और इसकी वजह यह है कि इनके डिफेंस सिस्टम बड़े युद्धपोतों की तुलना में कमजोर होते हैं। पाकिस्तानी युद्धपोत हुनैन ने अपने अरब सागर में जो हरकत की है उसकी वजह का पता लगाया जाना जरूरी है। सच यह है कि पाकिस्तान की कोई भी हरकत हल्के में नहीं ली जा सकती। मुमकिन है कि पाकिस्तानी नौसेना किसी तरह की टेस्टिंग कर रही हो और इस युद्धपोत को बलि का बकरा बना गया हो। पीएनएस हुनैन का भारतीय युद्धपोत से टकराना पाकिस्तान की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। सच यह है कि समंदर की सीधी लड़ाई में पाकिस्तान भारत के आगे टिक नहीं पाएगा। नौसैनिक शक्ति के मामले में भारत पाकिस्तान से बहुत आगे। दुनिया भर के देशों की सैन्य शक्ति का आकलन करने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर ने साल 2026 की रिपोर्ट में पाकिस्तान की नौसेना को 31वें नंबर पर रखा, 31st, और भारत दुनिया की चौथी नौसैनिक शक्ति है। पाकिस्तान की नौसेना के पास 120 युद्धपोत हैं, जिसमें 9 फ्रिगेट्स हैं, 6 कोवाट्स हैं और 8 सबमरीन हैं, 79 निगरानी युद्धपोत, 3 माइन वॉरफेयर से जुड़े युद्धपोत। वहीं भारतीय नौसेना के पास 343 युद्धपोत हैं, जिसमें 2 तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो किसी भी नौसेना की सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं। माना जाता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर युद्ध का एक मोर्चा अकेले संभाल सकता है। पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं। भारत के पास 13 डिस्ट्रॉयर्स हैं। समंदर की लड़ाई में डिस्ट्रॉयर्स को सबसे खतरनाक हमलावर युद्धपोत माना जाता है। पाकिस्तान के पास ऐसा एक भी डिस्ट्रॉयर नहीं। भारत के पास 18 फ्रिगेट्स, 21 कवर्ट्स, 18 सबमरीन, 146 निगरानी करने वाले युद्धपोत हैं। संख्या बल और शक्ति दोनों में भारत पाकिस्तान में कोई मुकाबला नहीं। भारत बहुत आगे है। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान चाहकर भी समंदर में भारतीय नौसेना से सीधी लड़ाई मोल नहीं लेगा, नहीं लेना चाहेगा। इसीलिए कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स शक जता रहे हैं कि पीएनएस हुनैन का भारतीय युद्धपोत से टकराना किसी खास प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। और बात उस खबर की जिसकी देश में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, यूपीआई पेमेंट। आप जानना चाहते होंगे कि 15 अक्टूबर से क्या यूपीआई पेमेंट पर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। क्या 2000 रुपए से ज्यादा के जितने भी पेमेंट्स आप किसी दुकानदार को करेंगे उस पर आपको 0.4% ज्यादा पैसा चुकाना होगा? फिलहाल आपके इन सवालों का जवाब है नहीं। नियम क्या कहते हैं? नियमों के हिसाब से आपको एक भी रुपए एक्स्ट्रा नहीं देना है, यानी जो भी कंज्यूमर है। लेकिन अगर हमारा ये शो मर्चेंट देख रहे हैं, यानी ऐसे लोग जो कुछ बेच रहे हैं बाजार में, तब उनको लग सकता है कितना लगेगा हम बताएंगे, लेकिन जो आम कंज्यूमर है उसको एक भी रुपए एक्स्ट्रा नहीं देना। अब ये बात सही है कि किसी दुकानदार या मर्चेंट को 2000 रुपए से ज्यादा का भुगतान करने पर कितना देना है? 0.4%, 0.4% का एक MDR देना होगा। MDR का मतलब है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, और ये पैसा ग्राहक को नहीं बल्कि उस दुकानदार को चुकाना है जिससे आप सामान खरीद रहे हैं। भाई आप ऑनलाइन भी कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, कई सारे व्यापारी हैं जो काम कर रहे हैं। अब इन व्यापारियों को हर ट्रांजैक्शन पर 0.4% का MDR देना है। अब इसका नाम ही ऐसा रखा गया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, यानी मर्चेंट को देना है। मर्चेंट मतलब व्यापारी को देना है जो सामान बेच रहा है, यानी जो खरीद रहा है, जो पेमेंट कर रहा है, उसको तो उस कीमत के अलावा कुछ देना नहीं है। लेकिन MDR का जो पैसा है वो दुकानदारों या व्यापारियों के डिजिटल पेमेंट सुविधा के नाम पर लिया जाता है। जैसे आप एक ग्राहक के तौर पर कार्ड या UPI का इस्तेमाल करके पेमेंट करते हैं, उसी सुविधा के नाम पर दुकानदार या बड़े मर्चेंट से कुछ पैसा लिया जाता है क्योंकि वो इस सुविधा के जरिए कमाई कर रहे हैं। जैसे आपने अगर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया तो आप ये तभी कर पाए जब दुकानदार ने वो सुविधा आपको उपलब्ध करवाई। दुकानदार ने ये सुविधा इसलिए दी क्योंकि वो इससे कमाई कर रहा है। MDR इसी सुविधा का शुल्क है। अभी तक कार्ड पेमेंट सुविधा देने वाले दुकानदार को MDR के तौर पर हर पेमेंट पर 1-3% तक चुकाना होता था। मान लीजिए अगर आप 2000 रुपए का सामान आपने लिया तो दुकानदार को MDR के तौर पर 20-60 रुपए तक चुकाने होते थे। ये कार्ड पेमेंट की बात मैं कर रही हूँ। तो ये पैसा कार्ड पेमेंट सुविधा देने वाले बैंक और कार्ड कंपनीज को जाता है। अब कार्ड पेमेंट में MDR पर किसी तरह की छूट नहीं है, लेकिन UPI पर लगने वाले MDR की बात अलग है। इसके लिए अलग नियम बनाए गए। UPI के जरिए होने वाले मर्चेंट ट्रांजैक्शन का करीब 95% हिस्सा 2000 रुपए से कम का होता है, यानी केवल 5% UPI पेमेंट्स जो डेटा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दे रहा है उसके मुताबिक UPI पेमेंट 2000 रुपए से ज्यादा की जो होती है वो हम आपको बता रहे हैं। और इसी 2000 रुपए से ज्यादा वाली जो UPI पेमेंट है उस पर MDR लगने वाला है। अब 2000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट पर 0.4% का MDR होगा, यानी 8 रुपया MDR लगेगा, और ये MDR दुकानदार चुकाएगा। लेकिन इसकी एक अधिकतम सीमा भी है। अगर UPI पेमेंट 75,000 रुपए या उससे ज्यादा की है तो 300 रुपए तक मैक्सिमम MDR है, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। इसके अलावा रेलवे टिकट, टेलीकॉम, बीमा, पेट्रोल, डीजल, 2000 रुपए से ऊपर के लेन देन पर MDR के तौर पर 5 रुपए तय किया गया है, यानी 2000 से ऊपर जितना भी पेमेंट होगा उस पर केवल 5 रुपए ही लिए जाएंगे। क्योंकि MDR व्यापारी से ही लिया जाना है तो नियमों के हिसाब से ये ग्राहक नहीं देगा। अगर टिकट का है तो रेलवे, IRCTC जो भी है वो उनमें से देगा। लेकिन सवाल यही है कि वो पैसा देंगे क्या? बाद में कीमतों में इजाफा हो सकता है टिकट का। इधर म्यूचुअल फंड जैसे पेमेंट्स पर 0.02% का MDR होगा, जो अधिकतम 300 रुपए तक ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। मतलब यह है कि फिलहाल UPI पेमेंट चाहे 2000 से कम हो या 2000 से ज्यादा, ग्राहक के तौर पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं चुकाना है, लेकिन यह केवल मर्चेंट पर लागू है। अब एक सवाल सबके दिमाग में आ सकता है कि 2000 रुपए से ज्यादा के UPI पेमेंट पर जो MDR होगा वो पैसा किसके खाते में जाएगा? भाई कोई भी बिजनेसमैन है वो अंत में तो ये सोचेगा ना कि ये मैं ग्राहक से ही वसूलूं कीमत बढ़ाकर। मान लीजिए कि 2000 रुपए की पेमेंट हुई तो इस पर दुकानदार को 0.4% MDR चुकाना है, जो 8 रुपए बनता है। इस 8 रुपए का 40%, यानी 3.20 रुपए उसे उस बैंक को मिलेंगे जिसके खाते से UPI की पेमेंट की गई है। यानी मान लीजिए आपका पेटीएम या आपका जो भी UPI है वो जिस भी अकाउंट से लिंक्ड है, जिस भी बैंक से लिंक्ड है ना, तो वो बैंक को मिलेगा, यानी ग्राहक का पैसा जो हम दे रहे हैं उस बैंक को मिलेगा। इसके अलावा इस रकम का 30% यानी लगभग 2.40 रुपए उस बैंक को मिलेगा जिसके खाते में पैसा पहुंच रहा है, यानी जो दुकानदार है, जो मर्चेंट है, जो व्यापारी है उसका बैंक। 20% रकम यानी 1.60 रुपए उस UPI ऐप को मिलेगा जिसके जरिए आप ये कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है। और 10% रकम यानी 80 पैसे उस बैंक को मिलेंगे जिसने लेन देन की पूरी प्रक्रिया की है। लेकिन एक डर यह है कि UPI पेमेंट पर MDR लगाने का फैसला आने से भविष्य में एक अलग तरह की व्यवस्था बन सकती है। जैसे कुछ समय पहले तक कार्ड पेमेंट की सुविधा देने वाले कुछ दुकानदार 200 रुपए का सामान खरीदने पर 206 रुपए मांगते थे क्योंकि उन्हें MDR चुकाना होता था। MDR का ये पैसा दुकानदार अपनी जेब से नहीं बल्कि ग्राहकों की जेब से ही वसूलता था। अगर आपसे ज्यादा पैसा देने से आपने मना किया तो वो अपने कैश में पेमेंट करने के लिए कहता था। अब UPI के आने के बाद से दुकानदारों का ये वाला जो खेल है वो बंद हो गया। लेकिन अब डर इस बात का है कि 2000 रुपए से ज्यादा के UPI पेमेंट्स पर MDR अगर लगता है और लगने ही वाला है तो ये पैसा घूम फिर कर क्या ग्राहकों की ही जेब से नहीं वसूला जाएगा? मुमकिन है कि दुकानदार फिर से वही ट्रिक अपनाए जिसमें वो कैश में पेमेंट करने के लिए कहे या फिर ज्यादा रकम चुकाने का दबाव डाले। दुकानदार एक ट्रिक के तौर पर 3000 रुपए की पेमेंट को दो बार में देने के लिए भी कहेगा ताकि MDR से बचा जा सके। इसके अलावा एक डर यह भी है कि MDR लगने से दुकानदार कैश पेमेंट को बढ़ावा देंगे। अब सवाल यह है कि क्या डिजिटल इकोनॉमी वाला भारत इस फैसले के बाद से कैश इकोनॉमी की तरफ वापस मतलब फिर से इजाफा होगा? इन्हीं कुछ सवालों के साथ मैंने NPCI की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ग्रोथ सोहिनी रजोला से बात की। अचानक इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई? अब ये फैसला आ जाएगा और जो मर्चेंट है यानी जो बिजनेसमैन है जो बेच रहा है बेसिकली उसको भाई ये MDR देना पड़ेगा 0.4%। अब इतने दिनों से जब ये चल रहा था तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ये क्यों आप लोगों को क्यों लागू करना पड़ रहा है ये मॉडल?
1: एकदम नहीं है कि ये डिसीजन अचानक हुआ है, बल्कि पूरी पेमेंट इंडस्ट्री जो है, अगर आप जब एक UPI ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका एक बैंक होता है, एक आपकी ऐप होती है, आपके मर्चेंट पे किसी ने QR लगाया होता है, तो बहुत सारे इंटरमीडियरीज होते हैं और इसके बारे में बातचीत सरकार के साथ, बाकी एसोसिएशंस के साथ, RBI के साथ पिछले 4-5 वर्षों से चल रही है। उसमें इनफैक्ट पिछले साल 1.5 साल में आपने देखा होगा, वेदर इट इज ऑन TV न्यूज चैनल्स और इन यू नो रिपोर्ट्स इन द मीडिया, इन प्रिंट एटसेट्रा, देर हैज बीन अ लॉट ऑफ डिस्कशन। सो ये कहना कि ये डिसीजन एकदम अचानक आया है, मुझे लगता है थोड़ा सा गलत है। इसके ऊपर बहुत टाइम से काफी काम हो रहा है।
0: एक रियल कंसर्न वाला सवाल है, सिंपल सवाल, सीधा सवाल, MDR का बोझ अल्टीमेटली कोई भी दुकानदार हो भाई, मैं उससे लूंगी, उसको पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है, वो अल्टीमेटली तो पास करेगा ही करेगा ना, वो बोझ कैसे नहीं पास ऑन करेगा? आज ना करे कल करेगा कंज्यूमर पर।
1: नहीं देखिए, ऐसा है ना, MDR कोई नई चीज नहीं है इंडस्ट्री में। आप एक चीज बताइए, आज भी जब कोई मर्चेंट है, चाहे वो बहुत बड़ी दुकान हो या कोई बहुत बड़ा ऑनलाइन मर्चेंट है, वे लोग आज भी MDR तो देते हैं। इनफैक्ट 1.5 से 2.5% MDR देते हैं। जब आप कोई भी चीज खरीदते हैं वहां पे जाके, जब कार्ड से खरीदते हैं, तो क्या वो आप मर्चेंट आपको पास ऑन कर रहा है? वो मर्चेंट नहीं पास ऑन कर रहा है। क्यों नहीं पास ऑन कर रहा है? क्योंकि जो डिजिटल पेमेंट की सुविधा है उससे मर्चेंट्स को के लिए भी काफी सारे फायदे हैं।
0: बट एक चिंता जाहिर की जा रही है ना सोहिनी जी कि अल्टीमेटली लोग वापस कैश इकोनॉमी की तरफ, क्योंकि इतना एक कदम उठाए गए कि लोग डिजिटल पे आए, वापस कैश इकोनॉमी की तरफ ना चले जाएं, क्योंकि उनको जो भी देना पड़ रहा है, कम हो ज्यादा हो, वो भी अगर बचा लें उनको लगेगा वो बेहतर है, कैश इकोनॉमी की तरफ वापस ना जाए, नकदी की तरफ, वो कैसे आप सुनिश्चित करेंगे?
1: It is now today UPI is a habit for millions of Indians. So, ये apprehension है, लोग बोल रहे हैं, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि customers इसकी वजह से, especially as they understand the facts, which is that the customer is not going to get charged. आज आप UPI सिर्फ मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए नहीं यूज करते हैं, आप बिल पेमेंट के लिए यूज करते हैं, आपको जो भी मनी ट्रांसफर करना होता है उसके लिए यूज करते हैं। और हमने बहुत सारी जो बिग टिकेट कैटेगरीज है उसके लिए हमने एक इंडस्ट्री प्रोग्राम भी बनाया है।
0: क्या देश में EMI की वसूली इंसान का खून चूसकर किया जाएगा? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से खबर कुछ ऐसी है जिसने इंसानी संवेदनाओं को बाजार में नीलाम कर दिया। एक गरीब के स्वाभिमान को गुंडई के दम पर कुचल डाला। आरोप है कि रिकवरी एजेंट्स ने एक गरीब घर के लड़के को उठाया, बंधक बनाया, बंधुआ मजदूरी कराई, जब पेट नहीं भरा तो उसे ब्लड बैंक ले जाकर जबरन उसका एक यूनिट रक्त निचोड़ लिया। अमानवीयता की कहानी शुरू होती है निगोहा के राजारन खेड़ा गांव से। 60 साल की एक बेबस मां ने इंसाफ के लिए पुलिस की चौखट पर गुहार लगाई। अपनी लिखित शिकायत में कहा कि उसके छोटे बेटे नेवल ने एक दुकान से करीब एक साल पहले 21,500 रुपए का एक फोन फाइनेंस कराया था, जिसकी करीब 2,800 रुपए की किश्त बनी। गरीबी का साया ऐसा था कि पहली ही किश्त में अड़चन आ गई तो फाइनेंसर के कारिंदे पहुंचे, मोबाइल ही छीन ले गए। बात यहीं रफा दफा नहीं हो गई, फोन तो ले ही गए, लेकिन इसमें हैवानियत का चैप्टर लगभग एक साल बाद खुला। आरोप है कि 8 सितंबर को रिकवरी से जुड़े दो लोग उसके घर पहुंचे, कुछ काम होने का बहाना लेकर इस लड़के को अपने साथ स्कूटी पर बिठा ले गए। अब पीड़ित नेवल ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आरोप है कि नेवल को लखनऊ के सदर इलाके में एक कमरे में कैद कर दिया गया, उससे बंधुआ मजदूरी कराई गई, लखनऊ के एक ब्लड बैंक में ले जाकर जोर जबरदस्ती करके एक यूनिट खून भी निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, पीड़ित के भाई के पास एक फोन कॉल आई कि पैसे भेजो और अपने भाई को ले जाओ। उसके भाई ने डरकर एक दुकानदार को के माध्यम से रिकवरी से जुड़े शुभम सिंह के QR कोड पर 2,799 रुपए ट्रांसफर भी कर दिए, लेकिन वसूली बाज नहीं रुके। आरोपों के मुताबिक अपनी कॉल पर 12,500 रुपए मांगे गए, ना देने पर पीड़ित को मारकर गोमती नदी में बहा देने की धमकी दी गई। जब यह परिवार पुलिस के पास पहुंचा तब जाकर पांचवें दिन पीड़ित को छोड़ा। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच और पूछताछ कर आगे कार्रवाई कर रही है।

0: मेरा अस्पताल में ब्लड निकलवाया।
1: कितना?
0: एक बोतल।
1: एक बोतल।
0: उसके बाद वहाँ से लेके सीधा घर गए।
1: फिर
0: घर पे जाके मुझसे एक 2600 रुपए की मांग की। तो सर जी मैंने 2600 रुपए मंगवाया। तो उसमें भाई से बोला कि भैया 2600 रुपए ये 200 रुपए और डाल दो जिससे मैं आ सकूं घर। तो 2800 रुपए उसमें सर जी डाला गया। उसके बाद इन्होंने बोला कि मैं छोड़ दूंगा, इन्होंने नहीं छोड़ा। उसके बाद शाम को जब आए वही 10-11 बजे तो फिर इन्होंने हमें मारा पीटा धमकाया।
2: घटना की सेंसिटिविटी समझते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया गया था एवं इसमें 2 अभियुक्तों को हिरासत में लेने के लिए 3 टीम गठित किया गया था। तुरंत ही इसमें वादिनी के जो बेटे हैं नेवल को।
3: अगली खबर आपको बताएंगी अंजना 2.0। ये खबर AI की वजह से होने वाले ऐसे नुकसान से जुड़ी है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। मशहूर यूनिवर्सिटी MIT की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक अब स्टूडेंट हर कठिन सवाल पर दिमाग खपाने के बजाय AI के आगे घुटने टेक रहे हैं। अगर सोचना, समझना, याद रखना मशीनें करेंगी तो इंसान का दिमाग किस काम का रहेगा? बिल्कुल अंजना, कोडिंग हो, गणित का कोई कठिन सवाल या कोई भारी भरकम ऐसे, आज छात्र किसी भी समस्या के आते ही खुद के दिमाग का इस्तेमाल करने के बजाय सीधे AI चैटबॉट के पास भागते हैं। MIT की रिपोर्ट के मुताबिक AI से झटपट मिला सही जवाब छात्रों को यह भ्रम देता है कि वो सीख रहे हैं, जबकि असल में वो सोचने का मौका ही गवा देते हैं। MIT के सर्वे में 46% छात्र रोजाना AI टूल का इस्तेमाल करते हैं और 90% छात्रों को खुद इस बात की चिंता है कि वे AI पर हद से ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद आपका अंजना 2.0। इसी के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का। और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
3: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।
4: एक तो एक
5: इश्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
6: जेके वॉल मैक्स।
2: बेस्ट पेंट
7: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग। जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
8: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
9: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
10: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
8: मतलब
10: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
8: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
10: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।
2: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर, तरक्की का ऑलराउंडर।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
11: No matter what your day throws at you,

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
3: क्या गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान यूपी के चुनाव में गेम चेंजर साबित होगा? क्या 2027 में होने जा रहे यूपी विधानसभा चुनाव का एपिसेंटर यूसीसी ही बनेगा? क्या 2027 की चुनावी बिसात को देखते हुए ही बीजेपी ने यूसीसी का मोहरा चला है? इसे ठीक से समझने से पहले जरा अखिलेश यादव का नया संदेश देख लीजिए। अखिलेश ने यूसीसी की नई परिभाषा दी है। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, यूसीसी मतलब अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस यूसीसी का विरोध करते हुए एक्स पर लिखा है, जनता समझ रही है भाजपा जिस यूसीसी की बात कर रही है दरअसल उसका फुल फॉर्म कुछ और है, यूसीसी इक्वल टू अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। अखिलेश ने जिस अंदाज में यूसीसी को परिभाषित किया है उससे साफ है कि समाजवादी पार्टी यूसीसी का खुलकर विरोध करने जा रही है और उतना ही साफ ये भी है कि बीजेपी यूपी में इसे जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश करेगी। योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली आए थे और खबर है कि यूसीसी पर उनके गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई है। यूसीसी को यूपी में जल्द से जल्द लागू करने की बीजेपी की मंशा किसी से छिपी नहीं है। बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे हैं यूपी में यूसीसी का आगाज होकर रहेगा।
4: यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे 2024 के घोषणा पत्र में और संविधान का अनुच्छेद 44 ये कहता भी है और ये हमारे नीति निर्देशक तत्व में भी शामिल है और माननीय गृहमंत्री जी ने आज कहा भी है। और निश्चित रूप से अगर महिलाओं के प्रति, उनके अधिकारों के प्रति अगर उसे पूर्ण करना है, उन्हें सुरक्षा देनी है तो ये बहुत आवश्यक है। बाकी सरकार को निर्णय करना, माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय करना, लेकिन आज गृहमंत्री जी ने जो बोला है वो कहीं ना कहीं हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है, हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा है। और निश्चित रूप से सामान्य नागरिक संहिता की बात हम लोग लंबे समय से करते रहे हैं और हमारे लिए, हमारा कमिटमेंट है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। देश, हमारे प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए सामान्य नागरिक संहिता की बात भारतीय जनता पार्टी जनसंघ हमेशा उठाती रही है।
5: उत्तर प्रदेश ये प्रयास करेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मनसा है वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की धरती पर उतरे। सरकार निश्चित तौर पे सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उत्तर प्रदेश में हम सबसे पहले लागू करेंगे।
3: ये भी तय है कि यूपी में यूसीसी लागू होने की कोशिश होती है तो इसका विरोध भी तगड़ा होगा। मुस्लिम वोटों की चाहत में अखिलेश तो विरोध करेंगे ही, ओवैसी जैसे नेता भी सुर में सुर मिलाएंगे। मोदी सरकार धारा 370, तीन तलाक कानून, वक्फ कानून जैसे बड़े फैसले ले चुकी है। अब यूसीसी की बारी है और यूपी में इसे लागू करने की पूरी तैयारी है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: इसी के साथ आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और जो लोग कल तक अपने घर का झगड़ा छिपाते थे आज वो अपने एक्साइटमेंट का लाइव टेलीकास्ट करते हैं। नमस्कार।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: 2000 से अधिक के यूपीआई पेमेंट पर शुल्क के निर्णय के खिलाफ राहुल गांधी का मोर्चा, बोले नियम वापस ले सरकार। वित्त मंत्री का जवाब, निर्णय के पीछे कोई विदेशी दबाव नहीं। पीएम मोदी के जन्मदिन से एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा 2014 के बाद से भारत में नियम कानून और शासन दोनों ही अच्छे। कल से बीजेपी का सेवा संकल्प अभियान। गोरखपुर में सीएम योगी की चुनावी हुंकार, बोले पहले एसपी और कांग्रेस सरकार में अपराध और डर, आज यूपी दंगा और कर्फ्यू मुक्त। बोले 19 सितंबर से 1,00,000 नई नौकरी की करेंगे शुरुआत। सरकारी कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, कैबिनेट ने अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह किया। 51,00,000 लोगों को मिलेगा फायदा। और कन्नड़ फिल्मों के दमदार अभिनेता अनंत नाग को दादा साहेब फाल्के अवार्ड, पीएम ने दी बधाई। सेंसर बोर्ड की नई टीम के लिए 18 सदस्यों का ऐलान।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर, आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे सरकार ने यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगाया तो सवाल उठने शुरू हो गए, और कैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर में यूसीसी लागू करने की बात कही तो बवाल मच गया। पहले बात यूपीआई की। मोदी सरकार 15 अक्टूबर से 2000 रुपए से ऊपर के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने जा रही है, लेकिन सरकार के इस निर्णय पर विपक्ष और राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने सीधे मोदी सरकार पर अमेरिका के दबाव में आने का आरोप लगा दिया और इस निर्णय को वापस लेने की मांग की। अब इस पर तगड़ी राजनीति शुरू हो गई। सरकार जवाब दे रही है वो किसी भी विदेशी दबाव में नहीं आई है। तो आइए हम आपको दिखाएं यूपीआई पर चार्ज लगा तो कैसे राजनीति रिचार्ज हो गई।

0: सभी ने तो कहा था भैया कैश यूज करना बंद करो, यूपीआई करो, यूपीआई करो, और अब इस उसी यूपीआई की वसूली करने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं।
1: ये मर्चेंट पे कॉस्ट है, मर्चेंट जो है वो पे करेगा, ना कि जो एंड यूजर या कंज्यूमर पे होगा।
2: मोदी जी प्लीज स्टॉप लाइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, हैव अ स्पाइन, खड़े हो जाइए और यूपीआई टैक्स को वापस लीजिए।
3: जो खुद किसी और के इशारे पे काम करते हो और वो इस तरह की अनगढ़ बातें करते हैं।
2: ये अमेरिका के दबाव के अंदर ये सरकार बिल्कुल घुटने टेक गई है।
0: यूपीआई पर मार, गरीब पर वार, और फिर झुकी अमेरिका के आगे मोदी सरकार।
4: तो अमेरिका का क्या मतलब है इसमें, हमें भारत की इकोनॉमी डेवलप करनी है, देश के लिए पैसा भी चाहिए।
5: नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी देश की इकोनॉमी को डुबा के रखी है।
6: मुझे लगता है कांग्रेस का काम ही केवल गुमराह करना और आलोचना करने का रह गया।
7: ये नाराज फूफा ने देश की जनता की जेब काटने का फैसला लिया है।
0: जनता का कितना गला रेता जाएगा मैं ये जानना चाहूंगा।
8: राहुल गांधी जी की बात करें, सुबह शाम उन्हें मोदी जी दिखते हैं ताकि किसी न किसी विषय पर मोदी विरोध को तो पर कर सकें और मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बोल पाए।
9: इधर 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर सरकार ने चार्ज लगाया, उधर विपक्ष ने सीधे पीएम मोदी पर जैसे धावा बोल दिया। सबसे पहले राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो जारी करके न सिर्फ सरकार के इस फैसले की आलोचना की बल्कि आरोप लगाया कि यूपीआई पर चार्ज से अमेरिका को फायदा होगा और सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। जी हाँ, राहुल गांधी ने अपने वीडियो में कहा कि इंदिरा जी हमेशा सीधी खड़ी रहती थी पर ये सरकार आज अमेरिका के सामने दंडवत हो गई है। यूपीआई पर सरकार के फैसले से अमेरिका को फायदा होगा।
2: He is neither left nor right. He has decided to lie down straight and prostrate himself in front of Donald Trump. He's put a tax on every single Indian person by taxing UPI and giving huge amount of money to the United States. Modi ji, please stop lying down in front of the United States. Have a spine, khade ho jaiye aur UPI tax ko wapas lijiye.
9: यूपीआई पर चार्ज को राहुल गांधी ने अमेरिका से जोड़ा तो कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। लेकिन जवाब में सरकार कह रही है कि यूपीआई नियमों में बदलाव किसी विदेशी दबाव में नहीं लाया गया है,
0: क्योंकि वसूली मैन नरेंद्र मोदी का कहर जारी है और इस बार जो वसूली है वो अमेरिका के सामने बार बार सरेंडर करने की आदत से मजबूर होकर फिर की जा रही है। वसूली के नए प्लान में 2000 से ऊपर के हर यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन में 0.4% चार्ज लगेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह अभी तक पूरी तरह से फ्री था, पूरी तरह से मुफ्त था।
3: देश हित में और देश के लोगों के हित में मोदी जी जब भी कोई अच्छा फैसला लेते हैं, इनको वो भाता नहीं है, इनको मोदी फोबिया हो गया है। यूपीआई से अब सरकार ने स्पष्ट किया है 2000 तक कुछ नहीं होने वाला और 96% लोग 2000 से ज़्यादा यूपीआई से लेन देन, ये आंकड़े हैं, लेन देन नहीं करते। फिर भी पर्सन सुपर डन पर्सन कोई MDR नहीं लगने वाला है।
10: यूपीआई पर लगे चार्ज को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी समझा रही है कि ग्राहकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन विपक्ष कह रहा है घूम फिरकर यह आम आदमी की जेब पर ही आएगा। इस बीच यूपीआई पर चार्ज का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया। 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर नए चार्ज लगाने के खिलाफ याचिका दायर कर दी गई। तो आइए हम आपको दिखाएं कि अब आगे क्या होगा।
11: द
9: राहुल गांधी के जवाब में मोदी सरकार और बीजेपी ने यूपीआई पर लगे चार्ज पर देश को समझाना शुरू किया कि पहले तो 2000 रुपए से नीचे के भुगतान पर कोई चार्ज नहीं है और 2000 रुपए के ऊपर के ट्रांजैक्शन पर चार्ज ग्राहक को नहीं बल्कि दुकानदार या कारोबारी को देना होगा। सरकार ने MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू किया है, यानी 15 अक्टूबर 2026 से 2000 रुपए से ज्यादा के चुनिंदा UPI मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% MDR लगेगा। इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन होगी। ये शुल्क मर्चेंट से लिया जाएगा, ग्राहक से नहीं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो कह रही है कि MDR यानी UPI पर लगे चार्ज का ग्राहक से कोई लेना देना नहीं है, तो आखिर में ये टैक्स घूम फिर कर आम आदमी की जेब पर ही आएगा।
1: मिनिस्टर फाइनेंस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि एक आम नागरिक पर्सन टू पर्सन पे करता है तो कुछ नहीं, पर्सन टू मर्चेंट होता है जो उस पर 0.4% लगेगा, वो भी मर्चेंट को देना है, आदमी को नहीं देना है।
0: मैं और आप और इस देश का हर व्यक्ति जानता है कि कोई मर्चेंट बढ़ी हुई कॉस्ट को खुद बेयर नहीं करता है। उसका बड़ा आसान तरीका है, वो कैसे ये कॉस्ट निकालेगा, कुछ नहीं करेगा, वो धीमे से कीमत बढ़ाएगा। बार बार हमने ये देखा है।
9: आपको बता दें कि अभी एक हफ्ता पहले ही हुआ जब ब्रिक्स बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की ताकत दुनिया को बताई थी। मोदी ने कहा था कि आज दुनिया के 50% रियल टाइम पेमेंट UPI वाली तकनीक से होते हैं।
11: भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI, इसने पॉपुलेशन स्केल पर फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल ट्रांजैक्शन को नई गति दी है। आज विश्व के 50% रियल टाइम पेमेंट्स इसी टेक्नोलॉजी पर होते हैं।
9: लेकिन जैसे ही UPI पर 0.4% MDR लगा तो सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ। कांग्रेस कह रही है कि पहले तो सरकार कहती थी कि UPI करो, अब उसी UPI पर चार्ज लगा रही है।
0: क्योंकि आप ही ने तो कहा था भैया कैश यूज करना बंद करो, UPI करो, UPI करो। आप सेल्समैन बने हुए थे UPI के और अब उसी UPI की वसूली करने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं।
4: तो मुझे लगता है कि सरकार चलानी है तो सरकार के रेवेन्यू सरकार को मिलना चाहिए। और राहुल गांधी का आरोप है कि भाई अमेरिका के कहने पर ही ऐसा किया है, तो अमेरिका का क्या मतलब है इसमें? हमें भारत की इकोनॉमी डेवलप करनी है, देश के लिए पैसा भी चाहिए।
9: RBI ने UPI पेमेंट्स पर चार्ज लगाने के फैसले को भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को टिकाऊ बनाए रखने के लिए जरूरी कहा है, तो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स वाली कंपनियां भी इसके फायदे गिना रही हैं।
12: UPI का MDR 0.4% पे आज भी दुनिया का सबसे सस्ता MDR है, मगर वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि होपफुली उसके वजह से फोन पे और बाकी जितने भी पेमेंट कंपनीज हैं अब हम लोग भी जो है इन्वेस्ट कर पाएंगे वापस मार्केट को ग्रो करने में।
13: आई थिंक कि अगले लेवल की ग्रोथ के लिए ये MDR बहुत जरूरी और ये इसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है ताकि UPI का और उद्धार हो, भारत का और उद्धार हो।
9: लेकिन कांग्रेस सरकार के

0: यूपीआई वाले फैसले पर न सिर्फ सवाल उठा रही है बल्कि महंगाई से जूझते लोगों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा बता रही है।
1: बजाय लोगों के मरहम लगाने के, महंगाई से जूझते हुए लोगों के घाव पर नमक मिर्च रगड़ी जा रही है कि ऐसा कैसे है भैया, हम तो अमेरिका के आगे नतमस्तक हो गए, मोदी जी कह रहे हैं तो वसूली तो तुमसे करनी पड़ेगी क्योंकि उनके इशारे पे की जा रही है।
2: कोई टैक्स नहीं है, 96%

0: है 96% से ज्यादा लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
1: मोदी सरकार यूपीआई को भारत की बड़ी सफलता बताती है। 2016 में नोटबंदी के बाद भारत में लेस कैश और डिजिटल पेमेंट्स का मुद्दा राजनीतिक चर्चा में आया था और अब एक बार फिर से इस पर सियासी घमासान छिड़ा है। 15 अक्टूबर से यूपीआई की नई व्यवस्था लागू होगी, लेकिन आम जनता और कारोबारी इस पर क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं।
2: ग्राहक तो उस पे लगा देगा ही चार्ज, क्योंकि भाई वो ले रहा है 2000 के ऊपर पेमेंट ले रहा है, एक्स्ट्रा दे रहा है, तो वो जनता पे ही लगा देगा।
3: बिल्कुल, दुकानदार जनता से ही वसूलेंगे, वो अपनी लागत नहीं बढ़ाएंगे।
4: सरकार थोड़ी हमें मतलब दुकानदार के पास हमारे निपटारा करवाने आएगी कि नहीं इनसे फीस नहीं लेनी।
5: निश्चित रूप से देश के 10 करोड़ छोटे व्यापारी रिटेल कारोबारियों के लिए एक बहुत बड़ा ग्रहण होने वाला है।
6: सामने वाला हमें देना नहीं चाहेगा और ये एक एक्स्ट्रा, इसके हमें नहीं लग रहा था कि सरकार को कोई इसे हो सकता थी।
7: जो जो है मोदी सरकार कहती है कि जो है ऑनलाइन आप जो है लेन देन करिए तो वो प्रथा फिर बंद हो जाएगी, फिर पुरानी प्रथा पे हमको लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
8: यूपीआई कहते हैं पहले गुड़ खाओ और बाद में ढेला, वो हाल है।
1: आज तक ब्यूरो।
9: और अब खबर यूसीसी पर राजनीतिक हंगामे की। यूसीसी पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद छिड़ा राजनीतिक घमासान अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले एनडीए में यूसीसी को लेकर विरोध के सुर उठे, अब मुस्लिम स्कॉलर और धर्मगुरुओं ने भी कॉमन सिविल कोड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सवाल मुस्लिम वोट बैंक का है और इसीलिए कांग्रेस हो, ओवैसी हो या फिर समाजवादी पार्टी, सभी यूसीसी को संविधान विरोधी बता रहे हैं। दावा यही है कि हमारे देश का माहौल बिगाड़ने के लिए बीजेपी ने यूसीसी का मुद्दा उठाया है।
1: यूसीसी पर चुनावी प्रयोग या फिर संयोग,
10: फिर ताकतों का एक बड़ा खराब मिल गया।
1: यूसीसी के खिलाफ मदनी ने खोला मोर्चा।
11: यूसीसी तुम लागू कर रहे, निकालो ना लफ्जी हाथ को।
1: ओवैसी की एंट्री यूसीसी पर खतरे की घंटी। तेजस्वी और अखिलेश यादव का ऐलान,
12: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है।
1: बीजेपी का शुद्ध कम्युनल एजेंडा है यूसीसी। यूसीसी पर लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आई। कॉमन सिविल कोड पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान से उठा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं दे रहा। पहले यूसीसी पर एनटीए के अंतर मतभेद सामने आए, अब विपक्ष और इस्लाम के जानकारों ने खुल्लम खुल्ला मोर्चा खोल दिया है। अरशद मदनी ने ऐलान किया है कि देश के मुसलमानों को ऐसा कोई कानून कबूल नहीं है जो शरीयत के खिलाफ है। गृह मंत्री का ये ऐलान है कि 2029 से पहले एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि देश संविधान से चलेगा या किसी राजनीतिक दल के वैचारिक एजेंडे से। हम ऐसा कोई कानून स्वीकार नहीं कर सकते जो शरीयत के खिलाफ हो। मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है लेकिन अपने धर्म और दीन से हरगिज नहीं। ये सवाल मुसलमानों के वजूद का नहीं बल्कि उनके संवैधानिक और धार्मिक अधिकारों का है। सरकार समान नागरिक संहिता के माध्यम से मुसलमानों से वो अधिकार छीनना चाहती है जो देश के संविधान ने उन्हें दिए हैं। मतलब यही है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी मौसम में यूसीसी एक बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने बीजेपी के यूसीसी प्लान पर सीधा हमला बोला है। जनता समझ रही है कि भाजपा जिस यूसीसी की बात कर रही है, दरअसल उसका फुल फॉर्म कुछ और है, यूसीसी यानी अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। इधर सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव का पोस्ट आया, उधर यूपी में टीम एनडीए ने अखिलेश की टिप्पणी को हाथों हाथ उठा लिया। बस फिर क्या था, पूरे मामले में हिंदू और मुसलमान की सीधी एंट्री हो गई।
13: समाजवादी पार्टी के मुखिया हमेशा इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं, उनके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई नीति नहीं है। लोगों को बरगलाना, झुठलाना, इनके प्रकार सत्ता हासिल करना, इसके सिवाय उनका कोई काम नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग अब स्वीकार नहीं करेंगे, उनको कभी माफ नहीं करेंगे। गुंडई, अराजकता, दंगा, प्रदेश की समाजवादी पार्टी के रीजन में जो हालात थे आज भी लोग भूले नहीं।
14: उनके सलाहकार कैसे हैं, उसी की वजह से वह सत्ता से बाहर है। संविधान हमेशा सामाजिक न्याय की बात करता है, तो जब सामाजिक न्याय तभी मिलेगी जब समान

0: नागरिक संहिता रहेगा, समान अधिकार रहेगा। अधिकार तो कानून से मिलता, अधिनियम से, अधिसूचना से। तो जब हिंदू कोड बिल अंबेडकर ने इसीलिए उनका विरोध किया था कि धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव है, इसलिए उनको इस्तीफा दिया था। कांग्रेस नहीं मानती थी और फिर मानना पड़ा कांग्रेस को। लेकिन एक विशेष वर्ग में अभी तक चला आ रहा है, हमारे यहाँ तो खत्म हो गया, लेकिन अभी विशेष वर्ग में जिनको वकालत कर रहा है, क्या महिलाओं को, मुस्लिम महिलाएं उनकी वोटर नहीं है क्या? मुस्लिम महिलाएं इस देश की नहीं है क्या?
1: अखिलेश यादव जी को कोई काम तो है नहीं, 5 साल सड़कों पर तो विरोध कर नहीं पाए क्योंकि विरोध का उन्हें मौका नहीं मिला। अब वो ट्विटर खेल रहे हैं। ट्विटर खेल के देश में राजनीति नहीं होती। अखिलेश यादव जी दो ही काम करते हैं, या तो ट्विटर खेलते हैं या उस पर टीवी पर बैठकर गेम खेलते हैं, दूसरा उन्हें कोई काम नहीं है। कई कोड़ी हो गई, अब अखिलेश जी इस प्रदेश की राजनीति में नहीं आ सकते। वो तो एक बार मुलायम सिंह जी की कृपा से वो सीएम बन गए, अब दुनिया में की कोई ताकत उन्हें सीएम नहीं बना सकती।
2: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव यूसीसी पर अपना स्टैंड स्पष्ट कर चुके हैं, तो कुछ दिन पहले मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को योगी सरकार की मुसलमान विरोधी नीति का अखिलेश यादव हिस्सा भी बता चुके हैं। बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव के बयानों को वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा गया है, तो वहीं यूपी चुनाव में ताल ठोक रहे ओवैसी लखनऊ से दूर भोपाल में यूसीसी को लेकर जमकर गर्जे।
3: एआईएमएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी यूसीसी के विरोध में बुलाई गई जनसभा में हिस्सा लेने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे। मौका यूसीसी के विरोध का था, लिहाजा ओवैसी ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला।
4: यूसीसी का कानून नाफिज किया गया, वो ना सिर्फ मुसलमानों के कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के भी खिलाफ है। आप तमाम लोगों का यहाँ पर जमा होना, बीजेपी और दिल्ली में बैठे हमारे सुस्त वजीर आजम को पैगाम मिलता है कि हम आपके बनाए हुए कानून को भारत के संविधान के खिलाफ मानते हैं और हम पुरजोर इसके खिलाफ एहतजाज अपना दर्ज कराते हैं।
3: पहले ओवैसी ने यूसीसी को संविधान और मुसलमान विरोधी बताया, उसके बाद अपने चिर परिचित अंदाज में नौजवानों को किसी मौलाना की तरह शरीयत को लेकर बड़ी नसीहत दे डाली।
5: अरे सोवियत यूनियन इस्लाम को खत्म नहीं कर सका, ये आरएसएस कौन सी खेत की मौली है जो हक की सभा को बुझा सके? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं। मेरे नौजवानों, तुम कौम का मुस्तकबिल हो। कानून बनते हैं, मिट जाएंगे बनाने वाले इंशाल्लाह, मगर याद रखो नौजवानों, तुम जब तक अपनी तबीयत पर शरीयत को गालिब नहीं करोगे, हम इनकलाब नहीं ला पाएंगे।
3: ओवैसी यही नहीं रुके, खुल्लम खुल्ला ऐलान किया कि यूसीसी के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने से देश का मुसलमान अब पीछे नहीं हटेगा।
5: तुम हमको कमजोर समझकर दबा रहे हो, मगर याद रखो, जब कमजोर उठ जाएगा, बेदार हो जाएगा, तो जिंदगी उसको, उसकी जिंदगी का मकसद उसको समझ में आ जाएगा। जब कमजोर बेदार हो जाएगा, याद रखो, मौत का डर दूर हो जाएगा, तो फिर किसी के महल आबाद नहीं रहेंगे, किसी का इख्तदार नहीं रहेगा। तुम हमको कब तक दबाओगे? अरे दबाते रहो, मगर हम दबने वाले हैं। तुम जितना दबाओगे उतनी ताकत से हम उठेंगे इंशाल्लाह।
3: यूसीसी विरोधी जनसभा में ही ओवैसी ने बीजेपी विधायक की विवादित टिप्पणी पर ललकारा।
6: मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, जब हिंदुस्तान में लोग कहते थे सुई बनाना नहीं जानते, तो मोदी जी ने कहा कि हम मिसाइल बनाएंगे। जैसे तुम करोत के चौराहे पर खड़े होकर मिसाइल लगाओ और काली कैंप पे गिरा दो, वैसे ही। अरे मैंने यहाँ का काली कैंप नहीं बोला, इस्लामाबाद वाला बोला था।
5: कोई रामेश्वर शर्मा साहब का बयान सुना, क्या बोले?
7: मैं मिसाइल लॉन्च करूंगा करोड़ स्क्वायर से खाजी कैंप पर। रामेश्वर शर्मा अगर तुम मई के लाल हो
3: मतलब यही है कि यूसीसी पर शाह के बयान पर बवंडर खड़ा हो चुका है। कांग्रेस भी यूसीसी पर बीजेपी को घेरने में पीछे नहीं है।
8: संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं, उनके ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं और सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे को साधने के लिए। क्या फर्क पड़ रहा है यूसीसी से बताओ मुझे कि निकाह नहीं होगा क्या? हमारा निकाह तो होगा, फेरे नहीं होंगे क्या? फेरे ही तो होंगे, क्या तमाशा बना रखा है? कुछ भी नहीं।
9: भारत जो है वो तमाम अलग अलग तरह के फूलों से मिलके बना, आप सब कुछ एक रंग का कर देना चाहते हैं, सब कुछ एक जैसा कर देना चाहते हैं, डाइवर्सिटी कहाँ चली जाएगी? तो गृहमंत्री जी को ये समझना पड़ेगा कि ये देश बहुत अलग अलग भाषाओं, अलग अलग बोलियों, अलग अलग कल्चर, अलग अलग तहजीब, अलग अलग धर्मों सबसे मिल करके भारत बनता है। आप सब कुछ एक कर देना चाहते हैं, एक रंग का, तो हम तिरंगे के साथ खड़े हैं, हम तिरंगे वाले लोग हैं।
3: वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यूसीसी को कम्युनल एजेंडा बताया।
10: हमने सहारनपुर की मस्जिद भी गिरवा दी, फिर भी कोई दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हम मेरठ भी मस्जिद गिरवाने जा रहे हैं, संभल भी जा रहे हैं, मुरादाबाद भी जा रहे हैं, कहीं कुछ हलचल ही नहीं हो रही है, तब यूसीसी। तो कुल मिला के भारतीय झगड़ा पार्टी जो है वो इस देश को बर्बाद करना चाहती है। अब इस देश के लोगों को तय करना है।
11: यूसीसी जो है वो किसी एक मजहब के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण मुल्क के लिए है। किसी एक धर्म के साथ उसको जोड़कर आप नहीं देख सकते, ये संपूर्ण मुल्क के लिए है। ये कानून हिंदू कानून नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का कानून है।
3: यूसीसी की बिसात पर तमाम सियासी पार्टियों के बीच शह और बात का खेल शुरू हो चुका है, लेकिन देखना यही है कि शह और बात के इस खेल में बाजी कौन जीतता है। आज तक ब्यूरो।
2: दर्शक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे होती और सऊदी अरब में युद्ध, मक्का तक पहुंचे ड्रोन। देखते रहिए दस्तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
15: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का
3: सब कैशलेस हो गया
2: है। ओला ला भाई मेरा बैट।
3: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
4: अभी तो चार्ज हुआ यार।
5: ओला बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: SBI Celebrations Unlimited. Ye Ganeshotsav banega special with festive offers on car loan, gold loan, personal loan and loan against mutual funds.
8: Bahut tired ho gayi.
9: Take a date not bites.
10: No added sugar, preservative ke bina. Dates, badam, pista, kaju aur shahad se taiyar kiya gaya. Lion Dates Nut Bites.
9: Take it, Lion Date Nut Bites.
11: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
12: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
13: सोच बदलो और बैंक भी।
14: एक तो एक
15: श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
5: जेके वॉल मैक्स।
3: बेस्ट पेंट
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
8: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
9: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
10: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
11: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के एक कंगन सेनको से ही लिए थे,
12: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां। इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द टीआरएफ।
13: अब मैं क्या ही बोलूं?
14: परिवार अटूट भरोसा।
15: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
16: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
17: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with
1: Signature Finest Cardamom Seeds.
2: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
3: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal anmol.
4: आज तक के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे बड़ी सभा,
5: आज का बैटलफील्ड 4000 किलोमीटर तक जा रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है।
6: इमीडिएट बालापुर मान जाइए, अब वो जब भी नहीं माने तो फिर सिंदूर की हमारे को नौबत आ गई।
7: अंडमान निकोबार आइलैंड तो जरूर हमको उसका एडवांटेज लेना ही चाहिए।
8: जो बाउंड्री प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में, इसका भी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता।
9: कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा, भारत की सेनाएं उसका जवाब देगी।
4: आज तक देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ी आवाज।
10: पश्चिम एशिया में हो रही जंग से कच्चे तेल में नए सिरे से उबाल आ गया है और वो $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। इसने जनता की चिंता को बढ़ा दिया है जो पहले ही महंगाई की मार झेल रही है। खबरदार हो गई है कि आने वाले महीनों में घर का बजट दबाव में आ सकता है। अगस्त में थोक और खुदरा महंगाई दर में लगातार बढ़ोतरी ने इसे लेकर तस्वीर भी साफ कर दी है। अगस्त में फुटकर महंगाई 4.82% हो गई, जुलाई में ये 4.45% थी। वहीं सरकार ने 14 सितंबर को जारी रिटेल महंगाई के आंकड़ों में खाने पीने की चीजों की फुटकर महंगाई दर 5.95% का आंकड़ा दिया, जबकि रिजर्व बैंक ने रिटेल महंगाई का लक्ष्य 4% रखा है। ये जनवरी से लेकर जुलाई तक महंगाई के वो आंकड़े हैं जो बढ़ते ही जा रहे हैं। जनवरी में जो महंगाई 2.74% थी, वो फरवरी से अप्रैल तक 3 से 3.5 के बीच रही, फिर मई में करीब 4% और फिर जुलाई में 4.45% पहुंच में खाने पीने की चीजों की फुटकर महंगाई दर 5.95% का आंकड़ा दिया, जबकि रिजर्व बैंक ने रिटेल महंगाई का लक्ष्य 4% रखा है। ये जनवरी से लेकर जुलाई तक महंगाई के वो आंकड़े हैं जो बढ़ते ही जा रहे हैं। जनवरी

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
5: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट।
7: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
9: जेके मैक्स पेंट्स।
8: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
10: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
11: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
12: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
13: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
14: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
15: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां। इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द टीआरएफ।
16: अब मैं क्या ही बोलूं?
17: परिवार, अटूट भरोसा।
18: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
19: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
20: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
21: In association with
22: Signature Finest Cardamom Seeds,
23: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
24: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
25: आज तक के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे बड़ी सभा।
26: आज का बैटलफील्ड 4000 किलोमीटर तक जा रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है।
27: इमीडिएट बालापुर मान जाइए, अब वो जब भी नहीं माने तो फिर सिंदूर की हमारे को नौबत आती
28: है। अंडमान निकोबार आइलैंड तो जरूर हमको उसका एडवांटेज लेना ही चाहिए।
29: जो बाउंड्री प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में, इसका भी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता।
30: कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा, भारत की सेनाएं उसका जवाब देगी।
25: आज तक देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ी आवाज।
31: पश्चिम एशिया में हो रही जंग से कच्चे तेल में नए सिरे से उबाल आ गया है, और वो $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। इसने जनता की चिंता को बढ़ा दिया है, जो पहले ही महंगाई की मार झेल रही है। खबरदार हो गई है कि आने वाले महीनों में घर का बजट दबाव में आ सकता है। अगस्त में थोक और खुदरा महंगाई दर में लगातार बढ़ोतरी ने इसे लेकर तस्वीर भी साफ कर दी है। अगस्त में फुटकर महंगाई 4.82% हो गई, जुलाई में ये 4.45% थी। वहीं सरकार ने 14 सितंबर को जारी रिटेल महंगाई के आंकड़ों में खाने पीने की चीजों की फुटकर महंगाई दर 5.95% का आंकड़ा दिया, जबकि रिजर्व बैंक ने रिटेल महंगाई का लक्ष्य 4% रखा है। ये जनवरी से लेकर जुलाई तक महंगाई के वो आंकड़े हैं जो बढ़ते ही जा रहे हैं। जनवरी में जो महंगाई 2.74% थी, वो फरवरी से अप्रैल तक 3 से 3.5 के बीच रही, फिर मई में करीब 4%, और फिर जुलाई में 4.45% पहुंचे। खाने पीने की चीजों की फुटकर महंगाई दर 5.95% का आंकड़ा दिया, जबकि रिजर्व बैंक ने रिटेल महंगाई का लक्ष्य 4% रखा है। ये जनवरी से लेकर जुलाई तक महंगाई के वो आंकड़े हैं जो बढ़ते ही जा रहे हैं। जनवरी में जो महंगाई 2.74% थी, वो फरवरी से अप्रैल तक 3 से 3.5 के बीच रही, फिर मई में करीब 4%, और फिर जुलाई में 4.45%
32: पहुंचे। जमीनी लड़ाई, आसमान से मिसाइल और ड्रोन से हमला, हुतियों के हमलों से सऊदी में मची तबाही, अमेरिका ने जारी की खतरे की एडवाइजरी, मक्का तक हमला, सऊदी कैसे लेगा बदला। आठ सितंबर को अमेरिका ने ईरान के 5 तेल

0: टैंकरों पर हमला किया था। इसी हमले के जवाब में ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों से पलटवार किया। करीब 48 घंटे तक वार पलटवार चलता रहा, लेकिन 10 सितंबर के बाद अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर कोई नया हमला नहीं किया है। लेकिन जैसे ही युद्ध के एक मोर्चे पर बारूदी हमले रुके, हूती और सऊदी अरब के बीच भीषण जंग छिड़ गई। बीते 72 घंटों से हूती के मिसाइलों और ड्रोन हमलों से सऊदी में दहशत का माहौल है। एक के बाद एक सऊदी अरब के नए शहरों पर हूतियों के हमले जारी हैं। इसी कड़ी में अब सऊदी अरब ने हूतियों पर मक्का पर ड्रोन हमले की कोशिश का सनसनीखेज आरोप लगाया है। सऊदी अरब की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी रॉयल डिफेंस फोर्सेस ने एक दुश्मन ड्रोन को रोका और उसे नष्ट कर दिया। इस ड्रोन को हूती आतंकवादियों ने लॉन्च किया था। इसे मक्का के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में दाखिल होने से पहले रोक दिया गया। ये मक्का को निशाना बनाने की दूसरी शत्रुतापूर्ण और आतंकवादी कोशिश है। इससे पहले जुलाई 2017 में बैलिस्टिक मिसाइल दागकर मक्का को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। इसे शर्मनाक हरकत और पवित्र काबा के मेहमानों को डराने की कोशिश कहा जा सकता है। हूतियों की आक्रामक और आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से सऊदी अरब हिचकिचाएगा नहीं। सऊदी अरब के इसी आरोप को हूतियों ने सिरे से खारिज कर दिया है। हूतियों का दावा है कि मक्का पर कोई हमला नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने सऊदी के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया है। हूतियों का दावा है कि सऊदी अरब में उनसे मुकाबला करने की ताकत नहीं है, लिहाजा मक्का को ढाल बनाकर झूठी कहानी गढ़ी है। हूतियों का दावा है, हमने अल्लाह की मदद और उसके आदेश से सऊदी अरब के एक F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया। ये लड़ाकू विमान मारे प्रांत के आसमान में अपने सैन्य अभियान के समर्थन में हमले कर रहा था। इसे स्थानीय स्तर पर बनाए गए हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया। हमारे हमले सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हैं। इन जगहों का पवित्र स्थलों से कोई संबंध नहीं है। सऊदी का दावा झूठा है। मक्का को निशाना बनाने का दावा एक घिसा पिटा झूठ है। पहले भी इसका इस्तेमाल किया जा चुका है और अब कोई इस पर भरोसा नहीं करता। मक्का पर ड्रोन हमले के आरोपों को हूतियों ने खारिज कर दिया है। अब सवाल यही है कि मक्का पर हूतियों ने नहीं तो किसने ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC ने मक्का को निशाना बनाने की कोशिश की निंदा की है। हूती आतंकवादियों की ऐसी गतिविधियां जिनमें पवित्र स्थलों, मस्जिदों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, ये आतंकवाद है। ये इस्लामी मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं, सिद्धांतों और कानूनों के खिलाफ है। बड़ी बात यह है कि मक्का पर ड्रोन हमले ने लोगों के दिमाग में 47 साल पुरानी भयावह घटना की यादें ताजा कर दी। दरअसल नवंबर 1989 में सऊदी अरब के इतिहास में एक ऐसी घटना हुई जिसने 15 दिनों तक इस्लामी देशों को हिलाकर रख दिया। ये वो घटना थी जिसमें सलाफी समूह ने इस्लाम की सबसे पवित्र जगह मक्का की मस्जिद को अपने कब्जे में ले लिया था, लोगों को बंधक बनाया था। बंधकों की रिहाई के लिए तब बड़ा ऑपरेशन चलाया गया जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। 1989 में मक्का में हुई घटना के लिए सऊदी अरब ने ईरान को दोषी ठहराया था, क्योंकि ये हमला ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के ठीक बाद हुआ था। हालांकि ईरान ने मक्का पर हुए हमले से खुद को अलग कर लिया था। बड़ी बात यह है कि 1989 में मक्का पर हुए हमले की घटना ने ईरान और सऊदी अरब के रिश्तों की खाई को और गहरा कर दिया। एक बार फिर मक्का पर हमले की कोशिश हुई और आरोप के मुताबिक ये कोशिश किसी और ने नहीं बल्कि हूतियों की तरफ से की गई, वही हूती जिन्हें ईरान का संरक्षण मिला हुआ है। यहाँ ये समझना है कि हूती यमन के अल्पसंख्यक शिया समुदाय का एक हथियारबंद गुट है। इस समूह को ईरान का समर्थन हासिल है। हूतियों की फंडिंग से लेकर हथियारों की सप्लाई ईरान करता है। इसमें ड्रोन से लेकर मिसाइलें तक शामिल हैं। ऐसे में सऊदी अरब पर हूतियों के हमलों को ईरान से अलग करके नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि हूतियों के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब है। बड़ी बात यह है कि सऊदी पर हमले से चंद दिनों पहले ही ईरान ने अमेरिका को सीधी धमकी दी थी। धमकी ये कि उन्होंने हुर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रखा है और बहुत जल्द बाब अल मंडेब स्ट्रेट को बंद करवा सकता है। ये एक अहम समुद्री मार्ग है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। ईरान की धमकी के कुछ दिन बाद हुतियों ने इसे हकीकत में बदल दिया। एक तरफ हुर्मुज बंद है और दूसरी तरफ हुतियों के डर से बाब अल मंडेब भी करीब करीब बंद है। इसी रूट पर हुतियों ने सऊदी अरब के तेल टैंकरों को निशाना बनाया था। मतलब साफ है कि हुतियों के हमलों के पीछे ईरान का हाथ है। मकसद है सऊदी अरब के बहाने अमेरिका पर दबाव बढ़ाना, क्योंकि सऊदी अरब का तेल कारोबार ठप है। तेल की पाइपलाइनों पर हुतियों के हमले जारी हैं और अब सऊदी अरब की तरफ से अमेरिका पर ईरान के साथ युद्ध विराम का दबाव बनाया जा रहा है। इस दबाव का असर अब अमेरिका पर पड़ने लगा है। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एक चेतावनी जारी की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने सऊदी अरब की यात्रा को लेकर लेवल 3 एडवाइजरी जारी करते हुए अपने नागरिकों को हवाई अड्डों, सैन्य ठिकानों, ऊर्जा संयंत्रों, होटलों, ट्रांसपोर्ट और भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर रहने को कहा है। मतलब ईरान ने हूतियों के जरिए अमेरिका और सऊदी अरब पर अपना शिकंजा कस दिया है। आज तक ब्यूरो।
1: और अब खबर इसराइल और अमेरिका की। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इसराइल के 26,000 करोड़ के हथियार देने की तैयारी कर रहे हैं। हथियारों की इस पैकेज की डील में 40,000 भारी बॉम्ब शामिल हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ट्रंप और इसराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का प्लान क्या है? क्या ईरान के खिलाफ किसी बड़े हमले की तैयारी है ये, या फिर गाजा के लिए नेतन्याहू के दिमाग में कुछ और चल रहा है? आज के इस दौर में इसराइल 7 से 8 अलग अलग मोर्चों पर या तो युद्ध लड़ रहा है या फिर तनाव का सामना कर रहा है। तो आइए दिखाएं आपको कि क्यों अमेरिका हथियारों की इतनी बड़ी खेप इसराइल को भेजने की तैयारी कर रहा है।
0: गाजा में अक्टूबर 2023 से इजरायली सेना हमास के खिलाफ सीधी सैन्य कार्रवाई और संघर्ष में फंसी है। लेबनन में उत्तरी सीमा पर ईरान समर्थित हिजबुल्ला के खिलाफ इजरायल के जमीनी और हवाई हमले जारी हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जंग अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। 28 फरवरी को जिस तरह से इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर बमबारी की, ईरान के साथ आज भी युद्ध जारी है। यमन से हुती विद्रोही इजरायली क्षेत्र और लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं। सीरियाई क्षेत्र में सक्रिय मिलिशिया और सैन्य ठिकानों पर इजरायल लगातार हवाई हमले और सैन्य कार्रवाई कर रहा है। इराक में मौजूद शिया मिलिशिया और ईरान समर्थकों के साथ इजरायल की लड़ाई चल रही है। वेस्ट बैंक के अंदरूनी हिस्से में भी इजरायली सेना को लगातार मोर्चा संभालना पड़ रहा है। यानी बेंजामिन नेतन्याहू कुल मिलाकर 7 से 8 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहे हैं या फिर सैन्य संघर्ष में फंसे हैं। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन इसराइल को $2.8 अरब यानी करीब 26,000 करोड़ रुपए के हथियार देने की तैयारी कर रहा है। इस पैकेज में करीब 40,000 भारी बम शामिल हैं। हर बम का वजन 2,000 पाउंड यानी करीब 900 किलो है। इन बमों की सप्लाई पर पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2024 में रोक लगाई थी। प्रस्तावित हथियार पैकेज में 20,000 MK-84 और 20,000 BLU-117 बम शामिल हैं। डील अभी फाइनल नहीं हुई है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक कांग्रेस को इसकी अनौपचारिक जानकारी दे दी गई है। आपको बता दें कि 2024 में बाइडेन प्रशासन ने 2000 पाउंड के इन बमों की एक खेप इसराइल भेजने पर रोक लगा दी थी। उस समय चिंता थी कि गाजा जैसी घनी आबादी वाले इलाके में इनका इस्तेमाल होने पर बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो सकती है। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ये रोक हटा दी गई। अब उनका प्रशासन इन्हीं बमों की बड़ी संख्या वाली नई डील की तैयारी कर रहा है। इन 900 किलो के बमों के अलग अलग मॉडल हैं। कुछ को जमीन के अंदर मौजूद ठिकानों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि कुछ जमीन के ऊपर फटकर बड़े इलाके में भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक्सपर्ट्स ने गाजा में हुए हमलों के वीडियो और घटना स्थलों से मिले बमों के टुकड़ों का विश्लेषण किया है। उनके मुताबिक वहां अमेरिकी निर्मित बमों का इस्तेमाल हुआ है। इनमें कुछ हमास के सुरंग नेटवर्क को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए, लेकिन घनी आबादी वाले इलाकों में भी लोगों की मौत हुई है। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का प्लान क्या है? क्या ईरान के खिलाफ इसराइल अमेरिका का कोई प्लान है? क्या एक बार फिर इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमले करेंगे या फिर हमास हिजबुल्ला और हूती के खिलाफ बड़ा एक्शन होने वाला है। लेकिन अमेरिका और इसराइल में 40,000 बमों की इस जीत से पहले दुनिया में गाजा युद्ध पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म नाजा की न सिर्फ चर्चा है बल्कि वो विवादों के घेरे में है। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में नाजा डॉक्यूमेंट्री ने काफी ध्यान खींचा, इसे वहां स्पेशल जूरी पुरस्कार प्रदान किया गया। फिल्म देखने वालों ने तालियां बजाई, लेकिन इसी के साथ ये फिल्म सवालों के घेरे में है। फिल्म के मेकर्स पर इसराइल के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लगा है। खुद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी नाजा डॉक्यूमेंट्री पर सवाल खड़े किए हैं और इसे यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश बताया है।
2: בהסתה אנטישמית עולמית. אבל כשזה בא מתוכנו, זה פשוט בלתי נסבל. ועכשיו שני במאים ישראלים שמציגים את צהל כפושעי מלחמה וזוכים לתשועות בפסטיבל ונציה.
0: आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे जबकि 251 लोगों को बंधक बनाया गया। इसके बाद इसराइल ने गाजा में जो तबाही मचाई दुनिया दहल गई। जी हां, गाजा पर इजरायली हमलों में अब तक 70,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि उनकी मध्यस्थता में गाजा के अंदर युद्ध विराम हो चुका है। अब सवाल यह है कि जब ट्रंप युद्ध रुकवाने का दावा करते हैं तो फिर इसराइल में हथियारों की इतनी बड़ी खेप क्यों भेजी जा रही है? दुनिया यही सोच रही है अब युद्ध के कौन से मोर्चे पर बमबारी होने वाली है। वैसे आपको बता दें कि इसराइल में अगले महीने यानी 27 अक्टूबर को आम चुनाव भी होने जा रहे हैं। ऐसे में सबकी नजरें इस बात पर होगी कि बेंजामिन नेतन्याहू फिर सत्ता में लौटते हैं या जनता किसी नए नेतृत्व पर भरोसा जताती है। बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना है कि वो ऐसी राष्ट्रीय सरकार बनाना चाहते हैं जो सिर्फ किसी एक विचारधारा पर आधारित ना हो। चुनाव प्रचार में उनका फोकस सुरक्षा के मुद्दे पर रहेगा, खासकर ईरान और लेबनान के हिजबुल्ला के खिलाफ चलाए गए सैन्य अभियानों को वो जनता के सामने प्रमुख मुद्दे के रूप में रख सकते हैं। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू चुनावों के मद्देनजर हथियारों की डील कर रहे हों ताकि वो इजरायली जनता को समझा सकें कि नेतन्याहू उनकी सुरक्षा चाहते हैं। आज तक ब्यूरो।
1: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।

0: Spa state of mind with a Kohler spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Kohler spa at home.
1: Papa!
2: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
1: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का?
1: सब कैशलेस हो गया है।
2: हाँ, ओला ला भाई मेरा बैट।
1: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
3: बिल्कुल डिस्चार्ज हुआ यार।
4: बैट किसका है?
5: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
7: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट,
7: जेके मैक्स।
5: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Max Paints, खुशियों के रंग।
1: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
8: इन एसोसिएशन विद सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।

0: यूपी में चुनाव का शंखनाद भर बाकी है, वरना सियासी दलों के अंदर खाने तैयारी पूरी है। अब खबर है कि बीजेपी ने टिकट को लेकर मंथन तेज कर दिया है। पार्टी की ओर से चार अलग अलग स्तरों पर समानांतर पैरामीटर तैयार किए गए हैं। इस पैरामीटर में विधायकों के कामकाज, जनता और कार्यकर्ताओं के बीच छवि, विकास कार्य, चुनावी आंकड़ों, जातीय समीकरण और संभावित उम्मीदवारों की जीत की संभावना का आकलन किया जाएगा। इसके अलावा आरएसएस की जमीनी रिपोर्ट भी टिकट के फैसले में इनपुट देगी। सूत्रों के मुताबिक खराब रिपोर्ट वाले मौजूदा विधायकों के टिकट पर पुनर्विचार हो सकता है।
1: चार जो पैरामीटर्स हैं उनको रिपोर्ट बनाकर दे दिया गया है, जिससे कि ये साफ हो गया है कि जो भी इसमें फेल पाया जाएगा उसका टिकट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो भी पास पाएगा उसको टिकट दिया जाएगा।
0: जिन चार स्तरों पर टिकट के उम्मीदवारों की पैमाइश होगी उसमें कुल 15 बिंदु हैं, जिन पर उम्मीदवारों को खरा उतरना होगा। पहले बिंदु में मौजूदा विधायकों की सदन में उपस्थिति से लेकर सवाल उठाने और विधायक निधि के इस्तेमाल से लेकर पार्टी में छवि का पैमाना होगा। दूसरे बिंदु में जनता के बीच विधायक की उपलब्धता, विकास कार्यों से जनता की संतुष्टि, क्षेत्र में स्वीकार्यता का पैमाना होगा। तीसरे बिंदु में जीत की संभावना, जाति समीकरण और भागीदारी के पैमाने होंगे। और चौथे बिंदु में बूथ स्तर का फीडबैक और संघ की रिपोर्ट का पैमाना होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि कम से कम 20 से 25 फीसदी विधायकों के टिकट पर खतरा मंडरा रहा है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: पाटलिपुत्र की पावन धरा से उठेगा सियासत का सबसे बड़ा शोर, जनता के सबसे बड़े सवाल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ। पंचायत आज तक 18 सितंबर सिर्फ आज तक पर।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: ये कदम जो हमारे इंडिजिनस हमारे होम ग्रोन डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है उसको तबाह करने की दिशा में चल रहा है।
1: कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही है, किसी भी व्यक्ति को कॉमन मैन को कोई भी 2000 रुपए तक कोई चार्ज नहीं देना होगा, किसी कस्टमर को नहीं देना होगा।
2: यूपीआई के 2000 से ज्यादा के लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लागू करने के फैसले पर मचे सियासी घमासान के बीच RBI का बयान सामने आया है। RBI ने इस पर अपने बयान में कहा है, भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की लंबे समय की स्थिरता को मजबूत करने की दिशा में ये एक अहम कदम है। इससे UPI को देश भर में ग्राहकों और व्यवसायों के लिए आगे बढ़ने, नई सुविधाएं लाने और सेवाएं देने में मदद मिलेगी। इकोसिस्टम में शामिल सभी लोगों के बीच MDR का सही और उचित बंटवारा टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सेप्टेंस नेटवर्क में लगातार निवेश को बढ़ावा देगा। इसे UPI को ज्यादा जगहों पर स्वीकार किए जाने, ग्राहकों की संख्या बढ़ाने और ट्रांजैक्शन की संख्या में लगातार बढ़ोतरी में मदद मिल सकती है। कमोवेश यही बात फोनपे के CEO समीर निगम भी कह रहे हैं।
3: पूरा इंडस्ट्री आगे साथ में बढ़ पाएगा, सबके लिए जो है बहुत क्रिटिकल था ये। MDR के बिना जो है काफी तकलीफ हो रही थी पिछले खासकर की 3-4 साल से। वॉल्यूम इतना भाग रहा है, हम लोग को इतने सर्वर्स डालने पड़ रहे हैं और आजकल तो AI के जमाने में भी और भी ज्यादा रिस्क हो गया, साइबर सिक्योरिटी पे बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। पेमेंट्स जो है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का। मेरे हिसाब से बिगेस्ट बेनिफिशियरी एक्चुअली अल्टीमेटली कस्टमर ही होगा, उनके लिए कल भी फ्री था आज भी फ्री है।
2: UPI पर MDR को लेकर घमासान सरकार के ताजा फैसले से शुरू हुआ। सरकार ने मंगलवार को 2000 रुपए से ज्यादा के भुगतान पर 0.4% शुल्क लगाने की घोषणा की। ये शुल्क कारोबारियों को किए जाने वाले UPI भुगतान पर लगेगा। नियम 15 अक्टूबर से लागू होगा। हालांकि खास बात ये है कि ग्राहकों से ये शुल्क नहीं लिया जाएगा, MDR केवल कारोबारियों के लिए देय होगा। साथ ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले भुगतान पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा। कांग्रेस इस फैसले को अमेरिका के दबाव में उठाया गया फैसला बता रही है। भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट होता है। दूध, सब्जी, दवा खरीदना हो या ऑटो रेस्टोरेंट में भुगतान करना हो या फिर किसी को एक क्लिक में पैसे भेजना, UPI भारत के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, जिसमें बड़े दुकानदारों से लेकर रेड़ी पटरी वाले भी शामिल हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, अब 2000 रुपए से ऊपर के मर्चेंट UPI लेन देन पर MDR लगाया जा सकता है। इन ट्रांजेक्शन की संख्या भले ही सिर्फ 5% हो, लेकिन UPI के कुल ट्रांजेक्शन वैल्यू का करीब 65% इन्हीं में है। सरकार कहती है कि ग्राहक से कोई फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन दुकानदार पर लगने वाली फीस आखिर आएगी कहां से? कीमतों में जुड़कर ग्राहक की जेब से। अमेरिकी पेमेंट कंपनियां लंबे समय से भारत की जीरो MDR नीति का विरोध करती रही हैं। अब मोदी सरकार ने ठीक उसी दिशा में नीति बदलने का रास्ता खोल दिया है। ये बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भले ही जनता को 2000 रुपए तक के UPI पेमेंट पर कुछ भी नहीं देना होगा, लेकिन जिन दुकानदारों को देना होगा, क्या वो किसी दूसरी तरह जनता से ही नहीं वसूलेंगे? क्या वो कैश को बढ़ावा नहीं देंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या डिजिटल पेमेंट पर इसका असर नहीं होगा? आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: आज तक बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
3: सो सॉरी।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

और शुल्क के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी का मोर्चा, कहा नियमों को वापस ले सरकार। वित्त मंत्री का जवाब, फैसले के पीछे कोई विदेशी दबाव नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा 2014 के बाद से भारत में नियम कानून और शासन दोनों ही अच्छे हैं। कल से बीजेपी की सेवा संकल्प अभियान। गोरखपुर में सीएम योगी की चुनावी हुंकार, कहा पहले एसपी और कांग्रेस सरकार में अपराध और डर, आज यूपी दंगा और कर्फ्यू मुक्त। बोले 19 सितंबर से 1,00,000 नई नौकरी की शुरुआत। सरकारी कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, कैबिनेट ने अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रति माह किया, 51,00,000 लोगों को फायदा। कन्नड़ फिल्मों के दमदार अभिनेता अनंत नाग को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई, सेंसर बोर्ड की नई टीम के लिए भी 18 सदस्यों का ऐलान।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कानपुर के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा मर्डर केस में पहली बार उनके बेटे सुब्रत ने जुबान खोली। कानपुर पुलिस के सामने पूछताछ के दौरान सुब्रत ने कहा कि उसे अपने पिता के कत्ल या कत्ल की साजिश के बारे में कोई जानकारी नहीं। हालांकि उसने ये माना कि पैसों और रोक टोक को लेकर उसकी और उसकी पत्नी शालू की उसके पिता से नोकझोंक होती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने पिता का कत्ल कर दे। वैसे सुब्रत ने पुलिस के सामने ये कबूल किया कि उसे लगता है कि शायद उसकी पत्नी शालू ने ही उसके पिता का कत्ल किया है। ये शालू की अलग अलग तस्वीरें हैं। खुला चेहरा, दुपट्टे से छुपाते हुए चेहरा, ढका चेहरा, कैमरे से बचता बचाता चेहरा, परेशान चेहरा, हैरान चेहरा। और ये विशाल गौतम और उसके दोस्त राज किशोर का चेहरा है। इन दोनों ने न खुद अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश की, न ही पुलिस ने इनके चेहरे को नकाब से ढकने की जहमत उठाई। ये दोनों वही आरोपी सुपारी किलर हैं, जिन्हें 6 लाख रुपए में कानपुर के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा के कत्ल की सुपारी दी गई थी। और इल्जाम है कि ये सुपारी इन्हें खुद विनीत मिनोचा की बहू शालू ने दी थी। दरअसल शालू की गिरफ्तारी के बाद बुधवार को पहली बार शालू और दोनों सुपारी किलर को कानपुर सेंट्रल जेल से निकालकर कोर्ट लाया गया था। वजह यह थी कि कानपुर पुलिस इन तीनों की पुलिस रिमांड लेकर इनसे पूछताछ करना चाहती थी, खासकर शालू और उसके पति सुब्रत को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जानी थी। लेकिन इत्तेफाक से बुधवार को कानपुर कोर्ट के वकील हड़ताल पर थे, लिहाजा पुलिस रिमांड पर कोर्ट के अंदर सुनवाई हो ही नहीं पाई। नतीजतन शालू और दोनों सुपारी किलर को बैरंग वापस जेल भेज दिया गया। अब तीनों की पुलिस रिमांड पर 19 सितंबर को सुनवाई होगी, यानी अब कानपुर पुलिस को शालू और सुब्रत को आमने सामने बिठाने के लिए कम से कम 3 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि इस दौरान सुब्रत को पुलिस के सामने बिठाया जा चुका है। पुलिस क्या, खुद कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने सुब्रत को अपने सामने बिठाकर पहली बार उसके पिता के कत्ल और पत्नी शालू की भूमिका के साथ साथ कत्ल में खुद उसके अपने रोल के बारे में 2 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान जब सुब्रत से पूछा गया कि उसके पिता का कत्ल किसने किया, तो सुब्रत ने कहा कि शायद उसकी पत्नी शालू। उसने कहा कि ये बात वो इसलिए कह रहा है क्योंकि विशाल को पुलिस कस्टडी में उसने ऐसा मीडिया के कैमरे पर कहते सुना था। ये रहा विशाल का वो दावा जो उसने कैमरे पर किया था।
1: क्यों भाई, किस लिए हत्या की थी? किस लिए हत्या की थी?
2: नाम मेरा विशाल गौतम है।
1: तुम्हारा क्या नाम भैया? किस लिए किया हत्या बुजुर्ग की?
2: वो हमने उनकी उनकी बहू ने कहा था, इसलिए हमने कह रहा था वो पैसे देने के लिए कहीं था।
1: अच्छा।
0: हालांकि पुलिस ने जब सुब्रत से पूछा कि विशाल ने ऐसा क्यों कहा होगा, तब उसका कहना था कि ये विशाल ही बता सकता है। पुलिस ने सुब्रत से ये भी पूछा कि शालू उसके पिता का कत्ल क्यों करवाएगी, क्या वजह रही होगी। सूत्रों के मुताबिक इस पर सुब्रत साफ साफ तो जवाब नहीं दे पाया, लेकिन उसने माना कि घर में पैसों और खर्च को लेकर तनाव बना रहता था। उसके पिता पैसों का सारा हिसाब किताब खुद रखते थे और खर्च को लेकर भी वो बेहद सख्त थे। इतना ही नहीं, घर के अंदर और बाहर भी कई चीजों को लेकर उन्होंने कुछ रोक लगा रखी थी। सुब्रत के मुताबिक ये मुमकिन है कि इसी वजह से शालू ने ऐसा किया हो, लेकिन उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, न कभी शालू ने उससे ऐसी कोई बात की। विनीत मिनोचा का जिस रात कत्ल हुआ, उस दिन शालू के साथ वक्त से पहले क्लब में पहुंचने और देर से घर लौटने के बारे में जब पुलिस ने सुब्रत से पूछा, तो उसका कहना था कि उस रात किटी पार्टी का होस्ट वो और शालू थे। होस्ट यानी मेजबान होने के नाते ही दोनों पार्टी शुरू होने से 1 घंटा पहले ही क्लब पहुंच गए थे। कत्ल वाली रात विनीत मिनोचा के घर में दाखिल होने के लिए इल्जाम है कि खुद शालू ने विशाल को डुप्लीकेट चाबी दी थी। ये चाबी खुद शालू ने बनवाई थी, पर तफ्तीश के दौरान पता चला कि जिस दिन डुप्लीकेट चाबी बनाने शालू मार्केट गई थी, तब कार में उसके साथ सुब्रत भी था। तो क्या सुब्रत को पता था कि शालू डुप्लीकेट चाबी क्यों बनवा रही है? पूछताछ में सुब्रत ने बताया कि वो कार के अंदर ही बैठा था जबकि शालू दुकान पर गई थी। उसे नहीं पता था कि शालू वहां डुप्लीकेट चाबी बनवाने गई।

0: विनोचा परिवार के छोटे मोटे घरेलू काम किया करता था, खासकर वो सुब्रत के बेहद करीब था। वैसे कानपुर पुलिस इस पूरे केस को इस नजरिए से भी देख रही है कि अगर कत्ल वाली रात प्लान के तहत तकिए से मुंह दबाकर विनीत मिनोचा का कत्ल हुआ होता तो क्या घर के किसी मेंबर पर किसी का शक जाता, क्योंकि तब शायद अगले ही दिन अंतिम संस्कार भी हो जाता। तो क्या ऐसे प्लान या ऐसी सूरत में जिसमें मौत दिल का दौरा पड़ना दिखाया जाना था, क्या ये मुमकिन नहीं कि शालू और विशाल के साथ साथ खुद सुब्रत भी इस साजिश में शामिल हो। बस इसीलिए कानपुर पुलिस ने अभी तक सुब्रत को क्लीन चिट नहीं दी। कानपुर पुलिस को उम्मीद थी कि बुधवार को शालू की पुलिस कस्टडी मिल जाएगी, इसीलिए शायद आमने सामने बिठाकर पूछताछ के लिए बुधवार को ही सुब्रत को थाने बुलाया गया था, लेकिन कोर्ट में वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई टल गई। लेकिन बुधवार शाम सुब्रत 48 घंटे के अंदर अंदर दूसरी बार कानपुर पुलिस के सामने पेश हुआ। सुब्रत थाने में अकेला आया था। पूछताछ के बाद सुब्रत वापस लौट गया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 19 या 20 सितंबर को जैसे ही शालू की पुलिस कस्टडी मिलती है, उसी दिन शालू और सुब्रत को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। और शायद वही वो दिन होगा जब इस केस में सबसे बड़ा खुलासा होगा। सिमर चावला, कानपुर आज तक। एक शख्स को 4 कत्ल करने थे, कत्ल अपनी बीवी और 3 बेटियों के, पर साथ ही उसने ये भी तय किया था कि 4 कत्ल करने के बाद वो खुद अपनी भी जान दे देगा। इसके बाद एक एक कर वो 4 कत्ल करता है, लेकिन जब खुद उसकी अपनी बारी आती है तब वो घबरा जाता है। इसके बाद वो मंदिर मंदिर भागता रहता है।
1: ये राजस्थान के रिंगस रेलवे स्टेशन के पास का एक सीसीटीवी फुटेज है। फुटेज में एक शख्स चेहरे पर रुमाल बांधे चाय नाश्ते की एक दुकान की तरफ बढ़ता हुआ दिखता है। जब आप इस फुटेज को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि आसपास कुछ और भी लोग खड़े हैं जो बड़े ही खुफिया तरीके से इस आदमी पर निगाह जमाए हुए हैं। फिर जैसे ही चेहरे पर रुमाल बांधे वो शख्स एक दुकान के अंदर घुसता है, देखते ही देखते उसका पीछा कर रहे लोग उसे घेर लेते हैं और फिर बातों में उलझाकर उसे अपने साथ लेकर वहां से निकल जाते हैं। यहां ना तो कोई भागदौड़ है, ना अफरा तफरी और ना ही खींचता, लेकिन इन तस्वीरों में एक ऐसे शख्स की गिरफ्तारी का मंजर कैद है जिस पर एक नहीं बल्कि एक साथ 4-4 लोगों के कत्ल का इल्जाम है। पैंतालीस साल की गीता झा का, 22 साल की उसकी बड़ी बेटी नंदिनी का, 17 साल की उसकी मंझली बेटी राधिका का और महज 14 साल की लाडली गौरी का। और पुलिस ने अभी अभी जिस शख्स को गिरफ्तार किया है वो राहुल झा है, और राहुल झा कोई और नहीं बल्कि गीता का पति और इन 3 छोटी छोटी बच्चियों का पिता। जयपुर के करधनी इलाके में इसी राहुल की करतूत ने न सिर्फ उसके मोहल्ले को बल्कि पूरे शहर को दहला कर रख दिया, क्योंकि राहुल ने सीमेंट के भारी स्लैब से सिर कुचल कुचल कर मुंह अंधेरे एक एक कर अपनी पत्नी और 3 बेटियों की जान ले। अलग अलग मौके पर अलग अलग कातिलों का व्यवहार कितना अजीब हो सकता है, राहुल की कहानी उसकी एक मिसाल है। राहुल ने 11 सितंबर की सुबह सवेरे न सिर्फ एक एक कर अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया बल्कि 4-4 कत्ल करने के बाद बड़े आराम से नहाया, कपड़े बदले, दूध लेकर आया और फिर घर में उसी के रहमो करम से जिंदा बचे अपने बुजुर्ग पिता को चाय बनाकर पिलाई और घर से निकल गया। वो तो जब चाय वाय पीने के बाद राहुल के 85 साल के बुजुर्ग पिता बच्चों को जगाने के लिए अंदर के कमरों में पहुंचे तो खून खराबे का मंजर देखकर सन्नाटे में आ गए। सुबह करीब 9:15 उन्होंने पड़ोस की एक महिला को अपने पास बुलाया और घर के अंदर चलकर मंजर देखने की गुजारिश की। शायद उनका बुजुर्ग दिमाग इस मामले को ठीक से समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही महिला को पूरी बात समझ में आई पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया। अगले ही पल जयपुर की पुलिस मौके वारदात पर थी। पुलिस ने बड़ी ही

0: बारीकी से मौके का मुआयना किया। घर में पत्नी गीता की लाश उनके बेडरूम में पड़ी थी, जबकि बाकी की तीन बेटियों की लाशें दो अलग अलग कमरों में। सभी लाशों का सिर किसी भारी चीज से बुरी तरह से कुचल दिया गया था, लिहाजा बिस्तर से लेकर फर्श तक हर जगह सिर्फ खूनी खून बिखरा था। चूंकि राहुल घर से गायब था और अपने बुजुर्ग पिता को चाय पिलाकर निकला था, लोगों को ये समझते देर नहीं लगी कि इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई बाहरी आदमी नहीं बल्कि खुद राहुल ही था। अब पुलिस ने राहुल की तलाश शुरू कर ली, मगर दिक्कत ये थी कि राहुल कहां गया था ये किसी को पता नहीं था। ऊपर से वो अपना मोबाइल फोन जानबूझकर स्विच ऑफ कर घर पर ही छोड़ गया था। ऐसे में उसे मोबाइल फोन के जरिए भी ट्रैक कर पाना नामुमकिन था। पुलिस ने उसके जानने वालों और नाते रिश्तेदारों से संपर्क साधा और राहुल के बारे में कोई जानकारी मिलने पर फौरन इत्तला करने की अपील की।
1: हमें कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि दरदरी थाना इलाके के गोविंद वाटिका के एक मकान में चार लाशें पड़ी हुई हैं, जो एक ही परिवार की हैं, जिसमें एक माँ और उनकी तीन बच्चियां हैं। इस सूचना पर जब वहां पर पुलिस पहुंचती है तो ये पता चलता है कि इनका पिता और उस महिला का पति वहां से फरार है, और उसके जब वो फोन और अन्य चीजों की जानकारी इकट्ठे करने की प्रयास किए गए तो वो फोन बंद आया। उससे ये प्रतीत हुआ कि कहीं ना कहीं उसका इस घटना में कोई ना कोई रोल है। उसके रोल को संदिग्ध मानते हुए और चार हत्याओं के होने के वजह से श्रीमान सिक्की साहब द्वारा मल्टीपल टीम्स को गठित किया गया, जिसमें जिले की डीएसटी, कदनी थाने की स्पेशल टीम, हमारी जिले की दो अन्य टीम साइबर टीम और कमिश्नरेट की सीएसटी, इनको इस अक्यूज्ड और सस्पेक्ट इसको गिरफ्तार करने के लिए और इसकी पूछताछ करने के लिए इनको मामूल किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में जब हमने वहां पर सीसीटीवी देखना स्टार्ट किया तो हमें समझ में आया कि ये व्यक्ति जो है घर से सुबह करीब 8:10 पर घर से निकल गया है।
0: पुलिस की यह कोशिश काम कर गई। राहुल जब घर से गया था तो अपने साथ 800 रुपए लेकर निकला था, लेकिन 24 घंटे गुजरते गुजरते उसके पास मौजूद ये पैसे खत्म हो गए और तब उसने कुछ रुपयों के लिए जयपुर में ही अपनी भतीजी को फोन किया और यहीं से पता चला कि वारदात को अंजाम देने के बाद राहुल खाटू श्याम जी मंदिर की तरफ गया। अब पुलिस ने खाटू श्याम जी मंदिर के आसपास की चौकसी बढ़ा दी। राहुल रडार पर आ गया, पता चला कि वो रिंगस रेलवे स्टेशन के आसपास घूम रहा है और तब आखिरकार पुलिस ने उसकी तस्वीर और हुलिये के आधार पर उसे धर दबोचा।
1: उसके बाद जब वहां से हम इसका पीछा करने लगे तो ये हमें बिना किसी सामान के एक शर्ट और एक पैंट में पैदल जाता हुआ दिखा। इसको जब तक हम पीछा कर रहे थे तब तक वो पूरा हमने इसकी फोटोज और वीडियोज और ये सारी चीजें सर्कुलेट करी। उसके बाद हमारे पास कहीं से सूचना आई कि ये व्यक्ति खाटू श्याम में हो सकता है और वहाँ देखा गया है। इस सूचना को डेवलप करते हुए खाटू श्याम में जो हमारे जिले की स्पेशल टीम है उसको तत्काल रवाना किया गया। वहाँ पहुँचकर जब जिले की स्पेशल टीम ने पता किया तो इन्होंने बताया कि ये व्यक्ति जरूर यहाँ आया था और यहाँ आने के बाद इसके पास पैसे नहीं थे तो ये अपनी अंगूठी बेचने का प्रयास कर रहा था। जब ये वहाँ पर अंगूठी बेचने का प्रयास कर रहा था तभी वहाँ से किसी का फोन लेके इसने जो है पैसे मंगाने की भी प्रयास किए, परंतु उसमें ही असफल रहा। रिंगस में इसके साथ इसको हम तलाश कर रहे थे तब हमारे सीएसटी के जो वेदवीर कांस्टेबल हैं उनको ये व्यक्ति वहां पर दिखा और उन्होंने इसको दस्तयाब।
0: गिरफ्त में आने के बाद राहुल ने न सिर्फ अपने ही घर में चार चार कत्ल की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली, बल्कि इस खून खराबे से पहले और खून खराबे के दौरान उसके दिमाग में क्या चल रहा था इसका भी खुलासा किया। पुलिस की माने तो राहुल असल में अपनी पत्नी गीता और बड़ी बेटी नंदिनी से कुछ ज्यादा ही नाराज था। राहुल अहमदाबाद में रहकर शेयर ट्रेडिंग का काम करता था, उसे इस काम में भी अच्छा खासा नुकसान हुआ था। इधर जयपुर में उसे लगता था कि उसकी बड़ी बेटी नंदिनी उसकी बात नहीं मानती, जबकि उसकी पत्नी बेटी को समझाने की जगह उल्टा बेटी का ही साथ देती है।
1: डिटेन करने के बाद जब इसे गहन तरीके से पूछताछ की गई तो इसने इस घटना को करना कबूल किया है। इसने इस पूरे घटनाक्रम के पीछे अपनी जो इनकी बड़ी बेटी थी उनके साथ किसी प्रकार की इनका मनचाव चल रहा था, वो इनसे इनकी बातें वो कम तवज्जो दिया करती थी, जिससे वजह से इनकी छोटी मोटी इस तरीके की लड़ाइयाँ कई बार हो चुकी। इन सब लड़ाइयों को लेके ये कई बार उनसे अपनी उनकी माता से भी कई बार उसकी शिकायत कर चुका था, और शिकायत करने के बावजूद जो इनकी माँ थी उन्होंने इनके अनुसार उसको सही रास्ता नहीं दिखाया, जिसके वजह से ये इसे लगता था कि ये इनकी बेटी है, इनकी इस बड़ी बेटी की वजह से इनकी जो बाकी दो बेटियाँ हैं उस पर बुरा असर पड़ता।
0: असल में नंदिनी की दोस्ती कुछ लड़कों से थी और इसे लेकर राहुल अक्सर उससे नाराज रहता था, और इसी गुस्से के माहौल में उसने पहले अपनी पत्नी और फिर बड़ी बेटी की हत्या कर ली और फिर खुदकुशी करने का फैसला किया। लेकिन बाद में उसे लगा कि दोनों की हत्या करके अगर वो अपनी जान दे देगा तो बाकी की बेटियों का क्या होगा। फिर यही सोचकर उसने पहले चारों की जान लेने और फिर आखिर में खुदकुशी करने का फैसला किया। रही बात 85 साल के बुजुर्ग पिता की, तो राहुल को लगा कि उसके पिता को करीब 33,000 रुपए हर महीने पेंशन के मिलते हैं, ऐसे में उसका भाई अपने बुजुर्ग पिता को साथ रख सकता है। ये सब कुछ सोचकर उसने 11 सितंबर की रात पहले धोखे से अपनी पत्नी और बेटियों के खाने में नींद की गोलियां मिलाई और फिर सुबह होते होते सीमेंट के स्लैब से सिर कुचल कर उनकी जान ले।
1: तत्काल आपको यही बताएंगे कि इनके बात ना मानने की वजह से एक तरीके के इनके मन में कोई ऐसी कुंठा उत्पन्न हुई, उस कुंठा की वजह से इन्होंने इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप उठाए, जहाँ पर सबसे पहले इन्होंने अपनी वाइफ का मर्डर किया, और वाइफ का मर्डर करने के बाद अपने दोनों बच्चों का, और उसके बाद लास्ट में अपनी सबसे बड़ी बेटी का मर्डर किया है। मर्डर के जो इन्होंने पूरा घटनाक्रम है उसको बहुत ही सीक्वेंस वाइज बताया, और वो चीज़ें जो हमने वहाँ मौके पर पाई उससे बिल्कुल ताइर खाली। तो हमारे सामने जो चीज़ें आई थी मौके से, जो हमने क्राइम सीन को स्टडी किया था और जो इन्होंने बातें बताई, उनमें वो सारी चीज़ें मैच हो रही।
0: इसके बाद उसने खून से सने कपड़े बदले, नहाया और दूध लाकर बुजुर्ग पिता को गर्मा गर्म चाय पिलाई और इसके बाद घर से निकल गया। राहुल का दिमाग कत्ल से पहले तो अशांत था ही, कत्ल के बाद भी उसे चैन नहीं मिला। उसने एक बार एक गाड़ी के सामने कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की, मगर डर कर पीछे हट गया। इसके बाद वो एक एक कर खाटू श्याम जी समेत कई अलग अलग मंदिरों में गया, लेकिन इसी बीच उसके पास पैसे खत्म हो गए, और जैसे ही उसने पैसों के लिए अपनी भतीजी को फोन किया, पुलिस को उसकी लोकेशन की बात पता चली, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वो टीवी पर अलग अलग क्राइम फिक्शन सीरीज और सीरियल्स देखता था, जिसके बाद उसे मर्डर का आइडिया आया और उसने सोचा कि अगर वो अपना फोन घर पर छोड़कर जाएगा तो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, मगर आखिरकार उसकी पोल खुल गई।
2: क्राइम सीरीज देखकर एक पिता इस कदर सनकी हो चुका था कि अपनी ही बड़ी बेटी के चाल और चरित्र पर शक करने लगा। इसी को लेकर अक्सर घर में झगड़ा होता था, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि राहुल नाम के इस शख्स ने ना सिर्फ अपनी पत्नी और बड़ी बेटी के अलावा दो छोटी बेटियों को भी मौत के घाट उतार दिया। हालांकि उसने अपने बुजुर्ग पिता की जान बख्श दी और चाय नाश्ता करवाने के बाद वो मौके से भाग छूटा। भागा इस कदर कि वो दर दर मंदिर में माफी मांगता रहा। एक समय ऐसा भी आया जब गाड़ी के आकर खुद को खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। आखिर में खाटू श्याम मंदिर में जाकर शरण ली, लेकिन पीछे से जयपुर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा।
0: विशाल शर्मा, जयपुर, आज तक।
3: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

इसमें कहीं दो मत नहीं है, आज तक का यहाँ तक प्रश्न है। एक बहुत ही क्रेडिबल मीडिया ग्रुप के रूप में इसने अपनी साख बनाई है मीडिया जगत में, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि आज देश की सुरक्षा को लेकर यहाँ पूरे दिन चिंतन और मंथन हुआ है। मैं टीवी टुडे की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ।

0: भैया मेरे राखी के बंधन को नहीं। 100 रुपए लेंगे तुमसे अभी हम।
1: लो मिठाई भी खाओ।
2: क्योंकि फूफा भी कभी जीजा थे।
1: ताऊ भी एथेनॉल को लेके फूफा ही कहे जाएंगे।
3: हाँ ताऊ एथेनॉल फूफा हैं।
4: हाँ बिल्कुल है। हम नाराज हैं।
0: मेरे फूफा जो है दुनिया के सबसे अच्छे फूफा हैं।
3: क्या बात कर रहे हैं।
0: कसम से उनका नाम ही अच्छे खां है।
3: अच्छा।
0: सबसे अच्छे हुए।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
7: इनमें लगभग जो है करीब 70 से 80 करोड़ ट्रांजैक्शन होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं। तो मुझे मुझे तो लगता है कि अब इंडस्ट्री के पास आएगा रेवेन्यू, वो इन्वेस्ट कर पाएंगे, ज़्यादा और छोटे शहरों में जा पाएंगे, ज़्यादा मर्चेंट्स को ये कर पाएंगे, डिजिटाइज कर पाएंगे। कस्टमर साइड पे भी टीपैप्स को भी पैसा मिल रहा है फाइनली 6 साल बाद, तो हम सब जो है और मार्केटिंग कर पाएंगे और यूज केस ला पाएंगे। सारे बिजनेसमैन दुनिया में यही चाहते हैं ना कि अपना व्यापार बढ़ाएं, अपना बिजनेस बढ़ाएं, तो पेमेंट कंपनियां अलग क्यों होंगी, पैसे आएंगे तभी तो बढ़ेंगे।
8: ये बहुत ही एक पॉजिटिव स्टेप है इंडिया के लिए, बिकॉज देखिए इसी वर्ष यूपीआई के 10 साल हो गए, और यूपीआई की वजह से डिजिटल पेमेंट्स इंडिया में बहुत स्केल हो गया है, सभी लोग यूज करने लग गए हैं। बट अब इसका जो स्केल इतना हो गया है, इसका जो कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बैंक्स और पेमेंट कंपनी सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं। तो जो ये डायरेक्शन आया है ये पेमेंट्स इंडस्ट्री के लिए, बैंक्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव है, और जो आम इंडियन है, जो इंडियन ग्राहक है, उसके लिए बिल्कुल भी न्यूट्रल है, कोई चेंज नहीं है। बिकॉज जितनी भी पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति टू व्यक्ति जो ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे मान लीजिए मैंने अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में किसी को पेमेंट की है, उस पर कोई चार्ज नहीं है।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

शुल्क के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी का मोर्चा, कहा नियमों को वापस ले सरकार। वित्त मंत्री का जवाब, फैसले के पीछे कोई विदेशी दबाव नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा 2014 के बाद से भारत में नियम कानून और शासन दोनों ही अच्छे हैं। कल से बीजेपी की सेवा संकल्प अभियान। गोरखपुर में सीएम योगी की चुनावी हुंकार, कहा पहले एसपी और कांग्रेस सरकार में अपराध और डर, आज यूपी दंगा और कर्फ्यू मुक्त। बोले 19 सितंबर से 1,00,000 नई नौकरी की शुरुआत। सरकारी कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, कैबिनेट ने अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रति माह किया, 51,00,000 लोगों को फायदा। कन्नड़ फिल्मों के दमदार अभिनेता अनंत नाग को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई, सेंसर बोर्ड की नई टीम के लिए भी 18 सदस्यों का ऐलान।

2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट्स पर शुल्क के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी का मोर्चा, कहा नियम वापस ले सरकार। राहुल गांधी के बयान पर वित्त मंत्रालय की ओर से जवाब, फैसले के पीछे कोई विदेशी दबाव नहीं है। सरकारी कर्मचारियों का सरकार का बड़ा तोहफा, कैबिनेट ने अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रतिमाह कर दिया, 51 लाख लोगों को फायदा। मुंबई में पीएम मोदी के दोस्त असगर अली के जमीन विवाद मामले में बीजेपी विधायक नरेंद्र मलिक का बयान, मैंने डील रद्द की लेकिन प्रॉपर्टी मेरविन फर्नांडिस को मिलेगी, वोरा को नहीं। नागपुर में सीजेपी का आदिवासी स्कूल ठीक करो अभियान, आज दीप के जाएंगे गढ़चिरौली के स्कूल, बोले 2 लाख 2 साल के भीतर 590 बच्चों की मौत हुई है। गणेशोत्सव के तीसरे दिन लालबाग के राजा के दरबार में पहुंचे भक्त, बापा दर्शन और चरण स्पर्श के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं लोग। लालबाग के राजा दरबार में क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने भी हाजिरी लगाई, पत्नी संग आशीर्वाद लिया, सुख समृद्धि की कामना। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी लालबाग चौराजा के दर्शन किए, मत्था टेका, आशीर्वाद लिया। अकोला में 97 साल पुराने मारवाड़ी प्रेम गणपति का भव्य दरबार, 15 फीट की गणेश प्रतिमा विराजमान, लकड़ी के महल की थीम पर तैयार किया गया है पंडाल। पंडाल में भक्तों को भगवान गणेश के जन्म से लेकर अष्ट विनायक के दर्शनों तक की कथा की झलक मिल रही है, दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मुंबई के वाशी में भी अनोखे स्वरूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं भगवान गणेश, सौंफ सुपारी और इलायची से बनाई गई गणेश जी की आकर्षक मूर्ति। पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज रोड पर स्थित गणेश प्रतिमा ने खींचा सबका ध्यान, 21,000 पानीपुरी शेल से बनाई गई है बप्पा की प्रतिमा। सूरत के नानपुरा में अनोखी गणपति पंडाल चर्चाओं का विषय बन गया है, जलमग्न द्वारिका की थीम पर बनाया गया है भव्य गणेश पंडाल। मुंबई में सोहेल खान के घर गणपति उत्सव शामिल हुए कई सितारे, विसर्जन के दौरान जमकर डांस किया। गणपति उत्सव में हेलेन बहन अर्पिता का परिवार और अरबाज खान अपने बेटे के साथ नजर आए, सभी ने गणपति से सुख समृद्धि की कामना की। सचिन तेंदुलकर ने भी अपने घर पर ही मूर्ति विसर्जन किया, बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी साथ थे। पूरे विधि विधान के साथ सचिन तेंदुलकर ने गणपति की आराधना की, पूजा पाठ में उनके पूरे परिवार के साथ रिश्तेदार भी शामिल हुए। मुंबई में सुनीता आहूजा ने भी किया गणपति विसर्जन, एक्टर गोविंदा और उनके बेटे भी इसमें शामिल हुए। अंबानी परिवार ने भी किया मूर्ति विसर्जन, बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद, बप्पा की सवारी के साथ चलते नजर आए अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट। टीवी एक्टर गुरमीत ने भी देवीना के साथ किया गणेश प्रतिमा का विसर्जन, बप्पा से अगले बरस आने की प्रार्थना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। दिशा सालियान की मौत मिस्ट्री सुलझाने से पहले उस पर सियासी घमासान जबरदस्त तरीके से तेज हुआ है। महायुति के आरोपों के बाद आखिरकार शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना है ही नहीं, लेकिन मुझे बदनाम करने के लिए जो सियासी अभियान चलाया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि सीबीआई की जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा।

0: दिशा सालियान की मौत मिस्ट्री पर सियासी घमासान जारी है। दिशा के पिता सतीश सालियान तत्कालीन उद्धव सरकार और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद से महायुति सरकार भी आदित्य ठाकरे पर निशाना साध रही है। लेकिन आदित्य ठाकरे ने आखिरकार दिशा की मौत मिस्ट्री मामले में अपने ऊपर लगाए जा रहे गंभीर आरोपों पर सोशल मीडिया पर खुलकर अपना पक्ष रखा है। आदित्य ने लिखा, मैं दिशा सालियान से कभी नहीं मिला और न ही उन्हें जानता हूँ। पिछले 6 सालों से कुछ लोग जानबूझकर और बिना किसी सबूत के इस दुखद मामले से मेरा नाम जोड़कर मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बदनाम करने का ये अभियान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जोरदार टीवी डिबेट और मीडिया ट्रायल से सच्चाई नहीं बदलती। इस केस की जांच दोबारा आगे बढ़ने दें।
1: इसके पहले उन्होंने और एक झूठा डिफेंस लिया था कि जिस दिन दिशा की डेथ हुई उस दिन मैं तो मुंबई में नहीं था, मैं डोंबिवली में था, मेरे नाना जी की डेथ हुई थी। वो भी झूठा निकला क्योंकि दिशा का डेथ हुआ 8 जून को, उनके नाना जी 14 जून तक जिंदा थे। तो ये हैबिचुअल झूठ बोलने वाले लोगों को बेवकूफ समझने वाले, लोगों को गुमराह करने वाले ऐसे लोग हैं। अब रहा विषय, उन्होंने लिया है ऑब्जेक्शन मीडिया ट्रायल का। बिल्कुल सही बात है, कोई अगर जनरल केस है तो उसमें मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये केस ऐसा है, ये मीडिया ट्रायल के बगैर केस चल ही नहीं सकता है। मीडिया ट्रायल मतलब ऐसा नहीं कि मीडिया ही इनको दोषी ठहरा रहा है, लेकिन मीडिया में डिस्कशन जो हो रहा है, सच बाहर आ रहा है, उसी के वजह से एक गरीब पिता आज इनको टक्कर दे पा रहा है। और मैं वकील होने के नाते कह रहा हूं, मीडिया के रिपोर्ट थे जिसके वजह से कई इनके झूठ पकड़े गए, इनका सारा 420 बाहर आया।
0: लेकिन महायुति सरकार कह रही है कि जांच एजेंसियां सच्चाई का पता लगा रही हैं, इसमें सियासत की कोई जगह नहीं है।
2: देखिए, 6-8 साल पहले का ये मामला है और तब से लेकर जो मामला सामने आया है उसके ऊपर पीड़ित पिता ने न्यायिक लड़ाई लड़ी है। एक लड़की की जान गई और उसके पिता की कोई उसके ऊपर मांग है, कुछ कहना है, उस आधार पर न्यायालय ने आदेश दिए है, उस आधार पर इंक्वायरी हो रही है। ये इंक्वायरी का रिपोर्ट न्यायालय के पास जाएगा और इसके लिए इसमें इस न्यायिक प्रक्रिया में मैं या कोई कुछ क्या बोले, न्यायिक प्रक्रिया कानूनन तरीके से चल रही है और वो होनी चाहिए।
3: उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए, उसके पिता को न्याय मिलना चाहिए और उसकी लड़की, उनकी उस लड़की और उसके पिता के बारे में सोचे बगैर अगर आप अपने आका को बचाने के लिए तरह तरह की थ्योरी क्रिएट कर रहे हैं, मतलब बहुत ही संवेदनहीन हो गए। मतलब आप इस देश के नौजवानों को मरने के लिए छोड़ देना चाहते हैं। जहां तक सीबीआई के एफआईआर की बात है, उसमें जिन लोगों के नाम आए हैं सभी संदेहास्पद पृष्ठभूमि के लोग हैं, चाहे दिलीप मौर्य हो या फिर आपका वो सचिन वाजे हो या फिर एक एक नाम आता है पंचोली का नाम आता है। इन सबका बैकग्राउंड बहुत साफ सुथरा नहीं है। हमारे मन में सवाल ये उठा कि आदित्य ठाकरे जो इनके साथ एक सह अभियुक्त के तौर पर नामित किए गए हैं, उनके पास और कुछ काम धाम नहीं था।
0: 11 सितंबर को सीबीआई ने इस केस में एफआईआर दर्ज की है। दिशा के पिता सतीश सालियन की शिकायत में शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे, एक्टर डिनो मोरिया, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, रोहन रॉय के नाम शामिल है। आज तक के पास सीबीआई की एफआईआर की कॉपी भी मौजूद है। सतीश सालियान ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे अनिल देशमुख पर भी सच छिपाने का आरोप लगाया है। इसके साथ जांच में शामिल कई पुलिस अफसरों और पूर्व अधिकारियों की भूमिका की जांच की भी जरूरत बताई गई है, जिसमें सचिन वाजे, परमवीर सिंह और डीसीपी विशाल ठाकुर का नाम है। पिछले शुक्रवार को दिशा के पिता सतीश सालियान ने सीबीआई अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी।
4: मैं इम्पोर्टेंट जो दोषी है, जो आदित्य ठाकरे, दिनू मौर्या, सूरज पंचोली, उसका सब इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करने है, ऐसा कंप्लेंट दिया है मैंने।
0: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि वो एफआईआर दर्ज करके सतीश सालियान के आरोपों की जांच करे और अगर आरोपों में कोई सच्चाई या तथ्य पाए जाते हैं तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करे। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
5: यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लेकर दिल्ली से महाराष्ट्र तक राजनीतिक घमासान तेज हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह के 2029 तक एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने वाले बयान के बाद विपक्ष अब हमलावर है। राज्य सरकार इसे जल्द लागू करने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ विरोध के सुर भी तीखे हो चुके हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने गणेश चतुर्थी से ठीक पहले 13 सितंबर को मुंबई में ऐलान किया था कि 2029 से पहले बीजेपी और एनडीए शासित 21 राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा।
6: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
0: अब महाराष्ट्र समेत पूरे देश में विपक्ष यूसीसी के खिलाफ एकजुट होकर सरकार पर निशाना साध रहा है। अमित शाह के ऐलान के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कह दिया कि यूसीसी मुसलमानों के खिलाफ नया हथियार बनाने की तैयारी हो रही है।
7: यह कानून इसलिए बनाया गया ताकि जो लोग हिंदू नहीं है उनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू डिवोर्स एक्ट और इन तमाम ऐसे कानून का निफाद उन गैर हिंदू कौमों पर किया जाए। हम इसीलिए इस कानून की मुखालिफत करते हैं क्योंकि ये कानून भारत के आईन के खिलाफ है। और मुझे ये कहना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में करीब 21% के करीब आदिवासी हैं, उनको उससे मुस्तस्ना कर दिया गया, एग्जम किया गया और मध्य प्रदेश के 9% मुसलमानों पर इस तरह के काले कानून को नाफिद किया गया है।
0: वही महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि कमेटी की रिपोर्ट आते ही राज्य में यूसीसी की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। बीजेपी कह रही है कि जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं वो असल में संविधान की मूल भावना के खिलाफ काम कर रहे हैं।
8: ये समानता का विरोध करना यानी मुझे लगता है संविधान का विरोध करना है। समान न्याय, समान संधि और समानता, यही तो मूलभूत, अन्य बातों की तरफ संविधान की बात है। ये संविधानिक प्रक्रिया से ला रहा है, सब समान स्तर पर हो यह बात कहने का विरोध करने वाले तुष्टिकरण कर रहे हैं, वो हमें तुष्टिकरण का आरोप क्या लगा सकते हैं।
0: लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह कानून देश की विविधता को खत्म करने की एक कोशिश है।
9: इसमें यूनिफॉर्मिटी और इक्वालिटी कुछ है ही नहीं, ये तो बीजेपी एक धांधली से, दादागिरी से, असंवैधानिक तरीके से मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है। हमारे जो हकूक है, हमारे जो राइट है, उसको सबको खत्म करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। ये टोटल वायलेशन है आर्टिकल 25 का, आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 24-28 का, प्योर वायलेशन, ग्रॉस वायलेशन, जो फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस रिलीजन की इजाजत देता है। इक्वालिटी की बात करता है तो इक्वालिटी नहीं। अभी देखो उन्होंने 4 राज्य के अंदर यूसीसी को लागू किया, अब चारों में देख लो क्या यूनिफॉर्मिटी है। ट्राइबल्स को तो आपने अलग कर दिया, ट्राइबल्स को तो आपने लिया ही नहीं उसके अंदर, तो किस तरह से यूनिफॉर्मिटी आई उसके अंदर। देखिए भारत देश जो है ना मल्टी कल्चरल देश है।
10: छात्रों के मूवमेंट से डरी हुई सरकार के पास अब इसी तरह का कार्ड खेलने के अलावा और कोई चारा नहीं, और चुनाव में गिराने के लिए क्या है, नौकरियां वो दे नहीं पाए, स्टूडेंट्स जो है वो परेशान है, प्रोटेस्ट कर रहा है पूरे देश में, जेन जी से लेकर जेन अल्फा तक। तो सरकार के पास मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यही सब है राज्यों में। ये भारत जो है वो विविधताओं का देश है, भारत जो है वो तमाम अलग अलग तरह के फूलों से मिलके बना। आप सब कुछ एक रंग का कर देना चाहते हैं, सब कुछ एक जैसा कर देना चाहते हैं, डाइवर्सिटी कहाँ चली जाएगी। तो गृहमंत्री जी को ये समझना पड़ेगा कि ये देश बहुत अलग अलग भाषाओं, अलग अलग बोलियों, अलग अलग कल्चर, अलग अलग तहजीब, अलग अलग धर्मों, सबसे मिल करके भारत बनता है। आप सब कुछ एक कर देना चाहते हैं, एक रंग का, तो हम तिरंगे के साथ खड़े हैं, हम तिरंगे वाले लोग हैं।
0: फिलहाल यूसीसी की मौजूदा स्थिति यह है कि ये उत्तराखंड और गोवा में भी अभी लागू है और मध्य प्रदेश, गुजरात और असम में विधानसभा से पास हो गया लेकिन अभी लागू नहीं है। अमित शाह ने कह दिया है कि एनडीए और बीजेपी शासित 21 राज्यों में साल 2029 तक यूसीसी हर हाल में लागू हो जाएगा। यूसीसी को लेकर छिड़ी ये बहस अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहने वाली, आने वाले दिनों में ये मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक एक बड़े सियासी संग्राम का रूप ले सकता है।
11: महाराष्ट्र से उठी ये सियासी आज अब सीधे राजधानी तक पहुंचने वाली है। एक तरफ जहां बीजेपी इसे समानता और संविधान का मुद्दा बनाकर आर पार के मूड में है, तो वही विपक्ष इसे देश की विविधता पर हमला बताकर मोर्चेबंदी में जुट गया है। अब देखना ये होगा कि ये जुबानी जंग और कितनी तीखी होती है, जिस पर देश की नजरें टिकी रहेंगी। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन के दोस्त असगर अली वोहरा को जमीन के विवाद का समाधान अब नहीं मिल पाया। अभी तक उन्होंने मीरा भयंदर में अपनी एक जमीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से शिकायत की थी, जिसके बाद विवादित जमीन से बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता ने कब्जा छोड़ते हुए एफआईआर वापस ले ली। अब डेवलपर ने कह दिया है कि वो कानूनी लड़ाई को जारी रखेंगे और वोहरा को जमीन नहीं देंगे।
0: पीएम मोदी के बचपन के दोस्त असगर अली वोहरा को अपनी जमीन लंबे संघर्ष के बाद वापस मिलती दिख रही है, लेकिन ये जमीन विवाद बेहद पेचीदा है, क्योंकि स्वयं डेवलपर्स का कहना है कि वो इस साल जनवरी में वोहरा के खिलाफ केस जीत चुके हैं। इधर बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता ने साफ किया है कि उन्होंने वोहरा के खिलाफ अपनी एफआईआर वापस ले ली है और नरेंद्र मेहता की 7-11 कंपनी और मेरविन फर्नांडिस के बीच हुए लेनदेन को रद्द कर दिया है, इसलिए प्रॉपर्टी मेरविन फर्नांडिस को वापस मिलेगी, वोहरा को नहीं। ठाणे की मीरा भयंदर सीट से बीजेपी विधायक मेहता ने कहा कि उन्होंने कोर्ट के उस आदेश के बाद प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसमें प्लॉट का 50% हिस्सा मेरविन फर्नांडिस के पक्ष में दिया गया था।
12: असगर अली वोहरा नाम के एक व्यक्ति ने भयंदर में एक जमीन खरीदी और वो जमीन का एरिया था 28 गुंटे, यानी कि 2800 मीटर 1989 में उन्होंने खरीदी। सेम उन्हीं लैंडलॉर्ड ने वो जमीन दोबारा 2011 में एक स्वयं बिल्डर को बेच दिया एंड स्वयं बिल्डर ने उस जगह पे कब्जा लेके बैठा था। ये जो वोहरा थे ये कोर्ट गए 2011 में कि मेरी जमीन पे कोई इलीगली पोजीशन लेके बैठे हैं, इन दैट में ये कोर्ट केस चल रहा था। मीनवाइल इसी प्रॉपर्टी के अंदर एक फैमिली का नाम नहीं था, क्योंकि वो छोटा था, उनके डैडी एक्सपायर हो चुके थे, तो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में गए कि इस प्रॉपर्टी में 50% शेयर हमारी फैमिली का है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कहा हम नहीं मानेंगे, आप कोर्ट जाओ।
13: क्या नाम?
12: उनका नाम था मैरविन जोसेफ फर्नांडिस करके होगा, फर्नांडिस। मैरविन वेंट टू द कोर्ट इन 2014 और फिर कोर्ट ने उसके अंदर ऑर्डर किया कि इस प्रॉपर्टी के अंदर 1/2 मतलब 50% शेयर जो है मैरविन फर्नांडिस का है और उसके कोर्ट ने ऑर्डर किया।
0: उधर डेवलपर का कहना है कि बीजेपी विधायक के डील रद्द करने के बाद भी वो पीएम के स्कूल के साथी को जमीन नहीं देंगे।
14: देखिए, हम लोग ने मामला तो कोई नहीं किया है, उसमें 6A 6B का जो है वो इररेस्पेक्टिव, हमारा कुछ लेना देना नहीं, वो रेवेन्यू का मैटर है। हमने तो कोई एप्लीकेशन करी नहीं, 7-11 ने जो एप्लीकेशन करी थी उनके पास भी कोर्ट का शायद वो जो हायरशिप का ऑर्डर आने के बाद में जो उन्होंने कन्विंस डीड करी उसके बेसिस पे एप्लीकेशन करी थी। वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, वो जो ऑलरेडी कलेक्टर ऑफिस में जब पार्टीशन हुआ था उन्होंने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने और सबने एक्सेप्ट किया।
0: दरअसल असगर अली वोहरा ने गुजरात के वडनगर में पीएन स्कूल में पीएम मोदी के साथ पढ़ाई की थी। उन्होंने 8 सितंबर को प्रधानमंत्री से मिलकर इस जमीन विवाद में दखल देने की गुजारिश की थी। असगर अली वोहरा ने आरोप लगाया था कि साल 1989 में उन्होंने अपने भाई के साथ भयंदर ईस्ट के नवघर इलाके की करीब 2810 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदी थी, लेकिन 2011 में स्वयं बिल्डर्स और बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता की कंपनी 7-11 कंस्ट्रक्शन ने प्लॉट पर कब्जा लिया था। पीएम के दोस्त का मामला सामने आने के बाद ऐसे कई किसान और जमीन मालिक सामने आए हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता ने उनकी जमीन भी हड़प ली है।
15: नहीं सर, अभी तक कोई जमीन हमारे से कोई खरीदी की नहीं गई है, ठीक है, नहीं कहीं से। अभी 2021 में कुछ उन्होंने मामा लोगों ने मेरे खरीदी हुई है, हमें लोग हमारा कोई हिस्सा खरीदा हुआ नहीं है, ठीक है। तभी भी उन्होंने जो नगर रचने का विभाग जो है वो अधिकारी से मैं जाके मिला कि ऐसा ऐसा परमिशन दिया हुआ, तो मैं बोला मेरे जवाब कोई अविभाजित है, वो कभी तक बेची नहीं है, फिर भी वहाँ पे उन्होंने परमिशन दी गई है, तो मैंने
16: एफआईआर
15: डालने की बहुत कोशिश की, बहुत बार कोशिश की, मेरा रोड कनेक्ट के चौकी में बहुत बार गया मैं, कोई सुनने वाला नहीं है।
17: मुझे नरेंद्र मेहता साहब ने उनके ऑफिस में 6 जनवरी 2014 को बुलाया था और
13: वो कह रहे थे कि उन्होंने चार हिस्से पहले ही लिए, पांचवा हिस्सा जो मेरा भाई राजीव है उसका उनको लेना था, तो मैंने कहा हमको पैसे की जरूरत नहीं तो हम बेचना नहीं चाहते। उसके ये बात हुई 6 जनवरी को, 6 फरवरी को उन्होंने अपना राजकीय वजन इस्तेमाल करके इन्होंने नगर पालिका से एक लेटर लिया कि उनको TDR मिलेगा, FSI मिलेगा, मुबदला मिलेगा। वो सही से ही गलत था, क्योंकि आज के दिन भी वो जमीन कानूनी तौर पर रकवी फैमिली की है। उसके बाद में ये इसलिए किया गया क्योंकि वहां से उस जमीन के नीचे से एक भुयारी गटर बनाया जा रहा था।
0: पीएम मोदी से असगर अली की मुलाकात के बाद सीएम फडणवीस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शिखर परदेशी ने मंत्रालय में एक मीटिंग बुलाई थी। इस दौरान विवादित जमीन के दोनों पक्ष शामिल हुए थे, जिसके बाद मीरा भयंदर की जिस जमीन को लेकर उनका विवाद चल रहा था उस पर बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता की कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कब्जा छोड़ने और कंस्ट्रक्शन की मंजूरी भी सरेंडर करने की बात कही है। 81 साल के पीएम मोदी के दोस्त असगर अली वोहरा के मामले के बाद उन कई जमीन मालिकों के लिए उम्मीद जगी है जो बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता से जुड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी 7-11 के खिलाफ लड़ रहे हैं।
17: पीएम मोदी के स्कूल मित्र असगर अली वोहरा का जो लैंड डिस्प्यूट है उसमें 2 डेवलपर्स सामने आए थे, जिसमें से एक बीजेपी MLA नरेंद्र मेहता थे, जिन्होंने अपना ट्रांजैक्शन कैंसिल तो किया है, लेकिन उन्होंने क्योंकि जमीन मैरविन फर्नांडिस नाम के व्यक्ति से खरीदी थी तो ये जमीन उनको वापस जाएगी। जो दूसरे डेवलपर्स हैं उनका ये कहना है कि कोर्ट में जनवरी में इस साल उन्होंने वोरा के खिलाफ केस जीता है तो वो फिर जमीन वापस क्यों दे। यानी कि मामला जितना दिख रहा था उससे ज्यादा पेचीदा है और आने वाले समय में इस मामले में क्या होता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। मीरा रोड में प्रवीण नलावड़े के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
5: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
18: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं उनके ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं और सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे को साधने के लिए। क्या फर्क पड़ रहा है यूसीसी से बताओ मुझे, कि निकाह नहीं होगा क्या हमारा? निकाह ही तो होगा, फेरे नहीं होंगे क्या? फेरे ही तो होंगे, क्या तमाशा बना रखा है? कुछ भी नहीं है।
1: छात्रों के मूवमेंट से डरी हुई सरकार के पास अब इसी तरह का कार्ड खेलने के अलावा और कोई चारा नहीं। और चुनाव में गिराने के लिए क्या है? नौकरियां वो दे नहीं पाए, स्टूडेंट्स जो है वो परेशान है, प्रोटेस्ट कर रहा है पूरे देश में, जेंजी से लेके जेन अल्फा तक। तो सरकार के पास मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यही सब है राज्यों में। ये भारत जो है वो विविधताओं का देश है, भारत जो है वो तमाम अलग अलग तरह के फूलों से मिलके बना। आप सब कुछ एक रंग का कर देना चाहते हैं, सब कुछ एक जैसा कर देना चाहते हैं, डाइवर्सिटी कहां चली जाएगी? तो गृहमंत्री जी को यह समझना पड़ेगा कि ये देश बहुत अलग अलग भाषाओं, अलग अलग बोलियों, अलग अलग कल्चर, अलग अलग तहजीब, अलग अलग धर्मों सबसे मिलकर के भारत बनता है। आप सब कुछ एक कर देना चाहते हैं, एक रंग का, तो हम तिरंगे के साथ खड़े हैं, हम तिरंगे वाले लोग हैं।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: अब बात करेंगे दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स की, क्योंकि 2024 की घोषणा कर दी गई है। और आपको यह भी बता दें कि कन्नड़ एक्टर अनंत नाग को दिया जाएगा ये अवार्ड। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार चयन समिति की सिफारिश पर भारत सरकार की ओर से इसका ऐलान किया गया है। उनकी इस यात्रा ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। अनंत नाग ने आपको बता दें कि 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है, 250 से ज्यादा कन्नड़ फिल्में हैं जिसमें कई हिंदी फिल्में हैं, तेलुगु, तमिल, मराठी, मलयालम और अंग्रेजी फिल्में भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने थिएटर, समानांतर सिनेमा और टेलीविजन कार्यक्रमों में भी काम किया है। उन्होंने लोकप्रिय टेलीविजन सीरीज मालगुड़ी डेज में भी अभिनय किया, जो आर के नारायण की कहानियों पर आधारित थी। अनंत नाग ने ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF चैप्टर 1 में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक आनंद इंगलागी की महत्वपूर्ण किरदार उसमें निभाया था। अनंत नाग जनता दल के सदस्य रहे हैं। उन्होंने बेंगलोर के बसवनगुड़ी निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार विधायक वो चुने गए और 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी साउथ के विजेता भी वो रहे हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन्हें बधाई दी है। ये पुरस्कार 22 सितंबर 2026 को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिए जाएंगे। और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: भैया मेरे राखी के बंधन को नी 100 रुपए लेंगे तुमसे अभी हम,
1: लो मिठाई भी खाओ।
2: क्योंकि फूफा भी कभी जी जाते।
0: ताऊ भी एथेनॉल को लेके फूफा ही कहे जाएंगे।
1: हाँ ताऊ एथेनॉल फूफा हैं।
3: हाँ बिल्कुल है, हम नाराज हैं।
0: मेरे फूफा जो है दुनिया के सबसे अच्छे फूफा है।
1: क्या बात कर रहे हैं,
0: कसम से उनका नाम ही अच्छे खां है।
1: अच्छा।
0: सबसे अच्छे हुए।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: पीएम मोदी से मुलाकात के बाद दोस्त की परेशानी खत्म। बचपन के दोस्त असगर अली को वापस मिली जमीन। बीजेपी विधायक की कंपनी ने विवादित जमीन पर कब्जा छोड़ा। पीएम मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो यारों के यार है। पीएम मोदी ने अपने स्कूल के दोस्त असगर अली वोरा की मदद करके पुरानी दोस्ती की एक मिसाल कायम की है। महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर की जमीन पर अपने हक के लिए कई सालों से विभागों के चक्कर काट रहे असगर अली वोरा ने पीएम मोदी से मुलाकात कर अपनी परेशानी बताई, जिसके कुछ दिनों बाद ही पुराना जमीन विवाद सुलझ गया है। दरअसल असगर अली वोरा ने आरोप लगाया था 1989 में उन्होंने अपने भाई के साथ भाईंदर ईस्ट के नवघर इलाके की करीब 2810 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदी थी, लेकिन 2011 में स्वयं बिल्डर्स और मेहता की 711 कंस्ट्रक्शन ने प्लॉट पर कब्जा कर लिया था।
1: आप देख सकते हैं कि ये प्लॉट जो कि ओल्ड सर्वे नंबर 240 न्यू सर्वे नंबर 185 हिस्सा नंबर 6 बताया जाता है, जो कि नवगर विलेज यानी कि डिस्ट्रिक्ट थाने मीरा भाईंदर इस इलाके में लगता है। टोटल इस प्लॉट की साइज बताई जा रही है 2810 स्क्वायर मीटर। अब इस प्लॉट के बारे में असगर अली वोरा ने बताया है कि 1989 में उन्होंने और उनके स्वर्गीय भाई ने ये प्लॉट खरीदा था, लेकिन 2011 में इस प्लॉट पे दो डेवलपर्स के नाम चढ़ गए, जो है स्वयं बिल्डर्स और 711 कंस्ट्रक्शन।
0: पीएम मोदी से असगर अली वोरा की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र का सरकारी अमला हरकत में आया और मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शिखर परदेशी ने मंत्रालय में एक मीटिंग की। इस दौरान विवादित जमीन के दोनों पक्ष शामिल हुए और मीरा भाईंदर की जिस जमीन को लेकर उनका विवाद चल रहा था उस पर बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता की कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कब्जा छोड़ने और कंस्ट्रक्शन की मंजूरी भी सरेंडर करने की बात कही। इसके अलावा विधायक ने कहा कि वो अपनी शिकायत वापस ले रहे हैं क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच समझौता हो गया है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

आज प्रधानमंत्री मोदी का 76वां जन्मदिन। बीजेपी एक महीने तक चलाएगी सेवा संकल्प अभियान। अलग अलग शहरों में पार्टी के दिग्गज कार्यक्रमों में होंगे शामिल। जलेंगे लाखों दिए। 2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट्स पर शुल्क के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी का मोर्चा। कहा नियम वापस ले सरकार, वित्त मंत्री का जवाब। फैसले के पीछे कोई विदेशी दबाव नहीं। गोरखपुर में सीएम योगी की चुनावी हुंकार। कहा पहले एसपी और कांग्रेस सरकार में अपराध और डर। आज यूपी दंगा और कर्फ्यू मुक्त। बोले 19 सितंबर से 1,00,000 नई नौकरियों की शुरुआत। सरकारी कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा। कैबिनेट ने अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रतिमाह किया। 51,00,000 लोगों को फायदा। और कन्नड़ फिल्मों के दमदार अभिनेता अनंतनाग को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। सेंसर बोर्ड की नई टीम के लिए 18 सदस्यों का ऐलान।

2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट्स पर शुल्क के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी का मोर्चा, कहा नियम वापस ले सरकार। राहुल गांधी के बयान पर वित्त मंत्रालय की ओर से जवाब, फैसले के पीछे कोई विदेशी दबाव नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा 2014 के बाद से भारत में नियम कानून और शासन दोनों ही अच्छे। राजनाथ सिंह आज सीएम योगी के साथ सेवा संकल्प बाइक यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी, काशी से वडनगर तक निकाली जाएगी यात्रा। सेवा संकल्प बाइक यात्रा 10 राज्यों के 193 जिलों और 1159 गांवों से गुजरेगी, करीब 1000 युवा इसमें शामिल होंगे। गोरखपुर में सीएम योगी की चुनावी हुंकार, कहा पहले एसपी और कांग्रेस सरकार में अपराध और डर, आज यूपी दंगा और कर्फ्यू मुक्त। सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान, 19 सितंबर से 1,00,000 नई नौकरियों की शुरुआत। सरकारी कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, कैबिनेट ने अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रतिमाह किया, 51,00,000 लोगों को फायदा। कन्नड़ फिल्मों के दमदार अभिनेता अनंत नाग को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड, प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। सेंसर बोर्ड की नई टीम के लिए 18 सदस्यों का ऐलान। धर्मशाला पहुंचे अनुराग ठाकुर ने किशाऊ परियोजना को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, बोले 6 दशक तक क्यों लटका हुआ था मामला। इंदौर में 19 सितंबर को राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम में 12,000 वर्ग मीटर जमीन 17 से 19 सितंबर तक दी, सुरक्षा और अन्य विभागों की अनुमति समेत 5 शर्तें लागू। छात्रों की गूंज के लिए कांग्रेस ने 10,08,000 रुपए जमा कर दिए। नेहरू स्टेडियम में अनुमति नहीं मिलने के बाद बदला स्थल, कांग्रेस ने प्रशासन पर देरी के आरोप लगाए, विजय वर्गीय ने आरोपों को खारिज किया। दिल्ली में 10,000 छात्रों के लिए हॉस्टल बनाएगी सरकार, सीएम रेखा गुप्ता बोली अलग अलग विभागों से होगा निर्माण, जरूरत पड़ी तो जमीन लेकर भी बनेंगे छात्रावास। सत्यनिकेतन हादसे के बाद छात्रों के सुरक्षित आवास पर दिल्ली सरकार का फैसला, कॉलेजेस के सर्वे को चिन्हित किया जाएगा, पीपीपी मॉडल से भी हॉस्टल्स बनाने की तैयारियां। मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त असगर अली के जमीन विवाद मामले में बीजेपी विधायक नरेंद्र मलिक का बयान, मैंने डील रद्द की लेकिन प्रॉपर्टी में फोनरिस को मिलेगी, वोहरा को नहीं। नागपुर में सीजेपी का आदिवासी स्कूल ठीक करो अभियान, आज दीप के जाएंगे गढ़चिरौली के स्कूल, बोले 2 साल में 590 बच्चों की मौत हुई है। यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, 6 साल में लंबित विवाद पर निर्णायक बहस हुई, याचिकाकर्ताओं के वकील राकेश मिश्रा ने सुनवाई की पूरी जानकारी दी। उत्तराखंड में फर्जी स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र मामले में 4 प्रमाण पत्र निरस्त, 4 एमबीबीएस दाखिले रद्द, 5 लोगों पर एफआईआर, पटवारी जगदीश राठौर ने अधिकारियों की जवाबदेही पर उठाए हैं सवाल। बिहार पर्यटन विभाग ने पितृपक्ष से पहले ई पिंडदान का पैकेज किया है शुरू, मगध आयुक्त ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा की पुष्टि की है। गया में ई पिंडदान और ऑनलाइन पिंडदान की सुविधा शुरू होने पर पंडा समाज का विरोध, विष्णुपद मंदिर परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा पिंडदान के लिए श्रद्धालुओं का स्वयं गया आकर अनुष्ठान करना जरूरी है। आरा के बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंची अक्षरा सिंह, राहत सामग्री बांटने के साथ ही सुनी लोगों की पीड़ा। मुंगेर के बाद राहत शिविर में पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पीड़ितों से मिले और अपने हाथों से परोसा खाना, चौहान बोले नुकसान का आकलन कर केंद्र करेगा पूरी मदद। फिरोजपुर पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, पंजाब सरकार पर निशाना साधा, बोले नशा खत्म करने के वादे पूरे नहीं हुए हैं। हरियाणा में 1 अक्टूबर से धान की खरीद, करनाल मंडी में 1509 किस्म की आवक तेज हुई, किसानों को 3,500 से 4,100 रुपए प्रति क्विंटल तक भाव। खरीद जल्द शुरू करने की मांग पर किसान संगठन नाराज, करनाल में किसान नेता रत्नमान ने फैसले पर जताया विरोध। फरीदकोट में शिरोमणि अकाली दल का बिजली संकट को लेकर प्रदर्शन, एसडीएम दफ्तर पर पंजाब सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, किसानों को पर्याप्त बिजली देने की मांग। शिरोमणि अकाली दल का दावा, अकाली बीजेपी सरकार के दौरान पंजाब बिजली सरप्लस राज्य बना, बढ़ती मांग के मुताबिक नई क्षमता नहीं जुड़ी। एक्यूआईएस का विचारधारा से जुड़े मॉड्यूल पर यूपी एटीएस की कार्रवाई, कोयम्बटूर से मकसूद अली को गिरफ्तार किया गया, पहले पकड़े गए मोहम्मद नबील से पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर गिरफ्तारी। इंदौर में गणेश जुलूस के दौरान नाबालिग की हत्या, आरोपी गिरफ्तार किया गया। झांसी में डंपर से पशुओं से भरे हुए ट्रक की जोरदार टक्कर हुई, चालक और 4 पशुओं की मौत की खबर, ट्रक में सवार 5 लोग घायल हुए हैं। आंध्र प्रदेश के विजयनगर में शादीशुदा महिला की हत्या, जंगल में बोरे में मिला था शव, 4 साल के रिश्ते में विवाद के बाद प्रेमी पर हत्या का आरोप, गिरफ्तार किया गया। अजमेर में कार के साइड में लेने के विवाद पर जानलेवा हमला, 2 आरोपी गिरफ्तार। अमेठी के प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक निलंबित किया गया, रसोईया से अश्लील टिप्पणी और अभद्रता के कई आरोप।
कानपुर में विनीत मनोचा हत्याकांड, कोर्ट में शालू विशाल और राजकिशोर की पेशी, कैमरे में मुंह छुपाती हुई नजर आई शालू, पुलिस रिमांड पर सुनवाई टली। महोबा में पत्नी को ले जाने आए ससुरालियों पर तांडव, पति और सास को पीटा गया, वायरल हुआ है मारपीट का वीडियो। बेगूसराय में नहीं थम रहा है महिलाओं का शव मिलने का सिलसिला, 28 साल की अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया, हत्या के बाद शव को फेंकने की आशंकाएं। जयपुर में फैक्ट्री में लगी थी भीषण आग, रोहित पॉली प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में उठा आग का धुआं। अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने वाले फर्जी कॉल सेंटर सिंडिकेट पर ईडी की छापेमारी, पटियाला पुणे चंडीगढ़ के 4 ठिकानों पर सर्च, 3 कॉल सेंटर्स में 220 लोग मिले। मेरठ के कॉलेज के 2 छात्रों में आपस में जबरदस्त मारपीट, 5 लोग हिरासत में लिए गए। गाजियाबाद की पार्श्वनाथ नॉर्थ मेजेस्टिक सोसाइटी के फ्लैट में आग लगी, 30वीं मंजिल पर हुआ था हादसा, दमकल की 3 गाड़ियों ने काबू पाया। दिल्ली के मुखर्जी नगर में पुलिस बूथ से 10 कदम दूर झपट मारी हुई, युवक युवती बाइक पर आए और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। जलंधर शहर के हाइट्स 2 स्मार्ट होम फ्लैट्स में 24 साल की लड़की ने 14वीं मंजिल से कूदकर जान दी, पुलिस बोली परिवार के बयान के मुताबिक डिप्रेशन में थी लड़की। झांसी में बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर नातिन ने की नाना की हत्या, दोनों की गिरफ्तारी। इंदौर में जर्जर मकान गिरने और 3 महिलाओं की मौत हुई, मकान तोड़ने का चल रहा था काम, उसी दौरान यह हादसा हुआ। राजगढ़ में 16 साल के नाबालिग की हत्या का 24 घंटे में खुलासा, लव ट्राइंगल में खूनी वारदात, 2 की गिरफ्तारी। संगरूर में नशे के खिलाफ मुहिम के दौरान 2 पक्षों में विवाद हुआ, सरपंच समेत कई लोगों के घायल होने की खबर। गणेशोत्सव के 3rd दिन लालबाग चौराहा दरबार में भक्तों की कतार, बप्पा दर्शन और चरण स्पर्श के लिए दूर दूर से पंडाल में पहुंचे श्रद्धालु। लालबाग चौराहा दरबार में क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने भी हाजिरी लगाई, पत्नी संगलिया बप्पा का आशीर्वाद, सुख समृद्धि की कामना। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी लालबाग चौराहा के दर्शन किए, मत्था टेका, बप्पा का आशीर्वाद लिया। अकोला में सजाए 90 साल पुराने मारवाड़ी प्रेस गणपति का भव्य दरबार, 15 फीट की गणेश प्रतिमा विराजमान, लकड़ी के महल की थीम पर तैयार किया गया है पंडाल। पंडाल में भक्तों को भगवान गणेश के जन्म से लेकर अष्ट विनायक के दर्शन तक की झलक मिल रही है, दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। मुंबई के वाशिम में भी अनोखे स्वरूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं भगवान गणेश, सौंफ सुपारी और इलायची से बनाई गई गणेश जी की आकर्षक मूर्ति। पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज रोड पर स्थित गणेश प्रतिमा ने खींचा है सबका ध्यान, 21,000 पानीपुरी शेल्स से बनी है बप्पा की प्रतिमा। सूरत के नानुपुरा में अनोखे गणपति पंडाल चर्चाओं में है, जलमग्न द्वारिका की थीम पर बनाया गया है भव्य पंडाल। मुंबई में सोहेल खान के घर गणपति उत्सव शामिल हुए कई सितारे, विसर्जन के दौरान जमकर डांस किया। गणपति उत्सव में हेलेन बहन अर्पिता का परिवार और अब्बास खान भी नजर आए, अपने बेटे के साथ सभी ने गणपति से सुख समृद्धि की कामना की। सचिन तेंदुलकर ने भी अपने घर में किया मूर्ति विसर्जन, बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी साथ नजर आए। पूरे विधि विधान के साथ सचिन ने की गणपति की आराधना, पूजा पाठ में उनके पूरे परिवार के साथ रिश्तेदार भी शामिल हुए। मुंबई में सुनीता आहूजा ने भी किया गणपति विसर्जन, एक्टर गोविंदा और उनके बेटे भी इसमें शामिल हुए।

बप्पा गुरमीत ने भी देवी नाके साथ गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया। बप्पा से अगले बरस आने की प्रार्थना की। उत्तराखंड के औली में भारत अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2026 शुरू। 22वें संस्करण में 1200 जवान ले रहे हैं हिस्सा। 600 भारतीय और अमेरिकी सैनिक भी इसमें शामिल। औली और राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में साथ चल रहा है युद्ध अभ्यास 2026। पर्वतीय और अर्ध पर्वतीय इलाकों में संयुक्त ऑपरेशन पर जोर है। दोनों ही सेनाएं साझा योजना और युद्ध कौशल का करेंगे अभ्यास। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के लिए काशी में विशेष तैयारियां। बुनकरों ने वॉल हैंगिंग पर उकेरी प्रधानमंत्री की मां हीराबेन की तस्वीर। काशी की पारंपरिक उच्चंत कला के जरिए पूरी तरह हाथ से तैयार की गई है वॉल हैंगिंग। इसे बनाने में करीब 1.5 महीने का समय लगा है और लगभग 25,000 रुपए है इसकी कीमत। बिजनौर में मुस्लिम युवक बना सीएम योगी का जबरा फैन। सीने पर मुख्यमंत्री के नाम का बनवाया है परमानेंट टैटू। लिखा नेक्स्ट पीएम योगी जी। 15 अक्टूबर से 2,000 रुपए से ज्यादा के मर्चेंट यूपीआई पेमेंट्स पर 0.4% एमडीआर लगेगा, जिससे अधिकतम सीमा 300 रुपए होगी। अगस्त में करीब 30 लाख करोड़ रुपए के 2,500 करोड़ यूपीआई ट्रांजेक्शन हुए। सभी मर्चेंट कैटेगरी का एवरेज करीब 577 रुपए रहा। यूपीआई पर एमडीआर लगने के बाद कैश की मांग बढ़ने की संभावना से एटीएम नेटवर्क पर दबाव बढ़ने की आशंका। 2018 से 2025 के बीच एटीएम की संख्या में 13% बढ़ी है, जबकि यूपीआई क्यूआर कोड 1500% से ज्यादा बढ़े। एनपीसीआई के नए एमडीआर रूल्स के बाद पेटीएम मोबाइल विक और साथ ही यस बैंक जैसे स्टॉक्स में तेजी देखी गई है। कंपनियों के लिए नए चार्जेस से मर्चेंट बिजनेस से अतिरिक्त कमाई का रास्ता खुलेगा। पंडित की रिपोर्ट के मुताबिक 0 से 3 साल एक्सपीरियंस के वाले फ्रेशर्स इंजीनियर्स के लिए जॉब पाना मुश्किल हो गया है। हर एक जॉब के लिए 10 लगभग उम्मीदवार कतार में है। ऑरेकल की रिपोर्ट में 4 बजे सिस्टम एक्सेस बंद करके 6 बजे टर्मिनेशन मेल भेजकर यूएस में हजारों कर्मचारियों की जॉब छीनी गई। इंडिया में मौजूद ऑरेकल डेवलपमेंट सेंटर के कर्मचारियों में अनिश्चितता का माहौल है। गूगल के पूर्व साइंटिस्ट ने चेतावनी दी है कि एआई पूरी मानव जाति को खत्म कर सकता है। इसे रोकने के लिए बहुत कम समय बताते हुए उन्हें दुनिया को एआई से छुपे खतरे से आगाह किया गया। सरकार ने ईपीएफ स्कीम में नए इमरजेंसी प्रावधान को जोड़ा है। इसके तहत महामारी या नेशनल डिजास्टर के दौरान एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही के पीएफ कंट्रीब्यूशन में कटौती या उसे स्थगित किया जा सकता है। अगस्त में देश का एक्सपोर्ट करीब 26% बढ़कर 44 अरब डॉलर के नजदीक पहुंच गया है। गोल्ड का इम्पोर्ट घटने से बीते महीने ट्रेड डेफिसिट कम होकर लगभग 27 अरब डॉलर रह गया है। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट 19 अक्टूबर से लागू होने की उम्मीद है। गुड्स एंड सर्विसेज सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने वाले इस करार पर दोनों ही देशों ने 27 अप्रैल को हस्ताक्षर किए थे। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत दक्षिणी यूक्रेन पर बड़ा हमला बोला। कीव में मौजूद एक गोदाम को बनाया गया निशाना। एक घायल। दक्षिणी यूक्रेन में भी यात्री बस पर हमला। 5 लोगों की मौत हुई, 7 लोग घायल हुए। हूती विद्रोहियों ने मक्का पर किसी भी तरह के मिसाइल या ड्रोन से हमले से इनकार किया। हूती प्रवक्ता के मुताबिक हमले सऊदी अरब के तेल ठिकानों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया था। ईरान परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रवक्ता का बड़ा बयान। हॉर्मुज की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटा है ईरान। खुद की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार। साथ ही कहा सभी हॉर्मुज के लिए सिर्फ कुछ जहाज गुजर रहे हैं। अमेरिका का दावा गलत है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरान के विदेश मंत्री से कही है बड़ी बात। बोले हॉर्मुज फिर से खोलने के लिए सभी पक्ष उठाएं प्रभावी कदम। अमेरिका के द्वारा अंतरिक्ष में हथियार तैनात किए जाने पर रूसी सरकार का सामने आया है बड़ा बयान। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई यारोवलोव ने बोला अंतरिक्ष में हमलावर हथियारों की तैनाती रोकने के लिए कानूनी समझौता जरूरी। यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर के यूरोपीय सुरक्षा परिषद बनाने का प्रस्ताव। कनाडा, ब्रिटेन और नॉर्वे जैसे देशों को जोड़ने की भी योजना। यूरोपीय यूनियन की चीन पर बढ़ती निर्भरता को लेकर यू अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने सख्त कदम उठाने की बात कही। बोली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण यूरोप चीन से मिल रहे इस शॉक का कर रहा है सामना। भारतीय नौसेना को टक्कर मारने वाली पाकिस्तानी नौसेना का जहाज पीएनएस हुनैन हुआ है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। बंदरगाह वापस लौटा पाकिस्तानी जहाज 15 सितंबर को अरब सागर में भारतीय युद्धपोत से टकराया था पाकिस्तानी नौसेना का यह जहाज। यूरोपीय यूनियन समर्थित हेग की अदालत में कोसोवो में पूर्व राष्ट्रपति हाशिम थाची को सुनाएंगे 25 साल की सजा। युद्ध अपराधों से जुड़े आरोप साबित होने पर पूर्व राष्ट्रपति को सुनाई गई है सजा। स्पेन के वालेंसिया इलाके में जंगलों में भीषण आग लगी। बड़े पैमाने पर दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे। 17 किलोमीटर के दायरे में लगी थी आग।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि मुसलमानों का सबसे पवित्र शहर मक्का आज अलर्ट पर क्यों है। दावों के मुताबिक 15 सितंबर को हूती लड़ाकों ने मक्का को निशाना बनाकर आत्मघाती ड्रोन से बड़ा हमला करने की कोशिश की, लेकिन सऊदी एयर डिफेंस सिस्टम ने मक्का में दाखिल होने से पहले ही इस ड्रोन को मार गिराया। लेकिन इस घटना के बाद मक्का शहर में इमरजेंसी अलर्ट जारी करना पड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हूती सच में मक्का पर हमला कर सकता है या ये सऊदी अरब का कोई नया दांव है।

0: इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या आपकी तेल और गैस सप्लाई खतरे में पड़ सकती है। जहां दुनिया का सबसे बड़ा तेल का खजाना मौजूद है, वहां बारूद सुलग रहा है। लिबिया में तीन बड़े ऑयल फील्ड्स पर खूंखार आतंकी समूहों ने कब्जा जमा लिया है। और सवाल यह है कि जिस मिडिल ईस्ट में दुनिया का बड़ा तेल भंडार है, उस क्षेत्र में मौजूदा आतंकी संगठन पूरे तेल गैस की सप्लाई चेन को एक झटके में ठप कर देंगे, तो दुनिया का क्या होगा। हम और आप ये मान रहे थे कि अब ईरान और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ है, युद्ध रुका हुआ है, अब वहां स्थिति सामान्य है। अगर लड़ाइयां भी हो रही हैं तो छिटपुट होती रहेंगी, जिस तरह से रशिया यूक्रेन के बीच में होता रहा। लेकिन ये जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में नौबत बन रही है, ये बहुत भयावह है। हमारी जिंदगी पर कैसा असर पड़ेगा आपको बताएंगे। इधर अरब सागर में भारत और पाकिस्तान के जंगी जहाजों के बीच टक्कर से तनाव बढ़ गया है। इंटरनेशनल वाटर्स में पाकिस्तानी नेवी के युद्धपोत पीएनएस हनैन ने भारतीय नौसेना के कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर को जानबूझकर टक्कर मार दी। अब इस हिमाकत पर भारत भड़क गया है। बड़ी और कड़ी चेतावनी हमने दी है। हालांकि इस टक्कर से पीएनएस हनैन को भारी नुकसान हुआ, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक हादसा था या समंदर में भारत को उकसाने की एक पाकिस्तानी साजिश। और इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या रशिया से भारत की दोस्ती की वजह से अमेरिका चढ़ा हुआ है। अमेरिकी संसद में एक बिल पेश हुआ है जहां भारत समेत कई देशों पर सीधे 100% का भारी भरकम टैरिफ का खतरा मंडरा रहा है। क्या इस खतरनाक टैरिफ वॉर का मकसद रशिया और उसके साथी देशों की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है, डायरेक्ट अटैक करना है। और इसके बाद आपको बताएंगे कि यूपीआई पेमेंट पर लगा चार्ज दुकानदार चुकाएगा, लेकिन ये किसकी जेब से आएगा। एनपीसीआई की जो गाइडलाइन है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसकी गाइडलाइन के मुताबिक इस चार्ज की मार ग्राहक पर नहीं पड़ेगी, बल्कि दुकानदारों के एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट चुकाना होगा। पर असली पेच यही है, क्या दुकानदार ये 0.4% का बोझ चुपचाप खुद सहेंगे या पुरानी चालाकी अपना कर घूम फिर कर ये चार्ज ग्राहक से ही वसूलेंगे। इसके बाद आपको लखनऊ से आया एक खतरनाक वीडियो जहां शाहनवाज नाम के आरोपी ने एक लड़की को कार के बोनट पर घसीटा। देखने में ये एक हिट एंड रन का मामला नजर आया, लेकिन जांच में सामने आ रहा है कि शाहनवाज ने इस लड़की को अपनी हिंदू पहचान बताकर धोखा दिया। फिलहाल पुलिस ने शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के एक विधायक को मिसाइल दागने की चुनौती दे डाली है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा मुस्लिम बहुल इलाके पर मिसाइल गिराने का तंज कसते नजर आए, जिस पर ओवैसी ने जमकर जुबानी बारूद बरसाया। UCC को भी मुसलमानों के खिलाफ बताते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला।
1: यूनिफॉर्म सिविल कोड, भाड़ में जाए तुम्हारा यूनिफॉर्म। तुम यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर RSS का एजेंडा लागू करना चाहते हो।
0: ये तो सिर्फ ट्रेलर है। इधर प्रयागराज में जिस जमीन पर कभी अतीक अहमद का कब्जा हुआ करता था, आज वहां लोग दिए जला रहे हैं। इस जमीन पर बने 76 प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों में एक अनोखा जश्न है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर यहां रहने वाले लोग अपने आवास पर दिए जला रहे हैं। और इसके बाद आपको बताएंगे कि मुंबई के मशहूर मोंडेगार कैफे का लाइसेंस कैसे रद्द कर दिया गया। महाराष्ट्र FDA की जांच में 94 साल पुराने कैफे के किचन में भारी गंदगी, ड्रेनेज में लीकेज, खाने के सही तापमान मेंटेन ना करने जैसे गंभीर कमियां पाई गई। फूड सेफ्टी मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने पर प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया, लाइसेंस ही रद्द कर दिया। और आखिर में आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आई एक ऐसी खबर दिखाएंगे जहां EMI ना चुकाने पर शरीर से खून निकाल लेने का आरोप है। आरोप है कि रिकवरी एजेंट्स ने लड़के का अपहरण किया, बंधक बनाया, बंधुआ मजदूरी कराई, फिर ब्लड बैंक ले जाकर जबरदस्ती 1 यूनिट खून निकाल लिया और बेच दिया। लेकिन आज शुरुआत हम इस वीडियो से करना चाहते हैं जिसे यमन में हुती समर्थित मीडिया ने जारी किया है और ये दावा किया है कि अल जौफ के पूर्वी इलाकों में ऐसे तमाम सुरक्षा बल पीठ दिखाकर भाग रहे हैं जिन्हें सऊदी अरब से मदद और हथियार मिलते हैं। देखिए
2: I'm going to go to the hospital.

हूती का दावा है कि उसके सैकड़ों विद्रोहियों ने यमन के मोखा बंदरगाह और ग्रेटर और लेसर हानिश द्वीपों पर कब्जा कर लिया है और इसके कारण 1,00,000 से ज्यादा लोग यमन में विस्थापित हो चुके हैं। इस नक्शे में दिखाई दे रहा है ये तमाम जो द्वीप हैं अभी हूती विद्रोहियों के नियंत्रण में माने जा रहे हैं और अभी हूती इस युद्ध को 2 मोर्चों पर लड़ रहा है। पहला, उसने लाल सागर और बाबल मंदेप से गुजरने वाले जहाजों को रोकने के लिए कई द्वीपों पर जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं और दूसरा, वो सऊदी अरब के जो अलग अलग शहर हैं उन पर बैलिस्टिक मिसाइल्स, आत्मघाती ड्रोन से हवाई हमले भी कर रहा है। इनमें भी सबसे बड़ा हमला इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र शहर मक्का पर बताया जा रहा है और यह दावा सऊदी अरब की सरकार ने खुद किया है। सऊदी अरब ने कहा है कि 15 सितंबर को हूती विद्रोहियों ने मक्का की तरफ ड्रोन भेजकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सऊदी अरब की वायु रक्षा यानी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने उस ड्रोन को मक्का के दक्षिण में ही मार गिराया। यानी ये ड्रोन मक्का के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में दाखिल होने से पहले नष्ट कर दिया गया और ये पूरी घटना कल शाम की है। इस हमले के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब सऊदी अरब की सरकार ने मक्का शहर को लेकर इमरजेंसी अलर्ट जारी किया। सरकार ने मक्का शहर में रहने वाले सभी लोगों से कहा कि वो तुरंत किसी सुरक्षित इमारत या फिर खिड़कियों से दूर अंदरूनी कमरे ऐसी जगहों पर चले जाएं। खतरा खत्म होने तक घर या इमारत से बाहर ना निकले, खुले इलाकों, खिड़कियों, कांच बालकनी या छत से दूर रहे। और ये गाइडलाइंस हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, ये तमाम ऐसे हाई अलर्ट के बाद सऊदी अरब ने ही ये तमाम रिस्ट्रिक्शंस या फिर समझ लीजिए इंस्ट्रक्शंस जारी किए। अगर उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति या परिवार बाहर है तो नजदीकी इमारत में शरण ले ले, मजबूत आड़ के पीछे जाए। इन चेतावनियों से आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरब का मक्का शहर इस वक्त कितनी बड़ी दहशत में जी रहा है और ये भी तब हो रहा है जब हमला करने वाले हूती विद्रोही खुद इस्लाम धर्म को मानते हैं और इसी इस्लाम धर्म में मक्का को सबसे पवित्र शहर माना गया है। इतना पवित्र कि दुनिया में कहीं भी कोई मुसलमान अगर नमाज पढ़ता है तो उसकी दिशा मक्का शहर के काबा की तरफ होती है, कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी कोने में। यही नहीं, मक्का शहर की पवित्रता को देखते हुए वहां मस्जिद अल हरम और काबा में गैर मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। यानी मक्का दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में शामिल है जहां गैर मुसलमानों को प्रवेश की इजाजत तक नहीं है। इसलिए जब इस्लाम धर्म को ही मानने वाले हूती लड़ाकों ने मक्का शहर पर हमला किया जैसा सऊदी अरब का दावा है तो ये पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर बन गई। अब 57 मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन OIC गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और 22 अरब देशों के संगठन अरब लीग ने इस हमले की निंदा की है और भारत, पाकिस्तान, इजिप्ट, बहरेन, कुवैत ने इन हमलों को चिंताजनक बताया। जानते हैं इन हमलों के बाद मक्का शहर को रेड अलर्ट पर रखा गया है और रेड अलर्ट का मतलब यह है कि किसी भी वक्त मक्का शहर पर फिर से कोई भी मिसाइल या आत्मघाती ड्रोन से हमला, हवाई हमला हो सकता है। सऊदी अरब का मक्का शहर वहां के मक्का प्रांत में आता है जिसका कुल क्षेत्रफल 3,004 वर्ग किलोमीटर है। यानी मक्का शहर क्षेत्रफल के मामले में दिल्ली से दोगुना बड़ा है। पूरे मक्का शहर में 24,27,924 लोगों की आबादी रहती है। आबादी के लिहाज से मक्का को सऊदी अरब का चौथा सबसे बड़ा शहर माना जाता है क्योंकि चाहे वो हज हो और उमरा हो, उसके लिए हर साल लगभग 2 करोड़ लोग सऊदी अरब के मक्का शहर जाते हैं। यहां लोगों की बसावट, इमारतें बहुत ज्यादा है और इसीलिए मिसाइलों और ड्रोन हमलों के लिहाज से मक्का शहर सबसे संवेदनशील माना जाता है। इतना संवेदनशील माना जाता है कि सऊदी अरब की सरकार ने मक्का शहर की सुरक्षा के लिए अमेरिका के सोचे पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को वहां पर तैनात किया है। हालांकि यहां यह समझना भी जरूरी है कि अब तक सऊदी अरब ने मक्का पर हुए ड्रोन हमले का कोई वीडियो, कोई सबूत जारी नहीं किया है और हूती विद्रोही भी इस दावे को घिसा पिटा बताकर खारिज कर रहे हैं। और ऐसा क्यों हो सकता है वो भी समझिए। अब तक हूती खुद को गाजा और फिलिस्तीन के समर्थन में लड़ने वाले रेजिस्टेंस के रूप में पेश कर रहे थे, रेजिस्टेंस फोर्स वो कहते हैं अपने आप को, जिससे उन्हें मुस्लिम दुनिया के एक हिस्से में सहानुभूति मिल रही थी। लेकिन मक्का जैसे पवित्र स्थल को खतरे में डालने की खबरों से जाहिर तौर पर उनकी छवि पर एक गैर जिम्मेदाराना और एक पवित्रता का सम्मान ना करने वाले हिंसक संगठन की छवि बन सकती है। और हूती का आरोप है कि इसी मकसद से सऊदी अरब ने इस हमले का एक झूठा आरोप उस पर लगाया है।
तो सऊदी अरब तो यह दावा कर ही रहा है कि मक्का पर हमला हुआ है, लेकिन हूती इससे साफ इनकार कर रहा है। हालांकि यह पक्ष हूती विद्रोहियों का है जिन पर दुनिया को ज्यादा विश्वास नहीं है और ये अपने आप को रेजिस्टेंस फोर्स कहते हैं और रेजिस्टेंस फोर्स के नाम पर एक से बढ़कर एक अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया है जिनमें कई मासूमों की जान गई है। तो ऐसी हिंसा करने वाले संगठन पर कितना विश्वास करना है ये भी एक बड़ा सवाल है। ये विश्वास इसलिए भी नहीं है क्योंकि हूती विद्रोहियों के पास ऐसे आत्मघाती ड्रोन्स हैं जिनकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक हो सकती है, जबकि यमन की सीमा मक्का शहर की दूरी सिर्फ 560 किलोमीटर, मदीना शहर की दूरी 1425 किलोमीटर है। अब इसका सीधा मतलब है कि हूती के पास इन शहरों को निशाना की क्षमता भी है और अभी सऊदी अरब में जिस तरह की बेचैनी है उसे देखकर यही लगता है कि हूती के हमलों ने सऊदी अरब के लिए उसकी रेड लाइन यानी लाल रेखा को पार कर दिया है। देखिए

अब इन हमलों की तस्वीरें देखिए जो हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर किए हैं। सऊदी अरब के मुताबिक हूती लड़ाकों ने उसके पश्चिमी तट के शहरों, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और 14 सितंबर को हुए हमलों में उसके कम से कम 13 लोग घायल हुए हैं। हूती के इन्हीं हमलों के कारण सिर्फ मक्का ही नहीं बल्कि जेद्दा और ताइफ में भी रेड अलर्ट या हवाई हमलों का इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर सिर्फ आज सुबह की बात करें तो सऊदी अरब के 6 शहरों जेद्दा, अबहा, जाजान, अलुला, ताइफ और यानबू में हवाई हमलों का अलर्ट था। इनमें भी यानबू शहर सऊदी अरब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लाल सागर के किनारे मौजूद इस शहर को सऊदी अरब का सबसे बड़ा ऑयल हब माना जाता है और आप कह सकते हैं कि सऊदी अरब का तेल यहीं से होते हुए दुनिया के अलग अलग शहरों में जाता है। इसके अलावा हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के किंग खालिद एयरबेस जो है और तेल रिफाइनरीज जैसे जाजान, यानबू पर भारी मिसाइल्स और भारी ड्रोन हमले किए। सऊदी अरब ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए हूतियों के ठिकानों पर 100 से अधिक हवाई हमले कर दिए हैं। देखिए

अब इस युद्ध के कारण बड़ी संख्या में लोग यमन छोड़कर समुद्र के रास्ते पूर्वी अफ्रीकी देश जिबूती में शरण लेने के लिए भाग रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक 2000 से ज्यादा लोग यमन से जिबूती पहुंच चुके हैं। 1,00,000 से ज्यादा लोग यमन के अंदर ही विस्थापित हैं और इसके कारण सऊदी अरब अभी बहुत बड़ी दुविधा में फंसा हुआ है। पहले अमेरिका ने सऊदी अरब की मदद करने से इनकार किया, फिर पाकिस्तान ने भी सऊदी अरब को धोखा दिया और जब मक्का शहर पर ड्रोन हमले की खबर आई तब भी मक्का समझौता करने वाला पाकिस्तान निंदा करके चुपचाप निकल गया। तुर्की ने भी मक्का समझौते पर हस्ताक्षर किए थे लेकिन उसने भी सऊदी अरब को कोई सैन्य मदद नहीं दी। और जिस यूएई ने आज से 10 साल पहले यमन में हुती के खिलाफ लड़ाई में सऊदी अरब का साथ दिया था वो यूएई भी इस बार सऊदी अरब के साथ नहीं है। उल्टा जो इसराइल सऊदी अरब का कट्टर दुश्मन माना जाता है और जिसे सऊदी अरब एक राष्ट्र की मान्यता तक नहीं देता, उस इसराइल ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जरिए सऊदी अरब को हूती विद्रोहियों के बारे में खुफिया जानकारी दी है। और अब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी एमबीएस मदद के लिए इजिप्ट पहुंच चुके हैं। एमबीएस इजिप्ट में क्यों मदद चाहते हैं वो भी समझिए। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो लाल सागर और स्वेज नगर में ये देखिए सामने स्वेज नहर जो है, स्वेज कैनाल, इजिप्ट की भूमिका बहुत बड़ी है। और अगर हूती विद्रोहियों के खिलाफ इजिप्ट का खुला समर्थन सऊदी अरब को मिलता है तो वो अपने तेल की आपूर्ति को जारी रख पाएगा। यानी सऊदी अरब को इजिप्ट से 3 चीजें चाहिए। हूती के हमलों के खिलाफ समर्थन चाहिए, लाल सागर यानी रेड सी उसकी सुरक्षा और इस पूरे क्षेत्र में जो संकट गहरा रहा है उसे रोकने के लिए सैन्य मदद। देखिए

जिस तरह लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल की जंग का कोई अंत नहीं दिखता, ठीक वही कहानी इस युद्ध की भी नजर आती है। अगर आंकड़ों में समझे तो हूती विद्रोहियों का सऊदी अरब से कोई मुकाबला नहीं दिखता। सऊदी अरब के पास लगभग 4 लाख सैनिकों की फौज है, जबकि हूती के पास 20,000 लड़ाके या विद्रोही कह लीजिए। हूती कहता है कि ट्राइबल फोर्सेस और जो पूर्व सैनिकों को मिलाकर उसकी फौज 3.5 लाख जवानों की हो सकती है, लेकिन इन आंकड़ों पर कोई यकीन नहीं करता। इसी तरह सऊदी अरब की सेना का एक साल का रक्षा बजट 8 लाख करोड़ रुपए है और इसे पूरी दुनिया का 7वां सबसे बड़ा रक्षा बजट माना जाता है, जबकि सऊदी अरब की तुलना में हूती विद्रोहियों का अपना कोई रक्षा बजट नहीं। हूती विद्रोही अपने सारे हथियार ब्लैक इकोनॉमी से खरीदते हैं, यानी तस्करी के जरिए। ये जो हूती विद्रोही हैं वो हर साल 1,30,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है, उसी में से सेना, हथियार, यमन के कब्जे वाले इलाकों को बरकरार रखने का पूरा खर्च निकलता है। जबकि टैक्स और दूसरे तरीकों से जो $2.5 बिलियन यानी 24,000 करोड़ रुपए कमाए जाते हैं, वो भी हूती विद्रोही अपने पास रख लेते हैं। हालांकि इसके बाद भी सऊदी अरब से हूती विद्रोहियों की कोई तुलना नहीं हो सकती। सऊदी अरब की सेना के पास दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार मौजूद है, इनमें F-15 ईगल लड़ाकू विमान शामिल है, 70 यूरोफाइटर टाइफून कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लंबी दूरी की डोंगफेंग थ्री मिसाइल है जिन्हें सऊदी अरब ने चाइना से खरीदा है, बैलिस्टिक मिसाइल्स को नष्ट करने वाला अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम थर्ड भी उनके पास है, और इसी सऊदी अरब के पास दुनिया के सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम में से एक पेट्रियट मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। और इन हथियारों को देखकर ऐसा लगता है कि हूती का सऊदी अरब से क्या मुकाबला। लेकिन अब ये देखिए कि कहां हूती के लड़ाके सऊदी अरब पर एक किस साबित होते हैं, यानी उसे बैकफुट पर धकेलने की क्षमता आखिर क्यों रखते हैं। सबसे पहले हूती विद्रोही गुरिल्ला युद्ध में माहिर है, दूसरा हूती के पास कम लागत वाली बैलिस्टिक मिसाइलें खूब हैं, एंटीशिप मिसाइलें, आत्मघाती ड्रोन्स हैं, 1,000 से ज्यादा इनकी संख्या हो सकती है, 800 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली बुरकान 1, 1,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली बुरकान 2, 2,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली तूफान बैलिस्टिक मिसाइल, 2,500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला वेट 2 आत्मघाती ड्रोन, ये सब शामिल है। ये ड्रोन और मिसाइल्स इतनी सस्ती हैं कि इन्हें सऊदी अरब के लिए रोकना उतना ही महंगा साबित होगा जितना ईरान युद्ध में अमेरिका, इजराइल, दूसरे मुस्लिम देशों के लिए साबित हुआ। अब बड़ी बात यह है कि हूती विद्रोहियों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो दुर्गम पहाड़ी इलाकों में गुफाओं में लड़ते हैं जिसके कारण युद्ध को सालों साल खींच सकते हैं, बड़े बड़े देश की सेना को युद्ध में ये थका सकते हैं, जबकि यही सऊदी अरब ऐसा नहीं कर सकता। सऊदी अरब के पास खाने के लिए मतलब उनके पास सब कुछ है, मिडल ईस्ट क्षेत्र की बड़ी अर्थव्यवस्था है, एक पूरी सिस्टम को उनको चलाना है उस तरीके से, उनके पास तेल के कई कुएं हैं, बड़ी बड़ी ऑयल फील्ड्स हैं, और जब जब हूती इन्हें निशाना बनाता है तो सऊदी अरब के लिए उसकी कमजोर नस साबित होता है। संक्षेप में कहें तो हवाई और तकनीकी मोर्चे पर सऊदी अरब आगे है, लेकिन जमीनी और गुरिल्ला युद्ध में हूती को हराना बहुत मुश्किल है। सऊदी अरब पहले भी ये करके देख चुका है कोशिश। साल 2015 की बात है जब हूती विद्रोहियों ने यमन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, तब सऊदी अरब को यही डर था कि उसकी सीमा के ठीक पास ईरान समर्थित एक जो मजबूत संगठन है, आतंकी संगठन, वो खड़ा हो जाएगा, और इसी चिंता को देखते हुए सऊदी अरब ने उस वक्त हूती विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। अगले करीब 7 साल में सऊदी अरब ने हूती ठिकानों पर हवाई हमले किए, बारंबार किए, और यह आरोप भी लगता रहा कि कई आम लोग भी इन हमलों में मारे गए। लेकिन हूती विद्रोहियों को जमीन से पीछे धकेलने में सऊदी अरब, यमनी सेना और दक्षिणी अलगाववादी ताकतें कामयाब नहीं हो सकी। साल 2022 में जब युद्ध विराम हुआ तब लड़ाई की मुख्य सीमाएं काफी हद तक वहीं बनी रही, और जानते हैं जब सऊदी अरब हूती के खिलाफ युद्ध में हर दिन 144 करोड़ रुपए खर्च कर रहा था तब भी वो उसे खत्म नहीं कर पाया, और अब जब ये युद्ध फिर से शुरू हुआ है और हूती लड़ाके बहुत कम लागत वाले ड्रोन से सऊदी अरब पर हमले कर रहे हैं, तब सऊदी अरब सैन्य रूप से कई गुना शक्तिशाली होने के बावजूद हूती विद्रोहियों के आगे रणनीतिक रूप से
बैकफुट पर ही दिखाई दे रहा है और अब बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश शुरू हो गई है। हम चाहते हैं कि आप एक बार 2015 से 2022 के बीच लड़े गए उस युद्ध की भी तस्वीरें देखें जिनमें सारी ताकत झोंकने के बाद भी सऊदी अरब मकसद में कामयाब नहीं हुआ, हार गया।

0: यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जब सऊदी अरब और हुती के बीच साल 2022 में सीज फायर लागू हुआ, तब ये युद्ध फिर से क्यों शुरू हो गया। जुलाई महीने में जब ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम जनाजे की रस्में पूरी हुई, तब इसमें येमेन से हुती के नेता भी शामिल हुए थे। और उसी वक्त जब ईरान से एक जहाज वापस येमेन के सना एयरपोर्ट पर उतरने वाला था, तब उस जहाज को रोकने के लिए येमेन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकारी सेना ने हवाई हमला किया। अब इस हमले में हुती विद्रोही इतना नाराज हो गए कि उन्होंने इसके लिए सीधे सऊदी अरब को दोषी बताया और यहीं से दोनों देशों के बीच साल 2022 का सीज फायर टूटने लगा। सबसे पहले हुती विद्रोहियों ने बदला लेने के लिए सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में मौजूद अभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइलें दागी और 20 जुलाई 2026 को लाल सागर में सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी की घोषणा कर दी और केवल सऊदी अरब के तेल टैंकर्स और जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये संघर्ष तब और बढ़ा जब सितंबर 2026 की शुरुआत में हुती विद्रोहियों ने यमन के पश्चिम तट पर तेजी से आगे बढ़ते हुए बाबल मानदेव के पास के इलाकों पर नियंत्रण कर लिया। उन्होंने समुद्री रास्ते के मुहाने पर मौजूद पेरिम द्वीप और हनीश द्वीपों पर कब्जा किया। सऊदी अरब का वैश्विक तेल व्यापार ठप होने के कगार पर पहुंच गया और युद्ध ने भीषण रूप ले लिया। अब इस पूरे युद्ध में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर मिडिल ईस्ट के देश एक एक करके इस युद्ध में घिरते जाएंगे तो दुनिया को होने वाली तेल गैस की आपूर्ति का क्या होगा। आप खुद सोचिए, मिडिल ईस्ट के जिन देशों में दुनिया का 50% यानी आधा कच्चा तेल का भंडार है, इन देशों में 40% प्राकृतिक गैस का भंडार है। अगर वहीं पर आतंकी समूह, विद्रोही गुट इन तेल के कुओं पर आग लगा देंगे, समुद्री रास्तों पर कब्जा कर लेंगे, तो फिर ये तेल और गैस की पूरी जो सप्लाई चेन है उस पर कैसा हाहाकार मचेगा। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो दुनिया का 15.1% कच्चा तेल का भंडार सऊदी अरब के पास है, 11.8% ईरान, 8.2% इराक, 6.4% यूएई, 5.8% कुवैत, 1.4% कतर और 0.14% कच्चे तेल का भंडार सीरिया के पास है। और ये सारे वो देश हैं जहां या तो कोई युद्ध है या कोई संघर्ष चल रहा है, एक से ज्यादा आतंकी संगठन मौजूद है, जैसे इराक में कातैब हिजबुल्ला, असाइब अल हक, हरकत अल नजबा, ये आतंकी और विद्रोही संगठन सक्रिय हैं। सीरिया में हयाते तहरीर अल शाम, इस्लामिक स्टेट और कुर्दिश जो मिलिशिया है, ऐसे तमाम संगठन सक्रिय हैं। ईरान खुद अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है और यही स्थिति सऊदी अरब में है। यमन में मौजूद हुती विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध है। सोचिए, जिन देशों में दुनिया का आधा कच्चा तेल है वहां युद्ध संघर्ष चल रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और पाकिस्तान के बीच समंदर में तनाव बढ़ गया है। अरब सागर में भारतीय युद्धपोत और पाकिस्तानी युद्धपोत के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई और इस टक्कर के बाद भारत ने पाकिस्तानी नौसेना को हद में रहने की चेतावनी दी है। भारतीय युद्धपोत को यह टक्कर पीएनएस हुनैन ने मारी। ये पाकिस्तान का एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। पाकिस्तानी नौसेना इसे अपनी समुद्री सीमा की निगरानी के लिए इस्तेमाल करती है। हुआ ये कि 15 सितंबर को शाम करीब 7 बजे भारतीय नौसेना का कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर निगरानी के मिशन पर था। इसी दौरान इंटरनेशनल वाटर्स में पाकिस्तानी नेवी का ये युद्धपोत बहुत तेजी से आया। अचानक उसने अपनी दिशा बदली, भारतीय युद्धपोत को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी नौसेना 8 से 16 सितंबर के बीच समंदर में सी पार्क नाम से एक युद्धाभ्यास कर रही थी। भारतीय युद्धपोत भी ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के तहत समुद्री व्यापार के मार्ग पर निगरानी के काम कर रहा था। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर चल रहे ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से समुद्री व्यापार के मार्ग पर खतरा बढ़ा है। ऐसे में भारतीय नौसेना ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के तहत जितने भी व्यापारी जहाज हैं उनको सुरक्षा दे रही है। पाकिस्तानी युद्धपोत ने भारत के इस ऑपरेशन में बाधा डालने की कोशिश की थी और इसी दौरान उसने भारतीय युद्धपोत को टक्कर मार दी। अब पाकिस्तान की इस हरकत से भारत भड़क गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले को लेकर पाकिस्तानी हाई कमीशन के चार्ज डी अफेयर्स को समन किया है। उनसे कहा है कि वो अपने नौसेना के अधिकारियों को सावधानी बरतने के लिए कहें। भारत ने उन्हें सेनाओं के बीच हुए अग्रीमेंट को भी याद दिलाया है और आगे से ऐसी कोई भी हरकत ना करने की चेतावनी दी है। भारत ने पाकिस्तान को याद दिलाया कि उनकी नौसेना ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए अग्रीमेंट ऑन एडवांस नोटिस ऑन मिलिट्री एक्सरसाइजेस मनूवर्स एंड ट्रूप मूवमेंट्स 1991 के आर्टिकल 10 का उल्लंघन किया है। यह अग्रीमेंट इसलिए हुआ था ताकि दोनों देशों की सेनाएं युद्धाभ्यास को एक दूसरे पर हमले की तरह ना देखें। और अगर कोई देश युद्धाभ्यास कर रहा हो तो इसके बारे में वो पहले से ही दूसरे देश को जानकारी देते। लेकिन पाकिस्तान के युद्धपोत ने बार बार दी जाने वाली चेतावनियों के बावजूद ना अपनी स्पीड कम की ना दिशा बदली और इसी वजह से भारतीय युद्धपोत की कोशिशों के बावजूद टक्कर हो गई। इस टक्कर के बाद पाकिस्तानी युद्धपोत को काफी नुकसान हुआ। यह नुकसान इतना गंभीर था कि PNS हुनैन को एक्सीडेंट के तुरंत बाद पाकिस्तानी बंदरगाह रवाना कर दिया गया। पाकिस्तान नेवल शिप हुनैन यारमुक क्लास का एक कवर्ट यानी छोटा युद्धपोत पोत है जो साल 2024 में पाकिस्तानी नेवी में शामिल किया गया था। इसे नीदरलैंड्स की एक कंपनी है डायमंड, उसने रोमानिया के शिपयार्ड में बनाया था और डायमंड कंपनी ने अपने यारमुक क्लास के OPV डिजाइन पर इसे बनाया है। OPV यानी ऑफशोर पेट्रोल वेसल, जिसका काम निगरानी का होता है। लेकिन निगरानी करने वाले इस जहाज ने जिस तरह की हरकत भारतीय युद्धपोत के साथ की है उसने भारतीय सुरक्षा अधिकारियों को सतर्क कर दिया है। PNS हुनैन की इस टक्कर को अधिकारी काफी गंभीर मान रहे हैं क्योंकि वो इसकी क्षमता को जानते हैं। अब इस पाकिस्तानी युद्धपोत की लंबाई करीब 98 मीटर है, रफ्तार 40 से 44 किलोमीटर प्रति घंटा। PNS हुनैन समंदर में करीब 40 दिनों तक रह सकता है। इसमें कई तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं, जैसे इसमें एंटी शिप मिसाइल्स, जमीन से हवा में और जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें लगा सकते हैं। इसमें दो तरह के ऑटोमेटिक गन सिस्टम भी हैं, जिन्हें रिमोट कंट्रोल से चलाया जा सकता है। सिस्टम को तुर्की की कंपनी ने विकसित किया है। इस जहाज को अगर आप देखिए तो मुख्य तौर पर निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसे एयर सर्च रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी लगा है। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना यही है कि इस तरह के निगरानी वाले जो जहाज है उनको युद्ध के वक्त में ही हथियारों से लैस किया जाता है और इसकी वजह यह है कि इनके डिफेंस सिस्टम बड़े युद्धपोतों की तुलना में कमजोर होते हैं। पाकिस्तानी युद्धपोत हुनैन ने अपने अरब सागर में जो हरकत की है उसकी वजह का पता लगाया जाना जरूरी है। सच यह है कि पाकिस्तान की कोई भी हरकत हल्के में नहीं ली जा सकती। मुमकिन है कि पाकिस्तानी नौसेना किसी तरह की टेस्टिंग कर रही हो और इस युद्धपोत को बलि का बकरा बना गया हो। PNS हुनैन का भारतीय युद्धपोत से टकराना पाकिस्तान की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। सच यह है कि समंदर की सीधी लड़ाई में पाकिस्तान भारत के आगे टिक नहीं पाएगा। नौसैनिक शक्ति के मामले में भारत पाकिस्तान से बहुत आगे। दुनिया भर के देशों की सैन्य शक्ति का आकलन करने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर ने साल 2026 की रिपोर्ट में पाकिस्तान की नौसेना को 31वें नंबर पर रखा, 31st, और भारत दुनिया की चौथी नौसैनिक शक्ति है। पाकिस्तान की नौसेना के पास 120 युद्धपोत हैं, जिसमें 9 फ्रिगेट्स हैं, 6 कोवाट्स हैं और 8 सबमरीन हैं, 79 निगरानी युद्धपोत, 3 माइन वॉरफेयर से जुड़े युद्धपोत। वहीं भारतीय नौसेना के पास 343 युद्धपोत हैं, जिसमें 2 तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो किसी भी नौसेना की सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं। माना जाता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर युद्ध का एक मोर्चा अकेले संभाल सकता है। पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं। भारत के पास 13 डिस्ट्रॉयर्स हैं। समंदर की लड़ाई में डिस्ट्रॉयर्स को सबसे खतरनाक हमलावर युद्धपोत माना जाता है। पाकिस्तान के पास ऐसा एक भी डिस्ट्रॉयर नहीं। भारत के पास 18 फ्रिगेट्स, 21 कवर्ट्स, 18 सबमरीन, 146 निगरानी करने वाले युद्धपोत हैं। संख्या बल और शक्ति दोनों में भारत पाकिस्तान में कोई मुकाबला नहीं। भारत बहुत आगे है। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान चाहकर भी समंदर में भारतीय नौसेना से सीधी लड़ाई मोल नहीं लेगा, नहीं लेना चाहेगा। इसीलिए कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स शक जता रहे हैं कि PNS हुनैन का भारतीय युद्धपोत से टकराना किसी खास प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। और बात उस खबर की जिसकी देश में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, UPI पेमेंट। आप जानना चाहते होंगे कि 15 अक्टूबर से क्या UPI पेमेंट पर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। कि आप 2,000 रुपए से ज्यादा के जितने भी पेमेंट्स आप किसी दुकानदार को करेंगे उस पर आपको 0.4% ज्यादा पैसा चुकाना होगा। फिलहाल आपके इन सवालों का जवाब है नहीं। नियम क्या कहते हैं? नियमों के हिसाब से आपको 1 भी रुपए एक्स्ट्रा नहीं देना है, यानी जो भी कंज्यूमर है। लेकिन अगर हमारा ये शो मर्चेंट देख रहे हैं, यानी ऐसे लोग जो कुछ बेच रहे हैं बाजार में, तब उनको लग सकता है कितना लगेगा हम बताएंगे, लेकिन जो आम कंज्यूमर है उसको 1 भी रुपए एक्स्ट्रा नहीं देना। अब ये बात सही है कि किसी दुकानदार या मर्चेंट को 2,000 रुपए से ज्यादा का भुगतान करने पर कितना देना है, 0.4%, 0.4% का एक MDR देना होगा। MDR का मतलब है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, और ये पैसा ग्राहक को नहीं बल्कि उस दुकानदार को चुकाना है जिससे आप सामान खरीद रहे हैं। भाई आप ऑनलाइन भी कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, कई सारे व्यापारी हैं जो काम कर रहे हैं। अब इन व्यापारियों को हर ट्रांजैक्शन पर 0.4% का MDR देना है। अब इसका नाम ही ऐसा रखा गया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, यानी मर्चेंट को देना है। मर्चेंट मतलब व्यापारी को देना है जो सामान बेच रहा है, यानी जो खरीद रहा है, जो पेमेंट कर रहा है, उसको तो उस कीमत के अलावा कुछ देना नहीं है। लेकिन MDR का जो पैसा है वो दुकानदारों या व्यापारियों के डिजिटल पेमेंट सुविधा के नाम पर लिया जाता है। जैसे आप एक ग्राहक के तौर पर कार्ड या UPI का इस्तेमाल करके पेमेंट करते हैं, उसी सुविधा के नाम पर दुकानदार या बड़े मर्चेंट से कुछ पैसा लिया जाता है क्योंकि वो इस सुविधा के जरिए कमाई कर रहे हैं। जैसे आपने अगर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया तो आप ये तभी कर पाए जब दुकानदार ने वो सुविधा आपको उपलब्ध करवाई। दुकानदार ने ये सुविधा इसलिए दी क्योंकि वो इससे कमाई कर रहा है। MDR इसी सुविधा का शुल्क है। अभी तक कार्ड पेमेंट सुविधा देने वाले दुकानदार को MDR के तौर पर हर पेमेंट पर 1-3% तक चुकाना होता था। मान लीजिए अगर आप 2,000 रुपए का सामान आपने लिया तो दुकानदार को MDR के तौर पर 20-60 रुपए तक चुकाने होते थे। ये कार्ड पेमेंट की बात मैं कर रही हूं। तो ये पैसा कार्ड पेमेंट सुविधा देने वाले बैंक और कार्ड कंपनीज को जाता है। अब कार्ड पेमेंट में MDR पर किसी तरह की छूट नहीं है, लेकिन UPI पर लगने वाले MDR की बात अलग है। इसके लिए अलग नियम बनाए गए। UPI के जरिए होने वाले मर्चेंट ट्रांजैक्शन का करीब 95% हिस्सा 2,000 रुपए से कम का होता है, यानी केवल 5% UPI पेमेंट्स, जो डेटा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दे रहा है उसके मुताबिक UPI पेमेंट 2,000 रुपए से ज्यादा की जो होती है वो हम आपको बता रहे हैं। और इसी 2,000 रुपए से ज्यादा वाली जो UPI पेमेंट है उस पर MDR लगने वाला है। अब 2,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट पर 0.4% का MDR होगा, यानी 8 रुपए MDR लगेगा, और ये MDR दुकानदार चुकाएगा। लेकिन इसकी एक अधिकतम सीमा भी है। अगर UPI पेमेंट 75,000 रुपए या उससे ज्यादा की है तो 300 रुपए तक मैक्सिमम MDR है, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। इसके अलावा रेलवे टिकट, टेलीकॉम, बीमा, पेट्रोल डीजल, 2,000 रुपए से ऊपर के लेन देन पर MDR के तौर पर 5 रुपए तय किया गया है, यानी 2,000 से ऊपर जितना भी पेमेंट होगा उस पर केवल 5 रुपए ही लिए जाएंगे। क्योंकि MDR व्यापारी से ही लिया जाना है तो नियमों के हिसाब से ये ग्राहक नहीं देगा। अगर टिकट का है तो रेलवे, IRCTC जो भी है वो उनमें से देगा। लेकिन सवाल यही है कि वो पैसा देंगे क्या, बाद में कीमतों में इजाफा हो सकता है टिकट का। इधर म्यूचुअल फंड जैसे पेमेंट्स पर 0.02% का MDR होगा, जो अधिकतम 300 रुपए तक ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। मतलब यह है कि फिलहाल UPI पेमेंट चाहे 2,000 से कम हो या 2,000 से ज्यादा, ग्राहक के तौर पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं चुकाना है, लेकिन यह केवल मर्चेंट पर लागू है। अब एक सवाल सबके दिमाग में आ सकता है कि 2,000 रुपए से ज्यादा के UPI पेमेंट पर जो MDR होगा वो पैसा किसके खाते में जाएगा। भाई कोई भी बिजनेसमैन है वो अंत में तो ये सोचेगा ना कि ये मैं ग्राहक से ही वसूलूं कीमत बढ़ाकर। मान लीजिए कि 2,000 रुपए की पेमेंट हुई तो इस पर दुकानदार को 0.4% MDR चुकाना है, जो 8 रुपए बनता है। इस 8 रुपए का 40%, यानी 3.20 रुपए उसे बैंक, उस बैंक को मिलेंगे जिसके खाते से UPI की पेमेंट की गई है। यानी मान लीजिए आपका पेटीएम या आपका जो भी UPI है वो जिस भी अकाउंट से लिंक्ड है, जिस भी बैंक से लिंक्ड है ना, तो वो बैंक को मिलेगा, यानी ग्राहक का पैसा जो हम दे रहे हैं उस बैंक को मिलेगा। इसके अलावा इस रकम का 30% यानी लगभग 2.40 रुपए उस बैंक को मिलेगा जिसके खाते में पैसा पहुंच रहा है, यानी जो दुकानदार है, जो मर्चेंट है, जो व्यापारी है उसका बैंक। 20% रकम यानी 1.60 रुपए उस UPI ऐप को मिलेगा जिसके जरिए आप ये कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है। और 10% रकम यानी 80 पैसे उस बैंक को मिलेंगे जिसने लेन देन की पूरी प्रक्रिया की है। लेकिन एक डर यह है कि UPI पेमेंट पर MDR लगाने का फैसला आने से भविष्य में एक अलग तरह की व्यवस्था बन सकती है। जैसे कुछ समय पहले तक कार्ड पेमेंट की सुविधा देने वाले कुछ दुकानदार 200 रुपए का सामान खरीदने पर 206 रुपए मांगते थे क्योंकि उन्हें MDR चुकाना होता था। MDR का ये पैसा दुकानदार अपनी जेब से नहीं बल्कि ग्राहकों की जेब से ही वसूलता था। अगर आपसे ज्यादा पैसा देने से आपने मना किया तो वो अपने कैश में पेमेंट करने के लिए कहता था। अब UPI के आने के बाद से दुकानदारों का ये वाला जो खेल है वो बंद हो गया। लेकिन अब डर इस बात का है कि 2000 रुपए से ज्यादा के UPI पेमेंट्स पर MDR अगर लगता है और लगने ही वाला है तो ये पैसा घूम फिर कर क्या ग्राहकों की ही जेब से नहीं वसूला जाएगा? मुमकिन है कि दुकानदार फिर से वही ट्रिक अपनाए जिसमें वो कैश में पेमेंट करने के लिए कहे या फिर ज्यादा रकम चुकाने का दबाव डाले। दुकानदार एक ट्रिक के तौर पर 3000 रुपए की पेमेंट को 2 बार में देने के लिए भी कहेगा ताकि MDR से बचा जा सके। इसके अलावा एक डर यह भी है कि MDR लगने से दुकानदार कैश पेमेंट को बढ़ावा देंगे। अब सवाल यह है कि क्या डिजिटल इकोनॉमी वाला भारत इस फैसले के बाद से कैश इकोनॉमी की तरफ वापस मतलब फिर से इजाफा होगा? इन्हीं कुछ सवालों के साथ मैंने NPCI की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ग्रोथ सोहिनी रजोला से बात की। अचानक इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई? अब ये फैसला आ जाएगा और जो मर्चेंट है यानी जो बिजनेसमैन है जो बेच रहा है बेसिकली उसको भाई ये MDR देना पड़ेगा 0.4%। अब इतने दिनों से जब ये चल रहा था तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ये क्यों आप लोगों को क्यों लागू करना पड़ रहा है ये मॉडल?
1: एकदम नहीं है कि ये डिसीजन अचानक हुआ है, बल्कि पूरी पेमेंट इंडस्ट्री जो है, अगर आप जब एक UPI ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका एक बैंक होता है, एक आपकी ऐप होती है, आपके मर्चेंट पे किसी ने QR लगाया होता है, तो बहुत सारे इंटरमीडियरीज होते हैं और इसके बारे में बातचीत सरकार के साथ, बाकी एसोसिएशंस के साथ, RBI के साथ पिछले 4-5 वर्षों से चल रही है। उसमें इनफैक्ट पिछले साल 1.5 साल में आपने देखा होगा, वेदर इट इज ऑन TV न्यूज चैनल्स और इन यू नो रिपोर्ट्स इन द मीडिया इन प्रिंट एटसेट्रा, देर हैज बीन अ लॉट ऑफ डिस्कशन। सो ये कहना कि ये डिसीजन एकदम अचानक आया है, मुझे लगता है थोड़ा सा गलत है। इसके ऊपर बहुत टाइम से काफी काम हो रहा है।
0: एक रियल कंसर्न वाला सवाल है, सिंपल सवाल, सीधा सवाल, MDR का बोझ अल्टीमेटली कोई भी दुकानदार हो, भाई मैं उससे लूंगी उसको पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है, वो अल्टीमेटली तो पास करेगा ही करेगा ना, वो बोझ कैसे नहीं पास ऑन करेगा? आज ना करे कल करेगा कंज्यूमर पर।
1: नहीं देखिए ऐसा है ना, MDR कोई नई चीज नहीं है इंडस्ट्री में। आप एक चीज बताइए, आज भी जब कोई मर्चेंट है, चाहे वो बहुत बड़ी दुकान हो या कोई बहुत बड़ा ऑनलाइन मर्चेंट है, वे लोग आज भी MDR तो देते हैं। इनफैक्ट 1.5 से 2.5% MDR देते हैं। जब आप कोई भी चीज खरीदते हैं वहां पे जाके, जब कार्ड से खरीदते हैं, तो क्या वो आप मर्चेंट आपको पास ऑन कर रहा है? वो मर्चेंट नहीं पास ऑन कर रहा है। क्यों नहीं पास ऑन कर रहा है? क्योंकि ये जो डिजिटल पेमेंट की सुविधा है उससे मर्चेंट्स को के लिए भी काफी सारे फायदे हैं।
0: बट एक चिंता जाहिर की जा रही है ना सोहिनी जी कि अल्टीमेटली लोग वापस कैश इकोनॉमी की तरफ, क्योंकि इतना एक कदम उठाए गए कि लोग डिजिटल पे आए वापस कैश इकोनॉमी की तरफ ना चले जाए, क्योंकि उनको जो भी देना पड़ रहा है कम हो ज्यादा हो वो भी अगर बचा लें उनको लगेगा वो बेहतर है, कैश इकोनॉमी की तरफ वापस ना जाए नकदी की तरफ, वो कैसे आप सुनिश्चित करेंगे?
1: It is now today UPI is a habit for millions of Indians. So, ये apprehension है, लोग बोल रहे हैं, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि customers इसकी वजह से, especially as they understand the facts, which is that the customer is not going to get charged. आज आप UPI सिर्फ मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए नहीं यूज करते हैं, आप बिल पेमेंट के लिए यूज करते हैं, आपको जो भी मनी ट्रांसफर करना होता है उसके लिए यूज करते हैं। और हमने बहुत सारी जो बिग टिकट कैटेगरीज है उसके लिए हमने एक इंडस्ट्री प्रोग्राम भी बनाया है।
0: क्या आप देश में EMI की वसूली इंसान का खून चूस कर किया जाएगा? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से खबर कुछ ऐसी है जिसने इंसानी संवेदनाओं को बाजार में नीलाम कर दिया। एक गरीब के स्वाभिमान को गुंडई के दम पर कुचल डाला। आरोप है कि रिकवरी एजेंट्स ने एक गरीब घर के लड़के को उठाया, बंधक बनाया, बंधुआ मजदूरी कराई, जब पेट नहीं भरा तो उसे ब्लड बैंक ले जाकर जबरन उसका एक यूनिट रक्त निचोड़ लिया। अमानवीयता की कहानी शुरू होती है निगोहा के राजारन खेड़ा गांव से। 60 साल की एक बेबस मां ने इंसाफ के लिए पुलिस की चौखट पर गुहार लगाई। अपनी लिखित शिकायत में कहा कि उसके छोटे बेटे नेवल ने एक दुकान से करीब एक साल पहले 21,500 रुपए का एक फोन फाइनेंस कराया था, जिसकी करीब 2,800 रुपए की किश्त बनी। गरीबी का साया ऐसा था कि पहली ही किश्त में अड़चन आ गई तो फाइनेंसर के कारिंदे पहुंचे, मोबाइल ही छीन ले गए। बात यही रफा दफा नहीं हो गई, फोन तो ले ही गए लेकिन इसमें हैवानियत का चैप्टर लगभग एक साल बाद खुला। आरोप है कि 8 सितंबर को रिकवरी से जुड़े दो लोग उसके घर पहुंचे, कुछ काम होने का बहाना लेकर इस लड़के को अपने साथ स्कूटी पर बिठा ले गए। अब पीड़ित नेवल ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आरोप है कि नेवल को लखनऊ के सदर इलाके में एक कमरे में कैद कर दिया गया, उससे बंधुआ मजदूरी कराई गई, लखनऊ के एक ब्लड बैंक में ले जाकर जोर जबरदस्ती करके एक यूनिट खून भी निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, पीड़ित के भाई के पास एक फोन कॉल आई कि पैसे भेजो और अपने भाई को ले जाओ। उसके भाई ने डरकर एक दुकानदार को के माध्यम से रिकवरी से जुड़े शुभम सिंह के QR कोड पर 2,799 रुपए ट्रांसफर भी कर दिए, लेकिन वसूलीबाज नहीं रुके। आरोपों के मुताबिक अपनी कॉल पर 12,500 रुपए मांगे गए, ना देने पर पीड़ित को मारकर गोमती नदी में बहा देने की धमकी दी गई। जब ये परिवार पुलिस के पास पहुंचा तब जाकर पांचवें दिन पीड़ित को छोड़ा। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच और पूछताछ कर आगे कार्रवाई कर रही है।

0: गया अस्पताल में, ब्लड निकलवाया।
1: कितना?
0: एक बोतल।
1: एक बोतल।
0: उसके बाद वहाँ से लेके सीधा घर गए।
1: फिर
0: घर पे जाके मुझसे एक 2600 रुपए की मांग की। तो सर जी मैंने 2600 रुपए मंगवाया। तो उसमें भाई से बोला कि भैया 2600 रुपए 200 रुपए और डाल दो जिससे मैं आ सकूं घर। तो 2800 रुपए उसमें सर जी डाला गया। उसके बाद इन्होंने बोला कि मैं छोड़ दूंगा, इन्होंने नहीं छोड़ा। उसके बाद शाम को जब आए वही 10-11 बजे तो फिर इन्होंने हमें मारा पीटा धमकाया।
2: घटना की सेंसिटिविटी समझते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया गया था एवं इसमें 2 अभियुक्तों को हिरासत में लेने के लिए 3 टीम गठित किया गया था। तुरंत ही इसमें वादिनी के जो बेटे हैं नेवल को।
3: अगली खबर आपको बताएंगे अंजना 2.0। ये खबर AI की वजह से होने वाले ऐसे नुकसान से जुड़ी है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। मशहूर यूनिवर्सिटी MIT की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक अब स्टूडेंट हर कठिन सवाल पर दिमाग खपाने के बजाय AI के आगे घुटने टेक रहे हैं। अगर सोचना, समझना, याद रखना मशीनें करेंगी तो इंसान का दिमाग किस काम का रहेगा? बिल्कुल अंजना, कोडिंग हो, गणित का कोई कठिन सवाल या कोई भारी भरकम, ऐसे आज छात्र किसी भी समस्या के आते ही खुद के दिमाग का इस्तेमाल करने के बजाय सीधे AI चैटबॉट के पास भागते हैं। MIT की रिपोर्ट के मुताबिक AI से झटपट मिला सही जवाब छात्रों को ये भ्रम देता है कि वो सीख रहे हैं, जबकि असल में वो सोचने का मौका ही गवा देते हैं। MIT के सर्वे में 46% छात्र रोजाना AI टूल का इस्तेमाल करते हैं और 90% छात्रों को खुद इस बात की चिंता है कि वे AI पर हद से ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। तो इसी के साथ आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और जो लोग कल तक अपने घर का झगड़ा छिपाते थे, आज वो अपने एक्साइटमेंट का लाइव टेलीकास्ट करते हैं। नमस्कार।

मोदी सरकार 15 अक्टूबर से 2000 रुपए से ऊपर के यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर चार्ज लगाने जा रही है, लेकिन सरकार के इस फैसले पर विपक्ष और राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने सीधे मोदी सरकार पर अमेरिका के दबाव में आने का आरोप लगाया और इस फैसले को वापस लेने की मांग की। सरकार जवाब दे रही है कि वो किसी भी विदेशी दबाव में नहीं है।

0: भैया कैश यूज करना बंद करो, यूपीआई करो, यूपीआई करो। और अब उसी यूपीआई की वसूली करने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं।
1: ये मर्चेंट पे कॉस्ट, मर्चेंट जो है वो पे करेगा, ना के जो एंड यूजर या कंज्यूमर पे होगा।
2: मोदी जी प्लीज स्टॉप लाइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, हैव अ स्पाइन, खड़े हो जाइए और यूपीआई टैक्स को वापस लीजिए।
3: जो खुद किसी और के इशारे पे काम करते हो और वो इस तरह की अनगढ़ बातें करते
2: हैं। ये अमेरिका के दबाव के अंदर ये सरकार बिल्कुल घुटने टेक गई है।
0: यूपीआई पर मार, गरीब पर वार और फिर झुकी अमेरिका के आगे मोदी सरकार।
4: तो अमेरिका का क्या मतलब है इसमें? हमें भारत की इकोनॉमी डेवलप करनी है, देश के लिए पैसा भी चाहिए।
5: नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी देश की इकोनॉमी को डुबा के रखी है।
6: मुझे लगता है कांग्रेस का काम ही केवल गुमराह करना और आलोचना करने का रह गया।
7: ये नाराज फूफा ने देश की जनता की जेब काटने का फैसला लिया है।
0: जनता का कितना गला रेता जाएगा मैं ये जानना चाहूंगा।
8: राहुल गांधी जी की बात करें, सुबह शाम उन्हें मोदी जी दिखते हैं ताकि किसी न किसी विषय पर मोदी विरोध को ऊपर कर सके और मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बोल पाए।
9: इधर 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर सरकार ने चार्ज लगाया, उधर विपक्ष ने सीधे पीएम मोदी पर जैसे धावा बोल दिया। सबसे पहले राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो जारी करके न सिर्फ सरकार के इस फैसले की आलोचना की बल्कि आरोप लगाया कि यूपीआई पर चार्ज से अमेरिका को फायदा होगा और सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। जी हां, राहुल गांधी ने अपने वीडियो में कहा कि इंदिरा जी हमेशा सीधी खड़ी रहती थी पर ये सरकार आज अमेरिका के सामने दंडवत हो गई है। यूपीआई पर सरकार के फैसले से अमेरिका को फायदा होगा।
2: He is neither left nor right. He has decided to lie down straight and prostrate himself in front of Donald Trump. He's put a tax on every single Indian person by taxing UPI and giving huge amount of money to the United States. Modi ji, please stop lying down in front of the United States. Have a spine, khade ho jaiye aur UPI tax ko wapis lijiye.
9: यूपीआई पर चार्ज को राहुल गांधी ने अमेरिका से जोड़ा तो कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। लेकिन जवाब में सरकार कह रही है कि यूपीआई नियमों में बदलाव किसी विदेशी दबाव में नहीं लाया गया है,
0: क्योंकि वसूली मैन नरेंद्र मोदी का कहर जारी है और इस बार जो वसूली है वो अमेरिका के सामने बार बार सरेंडर करने की आदत से मजबूर होकर फिर की जा रही है। वसूली के नए प्लान में 2000 से ऊपर के हर यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन में 0.4% चार्ज लगेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह अभी तक पूरी तरह से फ्री था, पूरी तरह से मुफ्त था।
3: देश हित में और देश के लोगों के हित में मोदी जी जब भी कोई अच्छा फैसला लेते हैं, इनको वो भाता नहीं है, इनको मोदी फोबिया हो गया है।

0: कोई एमडीआर नहीं लगने वाला है।
1: यूपीआई पर लगे चार्ज को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी समझा रही है कि ग्राहकों पर इसका कोई सीधा सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि घूम फिरकर ये आम आदमी की जेब पर ही आएगा। इसी बीच यूपीआई पर चार्ज का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजेक्शन्स पर नए चार्ज लगाने के खिलाफ याचिका दायर की गई है।
2: राहुल गांधी के जवाब में मोदी सरकार और बीजेपी ने यूपीआई पर लगे चार्ज पर देश को समझाना शुरू किया कि पहले तो 2000 रुपए से नीचे के भुगतान पर कोई चार्ज नहीं है और 2000 रुपए के ऊपर के ट्रांजैक्शन पर चार्ज ग्राहक को नहीं बल्कि दुकानदार या कारोबारी को देना होगा। सरकार ने एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू किया है, यानी 15 अक्टूबर 2026 से 2000 रुपए से ज्यादा के चुनिंदा यूपीआई मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% एमडीआर लगेगा। इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन होगी। ये शुल्क मर्चेंट से लिया जाएगा, ग्राहक से नहीं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो कह रही है कि एमडीआर यानी यूपीआई पर लगे चार्ज का ग्राहक से कोई लेना देना नहीं है, तो आखिर में ये टैक्स घूम फिर कर आम आदमी की जेब पर ही आएगा।
3: मिनिस्टर फाइनेंस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि एक आम नागरिक पर्सन टू पर्सन पे करता है तो कुछ नहीं, पर्सन टू मर्चेंट होता है जो उस पर 0.4% लगेगा, वो भी मर्चेंट को देना है, आदमी को नहीं देना है।
4: मैं और आप और इस देश का हर व्यक्ति जानता है कि कोई मर्चेंट बढ़ी हुई कॉस्ट को खुद बेयर नहीं करता है। उसका बड़ा आसान तरीका है, वो कैसे ये कॉस्ट निकालेगा, कुछ नहीं करेगा, वो धीमे से कीमत बढ़ाएगा। बार बार हमने ये देखा है।
2: आपको बता दें कि अभी एक हफ्ता पहले ही हुआ जब ब्रिक्स बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की ताकत दुनिया को बताई थी। मोदी ने कहा था कि आज दुनिया के 50% रियल टाइम पेमेंट यूपीआई वाली तकनीक से होते हैं।
5: भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई, इसने पॉपुलेशन स्केल पर फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल ट्रांजेक्शन को नई गति दी है। आज विश्व के 50% रियल टाइम पेमेंट्स इसी टेक्नोलॉजी पर होते हैं।
2: लेकिन जैसे ही यूपीआई पर 0.4% एमडीआर लगा तो सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ। कांग्रेस कह रही है कि पहले तो सरकार कहती थी कि यूपीआई करो, अब उसी यूपीआई पर चार्ज लगा रही है।
4: क्योंकि आप ही ने तो कहा था भैया कैश यूज करना बंद करो, यूपीआई करो, यूपीआई करो। आप सेल्समैन बने हुए थे यूपीआई के और अब उसी यूपीआई की वसूली करने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं।
6: वो मुझे लगता है कि सरकार चलानी है तो सरकार के रेवेन्यू सरकार को मिलना चाहिए ही। और राहुल गांधी का आरोप है कि भाई अमेरिका के कहने पर ही ऐसा किया है, तो अमेरिका का क्या मतलब है इसमें? हमें भारत की इकोनॉमी डेवलप करनी है, देश के लिए पैसा भी चाहिए।
2: आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट्स पर चार्ज लगाने के फैसले को भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को टिकाऊ बनाए रखने के लिए जरूरी कहा है, तो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स वाली कंपनियां भी इसके फायदे गिना रही हैं।
7: यूपीआई का एमडीआर 0.4% पे आज भी दुनिया का सबसे सस्ता एमडीआर है, मगर वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि होपफुली उसके वजह से फोन पे और बाकी जितने भी पेमेंट कंपनीज हैं, अब हम लोग भी जो है इन्वेस्ट कर पाएंगे वापस मार्केट को ग्रो करने में।
8: आई थिंक कि अगले लेवल की ग्रोथ के लिए ये एमडीआर बहुत जरूरी है और ये इसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है ताकि यूपीआई का और उद्धार हो, भारत का और उद्धार हो।
2: लेकिन कांग्रेस सरकार के यूपीआई वाले फैसले पर न सिर्फ सवाल उठा रही है बल्कि महंगाई से जूझते लोगों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा बता रही है।
4: बजाय लोगों के मरहम लगाने के, महंगाई से जूझते हुए लोगों के घाव पर नमक मिर्च रगड़ी जा रही है कि ऐसा कैसे है भैया, हम तो अमेरिका के आगे नतमस्तक हो गए, मोदी जी कह रहे हैं तो वसूली तो तुमसे करनी पड़ेगी क्योंकि उनके इशारे पे की जा रही है।
9: कोई टैक्स नहीं है, 96% से ज्यादा लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
2: मोदी सरकार यूपीआई को भारत की बड़ी सफलता बताती है। 2016 में नोटबंदी के बाद भारत में लेस कैश और डिजिटल पेमेंट्स का मुद्दा राजनीतिक चर्चा में आया था और अब एक बार फिर से इस पर सियासी घमासान छिड़ा है। 15 अक्टूबर से

0: यूपीआई की नई व्यवस्था लागू होगी, लेकिन आम जनता और कारोबारी इस पर क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं।
1: ग्राहक तो उस पे लगा देगा ही चार्ज, क्योंकि भाई वो ले रहा है 2000 के ऊपर पेमेंट ले रहा है, एक्स्ट्रा दे रहा है, तो वो जनता पे ही लगा देगा।
2: बिल्कुल, दुकानदार जनता से ही वसूलेंगे, वो अपनी लागत नहीं बढ़ाएंगे।
3: सरकार थोड़ी हमें मतलब दुकानदार के पास हमारा निपटारा करवाने आएगी कि नहीं इनसे फीस नहीं लेनी।
4: निश्चित रूप से देश के 10 करोड़ छोटे व्यापारी रिटेल कारोबारियों के लिए एक बहुत बड़ा ग्रहण होने वाला है।
5: सामने वाला हमें देना नहीं चाहेगा और ये एक एक्स्ट्रा, इसके हमें नहीं लग रहा था कि सरकार को कोई इसे हो सकता थी।
6: जो है मोदी सरकार कहती है कि जो है ऑनलाइन आप जो है लेन देन करिए, तो वो प्रथा फिर बंद हो जाएगी, फिर पुरानी प्रथा पे हमको लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
7: UPI कहते हैं पहले गुड़ खाओ और बाद में ढेला, वो हाल है।
0: आज तक ब्यूरो।
8: यूसीसी पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान के बाद छिड़ा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले एनडीए में यूसीसी को लेकर विरोध के सुर उठे, अब मुस्लिम स्कॉलर्स और धर्मगुरुओं ने भी कॉमन सिविल कोड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सवाल मुस्लिम वोट बैंक का है, लिहाजा कांग्रेस हो, ओवैसी हो या फिर समाजवादी पार्टी, सभी यूसीसी को संविधान विरोधी बता रहे हैं।
0: यूसीसी पर चुनावी प्रयोग या फिर संयोग,
9: फिर ताकतों का एक बड़ा खराब मिल गया।
0: यूसीसी के खिलाफ मदनी ने खोला मोर्चा।
10: यूसीसी तुम लागू कर रहे, निकालो लफ्जी हाथ को।
0: ओवैसी की एंट्री यूसीसी पर खतरे की घंटी। तेजस्वी और अखिलेश यादव का ऐलान,
11: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है।
0: बीजेपी का शुद्ध कम्युनल एजेंडा है यूसीसी। यूसीसी पर लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आए। कॉमन सिविल कोड पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान से उठा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं दे रहा। पहले यूसीसी पर एनटीए के अंतर मतभेद सामने आए, अब विपक्ष और इस्लाम के जानकारों ने खुल्लम खुल्ला मोर्चा खोल दिया है। अरशद मदनी ने ऐलान किया है कि देश के मुसलमानों को ऐसा कोई कानून कबूल नहीं है जो शरीयत के खिलाफ है। गृह मंत्री का ये ऐलान है कि 2029 से पहले एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि देश संविधान से चलेगा या किसी राजनीतिक दल के वैचारिक एजेंडे से। हम ऐसा कोई कानून स्वीकार नहीं कर सकते जो शरीयत के खिलाफ हो। मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन अपने धर्म और दीन से हरगिज नहीं। ये सवाल मुसलमानों के वजूद का नहीं, बल्कि उनके संवैधानिक और धार्मिक अधिकारों का है। सरकार समान नागरिक संहिता के माध्यम से मुसलमानों से वो अधिकार छीनना चाहती है जो देश के संविधान ने उन्हें दिए हैं। मतलब यही है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी मौसम में यूसीसी एक बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने बीजेपी के यूसीसी प्लान पर सीधा हमला बोला है। जनता समझ रही है कि भाजपा जिस यूसीसी की बात कर रही है, दरअसल उसका फुल फॉर्म कुछ और है, यूसीसी यानी अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। इधर सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव का पोस्ट आया, उधर यूपी में टीम एनडीए ने अखिलेश की टिप्पणी को हाथों हाथ उठा लिया। बस फिर क्या था, पूरे मामले में हिंदू और मुसलमान की सीधी एंट्री हो गई।
12: समाजवादी पार्टी के मुखिया हमेशा इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं, उनके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई नीति नहीं है। लोगों को बरगलाना, झुठलाना, इनके प्रकार सत्ता हासिल करना, इसके सिवाय उनका कोई काम नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग अब स्वीकार नहीं करेंगे, उनको कभी माफ नहीं करेंगे। गुंडई, अराजकता, दंगा, प्रदेश की समाजवादी पार्टी के रीजन में जो हालात थे, आज भी लोग भूले नहीं।
13: उनके सलाहकार कैसे हैं, उसी की वजह से वह सत्ता से बाहर है। संविधान हमेशा सामाजिक न्याय की बात करता है, तो जब सामाजिक न्याय तभी मिलेगी जब समान नागरिक संहिता रहेगा, समान अधिकार रहेगा। अधिकार तो कानून से मिलता, अधिनियम से, अधिसूचना से। तो जब हिंदू कोड बिल अंबेडकर ने इसीलिए उनका विरोध किया था कि धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव है, इसलिए उनको इस्तीफा दिया था। कांग्रेस नहीं मानती थी और फिर मानना पड़ा कांग्रेस को, लेकिन एक विशेष वर्ग में अभी तक चला आ रहा है। हमारे यहाँ तो खत्म हो गया, लेकिन अभी विशेष वर्ग में जिनको वकालत कर रहा है, क्या महिलाओं को, मुस्लिम महिलाएं उनकी वोटर नहीं है क्या? मुस्लिम महिलाएं इस देश की नहीं है क्या?
14: अखिलेश यादव जी को कोई काम तो है नहीं, 5 साल सड़कों पर तो विरोध कर नहीं पाए चूंकि विरोध का उन्हें मौका नहीं मिला। अब वो ट्विटर खेल रहे हैं। ट्विटर खेल के देश में राजनीति नहीं होती। अखिलेश यादव जी दो ही काम करते हैं, या तो ट्विटर खेलते हैं या उस पर टीवी पर बैठकर गेम खेलते हैं, दूसरा उन्हें कोई काम नहीं है। कई कोड़ी हो गई। अब अखिलेश जी इस प्रदेश की राजनीति में नहीं आ सकते। वो तो एक बार मुलायम सिंह जी की कृपा से वो सीएम बन गए। अब दुनिया में की कोई ताकत उन्हें सीएम नहीं बना सकती।
8: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यूसीसी पर अपना स्टैंड स्पष्ट कर चुके हैं। तो कुछ दिन पहले मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को योगी सरकार की मुसलमान विरोधी नीति का हिस्सा भी उन्होंने बताया। बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव के बयानों को वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा जा रहा है। तो वहीं यूपी चुनाव में ताल ठोक रहे ओवैसी लखनऊ से दूर भोपाल में यूसीसी को लेकर जबरदस्त तरीके से गरजे हैं।
0: AIMM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी यूसीसी के विरोध में बुलाई गई जनसभा में हिस्सा लेने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे। मौका यूसीसी के विरोध का था, लिहाजा ओवैसी ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला।
15: यूसीसी का कानून नाफिज किया गया, वो न सिर्फ मुसलमानों के कुरान और सुन्नत के खिलाफ है बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के भी खिलाफ है। आप तमाम लोगों का यहाँ पर जमा होना, बीजेपी और दिल्ली में बैठे हमारे सुस्त वजीर आजम को पैगाम मिलता है कि हम आपके बनाए हुए कानून को भारत के संविधान के खिलाफ मानते हैं और हम पुरजोर इसके खिलाफ एहतजाज अपना दर्ज कराते हैं।
0: पहले ओवैसी ने यूसीसी को संविधान और मुसलमान विरोधी बताया, उसके बाद अपने चिर परिचित अंदाज में नौजवानों को किसी मौलाना की तरह शरीयत को लेकर बड़ी नसीहत दे डाली।
16: अरे सोवियत यूनियन इस्लाम को खत्म नहीं कर सका, ये आरएसएस कौन सी खेत की मौली है जो हक की सभा को बुझा सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। मेरे नौजवानों, तुम कौम का मुस्तकबिल हो। कानून बनते हैं, मिट जाएंगे बनाने वाले इंशाअल्लाह, मगर याद रखो नौजवानों, तुम जब तक अपनी तबीयत पर शरीयत को गालिब नहीं करोगे हम इनकलाब नहीं ला पाएंगे।
0: ओवैसी यही नहीं रुके, खुल्लम खुल्ला ऐलान किया कि यूसीसी के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने से देश का मुसलमान अब पीछे नहीं हटेगा।
16: तुम हमको कमजोर समझकर दबा रहे हो, मगर याद रखो जब कमजोर उठ जाएगा, बेदार हो जाएगा, तो जिंदगी उसको उसकी जिंदगी का मकसद उसको समझ में आ जाएगा। जब कमजोर बेदार हो जाएगा, याद रखो मौत का डर दूर हो जाएगा, तो फिर किसी के महल आबाद नहीं रहेंगे, किसी का इख्तदार नहीं रहेगा। तुम हमको कब तक दबाओगे? अरे दबाते रहो, मगर हम दबने वाले हैं। तुम जितना दबाओगे उतनी ताकत से हम उठेंगे इंशाअल्लाह।
0: यूसीसी विरोधी जनसभा में ही ओवैसी ने बीजेपी विधायक की विवादित टिप्पणी पर ललकारा।
17: मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, जब हिंदुस्तान में लोग कहते थे सुई बनाना नहीं जानते, तो मोदी जी ने कहा कि हम मिसाइल बनाएंगे। जैसे तुम करोत के चौराहे पर खड़े होकर मिसाइल लगाओ और काजी कैंप पे गिरा दो, वैसे ही। अरे मैंने यहाँ का काजी कैंप नहीं बोला, इस्लामाबाद वाला बोला था।
16: कोई रामेश्वर शर्मा साहब का बयान सुना, क्या बोले? मैं मिसाइल लॉन्च करूंगा करोल स्क्वायर से खाजी कैंप पर। रामेश्वर शर्मा, अगर तुम मई के लाल हो, अकेला फिरता हो खाजी कैंप में आकर। मैं शहीद होने तैयार हूँ, मरने तैयार हो, तुम्हारे जैसे सामने सर झुकाने वाले हैं।
0: मतलब यही है कि यूसीसी पर शाह के बयान पर बवंडर खड़ा हो चुका है। कांग्रेस भी यूसीसी पर बीजेपी को घेरने में पीछे नहीं है।
18: संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं, उनके ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं। और सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे को साथ लेकर क्या फर्क पड़ रहा है यूसीसी से? बताओ मुझे कि निकाह नहीं होगा क्या हमारा? निकाह ही तो होगा, फेरे नहीं होंगे क्या? फेरे ही तो होंगे, क्या तमाशा बना रखा है? कुछ भी नहीं
19: है। भारत जो है वो तमाम अलग अलग तरह के फूलों से मिलके बना, आप सब कुछ एक रंग का कर देना चाहते हैं, सब कुछ एक जैसा कर देना चाहते हैं, डाइवर्सिटी कहां चली जाएगी? तो गृहमंत्री जी को यह समझना पड़ेगा कि ये देश बहुत अलग अलग भाषाओं, अलग अलग बोलियों, अलग अलग कल्चर, अलग अलग तहजीब, अलग अलग धर्मों सबसे मिल करके भारत बनता है। आप सब कुछ एक कर देना चाहते हैं, एक रंग का, तो हम तिरंगे के साथ खड़े हैं, हम तिरंगे वाले लोग हैं।
0: वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यूसीसी को कम्युनल एजेंडा बताया।
20: हमने सहारनपुर की मस्जिद भी गिरवा दी, फिर भी कोई दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हम मेरठ भी मस्जिद गिरवाने जा रहे हैं, संभल भी जा रहे हैं, मुरादाबाद भी जा रहे हैं, कहीं कुछ हलचल ही नहीं हो रही है, तब यूसीसी। तो कुल मिला के भारतीय झगड़ा पार्टी जो है वो इस देश को बर्बाद करना चाहती है। अब इस देश के लोगों को तय करना है।
21: यूसीसी जो है वो किसी एक मजहब के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण मुल्क के लिए है। किसी एक धर्म के साथ उसको जोड़कर आप नहीं देख सकते, ये संपूर्ण मुल्क के लिए है। ये कानून हिंदू कानून नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का कानून है।
0: यूसीसी के बिसात पर तमाम सियासी पार्टियों के बीच शह और बात का खेल शुरू हो चुका है, लेकिन देखना यही है कि शह और बात के इस खेल में बाजी कौन जीतता है। आज तक ब्यूरो।
8: और इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

आज प्रधानमंत्री मोदी का 76वां जन्मदिन। बीजेपी एक महीने तक चलाएगी सेवा संकल्प अभियान। अलग अलग शहरों में पार्टी के दिग्गज कार्यक्रमों में होंगे शामिल। जलेंगे लाखों दिए। 2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट्स पर शुल्क के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी का मोर्चा। कहा नियम वापस ले सरकार। वित्त मंत्री का जवाब, फैसले के पीछे कोई विदेशी दबाव नहीं। गोरखपुर में सीएम योगी की चुनावी हुंकार। कहा पहले एसपी और कांग्रेस सरकार में अपराध और डर, आज यूपी दंगा और कर्फ्यू मुक्त। बोले 19 सितंबर से 1,00,000 नई नौकरियों की शुरुआत। नौकरी पेशा कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा। कैबिनेट ने अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रतिमाह किया। 51,00,000 लोगों को फायदा। और कन्नड़ फिल्मों के दमदार अभिनेता अनंत नाग को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। सांसद बोर्ड की नई टीम के लिए भी 18 सदस्यों का ऐलान। मोदी सरकार 15 अक्टूबर से 2,000 रुपए से ऊपर के यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर चार्ज लगाने जा रही है, लेकिन सरकार के इस फैसले पर विपक्ष और राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने सीधे मोदी सरकार पर अमेरिका के दबाव में आने का आरोप लगाया और इस फैसले को वापस लेने की मांग की। सरकार जवाब दे रही है कि वो किसी भी विदेशी दबाव में नहीं है।

0: तो कहा था भैया कैश यूज करना बंद करो, यूपीआई करो, यूपीआई करो, और अब उसी यूपीआई की वसूली करने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं।
1: ये मर्चेंट पे कॉस्ट है, मर्चेंट जो है वो पे करेगा, ना कि जो एंड यूजर या कंज्यूमर पे होगा।
2: मोदी जी प्लीज स्टॉप लाइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, हैव अ स्पाइन, खड़े हो जाइए और यूपीआई टैक्स को वापस लीजिए।
3: जो खुद किसी और के इशारे पे काम करते हो और वो इस तरह की अनगढ़ बातें करते
2: हैं। अमेरिका के दबाव के अंदर ये सरकार बिल्कुल घुटने टेक गई है।
0: यूपीआई पर मार, गरीब पर वार, और फिर झुकी अमेरिका के आगे मोदी सरकार।
4: तो अमेरिका का क्या मतलब है इसमें, हमें भारत की इकोनॉमी डेवलप करनी है, देश के लिए पैसा भी चाहिए।
5: नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी देश की इकोनॉमी को डुबा के रखी है।
6: मुझे लगता है कांग्रेस का काम ही केवल गुमराह करना और आलोचना करने का रह गया।
7: ये नाराज फूफा ने देश की जनता की जेब काटने का फैसला लिया है।
0: जनता का कितना गला रेता जाएगा मैं ये जानना
8: चाहूंगा। राहुल गांधी जी की बात करें, सुबह शाम उन्हें मोदी जी दिखते हैं ताकि किसी न किसी विषय पर मोदी विरोध को तो कर सके और मोदी सरकार के खिलाफ भी बोल पाए।
9: इधर 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर सरकार ने चार्ज लगाया, उधर विपक्ष ने सीधे पीएम मोदी पर जैसे धावा बोल दिया। सबसे पहले राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो जारी करके न सिर्फ सरकार के इस फैसले की आलोचना की बल्कि आरोप लगाया कि यूपीआई पर चार्ज से अमेरिका को फायदा होगा और सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। जी हां, राहुल गांधी ने अपने वीडियो में कहा कि इंदिरा जी हमेशा सीधी खड़ी रहती थीं, पर ये सरकार आज अमेरिका के सामने दंडवत हो गई है। यूपीआई पर सरकार के फैसले से अमेरिका को फायदा होगा।
2: He is neither left nor right. He has decided to lie down straight and prostrate himself in front of Donald Trump. He's put a tax on every single Indian person by taxing UPI and giving huge amount of money to the United States. Modi ji, please stop lying down in front of the United States. Have a spine, khade ho jaiye, aur UPI tax ko wapis lijiye.
9: यूपीआई पर चार्ज को राहुल गांधी ने अमेरिका से जोड़ा तो कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। लेकिन जवाब में सरकार कह रही है कि यूपीआई नियमों में बदलाव किसी विदेशी दबाव में नहीं लाया गया है,
0: क्योंकि वसूली मैन नरेंद्र मोदी का कहर जारी है और इस बार जो वसूली है वो अमेरिका के सामने बार बार सरेंडर करने की आदत से मजबूर होकर फिर की जा रही है। वसूली के नए प्लान में 2000 से ऊपर के हर यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन में 0.4% चार्ज लगेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह अभी तक पूरी तरह से फ्री था, पूरी तरह से मुफ्त था।
3: देश हित में और देश के लोगों के हित में मोदी जी जब भी कोई अच्छा फैसला लेते हैं, इनको वो भाता नहीं है, इनको मोदी फोबिया हो गया है। यूपीआई से अब सरकार ने स्पष्ट किया है 2000 तक कुछ नहीं होने वाला और 96% लोग 2000 से ज़्यादा यूपीआई से लेन देन, ये आंकड़े हैं, लेन देन नहीं करते। फिर भी पर्सन सुपर डन पर्सन, कोई MDR नहीं लगने वाला है।
10: यूपीआई पर लगे चार्ज को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी समझा रही है कि ग्राहकों पर इसका कोई सीधा सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि घूम फिरकर ये आम आदमी की जेब पर ही आएगा। इसी बीच यूपीआई पर चार्ज का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर नए चार्ज लगाने के खिलाफ याचिका दायर की गई है।
9: राहुल गांधी के जवाब में मोदी सरकार और बीजेपी ने यूपीआई पर लगे चार्ज पर देश को समझाना शुरू किया कि पहले तो 2000 रुपए से नीचे के भुगतान पर कोई चार्ज नहीं है और 2000 रुपए के ऊपर के ट्रांजैक्शन पर चार्ज ग्राहक को नहीं बल्कि दुकानदार या कारोबारी को देना होगा। सरकार ने MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू किया है, यानी 15 अक्टूबर 2026 से 2000 रुपए से ज्यादा के चुनिंदा UPI मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% MDR लगेगा। इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन होगी। ये शुल्क मर्चेंट से लिया जाएगा, ग्राहक से नहीं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो कह रही है कि MDR यानी UPI पर लगे चार्ज का ग्राहक से कोई लेना देना नहीं है, तो आखिर में ये टैक्स घूम फिर कर आम आदमी की जेब पर ही आएगा।
1: मिनिस्टर फाइनेंस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि एक आम नागरिक पर्सन टू पर्सन पे करता है तो कुछ नहीं, पर्सन टू मर्चेंट होता है जो उस पर 0.4% लगेगा, वो भी मर्चेंट को देना है, आदमी को नहीं देना है।
0: मैं और आप और इस देश का हर व्यक्ति जानता है कि कोई मर्चेंट बढ़ी हुई कॉस्ट को खुद बेयर नहीं करता है। उसका बड़ा आसान तरीका है, वो कैसे ये कॉस्ट निकालेगा, कुछ नहीं करेगा, वो धीमे से कीमत बढ़ाएगा। बार बार हमने ये देखा है।
9: आपको बता दें कि अभी एक हफ्ता पहले ही हुआ जब ब्रिक्स बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की ताकत दुनिया को बताई थी। मोदी ने कहा था कि आज दुनिया के 50% रियल टाइम पेमेंट UPI वाली तकनीक से होते हैं।
11: भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI, इसने पॉपुलेशन स्केल पर फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल ट्रांजैक्शन को नई गति दी है। आज विश्व के 50% रियल टाइम पेमेंट्स इसी टेक्नोलॉजी पर होते हैं।
9: लेकिन जैसे ही UPI पर 0.4% MDR लगा तो सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ। कांग्रेस कह रही है कि पहले तो सरकार कहती थी कि UPI करो, अब उसी UPI पर चार्ज लगा रही है।
0: क्योंकि आप ही ने तो कहा था भैया कैश यूज करना बंद करो, UPI करो, UPI करो। आप सेल्समैन बने हुए थे UPI के और अब उसी UPI की वसूली करने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं।
4: मुझे लगता है कि सरकार चलानी है तो सरकार के रेवेन्यू सरकार को मिलना चाहिए ही। और राहुल गांधी का आरोप है कि भाई अमेरिका के कहने पर ही ऐसा किया है, तो अमेरिका का क्या मतलब है इसमें? हमें भारत की इकोनॉमी डेवलप करनी है, देश के लिए पैसा भी चाहिए।
9: RBI ने UPI पेमेंट्स पर चार्ज लगाने के फैसले को भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को टिकाऊ बनाए रखने के लिए जरूरी कहा है, तो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स वाली कंपनियां भी इसके फायदे गिना रही हैं।
12: UPI का MDR 0.4% पे आज भी दुनिया का सबसे सस्ता MDR है, मगर वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि होपफुली उसके वजह से फोन पे और बाकी जितने भी पेमेंट कंपनीज हैं अब हम लोग भी जो है इन्वेस्ट कर पाएंगे वापस मार्केट को ग्रो करने में।
13: आई थिंक कि अगले लेवल की ग्रोथ के लिए ये MDR बहुत जरूरी है और ये इसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है ताकि UPI का और उद्धार हो, भारत का और उद्धार हो।
9: लेकिन कांग्रेस सरकार के UPI वाले फैसले पर न सिर्फ सवाल उठा रही है बल्कि महंगाई से जूझते लोगों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा बता रही है।
0: बजाय लोगों के मरहम लगाने के, महंगाई से जूझते हुए लोगों के घाव पर नमक मिर्च रगड़ी जा रही है कि ऐसा कैसे है भैया, हम तो अमेरिका के आगे नतमस्तक हो गए, मोदी जी कह रहे हैं तो वसूली तो तुमसे करनी पड़ेगी क्योंकि उनके इशारे पे की जा रही है।
14: कोई टैक्स नहीं है, 96% से ज्यादा लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
9: मोदी सरकार UPI को भारत की बड़ी सफलता बताती है। 2016 में नोटबंदी के बाद भारत में लेस कैश और डिजिटल पेमेंट्स का मुद्दा राजनीतिक चर्चा में आया था और अब एक बार फिर से इस पर सियासी घमासान छिड़ा है। 15 अक्टूबर से UPI की नई व्यवस्था लागू होगी, लेकिन आम जनता और कारोबारी इस पर क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं।
15: ग्राहक तो उस पे लगा देगा ही चार्ज, क्योंकि भाई वो ले रहा है 2000 के ऊपर पेमेंट ले रहा है, एक्स्ट्रा दे रहा है, तो वो जनता पे ही लगा देगा।
16: बिल्कुल, दुकानदार जनता से ही वसूलेंगे, वो अपनी लागत नहीं बढ़ाएंगे।
17: सरकार थोड़ी हमें मतलब दुकानदार के पास हमारे निपटारा करवाने आएगी कि नहीं इनसे फीस नहीं लेनी।
18: निश्चित रूप से देश के 10 करोड़ छोटे व्यापारी रिटेल कारोबारियों के लिए एक बहुत बड़ा ग्रहण होने वाला है।
19: सामने वाला हमें देना नहीं चाहेगा और ये एक एक्स्ट्रा, इसके हमें नहीं लग रहा था कि सरकार को कोई इसे हो सकता थी।
20: जो है मोदी सरकार कहती है कि जो है ऑनलाइन आप जो है लेन देन करिए तो वो प्रथा फिर बंद हो जाएगी, फिर पुरानी प्रथा पे हमको लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
21: UPI कहते हैं पहले गुड़ खाओ और बाद में ढेला, वो हाल है।
9: आज तक ब्यूरो।
10: UCC पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान के बाद छिड़ा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले एनडीए में यूसीसी को लेकर विरोध के सुर उठे, अब मुस्लिम स्कॉलर्स और धर्मगुरुओं ने भी कॉमन सिविल कोड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सवाल मुस्लिम वोट बैंक का है, लिहाजा कांग्रेस हो, ओवैसी हो या फिर समाजवादी पार्टी, सभी यूसीसी को संविधान विरोधी बता रहे हैं।
9: यूसीसी पर चुनावी प्रयोग या फिर संयोग,
22: नजरिया फिर कब्र से ताकतों का एक बड़ा खराब मिल गया।
9: यूसीसी के खिलाफ मदनी ने खोला मोर्चा।
23: यूसीसी तुम लागू कर रहे, निकालना लव जिहाद को।
9: ओवैसी की एंट्री यूसीसी पर खतरे की घंटी। तेजस्वी और अखिलेश यादव का ऐलान,
24: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है।
9: बीजेपी का शुद्ध कम्युनल एजेंडा है यूसीसी। यूसीसी पर लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आए। कॉमन सिविल कोड पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान से उठा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले यूसीसी पर एनटीए के अंतर मतभेद सामने आए, अब विपक्ष और इस्लाम के जानकारों ने खुल्लम खुल्ला मोर्चा खोल दिया है। अरशद मदनी ने ऐलान किया है कि देश के मुसलमानों को ऐसा कोई कानून कबूल नहीं है जो शरीयत के खिलाफ है। गृह मंत्री का ये ऐलान है कि 2029 से पहले एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि देश संविधान से चलेगा या किसी राजनीतिक दल के वैचारिक एजेंडे से। हम ऐसा कोई कानून स्वीकार नहीं कर सकते जो शरीयत के खिलाफ हो। मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है लेकिन अपने धर्म और दीन से हरगिज नहीं। ये सवाल मुसलमानों के वजूद का नहीं बल्कि उनके संवैधानिक और धार्मिक अधिकारों का है। सरकार समान नागरिक संहिता के माध्यम से मुसलमानों से वो अधिकार छीनना चाहती है जो देश के संविधान ने उन्हें दिए हैं। मतलब यही है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी मौसम में यूसीसी एक बड़ा मुद्दा बनेगा क्योंकि अखिलेश यादव ने बीजेपी के यूसीसी प्लान पर सीधा हमला बोला है। जनता समझ रही है कि भाजपा जिस यूसीसी की बात कर रही है दरअसल उसका फुल फॉर्म कुछ और है, यूसीसी यानी अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। इधर सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव का पोस्ट आया, उधर यूपी में टीम एनडीए ने अखिलेश की टिप्पणी को हाथों हाथ उठा लिया। बस फिर क्या था, पूरे मामले में हिंदू और मुसलमान की सीधी एंट्री हो गई।
25: समाजवादी पार्टी के मुखिया हमेशा इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं, उनके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई नीति नहीं है। लोगों को बरगलाना, झुठलाना, इनके प्रकार सत्ता हासिल करना, इसके सिवाय उनका कोई काम नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग अब स्वीकार नहीं करेंगे, उनको कभी माफ नहीं करेंगे। गुंडई, अराजकता, दंगा, प्रदेश की समाजवादी पार्टी के रीजन में जो हालात थे आज भी लोग भूले नहीं।
26: उनके सलाहकार कैसे हैं, उसी की वजह से वह सत्ता से बाहर है। संविधान हमेशा सामाजिक न्याय की बात करता है, तो जब सामाजिक न्याय तभी मिलेगी जब समान नागरिक संहिता रहेगा, समान अधिकार रहेगा। अधिकार तो कानून से मिलता, अधिनियम से, अधिसूचना से। तो जब हिंदू कोड बिल अंबेडकर ने इसीलिए उनका विरोध किया था कि धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव है, इसलिए उनको इस्तीफा दिया था। कांग्रेस नहीं मानती थी और फिर मानना पड़ा कांग्रेस को, लेकिन एक विशेष वर्ग में अभी तक चला आ रहा है। हमारे यहाँ तो खत्म हो गया लेकिन अभी विशेष वर्ग में जिनको वकालत कर रहा है, क्या महिलाओं को, मुस्लिम महिलाएं उनकी वोटर नहीं है क्या? मुस्लिम महिलाएं इस देश की नहीं है क्या?
27: अखिलेश यादव जी को कोई काम तो है नहीं, 5 साल सड़कों पर तो विरोध कर नहीं पाए चूंकि विरोध का उन्हें मौका नहीं मिला। अब वो ट्विटर खेल रहे हैं। ट्विटर खेल के देश में राजनीति नहीं होती। अखिलेश यादव जी दो ही काम करते हैं, या तो ट्विटर खेलते हैं या केवल उस पर टीवी पर बैठकर गेम खेलते हैं, दूसरा उन्हें कोई काम नहीं है। कई कोड़ी हो गई, अब अखिलेश जी इस प्रदेश की राजनीति में नहीं आ सकते। वो तो एक बार मुलायम सिंह जी की कृपा से वो सीएम बन गए, दुनिया में की कोई ताकत उन्हें सीएम नहीं बना सकती।
10: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यूसीसी पर अपना स्टैंड स्पष्ट कर चुके हैं, तो कुछ दिन पहले मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को योगी सरकार की मुसलमान विरोधी नीति का हिस्सा भी उन्होंने बताया। बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव के बयानों को वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा जा रहा है, तो वहीं यूपी चुनाव में ताल ठोक रहे ओवैसी लखनऊ से दूर भोपाल में यूसीसी को लेकर जबरदस्त तरीके से गरजे हैं।
1: AIMM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी यूसीसी के विरोध में बुलाई गई जनसभा में हिस्सा लेने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे। मौका यूसीसी के विरोध का था, लिहाजा ओवैसी ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला।
2: यूसीसी का कानून नाफिद किया गया, वो न सिर्फ मुसलमानों के कुरान और सुन्नत के खिलाफ है बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के भी खिलाफ है। आप तमाम लोगों का यहाँ पर जमा होना, बीजेपी और दिल्ली में बैठे हमारे सुस्त वजीर आजम को पैगाम मिलता है कि हम आपके बनाए हुए कानून को भारत के संविधान के खिलाफ मानते हैं और हम पुरजोर इसके खिलाफ एहतजाज अपना दर्ज कराते हैं।
1: पहले ओवैसी ने यूसीसी को संविधान और मुसलमान विरोधी बताया, उसके बाद अपने चिर परिचित अंदाज में नौजवानों को किसी मौलाना की तरह शरीयत को लेकर बड़ी नसीहत दे डाली।
2: अरे सोवियत यूनियन इस्लाम को खत्म नहीं कर सका, ये आरएसएस कौन सी खेत की मौली है जो हक की समा को बुझा सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, मेरे नौजवानों तुम कौम का मुस्तकबिल हो, कानून बनते हैं मिट जाएंगे बनाने वाले इंशाल्लाह, मगर याद रखो नौजवानों, तुम जब तक अपनी तबीयत पर शरीयत को गालिब नहीं करोगे हम इनकलाब नहीं ला पाएंगे।
1: ओवैसी यही नहीं रुके, खुल्लम खुल्ला ऐलान किया कि यूसीसी के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने से देश का मुसलमान अब पीछे नहीं हटेगा।
2: तुम हमको कमजोर समझकर दबा रहे हो, मगर याद रखो जब कमजोर उठ जाएगा, बेदार हो जाएगा, तो जिंदगी उसको उसकी जिंदगी का मकसद उसको समझ में आ जाएगा। जब कमजोर बेदार हो जाएगा, याद रखो मौत का डर दूर हो जाएगा, तो फिर किसी के महल आबाद नहीं रहेंगे, किसी का इख्तदार नहीं रहेगा। तुम हमको कब तक दबाओगे? अरे दबाते रहो, मगर हम दबने वाले हैं, तुम जितना दबाओगे उतनी ताकत से हम उठेंगे इंशाल्लाह।
1: यूसीसी विरोधी जनसभा में ही ओवैसी ने बीजेपी विधायक की विवादित टिप्पणी पर ललकारा।
3: मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, जब हिंदुस्तान में लोग कहते थे सुई बनाना नहीं जानते, तो मोदी जी ने कहा कि हम मिसाइल बनाएंगे। कहते तुम करोत के चौराहे पर खड़े होकर मिसाइल लगाओ और काजी कैंप पे गिरा दो, वैसे ही। अरे मैंने यहाँ का काजी कैंप नहीं बोला, इस्लामाबाद वाला बोला था।
2: कोई रामेश्वर शर्मा साहब का बयान सुना, क्या बोले, मैं मिसाइल लॉन्च करूंगा करोल स्क्वायर से खाजी कैंप पर। रामेश्वर शर्मा, अगर तुम मई के लाल हो,
1: मतलब यही है कि यूसीसी पर शाह के बयान पर बवंडर खड़ा हो चुका है। कांग्रेस भी यूसीसी पर बीजेपी को घेरने में पीछे नहीं है।
5: संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं, उनके ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं और सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे को साधने के लिए। क्या फर्क पड़ रहा है यूसीसी से, बताओ मुझे, कि निकाह नहीं होगा क्या हमारा? निकाह ही तो होगा, फेरे नहीं होंगे क्या? फेरे ही तो होंगे, क्या तमाशा बना रखा है? कुछ भी नहीं है।
6: भारत जो है वो तमाम अलग अलग तरह के फूलों से मिलके बना, आप सब कुछ एक रंग का कर देना चाहते हैं, सब कुछ एक जैसा कर देना चाहते हैं, डाइवर्सिटी कहाँ चली जाएगी? तो गृहमंत्री जी को ये समझना पड़ेगा कि ये देश बहुत अलग अलग भाषाओं, अलग अलग बोलियों, अलग अलग कल्चर, अलग अलग तहजीब, अलग अलग धर्मों सबसे मिल करके भारत बनता है। आप सब कुछ एक कर देना चाहते हैं एक रंग का, तो हम तिरंगे के साथ खड़े हैं, हम तिरंगे वाले लोग हैं।
1: वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यूसीसी को कम्युनल एजेंडा बताया।
0: हमने सहारनपुर की मस्जिद भी गिरवा दी, फिर भी कोई दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हम मेरठ भी मस्जिद गिरवाने जा रहे हैं, संभल भी जा रहे हैं, मुरादाबाद भी जा रहे हैं, कहीं कुछ हलचल ही नहीं हो रही है। तब यूसीसी, तो कुल मिला के भारतीय झगड़ा पार्टी जो है वो इस देश को बर्बाद करना चाहती है। अब इस देश के लोगों को तय करना है।
4: यूसीसी जो है वो किसी एक मजहब के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण मुल्क के लिए है। किसी एक धर्म के साथ उसको जोड़कर आप नहीं देख सकते, ये संपूर्ण मुल्क के लिए है। ये कानून हिंदू कानून नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का कानून है।
1: यूसीसी की बिसात पर तमाम सियासी पार्टियों के बीच शह और मात का खेल शुरू हो चुका है, लेकिन देखना यही है कि शह और मात के इस खेल में बाजी कौन जीतता है। आज तक ब्यूरो।
10: दिशा सालियान की मौत मिस्ट्री सुलझने से पहले उस पर सियासी घमासान तेज हो चुका है। महायुति के आरोपों के बाद आखिरकार शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना है ही नहीं, लेकिन मुझे बदनाम करने के लिए जो सियासी अभियान चलाया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि सीबीआई की जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा।

0: दिशा सालियान की मौत, मिस्ट्री पर सियासी घमासान जारी है। दिशा के पिता सतीश सालियान तत्कालीन उद्धव सरकार और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद से महायुति सरकार भी आदित्य ठाकरे पर निशाना साध रही है। लेकिन आदित्य ठाकरे ने आखिरकार दिशा की मौत मिस्ट्री मामले में अपने ऊपर लगाए जा रहे गंभीर आरोपों पर सोशल मीडिया पर खुलकर अपना पक्ष रखा है। आदित्य ने लिखा, मैं दिशा सालियान से कभी नहीं मिला और न ही उन्हें जानता हूँ। पिछले 6 सालों से कुछ लोग जानबूझकर और बिना किसी सबूत के इस दुखद मामले से मेरा नाम जोड़कर मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बदनाम करने का ये अभियान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जोरदार टीवी डिबेट और मीडिया ट्रायल से सच्चाई नहीं बदलती। इस केस की जांच दोबारा आगे बढ़ने दें।
1: इसके पहले उन्होंने और एक झूठा डिफेंस लिया था कि जिस दिन दिशा की डेथ हुई उस दिन मैं तो मुंबई में नहीं था, मैं डोंबिवली में था, मेरे नाना जी की डेथ हुई थी। वो भी झूठा निकला क्योंकि दिशा का डेथ हुआ 8 जून को, उनके नाना जी 14 जून तक जिंदा थे। तो ये हैबिचुअल झूठ बोलने वाले, लोगों को बेवकूफ समझने वाले, लोगों को गुमराह करने वाले ऐसे लोग हैं। अब रहा विषय, उन्होंने लिया है ऑब्जेक्शन मीडिया ट्रायल का। बिल्कुल सही बात है, कोई अगर जनरल केस है तो उसमें मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये केस ऐसा है, ये मीडिया ट्रायल के बगैर केस चल ही नहीं सकता है। मीडिया ट्रायल मतलब ऐसा नहीं कि मीडिया ही इनको दोषी ठहरा रहा है, लेकिन मीडिया में डिस्कशन जो हो रहा है, सच बाहर आ रहा है, उसी के वजह से एक गरीब पिता आज इनको टक्कर दे पा रहा है। और मैं वकील होने के नाते कह रहा हूं, मीडिया की रिपोर्ट थे जिसके वजह से कई इनके झूठ पकड़े गए, इनका सारा 420 बाहर आया।
0: लेकिन महायुति सरकार कह रही है कि जांच एजेंसियां सच्चाई का पता लगा रही हैं, इसमें सियासत की कोई जगह नहीं है।
2: देखिए, 6 साल 8 साल पहले का ये मामला है और तब से लेकर जो मामला सामने आया है उसके ऊपर पीड़ित पिता ने न्यायिक लड़ाई लड़ी है। एक लड़की की जान गई है, उसके पिता की कोई उसके ऊपर मांग है, कुछ कहना है, उस आधार पर न्यायालय ने आदेश दिए है, उस आधार पर इंक्वायरी हो रही है। ये इंक्वायरी का रिपोर्ट न्यायालय के पास जाएगा और इसके लिए इसमें इस न्यायिक प्रक्रिया में मैं या कोई कुछ क्या बोले, न्यायिक प्रक्रिया कानून तरीके से चल रही है और वो होनी चाहिए।
3: उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए, उसके पिता को न्याय मिलना चाहिए और उसकी लड़की, उनकी उस लड़की और उसके पिता के बारे में सोचे बगैर अगर आप अपने आका को बचाने के लिए तरह तरह की थ्योरी क्रिएट कर रहे हैं, मतलब बहुत ही संवेदनहीन हो गए। मतलब आप इस देश के नौजवानों को मरने के लिए छोड़ देना चाहते हैं। जहां तक सीबीआई के एफआईआर की बात है, उसमें जिन लोगों के नाम आए हैं सभी संदेहास्पद पृष्ठभूमि के लोग हैं, चाहे दुर्ग मौर्य हो या फिर आपका वो सचिन वाजे हो या फिर एक एक नाम आता है पंचोली का नाम आता है, इन सबका बैकग्राउंड बहुत साफ सुथरा नहीं है। हमारे मन में सवाल ये उठा कि आदित्य ठाकरे जो इनके साथ एक सह अभियुक्त के तौर पर नामजद किए गए हैं, उनके पास और कुछ काम धाम नहीं था।
0: 11 सितंबर को सीबीआई ने इस केस में एफआईआर दर्ज की है। दिशा के पिता सतीश सालियन की शिकायत में शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे, एक्टर डिनो मोरिया, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, रोहन रॉय के नाम शामिल हैं। आज तक के पास सीबीआई की एफआईआर की कॉपी भी मौजूद है। सतीश सालियान ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे अनिल देशमुख पर भी सच छिपाने का आरोप लगाया है। इसके साथ जांच में शामिल कई पुलिस अफसरों और पूर्व अधिकारियों की भूमिका की जांच की भी जरूरत बताई गई है, जिसमें सचिन वाजे, परमवीर सिंह और डीसीपी विशाल ठाकुर का नाम है। पिछले शुक्रवार को दिशा के पिता सतीश सालियान ने सीबीआई अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी।
4: मैं इम्पोर्टेंट जो दोषी है, जो आदित्य ठाकरे, दिनो मौर्य, सुरेश पंचोली, उसका सब इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करने है, ऐसा कंप्लेंट दिया है मैंने।
0: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि वो एफआईआर दर्ज करके सतीश सालियान के आरोपों की जांच करे और अगर आरोपों में कोई सच्चाई या तथ्य पाए जाते हैं तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करे। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
5: और अब बात करेंगे पाकिस्तान की एक और गुस्ताखी की, जिसने समुद्र में भारतीय जहाज को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि इसमें भारत को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पूरे मामले में भारत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी जरूर दे दी है।
6: पाकिस्तान नौसेना ने अरब सागर में भारत के खिलाफ बड़ी हिमाकत की कोशिश की है। पाकिस्तानी नौसेना का हुनैन क्लास कॉर्वेट उत्तरी अरब सागर में भारतीय नौसेना के जहाज से टकराया। हुनैन क्षतिग्रस्त होने के बाद कराची बंदरगाह पर लौट आया है।
7: वॉर टाइम में बहुत ही संयम बरतते हैं, एकदम छुपे हुए मिलते हैं आपको, लेकिन ये पीस टाइम के दौरान वो ये टाइगर बंदर, जिस तरह से हाईवे में लोग ये बदमाश बाइक्स चलाते हैं, कार चलाते हैं, उस तरह के स्टंट्स जो हैं ये पीस टाइम के लिए रखते हैं।
6: 15 सितंबर को ये टक्कर उस वक्त हुई जब भारतीय नौसेना का जहाज उत्तरी अरब सागर में नियमित टोह लेने के अभियान पर था। सूत्रों के मुताबिक बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद पाकिस्तानी जहाज बहुत करीब आ गया और आक्रामक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की। पाकिस्तानी जहाज का अगला हिस्सा भारतीय युद्धपोत से छू गया, जिससे बावली टक्कर हुई।
8: भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने समय रहते उसे चेतावनी दी, उसके बावजूद वो बहुत नजदीक से भारतीय नौसेना के युद्धपोत से टकरा गया और उसके बाद क्षतिग्रस्त होने के बाद तेजी के साथ अपने कराची बंदरगाह की तरफ बढ़ गया। इस पूरी घटना में भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने समय रहते कार्रवाई की, सूझबूझ के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया।
6: भारतीय पक्ष को कोई ढांचागत नुकसान नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ और न ही क्षमता में कोई कमी आई। इस घटना के बाद भारतीय युद्धपोत ने अपना मिशन जारी रखा। पाकिस्तानी नौसेना के उकसावे के बावजूद भारतीय नौसेना ने संयम बरता और गंभीर दुर्घटना को रोकने के लिए कार्रवाई की।
9: ये इनकी पुरानी आदत है और इनको अब इनका इनको उनको इस बात का इलाज करना होगा। और आपको मालूम है ऑप सिंदूर चल रहा है, अगर हमारे शिप ने अगर कुछ किया होता तो वो कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। हमारे शिप्स बहुत पावरफुल शिप्स हैं।
6: भारत के विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में पाकिस्तान के कार्यवाहक हाई कमिश्नर को तलब किया। भारत ने समुद्र में पाकिस्तानी नौसेना की यूनिट के व्यवहार को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। आज तक ब्यूरो।
5: और इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

आज प्रधानमंत्री मोदी का 76वां जन्मदिन। बीजेपी एक महीने तक चलाएगी सेवा संकल्प अभियान। अलग अलग शहरों में पार्टी के दिग्गज कार्यक्रमों में होंगे शामिल। जलेंगे लाखों दिए। 2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट्स पर शुल्क के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी का मोर्चा। कहा नियम वापस ले सरकार। वित्त मंत्री का जवाब, फैसले के पीछे कोई विदेशी दबाव नहीं। गोरखपुर में सीएम योगी की चुनावी हुंकार। कहा पहले एसपी और कांग्रेस सरकार में अपराध और डर, आज यूपी दंगा और कर्फ्यू मुक्त। बोले 19 सितंबर से 1,00,000 नई नौकरियों की शुरुआत। नौकरी पेशा कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा। कैबिनेट ने अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रतिमाह किया। 51,00,000 लोगों को फायदा। और कन्नड़ फिल्मों के दमदार अभिनेता अनंत नाग को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। सांसद बोर्ड की नई टीम के लिए भी 18 सदस्यों का ऐलान। मोदी सरकार 15 अक्टूबर से 2,000 रुपए से ऊपर के यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर चार्ज लगाने जा रही है, लेकिन सरकार के इस फैसले पर विपक्ष और राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने सीधे मोदी सरकार पर अमेरिका के दबाव में आने का आरोप लगाया और इस फैसले को वापस लेने की मांग की। सरकार जवाब दे रही है कि वो किसी भी विदेशी दबाव में नहीं है।

0: ना भैया, कैश यूज करना बंद करो, यूपीआई करो, यूपीआई करो। और अब इस उसी यूपीआई की वसूली करने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं।
1: ये मर्चेंट पे कॉस्ट है, मर्चेंट जो है वो पे करेगा, ना कि जो एंड यूजर या कंज्यूमर पे होगा।
2: मोदी जी, प्लीज स्टॉप लाइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, हैव अ स्पाइन, खड़े हो जाइए और यूपीआई टैक्स को वापस लीजिए।
3: जो खुद किसी और के इशारे पे काम करते हो और वो इस तरह की अनगढ़ बातें करते हैं।
2: ये अमेरिका के दबाव के अंदर ये सरकार बिल्कुल घुटने टेक गई है।
0: यूपीआई पर मार, गरीब पर वार, और फिर झुकी अमेरिका के आगे मोदी सरकार।
4: तो अमेरिका का क्या मतलब है इसमें, हमें भारत की इकोनॉमी डेवलप करनी है, देश के लिए पैसा भी चाहिए।
5: नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी देश की इकोनॉमी को डुबा के रखी है।
6: मुझे लगता है कांग्रेस का काम ही केवल गुमराह करना और आलोचना करने का रह गया।
7: ये नाराज फूफा ने देश की जनता की जेब काटने का फैसला लिया है।
0: जनता का कितना गला रेता जाएगा, मैं ये जानना
8: चाहूंगा। राहुल गांधी जी की बात करें, सुबह शाम उन्हें मोदी जी दिखते हैं, ताकि किसी न किसी विषय पर मोदी विरोध को ऊपर कर सके और मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बोल पाए।
9: इधर 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर सरकार ने चार्ज लगाया, उधर विपक्ष ने सीधे पीएम मोदी पर जैसे धावा बोल दिया। सबसे पहले राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो जारी करके न सिर्फ सरकार के इस फैसले की आलोचना की, बल्कि आरोप लगाया कि यूपीआई पर चार्ज से अमेरिका को फायदा होगा और सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। जी हाँ, राहुल गांधी ने अपने वीडियो में कहा कि इंदिरा जी हमेशा सीधी खड़ी रहती थीं, पर ये सरकार आज अमेरिका के सामने दंडवत हो गई है। यूपीआई पर सरकार के फैसले से अमेरिका को फायदा होगा।
10: He is neither left nor right. He has decided to lie down straight and prostrate himself in front of Donald Trump. He's put a tax on every single Indian person by taxing UPI and giving huge amount of money to the United States. Modi ji, please stop lying down in front of the United States. Have a spine, khade ho jaiye aur UPI tax ko wapis lijiye.
9: यूपीआई पर चार्ज को राहुल गांधी ने अमेरिका से जोड़ा तो कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। लेकिन जवाब में सरकार कह रही है कि यूपीआई नियमों में बदलाव किसी विदेशी दबाव में नहीं लाया गया है,
0: क्योंकि वसूली मैन नरेंद्र मोदी का कहर जारी है और इस बार जो वसूली है वो अमेरिका के सामने बार बार सरेंडर करने की आदत से मजबूर होकर फिर की जा रही है। वसूली के नए प्लान में 2000 से ऊपर के हर यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन में 0.4% चार्ज लगेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह अभी तक पूरी तरह से फ्री था, पूरी तरह से मुफ्त था।
3: देश हित में और देश के लोगों के हित में मोदी जी जब भी कोई अच्छा फैसला लेते हैं, इनको वो भाता नहीं है, इनको मोदी फोबिया हो गया है। यूपीआई से अब सरकार ने स्पष्ट किया है 2000 तक कुछ नहीं होने वाला और 96% लोग 2000 से ज़्यादा यूपीआई से लेन देन, ये आंकड़े हैं, लेन देन नहीं करते। फिर भी पर्सन सुपर टर्न पर्सन कोई MDR नहीं लगने वाला है।
11: यूपीआई पर लगे चार्ज को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी समझा रही है कि ग्राहकों पर इसका कोई सीधा सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि घूम फिरकर ये आम आदमी की जेब पर ही आएगा। इसी बीच यूपीआई पर चार्ज का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजेक्शन्स पर नए चार्ज लगाने के खिलाफ याचिका दायर की गई है।
9: वीडियो राहुल गांधी के जवाब में मोदी सरकार और बीजेपी ने यूपीआई पर लगे चार्ज पर देश को समझाना शुरू किया कि पहले तो 2000 रुपए से नीचे के भुगतान पर कोई चार्ज नहीं है और 2000 रुपए के ऊपर के ट्रांजैक्शन पर चार्ज ग्राहक को नहीं बल्कि दुकानदार या कारोबारी को देना होगा। सरकार ने MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू किया है, यानी 15 अक्टूबर 2026 से 2000 रुपए से ज्यादा के चुनिंदा UPI मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% MDR लगेगा। इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन होगी। ये शुल्क मर्चेंट से लिया जाएगा, ग्राहक से नहीं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो कह रही है कि MDR यानी UPI पर लगे चार्ज का ग्राहक से कोई लेना देना नहीं है, तो आखिर में ये टैक्स घूम फिर कर आम आदमी की जेब पर ही आएगा।
1: मिनिस्टर फाइनेंस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि एक आम नागरिक पर्सन टू पर्सन पे करता है तो कुछ नहीं, पर्सन टू मर्चेंट होता है जो उस पर 0.4% लगेगा, वो भी मर्चेंट को देना है, आदमी को नहीं देना है।
0: मैं और आप और इस देश का हर व्यक्ति जानता है कि कोई मर्चेंट बढ़ी हुई कॉस्ट को खुद बेयर नहीं करता है। उसका बड़ा आसान तरीका है, वो कैसे ये कॉस्ट निकालेगा, कुछ नहीं करेगा, वो धीमे से कीमत बढ़ाएगा। बार बार हमने ये देखा है।
9: आपको बता दें कि अभी एक हफ्ता पहले ही हुआ जब ब्रिक्स बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की ताकत दुनिया को बताई थी। मोदी ने कहा था कि आज दुनिया के 50% रियल टाइम पेमेंट UPI वाली तकनीक से होते हैं।
12: भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI, इसने पॉपुलेशन स्केल पर फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल ट्रांजैक्शन को नई गति दी है। आज विश्व के 50% रियल टाइम पेमेंट्स इसी टेक्नोलॉजी पर होते हैं।
9: लेकिन जैसे ही UPI पर 0.4% MDR लगा तो सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ। कांग्रेस कह रही है कि पहले तो सरकार कहती थी कि UPI करो, अब उसी UPI पर चार्ज लगा रही है।
0: क्योंकि आप ही ने तो कहा था भैया कैश यूज करना बंद करो, UPI करो, UPI करो। आप सेल्समैन बने हुए थे UPI के और अब उसी UPI की वसूली करने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं।
4: वो मुझे लगता है कि सरकार चलानी है तो सरकार के रिवेन्यू सरकार को मिलना चाहिए ही। और राहुल गांधी का आरोप है कि भाई अमेरिका के कहने पर ही ऐसा किया है, तो अमेरिका का क्या मतलब है इसमें? हमें भारत की इकोनॉमी डेवलप करनी है, देश के लिए पैसा भी चाहिए।
9: RBI ने UPI पेमेंट्स पर चार्ज लगाने के फैसले को भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को टिकाऊ बनाए रखने के लिए जरूरी कहा है, तो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स वाली कंपनियां भी इसके फायदे गिना रही हैं।
13: UPI का MDR 0.4% पे आज भी दुनिया का सबसे सस्ता MDR है, मगर वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि होपफुली उसके वजह से फोन पे और बाकी जितने भी पेमेंट कंपनीज हैं अब हम लोग भी जो है इन्वेस्ट कर पाएंगे वापस मार्केट को ग्रो करने में।
14: आई थिंक कि अगले लेवल की ग्रोथ के लिए ये MDR बहुत जरूरी है और ये इसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है ताकि UPI का और उद्धार हो, भारत का और उद्धार हो।
9: लेकिन कांग्रेस सरकार के UPI वाले फैसले पर न सिर्फ सवाल उठा रही है बल्कि महंगाई से जूझते लोगों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा बता रही है।
0: बजाय लोगों के मरहम लगाने के महंगाई से जूझते हुए लोगों के घाव पर नमक मिर्च रगड़ी जा रही है कि ऐसा कैसे है भैया, हम तो अमेरिका के आगे नतमस्तक हो गए, मोदी जी कह रहे हैं तो वसूली तो तुमसे करनी पड़ेगी क्योंकि उनके इशारे पे की जा रही है।
15: कोई टैक्स नहीं है, 96% से ज्यादा लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
9: मोदी सरकार UPI को भारत की बड़ी सफलता बताती है। 2016 में नोटबंदी के बाद भारत में लेस कैश और डिजिटल पेमेंट्स का मुद्दा राजनीतिक चर्चा में आया था और अब एक बार फिर से इस पर सियासी घमासान छिड़ा है। 15 अक्टूबर से UPI की नई व्यवस्था लागू होगी, लेकिन आम जनता और कारोबारी इस पर क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं।
16: ग्राहक तो उस पे लगा देगा ही चार्ज, क्योंकि भाई वो ले रहा है 2000 के ऊपर पेमेंट ले रहा है, एक्स्ट्रा दे रहा है, तो वो जनता पे ही लगा देगा।
17: बिल्कुल, दुकानदार जनता से ही वसूलेंगे, वो अपनी लागत नहीं बढ़ाएंगे।
18: सरकार थोड़ी हमें मतलब दुकानदार के पास हमारा निपटारा करवाने आएगी कि नहीं इनसे फीस नहीं लेनी।
19: निश्चित रूप से देश के 10 करोड़ छोटे व्यापारी रिटेल कारोबारियों के लिए एक बहुत बड़ा ग्रहण होने वाला है।
20: सामने वाला हमें देना नहीं चाहेगा और ये एक एक्स्ट्रा, इसके हमें नहीं लग रहा था कि सरकार को कोई इसे हो सकता थी।
21: जो है मोदी सरकार कहती है कि जो है ऑनलाइन आप जो है लेन देन करिए तो वो प्रथा फिर बंद हो जाएगी, फिर पुरानी प्रथा पे हमको लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
22: UPI कहते हैं पहले गुड़ खाओ और बाद में ढेला, वो हाल है
9: आज तक। ब्यूरो

0: विरोध के सुर उठे। अब मुस्लिम स्कॉलर्स और धर्मगुरुओं ने भी कॉमन सिविल कोड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सवाल मुस्लिम वोट बैंक का है, लिहाजा कांग्रेस हो, ओवैसी हो या फिर समाजवादी पार्टी, सभी यूसीसी को संविधान विरोधी बता रहे हैं।
1: यूसीसी पर चुनावी प्रयोग या फिर संयोग,
2: बड़ा खराब मिल गया।
1: यूसीसी के खिलाफ मदनी ने खोला मोर्चा।
3: यूसीसी तुम लागू कर रहे, निकालना लगी हाथ को।
1: ओवैसी की एंट्री यूसीसी पर खतरे की घंटी। तेजस्वी और अखिलेश यादव का ऐलान,
4: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है।
1: बीजेपी का शुद्ध कम्युनल एजेंडा है यूसीसी। यूसीसी पर लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आए। कॉमन सिविल कोड पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान से उठा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले यूसीसी पर एनटीए के अंतर मतभेद सामने आए, अब विपक्ष और इस्लाम के जानकारों ने खुल्लम खुल्ला मोर्चा खोल दिया है। अरशद मदनी ने ऐलान किया है कि देश के मुसलमानों को ऐसा कोई कानून कबूल नहीं है जो शरीयत के खिलाफ है। गृह मंत्री का ये ऐलान है कि 2029 से पहले एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि देश संविधान से चलेगा या किसी राजनीतिक दल के वैचारिक एजेंडे से। हम ऐसा कोई कानून स्वीकार नहीं कर सकते जो शरीयत के खिलाफ हो। मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है लेकिन अपने धर्म और दीन से हरगिज नहीं। ये सवाल मुसलमानों के वजूद का नहीं बल्कि उनके संवैधानिक और धार्मिक अधिकारों का है। सरकार समान नागरिक संहिता के माध्यम से मुसलमानों से वो अधिकार छीनना चाहती है जो देश के संविधान ने उन्हें दिए हैं। मतलब यही है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी मौसम में यूसीसी एक बड़ा मुद्दा बनेगा क्योंकि अखिलेश यादव ने बीजेपी के यूसीसी प्लान पर सीधा हमला बोला है। जनता समझ रही है कि भाजपा जिस यूसीसी की बात कर रही है दरअसल उसका फुल फॉर्म कुछ और है, यूसीसी यानी अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। इधर सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव का पोस्ट आया, उधर यूपी में टीम एनडीए ने अखिलेश की टिप्पणी को हाथों हाथ उठा लिया। बस फिर क्या था, पूरे मामले में हिंदू और मुसलमान की सीधी एंट्री हो गई।
5: समाजवादी पार्टी के मुखिया हमेशा इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। उनके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई नीति नहीं है। लोगों को बरगलाना, झुठलाना, इनके प्रकार सत्ता हासिल करना, इसके सिवाय उनका कोई काम नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग अब स्वीकार नहीं करेंगे, उनको कभी माफ नहीं करेंगे। गुंडई, अराजकता, दंगा, प्रदेश की समाजवादी पार्टी के रीजन में जो हालात थे आज भी लोग भूले नहीं।
6: उनके सलाहकार कैसे हैं, उसी की वजह से वह सत्ता से बाहर है। संविधान हमेशा सामाजिक न्याय की बात करता है, तो जब सामाजिक न्याय तभी मिलेगी जब समान नागरिक संहिता रहेगा, समान अधिकार रहेगा। अधिकार तो कानून से मिलता है, अधिनियम से, अधिसूचना से। तो जब हिंदू कोड बिल अंबेडकर ने इसीलिए उनका विरोध किया था कि धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव है, इसलिए उनको इस्तीफा दिया था। कांग्रेस नहीं मानती थी और फिर मानना पड़ा कांग्रेस को। लेकिन एक विशेष वर्ग में अभी तक चला आ रहा है, हमारे यहाँ तो खत्म हो गया लेकिन अभी विशेष वर्ग में जिनको वकालत कर रहा है, क्या महिलाओं को, मुस्लिम महिलाएं उनकी वोटर नहीं है क्या? मुस्लिम महिलाएं इस देश की नहीं है क्या?
7: अखिलेश यादव जी को कोई काम तो है नहीं, 5 साल सड़कों पर तो विरोध कर नहीं पाए चूंकि विरोध का उन्हें मौका नहीं मिला। अब वो ट्विटर खेल रहे हैं। ट्विटर खेल के देश में राजनीति नहीं होती। अखिलेश यादव जी दो ही काम करते हैं, या तो ट्विटर खेलते हैं या केवल उस पर टीवी पर बैठकर गेम खेलते हैं, दूसरा उन्हें कोई काम नहीं है। कई कोड़ी हो गई, अब अखिलेश जी इस प्रदेश की राजनीति में नहीं आ सकते। वो तो एक बार मुलायम सिंह जी की कृपा से वो सीएम बन गए, दुनिया में की कोई ताकत उन्हें सीएम नहीं बना सकती।
0: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यूसीसी पर अपना स्टैंड स्पष्ट कर चुके हैं, तो कुछ दिन पहले मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को योगी सरकार की मुसलमान विरोधी नीति का हिस्सा भी उन्होंने बताया। बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव के बयानों को वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा जा रहा है, तो वहीं यूपी चुनाव में ताल ठोक रहे ओवैसी लखनऊ से दूर भोपाल में यूसीसी को लेकर जबरदस्त तरीके से गरजे हैं।

0: एआईएमएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी यूसीसी के विरोध में बुलाई गई जनसभा में हिस्सा लेने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे। मौका यूसीसी के विरोध का था, लिहाजा ओवैसी ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला।
1: यूसीसी का कानून नाफिज किया गया वो न सिर्फ मुसलमानों के कुरान और सुन्नत के खिलाफ है बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के भी खिलाफ है। आप तमाम लोगों का यहाँ पर जमा होना बीजेपी और दिल्ली में बैठे हमारे सुस्त वजीर आजम को पैगाम मिलता है कि हम आपके बनाए हुए कानून को भारत के संविधान के खिलाफ मानते हैं और हम पुरजोर इसके खिलाफ एहतजाज अपना दर्ज कराते हैं।
0: पहले ओवैसी ने यूसीसी को संविधान और मुसलमान विरोधी बताया, उसके बाद अपने चिर परिचित अंदाज में नौजवानों को किसी मौलाना की तरह शरीयत को लेकर बड़ी नसीहत दे डाली।
2: अरे सोवियत यूनियन इस्लाम को खत्म नहीं कर सका, ये आरएसएस कौन सी खेत की मौली है जो हक की सभा को बुझा सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। मेरे नौजवानों तुम कौम का मुस्तकबिल हो, कानून बनते हैं मिट जाएंगे बनाने वाले इंशाअल्लाह, मगर याद रखो नौजवानों तुम जब तक अपनी तबीयत पर शरीयत को गालिब नहीं करोगे हम इनकलाब नहीं ला पाएंगे।
0: ओवैसी यही नहीं रुके, खुल्लम खुल्ला ऐलान किया कि यूसीसी के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने से देश का मुसलमान अब पीछे नहीं हटेगा।
2: तुम हमको कमजोर समझकर दबा रहे हो मगर याद रखो जब कमजोर उठ जाएगा बेदार हो जाएगा तो जिंदगी उसको उसकी जिंदगी का मकसद उसको समझ में आ जाएगा। जब कमजोर बेदार हो जाएगा याद रखो मौत का डर दूर हो जाएगा तो फिर किसी के महल आबाद नहीं रहेंगे, किसी का इख्तदार नहीं रहेगा। तुम हमको कब तक दबाओगे? अरे दबाते रहो मगर हम दबने वाले हैं, तुम जितना दबाओगे उतनी ताकत से हम उठेंगे इंशाअल्लाह।
0: यूसीसी विरोधी जनसभा में ही ओवैसी ने बीजेपी विधायक की विवादित टिप्पणी पर ललकारा।
3: मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, जब हिंदुस्तान में लोग कहते थे सुई बनाना नहीं जानते तो मोदी जी ने कहा कि हम मिसाइल बनाएंगे, कहते तुम करोत के चौराहे पर खड़े होकर मिसाइल लगाओ और काजी कैंप पे गिरा दो। वैसे ही अरे मैंने यहाँ का काजी कैंप नहीं बोला, इस्लामाबाद वाला बोला था।
2: कोई रामेश्वर शर्मा साहब का बयान सुना, क्या बोले? मैं मिसाइल लॉन्च करूंगा करोड़ स्क्वायर से खाजी कैंप पर। रामेश्वर शर्मा अगर तुम मई के लाल हो
0: मतलब यही है कि यूसीसी पर शाह के बयान पर बवंडर खड़ा हो चुका है। कांग्रेस भी यूसीसी पर बीजेपी को घेरने में पीछे नहीं है।
4: संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं, उनके ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं और सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे को साधने के लिए। क्या फर्क पड़ रहा है यूसीसी से बताओ मुझे, कि निकाह नहीं होगा क्या हमारा? निकाह तो होगा, फेरे नहीं होंगे क्या? फेरे ही तो होंगे, क्या तमाशा बना रखा है? कुछ भी नहीं है।
5: भारत जो है वो तमाम अलग अलग तरह के फूलों से मिलके बना, आप सब कुछ एक रंग का कर देना चाहते हैं, सब कुछ एक जैसा कर देना चाहते हैं, डाइवर्सिटी कहाँ चली जाएगी? तो गृह मंत्री जी को ये समझना पड़ेगा कि ये देश बहुत अलग अलग भाषाओं, अलग अलग बोलियों, अलग अलग कल्चर, अलग अलग तहजीब, अलग अलग धर्मों सबसे मिल करके भारत बनता है। आप सब कुछ एक कर देना चाहते हैं, एक रंग का, तो हम तिरंगे के साथ खड़े हैं, हम तिरंगे वाले लोग हैं।
0: वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यूसीसी को कम्युनल एजेंडा बताया।
6: हमने सहारनपुर की मस्जिद भी गिरवा दी, फिर भी कोई दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हम मेरठ भी मस्जिद गिरवाने जा रहे हैं, संभल भी जा रहे हैं, मुरादाबाद भी जा रहे हैं, कहीं कुछ हलचल ही नहीं हो रही है, तब यूसीसी। तो कुल मिला के भारतीय झगड़ा पार्टी जो है वो इस देश को बर्बाद करना चाहती है। अब इस देश के लोगों को तय करना है।
7: यूसीसी जो है वो किसी एक मजहब के लिए नहीं है बल्कि संपूर्ण मुल्क के लिए है। किसी एक धर्म के साथ उसको जोड़कर आप नहीं देख सकते, ये संपूर्ण मुल्क के लिए है। ये कानून हिंदू कानून नहीं है बल्कि हिंदुस्तान का कानून है।
0: यूसीसी के बिसात पर तमाम सियासी पार्टियों के बीच शह और बात का खेल शुरू हो चुका है, लेकिन देखना यही है कि शह और बात के इस खेल में बाजी कौन जीतता है। आज तक ब्यूरो।
8: राजस्थान निकाय चुनाव तो खत्म हो गए लेकिन जीते हुए पार्षद गायब हैं। कांग्रेस बीजेपी समेत निर्दलीय जीते करीब 10,000 नव निर्वाचित पार्षद होटल और रिजॉर्ट्स में अलग अलग जगहों पर बंद हैं। जनता ने भरोसा करके इन्हें चुन तो लिया है मगर कांग्रेस बीजेपी और छोटे दलों को अपने ही पार्षदों पर भरोसा नहीं है। हालात ऐसे हो गए कि मतदान खत्म होते ही प्रत्याशी के मोबाइल के से लिए गए और वोटिंग के बाद सीधे होटल पहुंचे और मतगणना के दिन भी चुनावी मैदान से दूर होटल के कमरों से ही नतीजों पर नजर बनाए रखी गई। यहां तक कि मतगणना के बाद जीत का सर्टिफिकेट लेने भी इनको जाने नहीं दिया गया। इनके एजेंट्स ने जीत का सर्टिफिकेट लिया है।
9: राजस्थान में टूरिज्म का भले ही ऑफ सीजन चल रहा लेकिन फिर भी वहां रिजॉर्ट और होटल फुल। राजस्थान के पार्षद स्विमिंग पूल में चिल कर रहे हैं तो कहीं परिवार का जन्मदिन मनाने के लिए सबको रिजॉर्ट में बुला ले रहे हैं। देर रात तक गीत संगीत की महफिल चल रही है। नाली पानी सड़क बिजली के लिए संघर्ष कर रही जनता को पसीने पसीने छोड़कर पुष्कर के रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल में मजे कर रहे हैं। ये ब्यावर के कांग्रेस के पार्षद 9 सितंबर को वोटिंग के बाद से ही इन्हें रिजॉर्ट में बंद कर दिया गया है। दौसा के महुआ नगर पालिका में जीते ये बीजेपी के पार्षद जो जयपुर के जामवारागढ़ में रिजॉर्ट में महुआ के विधायक राजेंद्र मीणा की बेटी के जन्मदिन की पार्टी में शरीक हो रहे हैं। इस पार्टी में आशीर्वाद देने बाड़ेबंदी में ही कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आए हैं। राजस्थान के 309 निकाय चुनाव में से बीजेपी को 85 निकाय में बहुमत मिला है तो कांग्रेस को 45 निकाय में स्पष्ट बहुमत मिला है। बाकी 5 नगर निगम 18 नगर परिषद और 122 नगर पालिकाओं में चाबी निर्दलियों के हाथ में है। 34 निकायों में तो निर्दलियों ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। ऐसे में पार्टी नेताओं को डर था कि कहीं जीतने वाले पार्षदों पर दूसरे दलों की नजर ना पड़ जाए और बोर्ड बनाने के समय कोई खेला ना हो जाए। इसी आशंका के चलते प्रत्याशियों को अलग अलग होटलों में ठहराया गया। मतदान के बाद पार्षद अपने वार्ड में जनता के बीच कम और होटल की चारदीवारी में ज्यादा नजर आए। सबसे ज्यादा खतरा अजमेर के कांग्रेस के पार्षदों को जिन्हें 4 दिनों में 4 होटल बदलने पड़े और आखिर में इन्हें कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक के बेंगलुरु में ले जाना पड़ा है।
10: ऐसा कुछ नहीं है, हमारे तो बहुत बहुत ज्यादा हमारे पास 11 के 11 निर्दल है, हमारे साथ है 37, हम कांग्रेस ही हैं।
9: अजमेर के कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी हमारे पार्षदों को तोड़ने में लगी है। होटलों में पार्षदों की आवभगत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, लजीज पकवान खिलाए जा रहे हैं, मौज मस्ती का भी पूरा इंतजाम है ताकि वफादारी निभाने के समय ये भाग न जाए। जयपुर में तो बीजेपी ने बहुमत मिलने के बाद भी पार्षदों को 30 किलोमीटर दूर बगलू के होटल में बंद कर रखा है। गेट पर ताला बंद, किसी की पत्नी प्रसाद लेकर पहुंच रही है तो किसी का बेटा दवाई लेकर आ रहा है।
11: प्रसाद खिला के आ रही है?
12: हाँ, गणेश जी का लड्डू।
11: क्या कर रहे हैं पति?
12: पति अभी तो प्रशिक्षण शिविर में है उधर ही।
11: क्या नाम है उनका?
12: राजेंद्र सैनी।
11: किस वार्ड से जीते हैं?
12: वार्ड 12 से। अभी कपड़े देने आई थी मैं उनको।
13: राजस्थान में नगर निकाय के चुनाव तो हो गए मगर किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। पार्टियों को अपने चुने हुए पार्षदों पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, निर्दलीय, सभी बाड़े बंदी में हैं। जयपुर का ये भंवर सिंह पैलेस है जहां पर बीजेपी के सभी पार्षद यहां पर कैद किए गए हैं। बीजेपी के पास मेजोरिटी है, जयपुर में बहुमत है, उसके बावजूद डर है कि कहीं बिक न जाए, कहीं फूट न पड़ जाए, कहीं भाग न जाए, जिसकी वजह से इस तरह से सारे पार्षदों को यहां पर कैद करके रखा गया है। ये देख रहे हैं होटल में मुख्य द्वार पर ताला लगाया गया है, इस ताले को देखिए। और ताला जब गार्ड खोलता है तब जाकर किसी की पत्नी आ रही है प्रसाद लेकर, तो किसी का बेटा आ रहा है दवाई लेकर, और फिर तस्दीक करके अंदर भेजा जा रहा है। राजस्थान के 10,000 से ज्यादा पार्षद पूरे राजस्थान के अलग अलग रिजोर्ट में होटल में बंद है, कई तो हरियाणा के रिजॉर्ट में पहुंचे हैं, गुजरात के रिजॉर्ट में पहुंचे हैं।
9: डूंगरपुर में बीजेपी के जीते पार्षदों को जश्न मनाने का मौका नहीं, बस से लाए, सामूहिक शपथ दिलाई और वापस ले गए। घर वाले और समर्थक बस के बाहर से मिलते दिखे, कोई कपड़े दे रहा था तो कोई मिठाई तो कोई जीत की बधाई। इस पूरे बाड़ेबंदी का सबसे दिलचस्प पहलू निर्दलीय और बागी प्रत्याशियों को लेकर सामने आया। चुनाव से पहले या मतदान के बाद जिन निर्दलीय प्रत्याशियों को राजनीतिक दलों ने अपने संभावित काम के चेहरे के तौर पर देखा, उन्हें भी अपने साथ होटल में रखा गया। वजह साफ थी, वोट बनाने के लिए एक एक पार्षद की गिनती महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन जैसे ही नतीजे आए और इनमें से कुछ प्रत्याशी चुनाव हार गए, कहानी भी बदल गई। जो कल तक पार्टी के मेहमान थे, जीत की उम्मीद खत्म होते ही उनकी होटल वाली मेहमान नवाजी भी खत्म हो गई। हारने वाले निर्दलीय प्रत्याशियों को होटल से वापस घर भेज दिया गया, जबकि जीतने वाले या बोर्ड बनाने के समीकरण में उपयोगी माने जा रहे पार्षदों की बाड़ेबंदी अभी भी जारी है। महापौर और सभापति चुनाव 21 सितंबर को होना है, ऐसे में आने वाले दिनों में बाड़ेबंदी और तेज होने की संभावना है।
13: कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी बाड़ेबंदी कर रहे हैं और होटल भी बदल रहे हैं। ऐसा नहीं है दो दिन एक होटल में जा रहे हैं तो तीसरे दिन किसी और होटल में भाग रहे हैं। पुलिस भी पीछे पीछे पहुंच रही है, हंगामा भी हो रहा है, जांच के नाम पर पुलिस भी जा रही है। आप समझिए बाड़ेबंदी के नाम पर किस तरह का तमाशा लोकतंत्र के नाम पर राजस्थान में चल रहा है। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
8: और इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

आज प्रधानमंत्री मोदी का 76वां जन्मदिन। बीजेपी एक महीने तक चलाएगी सेवा संकल्प अभियान। अलग अलग शहरों में पार्टी के दिग्गज कार्यक्रमों में होंगे शामिल। जलेंगे लाखों दिए। 2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट्स पर शुल्क के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी का मोर्चा। कहा नियम वापस ले सरकार। वित्त मंत्री का जवाब, फैसले के पीछे कोई विदेशी दबाव नहीं। गोरखपुर में सीएम योगी की चुनावी हुंकार। कहा पहले एसपी और कांग्रेस सरकार में अपराध और डर, आज यूपी दंगा और कर्फ्यू मुक्त। बोले 19 सितंबर से 1,00,000 नई नौकरियों की शुरुआत। नौकरी पेशा कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा। कैबिनेट ने अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रतिमाह किया। 51,00,000 लोगों को फायदा। और कन्नड़ फिल्मों के दमदार अभिनेता अनंत नाग को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। सांसद बोर्ड की नई टीम के लिए भी 18 सदस्यों का ऐलान। मोदी सरकार 15 अक्टूबर से 2,000 रुपए से ऊपर के यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर चार्ज लगाने जा रही है, लेकिन सरकार के इस फैसले पर विपक्ष और राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने सीधे मोदी सरकार पर अमेरिका के दबाव में आने का आरोप लगाया और इस फैसले को वापस लेने की मांग की। सरकार जवाब दे रही है कि वो किसी भी विदेशी दबाव में नहीं है।

0: मोदी ने तो कहा था भैया कैश यूज करना बंद करो, यूपीआई करो, यूपीआई करो, और अब इस उसी यूपीआई की वसूली करने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं।
1: ये मर्चेंट पे कॉस्ट, मर्चेंट जो है वो पे करेगा, ना कि जो एंड यूजर या कंज्यूमर पे होगा।
2: मोदी जी प्लीज स्टॉप लाइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, हैव अ स्पाइन, खड़े हो जाइए और यूपीआई टैक्स को वापस लीजिए।
3: जो खुद किसी और के इशारे पे काम करते हो और वो इस तरह की अनगढ़ बातें करते
2: हैं। ये अमेरिका के दबाव के अंदर ये सरकार बिल्कुल घुटने टेक गई है।
0: यूपीआई पर मार, गरीब पर वार, और फिर झुकी अमेरिका के आगे मोदी सरकार।
4: तो अमेरिका का क्या मतलब है इसमें, हमें भारत की इकोनॉमी डेवलप करनी है, देश के लिए पैसा भी चाहिए।
5: नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी देश की इकोनॉमी को डुबा के रखी है।
6: मुझे लगता है कांग्रेस का काम ही केवल गुमराह करना और आलोचना करने का रह गया।
7: ये नाराज फूफा ने देश की जनता की जेब काटने का फैसला लिया है।
0: जनता का कितना गला रेता जाएगा मैं ये जानना चाहूंगा।
8: राहुल गांधी जी की बात करें, सुबह शाम उन्हें मोदी जी दिखते हैं ताकि किसी न किसी विषय पर मोदी विरोध को तो कर सके और मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बोल पाए।
9: इधर 2,000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर सरकार ने चार्ज लगाया, उधर विपक्ष ने सीधे पीएम मोदी पर जैसे धावा बोल दिया। सबसे पहले राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो जारी करके न सिर्फ सरकार के इस फैसले की आलोचना की बल्कि आरोप लगाया कि यूपीआई पर चार्ज से अमेरिका को फायदा होगा और सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। जी हां, राहुल गांधी ने अपने वीडियो में कहा कि इंदिरा जी हमेशा सीधी खड़ी रहती थी पर ये सरकार आज अमेरिका के सामने दंडवत हो गई है, यूपीआई पर सरकार के फैसले से अमेरिका को फायदा होगा।
2: He is neither left nor right. He has decided to lie down straight and prostrate himself in front of Donald Trump. He's put a tax on every single Indian person by taxing UPI and giving huge amount of money to the United States. Modi ji, please stop lying down in front of the United States. Have a spine, khade ho jaiye aur UPI tax ko wapis lijiye.
9: यूपीआई पर चार्ज को राहुल गांधी ने अमेरिका से जोड़ा तो कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। लेकिन जवाब में सरकार कह रही है कि यूपीआई नियमों में बदलाव किसी विदेशी दबाव में नहीं लाया गया है,
0: क्योंकि वसूली मैन नरेंद्र मोदी का कहर जारी है और इस बार जो वसूली है वो अमेरिका के सामने बार बार सरेंडर करने की आदत से मजबूर होकर फिर की जा रही है। वसूली के नए प्लान में 2000 से ऊपर के हर यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन में 0.4% चार्ज लगेगा और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह अभी तक पूरी तरह से फ्री था, पूरी तरह से मुफ्त था।
3: देश हित में और देश के लोगों के हित में मोदी जी जब भी कोई अच्छा फैसला लेते हैं इनको वो भाता नहीं है, इनको मोदी फोबिया हो गया है। यूपीआई से अब सरकार ने स्पष्ट किया है 2000 तक कुछ नहीं होने वाला और 96% लोग 2000 से ज़्यादा यूपीआई से लेन देन, ये आंकड़े हैं, लेन देन नहीं करते। फिर भी पर्सन सुपरटन पर्सन कोई MDR नहीं लगने वाला है।
10: यूपीआई पर लगे चार्ज को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी समझा रही है कि ग्राहकों पर इसका कोई सीधा सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि घूम फिरकर ये आम आदमी की जेब पर ही आएगा। इसी बीच यूपीआई पर चार्ज का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर नए चार्ज लगाने के खिलाफ याचिका दायर की गई है।
9: राहुल गांधी के जवाब में मोदी सरकार और बीजेपी ने यूपीआई पर लगे चार्ज पर देश को समझाना शुरू किया कि पहले तो 2000 रुपए से नीचे के भुगतान पर कोई चार्ज नहीं है और 2000 रुपए के ऊपर के ट्रांजैक्शन पर चार्ज ग्राहक को नहीं बल्कि दुकानदार या कारोबारी को देना होगा। सरकार ने MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू किया है, यानी 15 अक्टूबर 2026 से 2000 रुपए से ज्यादा के चुनिंदा UPI मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% MDR लगेगा। इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन होगी। ये शुल्क मर्चेंट से लिया जाएगा, ग्राहक से नहीं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो कह रही है कि MDR यानी UPI पर लगे चार्ज का ग्राहक से कोई लेना देना नहीं है, तो आखिर में ये टैक्स घूम फिर कर आम आदमी की जेब पर ही आएगा।
1: मिनिस्टर फाइनेंस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि एक आम नागरिक पर्सन टू पर्सन पे करता है तो कुछ नहीं, पर्सन टू मर्चेंट होता है जो उस पर 0.4% लगेगा, वो भी मर्चेंट को देना है, आदमी को नहीं देना है।
0: मैं और आप और इस देश का हर व्यक्ति जानता है कि कोई मर्चेंट बढ़ी हुई कॉस्ट को खुद बेयर नहीं करता है। उसका बड़ा आसान तरीका है, वो कैसे ये कॉस्ट निकालेगा, कुछ नहीं करेगा, वो धीमे से कीमत बढ़ाएगा। बार बार हमने ये देखा है।
9: आपको बता दें कि अभी एक हफ्ता पहले ही हुआ जब ब्रिक्स बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की ताकत दुनिया को बताई थी। मोदी ने कहा था कि आज दुनिया के 50% रियल टाइम पेमेंट UPI वाली तकनीक से होते हैं।
11: भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI, इसने पॉपुलेशन स्केल पर फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल ट्रांजेक्शन को नई गति दी है। आज विश्व के 50% रियल टाइम पेमेंट्स इसी टेक्नोलॉजी पर होते हैं।
9: लेकिन जैसे ही UPI पर 0.4% MDR लगा तो सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ। कांग्रेस कह रही है कि पहले तो सरकार कहती थी कि UPI करो, अब उसी UPI पर चार्ज लगा रही है।
0: क्योंकि आप ही ने तो कहा था भैया कैश यूज करना बंद करो, UPI करो, UPI करो। आप सेल्समैन बने हुए थे UPI के, और अब उसी UPI की वसूली करने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं।
4: मुझे लगता है कि सरकार चलानी है तो सरकार के रेवेन्यू सरकार को मिलना चाहिए ही। और राहुल गांधी का आरोप है कि भाई अमेरिका के कहने पर ही ऐसा किया है, तो अमेरिका का क्या मतलब है इसमें? हमें भारत की इकोनॉमी डेवलप करनी है, देश के लिए पैसा भी चाहिए।
9: RBI ने UPI पेमेंट्स पर चार्ज लगाने के फैसले को भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को टिकाऊ बनाए रखने के लिए जरूरी कहा है, तो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स वाली कंपनियां भी इसके फायदे गिना रही हैं।
12: UPI का MDR 0.4% पे आज भी दुनिया का सबसे सस्ता MDR है, मगर वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि होपफुली उसके वजह से फोन पे और बाकी जितने भी पेमेंट कंपनीज हैं, अब हम लोग भी जो है इन्वेस्ट कर पाएंगे वापस मार्केट को ग्रो करने में।
13: आई थिंक कि अगले लेवल की ग्रोथ के लिए ये MDR बहुत जरूरी है, और ये इसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है ताकि UPI का और उद्धार हो, भारत का और उद्धार हो।
9: लेकिन कांग्रेस सरकार के UPI वाले फैसले पर न सिर्फ सवाल उठा रही है बल्कि महंगाई से जूझते लोगों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा बता रही है।
0: बजाय लोगों के मरहम लगाने के, महंगाई से जूझते हुए लोगों के घाव पर नमक मिर्च रगड़ी जा रही है कि ऐसा कैसे है भैया, हम तो अमेरिका के आगे नतमस्तक हो गए, मोदी जी कह रहे हैं तो वसूली तो तुमसे करनी पड़ेगी क्योंकि उनके इशारे पे की जा रही है।
14: कोई टैक्स नहीं है, 96% से ज्यादा लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
9: मोदी सरकार UPI को भारत की बड़ी सफलता बताती है। 2016 में नोटबंदी के बाद भारत में लेस कैश और डिजिटल पेमेंट्स का मुद्दा राजनीतिक चर्चा में आया था, और अब एक बार फिर से इस पर सियासी घमासान छिड़ा है। 15 अक्टूबर से UPI की नई व्यवस्था लागू होगी, लेकिन आम जनता और कारोबारी इस पर क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं।
15: ग्राहक तो उस पे लगा देगा ही चार्ज, क्योंकि भाई वो ले रहा है 2000 के ऊपर पेमेंट ले रहा है, एक्स्ट्रा दे रहा है, तो वो जनता पे ही लगा देगा।
16: बिल्कुल, दुकानदार जनता से ही वसूलेंगे, वो अपनी लागत नहीं बढ़ाएंगे।
17: सरकार थोड़ी हमें मतलब दुकानदार के पास हमारा निपटारा करवाने आएगी कि नहीं इनसे फीस नहीं लेनी।
18: निश्चित रूप से देश के 10 करोड़ छोटे व्यापारी रिटेल कारोबारियों के लिए एक बहुत बड़ा ग्रहण होने वाला है।
19: सामने वाला हमें देना नहीं चाहेगा और ये एक एक्स्ट्रा, इसके हमें नहीं लग रहा था कि सरकार को कोई इश्यू हो सकता था।
20: जो है मोदी सरकार कहती है कि जो है ऑनलाइन आप जो है लेन देन करिए तो वो प्रथा फिर बंद हो जाएगी, फिर पुरानी प्रथा पे हमको लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
21: UPI कहते हैं पहले गुड़ खाओ और बाद में ढेला, वो हाल है।
9: आज तक ब्यूरो।
10: UCC पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान के बाद छिड़ा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले एनडीए में UCC को लेकर विरोध के सुर उठे, अब मुस्लिम स्कॉलर्स और धर्मगुरुओं ने भी कॉमन सिविल कोड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सवाल मुस्लिम वोट बैंक का है, लिहाजा कांग्रेस हो, ओवैसी हो या फिर समाजवादी पार्टी, सभी यूसीसी को संविधान विरोधी बता रहे हैं।
9: यूसीसी पर चुनावी प्रयोग या फिर संयोग,
22: फिर बड़ा खराब मिल गया।
9: यूसीसी के खिलाफ मदनी ने खोला मोर्चा।
23: यूसीसी तुम लागू कर रहे, निकालना लगी हाथ को।
9: ओवैसी की एंट्री यूसीसी पर खतरे की घंटी। तेजस्वी और अखिलेश यादव का ऐलान,
24: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है।
9: बीजेपी का शुद्ध कम्युनल एजेंडा है यूसीसी। यूसीसी पर लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आई। कॉमन सिविल कोड पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान से उठा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं दे रहा। पहले यूसीसी पर एनटीए के अंतर मतभेद सामने आए, अब विपक्ष और इस्लाम के जानकारों ने खुल्लम खुल्ला मोर्चा खोल दिया है। अरशद मदनी ने ऐलान किया है कि देश के मुसलमानों को ऐसा कोई कानून कबूल नहीं है जो शरीयत के खिलाफ है। गृह मंत्री का ये ऐलान है कि 2029 से पहले एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि देश संविधान से चलेगा या किसी राजनीतिक दल के वैचारिक एजेंडे से। हम ऐसा कोई कानून स्वीकार नहीं कर सकते जो शरीयत के खिलाफ हो। मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है लेकिन अपने धर्म और दीन से हरगिज नहीं। ये सवाल मुसलमानों के वजूद का नहीं बल्कि उनके संवैधानिक और धार्मिक अधिकारों का है। सरकार समान नागरिक संहिता के माध्यम से मुसलमानों से वो अधिकार छीनना चाहती है जो देश के संविधान ने उन्हें दिए हैं। मतलब यही है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी मौसम में यूसीसी एक बड़ा मुद्दा बनेगा क्योंकि अखिलेश यादव ने बीजेपी के यूसीसी प्लान पर सीधा हमला बोला है। जनता समझ रही है कि भाजपा जिस यूसीसी की बात कर रही है दरअसल उसका फुल फॉर्म कुछ और है, यूसीसी यानी अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। इधर सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव का पोस्ट आया, उधर यूपी में टीम एनडीए ने अखिलेश की टिप्पणी को हाथों हाथ उठा लिया। बस फिर क्या था, पूरे मामले में हिंदू और मुसलमान की सीधी एंट्री हो गई।
25: समाजवादी पार्टी के मुखिया हमेशा इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं, उनके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई नीति नहीं है। लोगों को बरगलाना, झुठलाना, इनके प्रकार सत्ता हासिल करना, इसके सिवाय उनका कोई काम नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग अब स्वीकार नहीं करेंगे, उनको कभी माफ नहीं करेंगे। गुंडई, अराजकता, दंगा, प्रदेश की समाजवादी पार्टी के रीजन में जो हालात थे आज भी लोग भूले नहीं।
26: उनके सलाहकार कैसे हैं, उसी की वजह से वह सत्ता से बाहर है। संविधान हमेशा सामाजिक न्याय की बात करता है, तो जब सामाजिक न्याय तभी मिलेगी जब समान नागरिक संहिता रहेगा, समान अधिकार रहेगा। अधिकार तो कानून से मिलता, अधिनियम से, अधिसूचना से। तो जब हिंदू कोड बिल अंबेडकर ने इसीलिए उनका विरोध किया था कि धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव है, इसलिए उनको इस्तीफा दिया था। कांग्रेस नहीं मानती थी और फिर मानना पड़ा कांग्रेस को, लेकिन एक विशेष वर्ग में अभी तक चला आ रहा है। हमारे यहाँ तो खत्म हो गया लेकिन अभी विशेष वर्ग में जिनको वकालत कर रहा है, क्या महिलाओं को, मुस्लिम महिलाएं उनकी वोटर नहीं है क्या? मुस्लिम महिलाएं इस देश की नहीं है क्या?
27: अखिलेश यादव जी को कोई काम तो है नहीं, 5 साल सड़कों पर तो विरोध कर नहीं पाए चूंकि विरोध का उन्हें मौका नहीं मिला। अब वो ट्विटर खेल रहे हैं। ट्विटर खेल के देश में राजनीति नहीं होती। अखिलेश यादव जी दो ही काम करते हैं, या तो ट्विटर खेलते हैं या उस पर टीवी पर बैठकर गेम खेलते हैं, दूसरा उन्हें कोई काम नहीं है। कई कोड़ी हो गई, अब अखिलेश जी इस प्रदेश की राजनीति में नहीं आ सकते। वो तो एक बार मुलायम सिंह जी की कृपा से वो सीएम बन गए, दुनिया में की कोई ताकत उन्हें सीएम नहीं बना सकती।
10: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यूसीसी पर अपना स्टैंड स्पष्ट कर चुके हैं, तो कुछ दिन पहले मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को योगी सरकार की मुसलमान विरोधी नीति का हिस्सा भी उन्होंने बताया। बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव के बयानों को वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा जा रहा है, तो वहीं यूपी चुनाव में ताल ठोक रहे ओवैसी लखनऊ से दूर भोपाल में यूसीसी को लेकर जबरदस्त तरीके से गरजे हैं।
9: एआईएमएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी यूसीसी के विरोध में बुलाई गई जनसभा में हिस्सा लेने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे। मौका यूसीसी के विरोध का था, लिहाजा ओवैसी ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला।
1: यूसीसी का कानून नाफिज किया गया वो न सिर्फ मुसलमानों के कुरान और सुन्नत के खिलाफ है बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के भी खिलाफ है। आप तमाम लोगों का यहाँ पर जमा होना, बीजेपी और दिल्ली में बैठे हमारे सुस्त वजीर आजम को पैगाम मिलता है कि हम आपके बनाए हुए कानून को भारत के संविधान के खिलाफ मानते हैं और हम पुरजोर इसके खिलाफ एहतजाज अपना दर्ज कराते हैं।
9: पहले ओवैसी ने यूसीसी को संविधान और मुसलमान विरोधी बताया, उसके बाद अपने चिर परिचित अंदाज में नौजवानों को किसी मौलाना की तरह शरीयत को लेकर बड़ी नसीहत दे डाली।
1: अरे सोवियत यूनियन इस्लाम को खत्म नहीं कर सका, ये आरएसएस कौन सी खेत की मौली है जो हक की सभा को बुझा सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, मेरे नौजवानों तुम कौम का मुस्तकबिल हो, कानून बनते हैं मिट जाएंगे बनाने वाले इंशाल्लाह, मगर याद रखो नौजवानों तुम जब तक अपनी तबीयत पर शरीयत को गालिब नहीं करोगे हम इनकलाब नहीं ला पाएंगे।
9: ओवैसी यही नहीं रुके, खुल्लम खुल्ला ऐलान किया कि यूसीसी के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने से देश का मुसलमान अब पीछे नहीं हटेगा।
1: तुम हमको कमजोर समझकर दबा रहे हो मगर याद रखो जब कमजोर उठ जाएगा बेदार हो जाएगा तो जिंदगी उसको उसकी जिंदगी का मकसद उसको समझ में आ जाएगा। जब कमजोर बेदार हो जाएगा याद रखो मौत का डर दूर हो जाएगा तो फिर किसी के महल आबाद नहीं रहेंगे, किसी का इख्तदार नहीं रहेगा। तुम हमको कब तक दबाओगे? अरे दबाते रहो मगर हम दबने वाले हैं, तुम जितना दबाओगे उतनी ताकत से हम उठेंगे इंशाल्लाह।
9: यूसीसी विरोधी जनसभा में ही ओवैसी ने बीजेपी विधायक की विवादित टिप्पणी पर ललकारा।
2: मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, जब हिंदुस्तान में लोग कहते थे सुई बनाना नहीं जानते तो मोदी जी ने कहा कि हम मिसाइल बनाएंगे। जैसे तुम करोत के चौराहे पर खड़े होकर मिसाइल लगाओ और काजी कैंप पे गिरा दो वैसे ही। अरे मैंने यहाँ का काजी कैंप नहीं बोला, इस्लामाबाद वाला बोला था।
1: कोई रामेश्वर शर्मा साहब का बयान सुना, मैं मिसाइल लॉन्च करूंगा करोड़ स्क्वायर से खाजी कैंप पर। रामेश्वर शर्मा अगर तुम मई के लाल हो लॉन्च करोगे अकेला फिरता हूँ खाजी कैंप में आकर। मैं शहीद होने तैयार हूँ, मरने तैयार हूँ, तुम्हारे जैसे सामने से झुकाने वाला हूँ।
9: मतलब यही है कि यूसीसी पर शाह के बयान पर बवंडर खड़ा हो चुका है। कांग्रेस भी यूसीसी पर बीजेपी को घेरने में पीछे नहीं है।
3: संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं, उनके ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं और सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे को साधने के लिए। क्या फर्क पड़ रहा है यूसीसी से बताओ मुझे, कि निकाह नहीं होगा क्या हमारा? निकाह तो होगा, फेरे नहीं होंगे क्या? फेरे ही तो होंगे, क्या तमाशा बना रखा है? कुछ भी नहीं।
5: भारत जो है वो तमाम अलग अलग तरह के फूलों से मिलके बना, आप सब कुछ एक रंग का कर देना चाहते हैं, सब कुछ एक जैसा कर देना चाहते हैं, डाइवर्सिटी कहाँ चली जाएगी? तो गृह मंत्री जी को ये समझना पड़ेगा कि ये देश बहुत अलग अलग भाषाओं, अलग अलग बोलियों, अलग अलग कल्चर, अलग अलग तहजीब, अलग अलग धर्मों, सबसे मिल करके भारत बनता है। आप सब कुछ एक कर देना चाहते हैं एक रंग का, तो हम तिरंगे के साथ खड़े हैं, हम तिरंगे वाले लोग हैं।
0: वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यूसीसी को कम्युनल एजेंडा बताया।
4: हमने सहारनपुर की मस्जिद भी गिरवा दी, फिर भी कोई दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हम मेरठ भी मस्जिद गिरवाने जा रहे हैं, संभल भी जा रहे हैं, मुरादाबाद भी जा रहे हैं, कहीं कुछ हलचल ही नहीं हो रही है, तब यूसीसी। तो कुल मिला के भारतीय झगड़ा पार्टी जो है वो इस देश को बर्बाद करना चाहती है। अब इस देश के लोगों को तय करना है।
6: यूसीसी जो है वो किसी एक मजहब के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण मुल्क के लिए है। किसी एक धर्म के साथ उसको जोड़कर आप नहीं देख सकते, ये संपूर्ण मुल्क के लिए है। ये कानून हिंदू कानून नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का कानून है।
0: यूसीसी की बिसात पर तमाम सियासी पार्टियों के बीच शह और बात का खेल शुरू हो चुका है, लेकिन देखना यही है कि शह और बात के इस खेल में बाजी कौन जीतता है। आज तक ब्यूरो।
10: राजस्थान निकाय चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन जीते हुए पार्षद गायब हैं। कांग्रेस बीजेपी समेत निर्दलीय जीते करीब 10,000 नव निर्वाचित पार्षद होटल और रिजॉर्ट्स में अलग अलग जगहों पर बंद हैं। जनता ने भरोसा करके इन्हें चुन तो लिया है, मगर कांग्रेस बीजेपी और छोटे दलों को अपने ही पार्षदों पर भरोसा नहीं है। हालात ऐसे हो गए कि मतदान खत्म होते ही प्रत्याशी के मोबाइल के से लिए गए और वोटिंग के बाद सीधे होटल पहुंचे और मतगणना के दिन भी चुनावी मैदान से दूर होटल के कमरों से ही नतीजों पर नजर बनाए रखी गई। यहां तक कि मतगणना के बाद जीत का सर्टिफिकेट लेने भी इनको जाने नहीं दिया गया। इनके एजेंट्स ने जीत का सर्टिफिकेट लिया है।
7: राजस्थान में टूरिज्म का भले ही ऑफ सीजन चल रहा, लेकिन फिर भी वहां रिजॉर्ट और होटल फुल। राजस्थान के पार्षद स्विमिंग पूल में चिल कर रहे हैं, तो कहीं परिवार का जन्मदिन मनाने के लिए सबको रिजॉर्ट में बुला ले रहे हैं। देर रात तक गीत संगीत की महफिल चल रही है। नाली पानी सड़क बिजली के लिए संघर्ष कर रही जनता को पसीने पसीने छोड़कर पुष्कर के रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल में मजे कर रहे हैं। ये ब्यावर के कांग्रेस के पार्षद 9 सितंबर को वोटिंग के बाद से ही इन्हें रिजॉर्ट में बंद कर दिया गया है। दौसा के महुआ नगरपालिका में जीते ये बीजेपी के पार्षद, जो जयपुर के जामवारागढ़ में रिजॉर्ट में महुआ के विधायक राजेंद्र मीणा की बेटी के जन्मदिन की पार्टी में शरीक हो रहे हैं। इस पार्टी में आशीर्वाद देने बाड़ेबंदी में ही कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आए। राजस्थान के 309 निकाय चुनाव में से बीजेपी को 85 निकाय में बहुमत मिला है, तो कांग्रेस को 45 निकाय में स्पष्ट बहुमत मिला है। बाकी 5 नगर निगम, 18 नगर परिषद और 122 नगर पालिकाओं में चाबी निर्दलियों के हाथ में है। 34 निकायों में तो निर्दलियों ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। ऐसे में पार्टी नेताओं को डर था कि कहीं जीतने वाले पार्षदों पर दूसरे दलों की नजर ना पड़ जाए और बोर्ड बनाने के समय कोई खेला ना हो जाए। इसी आशंका के चलते प्रत्याशियों को अलग अलग होटलों में ठहराया गया। मतदान के बाद पार्षद अपने वार्ड में जनता के बीच कम और होटल की चारदीवारी में ज्यादा नजर आए। सबसे ज्यादा खतरा अजमेर के कांग्रेस के पार्षदों को, जिन्हें 4 दिनों में 4 होटल बदलने पड़े और आखिर में इन्हें कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक के बेंगलुरु में ले जाना पड़ा है।
8: ऐसा कुछ नहीं है, हमारे तो बहुत बहुत ज्यादा, हमारे पास 11 के 11 निर्दल हमारे साथ है, 37 हम कांग्रेस ही हैं।
0: अजमेर के कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी हमारे पार्षदों को तोड़ने में लगी है। होटलों में पार्षदों की आवभगत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, लजीज पकवान खिलाए जा रहे हैं, मौज मस्ती का भी पूरा इंतजाम है ताकि वफादारी निभाने के समय ये भाग न जाए। जयपुर में तो बीजेपी ने बहुमत मिलने के बाद भी पार्षदों को 30 किलोमीटर दूर बगलू के होटल में बंद कर रखा है। गेट पर ताला बंद, किसी की पत्नी प्रसाद लेकर पहुंच रही है तो किसी का बेटा दवाई लेकर आ रहा है।
11: प्रसाद खिला के आ रही
12: है। गणेश जी का लड्डू।
11: क्या कर रहे हैं पति?
12: पति अभी तो प्रशिक्षण शिविर में है उधर ही।
11: क्या नाम है उनका?
12: राजेंद्र सैनी।
11: किस वार्ड से जीते हैं?
12: वार्ड 12 से। अभी कपड़े देने आई थी मैं उनको।
13: राजस्थान में नगर निकाय के चुनाव तो हो गए मगर किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। पार्टियों को अपने चुने हुए पार्षदों पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, निर्दलीय, सभी बाड़ेबंदी में है। जयपुर का ये भंवर सिंह पैलेस है, जहां पर बीजेपी के सभी पार्षद यहां पर कैद किए गए हैं। बीजेपी के पास मेजोरिटी है, जयपुर में बहुमत है, उसके बावजूद डर है कि कहीं बिक न जाएं, कहीं फूट न पड़ जाए, कहीं भाग न जाए, जिसकी वजह से इस तरह से सारे पार्षदों को यहां पर कैद करके रखा गया है। ये देख रहे हैं होटल में मुख्य द्वार पर ताला लगाया गया है, इस ताले को देखिए, और ताला जब गार्ड खोलता है तब जाकर किसी की पत्नी आ रही है प्रसाद लेकर, तो किसी का बेटा आ रहा है दवाई लेकर, और फिर तस्दीक करके अंदर भेजा जा रहा है। राजस्थान के 10,000 से ज्यादा पार्षद पूरे राजस्थान के अलग अलग रिजोर्ट में, होटल में बंद हैं, कई तो हरियाणा के रिजोर्ट में पहुंचे हैं, गुजरात के रिजोर्ट में पहुंचे हैं।
0: डूंगरपुर में बीजेपी के जीते पार्षदों को जश्न मनाने का मौका नहीं, बस से लाए, सामूहिक शपथ दिलाई और वापस ले गए। घरवाले और समर्थक बस के बाहर से मिलते दिखे, कोई कपड़े दे रहा था तो कोई मिठाई तो कोई जीत की बधाई। इस पूरे बाड़ेबंदी का सबसे दिलचस्प पहलू निर्दलीय और बागी प्रत्याशियों को लेकर सामने आया। चुनाव से पहले या मतदान के बाद जिन निर्दलीय प्रत्याशियों को राजनीतिक दलों ने अपने संभावित काम के चेहरे के तौर पर देखा, उन्हें भी अपने साथ होटल में रखा गया। वजह साफ थी, बोर्ड बनाने के लिए एक एक पार्षद की गिनती महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन जैसे ही नतीजे आए और इनमें से कुछ प्रत्याशी चुनाव हार गए, कहानी भी बदल गई। जो कल तक पार्टी के मेहमान थे, जीत की उम्मीद खत्म होते ही उनकी होटल वाली मेहमान नवाजी भी खत्म हो गई। हारने वाले निर्दलीय प्रत्याशियों को होटल से वापस घर भेज दिया गया, जबकि जीतने वाले या बोर्ड बनाने के समीकरण में उपयोगी माने जा रहे पार्षदों की बाड़ेबंदी अभी भी जारी है। महापौर और सभापति चुनाव 21 सितंबर को होना है, ऐसे में आने वाले दिनों में बाड़ेबंदी और तेज होने की संभावना है।
13: कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी बाड़ेबंदी कर रहे हैं और होटल भी बदल रहे हैं। ऐसा नहीं है दो दिन एक होटल में जा रहे हैं तो तीसरे दिन किसी और होटल में भाग रहे हैं। पुलिस भी पीछे पीछे पहुंच रही है, हंगामा भी हो रहा है, जांच के नाम पर पुलिस भी जा रही है। आप समझिए बाड़ेबंदी के नाम पर किस तरह का तमाशा लोकतंत्र के नाम पर राजस्थान में चल रहा है। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
10: और इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

आज प्रधानमंत्री मोदी का 76वां जन्मदिन। बीजेपी एक महीने तक चलाएगी सेवा संकल्प अभियान। अलग अलग शहरों में पार्टी के दिग्गज कार्यक्रमों में होंगे शामिल। जलेंगे लाखों दिए। 2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट्स पर शुल्क के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी का मोर्चा। कहा नियम वापस ले सरकार। वित्त मंत्री का जवाब, फैसले के पीछे कोई विदेशी दबाव नहीं। गोरखपुर में सीएम योगी की चुनावी हुंकार। कहा पहले एसपी और कांग्रेस सरकार में अपराध और डर, आज यूपी दंगा और कर्फ्यू मुक्त। बोले 19 सितंबर से 1,00,000 नई नौकरियों की शुरुआत। नौकरी पेशा कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा। कैबिनेट ने अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रतिमाह किया। 51,00,000 लोगों को फायदा। और कन्नड़ फिल्मों के दमदार अभिनेता अनंत नाग को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। सांसद बोर्ड की नई टीम के लिए भी 18 सदस्यों का ऐलान। मोदी सरकार 15 अक्टूबर से 2,000 रुपए से ऊपर के यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर चार्ज लगाने जा रही है, लेकिन सरकार के इस फैसले पर विपक्ष और राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने सीधे मोदी सरकार पर अमेरिका के दबाव में आने का आरोप लगाया और इस फैसले को वापस लेने की मांग की। सरकार जवाब दे रही है कि वो किसी भी विदेशी दबाव में नहीं है।

0: भैया कैश यूज करना बंद करो, यूपीआई करो, यूपीआई करो। और अब उसी यूपीआई की वसूली करने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं।
1: ये मर्चेंट पे कॉस्ट, मर्चेंट जो है वो पे करेगा, ना के जो एंड यूजर या कंज्यूमर पे होगा।
2: मोदी जी प्लीज स्टॉप लाइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, हैव अ स्पाइन, खड़े हो जाइए और यूपीआई टैक्स को वापस लीजिए।
3: जो खुद किसी और के इशारे पे काम करते हो और वो इस तरह की अनगरल बातें करते
2: हैं। ये अमेरिका के दबाव के अंदर ये सरकार बिल्कुल घुटने टेक गई है।
0: यूपीआई पर मार, गरीब पर वार और फिर झुकी अमेरिका के आगे मोदी सरकार।
4: तो अमेरिका का क्या मतलब है इसमें? हमें भारत की इकोनॉमी डेवलप करनी है, देश के लिए पैसा भी चाहिए।
5: नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी देश की इकोनॉमी को डुबा के रखी है।
6: मुझे लगता है कांग्रेस का काम ही केवल गुमराह करना और आलोचना करने का रह गया।
7: ये नाराज फूफा ने देश की जनता की जेब काटने का फैसला लिया है।
0: जनता का कितना गला रेता जाएगा मैं ये जानना
8: चाहूंगा। राहुल गांधी जी की बात करें, सुबह शाम उन्हें मोदी जी दिखते हैं ताकि किसी न किसी विषय पर मोदी विरोध को तो कर सके और मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बोल पाए।
9: इधर 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर सरकार ने चार्ज लगाया, उधर विपक्ष ने सीधे पीएम मोदी पर जैसे धावा बोल दिया। सबसे पहले राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो जारी करके न सिर्फ सरकार के इस फैसले की आलोचना की बल्कि आरोप लगाया कि यूपीआई पर चार्ज से अमेरिका को फायदा होगा और सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। जी हां, राहुल गांधी ने अपने वीडियो में कहा कि इंदिरा जी हमेशा सीधी खड़ी रहती थी पर ये सरकार आज अमेरिका के सामने दंडवत हो गई है। यूपीआई पर सरकार के फैसले से अमेरिका को फायदा होगा।
2: He is neither left nor right. He has decided to lie down straight and prostrate himself in front of Donald Trump. He's put a tax on every single Indian person by taxing UPI and giving huge amount of money to the United States. Modi ji, please stop lying down in front of the United States. Have a spine, khade ho jaiye aur UPI tax ko wapis lijiye.
9: यूपीआई पर चार्ज को राहुल गांधी ने अमेरिका से जोड़ा तो कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। लेकिन जवाब में सरकार कह रही है कि यूपीआई नियमों में बदलाव किसी विदेशी दबाव में नहीं लाया गया है,
0: क्योंकि वसूली मैन नरेंद्र मोदी का कहर जारी है और इस बार जो वसूली है वो अमेरिका के सामने बार बार सरेंडर करने की आदत से मजबूर होकर फिर की जा रही है। वसूली के नए प्लान में 2000 से ऊपर के हर यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन में 0.4% चार्ज लगेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह अभी तक पूरी तरह से फ्री था, पूरी तरह से मुफ्त था।
3: देश हित में और देश के लोगों के हित में मोदी जी जब भी कोई अच्छा फैसला लेते हैं, इनको वो भाता नहीं है, इनको मोदी फोबिया हो गया है। यूपीआई से अब सरकार ने स्पष्ट किया है 2000 तक कुछ नहीं होने वाला और 96% लोग 2000 से ज़्यादा यूपीआई से लेन देन, ये आंकड़े हैं, लेन देन नहीं करते। फिर भी पर्सन सुपर डन पर्सन, कोई MDR नहीं लगने वाला है।
10: यूपीआई पर लगे चार्ज को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी समझा रही है कि ग्राहकों पर इसका कोई सीधा सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि घूम फिरकर ये आम आदमी की जेब पर ही आएगा। इसी बीच यूपीआई पर चार्ज का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर नए चार्ज लगाने के खिलाफ याचिका दायर की गई है।
9: राहुल गांधी के जवाब में मोदी सरकार और बीजेपी ने यूपीआई पर लगे चार्ज पर देश को समझाना शुरू किया कि पहले तो 2000 रुपए से नीचे के भुगतान पर कोई चार्ज नहीं है और 2000 रुपए के ऊपर के ट्रांजैक्शन पर चार्ज ग्राहक को नहीं बल्कि दुकानदार या कारोबारी को देना होगा। सरकार ने MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू किया है, यानी 15 अक्टूबर 2026 से 2000 रुपए से ज्यादा के चुनिंदा UPI मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% MDR लगेगा। इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन होगी। ये शुल्क मर्चेंट से लिया जाएगा, ग्राहक से नहीं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो कह रही है कि MDR यानी UPI पर लगे चार्ज का ग्राहक से कोई लेना देना नहीं है, तो आखिर में ये टैक्स घूम फिर कर आम आदमी की जेब पर ही आएगा।
1: मिनिस्टर फाइनेंस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि एक आम नागरिक पर्सन टू पर्सन पे करता है तो कुछ नहीं, पर्सन टू मर्चेंट होता है जो उस पर 0.4% लगेगा, वो भी मर्चेंट को देना है, आदमी को नहीं देना है।
0: मैं और आप और इस देश का हर व्यक्ति जानता है कि कोई मर्चेंट बढ़ी हुई कॉस्ट को खुद बेयर नहीं करता है। उसका बड़ा आसान तरीका है, वो कैसे ये कॉस्ट निकालेगा, कुछ नहीं करेगा, वो धीमे से कीमत बढ़ाएगा। बार बार हमने ये देखा है।
9: आपको बता दें कि अभी एक हफ्ता पहले ही हुआ जब ब्रिक्स बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की ताकत दुनिया को बताई थी। मोदी ने कहा था कि आज दुनिया के 50% रियल टाइम पेमेंट UPI वाली तकनीक से होते हैं।
11: भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI, इसने पॉपुलेशन स्केल पर फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल ट्रांजैक्शन को नई गति दी है। आज विश्व के 50% रियल टाइम पेमेंट्स इसी टेक्नोलॉजी पर होते हैं।
9: लेकिन जैसे ही UPI पर 0.4% MDR लगा तो सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ। कांग्रेस कह रही है कि पहले तो सरकार कहती थी कि UPI करो, अब उसी UPI पर चार्ज लगा रही है।
0: क्योंकि आप ही ने तो कहा था भैया कैश यूज करना बंद करो, UPI करो, UPI करो। आप सेल्समैन बने हुए थे UPI के और अब उसी UPI की वसूली करने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं।
4: वो मुझे लगता है कि सरकार चलानी है तो सरकार के रेवेन्यू सरकार को मिलना चाहिए ही। और राहुल गांधी का आरोप है कि भाई अमेरिका के कहने पर ही ऐसा किया है, तो अमेरिका का क्या मतलब है इसमें? हमें भारत की इकोनॉमी डेवलप करनी है, देश के लिए पैसा भी चाहिए।
9: RBI ने UPI पेमेंट्स पर चार्ज लगाने के फैसले को भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को टिकाऊ बनाए रखने के लिए जरूरी कहा है, तो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स वाली कंपनियां भी इसके फायदे गिना रही हैं।
12: UPI का MDR 0.4% पे आज भी दुनिया का सबसे सस्ता MDR है, मगर वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि होपफुली उसके वजह से फोन पे और बाकी जितने भी पेमेंट कंपनीज हैं अब हम लोग भी जो है इन्वेस्ट कर पाएंगे वापस मार्केट को ग्रो करने में।
13: आई थिंक कि अगले लेवल की ग्रोथ के लिए ये MDR बहुत जरूरी है और ये इसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है ताकि UPI का और उद्धार हो, भारत का और उद्धार हो।
9: लेकिन कांग्रेस सरकार के UPI वाले फैसले पर न सिर्फ सवाल उठा रही है बल्कि महंगाई से जूझते लोगों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा बता रही है।
0: बजाय लोगों के मरहम लगाने के, महंगाई से जूझते हुए लोगों के घाव पर नमक मिर्च रगड़ी जा रही है कि ऐसा कैसे है भैया, हम तो अमेरिका के आगे नतमस्तक हो गए, मोदी जी कह रहे हैं तो वसूली तो तुमसे करनी पड़ेगी क्योंकि उनके इशारे पे की जा रही है।
14: कोई टैक्स नहीं है, 96% से ज्यादा लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
9: मोदी सरकार UPI को भारत की बड़ी सफलता बताती है। 2016 में नोटबंदी के बाद भारत में लेस कैश और डिजिटल पेमेंट्स का मुद्दा राजनीतिक चर्चा में आया था और अब एक बार फिर से इस पर सियासी घमासान छिड़ा है। 15 अक्टूबर से UPI की नई व्यवस्था लागू होगी, लेकिन आम जनता और कारोबारी इस पर क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं।
15: ग्राहक तो उस पे लगा देगा ही चार्ज, क्योंकि भाई वो ले रहा है 2000 के ऊपर पेमेंट ले रहा है, एक्स्ट्रा दे रहा है, तो वो जनता पे ही लगा देगा।
16: बिल्कुल, दुकानदार जनता से ही वसूलेंगे, वो अपनी लागत नहीं बढ़ाएंगे।
17: सरकार थोड़ी हमें मतलब दुकानदार के पास हमारे निपटारा करवाने आएगी कि नहीं इनसे फीस नहीं लेनी।
18: निश्चित रूप से देश के 10 करोड़ छोटे व्यापारी रिटेल कारोबारियों के लिए एक बहुत बड़ा ग्रहण होने वाला है।
19: सामने वाला हमें देना नहीं चाहेगा और ये एक एक्स्ट्रा इसके हमें नहीं लग रहा था कि सरकार को कोई इसे हो सकता थी।
20: जो है मोदी सरकार कहती है कि जो है ऑनलाइन आप जो है लेन देन करिए तो वो प्रथा फिर बंद हो जाएगी, फिर पुरानी प्रथा पे हमको लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
21: UPI कहते हैं पहले गुड़ खाओ और बाद में ढेला, वो हाल है।
9: आज तक ब्यूरो।
10: UCC पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान के बाद छिड़ा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले एनडीए में यूसीसी को लेकर विरोध के सुर उठे, अब मुस्लिम स्कॉलर्स और धर्मगुरुओं ने भी कॉमन सिविल कोड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सवाल मुस्लिम वोट बैंक का है, लिहाजा कांग्रेस हो, ओवैसी हो या फिर समाजवादी पार्टी, सभी यूसीसी को संविधान विरोधी बता रहे हैं।
9: यूसीसी पर चुनावी प्रयोग या फिर संयोग,
22: फिर ताकतों का एक बड़ा खराब मिल गया।
9: यूसीसी के खिलाफ मदनी ने खोला मोर्चा।
23: यूसीसी तुम लागू कर रहे, निकालना लगती हाथ को।
9: ओवैसी की एंट्री यूसीसी पर खतरे की घंटी। तेजस्वी और अखिलेश यादव का ऐलान,
24: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है।
9: बीजेपी का शुद्ध कम्युनल एजेंडा है यूसीसी। यूसीसी पर लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आए। कॉमन सिविल कोड पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान से उठा

0: मोर्चा खोल दिया है। अरशद मदनी ने ऐलान किया है कि देश के मुसलमानों को ऐसा कोई कानून कबूल नहीं है जो शरीयत के खिलाफ है। गृह मंत्री का ये ऐलान है कि 2029 से पहले एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि देश संविधान से चलेगा या किसी राजनीतिक दल के वैचारिक एजेंडे से। हम ऐसा कोई कानून स्वीकार नहीं कर सकते जो शरीयत के खिलाफ हो। मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है लेकिन अपने धर्म और दीन से हरगिज नहीं। ये सवाल मुसलमानों के वजूद का नहीं बल्कि उनके संवैधानिक और धार्मिक अधिकारों का है। सरकार समान नागरिक संहिता के माध्यम से मुसलमानों से वो अधिकार छीनना चाहती है जो देश के संविधान ने उन्हें दिए हैं। मतलब यही है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी मौसम में यूसीसी एक बड़ा मुद्दा बनेगा क्योंकि अखिलेश यादव ने बीजेपी के यूसीसी प्लान पर सीधा हमला बोला है। जनता समझ रही है कि भाजपा जिस यूसीसी की बात कर रही है दरअसल उसका फुल फॉर्म कुछ और है, यूसीसी यानी अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। इधर सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव का पोस्ट आया, उधर यूपी में टीम एनडीए ने अखिलेश की टिप्पणी को हाथों हाथ उठा लिया। बस फिर क्या था, पूरे मामले में हिंदू और मुसलमान की सीधी एंट्री हो गई।
1: समाजवादी पार्टी के मुखिया हमेशा इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं, उनके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई नीति नहीं है। लोगों को बरगलाना, झुठलाना, इनके प्रकार सत्ता हासिल करना, इसके सिवाय उनका कोई काम नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग अब स्वीकार नहीं करेंगे, उनको कभी माफ नहीं करेंगे। गुंडई, अराजकता, दंगा, प्रदेश की समाजवादी पार्टी के रीजन में जो हालात थे आज भी लोग भूले नहीं।
2: उनके सलाहकार कैसे हैं, उसी की वजह से वह सत्ता से बाहर है। संविधान हमेशा सामाजिक न्याय की बात करता है, तो जब सामाजिक न्याय तभी मिलेगी जब समान नागरिक संहिता रहेगा, समान अधिकार रहेगा। अधिकार तो कानून से मिलता, अधिनियम से, अधिसूचना से। तो जब हिंदू कोड बिल अंबेडकर ने इसीलिए उनका विरोध किया था कि धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव है, इसलिए उनको इस्तीफा दिया था। कांग्रेस नहीं मानती थी और फिर मानना पड़ा कांग्रेस को, लेकिन एक विशेष वर्ग में अभी तक चला आ रहा है। हमारे यहाँ तो खत्म हो गया लेकिन अभी विशेष वर्ग में जिनको वकालत कर रहा है, क्या महिलाओं को, मुस्लिम महिलाएं उनकी वोटर नहीं है क्या? मुस्लिम महिलाएं इस देश की नहीं है क्या?
3: अखिलेश यादव जी को कोई काम तो है नहीं, 5 साल सड़कों पर तो विरोध कर नहीं पाए चूंकि विरोध का उन्हें मौका नहीं मिला। अब वो ट्विटर खेल रहे हैं। ट्विटर खेल के देश में राजनीति नहीं होती। अखिलेश यादव जी दो ही काम करते हैं, या तो ट्विटर खेलते हैं या केवल उस पर टीवी पर बैठकर गेम खेलते हैं, दूसरा उन्हें कोई काम नहीं है। कई कोड़ी हो गई, अब अखिलेश जी इस प्रदेश की राजनीति में नहीं आ सकते। वो तो एक बार मुलायम सिंह जी की कृपा से वो सीएम बन गए, अब दुनिया में की कोई ताकत उन्हें सीएम नहीं बना सकती।
4: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यूसीसी पर अपना स्टैंड स्पष्ट कर चुके हैं, तो कुछ दिन पहले मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को योगी सरकार की मुसलमान विरोधी नीति का हिस्सा भी उन्होंने बताया। बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव के बयानों को वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा जा रहा है, तो वहीं यूपी चुनाव में ताल ठोक रहे ओवैसी लखनऊ से दूर भोपाल में यूसीसी को लेकर जबरदस्त तरीके से गरजे हैं।
0: AIMM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी यूसीसी के विरोध में बुलाई गई जनसभा में हिस्सा लेने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे। मौका यूसीसी के विरोध का था, लिहाजा ओवैसी ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला।
5: यूसीसी का कानून नाफिज किया गया, वो न सिर्फ मुसलमानों के कुरान और सुन्नत के खिलाफ है बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के भी खिलाफ है। आप तमाम लोगों का यहाँ पर जमा होना, बीजेपी और दिल्ली में बैठे हमारे सुस्त वजीर आजम को पैगाम मिलता है कि हम आपके बनाए हुए कानून को भारत के संविधान के खिलाफ मानते हैं और हम पुरजोर इसके खिलाफ एहतजाज अपना दर्ज कराते हैं।
0: पहले ओवैसी ने यूसीसी को संविधान और मुसलमान विरोधी बताया, उसके बाद अपने चिर परिचित अंदाज में नौजवानों को किसी मौलाना की तरह शरीयत को लेकर बड़ी नसीहत दे डाली।
6: अरे सोवियत यूनियन इस्लाम को खत्म नहीं कर सका, ये RSS कौन सी खेत की मौली है।

0: बुझा सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं। मेरे नौजवानों, तुम कौम का मुस्तकबिल हो। कानून बनते हैं, मिट जाएंगे बनाने वाले इंशाअल्लाह। मगर याद रखो नौजवानों, तुम जब तक अपनी तबीयत पर शरीयत को गालिब नहीं करोगे, हम इनकलाब नहीं ला पाएंगे।
1: ओवैसी यही नहीं रुके, खुल्लम खुल्ला ऐलान किया कि यूसीसी के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने से देश का मुसलमान अब पीछे नहीं हटेगा।
0: तुम हमको कमजोर समझकर दबा रहे हो, मगर याद रखो, जब कमजोर उठ जाएगा, बेदार हो जाएगा, तो जिंदगी उसको, उसकी जिंदगी का मकसद उसको समझ में आ जाएगा। जब कमजोर बेदार हो जाएगा, याद रखो, मौत का डर दूर हो जाएगा, तो फिर किसी के महल आबाद नहीं रहेंगे, किसी का इख्तदार नहीं रहेगा। तुम हमको कब तक दबाओगे? अरे दबाते रहो, मगर हम दबने वाले हैं। तुम जितना दबाओगे उतनी ताकत से हम उठेंगे इंशाअल्लाह।
1: यूसीसी विरोधी जनसभा में ही ओवैसी ने बीजेपी विधायक की विवादित टिप्पणी पर ललकारा।
2: मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, जब हिंदुस्तान में लोग कहते थे सुई बनाना नहीं जानते, तो मोदी जी ने कहा कि हम मिसाइल बनाएंगे। जैसे तुम करोत के चौराहे पर खड़े होकर मिसाइल लगाओ और काली कैंप पे गिरा दो, वैसे ही। अरे मैंने यहाँ का काली कैंप नहीं बोला, इस्लामाबाद वाला बोला था।
0: कोई रामेश्वर शर्मा साहब का बयान सुना, मैं मिसाइल लॉन्च करूंगा करोड़ स्क्वायर से खाजी कैंप पर। रामेश्वर शर्मा, अगर तुम मई के लाल हो, लॉन्च करूंगा अकेला फिरता हूँ खाजी कैंप में आकर। मैं शहीद होने तैयार हूँ, मरने तैयार हूँ, तुम्हारे जैसे सामने से जुटाने वाला हूँ।
1: मतलब यही है कि यूसीसी पर शाह के बयान पर बवंडर खड़ा हो चुका है। कांग्रेस भी यूसीसी पर बीजेपी को घेरने में पीछे नहीं है।
3: संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं, उनके ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं और सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे को साधने के लिए। क्या फर्क पड़ रहा है यूसीसी से, बताओ मुझे, कि निकाह नहीं होगा क्या हमारा? निकाह ही तो होगा, फेरे नहीं होंगे क्या? फेरे ही तो होंगे, क्या तमाशा बना रखा है? कुछ भी नहीं है।
4: भारत जो है वो तमाम अलग अलग तरह के फूलों से मिलके बना, आप सब कुछ एक रंग का कर देना चाहते हैं, सब कुछ एक जैसा कर देना चाहते हैं, डाइवर्सिटी कहाँ चली जाएगी? तो गृह मंत्री जी को ये समझना पड़ेगा कि ये देश बहुत अलग अलग भाषाओं, अलग अलग बोलियों, अलग अलग कल्चर, अलग अलग तहजीब, अलग अलग धर्मों, सबसे मिल करके भारत बनता है। आप सब कुछ एक कर देना चाहते हैं, एक रंग का, तो हम तिरंगे के साथ खड़े हैं, हम तिरंगे वाले लोग हैं।
1: वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यूसीसी को कम्युनल एजेंडा बताया।
5: हमने सहारनपुर की मस्जिद भी गिरवा दी, फिर भी कोई दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हम मेरठ भी मस्जिद गिरवाने जा रहे हैं, संभल भी जा रहे हैं, मुरादाबाद भी जा रहे हैं, कहीं कुछ हलचल ही नहीं हो रही है, तब यूसीसी। तो कुल मिला के भारतीय झगड़ा पार्टी जो है वो इस देश को बर्बाद करना चाहती है। अब इस देश के लोगों को तय करना है।
6: यूसीसी जो है वो किसी एक मजहब के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण मुल्क के लिए है। किसी एक धर्म के साथ उसको जोड़कर आप नहीं देख सकते, ये संपूर्ण मुल्क के लिए है। ये कानून हिंदू कानून नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का कानून है।
1: यूसीसी की बिसात पर तमाम सियासी पार्टियों के बीच शह और बात का खेल शुरू हो चुका है, लेकिन देखना यही है कि शह और बात के इस खेल में बाजी कौन जीतता है। आज तक ब्यूरो।
7: और अब बात करेंगे पाकिस्तान की एक और गुस्ताखी की, जिसने समुद्र में भारतीय जहाज को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि इसमें भारत को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पूरे मामले में भारत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी जरूर दे दी है।
1: पाकिस्तान नौसेना ने अरब सागर में भारत के खिलाफ बड़ी हिमाकत की कोशिश की है। पाकिस्तानी नौसेना का हुनैन क्लास कॉर्वेट उत्तरी अरब सागर में भारतीय नौसेना के जहाज से टकराया। हुनैन क्षतिग्रस्त होने के बाद कराची बंदरगाह पर लौट आया है।
8: वॉर टाइम में बहुत ही संयम बरतते हैं, एकदम छुपे हुए मिलते हैं आपको, लेकिन ये पीस टाइम के दौरान वो ये टाइगर बन, जिस तरह से हाईवे में लोग ये बदमाश बाइक्स चलाते हैं, कार चलाते हैं, उस तरह के स्टंट्स जो हैं ये पीस टाइम के लिए रखते हैं।
1: 15 सितंबर को ये टक्कर उस वक्त हुई जब भारतीय नौसेना का जहाज उत्तरी अरब सागर में नियमित टोह लेने के अभियान पर था। सूत्रों के मुताबिक बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद पाकिस्तानी जहाज बहुत करीब आ गया और आक्रामक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की। पाकिस्तानी जहाज का अगला हिस्सा भारतीय युद्ध पोत से छू गया, जिससे बाबुली टक्कर हुई।
9: भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने समय रहते उसे चेतावनी दी, उसके बावजूद वो बहुत नजदीक से भारतीय नौसेना के युद्धपोत से टकरा गया और उसके बाद क्षतिग्रस्त होने के बाद तेजी के साथ अपने कराची बंदरगाह की तरफ बढ़ गया। इस पूरी घटना में भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने समय रहते कार्रवाई की, सूझबूझ के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया।
1: भारतीय पक्ष को कोई ढांचागत नुकसान नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ और न ही क्षमता में कोई कमी आई। इस घटना के बाद भारतीय युद्धपोत ने अपना मिशन जारी रखा। पाकिस्तानी नौसेना के उकसावे के बावजूद भारतीय नौसेना ने संयम बरता और गंभीर दुर्घटना को रोकने के लिए कार्रवाई की।
10: ये इनकी पुरानी आदत है और इनको अब इनको इस बात का इलाज करना होगा। और आपको मालूम है ऑप सिंदूर चल रहा है, अगर हमारे शिप ने अगर कुछ किया होता तो वो कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। हमारे शिप्स बहुत पावरफुल शिप्स हैं।
1: भारत के विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में पाकिस्तान के कार्यवाहक हाई कमिश्नर को तलब किया। भारत ने समुद्र में पाकिस्तानी नौसेना की यूनिट के व्यवहार को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। आज तक ब्यूरो।
7: इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का को निशाना बनाने के दावों को लेकर सऊदी अरब और यमन में हूती विद्रोहियों के बीच तनाव चरम पर है। सऊदी अरब और ओआईसी ने हूती गुट पर पवित्र शहर मक्का की ओर ड्रोन हमला करने के आरोप लगाए हैं, जबकि हूतियों ने इसे पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत बताया है।
1: सोशल मीडिया पर वायरल ये मक्का पर ड्रोन हमले की तस्वीर है। इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में से एक मक्का के आसमान पर ड्रोन मंडरा रहा है। नीचे धार्मिक यात्रा के लिए पहुंचे लोग हैरानी और परेशानी से इस खौफनाक स्थिति को देख रहे हैं। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने बयान जारी किया कि उनकी वायुसेना ने मक्का शहर के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे हूतियों के एक हथियारबंद ड्रोन को हवा में ही मार गिराया है। सऊदी अधिकारियों के मुताबिक इस ड्रोन को मक्का के दक्षिणी हिस्से में ही रोक दिया गया था और इसका मलबा शहर से दूर दक्षिण में गिरा। सऊदी गठबंधन के प्रवक्ता तुर्की अल मलिकी ने कहा है कि मक्का और मदीना जैसे पवित्र स्थलों और वहां आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सऊदी अरब के लिए एक रेड लाइन यानी लक्ष्मण रेखा है, जिसे पार करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ हूती संगठन के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य हाजेम अल असद ने सऊदी अरब के इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मक्का को निशाना बनाने का दावा एक घिसा पिटा झूठ है। हूतियों का कहना है कि वो किसी भी पवित्र धार्मिक स्थल को निशाना नहीं बनाते हैं। उनका आरोप है कि सऊदी अरब इस तरह के झूठे दावे केवल दुनिया भर के मुस्लिमों की सहानुभूति बटोरने और उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए कर रहा है। इस सफाई के बीच दुनिया के 57 मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने सऊदी अरब का खुलकर समर्थन किया है। ओआईसी ने अपने बयान में हूतियों के इस कथित कदम की कड़ी निंदा करते हुए इसे एक जघन्य और आतंकी हमला करार दिया है। ओआईसी ने कहा कि पवित्र स्थलों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है और वो सऊदी अरब की संप्रभुता की रक्षा के लिए उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। पिछले कुछ दिनों में हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के कई शहरों, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन और रिफाइनरी को निशाना बनाया है, लेकिन पवित्र शहर मक्का पर कथित हमले के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया है। सऊदी अरब के शहरों पर हुए हूती विद्रोहियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों के तुरंत बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कल एक दिन के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे। काहिरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी ने खुद उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति अल सीसी ने साफ शब्दों में कहा कि सऊदी अरब और खाड़ी देशों की सुरक्षा मिस्र की अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है। उन्होंने हूती हमलों के खिलाफ सऊदी अरब की संप्रभुता का पूरा समर्थन करने का भरोसा दिया। यात्रा के बाद वो खुद प्रिंस सलमान को विदा करने भी पहुंचे। आज तक ब्यूरो।
7: और इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

आज प्रधानमंत्री मोदी का 76वां जन्मदिन। बीजेपी एक महीने तक चलाएगी सेवा संकल्प अभियान। अलग अलग शहरों में पार्टी के दिग्गज कार्यक्रमों में होंगे शामिल। जलेंगे लाखों दिए।

फैसले के पीछे कोई विदेशी दबाव नहीं। गोरखपुर में सीएम योगी की चुनावी हुंकार, कहा पहले एसपी और कांग्रेस सरकार में अपराध और डर, आज यूपी दंगा और कर्फ्यू मुक्त, बोले 19 सितंबर से 1,00,000 नई नौकरियों की शुरुआत। नौकरी पेशा कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, कैबिनेट ने अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रतिमाह किया, 51,00,000 लोगों को फायदा। और कन्नड़ फिल्मों के दमदार अभिनेता अनंत नाग को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड, प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। सांसद बोर्ड की नई टीम के लिए भी 18 सदस्यों का ऐलान। मोदी सरकार 15 अक्टूबर से 2,000 रुपए से ऊपर के यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर चार्ज लगाने जा रही है, लेकिन सरकार के इस फैसले पर विपक्ष और राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने सीधे मोदी सरकार पर अमेरिका के दबाव में आने का आरोप लगाया और इस फैसले को वापस लेने की मांग की। सरकार जवाब दे रही है कि वो किसी भी विदेशी दबाव में नहीं है।

0: तो कहा था भैया कैश यूज करना बंद करो, यूपीआई करो, यूपीआई करो, और अब इस उसी यूपीआई की वसूली करने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं।
1: ये मर्चेंट पे कॉस्ट, मर्चेंट जो है वो पे करेगा, ना कि एक जो एंड यूजर या कंज्यूमर पे होगा।
2: मोदी जी प्लीज स्टॉप लाइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, हैव अ स्पाइन, खड़े हो जाइए और यूपीआई टैक्स को वापस लीजिए।
3: जो खुद किसी और के इशारे पे काम करते हो और वो इस तरह की अनगरल बातें करते
2: हैं। ये अमेरिका के दबाव के अंदर ये सरकार बिल्कुल घुटने टेक गई है।
0: यूपीआई पर मार, गरीब पर वार, और फिर झुकी अमेरिका के आगे मोदी सरकार।
4: तो अमेरिका का क्या मतलब है इसमें, हमें भारत की इकोनॉमी डेवलप करनी है, देश के लिए पैसा भी चाहिए।
5: नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी देश की इकोनॉमी को डुबा के रखी है।
6: मुझे लगता है कांग्रेस का काम ही केवल गुमराह करना और आलोचना करने का रह गया।
7: ये नाराज फूफा ने देश की जनता की जेब काटने का फैसला लिया है।
0: जनता का कितना गला रेता जाएगा मैं ये जानना
8: चाहूंगा। राहुल गांधी जी की बात करें, सुबह शाम उन्हें मोदी जी दिखते हैं ताकि किसी न किसी विषय पर मोदी विरोध को तो पर कर सके और मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बोल पाए।
9: इधर 2,000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर सरकार ने चार्ज लगाया, उधर विपक्ष ने सीधे पीएम मोदी पर जैसे धावा बोल दिया। सबसे पहले राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो जारी करके न सिर्फ सरकार के इस फैसले की आलोचना की बल्कि आरोप लगाया कि यूपीआई पर चार्ज से अमेरिका को फायदा होगा और सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। जी हां, राहुल गांधी ने अपने वीडियो में कहा कि इंदिरा जी हमेशा सीधी खड़ी रहती थीं, पर ये सरकार आज अमेरिका के सामने दंडवत हो गई है। यूपीआई पर सरकार के फैसले से अमेरिका को फायदा होगा।
2: He is neither left nor right. He has decided to lie down straight and prostrate himself in front of Donald Trump. He's put a tax on every single Indian person by taxing UPI and giving huge amount of money to the United States. Modi ji, please stop lying down in front of the United States. Have a spine, khade ho jaiye aur UPI tax ko wapis lijiye.
9: यूपीआई पर चार्ज को राहुल गांधी ने अमेरिका से जोड़ा तो कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। लेकिन जवाब में सरकार कह रही है कि यूपीआई नियमों में बदलाव किसी विदेशी दबाव में नहीं लाया गया है,
0: क्योंकि वसूली मैन नरेंद्र मोदी का कहर जारी है और इस बार जो वसूली है वो अमेरिका के सामने बार बार सरेंडर करने की आदत से मजबूर होकर फिर की जा रही है। वसूली के नए प्लान में 2000 से ऊपर के हर यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन में 0.4% चार्ज लगेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह अभी तक पूरी तरह से फ्री था, पूरी तरह से मुफ्त था।
3: देश हित में और देश के लोगों के हित में मोदी जी जब भी कोई अच्छा फैसला लेते हैं, इनको वो भाता नहीं है, इनको मोदी फोबिया हो गया है। यूपीआई से अब सरकार ने स्पष्ट किया है 2000 तक कुछ नहीं होने वाला और 96% लोग 2000 से ज़्यादा यूपीआई से लेन देन, ये आंकड़े हैं, लेन देन नहीं करते। फिर भी पर्सन सुपरटन पर्सन कोई MDR नहीं लगने वाला है।
10: यूपीआई पर लगे चार्ज को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी समझा रही है कि ग्राहकों पर इसका कोई सीधा सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि घूम फिर कर ये आम आदमी की जेब पर ही आएगा। इसी बीच यूपीआई पर चार्ज का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर नए चार्ज लगाने के खिलाफ याचिका दायर की गई है।
9: राहुल गांधी के जवाब में मोदी सरकार और बीजेपी ने यूपीआई पर लगे चार्ज पर देश को समझाना शुरू किया कि पहले तो 2000 रुपए से नीचे के भुगतान पर कोई चार्ज नहीं है और 2000 रुपए के ऊपर के ट्रांजैक्शन पर चार्ज ग्राहक को नहीं बल्कि दुकानदार या कारोबारी को देना होगा। सरकार ने MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू किया है, यानी 15 अक्टूबर 2026 से 2000 रुपए से ज्यादा के चुनिंदा यूपीआई मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% MDR लगेगा। इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन होगी। ये शुल्क मर्चेंट से लिया जाएगा, ग्राहक से नहीं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो कह रही है कि MDR यानी यूपीआई पर लगे चार्ज का ग्राहक से कोई लेना देना नहीं है, तो आखिर में ये टैक्स घूम फिर कर आम आदमी की जेब पर ही आएगा।
1: मिनिस्टर फाइनेंस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि एक आम नागरिक पर्सन टू पर्सन पे करता है तो कुछ नहीं, पर्सन टू मर्चेंट होता है जो उस पर 0.4% लगेगा, वो भी मर्चेंट को देना है, आदमी को नहीं देना है।
0: मैं और आप और इस देश का हर व्यक्ति जानता है कि कोई मर्चेंट बढ़ी हुई कॉस्ट को खुद बेयर नहीं करता है। उसका बड़ा आसान तरीका है, वो कैसे ये कॉस्ट निकालेगा, कुछ नहीं करेगा, वो धीमे से कीमत बढ़ाएगा। बार बार हमने ये देखा है।
9: आपको बता दें कि अभी एक हफ्ता पहले ही हुआ जब ब्रिक्स बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की ताकत दुनिया को बताई थी। मोदी ने कहा था कि आज दुनिया के 50% रियल टाइम पेमेंट यूपीआई वाली तकनीक से होते हैं।
11: भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई, इसने पॉपुलेशन स्केल पर फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल ट्रांजैक्शन को नई गति दी है। आज विश्व के 50% रियल टाइम पेमेंट्स इसी टेक्नोलॉजी पर होते हैं।
9: लेकिन जैसे ही यूपीआई पर 0.4% MDR लगा तो सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ। कांग्रेस कह रही है कि पहले तो सरकार कहती थी कि यूपीआई करो, अब उसी यूपीआई पर चार्ज लगा रही है।
0: क्योंकि आप ही ने तो कहा था भैया कैश यूज करना बंद करो, यूपीआई करो, यूपीआई करो। आप सेल्समैन बने हुए थे यूपीआई के, और अब उसी यूपीआई की वसूली करने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं।
4: मुझे लगता है कि सरकार चलानी है तो सरकार के रेवेन्यू सरकार को मिलना चाहिए। और राहुल गांधी का आरोप है कि भाई अमेरिका के कहने पर ही ऐसा किया है, तो अमेरिका का क्या मतलब है इसमें? हमें भारत की इकोनॉमी डेवलप करनी है, देश के लिए पैसा भी चाहिए।
9: RBI ने UPI पेमेंट्स पर चार्ज लगाने के फैसले को भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को टिकाऊ बनाए रखने के लिए जरूरी कहा है, तो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स वाली कंपनियां भी इसके फायदे गिना रही हैं।
12: UPI का MDR 0.4% पे आज भी दुनिया का सबसे सस्ता MDR है, मगर वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि होपफुली उसके वजह से फोन पे और बाकी जितने भी पेमेंट कंपनीज हैं अब हम लोग भी जो है इन्वेस्ट कर पाएंगे वापस मार्केट को ग्रो करने में।
13: आई थिंक कि अगले लेवल की ग्रोथ के लिए ये MDR बहुत जरूरी है, और ये इसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है ताकि यूपीआई का और उद्धार हो, भारत का और उद्धार हो।
9: लेकिन कांग्रेस सरकार के यूपीआई वाले फैसले पर न सिर्फ सवाल उठा रही है बल्कि महंगाई से जूझते लोगों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा बता रही है।
0: बजाय लोगों के मरहम लगाने के, महंगाई से जूझते हुए लोगों के घाव पर नमक मिर्च रगड़ी जा रही है कि ऐसा कैसे है भैया, हम तो अमेरिका के आगे नतमस्तक हो गए, मोदी जी कह रहे हैं तो वसूली तो तुमसे करनी पड़ेगी क्योंकि उनके इशारे पे की जा रही है।
14: कोई टैक्स नहीं है, 96% से ज्यादा लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
9: मोदी सरकार यूपीआई को भारत की बड़ी सफलता बताती है। 2016 में नोटबंदी के बाद भारत में लेस कैश और डिजिटल पेमेंट्स का मुद्दा राजनीतिक चर्चा में आया था, और अब एक बार फिर से इस पर सियासी घमासान छिड़ा है। 15 अक्टूबर से यूपीआई की नई व्यवस्था लागू होगी, लेकिन आम जनता और कारोबारी इस पर क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं।
15: ग्राहक तो उस पे लगा देगा ही चार्ज, क्योंकि भाई वो ले रहा है 2000 के ऊपर पेमेंट ले रहा है, एक्स्ट्रा दे रहा है, तो वो जनता पे ही लगा देगा।
16: बिल्कुल, दुकानदार जनता से ही वसूलेंगे, वो अपनी लागत नहीं बढ़ाएंगे।
17: सरकार थोड़ी हमें मतलब दुकानदार के पास हमारा निपटारा करवाने आएगी कि नहीं इनसे फीस नहीं लेनी।
18: निश्चित रूप से देश के 10 करोड़ छोटे व्यापारी रिटेल कारोबारियों के लिए एक बहुत बड़ा ग्रहण होने वाला है।
19: सामने वाला हमें देना नहीं चाहेगा और ये एक एक्स्ट्रा, इसके हमें नहीं लग रहा था कि सरकार को कोई इसी हो सकता थी।
20: जो है मोदी सरकार कहती है कि जो है ऑनलाइन आप जो है लेन देन करिए तो वो प्रथा फिर बंद हो जाएगी, फिर पुरानी प्रथा पे हमको लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
21: UPI कहते हैं पहले गुड़ खाओ और बाद में ढेला, वो हाल है।
9: आज तक ब्यूरो।
10: यूसीसी पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान के बाद छिड़ा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले एनडीए में यूसीसी को लेकर विरोध के सुर उठे, अब मुस्लिम स्कॉलर्स और धर्मगुरुओं ने भी कॉमन सिविल कोड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सवाल मुस्लिम वोट बैंक का है, लिहाजा कांग्रेस हो, ओवैसी हो या फिर समाजवादी पार्टी, सभी यूसीसी को संविधान विरोधी बता रहे हैं।
9: यूसीसी पर चुनावी प्रयोग या फिर संयोग,
22: फिर बड़ा खराब मिल गया।
9: यूसीसी के खिलाफ मदनी ने खोला मोर्चा।
23: यूसीसी तुम लागू कर रहे, निकालना लग जिहाद को।
9: ओवैसी की एंट्री यूसीसी पर खतरे की घंटी। तेजस्वी और अखिलेश यादव का ऐलान,
24: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है।
9: बीजेपी का शुद्ध कम्युनल एजेंडा है यूसीसी। यूसीसी पर लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आई। कॉमन सिविल कोड पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान से उठा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं दे रहा। पहले यूसीसी पर एनटीए के अंतर मतभेद सामने आए, अब विपक्ष और इस्लाम के जानकारों ने खुल्लम खुल्ला मोर्चा खोल दिया है। अरशद मदनी ने ऐलान किया है कि देश के मुसलमानों को ऐसा कोई कानून कबूल नहीं है जो शरीयत के खिलाफ है। गृह मंत्री का ये ऐलान है कि 2029 से पहले एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि देश संविधान से चलेगा या किसी राजनीतिक दल के वैचारिक एजेंडे से। हम ऐसा कोई कानून स्वीकार नहीं कर सकते जो शरीयत के खिलाफ हो। मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है लेकिन अपने धर्म और दीन से हरगिज नहीं। ये सवाल मुसलमानों के वजूद का नहीं बल्कि उनके संवैधानिक और धार्मिक अधिकारों का है। सरकार समान नागरिक संहिता के माध्यम से मुसलमानों से वो अधिकार छीनना चाहती है जो देश के संविधान ने उन्हें दिए हैं। मतलब यही है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी मौसम में यूसीसी एक बड़ा मुद्दा बनेगा क्योंकि अखिलेश यादव ने बीजेपी के यूसीसी प्लान पर सीधा हमला बोला है। जनता समझ रही है कि भाजपा जिस यूसीसी की बात कर रही है दरअसल उसका फुल फॉर्म कुछ और है, यूसीसी यानी अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। इधर सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव का पोस्ट आया, उधर यूपी में टीम एनडीए ने अखिलेश की टिप्पणी को हाथों हाथ उठा लिया। बस फिर क्या था, पूरे मामले में हिंदू और मुसलमान की सीधी एंट्री हो गई।
25: समाजवादी पार्टी के मुखिया हमेशा इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं, उनके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई नीति नहीं है। लोगों को बरगलाना, झुठलाना, इनके प्रकार सत्ता हासिल करना, इसके सिवाय उनका कोई काम नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग अब स्वीकार नहीं करेंगे, उनको कभी माफ नहीं करेंगे। गुंडई, अराजकता, दंगा, प्रदेश की समाजवादी पार्टी के रीजन में जो हालात थे आज भी लोग भूले नहीं।
26: उनके सलाहकार कैसे हैं, उसी की वजह से वह सत्ता से बाहर है। संविधान हमेशा सामाजिक न्याय की बात करता है, तो जब सामाजिक न्याय तभी मिलेगी जब समान नागरिक संहिता रहेगा, समान अधिकार रहेगा। अधिकार तो कानून से मिलता है, अधिनियम से, अधिसूचना से। तो जब हिंदू कोड बिल अंबेडकर ने इसीलिए उनका विरोध किया था कि धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव है, इसलिए उनको इस्तीफा दिया था। कांग्रेस नहीं मानती थी और फिर मानना पड़ा कांग्रेस को, लेकिन एक विशेष वर्ग में अभी तक चला आ रहा है। हमारे यहाँ तो खत्म हो गया लेकिन अभी विशेष वर्ग में जिनको वकालत कर रहा है, क्या महिलाओं को, मुस्लिम महिलाएं उनकी वोटर नहीं है क्या? मुस्लिम महिलाएं इस देश की नहीं है क्या?
27: अखिलेश यादव जी को कोई काम तो है नहीं, 5 साल सड़कों पर तो विरोध कर नहीं पाए चूंकि विरोध का उन्हें मौका नहीं मिला। अब वो ट्विटर खेल रहे हैं। ट्विटर खेल के देश में राजनीति नहीं होती। अखिलेश यादव जी दो ही काम करते हैं, या तो ट्विटर खेलते हैं या केवल उस पर टीवी पर बैठकर गेम खेलते हैं, दूसरा उन्हें कोई काम नहीं है। कई कोड़ी हो गई, अब अखिलेश जी इस प्रदेश की राजनीति में नहीं आ सकते। वो तो एक बार मुलायम सिंह जी की कृपा से वो सीएम बन गए, दुनिया में की कोई ताकत उन्हें सीएम नहीं बना सकती।
10: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यूसीसी पर अपना स्टैंड स्पष्ट कर चुके हैं, तो कुछ दिन पहले मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को योगी सरकार की मुसलमान विरोधी नीति का हिस्सा भी उन्होंने बताया। बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव के बयानों को वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा जा रहा है, तो वहीं यूपी चुनाव में ताल ठोक रहे ओवैसी लखनऊ से दूर भोपाल में यूसीसी को लेकर जबरदस्त तरीके से गरजे हैं।
1: एआईएमएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी यूसीसी के विरोध में बुलाई गई जनसभा में हिस्सा लेने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे। मौका यूसीसी के विरोध का था, लिहाजा ओवैसी ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला।
2: यूसीसी का कानून नाफिज किया गया, वो न सिर्फ मुसलमानों के कुरान और सुन्नत के खिलाफ है बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के भी खिलाफ है। आप तमाम लोगों का यहाँ पर जमा होना, बीजेपी और दिल्ली में बैठे हमारे सुस्त वजीर आजम को पैगाम मिलता है कि हम आपके बनाए हुए कानून को भारत के संविधान के खिलाफ मानते हैं और हम पुरजोर इसके खिलाफ एहतजाज अपना दर्ज कराते हैं।
1: पहले ओवैसी ने यूसीसी को संविधान और मुसलमान विरोधी बताया, उसके बाद अपने चिर परिचित अंदाज में नौजवानों को किसी मौलाना की तरह शरीयत को लेकर बड़ी नसीहत दे डाली।
2: अरे सोवियत यूनियन इस्लाम को खत्म नहीं कर सका, ये आरएसएस कौन सी खेत की मौली है जो हक की सभा को बुझा सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, मेरे नौजवानों तुम कौम का मुस्तकबिल हो, कानून बनते हैं मिट जाएंगे बनाने वाले इंशाल्लाह, मगर याद रखो नौजवानों, तुम जब तक अपनी तबीयत पर शरीयत को गालिब नहीं करोगे हम इनकलाब नहीं ला पाएंगे।
1: ओवैसी यही नहीं रुके, खुल्लम खुल्ला ऐलान किया कि यूसीसी के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने से देश का मुसलमान अब पीछे नहीं हटेगा।
2: तुम हमको कमजोर समझकर दबा रहे हो, मगर याद रखो जब कमजोर उठ जाएगा, बेदार हो जाएगा, तो जिंदगी उसको उसकी जिंदगी का मकसद उसको समझ में आ जाएगा। जब कमजोर बेदार हो जाएगा, याद रखो मौत का डर दूर हो जाएगा, तो फिर किसी के महल आबाद नहीं रहेंगे, किसी का इख्तदार नहीं रहेगा। तुम हमको कब तक दबाओगे? अरे दबाते रहो, मगर हम दबने वाले हैं, तुम जितना दबाओगे उतनी ताकत से हम उठेंगे इंशाअल्लाह।
1: यूसीसी विरोधी जनसभा में ही ओवैसी ने बीजेपी विधायक की विवादित टिप्पणी पर ललकारा।
3: मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, जब हिंदुस्तान में लोग कहते थे सुई बनाना नहीं जानते, तो मोदी जी ने कहा कि हम मिसाइल बनाएंगे। कहते तुम करोत के चौराहे पर खड़े होकर मिसाइल लगाओ और काजी कैंप पे गिरा दो, वैसे ही। अरे मैंने यहाँ का काजी कैंप नहीं बोला, इस्लामाबाद वाला बोला था।
2: कोई रामेश्वर शर्मा साहब का बयान सुना, क्या बोले? मैं मिसाइल लॉन्च करूंगा करोड़ स्क्वायर से खाजी कैंप पर। रामेश्वर शर्मा, अगर तुम मई के लाल हो, लॉन्च करोगे मैं अकेला फिरता हूँ खाजी कैंप में आकर। मैं शहीद होने तैयार हूँ, मरने तैयार हूँ, तुम्हारे जैसे सामने से झुकाने वाला हूँ।
1: मतलब यही है कि यूसीसी पर शाह के बयान पर बवंडर खड़ा हो चुका है। कांग्रेस भी यूसीसी पर बीजेपी को घेरने में पीछे नहीं है।
5: संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं, उनके ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं और सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे को साधने के लिए। क्या फर्क पड़ रहा है यूसीसी से, बताओ मुझे, कि निकाह नहीं होगा क्या हमारा? निकाह ही तो होगा, फेरे नहीं होंगे क्या? फेरे ही तो होंगे, क्या तमाशा बना रखा है? कुछ भी नहीं है।
6: भारत जो है वो तमाम अलग अलग तरह के फूलों से मिलके बना, आप सब कुछ एक रंग का कर देना चाहते हैं, सब कुछ एक जैसा कर देना चाहते हैं, डाइवर्सिटी कहाँ चली जाएगी? तो गृहमंत्री जी को ये समझना पड़ेगा कि ये देश बहुत अलग अलग भाषाओं, अलग अलग बोलियों, अलग अलग कल्चर, अलग अलग तहजीब, अलग अलग धर्मों, सबसे मिल करके भारत बनता है। आप सब कुछ एक कर देना चाहते हैं एक रंग का, तो हम तिरंगे के साथ खड़े हैं, हम तिरंगे वाले लोग हैं।
1: वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यूसीसी को कम्युनल एजेंडा बताया।
0: हमने सहारनपुर की मस्जिद भी गिरवा दी, फिर भी कोई दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हम मेरठ भी मस्जिद गिरवाने जा रहे हैं, संभल भी जा रहे हैं, मुरादाबाद भी जा रहे हैं, कहीं कुछ हलचल ही नहीं हो रही है। तब यूसीसी, तो कुल मिला के भारतीय झगड़ा पार्टी जो है वो इस देश को बर्बाद करना चाहती है। अब इस देश के लोगों को तय करना है।
4: यूसीसी जो है वो किसी एक मजहब के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण मुल्क के लिए है। किसी एक धर्म के साथ उसको जोड़कर आप नहीं देख सकते, ये संपूर्ण मुल्क के लिए है। ये कानून हिंदू कानून नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का कानून है।
1: यूसीसी की बिसात पर तमाम सियासी पार्टियों के बीच शह और मात का खेल शुरू हो चुका है, लेकिन देखना यही है कि शह और मात के इस खेल में बाजी कौन जीतता है। आज तक ब्यूरो।
10: दिशा सालियान की मौत में स्ट्रीट सुलझने से पहले उस पर सियासी घमासान तेज हो चुका है। महायुति के आरोपों के बाद आखिरकार शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना है ही नहीं, लेकिन मुझे बदनाम करने के लिए जो सियासी अभियान चलाया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि सीबीआई की जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा।

0: दिशा सालियान की मौत मिस्ट्री पर सियासी घमासान जारी है। दिशा के पिता सतीश सालियान तत्कालीन उद्धव सरकार और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद से महायुति सरकार भी आदित्य ठाकरे पर निशाना साध रही है। लेकिन आदित्य ठाकरे ने आखिरकार दिशा की मौत मिस्ट्री मामले में अपने ऊपर लगाए जा रहे गंभीर आरोपों पर सोशल मीडिया पर खुलकर अपना पक्ष रखा है। आदित्य ने लिखा, मैं दिशा सालियान से कभी नहीं मिला और न ही उन्हें जानता हूँ। पिछले 6 सालों से कुछ लोग जानबूझकर और बिना किसी सबूत के इस दुखद मामले से मेरा नाम जोड़कर मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बदनाम करने का ये अभियान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जोरदार टीवी डिबेट और मीडिया ट्रायल से सच्चाई नहीं बदलती। इस केस की जांच दोबारा आगे बढ़ने दें।
1: इसके पहले उन्होंने और एक झूठा डिफेंस लिया था कि जिस दिन दिशा की डेथ हुई उस दिन मैं तो मुंबई में नहीं था, मैं डोंबिवली में था, मेरे नाना जी की डेथ हुई थी। वो भी झूठा निकला क्योंकि दिशा का डेथ हुआ 8 जून को, उनके नाना जी 14 जून तक जिंदा थे। तो ये हैबिचुअल झूठ बोलने वाले, लोगों को बेवकूफ समझने वाले, लोगों को गुमराह करने वाले ऐसे लोग हैं। अब रहा विषय, उन्होंने लिया है ऑब्जेक्शन मीडिया ट्रायल का। बिल्कुल सही बात है, कोई अगर जनरल केस है तो उसमें मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये केस ऐसा है, ये मीडिया ट्रायल के बगैर केस चल ही नहीं सकता है। मीडिया ट्रायल मतलब ऐसा नहीं कि मीडिया ही इनको दोषी ठहरा रहा है, लेकिन मीडिया में डिस्कशन जो हो रहा है, सच बाहर आ रहा है, उसी के वजह से एक गरीब पिता आज इनको टक्कर दे पा रहा है। और मैं वकील होने के नाते कह रहा हूं, मीडिया के रिपोर्ट थे जिसके वजह से कई इनके झूठ पकड़े गए, इनका सारा 420 बाहर आया।
0: लेकिन महायुति सरकार कह रही है कि जांच एजेंसियां सच्चाई का पता लगा रही हैं, इसमें सियासत की कोई जगह नहीं है।
2: देखिए, 6 साल 8 साल पहले का यह मामला है और तब से लेकर जो मामला सामने आया उसके ऊपर पीड़ित पिता ने न्यायिक लड़ाई लड़ी है। एक लड़की की जान गई है, उसके पिता की कोई उसके ऊपर मांग है, कुछ कहना है, उस आधार पर न्यायालय ने आदेश दिए है, उस आधार पर इंक्वायरी हो रही है। ये इंक्वायरी का रिपोर्ट न्यायालय के पास जाएगा और इसके लिए इसमें इस न्यायिक प्रक्रिया में मैं या कोई कुछ क्या बोले, न्यायिक प्रक्रिया कानून तरीके से चल रही है और वो होनी चाहिए।
3: उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए, उसके पिता को न्याय मिलना चाहिए और उसकी लड़की, उनकी उस लड़की और उसके पिता के बारे में सोचे बगैर अगर आप अपने आका को बचाने के लिए तरह तरह की थ्योरी क्रिएट कर रहे हैं, मतलब बहुत ही संवेदनहीन हो गए। मतलब आप इस देश के नौजवानों को मरने के लिए छोड़ देना चाहते हैं। जहां तक सीबीआई के एफआईआर की बात है, उसमें जिन लोगों के नाम आए हैं सभी संदेहास्पद पृष्ठभूमि के लोग हैं, चाहे दुर्ग मौर्य हो या फिर आपका वो सचिन वाजे हो या फिर एक एक नाम आता है पंचोली का नाम आता है, इन सबका बैकग्राउंड बहुत साफ सुथरा नहीं है। हमारे मन में सवाल ये उठा कि आदित्य ठाकरे जो इनके साथ एक सह अभियुक्त के तौर पर नामजद किए गए हैं, उनके पास और कुछ काम धाम नहीं था।
0: 11 सितंबर को सीबीआई ने इस केस में एफआईआर दर्ज की है। दिशा के पिता सतीश सालियन की शिकायत में शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे, एक्टर डिनो मोरिया, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, रोहन रॉय के नाम शामिल हैं। आज तक के पास सीबीआई की एफआईआर की कॉपी भी मौजूद है। सतीश सालियान ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे अनिल देशमुख पर भी सच छिपाने का आरोप लगाया है। इसके साथ जांच में शामिल कई पुलिस अफसरों और पूर्व अधिकारियों की भूमिका की जांच की भी जरूरत बताई गई है, जिसमें सचिन वाजे, परमवीर सिंह और डीसीपी विशाल ठाकुर का नाम है। पिछले शुक्रवार को दिशा के पिता सतीश सालियान ने सीबीआई अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी।
4: मैं इम्पोर्टेंट जो दोषी है, जो आदित्य ठाकरे, दिनो मौर्या, सूरज पंचोली, उसका सब इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करने है, ऐसे कंप्लेंट दिया है मैंने।
0: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि वो एफआईआर दर्ज करके सतीश सालियान के आरोपों की जांच करे और अगर आरोपों में कोई सच्चाई या तथ्य पाए जाते हैं तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करे। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
5: इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का को निशाना बनाने के दावों को लेकर सऊदी अरब और यमन में हूती विद्रोहियों के बीच तनाव चरम पर है। सऊदी अरब और ओआईसी ने हूती गुट पर पवित्र शहर मक्का की ओर ड्रोन हमला करने के आरोप लगाए हैं, जबकि हूतियों ने इसे पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत बताया है।
6: सोशल मीडिया पर वायरल ये मक्का पर ड्रोन हमले की तस्वीर है। इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में से एक मक्का के आसमान पर ड्रोन मंडरा रहा है। नीचे धार्मिक यात्रा के लिए पहुंचे लोग हैरानी और परेशानी से इस खौफनाक स्थिति को देख रहे हैं। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने बयान जारी किया कि उनकी वायुसेना ने मक्का शहर के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे हुतियों के एक हथियारबंद ड्रोन को हवा में ही मार गिराया है। सऊदी अधिकारियों के मुताबिक इस ड्रोन को मक्का के दक्षिणी हिस्से में ही रोक दिया गया था और इसका मलबा शहर से दूर दक्षिण में गिरा। सऊदी गठबंधन के प्रवक्ता तुर्की अल मलिकी ने कहा है कि मक्का और मदीना जैसे पवित्र स्थलों और वहां आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सऊदी अरब के लिए एक रेड लाइन यानी लक्ष्मण रेखा है, जिसे पार करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ हुती संगठन के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य हजेम अल असद ने सऊदी अरब के इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मक्का को निशाना बनाने का दावा एक घिसा पिटा झूठ है। हुतियों का कहना है कि वो किसी भी पवित्र धार्मिक स्थल को निशाना नहीं बनाते हैं। उनका आरोप है कि सऊदी अरब इस तरह के झूठे दावे केवल दुनिया भर के मुस्लिमों की सहानुभूति बटोरने और उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए कर रहा है। इस सफाई के बीच दुनिया के 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने सऊदी अरब का खुलकर समर्थन किया है। OIC ने अपने बयान में हुतियों के इस कथित कदम की कड़ी निंदा करते हुए इसे एक जघन्य और आतंकी हमला करार दिया है। OIC ने कहा कि पवित्र स्थलों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है और वो सऊदी अरब की संप्रभुता की रक्षा के लिए उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। पिछले कुछ दिनों में हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के कई शहरों ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन और रिफाइनरी को निशाना बनाया है, लेकिन पवित्र शहर मक्का पर कथित हमले के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया है। सऊदी अरब के शहरों पर हुए हुती विद्रोहियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों के तुरंत बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कल एक दिन के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे। काहिरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी ने खुद उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति अल सीसी ने साफ शब्दों में कहा कि सऊदी अरब और खाड़ी देशों की सुरक्षा मिस्र की अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है। उन्होंने हुती हमलों के खिलाफ सऊदी अरब की संप्रभुता का पूरा समर्थन करने का भरोसा दिया। यात्रा के बाद वो खुद प्रिंस सलमान को विदा करने भी पहुंचे। आज तक ब्यूरो।
5: और इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

आज प्रधानमंत्री मोदी का 76वां जन्मदिन। बीजेपी एक महीने तक चलाएगी सेवा संकल्प अभियान। अलग अलग शहरों में पार्टी के दिग्गज कार्यक्रमों में होंगे शामिल। जलेंगे लाखों दिए। 2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट्स पर शुल्क के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी का मोर्चा। कहा नियम वापस ले सरकार। वित्त मंत्री का जवाब, फैसले के पीछे कोई विदेशी दबाव नहीं। गोरखपुर में सीएम योगी की चुनावी हुंकार। कहा पहले एसपी और कांग्रेस सरकार में अपराध और डर, आज यूपी दंगा और कर्फ्यू मुक्त। बोले 19 सितंबर से 1,00,000 नई नौकरियों की शुरुआत। नौकरी पेशा कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा। कैबिनेट ने अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रतिमाह किया। 51,00,000 लोगों को फायदा। और कन्नड़ फिल्मों के दमदार अभिनेता अनंत नाग को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। सांसद बोर्ड की नई टीम के लिए भी 18 सदस्यों का ऐलान। मोदी सरकार 15 अक्टूबर से 2,000 रुपए से ऊपर के यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर चार्ज लगाने जा रही है, लेकिन सरकार के इस फैसले पर विपक्ष और राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने सीधे मोदी सरकार पर अमेरिका के दबाव में आने का आरोप लगाया और इस फैसले को वापस लेने की मांग की। सरकार जवाब दे रही है कि वो किसी भी विदेशी दबाव में नहीं है।

0: ना भैया, कैश यूज करना बंद करो, यूपीआई करो, यूपीआई करो। और अब इस उसी यूपीआई की वसूली करने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं।
1: ये मर्चेंट पे कॉस्ट, मर्चेंट जो है वो पे करेगा, ना कि एक जो एंड यूजर या कंज्यूमर पे होगा।
2: मोदी जी प्लीज स्टॉप लाइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, हैव अ स्पाइन, खड़े हो जाइए और यूपीआई टैक्स को वापस लीजिए।
3: जो खुद किसी और के इशारे पे काम करते हो और वो इस तरह की अनगढ़ बातें करते
2: हैं। ये अमेरिका के दबाव के अंदर ये सरकार बिल्कुल घुटने टेक गई है।
0: यूपीआई पर मार, गरीब पर वार और फिर झुकी अमेरिका के आगे मोदी सरकार।
4: तो अमेरिका का क्या मतलब है इसमें, हमें भारत की इकोनॉमी डेवलप करनी है, देश के लिए पैसा भी चाहिए।
5: नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी देश की इकोनॉमी को डुबा के रखी है।
6: मुझे लगता है कांग्रेस का काम ही केवल गुमराह करना और आलोचना करने का रह गया।
7: ये नाराज फूफा ने देश की जनता की जेब काटने का फैसला लिया है।
0: जनता का कितना गला रेता जाएगा मैं ये जानना
8: चाहूंगा। राहुल गांधी जी की बात करें, सुबह शाम उन्हें मोदी जी दिखते हैं ताकि किसी न किसी विषय पर मोदी विरोध को तो कर सके और मोदी सरकार के खिलाफ भी बोल पाए।
9: इधर 2,000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर सरकार ने चार्ज लगाया, उधर विपक्ष ने सीधे पीएम मोदी पर जैसे धावा बोल दिया। सबसे पहले राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो जारी करके न सिर्फ सरकार के इस फैसले की आलोचना की बल्कि आरोप लगाया कि यूपीआई पर चार्ज से अमेरिका को फायदा होगा और सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। जी हां, राहुल गांधी ने अपने वीडियो में कहा कि इंदिरा जी हमेशा सीधी खड़ी रहती थीं, पर ये सरकार आज अमेरिका के सामने दंडवत हो गई है। यूपीआई पर सरकार के फैसले से अमेरिका को फायदा होगा।
2: He is neither left nor right. He has decided to lie down straight and prostrate himself in front of Donald Trump. He's put a tax on every single Indian person by taxing UPI and giving huge amount of money to the United States. Modi ji, please stop lying down in front of the United States. Have a spine, khade ho jaiye aur UPI tax ko wapis lijiye.
9: UPI पर चार्ज को राहुल गांधी ने अमेरिका से जोड़ा तो कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। लेकिन जवाब में सरकार कह रही है कि यूपीआई नियमों में बदलाव किसी विदेशी दबाव में नहीं लाया गया है,
0: क्योंकि वसूली मैन नरेंद्र मोदी का कहर जारी है और इस बार जो वसूली है वो अमेरिका के सामने बार बार सरेंडर करने की आदत से मजबूर होकर फिर की जा रही है। वसूली के नए प्लान में 2000 से ऊपर के हर यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन में 0.4% चार्ज लगेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह अभी तक पूरी तरह से फ्री था, पूरी तरह से मुफ्त था।
3: देश हित में और देश के लोगों के हित में मोदी जी जब भी कोई अच्छा फैसला लेते हैं, इनको वो भाता नहीं है, इनको मोदी फोबिया हो गया है। यूपीआई से अब सरकार ने स्पष्ट किया है 2000 तक कुछ नहीं होने वाला और 96% लोग 2000 से ज़्यादा यूपीआई से लेन देन, ये आंकड़े हैं, लेन देन नहीं करते। फिर भी पर्सन सुपर टर्न पर्सन कोई MDR नहीं लगने वाला है।
10: यूपीआई पर लगे चार्ज को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी समझा रही है कि ग्राहकों पर इसका कोई सीधा सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि घूम फिरकर ये आम आदमी की जेब पर ही आएगा। इसी बीच यूपीआई पर चार्ज का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर नए चार्ज लगाने के खिलाफ याचिका दायर की गई है।
9: राहुल गांधी के जवाब में मोदी सरकार और बीजेपी ने यूपीआई पर लगे चार्ज पर देश को समझाना शुरू किया कि पहले तो 2000 रुपए से नीचे के भुगतान पर कोई चार्ज नहीं है और 2000 रुपए के ऊपर के ट्रांजैक्शन पर चार्ज ग्राहक को नहीं बल्कि दुकानदार या कारोबारी को देना होगा। सरकार ने MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू किया है, यानी 15 अक्टूबर 2026 से 2000 रुपए से ज्यादा के चुनिंदा यूपीआई मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% MDR लगेगा। इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन होगी। ये शुल्क मर्चेंट से लिया जाएगा, ग्राहक से नहीं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो कह रही है कि MDR यानी यूपीआई पर लगे चार्ज का ग्राहक से कोई लेना देना नहीं है, तो आखिर में ये टैक्स घूम फिर कर आम आदमी की जेब पर ही आएगा।
1: मिनिस्टर फाइनेंस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि एक आम नागरिक पर्सन टू पर्सन पे करता है तो कुछ नहीं, पर्सन टू मर्चेंट होता है जो उस पर 0.4% लगेगा, वो भी मर्चेंट को देना है, आदमी को नहीं देना है।
0: मैं और आप और इस देश का हर व्यक्ति जानता है कि कोई मर्चेंट बढ़ी हुई कॉस्ट को खुद बेयर नहीं करता है। उसका बड़ा आसान तरीका है, वो कैसे ये कॉस्ट निकालेगा, कुछ नहीं करेगा, वो धीमे से कीमत बढ़ाएगा। बार बार हमने ये देखा है।
9: आपको बता दें कि अभी एक हफ्ता पहले ही हुआ जब ब्रिक्स बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की ताकत दुनिया को बताई थी। मोदी ने कहा था कि आज दुनिया के 50% रियल टाइम पेमेंट यूपीआई वाली तकनीक से होते हैं।
11: भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई, इसने पॉपुलेशन स्केल पर फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल ट्रांजैक्शन को नई गति दी है। आज विश्व के 50% रियल टाइम पेमेंट्स इसी टेक्नोलॉजी पर होते हैं।
9: लेकिन जैसे ही यूपीआई पर 0.4% MDR लगा तो सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ। कांग्रेस कह रही है कि पहले तो सरकार कहती थी कि यूपीआई करो, अब उसी यूपीआई पर चार्ज लगा रही है।
0: क्योंकि आप ही ने तो कहा था भैया कैश यूज करना बंद करो, यूपीआई करो, यूपीआई करो। आप सेल्समैन बने हुए थे यूपीआई के, और अब उसी यूपीआई की वसूली करने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं।
4: मुझे लगता है कि सरकार चलानी है तो सरकार के रिवेन्यू सरकार को मिलना चाहिए ही। और राहुल गांधी का आरोप है कि भाई अमेरिका के कहने पर ही ऐसा किया है, तो अमेरिका का क्या मतलब है इसमें? हमें भारत की इकोनॉमी डेवलप करनी है, देश के लिए पैसा भी चाहिए।
9: RBI ने UPI पेमेंट्स पर चार्ज लगाने के फैसले को भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को टिकाऊ बनाए रखने के लिए जरूरी कहा है, तो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स वाली कंपनियां भी इसके फायदे गिना रही हैं।
12: UPI का MDR 0.4% पे आज भी दुनिया का सबसे सस्ता MDR है, मगर वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि होपफुली उसके वजह से फोन पे और बाकी जितने भी पेमेंट कंपनीज हैं अब हम लोग भी जो है इन्वेस्ट कर पाएंगे वापस मार्केट को ग्रो करने में।
13: आई थिंक अगले लेवल की ग्रोथ के लिए ये MDR बहुत जरूरी है, और ये इसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है ताकि UPI का और उद्धार हो, भारत का और उद्धार हो।
9: लेकिन कांग्रेस सरकार के UPI वाले फैसले पर न सिर्फ सवाल उठा रही है बल्कि महंगाई से जूझते लोगों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा बता रही है।
0: बजाय लोगों के मरहम लगाने के, महंगाई से जूझते हुए लोगों के घाव पर नमक मिर्च रगड़ी जा रही है कि ऐसा कैसे है भैया, हम तो अमेरिका के आगे नतमस्तक हो गए, मोदी जी कह रहे हैं तो वसूली तो तुमसे करनी पड़ेगी क्योंकि उनके इशारे पे की जा रही है।
14: कोई टैक्स नहीं है, 96% से ज्यादा लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
9: मोदी सरकार यूपीआई को भारत की बड़ी सफलता बताती है। 2016 में नोटबंदी के बाद भारत में लेस कैश और डिजिटल पेमेंट्स का मुद्दा राजनीतिक चर्चा में आया था, और अब एक बार फिर से इस पर सियासी घमासान छिड़ा है। 15 अक्टूबर से यूपीआई की नई व्यवस्था लागू होगी, लेकिन आम जनता और कारोबारी इस पर क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं।
15: ग्राहक तो उस पे लगा देगा ही चार्ज, क्योंकि भाई वो ले रहा है 2000 के ऊपर पेमेंट ले रहा है, एक्स्ट्रा दे रहा है, तो वो जनता पे ही लगा देगा।
16: बिल्कुल, दुकानदार जनता से ही वसूलेंगे, वो अपनी लागत नहीं बढ़ाएंगे।
17: सरकार थोड़ी हमें मतलब दुकानदार के पास हमारा निपटारा करवाने आएगी कि नहीं इनसे फीस नहीं लेनी।
18: निश्चित रूप से देश के 10 करोड़ छोटे व्यापारी रिटेल कारोबारियों के लिए एक बहुत बड़ा ग्रहण होने वाला है।
19: सामने वाला हमें देना नहीं चाहेगा और ये एक एक्स्ट्रा, इसकी हमें नहीं लग रहा था कि सरकार को कोई इसी हो सकता थी।
20: जो है मोदी सरकार कहती है कि जो है ऑनलाइन आप जो है लेन देन करिए तो वो प्रथा फिर बंद हो जाएगी, फिर पुरानी प्रथा पे हमको लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
21: UPI कहते हैं पहले गुड़ खाओ और बाद में ढेला, वो हाल है।
9: आज तक ब्यूरो।
10: UCC पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान के बाद छिड़ा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले एनडीए में UCC को लेकर विरोध के सुर उठे, अब मुस्लिम स्कॉलर्स और धर्मगुरुओं ने भी कॉमन सिविल कोड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सवाल मुस्लिम वोट बैंक का है, लिहाजा कांग्रेस हो, ओवैसी हो या फिर समाजवादी पार्टी, सभी यूसीसी को संविधान विरोधी बता रहे हैं।
9: यूसीसी पर चुनावी प्रयोग या फिर संयोग,
22: नजरिया फिर कब्र से ताकतों का है, बड़ा खराब मिल गया।
9: यूसीसी के खिलाफ मदनी ने खोला मोर्चा।
23: यूसीसी तुम लागू कर रहे, निकालना लगती है।

0: कल एजेंडा है यूसीसी, यूसीसी पर लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आई, कॉमन सिविल कोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान से उठा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं दे रहा। पहले यूसीसी पर एनटीए के अंतर मतभेद सामने आए, अब विपक्ष और इस्लाम के जानकारों ने खुल्लम खुल्ला मोर्चा खोल दिया है। अरशद मदनी ने ऐलान किया है कि देश के मुसलमानों को ऐसा कोई कानून कबूल नहीं है जो शरीयत के खिलाफ है। गृह मंत्री का ये ऐलान है कि 2029 से पहले एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि देश संविधान से चलेगा या किसी राजनीतिक दल के वैचारिक एजेंडे से। हम ऐसा कोई कानून स्वीकार नहीं कर सकते जो शरीयत के खिलाफ हो। मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन अपने धर्म और दीन से हरगिज नहीं। ये सवाल मुसलमानों के वजूद का नहीं, बल्कि उनके संवैधानिक और धार्मिक अधिकारों का है। सरकार समान नागरिक संहिता के माध्यम से मुसलमानों से वो अधिकार छीनना चाहती है जो देश के संविधान ने उन्हें दिए हैं। मतलब यही है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी मौसम में यूसीसी एक बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने बीजेपी के यूसीसी प्लान पर सीधा हमला बोला है। जनता समझ रही है कि भाजपा जिस यूसीसी की बात कर रही है, दरअसल उसका फुल फॉर्म कुछ और है, यूसीसी यानी अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। इधर सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव का पोस्ट आया, उधर यूपी में टीम एनडीए ने अखिलेश की टिप्पणी को हाथों हाथ उठा लिया। बस फिर क्या था, पूरे मामले में हिंदू और मुसलमान की सीधी एंट्री हो गई।
1: समाजवादी पार्टी के मुखिया हमेशा इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। उनके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई नीति नहीं है। लोगों को बरगलाना, झुठलाना, इनके प्रकार सत्ता हासिल करना, इसके सिवाय उनका कोई काम नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग अब स्वीकार नहीं करेंगे, उनको कभी माफ नहीं करेंगे। गुंडई, अराजकता, दंगा, प्रदेश की समाजवादी पार्टी के रीजन में जो हालात थे, आज भी लोग भूले नहीं।
2: उनके सलाहकार कैसे हैं, उसी की वजह से वह सत्ता से बाहर है। संविधान हमेशा सामाजिक न्याय की बात करता है, तो जब सामाजिक न्याय तभी मिलेगी जब समान नागरिक संहिता रहेगा, समान अधिकार रहेगा। अधिकार तो कानून से मिलता है, अधिनियम से, अधिसूचना से। तो जब हिंदू कोड बिल अंबेडकर ने इसीलिए उनका विरोध किया था कि धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव है, इसलिए उनको इस्तीफा दिया था। कांग्रेस नहीं मानती थी और फिर मानना पड़ा कांग्रेस को, लेकिन एक विशेष वर्ग में अभी तक चला आ रहा है। हमारे यहाँ तो खत्म हो गया, लेकिन अभी विशेष वर्ग में जिनको वकालत कर रहा है, क्या महिलाओं को, मुस्लिम महिलाएं उनकी वोटर नहीं है क्या? मुस्लिम महिलाएं इस देश की नहीं है क्या?
3: अखिलेश यादव जी को कोई काम तो है नहीं, 5 साल सड़कों पर तो विरोध कर नहीं पाए क्योंकि विरोध का उन्हें मौका नहीं मिला। अब वो ट्विटर खेल रहे हैं। ट्विटर खेल के देश में राजनीति नहीं होती। अखिलेश यादव जी दो ही काम करते हैं, या तो ट्विटर खेलते हैं या उस पर टीवी पर बैठकर गेम खेलते हैं, दूसरा उन्हें कोई काम नहीं है। कई कोड़ी हो गई, अब अखिलेश जी इस प्रदेश की राजनीति में नहीं आ सकते। वो तो एक बार मुलायम सिंह जी की कृपा से वो सीएम बन गए, दुनिया में की कोई ताकत उन्हें सीएम नहीं बना सकती।
4: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यूसीसी पर अपना स्टैंड स्पष्ट कर चुके हैं, तो कुछ दिन पहले मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को योगी सरकार की मुसलमान विरोधी नीति का हिस्सा भी उन्होंने बताया। बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव के बयानों को वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा जा रहा है, तो वहीं यूपी चुनाव में ताल ठोक रहे ओवैसी लखनऊ से दूर भोपाल में यूसीसी को लेकर जबरदस्त तरीके से गरजे हैं।
0: AIMM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी यूसीसी के विरोध में बुलाई गई जनसभा में हिस्सा लेने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे। मौका यूसीसी के विरोध का था, लिहाजा ओवैसी ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला।
5: यूसीसी का कानून नाफिज़ किया गया, वो न सिर्फ मुसलमानों के कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के भी खिलाफ है। आप तमाम लोगों का यहाँ पर जमा होना, बीजेपी और दिल्ली में बैठे हमारे सुस्त वजीर आजम को पैगाम मिलता है कि हम आपके बनाए हुए कानून को भारत के संविधान के खिलाफ मानते हैं।

0: पूर्व पुरजोर इसके खिलाफ एहतजाज अपना दर्ज कराते हैं।
1: पहले ओवैसी ने यूसीसी को संविधान और मुसलमान विरोधी बताया, उसके बाद अपने चिर परिचित अंदाज में नौजवानों को किसी मौलाना की तरह शरीयत को लेकर बड़ी नसीहत दे डाली।
0: अरे सोवियत यूनियन इस्लाम को खत्म नहीं कर सका, ये आरएसएस कौन सी खेत की मौली है जो हक की सभा को बुझा सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, मेरे नौजवानों तुम कौम का मुस्तकबिल हो, कानून बनते हैं मिट जाएंगे बनाने वाले इंशाअल्लाह, मगर याद रखो नौजवानों, तुम जब तक अपनी तबीयत पर शरीयत को गालिब नहीं करोगे हम इनकलाब नहीं ला पाएंगे।
1: ओवैसी यही नहीं रुके, खुल्लम खुल्ला ऐलान किया कि यूसीसी के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने से देश का मुसलमान अब पीछे नहीं हटेगा।
0: तुम हमको कमजोर समझकर दबा रहे हो, मगर याद रखो जब कमजोर उठ जाएगा, बेदार हो जाएगा, तो जिंदगी उसको उसकी जिंदगी का मकसद उसको समझ में आ जाएगा। जब कमजोर बेदार हो जाएगा, याद रखो मौत का डर दूर हो जाएगा, तो फिर किसी के महल आबाद नहीं रहेंगे, किसी का इख्तदार नहीं रहेगा। तुम हमको कब तक दबाओगे? अरे दबाते रहो, मगर हम दबने वाले हैं, तुम जितना दबाओगे उतनी ताकत से हम उठेंगे इंशाअल्लाह।
1: यूसीसी विरोधी जनसभा में ही ओवैसी ने बीजेपी विधायक की विवादित टिप्पणी पर ललकारा।
2: मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, जब हिंदुस्तान में लोग कहते थे सुई बनाना नहीं जानते, तो मोदी जी ने कहा कि हम मिसाइल बनाएंगे, जैसे तुम करौत के चौराहे पर खड़े होकर मिसाइल लगाओ और काजी कैंप पे गिरा दो, वैसे ही। अरे मैंने यहाँ का काजी कैंप नहीं बोला, इस्लामाबाद वाला बोला था।
0: कोई रामेश्वर शर्मा साहब का बयान सुना, क्या बोले, मैं मिसाइल लॉन्च करूंगा करौत स्क्वायर से काजी कैंप पर। रामेश्वर शर्मा, अगर तुम मई के लाल हो,
1: मतलब यही है कि यूसीसी पर शाह के बयान पर बवंडर खड़ा हो चुका है। कांग्रेस भी यूसीसी पर बीजेपी को घेरने में पीछे नहीं है।
3: संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं, उनके ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं और सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे को साधने के लिए। क्या फर्क पड़ रहा है यूसीसी से बताओ मुझे, कि निकाह नहीं होगा क्या हमारा? निकाह ही तो होगा, फेरे नहीं होंगे क्या? फेरे ही तो होंगे, क्या तमाशा बना रखा है? कुछ भी नहीं है।
4: भारत जो है वो तमाम अलग अलग तरह के फूलों से मिलके बना, आप सब कुछ एक रंग का कर देना चाहते हैं, सब कुछ एक जैसा कर देना चाहते हैं, डाइवर्सिटी कहाँ चली जाएगी? तो गृहमंत्री जी को ये समझना पड़ेगा कि ये देश बहुत अलग अलग भाषाओं, अलग अलग बोलियों, अलग अलग कल्चर, अलग अलग तहजीब, अलग अलग धर्मों सबसे मिल करके भारत बनता है। आप सब कुछ एक कर देना चाहते हैं, एक रंग का, तो हम तिरंगे के साथ खड़े हैं, हम तिरंगे वाले लोग हैं।
1: वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यूसीसी को कम्युनल एजेंडा बताया।
5: हमने सहारनपुर की मस्जिद भी गिरवा दी, फिर भी कोई दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हम मेरठ भी मस्जिद गिरवाने जा रहे हैं, संभल भी जा रहे हैं, मुरादाबाद भी जा रहे हैं, कहीं कुछ हलचल ही नहीं हो रही है, तब यूसीसी। तो कुल मिला के भारतीय झगड़ा पार्टी जो है वो इस देश को बर्बाद करना चाहती है। अब इस देश के लोगों को तय करना है।
6: यूसीसी जो है वो किसी एक मजहब के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण मुल्क के लिए है। किसी एक धर्म के साथ उसको जोड़कर आप नहीं देख सकते, ये संपूर्ण मुल्क के लिए है। ये कानून हिंदू कानून नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का कानून है।
1: यूसीसी की बिसात पर तमाम सियासी पार्टियों के बीच शह और मात का खेल शुरू हो चुका है, लेकिन देखना यही है कि शह और मात के इस खेल में बाजी कौन जीतता है। आज तक ब्यूरो।
7: पेपरली के बाद अब एमबीबीएस की काउंसलिंग में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। मामला है उत्तराखंड के हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय का, जहां दाखिले में स्वतंत्रता सेनानी आश्रित कोटे के फर्जी प्रमाण पत्रों का मामला गहराता जा रहा है। यहां एमबीबीएस एडमिशन में एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम से 4 सर्टिफिकेट जांच में फर्जी निकले हैं, उसके बाद शक के घेरे में पटवारी से लेकर एसडीएम तक आ गए। देहरादून में 5 महिलाओं पर केस दर्ज किया गया है।
8: देखिए इसने जो नीट में जो अप्लाई किया था जनरल कोटे से किया था, ठीक है,
9: और डोमिसाइल उत्तराखंड का डाला,
8: इसको डोमिसाइल इसको उत्तराखंड का बना दिया इसने, फ्रीडम फाइटर कोटे से इसने अप्लाई कर दिया।
1: उत्तराखंड में नीट यूजी में दाखिले के लिए स्वतंत्रता सेनानी आश्रित कोटे का दुरुपयोग किया जा रहा है। फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर कोटे से एमबीबीएस में एडमिशन लेने के फर्जीवाड़े का उत्तराखंड में खुलासा हुआ है। इस फर्जीवाड़े की सूची दिखाते ये प्रदीप बहुगुणा हैं, जिनकी शिकायत पर इस पूरे गोरख धंधे का खुलासा हुआ है। प्रदीप बहुगुणा मशहूर पर्यावरणविद पद्मश्री सुंदरलाल बहुगुणा के बेटे हैं, जिन्होंने राज्य में एमबीबीएस दाखिले के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कोटे का फायदा लेने के लिए फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।
8: उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय है, उसने अपने साइट पे केवल एक डाटा डाला था, वो था फ्रीडम फाइटर के उत्तराधिकारियों की सूची, वो 24 थी। तो जब मैंने उसकी पड़ताल की तो मैंने उसमें उन्होंने डोमिसाइल की डेट भी लिखी हुई थी आगे, जब मैंने और उसमें फ्रीडम फाइटर उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र का नंबर डाला हुआ था।
1: बहुगुणा के मुताबिक ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी के आधार पर कुछ मामलों की जांच तो कर पाए, लेकिन जिन प्रमाण पत्रों से जुड़े रिकॉर्ड ऑफलाइन थे उनके बारे में जानकारी जुटाना मुश्किल रहा। उन्होंने बताया कि सूची से ये सामने आया कि ज्यादातर प्रमाण पत्र काउंसलिंग की अंतिम तारीखों के आसपास जारी किए गए।
8: ज्यादातर सर्टिफिकेट लास्ट डेट में, मतलब 13-19 तक काउंसलिंग थी और 18-17 में बाद में बढ़ के 25 हो गई थी, तो 24 में भी प्रमाण पत्र जारी हुए। तो मैं समझ गया कि भाई जो हकीकत में यहाँ का स्थायी निवासी होगा या उस कैटेगरी का होगा, फ्रीडम फाइटर या ओबीसी एससी कैटेगरी का, वो आखिरी दिन तक क्यों रुका रहेगा। फिर मैंने इनके साइड से देखा तो उसमें मुझे ये देखने में आया कि ज्यादातर यहाँ के मूल के भी नहीं है और उनकी पढ़ाई भी दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बाहरी प्रदेशों से हुई है।
1: प्रदीप बहुगुणा ने आज तक से बातचीत में बताया कि उत्तराखंड में स्टेट कोटे के तहत एमबीबीएस की करीब 855 सीटें हैं। उनकी पड़ताल में सामने आया है कि इन सीटों में आरक्षण का लाभ लेने के लिए कथित तौर पर फर्जी डोमिसाइल प्रमाण पत्र बनाए गए।
8: मैं एक हफ्ते से इसमें लगा हूं और नीट की वेबसाइट से भी जाके जो ऑल इंडिया की है उससे मैंने निकाला है डाटा, तो उससे मुझे मोटा मोटा ये पता चला है कि 200 से ऊपर फर्जी डोमिसाइल बने हैं, जिससे कि उसकी फिर सब कैटेगरी होती है, ऑर्फन होता है, फ्रीडम फाइटर होता है, पीडब्ल्यूडी होता है, एससी होता है, एसटी होता है, फिर जब एक बार डोमिसाइल बन गया तो सब फिर वो उससे फायदा मिल जाता हूँ।
1: मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण पत्रों की जांच शुरू करवाई है। जांच में कुछ दस्तावेजों और आवेदकों के पते को लेकर गड़बड़ियां सामने आने की बात कही गई है। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि दस्तावेज फर्जी थे या नहीं, और अगर थे तो उन्हें तैयार करने में कौन कौन लोग शामिल थे।
8: देखो ये असल में ये जो लूप होल है इसके पीछे मुख्य रूप से स्थायी निवास वाली बात है। पहले मूल निवास जारी हुआ करता था, यहाँ के लोग होते थे उनको मूल निवास, उसमें फिर कई पीढ़ियों का वो देखा जाता था, खसरा खतौनी सब देखा जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब कोई अपना कोई 15 साल से भी यहाँ रह रहा है वो एक एफिडेविट लगा देता तो उसका प्रमाण पत्र बन जाता है। और इवन अब पटवारी लोग क्या करते हैं कि एफिडेविट के बेस पे बिना कोई जांच किए हुए प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं। ये देखा आप, ये स्पष्ट है कि जो प्रमाण पत्र जो है, जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो तहसीलदार जारी करते हैं, और जो स्थायी निवास का होता है उसको उपजिलाधिकारी या फ्रीडम फाइटर का भी एसडीएम ही जारी करते हैं।
1: उत्तराखंड में स्वतंत्रता सेनानी फर्जी सर्टिफिकेट मामले में जगदीश राठौड़ नाम के पटवारी आरोपों के घेरे में हैं, लेकिन जब आज तक ने राठौड़ से बात की तो इन्होंने एसडीएम अपूर्व सिंह पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उनके अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी बनती है।
10: जो आप लोग के पास जैसे अभी बात आई कि जो सर्टिफिकेट जो जारी हुए जिसमें फ्रीडम फाइटर के रहे या अन्य जाति वर्ग के रहे, तो इसमें कैसे हो गए, क्या वजह रहती है?
11: काम का दबाव के कारण ज़्यादा दबाव रहता है जी। SRI है, जनगणना है, VIP ड्यूटी है, मौके में जाना है, उनको चिन्हित करना है,
10: तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो आपके पास आए। क्या रहा उसमें, मतलब कैसे कोई ये जो कागज ज़्यादा दबाव की वजह से जो कागज चेक नहीं हो पाए?
11: ज़्यादा दबाव के चेक ना होने के कारण।
1: पटवारी ने SDM पर उंगली उठाई तो जिलाधिकारी आशीष चौहान तक मामला पहुंचा और उसके बाद उनकी तरफ से पूरी जांच की बात कही गई।
9: इस संबंध में जैसा आप जो बता रहे हैं कि अगर डोमिसाइल का एक उनमें भी किसी किस्म की कोई मैनिपुलेशन या फेक सर्टिफिकेट जारी होने जैसी स्थितियां हैं, तो जो जांच समिति है वो सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए अपने स्पेक्ट्रम को या अपनी जांच के एरिया या स्कोप को बढ़ा देगी।
1: इस खुलासे के बाद अब आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश सिंह नेगी ने इस मामले में हाईकोर्ट का रुख करने की तैयारी कर ली है।
12: इस मामले को मुख्य सचिव को पत्र लिखा, डीएम को पत्र लिखा, पर लेकिन किसी के द्वारा समाज कल्याण को पत्र लिखा, लेकिन किसी के द्वारा ये कराया नहीं गया। इसमें कोई जांच और ना कोई मुकदमे दर्ज करवाए गए।
1: इस पूरे मामले में पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर एसआईटी बना दी है, जिसकी जांच से पता चलेगा कि कथित फर्जी डोमिसाइल कैसे तैयार किए गए, इन्हें जारी करवाने में किन लोगों की भूमिका रही और इनका इस्तेमाल किन किन सरकारी लाभों के लिए किया गया। अंकित शर्मा, देहरादून आज तक।
7: और इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

आज प्रधानमंत्री मोदी का 76वां जन्मदिन। बीजेपी एक महीने तक चलाएगी सेवा संकल्प अभियान। अलग अलग शहरों में पार्टी के दिग्गज कार्यक्रमों में होंगे शामिल। जलेंगे लाखों दिए। 2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट्स पर शुल्क के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी का मोर्चा। कहा नियम वापस ले सरकार। वित्त मंत्री का जवाब, फैसले के पीछे कोई विदेशी दबाव नहीं। गोरखपुर में सीएम योगी की चुनावी हुंकार। कहा पहले एसपी और कांग्रेस सरकार में अपराध और डर, आज यूपी दंगा और कर्फ्यू मुक्त। बोले 19 सितंबर से 1,00,000 नई नौकरियों की शुरुआत। नौकरी पेशा कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा। कैबिनेट ने अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रतिमाह किया। 51,00,000 लोगों को फायदा। और कन्नड़ फिल्मों के दमदार अभिनेता अनंत नाग को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। सांसद बोर्ड की नई टीम के लिए भी 18 सदस्यों का ऐलान। मोदी सरकार 15 अक्टूबर से 2,000 रुपए से ऊपर के यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर चार्ज लगाने जा रही है, लेकिन सरकार के इस फैसले पर विपक्ष और राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने सीधे मोदी सरकार पर अमेरिका के दबाव में आने का आरोप लगाया और इस फैसले को वापस लेने की मांग की। सरकार जवाब दे रही है कि वो किसी भी विदेशी दबाव में नहीं है।

0: ना भैया कैश यूज करना बंद करो, यूपीआई करो, यूपीआई करो। और अब इस उसी यूपीआई की वसूली करने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं।
1: ये मर्चेंट पे कॉस्ट है, मर्चेंट जो है वो पे करेगा, ना कि एक जो एंड यूजर या कंज्यूमर पे होगा।
2: मोदी जी प्लीज स्टॉप लाइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, हैव अ स्पाइन, खड़े हो जाइए और यूपीआई टैक्स को वापस लीजिए।
3: जो खुद किसी और के इशारे पे काम करते हो और वो इस तरह की अनगढ़ बातें करते
2: हैं। ये अमेरिका के दबाव के अंदर ये सरकार बिल्कुल घुटने टेक गई है।
0: यूपीआई पर मार, गरीब पर वार और फिर झुकी अमेरिका के आगे मोदी सरकार।
4: तो अमेरिका का क्या मतलब है इसमें, हमें भारत की इकोनॉमी डेवलप करनी है, देश के लिए पैसा भी चाहिए।
5: नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी देश की इकोनॉमी को डुबा के रखी है।
6: मुझे लगता है कांग्रेस का काम ही केवल गुमराह करना और आलोचना करने का रह गया।
7: ये नाराज फूफा ने देश की जनता की जेब काटने का फैसला लिया है।
0: जनता का कितना गला रेता जाएगा मैं ये जानना चाहूंगा।
8: राहुल गांधी जी की बात करें, सुबह शाम उन्हें मोदी जी दिखते हैं ताकि किसी ना किसी विषय पर मोदी विरोध को तो कर सकें और मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बोल पाए।
9: इधर 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर सरकार ने चार्ज लगाया, उधर विपक्ष ने सीधे पीएम मोदी पर जैसे धावा बोल दिया। सबसे पहले राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो जारी करके न सिर्फ सरकार के इस फैसले की आलोचना की बल्कि आरोप लगाया कि यूपीआई पर चार्ज से अमेरिका को फायदा होगा और सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। जी हाँ, राहुल गांधी ने अपने वीडियो में कहा कि इंदिरा जी हमेशा सीधी खड़ी रहती थी पर ये सरकार आज अमेरिका के सामने दंडवत हो गई है। यूपीआई पर सरकार के फैसले से अमेरिका को फायदा होगा।
10: He is neither left nor right. He has decided to lie down straight and prostrate himself in front of Donald Trump. He's put a tax on every single Indian person by taxing UPI and giving huge amount of money to the United States. Modi ji, please stop lying down in front of the United States. Have a spine, khade ho jaiye aur UPI tax ko wapas lijiye.
9: यूपीआई पर चार्ज को राहुल गांधी ने अमेरिका से जोड़ा तो कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। लेकिन जवाब में सरकार कह रही है कि यूपीआई नियमों में बदलाव किसी विदेशी दबाव में नहीं लाया गया है,
0: क्योंकि वसूली मैन नरेंद्र मोदी का कहर जारी है और इस बार जो वसूली है वो अमेरिका के सामने बार बार सरेंडर करने की आदत से मजबूर होकर फिर की जा रही है। वसूली के नए प्लान में 2000 से ऊपर के हर यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन में 0.4% चार्ज लगेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह अभी तक पूरी तरह से फ्री था, पूरी तरह से मुफ्त था।
3: देश हित में और देश के लोगों के हित में मोदी जी जब भी कोई अच्छा फैसला लेते हैं इनको वो भाता नहीं है, इनको मोदी फोबिया हो गया है। यूपीआई से अब सरकार ने स्पष्ट किया है 2000 तक कुछ नहीं होने वाला और 96% लोग 2000 से ज़्यादा यूपीआई से लेन देन, ये आंकड़े हैं, लेन देन नहीं करते, फिर भी पर्सन सुपर टन पर्सन कोई MDR नहीं लगने वाला है।
11: यूपीआई पर लगे चार्ज को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी समझा रही है कि ग्राहकों पर इसका कोई सीधा सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि घूम फिरकर ये आम आदमी की जेब पर ही आएगा। इसी बीच यूपीआई पर चार्ज का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजेक्शन्स पर नए चार्ज लगाने के खिलाफ याचिका दायर की गई है।
9: राहुल गांधी के जवाब में मोदी सरकार और बीजेपी ने यूपीआई पर लगे चार्ज पर देश को समझाना शुरू किया कि पहले तो 2000 रुपए से नीचे के भुगतान पर कोई चार्ज नहीं है और 2000 रुपए के ऊपर के ट्रांजैक्शन पर चार्ज ग्राहक को नहीं बल्कि दुकानदार या कारोबारी को देना होगा। सरकार ने MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू किया है, यानी 15 अक्टूबर 2026 से 2000 रुपए से ज्यादा के चुनिंदा UPI मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% MDR लगेगा। इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन होगी। ये शुल्क मर्चेंट से लिया जाएगा, ग्राहक से नहीं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो कह रही है कि MDR यानी UPI पर लगे चार्ज का ग्राहक से कोई लेना देना नहीं है, तो आखिर में ये टैक्स घूम फिर कर आम आदमी की जेब पर ही आएगा।
1: मिनिस्टर फाइनेंस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि एक आम नागरिक पर्सन टू पर्सन पे करता है तो कुछ नहीं, पर्सन टू मर्चेंट होता है जो उस पर 0.4% लगेगा, वो भी मर्चेंट को देना है, आदमी को नहीं देना है।
0: मैं और आप और इस देश का हर व्यक्ति जानता है कि कोई मर्चेंट बढ़ी हुई कॉस्ट को खुद बेयर नहीं करता है। उसका बड़ा आसान तरीका है, वो कैसे ये कॉस्ट निकालेगा, कुछ नहीं करेगा, वो धीमे से कीमत बढ़ाएगा। बार बार हमने ये देखा है।
9: आपको बता दें कि अभी एक हफ्ता पहले ही हुआ जब ब्रिक्स बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की ताकत दुनिया को बताई थी। मोदी ने कहा था कि आज दुनिया के 50% रियल टाइम पेमेंट UPI वाली तकनीक से होते हैं।
12: भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI, इसने पॉपुलेशन स्केल पर फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल ट्रांजैक्शन को नई गति दी है। आज विश्व के 50% रियल टाइम पेमेंट्स इसी टेक्नोलॉजी पर होते हैं।
9: लेकिन जैसे ही UPI पर 0.4% MDR लगा तो सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ। कांग्रेस कह रही है कि पहले तो सरकार कहती थी कि UPI करो, अब उसी UPI पर चार्ज लगा रही है।
0: क्योंकि आप ही ने तो कहा था भैया कैश यूज करना बंद करो, UPI करो, UPI करो। आप सेल्समैन बने हुए थे UPI के और अब उसी UPI की वसूली करने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं।
4: वो मुझे लगता है कि सरकार चलानी है तो सरकार के रिवेन्यू सरकार को मिलना चाहिए ही। और राहुल गांधी का आरोप है कि भाई अमेरिका के कहने पर ही ऐसा किया है, तो अमेरिका का क्या मतलब है इसमें? हमें भारत की इकोनॉमी डेवलप करनी है, देश के लिए पैसा भी चाहिए।
9: RBI ने UPI पेमेंट्स पर चार्ज लगाने के फैसले को भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को टिकाऊ बनाए रखने के लिए जरूरी कहा है, तो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स वाली कंपनियां भी इसके फायदे गिना रही हैं।
13: UPI का MDR 0.4% पे आज भी दुनिया का सबसे सस्ता MDR है, मगर वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि होपफुली उसके वजह से फोन पे और बाकी जितने भी पेमेंट कंपनीज हैं अब हम लोग भी जो है इन्वेस्ट कर पाएंगे वापस मार्केट को ग्रो करने में।
14: आई थिंक कि अगले लेवल की ग्रोथ के लिए ये MDR बहुत जरूरी और ये इसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है ताकि UPI का और उद्धार हो, भारत का और उद्धार हो।
9: लेकिन कांग्रेस सरकार के UPI वाले फैसले पर न सिर्फ सवाल उठा रही है बल्कि महंगाई से जूझते लोगों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा बता रही है।
0: बजाय लोगों के मरहम लगाने के महंगाई से जूझते हुए लोगों के घाव पर नमक मिर्च रगड़ी जा रही है कि ऐसा कैसे है भैया, हम तो अमेरिका के आगे नतमस्तक हो गए, मोदी जी कह रहे हैं तो वसूली तो तुमसे करनी पड़ेगी क्योंकि उनके इशारे पे की जा रही है।
15: कोई टैक्स नहीं है, 96% से ज्यादा लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
9: मोदी सरकार UPI को भारत की बड़ी सफलता बताती है। 2016 में नोटबंदी के बाद भारत में लेस कैश और डिजिटल पेमेंट्स का मुद्दा राजनीतिक चर्चा में आया था और अब एक बार फिर से इस पर सियासी घमासान छिड़ा है। 15 अक्टूबर से UPI की नई व्यवस्था लागू होगी, लेकिन आम जनता और कारोबारी इस पर क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं।
16: ग्राहक तो उस पे लगा देगा ही चार्ज, क्योंकि भाई वो ले रहा है 2000 के ऊपर पेमेंट ले रहा है, एक्स्ट्रा दे रहा है, तो वो जनता पे ही लगा देगा।
17: बिल्कुल, दुकानदार जनता से ही वसूलेंगे, वो अपनी लागत नहीं बढ़ाएंगे।
18: सरकार थोड़ी हमें मतलब दुकानदार के पास हमारा निपटारा करवाने आएगी कि नहीं इनसे फीस नहीं लेनी।
19: निश्चित रूप से देश के 10 करोड़ छोटे व्यापारी रिटेल कारोबारियों के लिए एक बहुत बड़ा ग्रहण होने वाला है।
20: सामने वाला हमें देना नहीं चाहेगा और ये एक एक्स्ट्रा, इसके हमें नहीं लग रहा था कि सरकार को कोई इसे हो सकता थी।
21: जो है मोदी सरकार कहती है कि जो है ऑनलाइन आप जो है लेन देन करिए तो वो प्रथा फिर बंद हो जाएगी, फिर पुरानी प्रथा पे हमको लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
22: UPI कहते हैं पहले गुड़ खाओ और बाद में ढेला, वो हाल है।
9: आज तक ब्यूरो।
11: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव UCC पर अपना स्टैंड स्पष्ट कर चुके हैं, तो कुछ दिन पहले मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को योगी सरकार की मुसलमान विरोधी नीति का हिस्सा भी उन्होंने बताया। बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव के बयानों को वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा जा रहा है, तो वहीं यूपी चुनाव में ताल ठोक रहे ओवैसी लखनऊ से दूर भोपाल में यूसीसी को लेकर जबरदस्त तरीके से गरजे हैं।
9: AIMM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी UCC के विरोध में बुलाई गई जनसभा में हिस्सा लेने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे। मौका UCC के विरोध का था, लिहाजा ओवैसी ने BJP पर सीधा हमला बोला।
23: UCC का कानून नाफिज किया गया वो न सिर्फ मुसलमानों के कुरान और सुन्नत के खिलाफ है बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के भी खिलाफ है। आप तमाम लोगों का यहाँ पर जमा होना, BJP और दिल्ली में बैठे हमारे सुस्त वज़ीर-ए-आज़म को पैगाम मिलता है कि हम आपके बनाए हुए कानून को भारत के संविधान के खिलाफ मानते हैं और हम पुरजोर इसके खिलाफ एहतजाज अपना दर्ज कराते हैं।
9: पहले ओवैसी ने UCC को संविधान और मुसलमान विरोधी बताया, उसके बाद अपने चिर परिचित अंदाज में नौजवानों को किसी मौलाना की तरह शरीयत को लेकर बड़ी नसीहत दे डाली।
24: अरे सोवियत यूनियन इस्लाम को खत्म नहीं कर सका, ये RSS कौन सी खेत की मौली है जो हक की शमा को बुझा सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। मेरे नौजवानों तुम कौम का मुस्तकबिल हो, कानून बनते हैं मिट जाएंगे बनाने वाले इंशाल्लाह, मगर याद रखो नौजवानों तुम जब तक अपनी तबीयत पर शरीयत को गालिब नहीं करोगे हम इनकलाब नहीं ला पाएंगे।
9: ओवैसी यही नहीं रुके, खुल्लम खुल्ला ऐलान किया कि UCC के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने से देश का मुसलमान अब पीछे नहीं हटेगा।
24: तुम हमको कमजोर समझकर दबा रहे हो मगर याद रखो जब कमजोर उठ जाएगा बेदार हो जाएगा तो जिंदगी उसको उसकी जिंदगी का मकसद उसको समझ में आ जाएगा। जब कमजोर बेदार हो जाएगा याद रखो मौत का डर दूर हो जाएगा तो फिर किसी के महल आबाद नहीं रहेंगे, किसी का इख्तदार नहीं रहेगा। तुम हमको कब तक दबाओगे? अरे दबाते रहो मगर हम दबने वाले हैं, तुम जितना दबाओगे उतनी ताकत से हम उठेंगे इंशाल्लाह।
9: UCC विरोधी जनसभा में ही ओवैसी ने BJP विधायक की विवादित टिप्पणी पर ललकारा।
25: मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, जब हिंदुस्तान में लोग कहते थे सुई बनाना नहीं जानते तो मोदी जी ने कहा कि हम मिसाइल बनाएंगे। जैसे तुम करोत के चौराहे पर खड़े होकर मिसाइल लगाओ और काजी कैंप पे गिरा दो वैसे ही। अरे मैंने यहाँ का काजी कैंप नहीं बोला, इस्लामाबाद वाला बोला था।
24: कोई रामेश्वर शर्मा साहब का बयान सुना, क्या बोले? मैं मिसाइल लॉन्च करूंगा करोत स्क्वायर से काजी कैंप पर। रामेश्वर शर्मा अगर तुम मई के लाल हो
9: मतलब यही है कि UCC पर शाह के बयान पर बवंडर खड़ा हो चुका है। कांग्रेस भी UCC पर BJP को घेरने में पीछे नहीं है।
26: संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं, उनके ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं।
2: और सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे को साथ लेकर, क्या फर्क पड़ रहा है यूसीसी से? बताओ मुझे कि निकाह नहीं होगा क्या हमारा? निकाह ही तो होगा, फेरे नहीं होंगे क्या? फेरे ही तो होंगे, क्या तमाशा बना रखा है? कुछ भी नहीं।
5: भारत जो है वो तमाम अलग अलग तरह के फूलों से मिलके बना, आप सब कुछ एक रंग का कर देना चाहते हैं, सब कुछ एक जैसा कर देना चाहते हैं, डाइवर्सिटी कहां चली जाएगी? तो गृहमंत्री जी को यह समझना पड़ेगा कि ये देश बहुत अलग अलग भाषाओं, अलग अलग बोलियों, अलग अलग कल्चर, अलग अलग तहजीब, अलग अलग धर्मों सबसे मिल करके भारत बनता है। आप सब कुछ एक कर देना चाहते हैं, एक रंग का, तो हम तिरंगे के साथ खड़े हैं, हम तिरंगे वाले लोग हैं।
6: वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यूसीसी को कम्युनल एजेंडा बताया।
7: हमने सहारनपुर की मस्जिद भी गिरवा दी, फिर भी कोई दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हम मेरठ भी मस्जिद गिरवाने जा रहे हैं, संभल भी जा रहे हैं, मुरादाबाद भी जा रहे हैं, कहीं कुछ हलचल ही नहीं हो रही है। तो अब यूसीसी, तो कुल मिला के भारतीय झगड़ा पार्टी जो है वो इस देश को बर्बाद करना चाहती है। अब इस देश के लोगों को तय करना है।
8: यूसीसी जो है वो किसी एक मजहब के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण मुल्क के लिए है। किसी एक धर्म के साथ उसको जोड़कर आप नहीं देख सकते, ये संपूर्ण मुल्क के लिए है। ये कानून हिंदू कानून नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का कानून है।
6: यूसीसी की बिसात पर तमाम सियासी पार्टियों के बीच शह और बात का खेल शुरू हो चुका है, लेकिन देखना यही है कि शह और बात के इस खेल में बाजी कौन जीतता है। आज तक ब्यूरो।
11: राजस्थान निकाय चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन जीते हुए पार्षद गायब हैं। कांग्रेस बीजेपी समेत निर्दलीय जीते करीब 10,000 नव निर्वाचित पार्षद होटल और रिजॉर्ट्स में अलग अलग जगहों पर बंद हैं। जनता ने भरोसा करके इन्हें चुन तो लिया है, मगर कांग्रेस बीजेपी और छोटे दलों को अपने ही पार्षदों पर भरोसा नहीं है। हालात ऐसे हो गए कि मतदान खत्म होते ही प्रत्याशी के मोबाइल के से लिए गए और वोटिंग के बाद सीधे होटल पहुंचे, और मतगणना के दिन भी चुनावी मैदान से दूर होटल के कमरों से ही नतीजों पर नजर बनाए रखी गई। यहां तक कि मतगणना के बाद जीत का सर्टिफिकेट लेने भी इनको जाने नहीं दिया गया। इनके एजेंट्स ने जीत का सर्टिफिकेट लिया है।
5: राजस्थान में टूरिज्म का भले ही ऑफ सीजन चल रहा, लेकिन फिर भी वहां रिजॉर्ट और होटल फुल। राजस्थान के पार्षद स्विमिंग पूल में चिल कर रहे हैं, तो कहीं परिवार का जन्मदिन मनाने के लिए सबको रिजॉर्ट में बुला ले रहे हैं। देर रात तक गीत संगीत की महफिल चल रही है। नाली पानी सड़क बिजली के लिए संघर्ष कर रही जनता को पसीने पसीने छोड़कर पुष्कर के रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल में मजे कर रहे हैं। ये ब्यावर के कांग्रेस के पार्षद 9 सितंबर को वोटिंग के बाद से ही इन्हें रिजॉर्ट में बंद कर दिया गया है। दौसा के महुआ नगरपालिका में जीते ये बीजेपी के पार्षद, जो जयपुर के जामबारागढ़ में रिजॉर्ट में महुआ के विधायक राजेंद्र मीणा की बेटी के जन्मदिन की पार्टी में शरीक हो रहे हैं। इस पार्टी में आशीर्वाद देने बाड़ेबंदी में ही कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आए। राजस्थान के 309 निकाय चुनाव में से बीजेपी को 85 निकाय में बहुमत मिला है, तो कांग्रेस को 45 निकाय में स्पष्ट बहुमत मिला है। बाकी 5 नगर निगम, 18 नगर परिषद और 122 नगर पालिकाओं में चाबी निर्दलियों के हाथ में है। 34 निकायों में तो निर्दलियों ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। ऐसे में पार्टी नेताओं को डर था कि कहीं जीतने वाले पार्षदों पर दूसरे दलों की नजर ना पड़ जाए और बोर्ड बनाने के समय कोई खेला ना हो जाए। इसी आशंका के चलते प्रत्याशियों को अलग अलग होटलों में ठहराया गया। मतदान के बाद पार्षद अपने वार्ड में जनता के बीच कम और होटल की चारदीवारी में ज्यादा नजर आए। सबसे ज्यादा खतरा अजमेर के कांग्रेस के पार्षदों को, जिन्हें 4 दिनों में 4 होटल बदलने पड़े और आखिर में इन्हें कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक के बेंगलुरु में ले जाना पड़ा है।
10: ऐसा कुछ नहीं है, हमारे तो बहुत बहुत ज्यादा, हमारे पास 11 के 11 निर्दल हमारे साथ है, 37 हम कांग्रेस ही।
6: अजमेर के कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी हमारे पार्षदों को तोड़ने में लगी है। होटलों में पार्षदों की आवभगत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, लजीज पकवान खिलाए जा रहे हैं, मौज मस्ती का भी पूरा इंतजाम है ताकि वफादारी निभाने के समय ये भाग न जाए। जयपुर में तो बीजेपी ने बहुमत मिलने के बाद भी पार्षदों को 30 किलोमीटर दूर बगलू के होटल में बंद कर रखा है। गेट पर ताला बंद, किसी की पत्नी प्रसाद लेकर पहुंच रही है तो किसी का बेटा दवाई लेकर आ रहा है।
26: प्रसाद खिला के आ रही है?
27: हाँ, गणेश जी का लड्डू।
26: क्या कर रहे हैं पति?
1: पति अभी तो परीक्षण प्रशिक्षण शिविर में है उधर ही।
3: क्या नाम है उनका?
1: राजेंद्र सैनी।
3: किस वार्ड से जीते हैं?
1: वार्ड 12 से। अभी कपड़े देने आई थी मैं उनको।
4: राजस्थान में नगर निकाय के चुनाव तो हो गए मगर किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। पार्टियों को अपने चुने हुए पार्षदों पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, निर्दलीय, सभी बाड़े बंदी में है। जयपुर का ये भंवर सिंह पैलेस है जहां पर बीजेपी के सभी पार्षद यहां पर कैद किए गए हैं। बीजेपी के पास मेजोरिटी है, जयपुर में बहुमत है, उसके बावजूद डर है कि कहीं बिक न जाएं, कहीं फूट न पड़ जाए, कहीं भाग न जाए, जिसकी वजह से इस तरह से सारे पार्षदों को यहां पर कैद करके रखा गया है। ये देख रहे हैं होटल में मुख्य द्वार पर ताला लगाया गया है, इस ताले को देखिए। और ताला जब गार्ड खोलता है तब जाकर किसी की पत्नी आ रही है प्रसाद लेकर, तो किसी का बेटा रहा है दवाई लेकर, और फिर तस्दीक करके अंदर भेजा जा रहा है। राजस्थान के 10,000 से ज्यादा पार्षद पूरे राजस्थान के अलग अलग रिजोर्ट में, होटल में बंद हैं। कई तो हरियाणा के रिजोर्ट में पहुंचे हैं, गुजरात के रिजोर्ट में पहुंचे हैं।
12: डूंगरपुर में बीजेपी के जीते पार्षदों को जश्न मनाने का मौका नहीं, बस से लाए, सामूहिक शपथ दिलाई और वापस ले गए। घरवाले और समर्थक बस के बाहर से मिलते दिखे, कोई कपड़े दे रहा था तो कोई मिठाई तो कोई जीत की बधाई। इस पूरे बाड़ेबंदी का सबसे दिलचस्प पहलू निर्दलीय और बागी प्रत्याशियों को लेकर सामने आया। चुनाव से पहले या मतदान के बाद जिन निर्दलीय प्रत्याशियों को राजनीतिक दलों ने अपने संभावित काम के चेहरे के तौर पर देखा, उन्हें भी अपने साथ होटल में रखा गया। वजह साफ थी, वोट बनाने के लिए एक एक पार्षद की गिनती महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन जैसे ही नतीजे आए और इनमें से कुछ प्रत्याशी चुनाव हार गए, कहानी भी बदल गई। जो कल तक पार्टी के मेहमान थे, जीत की उम्मीद खत्म होते ही उनकी होटल वाली मेहमान नवाजी भी खत्म हो गई। हारने वाले निर्दलीय प्रत्याशियों को होटल से वापस घर भेज दिया गया, जबकि जीतने वाले या बोर्ड बनाने के समीकरण में उपयोगी माने जा रहे पार्षदों की बाड़ेबंदी अभी भी जारी है। महापौर और सभापति चुनाव 21 सितंबर को होना है, ऐसे में आने वाले दिनों में बाड़ेबंदी और तेज होने की संभावना है।
4: कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी बाड़ेबंदी कर रहे हैं और होटल भी बदल रहे हैं। ऐसा नहीं है दो दिन एक होटल में जा रहे हैं तो तीसरे दिन किसी और होटल में भाग रहे हैं। पुलिस भी पीछे पीछे पहुंच रही है, हंगामा भी हो रहा है, जांच के नाम पर पुलिस भी जा रही है। आप समझिए बाड़ेबंदी के नाम पर किस तरह का तमाशा लोकतंत्र के नाम पर राजस्थान में चल रहा है। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
11: दिशा सालियान की मौत मिस्ट्री सुलझने से पहले उस पर सियासी घमासान तेज हो चुका है। महायुति के आरोपों के बाद आखिरकार शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना है ही नहीं, लेकिन मुझे बदनाम करने के लिए जो सियासी अभियान चलाया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि सीबीआई की जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा।

0: दिशा सालियान की मौत मिस्ट्री पर सियासी घमासान जारी है। दिशा के पिता सतीश सालियान तत्कालीन उद्धव सरकार और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद से महायुति सरकार भी आदित्य ठाकरे पर निशाना साध रही है। लेकिन आदित्य ठाकरे ने आखिरकार दिशा की मौत मिस्ट्री मामले में अपने ऊपर लगाए जा रहे गंभीर आरोपों पर सोशल मीडिया पर खुलकर अपना पक्ष रखा है। आदित्य ने लिखा, मैं दिशा सालियान से कभी नहीं मिला और न ही उन्हें जानता हूँ। पिछले 6 सालों से कुछ लोग जानबूझकर और बिना किसी सबूत के इस दुखद मामले से मेरा नाम जोड़कर मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बदनाम करने का ये अभियान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जोरदार टीवी डिबेट और मीडिया ट्रायल से सच्चाई नहीं बदलती। इस केस की जांच दोबारा आगे बढ़ने दें।
1: इसके पहले उन्होंने और एक झूठा डिफेंस लिया था कि जिस दिन दिशा की डेथ हुई उस दिन मैं तो मुंबई में नहीं था, मैं डोंबिवली में था, मेरे नाना जी की डेथ हुई थी। वो भी झूठा निकला क्योंकि दिशा का डेथ हुआ 8 जून को, उनके नाना जी 14 जून तक जिंदा थे। तो ये हैबिचुअल झूठ बोलने वाले लोगों को बेवकूफ समझने वाले, लोगों को गुमराह करने वाले ऐसे लोग हैं। अब रहा विषय, उन्होंने लिया है ऑब्जेक्शन मीडिया ट्रायल का। बिल्कुल सही बात है, कोई अगर जनरल केस है तो उसमें मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये केस ऐसा है, ये मीडिया ट्रायल के बगैर केस चल ही नहीं सकता है। मीडिया ट्रायल मतलब ऐसा नहीं कि मीडिया ही इनको दोषी ठहरा रहा है, लेकिन मीडिया में डिस्कशन जो हो रहा है, सच बाहर आ रहा है, उसी के वजह से एक गरीब पिता आज इनको टक्कर दे पा रहा है। और मैं वकील होने के नाते कह रहा हूं, मीडिया की रिपोर्ट थे जिसके वजह से कई इनके झूठ पकड़े गए, इनका सारा 420 बाहर आया।
0: लेकिन महायुति सरकार कह रही है कि जांच एजेंसियां सच्चाई का पता लगा रही हैं, इसमें सियासत की कोई जगह नहीं है।
2: देखिए, 6 साल 8 साल पहले का ये मामला है और तब से लेकर जो मामला सामने आया है उसके ऊपर पीड़ित पिता ने न्यायिक लड़ाई लड़ी है। एक लड़की की जान गई है, उसके पिता की कोई उसके ऊपर मांग है, कुछ कहना है, उस आधार पर न्यायालय ने आदेश दिए है, उस आधार पर इंक्वायरी हो रही है। ये इंक्वायरी का रिपोर्ट न्यायालय के पास जाएगा और इसके लिए इसमें इस न्यायिक प्रक्रिया में मैं या कोई कुछ क्या बोले, न्यायिक प्रक्रिया कानूनन तरीके से चल रही है और वो होनी चाहिए।
3: उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए, उसके पिता को न्याय मिलना चाहिए और उसकी लड़की, उनकी उस लड़की और उसके पिता के बारे में सोचे बगैर अगर आप अपने आका को बचाने के लिए तरह तरह की थ्योरी क्रिएट कर रहे हैं, मतलब बहुत ही संवेदनहीन हो गए। मतलब आप इस देश के नौजवानों को मरने के लिए छोड़ देना चाहते हैं। जहां तक सीबीआई के एफआईआर की बात है, उसमें जिन लोगों के नाम आए हैं सभी संदेहास्पद पृष्ठभूमि के लोग हैं, चाहे दूध मौर्य हो या फिर आपका वो सचिन वाजे हो या फिर एक एक नाम आता है पंचोली का नाम आता है, इन सबका बैकग्राउंड बहुत साफ सुथरा नहीं है। हमारे मन में सवाल ये उठा कि आदित्य ठाकरे जो इनके साथ एक सह अभियुक्त के तौर पर नामजद किए गए हैं, उनके पास और कुछ काम धाम नहीं था।
0: 11 सितंबर को सीबीआई ने इस केस में एफआईआर दर्ज की है। दिशा के पिता सतीश सालियन की शिकायत में शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे, एक्टर डिनो मोरिया, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, रोहन रॉय के नाम शामिल है। आज तक के पास सीबीआई की एफआईआर की कॉपी भी मौजूद है। सतीश सालियान ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे अनिल देशमुख पर भी सच छिपाने का आरोप लगाया है। इसके साथ जांच में शामिल कई पुलिस अफसरों और पूर्व अधिकारियों की भूमिका की जांच की भी जरूरत बताई गई है, जिसमें सचिन वाजे, परमवीर सिंह और डीसीपी विशाल ठाकुर का नाम है। पिछले शुक्रवार को दिशा के पिता सतीश सालियान ने सीबीआई अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी।
4: मैं इम्पोर्टेंट जो दोषी है, जो आदित्य ठाकरे, दिनो मौर्य, सूरज पंचोली, उसका सब इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करने है, ऐसा कंप्लेंट दिया है मैंने।
0: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि वो एफआईआर दर्ज करके सतीश सालियान के आरोपों की जांच करे और अगर आरोपों में कोई सच्चाई या तथ्य पाए जाते हैं तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करे। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
5: और इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

आज प्रधानमंत्री मोदी का 76वां जन्मदिन। बीजेपी एक महीने तक चलाएगी सेवा संकल्प अभियान। अलग अलग शहरों में पार्टी के दिग्गज कार्यक्रमों में होंगे शामिल। जलेंगे लाखों दिए।

फैसले के पीछे कोई विदेशी दबाव नहीं। गोरखपुर में सीएम योगी की चुनावी हुंकार, कहा पहले एसपी और कांग्रेस सरकार में अपराध और डर, आज यूपी दंगा और कर्फ्यू मुक्त, बोले 19 सितंबर से 1,00,000 नई नौकरियों की शुरुआत। नौकरी पेशा कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, कैबिनेट ने अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रतिमाह किया, 51,00,000 लोगों को फायदा। और कन्नड़ फिल्मों के दमदार अभिनेता अनंत नाग को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड, प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। सांसद बोर्ड की नई टीम के लिए भी 18 सदस्यों का ऐलान। मोदी सरकार 15 अक्टूबर से 2,000 रुपए से ऊपर के यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर चार्ज लगाने जा रही है, लेकिन सरकार के इस फैसले पर विपक्ष और राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने सीधे मोदी सरकार पर अमेरिका के दबाव में आने का आरोप लगाया और इस फैसले को वापस लेने की मांग की। सरकार जवाब दे रही है कि वो किसी भी विदेशी दबाव में नहीं है।

0: करो। और अब इस उसी यूपीआई की वसूली करने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं।
1: ये मर्चेंट पे कॉस्ट है, मर्चेंट जो है वो पे करेगा, ना कि जो एंड यूजर या कंज्यूमर पे होगा।
2: मोदी जी प्लीज स्टॉप लाइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, हैव अ स्पाइन, खड़े हो जाइए और यूपीआई टैक्स को वापस लीजिए।
3: जो खुद किसी और के इशारे पे काम करते हो और वो इस तरह की अनगढ़ बातें करते
4: हैं। ये अमेरिका के दबाव के अंदर ये सरकार बिल्कुल घुटने टेक गई है।
0: यूपीआई पर मार, गरीब पर वार और फिर झुकी अमेरिका के आगे मोदी सरकार।
5: तो अमेरिका का क्या मतलब है इसमें? हमें भारत की इकोनॉमी डेवलप करनी है, देश के लिए पैसा भी चाहिए।
6: नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी देश की इकोनॉमी को डुबा के रखी है।
7: मुझे लगता है कांग्रेस का काम ही केवल गुमराह करना और आलोचना करने का रह गया।
8: ये नाराज फूफा ने देश की जनता की जेब काटने का फैसला लिया है।
0: जनता का कितना गला रेता जाएगा मैं ये जानना चाहूंगा।
9: राहुल गांधी जी की बात करें, सुबह शाम उन्हें मोदी जी दिखते हैं ताकि किसी न किसी विषय पर मोदी विरोध को तो कर सके और मोदी सरकार के खिलाफ भी बोल पाए।
10: इधर 2,000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर सरकार ने चार्ज लगाया, उधर विपक्ष ने सीधे पीएम मोदी पर जैसे धावा बोल दिया। सबसे पहले राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो जारी करके न सिर्फ सरकार के इस फैसले की आलोचना की बल्कि आरोप लगाया कि यूपीआई पर चार्ज से अमेरिका को फायदा होगा और सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। जी हां, राहुल गांधी ने अपने वीडियो में कहा कि इंदिरा जी हमेशा सीधी खड़ी रहती थी पर ये सरकार आज अमेरिका के सामने दंडवत हो गई है। यूपीआई पर सरकार के फैसले से अमेरिका को फायदा होगा।
2: He is neither left nor right. He has decided to lie down straight and prostrate himself in front of Donald Trump. He's put a tax on every single Indian person by taxing UPI and giving huge amount of money to the United States. Modi ji, please stop lying down in front of the United States. Have a spine, khade ho jaiye aur UPI tax ko wapis lijiye.
10: यूपीआई पर चार्ज को राहुल गांधी ने अमेरिका से जोड़ा तो कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। लेकिन जवाब में सरकार कह रही है कि यूपीआई नियमों में बदलाव किसी विदेशी दबाव में नहीं लाया गया है,
0: क्योंकि वसूली मैन नरेंद्र मोदी का कहर जारी है और इस बार जो वसूली है वो अमेरिका के सामने बार बार सरेंडर करने की आदत से मजबूर होकर फिर की जा रही है। वसूली के नए प्लान में 2000 से ऊपर के हर यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन में 0.4% चार्ज लगेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह अभी तक पूरी तरह से फ्री था, पूरी तरह से मुफ्त था।
3: देश हित में और देश के लोगों के हित में मोदी जी जब भी कोई अच्छा फैसला लेते हैं इनको वो भाता नहीं है, इनको मोदी फोबिया हो गया है। यूपीआई से अब सरकार ने स्पष्ट किया है 2000 तक कुछ नहीं होने वाला और 96% लोग 2000 से ज्यादा यूपीआई से लेन देन, ये आंकड़े हैं, लेन देन नहीं करते। फिर भी पर्सन सुपर टर्न पर्सन कोई MDR नहीं लगने वाला है।
11: यूपीआई पर लगे चार्ज को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी समझा रही है कि ग्राहकों पर इसका कोई सीधा सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि घूम फिरकर ये आम आदमी की जेब पर ही आएगा। इसी बीच यूपीआई पर चार्ज का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर नए चार्ज लगाने के खिलाफ याचिका दायर की गई है।
10: राहुल गांधी के जवाब में मोदी सरकार और बीजेपी ने यूपीआई पर लगे चार्ज पर देश को समझाना शुरू किया कि पहले तो 2000 रुपए से नीचे के भुगतान पर कोई चार्ज नहीं है और 2000 रुपए के ऊपर के ट्रांजैक्शन पर चार्ज ग्राहक को नहीं बल्कि दुकानदार या कारोबारी को देना होगा। सरकार ने MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू किया है, यानी 15 अक्टूबर 2026 से 2000 रुपए से ज्यादा के चुनिंदा UPI मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% MDR लगेगा। इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन होगी। ये शुल्क मर्चेंट से लिया जाएगा, ग्राहक से नहीं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो कह रही है कि MDR यानी UPI पर लगे चार्ज का ग्राहक से कोई लेना देना नहीं है, तो आखिर में ये टैक्स घूम फिर कर आम आदमी की जेब पर ही आएगा।
1: मिनिस्टर फाइनेंस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि एक आम नागरिक पर्सन टू पर्सन पे करता है तो कुछ नहीं, पर्सन टू मर्चेंट होता है जो उस पर 0.4% लगेगा, वो भी मर्चेंट को देना है, आदमी को नहीं देना है।
0: मैं और आप और इस देश का हर व्यक्ति जानता है कि कोई मर्चेंट बढ़ी हुई कॉस्ट को खुद बेयर नहीं करता है। उसका बड़ा आसान तरीका है, वो कैसे ये कॉस्ट निकालेगा, कुछ नहीं करेगा, वो धीमे से कीमत बढ़ाएगा। बार बार हमने ये देखा है।
10: आपको बता दें कि अभी एक हफ्ता पहले ही हुआ जब ब्रिक्स बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की ताकत दुनिया को बताई थी। मोदी ने कहा था कि आज दुनिया के 50% रियल टाइम पेमेंट UPI वाली तकनीक से होते हैं।
12: भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI, इसने पॉपुलेशन स्केल पर फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल ट्रांजैक्शन को नई गति दी है। आज विश्व के 50% रियल टाइम पेमेंट्स इसी टेक्नोलॉजी पर होते हैं।
10: लेकिन जैसे ही UPI पर 0.4% MDR लगा तो सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ। कांग्रेस कह रही है कि पहले तो सरकार कहती थी कि UPI करो, अब उसी UPI पर चार्ज लगा रही है।
0: क्योंकि आप ही ने तो कहा था भैया कैश यूज करना बंद करो, UPI करो, UPI करो। आप सेल्समैन बने हुए थे UPI के, और अब उसी UPI की वसूली करने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं।
5: मुझे लगता है कि सरकार चलानी है तो सरकार के रेवेन्यू सरकार को मिलना चाहिए ही। और राहुल गांधी का आरोप है कि भाई अमेरिका के कहने पर ही ऐसा किया है, तो अमेरिका का क्या मतलब है इसमें? हमें भारत की इकोनॉमी डेवलप करनी है, देश के लिए पैसा भी चाहिए।
10: RBI ने UPI पेमेंट्स पर चार्ज लगाने के फैसले को भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को टिकाऊ बनाए रखने के लिए जरूरी कहा है, तो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स वाली कंपनियां भी इसके फायदे गिना रही हैं।
13: UPI का MDR 0.4% पे आज भी दुनिया का सबसे सस्ता MDR है, मगर वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि होपफुली उसके वजह से फोन पे और बाकी जितने भी पेमेंट कंपनीज हैं अब हम लोग भी जो है इन्वेस्ट कर पाएंगे वापस मार्केट को ग्रो करने में।
14: आई थिंक कि अगले लेवल की ग्रोथ के लिए ये MDR बहुत जरूरी है, और ये इसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है ताकि UPI का और उद्धार हो, भारत का और उद्धार हो।
10: लेकिन कांग्रेस सरकार के UPI वाले फैसले पर न सिर्फ सवाल उठा रही है बल्कि महंगाई से जूझते लोगों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा बता रही है।
0: बजाय लोगों के मरहम लगाने के, महंगाई से जूझते हुए लोगों के घाव पर नमक मिर्च रगड़ी जा रही है कि ऐसा कैसे है भैया, हम तो अमेरिका के आगे नतमस्तक हो गए, मोदी जी कह रहे हैं तो वसूली तो तुमसे करनी पड़ेगी क्योंकि उनके इशारे पे की जा रही है।
15: कोई टैक्स नहीं है, 96% से ज्यादा लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
10: मोदी सरकार UPI को भारत की बड़ी सफलता बताती है। 2016 में नोटबंदी के बाद भारत में लेस कैश और डिजिटल पेमेंट्स का मुद्दा राजनीतिक चर्चा में आया था, और अब एक बार फिर से इस पर सियासी घमासान छिड़ा है। 15 अक्टूबर से UPI की नई व्यवस्था लागू होगी, लेकिन आम जनता और कारोबारी इस पर क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं।
16: ग्राहक तो उस पे लगा देगा ही चार्ज, क्योंकि भाई वो ले रहा है 2000 के ऊपर पेमेंट ले रहा है, एक्स्ट्रा दे रहा है, तो वो जनता पे ही लगा देगा।
17: बिल्कुल, दुकानदार जनता से ही वसूलेंगे, वो अपनी लागत नहीं बढ़ाएंगे।
18: सरकार थोड़ी हमें मतलब दुकानदार के पास हमारा निपटारा करवाने आएगी कि नहीं इनसे फीस नहीं लेनी।
19: निश्चित रूप से देश के 10 करोड़ छोटे व्यापारी रिटेल कारोबारियों के लिए एक बहुत बड़ा ग्रहण होने वाला है।
20: सामने वाला हमें देना नहीं चाहेगा और ये एक एक्स्ट्रा, इसके हमें नहीं लग रहा था कि सरकार को कोई इसी हो सकता थी।
21: जो है मोदी सरकार कहती है कि जो है ऑनलाइन आप जो है लेन देन करिए तो वो प्रथा फिर बंद हो जाएगी, फिर पुरानी प्रथा पे हमको लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
22: UPI कहते हैं पहले गुड़ खाओ और बाद में ढेला, वो हाल है।
10: आज तक ब्यूरो।
11: UCC पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान के बाद छिड़ा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले NDA में UCC को लेकर विरोध के सुर उठे, अब मुस्लिम स्कॉलर्स और धर्मगुरुओं ने भी कॉमन सिविल कोड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सवाल मुस्लिम वोट बैंक का है, लिहाजा कांग्रेस हो, ओवैसी हो या फिर समाजवादी पार्टी, सभी यूसीसी को संविधान विरोधी बता रहे हैं।
10: यूसीसी पर चुनावी प्रयोग या फिर संयोग,
23: फिर बड़ा खराब मिल गया।
10: यूसीसी के खिलाफ मदनी ने खोला मोर्चा।
24: UCC तुम लागू कर रहे, निकालो ना लफ्जी हाथ को।
10: ओवैसी की एंट्री यूसीसी पर खतरे की घंटी। तेजस्वी और अखिलेश यादव का ऐलान,
25: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है।
10: BJP का शुद्ध कम्युनल एजेंडा है यूसीसी। यूसीसी पर लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आई। कॉमन सिविल कोड पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान से उठा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं दे रहा। पहले यूसीसी पर NTA के अंतर मतभेद सामने आए, अब विपक्ष और इस्लाम के जानकारों ने खुल्लम खुल्ला मोर्चा खोल दिया है। अरशद मदनी ने ऐलान किया है कि देश के मुसलमानों को ऐसा कोई कानून कबूल नहीं है जो शरीयत के खिलाफ है। गृह मंत्री का

0: अभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि देश संविधान से चलेगा या किसी राजनीतिक दल के वैचारिक एजेंडे से। हम ऐसा कोई कानून स्वीकार नहीं कर सकते जो शरीयत के खिलाफ हो। मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन अपने धर्म और दीन से हरगिज नहीं। ये सवाल मुसलमानों के वजूद का नहीं, बल्कि उनके संवैधानिक और धार्मिक अधिकारों का है। सरकार समान नागरिक संहिता के माध्यम से मुसलमानों से वो अधिकार छीनना चाहती है जो देश के संविधान ने उन्हें दिए हैं। मतलब यही है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी मौसम में यूसीसी एक बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने बीजेपी के यूसीसी प्लान पर सीधा हमला बोला है। जनता समझ रही है कि भाजपा जिस यूसीसी की बात कर रही है, दरअसल उसका फुल फॉर्म कुछ और है, यूसीसी यानी अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। इधर सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव का पोस्ट आया, उधर यूपी में टीम एनडीए ने अखिलेश की टिप्पणी को हाथों हाथ उठा लिया। बस फिर क्या था, पूरे मामले में हिंदू और मुसलमान की सीधी एंट्री हो गई।
1: समाजवादी पार्टी के मुखिया हमेशा इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। उनके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई नीति नहीं है। लोगों को बरगलाना, झुठलाना, इनके प्रकार सत्ता हासिल करना, इसके सिवाय उनका कोई काम नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग अब स्वीकार नहीं करेंगे, उनको कभी माफ नहीं करेंगे। गुंडई, अराजकता, दंगा, प्रदेश की समाजवादी पार्टी के रीजन में जो हालात थे, आज भी लोग भूले नहीं।
2: उनके सलाहकार कैसे हैं, उसी की वजह से वह सत्ता से बाहर है। संविधान हमेशा सामाजिक न्याय की बात करता है, तो जब सामाजिक न्याय तभी मिलेगी जब समान नागरिक संहिता रहेगा, समान अधिकार रहेगा। अधिकार तो कानून से मिलता है, अधिनियम से, अधिसूचना से। तो जब हिंदू कोड बिल अंबेडकर ने इसीलिए उनका विरोध किया था कि धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव है, इसलिए उनको इस्तीफा दिया था। कांग्रेस नहीं मानती थी और फिर मानना पड़ा कांग्रेस को, लेकिन एक विशेष वर्ग में अभी तक चला आ रहा है। हमारे यहाँ तो खत्म हो गया, लेकिन अभी विशेष वर्ग में जिनको वकालत कर रहा है, क्या महिलाओं को, मुस्लिम महिलाएं उनकी वोटर नहीं है क्या? मुस्लिम महिलाएं इस देश की नहीं है क्या?
3: अखिलेश यादव जी को कोई काम तो है नहीं, 5 साल सड़कों पर तो विरोध कर नहीं पाए क्योंकि विरोध का उन्हें मौका नहीं मिला। अब वो ट्विटर खेल रहे हैं। ट्विटर खेल के देश में राजनीति नहीं होती। अखिलेश यादव जी दो ही काम करते हैं, या तो ट्विटर खेलते हैं या उस पर टीवी पर बैठकर गेम खेलते हैं, दूसरा उन्हें कोई काम नहीं है। कई कोड़ी हो गई, अब अखिलेश जी इस प्रदेश की राजनीति में नहीं आ सकते। वो तो एक बार मुलायम सिंह जी की कृपा से वो सीएम बन गए, दुनिया में की कोई ताकत उन्हें सीएम नहीं बना सकती।
4: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यूसीसी पर अपना स्टैंड स्पष्ट कर चुके हैं, तो कुछ दिन पहले मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को योगी सरकार की मुसलमान विरोधी नीति का हिस्सा भी उन्होंने बताया। बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव के बयानों को वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा जा रहा है, तो वहीं यूपी चुनाव में ताल ठोक रहे ओवैसी लखनऊ से दूर भोपाल में यूसीसी को लेकर जबरदस्त तरीके से गरजे हैं।
0: AIMM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी यूसीसी के विरोध में बुलाई गई जनसभा में हिस्सा लेने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे। मौका यूसीसी के विरोध का था, लिहाजा ओवैसी ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला।
5: जो यूसीसी का कानून नाफिज किया गया, वो न सिर्फ मुसलमानों के कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के भी खिलाफ है। आप तमाम लोगों का यहाँ पर जमा होना, बीजेपी और दिल्ली में बैठे हमारे सुस्त वजीर आजम को पैगाम मिलता है कि हम आपके बनाए हुए कानून को भारत के संविधान के खिलाफ मानते हैं और हम पुरजोर इसके खिलाफ एहतजाज अपना दर्ज कराते हैं।
0: पहले ओवैसी ने यूसीसी को संविधान और मुसलमान विरोधी बताया, उसके बाद अपने चिर परिचित अंदाज में नौजवानों को किसी मौलाना की तरह शरीयत को लेकर बड़ी नसीहत दे डाली।
6: अरे सोवियत यूनियन इस्लाम को खत्म नहीं कर सका, ये आरएसएस कौन सी खेत की मौली है जो हक की समा को बुझा सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, मेरे नौजवानों, تم قوم کا مستقبل ہو۔

0: कानून बनते हैं मिट जाएंगे बनाने वाले इंशाल्लाह। मगर याद रखो नौजवानों, तुम जब तक अपनी तबीयत पर शरीयत को गालिब नहीं करोगे, हम इनकलाब नहीं ला पाएंगे।
1: ओवैसी यही नहीं रुके, खुल्लम खुल्ला ऐलान किया कि यूसीसी के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने से देश का मुसलमान अब पीछे नहीं हटेगा।
0: तुम हमको कमजोर समझकर दबा रहे हो, मगर याद रखो जब कमजोर उठ जाएगा, बेदार हो जाएगा, तो जिंदगी उसको, उसकी जिंदगी का मकसद उसको समझ में आ जाएगा। जब कमजोर बेदार हो जाएगा, याद रखो मौत का डर दूर हो जाएगा, तो फिर किसी के महल आबाद नहीं रहेंगे, किसी का इख्तदार नहीं रहेगा। तुम हमको कब तक दबाओगे? अरे दबाते रहो, मगर हम दबने वाले हैं। तुम जितना दबाओगे उतनी ताकत से हम उठेंगे इंशाल्लाह।
1: यूसीसी विरोधी जनसभा में ही ओवैसी ने बीजेपी विधायक की विवादित टिप्पणी पर ललकारा।
2: मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, जब हिंदुस्तान में लोग कहते थे सुई बनाना नहीं जानते, तो मोदी जी ने कहा कि हम मिसाइल बनाएंगे। जैसे तुम करोत के चौराहे पर खड़े होकर मिसाइल लगाओ और काजी कैंप पे गिरा दो, वैसे ही। अरे मैंने यहाँ का काजी कैंप नहीं बोला, इस्लामाबाद वाला बोला था।
0: कोई रामेश्वर शर्मा साहब का बयान सुना, क्या बोले? मैं मिसाइल लॉन्च करूंगा करोल स्क्वायर से खाजी कैंप पर। रामेश्वर शर्मा, अगर तुम मई के लाल हो, लॉन्च करके मैं अकेला करता हूँ खाजी कैंप में आकर। मैं शहीद होने तैयार हूँ, मरने तैयार हूँ, तुम्हारे जैसे सामने सर झुकाने वाला हूँ।
1: मतलब यही है कि यूसीसी पर शाह के बयान पर बवंडर खड़ा हो चुका है। कांग्रेस भी यूसीसी पर बीजेपी को घेरने में पीछे नहीं है।
3: संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं, उनके ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं और सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे को साधने के लिए। क्या फर्क पड़ रहा है यूसीसी से, बताओ मुझे? कि निकाह नहीं होगा क्या हमारा? निकाह ही तो होगा, फेरे नहीं होंगे क्या? फेरे ही तो होंगे। क्या तमाशा बना रखा है? कुछ भी नहीं।
4: भारत जो है वो तमाम अलग अलग तरह के फूलों से मिलके बना, आप सब कुछ एक रंग का कर देना चाहते हैं, सब कुछ एक जैसा कर देना चाहते हैं, डाइवर्सिटी कहाँ चली जाएगी? तो गृहमंत्री जी को ये समझना पड़ेगा कि ये देश बहुत अलग अलग भाषाओं, अलग अलग बोलियों, अलग अलग कल्चर, अलग अलग तहजीब, अलग अलग धर्मों, सबसे मिल करके भारत बनता है। आप सब कुछ एक कर देना चाहते हैं, एक रंग का, तो हम तिरंगे के साथ खड़े हैं, हम तिरंगे वाले लोग हैं।
1: वही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यूसीसी को कम्युनल एजेंडा बताया।
5: हमने सहारनपुर की मस्जिद भी गिरवा दी, फिर भी कोई दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हम मेरठ भी मस्जिद गिरवाने जा रहे हैं, संभल भी जा रहे हैं, मुरादाबाद भी जा रहे हैं, कहीं कुछ हलचल ही नहीं हो रही है, तब यूसीसी। तो कुल मिला के भारतीय झगड़ा पार्टी जो है वो इस देश को बर्बाद करना चाहती है। अब इस देश के लोगों को तय करना है।
6: यूसीसी जो है वो किसी एक मजहब के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण मुल्क के लिए है। किसी एक धर्म के साथ उसको जोड़कर आप नहीं देख सकते, ये संपूर्ण मुल्क के लिए है। ये कानून हिंदू कानून नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का कानून है।
1: यूसीसी की बिसात पर तमाम सियासी पार्टियों के बीच शह और बात का खेल शुरू हो चुका है, लेकिन देखना यही है कि शह और बात के इस खेल में बाजी कौन जीतता है। आज तक ब्यूरो।
7: और अब बात करेंगे पाकिस्तान की एक और गुस्ताखी की, जिसने समुद्र में भारतीय जहाज को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि इसमें भारत को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पूरे मामले में भारत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी जरूर दे दी है।
1: पाकिस्तान नौसेना ने अरब सागर में भारत के खिलाफ बड़ी हिमाकत की कोशिश की है। पाकिस्तानी नौसेना का हुनैन क्लास कॉर्वेट उत्तरी अरब सागर में भारतीय नौसेना के जहाज से टकराया। हुनैन क्षतिग्रस्त होने के बाद कराची बंदरगाह पर लौट आया है।
8: वॉर टाइम में बहुत ही संयम बरतते हैं, एकदम छुपे हुए मिलते हैं आपको, लेकिन ये पीस टाइम के दौरान वो ये टाइगर बन, जिस तरह से हाईवे में लोग ये बदमाश बाइक्स चलाते हैं, कार चलाते हैं, उस तरह के स्टंट्स जो है ये पीस टाइम के लिए रखते हैं।
1: 15 सितंबर को ये टक्कर उस वक्त हुई जब भारतीय नौसेना का जहाज उत्तरी अरब सागर में नियमित टोह लेने के अभियान पर था। सूत्रों के मुताबिक बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद पाकिस्तानी जहाज बहुत करीब आ गया और आक्रामक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की। पाकिस्तानी जहाज का अगला हिस्सा भारतीय युद्ध पोत से छू गया, जिससे बाबुली टक्कर हुई।
9: भारतीय नौसेना के युद्ध पोत ने समय रहते उसे चेतावनी दी, उसके बावजूद वो बहुत नजदीक से भारतीय नौसेना के युद्ध पोत से टकरा गया और उसके बाद क्षतिग्रस्त होने के बाद तेजी के साथ अपने कराची बंदरगाह की तरफ बढ़ गया। इस पूरी घटना में भारतीय नौसेना के युद्ध पोत ने समय रहते कार्रवाई की, सूझबूझ के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया।
1: भारतीय पक्ष को कोई ढांचागत नुकसान नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ और न ही क्षमता में कोई कमी आई। इस घटना के बाद भारतीय युद्ध पोत ने अपना मिशन जारी रखा। पाकिस्तानी नौसेना के उकसावे के बावजूद भारतीय नौसेना ने संयम बरता और गंभीर दुर्घटना को रोकने के लिए कार्रवाई की।
10: ये इनकी पुरानी आदत है और इनको अब इनका उनको इस बात का इलाज करना होगा। और आपको मालूम है ऑप सिंदूर चल रहा है, अगर हमारे शिप ने अगर कुछ किया होता तो वो कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। हमारे शिप्स बहुत पावरफुल शिप्स हैं।
1: भारत के विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में पाकिस्तान के कार्यवाहक हाई कमिश्नर को तलब किया। भारत ने समुद्र में पाकिस्तानी नौसेना की यूनिट के व्यवहार को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। आज तक ब्यूरो।
7: इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का को निशाना बनाने के दावों को लेकर सऊदी अरब और यमन में हूती विद्रोहियों के बीच तनाव चरम पर है। सऊदी अरब और ओआईसी ने हूती गुट पर पवित्र शहर मक्का की ओर ड्रोन हमला करने के आरोप लगाए हैं, जबकि हूतियों ने इसे पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत बताया है।
1: सोशल मीडिया पर वायरल ये मक्का पर ड्रोन हमले की तस्वीर है। इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में से एक मक्का के आसमान पर ड्रोन मंडरा रहा है। नीचे धार्मिक यात्रा के लिए पहुंचे लोग हैरानी और परेशानी से इस खौफनाक स्थिति को देख रहे हैं। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने बयान जारी किया कि उनकी वायुसेना ने मक्का शहर के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे हूती।
7: और इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: राशि परिवर्तन से किस राशि को मिलेगा धन? सूर्य देव का राशि परिवर्तन किसको करेगा परेशान? और सूर्य देव का राशि परिवर्तन किसकी समस्याओं का करेगा समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: इसमें कहीं दो मत नहीं है, आज तक का यहां तक प्रश्न है। एक बहुत ही क्रेडिबल मीडिया ग्रुप के रूप में इसने अपनी साख बनाई है मीडिया जगत में, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि आज देश की सुरक्षा को लेकर यहाँ पूरे दिन चिंतन और मंथन हुआ है। मैं टीवी टुडे की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटर

आज प्रधानमंत्री मोदी का 76वां जन्मदिन। बीजेपी एक महीने तक चलाएगी सेवा संकल्प अभियान। अलग अलग शहरों में पार्टी के दिग्गज कार्यक्रमों में होंगे शामिल। जलेंगे लाखों दिए।

फैसले के पीछे कोई विदेशी दबाव नहीं। गोरखपुर में सीएम योगी की चुनावी हुंकार, कहा पहले एसपी और कांग्रेस सरकार में अपराध और डर, आज यूपी दंगा और कर्फ्यू मुक्त, बोले 19 सितंबर से 1,00,000 नई नौकरियों की शुरुआत। नौकरी पेशा कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, कैबिनेट ने अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रतिमाह किया, 51,00,000 लोगों को फायदा। और कन्नड़ फिल्मों के दमदार अभिनेता अनंत नाग को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड, प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। सांसद बोर्ड की नई टीम के लिए भी 18 सदस्यों का ऐलान। मोदी सरकार 15 अक्टूबर से 2,000 रुपए से ऊपर के यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर चार्ज लगाने जा रही है, लेकिन सरकार के इस फैसले पर विपक्ष और राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने सीधे मोदी सरकार पर अमेरिका के दबाव में आने का आरोप लगाया और इस फैसले को वापस लेने की मांग की। सरकार जवाब दे रही है कि वो किसी भी विदेशी दबाव में नहीं है।

0: कहा था भैया कैश यूज करना बंद करो, यूपीआई करो, यूपीआई करो, और अब इस उसी यूपीआई की वसूली करने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं।
1: ये मर्चेंट पे कॉस्ट, मर्चेंट जो है वो पे करेगा, ना कि जो एंड यूजर या कंज्यूमर पे होगा।
2: मोदी जी प्लीज स्टॉप लाइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, हैव अ स्पाइन, खड़े हो जाइए और यूपीआई टैक्स को वापस लीजिए।
3: जो खुद किसी और के इशारे पे काम करते हो और वो इस तरह की अनगरल बातें करते
2: हैं। ये अमेरिका के दबाव के अंदर ये सरकार बिल्कुल घुटने टेक गई है।
0: यूपीआई पर मार, गरीब पर वार, और फिर झुकी अमेरिका के आगे मोदी सरकार।
4: तो अमेरिका का क्या मतलब है इसमें? हमें भारत की इकोनॉमी डेवलप करनी है, देश के लिए पैसा भी चाहिए।
5: नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी देश की इकोनॉमी को डुबा के रखी है।
6: मुझे लगता है कांग्रेस का काम ही केवल गुमराह करना और आलोचना करने का रह गया।
7: ये नाराज फूफा ने देश की जनता की जेब काटने का फैसला लिया है।
0: जनता का कितना गला रेता जाएगा मैं ये जानना
8: चाहूंगा। राहुल गांधी जी की बात करें, सुबह शाम उन्हें मोदी जी दिखते हैं ताकि किसी न किसी विषय पर मोदी विरोध को तो कर सके और मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बोल पाए।
9: इधर 2,000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर सरकार ने चार्ज लगाया, उधर विपक्ष ने सीधे पीएम मोदी पर जैसे धावा बोल दिया। सबसे पहले राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो जारी करके न सिर्फ सरकार के इस फैसले की आलोचना की बल्कि आरोप लगाया कि यूपीआई पर चार्ज से अमेरिका को फायदा होगा और सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। जी हां, राहुल गांधी ने अपने वीडियो में कहा कि इंदिरा जी हमेशा सीधी खड़ी रहती थी पर ये सरकार आज अमेरिका के सामने दंडवत हो गई है। यूपीआई पर सरकार के फैसले से अमेरिका को फायदा होगा।
2: He is neither left nor right. He has decided to lie down straight and prostrate himself in front of Donald Trump. He's put a tax on every single Indian person by taxing UPI and giving huge amount of money to the United States. Modi ji, please stop lying down in front of the United States. Have a spine, khade ho jaiye aur UPI tax ko wapis lijiye.
9: यूपीआई पर चार्ज को राहुल गांधी ने अमेरिका से जोड़ा तो कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। लेकिन जवाब में सरकार कह रही है कि यूपीआई नियमों में बदलाव किसी विदेशी दबाव में नहीं लाया गया है,
0: क्योंकि वसूली मैन नरेंद्र मोदी का कहर जारी है और इस बार जो वसूली है वो अमेरिका के सामने बार बार सरेंडर करने की आदत से मजबूर होकर फिर की जा रही है। वसूली के नए प्लान में 2000 से ऊपर के हर यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन में 0.4% चार्ज लगेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह अभी तक पूरी तरह